0: बहुत देर दूर पहुंच जा सकता है।
1: एफआईआर को करवाने के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष शुरुआत से ही आक्रामक है और इसका विरोध कर रहा है। उसका हौसला इसे लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद के दावों से बढ़ गया है। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के बहाने प्रधानमंत्री मोदी तक को घेरा। इन सबके बीच अब चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब नए वोटर्स को अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी होगी। यह नया फैसला वहां लागू होगा जहां एफआईआर पूरा हो चुका है।
2: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन। आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। पीपल ऑफ इंडिया बिलीव्ड इट, बट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया वॉज नॉट इंटरेस्टेड।
3: जिस फॉर्म 6 को लेकर चुनाव आयोग में उठा पटक का दावा हुआ, दोनों चुनाव आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद के दावे हुए, उसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों में फॉर्म 6 में बड़ा बदलाव किया है। अब एसआईआर में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। आवेदक को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसका माता पिता या दादा दादी का नाम उस लिस्ट में था या नहीं। फॉर्म 6 से इससे जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नाम बिना जांच के जुड़ जाएगा। वोटर बनने की पात्रता की जांच पहले की तरह होगी। फॉर्म 6 की सामान्य प्रक्रिया भी जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव फिलहाल सिर्फ उन राज्यों में लागू है जहां एसआईआर पूरा हो चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दोनों चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में एसआईआर से जुड़ी जानकारी जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना वैधानिक फॉर्म 6 में नया हिस्सा जोड़ दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को खारिज किया गया, लेकिन इस पर विवाद के बाद हटाए जाने को विपक्ष नए सिरे से चुनाव आयोग को घेर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: धनराज नाथवानी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है तो सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि धनराज नाथवानी मुकेश अंबानी के रिलायंस से जुड़े हुए हैं, उसमें निदेशक हैं, अंबानी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके पिता परिमल नाथवानी भी कुछ ही महीने पहले एनडीए के समर्थन से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में झारखंड से राज्यसभा पहुंचे हैं और इसी वजह से धनराज नाथवानी के नाम का ऐलान होते ही बहस छिड़ गई है।
3: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन दो लोगों ने नामांकन किया, उसमें शामिल इस एक चेहरे के जरिए अखिलेश यादव ने सबको सरप्राइज कर दिया है। ऐसा ही सरप्राइज इस तस्वीर को देखकर भी यूपी के लोगों को हुआ, जिसमें अखिलेश यादव और धनराज नाथवानी के साथ दिखे यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने क्रॉस वोटिंग की अटकलों को तेज कर दिया। सवाल उठे कि क्या इसी सरप्राइज की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही थी। आखिर अखिलेश के साथ योगी के मंत्री क्या कर रहे हैं?
4: पहले कहा कि सरप्राइज देंगे,
5: सरप्राइज तो है,
6: नाम आने दीजिए, आप लोग चौंक जाएंगे।
7: अखिलेश जी ने सरप्राइज नहीं दिया है।
3: समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भरने वाले धनराज परिमल नाथवानी की चारों तरफ चर्चा है। अखिलेश यादव की बातें भी सुनने लायक है, जिसमें वो सोशलिज्म में समाजवादी पार्टी की दिशा बताते हुए इस फैसले को सही ठहराते हैं।
8: $1 trillion की इकोनॉमी चढ़ावा चोरी से नहीं बनेगी। संपर्क में तो बहुत हैं, लेकिन एडजस्ट कैसे करें? हम वादा करके वादा खिलाफी नहीं करना चाहते।
3: यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव के साथ धनराज परिमल नाथवानी एक उद्योगपति हैं, जो बीजेपी समर्थित राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के बेटे हैं और मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि परिमल नाथवानी ही क्यों?
8: सरकार का रास्ता भी है प्रॉस्पेरिटी का, और उद्योग जगत से लोग जुड़े हुए लोग हैं। उद्योग कैसे लगे यूपी में, उद्योग को कैसे बढ़ावा दें, उस दिशा में उनका योगदान हो और समाजवादी पार्टी कारोबार को बढ़ाने का काम करेगी।
3: पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे पर सवार समाजवादी सियासत ने आखिरकार पी फॉर पूंजीवाद क्यों पकड़ लिया?
9: कि पीडीए केवल सिगुफा है, इस पीडीए में केवल पी काम आया। पी का मतलब परिवार और पी का मतलब पूंजीवाद।
3: सवाल यह है कि अखिलेश ने ओपी राजभर जैसे विरोधियों को ये कहने का मौका क्यों दिया, जिसमें वो कहते हैं कि अखिलेश के पीडीए में पी से परिवार है और डी से कोई दौलतमंद।
10: इसे पीडीए का सच जो है सामने आ गया है,
5: परिवारवार और पैसा, एक कैंडिडेट उनके परिवार का और दूसरा जो है एक पैसा वाला व्यक्ति जिसकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं।
3: लेकिन क्या कहानी इतनी ही है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में 10वीं सीट के लिए छिड़े कांटे के मुकाबले के बीच राकेश सचान की मौजूदगी ने कई गंभीर राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। धनराज के नामांकन के बाद

0: की वजह से राज्यसभा सीटों का हिसाब बराबर करने जा रहे हैं।
1: तो लोकतंत्र में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी पिछली बार नहीं होती तो समाजवादी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद गए होते। तो लोकतंत्र में ये मर्यादाएं तो रहनी चाहिए।
0: अखिलेश यादव लोकतंत्र में संख्या बल की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा चुनाव में उतारकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। राकेश सचान का समाजवादी पार्टी से पुराना नाता रहा है। वो 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था और फिर बीजेपी में शामिल हो गए।
2: राज्यसभा चुनाव का नामांकन का दिन और ऐसे में राकेश सचान का विधानसभा में दिखना, ये मामूली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि राकेश सचान इससे पहले मंत्री पद के जब थे तब उनका ये विभाग भी बदला गया था और माना जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं इससे नाराज भी हैं, जिसको लेकर कई तरीके की खबरें भी सामने आई। हालांकि उनको विभाग दिया गया लेकिन इस बात की चर्चा जरूर रही कि क्यों उनसे ये विभाग बदला गया। राकेश सचान आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखे, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ क्रॉस वोटिंग और दूसरी तरफ 10वीं सीट के लिए पूरी तरीके से रणनीति।
0: बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुलाकात को प्रमुखता दी जा रही है। उसके प्रवक्ता ट्वीट कर बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के मंत्री अखिलेश यादव से मिलने विधानसभा पहुंचे, जहां अखिलेश यादव धनराज नथवानी और दूसरे समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ मौजूद थे।
2: राकेश सचान सिर्फ एक मंत्री और नेता ही नहीं, वह कानपुर देहात के साथ साथ एक बड़ा वर्ग उनके साथ कनेक्ट है और वो भी कुर्मी समाज का। माना जाता है कि वह मध्य उत्तर प्रदेश कानपुर देहात के साथ साथ एक बार रिप्रेजेंटेटिव है कुर्मी वोट बैंक का और यही वोट बैंक पूरी तरीके से ओबीसी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में राकेश सचान का समाजवादी पार्टी चीफ के साथ खड़ा होना नए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है।
0: अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस सरप्राइज की बात राज्यसभा चुनाव में की जा रही थी, क्या उसकी अगली किश्त बीजेपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग होगी, जिसे आसान बनाने के लिए ही एक उद्योगपति चेहरे को समाजवाद में यकीन करने वाली पार्टी की तरफ से राज्यसभा में उतारा गया है। क्या अखिलेश ने ऐसा करके बीजेपी को फंसा दिया है? क्या इसके बाद बीजेपी 8वां उम्मीदवार उतारने और जिताने की उम्मीद कर सकती है? कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
3: अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव तीसरा उम्मीदवार उतार कर अगला सरप्राइज देंगे, समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को उतारेगी या फिर धनराज नाथवानी की तरह उम्मीदवार उतारकर अखिलेश फिर से चौंका देंगे। यूपी में एक राज्यसभा सीट के लिए आखिर कितने विधायकों की जरूरत है, क्या गणित है, उसे समझते हैं।
1: समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि सरकार का रास्ता भी है प्रॉस्पेरिटी का और उद्योग जगत से लोग जुड़े हुए लोग हैं, उद्योग कैसे लगे यूपी में, उद्योग को कैसे बढ़ावा दें, उस दिशा में उनका योगदान हो।
0: राज्यसभा चुनाव में धनराज को टिकट देकर और इस फैसले को सही ठहराने के लिए अखिलेश यादव चाहे जो दलील दें, लेकिन इस नामांकन से मुस्लिम वोट को लेकर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं।
4: कौन सी मैच फिक्सिंग है? क्या ये इनकी भाभी जी यानी कि अपर्णा जी ने कराया है या सीधा आदेश मोदी जी का अखिलेश जी को आया है? ये सेक्युलरिज्म के चैंपियन और दूसरों को बी टीम और वो बताने वाले अब तो ये ए टीम प्रतीत हो रहे हैं। वोट लेंगे मुसलमान का और मुस्लिम विधायक जो इनको मैं कहता हूं सियासी संविदा कर्मी है जो समाजवादी पार्टी के, उनको साइन करा लिए गए खाली फॉर्म पे पहले ही। और बेटे कल को ये धनराज परिमल नथवानी और पनीमल नथवानी दोनों मिलकर के जब मुसलमानों के खिलाफ कोई यूसीसी जैसा कानून आएगा तो ये खिलाफ में वोट करेंगे। एक तरफ यादव जी, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कहां चला गया? टोपी लगा करके इफ्तार के वक्त 5 साल के लिए टोपी पहनाने का कार्य करेंगे आप?
0: ओवैसी की तरफ से अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि वो मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए न सीएम बनाते हैं न डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 79% फीसदी

0: वोट मिले, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए बढ़कर 92 से 94% हो गए। मतलब यूपी में समाजवादी पार्टी को एक मुश्त वोट मिलते हैं। इसलिए ओवैसी और विरोधियों का ये सवाल मजबूत होता है कि समाजवादी सियासत में मुसलमानों को भागीदारी नहीं दी जा रही। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 नामांकन पत्र लिए गए और पार्टी तीसरा कैंडिडेट भी उतारने की बात करती है।
1: जो तीसरा कैंडिडेट आएगा, चाहे वो दलित आए या मुसलमान आए, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए आएगा।
0: राजनीतिक रूप से अखिलेश पर भले ही मुस्लिम वोट को लेकर हमले हों, लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव की तरफ से उद्योगपति धनराज नथवानी को उतारने का दाव बीजेपी को 8वां उम्मीदवार उतारने से रोकना है। बीजेपी के पास अपने 255, 33 सहयोगी दल, राजा भैया की पार्टी के 2 वोट पहले से पक्के माने जा रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी खेमे से 5 विधायकों का वोट बीजेपी को मिलता रहा है। इस लिहाज से बीजेपी के पास 295 वोट पहले से हैं और एक सीट के लिए 37 वोट जरूरी हुए तो बीजेपी के पास 8वीं सीट जीतने का दम है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी 4-4 पर्चे खरीद कर बैठी है, उसकी वजह क्या क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है? समाजवादी पार्टी के अपने 101 वोट, हालांकि उसमें 5 वोट बागी है। कांग्रेस के 2 वोट उसके पास हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि राजभर की पार्टी से 2 और जयंत चौधरी की पार्टी से 2 वोट उन्हें मिल सकते हैं, जिन्हें मिलाकर भी 102 वोट होते हैं। हालांकि तीसरी सीट के लिए 9 वोटों की कमी फिर भी होगी। यहीं पर धनराज नाथवानी के राज्यसभा नामांकन के बाद विधानसभा अध्यक्ष के साथ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की तस्वीर अहम हो जाती है। यही तस्वीर बीजेपी के भीतर क्रॉस वोटिंग की चर्चा छेड़ती है।
2: संपर्क में तो बहुत हैं, लेकिन एडजस्ट कैसे करें? हम वादा करके वादा खिलाफी नहीं करना चाहते। संपर्क में कितने हैं? बहुत लोग संपर्क में आना चाहते हैं। बहुत जल्दी हमारी कोशिश है और जो गठबंधन पहले था वही गठबंधन आगे रहेगा।
0: अब सवाल ये है कि अखिलेश के इस भरोसे की वजह क्या है? क्या बीजेपी के मंत्री के साथ पूर्व सांसद भी अखिलेश यादव के संपर्क में हैं? यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व लोकसभा सांसद ब्रजेश भूषण शरण सिंह के सुबह दिए बयान पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी, उसने बीजेपी आला कमान को भी खबरदार कर दिया होगा। सबसे पहले दोनों का बयान सुनिए।
3: बिना अखिलेश जी का मीटिंग का क्या मतलब है?
4: अब उस पर
3: कांग्रेस 150 सीट पे चुनाव लड़ेंगे यूपी में।
4: अखिलेश के बिना कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का।
2: हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं उनसे। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, किसान के खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए हम सब एक हैं।
0: तो सुबह इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव नहीं आने को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल हुआ तो उन्होंने बिना अखिलेश सब सुन जवाब देकर कई कयासों को जन्म दिया, जिसे अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने और तेज कर दिया।
5: भूषण शरण सिंह से आज सवाल पूछा गया अलायंस को लेकर के, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बिना सब सुन, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं?
2: हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, किसान के खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए हम सब एक हैं।
0: तो अखिलेश यादव के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिखते हैं। इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद अखिलेश को लेकर राजनीतिक माहौल बदलने की अटकलों को पैदा करने वाले बयान देते हैं और फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से तीसरा उम्मीदवार उतारने का संकेत देना, नए सरप्राइज की बात करना यूपी के राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बनाता है। क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
2: क्यों नहीं होगा भाई? आपको देखिए, अरे बड़े बड़े चैनल और आप सब कैलकुलेशन जानते हो। देखिए, लोकतंत्र में नियत ये होनी चाहिए कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र की व्यवस्था यही है कि जनता से चुन करके आते हैं, फिर वो लोग चुनते हैं। पिछली बार जो हार हुई उसके कारण भी आपको पता है। तो हम तो बहुत से लोगों को कह रहे हैं कि
6: अमेरिकी राष्ट्रपति ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुपर इंटेलिजेंस यानी कि एसआई के रूप में रीब्रांड करने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बड़ी टेक कंपनियों के सीईओस के साथ बैठक की। बैठक में एआई की सुरक्षा और निगरानी को लेकर गूगल, एंथ्रोपिक, मेटा, ओपन एआई, एक्सएआई और एनवीडिया के सीईओस ने एक समझौते पर साइन किए। लेकिन एआई को एसआई करने पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या नाम बदलने से इसके वास्तविक खतरे टल जाएंगे या इससे वास्तव में कुछ बदलेगा भी।
7: डोनाल्ड ट्रंप ने एआई का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस क्यों किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस में फर्क क्या है? क्या एआई को बदलकर एसआई करने से खतरा टल जाएगा? व्हाइट हाउस में बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ ने क्या कहा? क्यों बिल गेट्स ने एआई से 100 करोड़ लोगों को खतरा बताया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को सुपर इंटेलिजेंस यानी एसआई के रूप में रीब्रांड करने की घोषणा की है। इस बैठक में एआई की सुरक्षा और निगरानी को लेकर गूगल, एंथ्रोपिक, मेटा, ओपन एआई, एक्सएआई और एनवीडिया के सीईओ ने एक समझौते पर साइन किए। ट्रंप ने कहा कि एआई को आर्टिफिशियल यानी बनावटी कहना ठीक नहीं है। ट्रंप के मुताबिक ये इंटरनेट से भी बड़ी तकनीक है।
8: But the name has been officially changed by the biggest, the smartest, the greatest people anywhere in the world at this. And I was with President Xi a few days ago, and he would admit, he said, these are the smartest people in the world at what they do, and it's a big thing, but it's been officially changed to super intelligence or SI.
7: आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टेक दिग्गजों के साथ एक हाई लेवल लंच आयोजित किया। इसमें SpaceX के प्रमुख इलॉन मस्क, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग शामिल होते हैं। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करवाकर एआई को सुपर इंटेलिजेंस तो कर दिया, लेकिन एक नई वैश्विक बहस को जन्म दे दिया। नाम का ये बदलाव कानूनी या राजनीतिक रूप से कितना भी बड़ा कदम लगे, लेकिन तकनीकी और सुरक्षा के धरातल पर ये प्रश्न उठता है कि क्या एआई का नाम बदलकर एसआई कर देने से इसके वास्तविक खतरे टल जाएंगे या इससे वास्तव में कुछ बदलेगा?
9: Look, I mean, I will say what I've always said, which is that AI has incredible benefits. I've talked about the medical benefits of the technology. As the president has said, you know, whoever wins AI wins. I think that's very important. But I think the technology has very real risks. And, you know, the mechanism, how we address those risks is still under discussion. But we all need to work together to make sure that we can win and we can win safely. If we do this right, if we work with the president and everyone here, we can win safely.
7: क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स जब ये चेतावनी देते हैं कि गलत इरादे वाले लोगों के हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बिल गेट्स कहते हैं उन्नत एआई का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान का कारण बन सकता है और इसकी चपेट में 100 करोड़ लोगों तक का जीवन आ सकता है। बिल गेट्स अमेरिकी सरकार से एआई के विकास और इस्तेमाल के लिए सख्त नियम बनाने की मांग करते हैं। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में गेट्स ने कहा कि एआई की ताकत का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। उनके मुताबिक बुरे इरादे वाले लोगों के साथ अत्याधुनिक एआई का मेल ऐसा खतरा पैदा कर सकता है जैसा अब तक किसी हथियार से नहीं देखा गया।
9: We have to make sure we are addressing the risks, and the president has asked us as an industry to step up, and we want to make sure we are putting our products safely.
7: अब सवाल ये है कि एआई का नाम बदलकर एसआई कर देने से क्या ये खतरा टल सकता है या कम हो सकता है? सुपर इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग तकनीक की शक्ति, क्षमता और वैश्विक प्रभुत्व को दर्शाने के लिए किया जा सकता है, जबकि सच ये है कि नाम बदलने से न्यूरल नेटवर्क का ढांचा, प्रशिक्षण डेटा, ऑटोनॉमी या मशीन की कार्य प्रणाली नहीं बदलती, चाहे इसे आर्टिफिशियल कहा जाए, सिंथेटिक या सुपर इंटेलिजेंस। मशीन की निर्णय लेने की गति, स्वचालन और विशाल डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता वही रहती है। केवल शब्दावली बदलने से यदि ये मान लिया जाए कि खतरा कम हो गया है, तो ये एक अत्यंत खतरनाक स्थिति होगी। समाधान नामकरण से नहीं बल्कि कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल, अलाइनमेंट रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय नियमों में निहित है।
9: I think by far the most likely outcome is an age of abundance, where we don't have just a universal basic income, we have universal high income. People speak about medical benefits. I think but maybe it's worth talking a bit more about that. When you have robots and you have super intelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
7: अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेक कंपनियों के सीईओ के साथ जो समझौता साइन किया है उसमें चार बातों पर सहमति दी गई है। अपने एआई सिस्टम की जांच कंपनियां खुद करेंगी कि उनके एआई मॉडल सुरक्षा के तय नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। कंपनियां एक टीम बनाएंगी जो एआई सिस्टम की निगरानी करेगी और ये देखेगी कि कहीं कोई खतरा या गड़बड़ी तो नहीं है। कंपनियां अपने एआई मॉडल की जांच बाहरी विशेषज्ञों या किसी स्वतंत्र संस्था से भी कराएंगी। कंपनियों के बोर्ड की एक स्वतंत्र समिति इन जांच रिपोर्टों को देखेगी। अगर कोई समस्या सामने आती है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी होगी।
9: I mean, I can kind of summarize what I think we all signed today, which is it's the White House accord on developing this technology safely. The basic idea is that we want to give the American people and our customers confidence that the technology works in the way that we intend.
7: क्योंकि विशेषज्ञों को लगने लगा है कि एआई इतना भी उन्नत ना हो जाए कि इंसान उन्हें वैश्विक ड्रोन युद्ध या परमाणु बम का हमला करने से ना रोक पाए। चीन का मामला इससे अलग है, वहाँ किसी भी खतरे का एक ही समाधान देखा जाता है, प्लग खींच दिया जाए और इंटरनेट ब्लैकआउट घोषित कर दिया जाए और खुराफाती एआई के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
10: कौन सा पौधा घर में लगाने से घर में दरिद्रता आ जाती है? कौन सा पौधा घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से पौधे का प्रयोग करना चाहिए? अलग अलग ग्रहों के कौन से हैं शुभ पौधे, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर की बात। द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी विमर्श। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल। नवंबर में महारैली का ऐलान। पलटवार में बोले शिवराज, अशांति फैलाने के लिए रच रहे हैं साजिश। पंजाब में अमित शाह का चुनावी शंखनाद। जालंधर की रैली में कहा, बीजेपी को मौका दें तो राज्य में 2029 तक खत्म करेंगे ड्रग्स। मान सरकार को घेरा।

दुबई से टेल अवीव जा रहे फ्लाइट को लेकर जबरदस्त सस्पेंस। दोनों पायलट में खूनी झड़प के बाद सऊदी अरब में उतरा विमान। इजरायली मीडिया का दावा, क्रैश कराने की थी साजिश। गुवाहाटी वनडे में वेस्टइंडीज पर भारत की 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत। 406 रन का लक्ष्य किया हासिल। क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेस। कप्तान शुभमन ने जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक।

0: जमीन से 32,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या है वो सस्पेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन वो खबर फ्लाई दुबई की, वो फ्लाइट जो जा रही थी मिडिल ईस्ट से टेल अवीव की ओर, आखिर उसमें हुआ क्या। उस वारदात को लेकर के बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लाइट के यात्रियों से मुलाकात की है, उनकी बहादुरी की सराहना की है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने आरोपी पायलट को हिरासत में ले लिया है। हुआ क्या, भारतीय कैप्टन स्मिथ मछार इस घटना में घायल हुए हैं, हीरो ऑफ द मोमेंट। वहीं नेतन्याहू से लेकर ट्रंप ने कैप्टन स्मिथ मच्छर को हीरो करार दिया है, और अब फ्लाई दुबई में बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जांच पूरी होने तक इजराइल से आने जाने वाली उसकी उड़ानें निलंबित रहेंगी। तो दुबई से लेकर टेल अवीव तक फ्लाई करने वाली तमाम फ्लाइटों के अलावा सऊदी से भी जो फ्लाइटें अब टेल अवीव की ओर जा रही हैं, खासकर सऊदी से टेल अवीव की जो फ्लाइट है उनको निलंबित किया गया है। उधर एयरलाइन ने कहा है कि वो सरकार, नियामक और एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। नई जानकारी मिलने पर उड़ानों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। घटना के बाद इसराइल ने देश में आने वाली उड़ानों के पायलटों की सुरक्षा जांच और कड़ी करने का फैसला लिया है। ये वो तस्वीरें देखिए, उस वक्त फ्लाई दुबई की फ्लाइट इसराइल पहुंच चुकी थी और इसी फ्लाइट में हंगामा होता है। और ये देखिए, जैसे ही लोगों फ्लाइट लैंड होती है, तमाम यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। तालियों के साथ खुशी का इजहार करते हुए 150 इजराइल यात्री थे जिनके ऊपर एक विपदा आई थी, लेकिन उस विपदा से बचाने वाले थे को पायलट, वो भारतीय पायलट जिसने 150 यात्रियों की जान बचाई और हीरो बन गए। और उसके बाद जैसे ही तमाम मुसाफिर टेल अवीव पहुंचे, देखिए उनका खास ख्याल रखा गया, क्योंकि यहां पर ये वो वक्त था जब मन में लोगों के डर था, कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। इसराइल का कहना है कि दरअसल ये प्लेन को क्रैश कराने की कोशिश थी, बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाली तस्वीर थी जब कॉकपिट के अंदर दो पायलट में चाकू चले, हाथापाई हुई, लेकिन उसके बाद एक पायलट की बहादुरी ने 150 मुसाफिरों की जान बचा दी।
1: दुबई से इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट करीब 180 यात्रियों को लेकर आसमान में थी, तभी कॉकपिट से आई चीख पुकार ने पूरे विमान में हड़कंप मचा दिया। को पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छर पर चाकू से हमला किया। इसी दौरान विमान तेजी से नीचे आने लगा। फ्लाइट ने पहले 7700 इमरजेंसी कोड और फिर 7500 हाईजैक अलर्ट भेजा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में मदद की, जिसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर को काबू किया। विमान में मौजूद दूसरे पायलटों ने कंट्रोल संभाला। फ्लाइट को सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया, जहां उसकी सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सऊदी अधिकारियों ने हमलावर को पायलट को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। विमान में मौजूद एक इजरायली डेंटिस्ट ने घायल कैप्टन की मदद की। यात्रियों, क्रू और दूसरे पायलटों की मदद से बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी को सलाम किया। भारत सरकार ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं इजरायल ने देश में आने वाली उड़ानों के पायलटों की सुरक्षा जांच और कड़ी करने का फैसला किया है। पायलटों की पहचान और बैकग्राउंड की अतिरिक्त जांच की जाएगी। हमले की वजह अब तक साफ नहीं है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो दुबई से टेल अवीव जा रही आखिर फ्लाइट में हुआ क्या, कैसे अचानक एक फ्लाइट जो अपने गंतव्य टेल अवीव की ओर, इसराइल की ओर जा रही थी, अचानक वो नोज डाइव करने लगी। ये फ्लाई दुबई की वारदात में क्या हुआ था कि टेल अवीव जा रही थी ये जो फ्लाइट, कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच झड़प हो गई। शुरुआत, अब ये जो जानकारी आई अब तक की पूछताछ में, को पायलट ने कैप्टन पर चाकू से हमला किया, कहते हैं पॉकेट नाइफ था, उसने पॉकेट नाइफ निकाला और को पायलट पर हमला किया। उसके बाद विमान नोज डाइव, अब नोज डाइव मतलब जो आगे का हिस्सा है वो नीचे की ओर बेंड हुआ और विमान बहुत तेजी से नीचे आया। उसके बाद यात्रियों ने, सबसे पहले को पायलट ने हमलावर को काबू किया, और उसके बाद जो यात्री थे वो मदद के लिए आगे बढ़े, और उसके बाद ताबुक जो इलाका है वहां पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। ये देखिए, इसी के साथ आप कैप्टन मच्छर की तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो एक हीरो जिसने 150 लोगों की जान बचाई। फ्लाई दुबई की अभी फिलहाल इसराइल की सारी उड़ानें सस्पेंड कर दी गई हैं। नेतन्याहू ने घायल यात्रियों से भी मुलाकात की, उसके बाद जो घायल थे उनका इलाज कराया गया। और इन सब के बीच वो भारतीय पायलट जो इस समय दुनिया में हीरो बनकर उभरा है। तो दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में चाकूबाजी के मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है। ट्रंप के मुताबिक सह पायलट ने पायलट पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उस पायलट ने हिम्मत दिखाई, कॉकपिट का दरवाजा खोला। ट्रंप ने उनकी इस कार्रवाई को बहादुरी भरा कदम बताया है।
2: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: उधर गुवाहाटी में क्रिकेट का ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसे लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। वेस्टइंडीज को 405 रन का पहाड़ खड़ा किया, लेकिन टीम इंडिया ने इस पहाड़ को बौना कर दिया। गिल के बल्ले ने दोहरा शतक जड़ा, रोहित ने शतकीय तूफान खड़ा किया और भारत ने 406 रनों का लक्ष्य महज 43.3 ओवर में हासिल करके इतिहास रच दिया। है ना अद्भुत ऐसा खेल कि 43 ओवर में, और आप सोचिए कि इतने बड़े रन का पहाड़ उनके सामने बौना हो गया। 8 विकेट, वेस्टइंडीज के 405 रनों के स्कोर को चेस किया गया। सोचिए, कोई शतक लगा रहा है, कोई डबल शतक लगा रहा है, और वेस्टइंडीज के इस रन को गिल ने नाबाद दोहरा शतक लगाया, तो रोहित ने भी शतकीय पारी खेली। गुवाहाटी वनडे में टीम इंडिया की वो ऐतिहासिक जीत हुई है, 8 विकेट से पूरा मुकाबला जीत लिया। आप सोचिए कि टीम इंडिया का ये गुवाहाटी का मुकाबला था, 405 रन 7 विकेट खोकर वेस्टइंडीज ने बनाए, भारत ने 406 रन सिर्फ 2 विकेट खोकर, यानी सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने शतक और दोहरा शतक लगा करके। रोहित ने शतक लगाया तो गिल ने जो है दोहरा शतक लगाया, और ये नाबाद पारी ऐसी खेली कि जो है सोचिए कि सिर्फ 2 विकेट पर ही पूरा मैच जीत लिया। रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल ने 233 रन बनाए, और कितने पर? सिर्फ 133 गेंदों पर। सोचिए कि सीधा जो एवरेज है वो सीधा डबल एवरेज खेला है। दोनों के बीच 255 रनों की ओपनिंग साझेदारी थी, अकेले 2 विकेट पर लगभग 250 रन तो ऐसे ही बन गए थे। 8 विकेट से भारत ने फिर ये मुकाबला जीता। गुवाहाटी में जो मैच था वो इतना अद्भुत था कि लोगों को अविश्वसनीय लग रहा था।
1: चार सौ पांच रन का लक्ष्य, सामने वेस्ट इंडीज की मजबूत चुनौती, लेकिन गुवाहाटी में टीम इंडिया के इरादे कुछ और ही थे। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रन ठोक दिए। जॉन कैंपेल, शाई होप और अमीर जांगू ने शतक जमाकर भारत के सामने 406 रन का लक्ष्य रख दिया, लेकिन लक्ष्य जितना बड़ा था, टीम इंडिया का जवाब उससे भी बड़ा निकला। क्रीज पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और दोनों ने शुरुआत से ही वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। रोहित ने 75 गेंदों में शानदार शतक ठोका, और गिल के साथ 255 रन की तूफानी ओपनिंग साझेदारी ने भारत की जीत की नींव रख दी। फिर रोहित आउट हुए, लेकिन गिल का तूफान नहीं रुका। गिल ने बल्ला घुमाया तो रिकॉर्ड टूटते चले गए। 133 गेंदों में नाबाद 223 रन और महज 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर गिल ने वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया। गिल की इस पारी में चौकों छक्कों की बरसात थी, और दूसरी तरफ रोहित के शतक ने इस रणचेज को पूरी तरह एकतरफा बना दिया। भारत ने सिर्फ 43.3 ओवर में 406 रन बनाकर 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया, यानी 39 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। वेस्ट इंडीज ने 400 पार का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन टीम इंडिया ने जवाब में ऐसा रनचेज किया कि 405 का पहाड़ भी छोटा पड़ गया। इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। गुवाहाटी में जीत के बाद टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, यानी अब आखिरी मुकाबला सिर्फ औपचारिकता रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब बात करेंगे एसआईआर पर मचे कोहराम के। एसआईआर को करवाने के तौर तरीकों को लेकर के विपक्ष शुरुआत से आक्रामक तो है, इसका विरोध कर रहा है, इसका हौसला लेकर के चुनाव आयोग के अंदर मतभेद के दावों से बढ़ा है। उधर राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के बहाने पीएम मोदी तक को घेरा। इन सब के बीच अब चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 को लेकर के बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत नए वोटरों को अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी होगी। आपके बाप दादा माँ बाप की जो जानकारी पहले मांगी गई थी ना, बदलाव किया गया था, अब वो नहीं करना होगा। ये नया फैसला वहां लागू होगा अब जहां एसआईआर पूरा हो चुका है।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन। आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested.
4: जिस फॉर्म 6 को लेकर चुनाव आयोग में उठा पटक का दावा हुआ, दोनों चुनाव आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद के दावे हुए, उसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों में फॉर्म 6 में बड़ा बदलाव किया है। अब एसआईआर में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। आवेदक को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसका माता पिता या दादा दादी का नाम उस लिस्ट में था या नहीं। फॉर्म 6 से इससे जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नाम बिना जांच के जुड़ जाएगा। वोटर बनने की पात्रता की जांच पहले की तरह होगी। फॉर्म 6 की सामान्य प्रक्रिया भी जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव फिलहाल सिर्फ उन राज्यों में लागू है जहां एसआईआर पूरा हो चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दोनों चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में एसआईआर से जुड़ी जानकारी जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना वैधानिक फॉर्म 6 में नया हिस्सा जोड़ दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को खारिज किया गया, लेकिन इस पर विवाद के बाद हटाए जाने को विपक्ष नए सिरे से चुनाव आयोग को घेर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बीच नीतीश कुमार की भी चर्चा रही, क्योंकि नीतीश कुमार जिन्होंने बीजेपी को हराने के लिए साल 2024 से पहले विपक्षी दलों को एक किया, इंडिया गठबंधन की नींव रखी। आखिर नीतीश ने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा, यह सवाल कांग्रेस की सीडब्ल्यू से शुरू हुआ। इसे लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी इसकी वजह बताई।
5: बीच में कभी दो बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा।
4: जिस नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बनाया, उसका साथ क्यों छोड़ दिया, वो वापस एनडीए में क्यों आ गए?
6: उनको जाना ही था क्योंकि उनको हाईजैक कर लिया गया था। उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। मन तो था, तभी हम लोगों ने बिहार की धरती से, हम लोगों ने, आपको पता है कि भाजपा को हमने वहां हटाया, नीतीश जी हम लोगों ने हाथ में लाया, तो इसीलिए मकसद वही था कि इनको गद्दी से हटाना है। वो वाला अगस्त के महीने में, 22 के अगस्त के महीने में आप वो वीडियो देखिएगा, जो नीतीश जी कह रहे थे उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो जदयू में जो लोग हैं, जो चला रहे हैं, वो लोग जो हैं पूरी तरीके से भाजपा के लोग घुसे हुए हैं, वही चला रहे जो।
4: इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच कांग्रेस और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। इसकी सबसे पहले गूंज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सुनाई दी, जहां नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने का मुद्दा उठा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर नीतीश गठबंधन में बने रहते तो सियासी हालात अलग हो सकते थे। इसके जवाब में सोनिया गांधी की ओर से कहा गया कि अच्छा हुआ नीतीश समय रहते चले गए। अब इस बयान पर जेडीयू ने कांग्रेस को ही आईना दिखाया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस को ही बाहर रखकर तीसरा फ्रंट बनाने की बात हो रही थी।
7: नीतीश कुमार अपने काम काज से डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय, ये दोनों का मिक्सचर नीतीश जी ने किया। इसका तो पहला मीटिंग नीतीश जी ने करवाया था पटना में। ये गठबंधन बनवाने में भी उनका रोल था, देश भर में वो घूमे थे जाकर के। और जो लोग आज आए हुए हैं, वो लोग नीतीश जी को बोलते थे कि हम लोग मिलते हैं लेकिन कांग्रेस के बिना मिलते हैं, माइनस कांग्रेस मिलिए, इसको छोड़ करके मिलिए। अभी कन्वीनर का बात तो कहां, नीतीश जी कभी कन्वीनर के लिए, मैं गवाह हूं इस चीज का, इस चीज को परस्यू नहीं किए। लेकिन उनको लगा कि तो परिवार से ऊपर उठ ही नहीं सकता ये लोग, ये तो पारिवारिक पार्टी है ना भाई, कि अपना अकाउंट और वो बैठ करके देखता है डेबिट क्रेडिट किया हुआ हमारे परिवार में।
4: नीतीश कुमार ही वो नेता थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, लेकिन कहा जाता है कि चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन का नाम रखे जाने को लेकर उनकी नाराजगी शुरू हुई, जो संयोजक नहीं बनाए जाने से गहरा गई और वो अलग हो गए। लेकिन कई लोगों का आज भी मानना है कि अगर नीतीश इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ते तो 2024 के बाद देश की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती थी। आज तक ब्यूरो।
0: उधर धनराज नाथवानी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि धनराज नाथवानी मुकेश अंबानी के रिलायंस से जुड़े हैं, उसमें निदेशक हैं। अंबानी परिवार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। उनके पिता परिमल नाथवानी भी कुछ ही महीने पहले एनडीए के समर्थन से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में झारखंड से राज्यसभा पहुंचे हैं। अब इसी वजह से धनराज नाथवानी के नाम का ऐलान होते ही एक बहस छिड़ गई है।
4: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन दो लोगों ने नामांकन किया उसमें शामिल इस एक चेहरे के जरिए अखिलेश यादव ने सबको सरप्राइज कर दिया है। ऐसा ही सरप्राइज इस तस्वीर को देखकर भी यूपी के लोगों को हुआ, जिसमें अखिलेश यादव और धनराज नथवानी के साथ दिखे यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने क्रॉस वोटिंग की अटकलों को तेज कर दिया। सवाल उठे कि क्या इसी सरप्राइज की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही थी। आखिर अखिलेश के साथ योगी के मंत्री क्या कर रहे हैं?
8: पहले कहा कि सरप्राइज देंगे,
9: सरप्राइज तो है
10: ना, माने दीजिए आप लोग चौंक जाएंगे।
11: अखिलेश जी ने सरप्राइज नहीं दिया।
4: समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भरने वाले धनराज परिमल नथवानी की चारों तरफ चर्चा है। अखिलेश यादव की बातें भी सुनने लायक है, जिसमें वो सोशलिज्म में समाजवादी पार्टी की दिशा बताते हुए इस फैसले को सही ठहराते हैं।
12: $1 trillion की इकोनॉमी चढ़ावा चोरी से नहीं बनेगी। संपर्क में तो बहुत हैं, लेकिन एडजस्ट कैसे करें? हम वादा करके वादा खिलाफ ही नहीं करना चाहते।
4: यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव के साथ धनराज परिमल नथवानी एक उद्योगपति हैं, जो बीजेपी समर्थित राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी के बेटे हैं और मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि परिमल नथवानी ही क्यों?
12: सरकार का रास्ता भी है प्रॉस्पेरिटी का, और उद्योग जगत से लोग जुड़े हुए लोग हैं। उद्योग कैसे लगे यूपी में, उद्योग को कैसे बढ़ावा दें, उस दिशा में उनका योगदान हो और समाजवादी पार्टी कारोबार को बढ़ाने का काम करेगी।
4: पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे पर सवार समाजवादी सियासत ने आखिरकार पी फॉर पूंजीवाद क्यों पकड़ लिया?
13: कि पीडीए केवल सिगुफा है, इस पीडीए में केवल पी काम आया। पी का मतलब परिवार और पी का मतलब पूंजीवाद।
4: सवाल यह है कि अखिलेश ने ओपी राजभर जैसे विरोधियों को ये कहने का मौका क्यों दिया, जिसमें वो कहते हैं कि अखिलेश के पीडीए में पी से परिवार है और डी से कोई दौलतमंद।
14: इसे पीडीए का सच जो है सामने आ गया है, परिवार वार और पैसा। एक कैंडिडेट उनके परिवार का और दूसरा जो है एक पैसा वाला व्यक्ति जिसकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं।
4: लेकिन क्या कहानी इतनी ही है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में 10वीं सीट के लिए छिड़े कांटे के मुकाबले के बीच राकेश सचान की मौजूदगी ने कई गंभीर राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। धनराज के नामांकन के बाद अखिलेश अपने विधायकों के साथ यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिले, लेकिन सियासी गलियारों में राकेश सचान को लेकर बड़ा सवाल है। चर्चा जोरों पर है कि क्या बीजेपी के भीतर से ही क्रॉस वोटिंग के आसार बनने लगे हैं? क्या अखिलेश यादव पिछली बार क्रॉस वोटिंग की वजह से राज्यसभा सीटों का हिसाब बराबर करने जा रहे हैं?
12: तो लोकतंत्र में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी पिछली बार नहीं होती तो समाजवादी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद गए होते। तो लोकतंत्र में ये मर्यादाएं तो रहनी चाहिए।
4: अखिलेश यादव लोकतंत्र में संख्या बल की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा चुनाव में उतारकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है? राकेश सचान का समाजवादी पार्टी से पुराना नाता रहा है। वो 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था और फिर बीजेपी में शामिल हो गए।
15: राज्यसभा चुनाव का नामांकन का दिन, और ऐसे में राकेश सचान का
9: विधानसभा में दिखता। ये मामूली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि राकेश सचान इससे पहले मंत्री पद के जब थे तब उनका ये विभाग भी बदला गया था और माना जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं इससे नाराज भी हैं, जिसको लेकर कई तरीके की खबरें भी सामने आई। हालांकि उनको विभाग दिया गया लेकिन इस बात की चर्चा जरूर रही कि क्यों उनसे ये विभाग बदला गया। राकेश सचान आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखे, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ क्रॉस वोटिंग और दूसरी तरफ 10वीं सीट के लिए पूरी तरीके से रणनीति।
1: बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुलाकात को प्रमुखता दी जा रही है। उसके प्रवक्ता ट्वीट कर बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के मंत्री अखिलेश यादव से मिलने विधानसभा पहुंचे, जहां अखिलेश यादव धनराज नथवानी और दूसरे समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ मौजूद थे।
9: राकेश सचान सिर्फ एक मंत्री और नेता ही नहीं, वह कानपुर देहात के साथ साथ एक बड़ा वर्ग उनके साथ कनेक्ट है और वो भी कुर्मी समाज का। माना जाता है कि वह मध्य उत्तर प्रदेश कानपुर देहात के साथ साथ एक बार रिप्रेजेंटेटिव है कुर्मी वोट बैंक का और यही वोट बैंक पूरी तरीके से ओबीसी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में राकेश सचान का समाजवादी पार्टी चीफ के साथ खड़ा होना नए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है।
1: अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस सरप्राइज की बात राज्यसभा चुनाव में की जा रही थी, क्या उसकी अगली किश्त बीजेपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग होगी, जिसे आसान बनाने के लिए ही एक उद्योगपति चेहरे को समाजवाद में यकीन करने वाली पार्टी की तरफ से राज्यसभा में उतारा गया है। क्या अखिलेश ने ऐसा करके बीजेपी को फंसा दिया है? क्या इसके बाद बीजेपी 8वां उम्मीदवार उतारने और जिताने की उम्मीद कर सकती है? कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: सवाल अब ये भी है कि अखिलेश यादव तीसरा उम्मीदवार उतार कर क्या अगला सरप्राइज देंगे? समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को उतारेगी या धनराज नाथवानी की तरह उम्मीदवार उतार कर अखिलेश फिर से चौंकाएंगे? यूपी में एक राज्यसभा सीट के लिए आखिर कितने विधायकों की जरूरत है? गणित क्या है? आइए जरा उसे भी समझ लेते हैं।
12: समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि सरकार का रास्ता भी है प्रॉस्पेरिटी का और उद्योग जगत से लोग जुड़े हुए लोग हैं। उद्योग कैसे लगे यूपी में, उद्योग को कैसे बढ़ावा दें, उस दिशा में उनका योगदान हो।
1: राज्यसभा चुनाव में धनराज को टिकट देकर और इस फैसले को सही ठहराने के लिए अखिलेश यादव चाहे जो दलील दें, लेकिन इस नामांकन से मुस्लिम वोट को लेकर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं।
15: कौन सी मैच फिक्सिंग है? क्या ये इनकी भाभी जी यानी कि अपर्णा जी ने कराया है या सीधा आदेश मोदी जी का अखिलेश जी को आया है? ये सेक्युलरिज्म के चैंपियन और दूसरों को बी टीम और वो बताने वाले, अब तो ये ए टीम प्रतीत हो रहे हैं। वोट लेंगे मुसलमान का और मुस्लिम विधायक जो इनको मैं कहता हूं सियासी संविदा कर्मी है जो समाजवादी पार्टी के, उनको साइन करा लिए गए खाली फॉर्म पे पहले ही। और बेटे कल को ये धनराज परिमल नथवानी और पनीमल नथवानी दोनों मिलकर के जब मुसलमानों के खिलाफ कोई यूसीसी जैसा कानून आएगा तो ये खिलाफ में वोट करेंगे। एक तरफ यादव जी, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कहां चला गया? टोपी लगा करके इफ्तार के वक्त 5 साल के लिए टोपी पहनाने का कार्य करेंगे आप?
1: ओवैसी की तरफ से अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि वो मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए न सीएम बनाते हैं न डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 79% मुस्लिम वोट मिले, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए बढ़कर 92-94% हो गए। मतलब यूपी में समाजवादी पार्टी को एक मुश्त वोट मिलते हैं। इसलिए ओवैसी और विरोधियों का यह सवाल मजबूत होता है कि समाजवादी सियासत में मुसलमानों को भागीदारी नहीं दी जा रही। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 नामांकन पत्र लिए गए और पार्टी तीसरा कैंडिडेट भी उतारने की बात करती है।
15: जो तीसरा कैंडिडेट आएगा चाहे वो दलिता या मुसलमान आए, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए आएगा।
1: राजनीतिक रूप से अखिलेश पर भले ही मुस्लिम वोट को लेकर हमले हों, लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव की तरफ से उद्योगपति धनराज नथवानी को उतारने का दाव बीजेपी को 8वां उम्मीदवार उतारने से रोकना है? बीजेपी के पास अपने 255 33 सहयोगी दल राजा भैया की पार्टी के 2 वोट पहले से पक्के माने जा रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी खेमे से 5 विधायकों का वोट बीजेपी को मिलता रहा है,
16: इस लिहाज से बीजेपी के पास 295 वोट पहले से हैं और एक सीट के लिए 37 वोट जरूरी हुए तो बीजेपी के पास 8वीं सीट जीतने का दम है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी चार चार पर्चे खरीद कर बैठी है उसकी वजह क्या क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है? समाजवादी पार्टी के अपने 101 वोट, हालांकि उसमें 5 वोट बागी है। कांग्रेस के 2 वोट उसके पास हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि राजभर की पार्टी से 2 और जयंत चौधरी की पार्टी से 2 वोट उन्हें मिल सकते हैं, जिन्हें मिलाकर भी 102 वोट होते हैं। हालांकि तीसरी सीट के लिए 9 वोटों की कमी फिर भी होगी। यहीं पर धनराज नाथवानी के राज्यसभा नामांकन के बाद विधानसभा अध्यक्ष के साथ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की तस्वीर अहम हो जाती है। यही तस्वीर बीजेपी के भीतर क्रॉस वोटिंग की चर्चा छेड़ती है।
12: संपर्क में तो बहुत हैं, लेकिन एडजस्ट कैसे करें? हम वादा करके वादा खिलाफ ही नहीं करना चाहते। संपर्क में कितने हैं? बहुत लोग संपर्क में आना चाहते हैं। बहुत जल्दी हमारी कोशिश है और जो गठबंधन पहले था वही गठबंधन आगे रहेगा।
16: अब सवाल ये है कि अखिलेश के इस भरोसे की वजह क्या है? क्या बीजेपी के मंत्री के साथ पूर्व सांसद भी अखिलेश यादव के संपर्क में है? यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व लोकसभा सांसद ब्रजेश भूषण शरण सिंह के सुबह दिए बयान पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी उसने बीजेपी आलाकमान को भी खबरदार कर दिया होगा। सबसे पहले दोनों का बयान सुनिए।
17: बिना अखिलेश जी का मीटिंग का क्या मतलब है?
18: अब उस पर
17: कांग्रेस 150 सीट पे चुनाव लड़ेंगे यूपी में।
18: अखिलेश के बिना कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का।
12: हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं उनसे। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, किसान के खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए हम सब एक हैं।
16: तो सुबह इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव नहीं आने को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल हुआ तो उन्होंने बिना अखिलेश सब सून जवाब देकर कई कयासों को जन्म दिया, जिसे अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने और तेज कर दिया।
19: इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

0: सा पौधा घर में लगाने से घर में दरिद्रता आ जाती है? कौन सा पौधा घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से पौधे का प्रयोग करना चाहिए? अलग अलग ग्रहों के कौन से हैं शुभ पौधे, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर की बात। द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी विमर्श। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल। नवंबर में महारैली का ऐलान। पलटवार में बोले शिवराज, अशांति फैलाने के लिए रच रहे हैं साजिश। पंजाब में अमित शाह का चुनावी शंखनाद। जालंधर की रैली में कहा, बीजेपी को मौका दें तो राज्य में 2029 तक खत्म करेंगे ड्रग्स। मान सरकार को घेरा। दुबई से टेल अवीव जा रहे फ्लाइट को लेकर जबरदस्त सस्पेंस। दोनों पायलट में खूनी झड़प के बाद सऊदी अरब में उतरा विमान। इजरायली मीडिया का दावा, क्रैश कराने की थी साजिश। गुवाहाटी वनडे में वेस्टइंडीज पर भारत की 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत। 406 रन का लक्ष्य किया हासिल। क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज। कप्तान शुभमन ने जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक।

0: के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आज 1 अक्टूबर है, त्योहारी मौसम के हम करीब हैं और आज से ही महंगाई का बड़ा झटका लगा है। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का एक और झटका, आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर से महंगा हो गया है। तो 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 62.50% की बढ़ोतरी हुई है। नई दर के मुताबिक दिल्ली में अब एक 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत हो गई है 2810 रुपए। आपको बता दें कि सितंबर में भी प्रति सिलेंडर 9.5 रुपए का इजाफा हुआ था, जिससे कमर्शियल सिलेंडर में 62.50 रुपए बढ़ोतरी होने के बाद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और एलपीजी कमर्शियल जहां भी इस्तेमाल होते उस कारोबार की लागत बढ़ेगी। इसका असर सबसे ज्यादा छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। बढ़ी कीमत का असर आगे खाने पीने की कीमतों पर पड़ सकता है। तो अक्टूबर की शुरुआत में ही ये बड़ा झटका लगा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हम और आप घर में जिस एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर का ये झटका, आप सोचिए कि इस साल में अब तक कितनी बढ़ोतरी हुई थी। जब जनवरी में इसकी कीमत 1691 रुपए थी, आधा साल बीतते बीतते इसकी कीमत 3000 रुपए के लगभग पहुंच गई थी। अब इसमें यह देखा गया कि पहले 42 रुपए बढ़ोतरी और एक एक करके कीमतें इसकी जून में बढ़ोतरी हुई, फिर सितंबर में बढ़ोतरी हुई है और अब जा करके देखिए कि 19 किलो का जो सिलेंडर है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो करके अब इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, खासकर छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। और जिसकी वजह से अब जो एलपीजी सिलेंडर उसकी कीमत 2810 रुपए हो गई, तो अब रेस्टोरेंट में खाना पीना उस पर असर पड़ सकता है। इसी के साथ वो व्यापारिक क्षेत्र जहां पर कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर भी कीमतें बढ़ेंगी। तो महंगाई का ये संकट हमारे आपके सामने तो है ही, लेकिन देश के सामने एक बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट आने वाला है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार भी यह मान रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी आशंका क्यों जताई? जयशंकर ने अमेरिका के कार्यक्रम में जब दुनिया की चुनौतियों का जिक्र किया तो भारत के संदर्भ में बात की, ऊर्जा, फर्टिलाइजर और उसी के साथ साथ खाद्यान्न संकट का जिक्र किया, जिसके बाद कई सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं। वो भी तब जब कृषि मंत्री ये कह चुके हैं कि कहीं बारिश कहीं सूखा पहले से ही फसल खराब कर रही है। और याद रखिए अभी एल नीनो का असर भी बाकी है। देखिए रिपोर्ट।
1: वी आर लुकिंग एट अ सुपर एल नीनो।
2: क्या भारत पर बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट आने वाला है? कहीं बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ और कहीं सूखा, ये किस तबाही के संकेत है? क्या सुपर एल नीनो भारत में बड़ी तबाही लाने वाला है?

0: पूरी दुनिया इस वक्त एक भीषण संकट की चपेट में है। पश्चिम एशिया तनाव के चलते पहले ही दुनिया में ऊर्जा का संकट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रासायनिक खाद संकट भी सामने है। भारत में कहीं सूखा है तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं। और ऊपर से अल नीनो की चेतावनी ने चिंताएं बढ़ा दी। और ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान ने बड़ी खलबली पैदा कर दी। अमेरिका में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने मध्य पूर्व और ब्लैक सी में चल रहे युद्धों की वजह से दुनिया में हो रही किल्लत पर चिंता जताई। जयशंकर ने भारत में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर संकट का जिक्र किया तो हंगामा मच गया।
1: When it comes to food, we are today looking at a situation where some of the major grain exporters will not be able to send out their shipments, particularly out of the Black Sea. We are already looking at significant fertilizer shortages, both because the key producers have been in the Middle East and Russia, and their fertilizer production has been impacted. On top of it, we are looking at a super El Nino. So there is going to be a major food crisis probably, in the coming months. So if you have energy as a big crunch and then food and fertilizers on top of it and finance, because every time there's a conflict, money moves towards safe harbors and away from the global south. So the net result of it has been really very, very stressful.
0: मध्य एशिया और रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की वजह से जयशंकर अपनी चिंताएं जता रहे हैं, लेकिन भारत की समस्या इसके अलावा मौसम भी है। महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है, खड़ी फसलों को पानी नहीं मिला तो फसलें ही खराब हो गई। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां भारी बाढ़ की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। खेतों में खड़ी धान की फसल बाढ़ के पानी में डूब गई।
2: खाने का अनाज नहीं बचेगा।
3: कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं
2: इससे? मैंने कम से कम पूरे 20 गांव प्रभावित हो जाएगा। उन लोगों को खाने के लिए दाना नहीं मिलेगा। धान किसको पक गया है, किसको रेड़ा है, उसमें पूरा पानी समा गया है।
3: मतलब फसल को भी नुकसान?
2: जी जी, बहुत नुकसान है। खाने का चावल नहीं मिलेगा अब, इतना जान लीजिए।
0: खुद देश के कृषि मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार 12% बारिश कम हुई है। सोचिए, पूरा मानसून का सीजन निपट गया, सितंबर खत्म हो गया और बारिश का डेफिसिट खत्म ही नहीं हुआ। यही वजह है कि खरीफ की फसल में बुआई का एरिया कम हो गया है।
4: अभी इस साल अल नीनो का संकट, उसकी आशंका थी, पर अल नीनो से निपटने का व्यापक प्रयत्न अप्रैल से ही हमने प्रारंभ कर लिया था। अभी इस बीच में जो वर्षा की स्थिति है, लगभग 12% वर्षा की कमी है। पहले ये 24-25 तारीख तक 14% की कमी थी, लेकिन अब ये पिछले 3-4 दिनों में जो बारिश हुई है तो घट के 12% रह गई है। लेकिन वर्षा भी असमान हुई है, कुछ जगह सामान्य से कम हुई है, कमी है, लेकिन कई जगह सामान्य से ज्यादा वर्षा भी हुई है। लेकिन वर्षा के कारण, कम वर्षा के कारण और अल नीनो के संकट के कारण जो आशंका थी कि खरीफ की फसल में जो एरिया होता है सोयाबीन का, बोनी का, वो काफी कम हो जाएगा।
0: खाद्यान्न संकट को लेकर चिंता इस बात से भी है कि इस बार खरीफ की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले 1% कम रहा, जिससे धान का क्षेत्रफल करीब 16.32 लाख हेक्टेयर घटा तो मक्का, सोयाबीन और कपास में भी कुछ कमी रही। हालांकि उड़द, बाजरा, ज्वार, तिल, सूरजमुखी और तुअर का रकबा बढ़ा है, लेकिन भारी बारिश बाढ़ से करीब 6.11 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। बारिश के चलते कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के कुछ हिस्सों में नुकसान की जानकारी मिली है। महाराष्ट्र के तो कई जिले सूखा प्रभावित घोषित हो चुके हैं। इन जिलों के किसान मानसून का इंतजार करते ही रह गए। खेतों में सोयाबीन, कपास की फसल पानी की कमी की वजह से बर्बाद हो गई। हालात ये हैं कि सूखे के चलते अब किसान कहीं का नहीं रहा।
5: 2015 में मेरे आदमी ने आत्महत्या की है, शेतकरी आत्महत्या की है। मेरे को एक ही लड़का है वो काम पर जाता, मैं अकेली भाई ये खेत में काम करके पैसा लगा के वो फसल निकालती, ये साल कुछ भी नहीं तो मैं क्या करूँ।
6: आंखों में पानी है आपके।
5: हाँ मैं क्या करूँ, अकेली भाई हूँ मैं।
0: बारिश के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के कई जिले सूखे से प्रभावित हैं। इन जिलों में अमरावती, नागपुर, वर्धा, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, हिंगोली, परभणी,

0: नागपुर, वर्धा, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, हिंगोली, परभणी, बीड, शोलापुर, सांगली और सतारा शामिल है। राज्य की रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में बारिश में बड़ी कमी दर्ज की गई है। शोलापुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां 56% बारिश की कमी रही। यहां 21 से 43 दिनों तक बारिश नहीं हुई। वहीं मराठवाड़ा के दूसरे जिलों में लातूर, धाराशिव, बीड और परभणी में बारिश की कमी 35-40% के बीच रही। सरकार की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि फसलों को 60% से ज्यादा नुकसान हो सकता है। सोयाबीन की फसल में 80-90% तक का गिरावट का अनुमान है। वहीं बाजरा, मक्का और तुअर दाल की फसल में 60-70% तक गिरावट हो सकती है। सरकार भी मानती है कि महाराष्ट्र में सूखे की वजह से हालात बद से बदतर हैं। खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी तो असली डर रबी की फसल को लेकर भी है, क्योंकि अलनीनो की वजह से रबी की फसल पर भी बर्बादी का साया है।
1: पर्यावरण पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाएं इस बात की चेतावनी लगातार दे रही हैं कि एलनीनो के सक्रिय होने के बाद मौसम में चरम बदलाव होंगे। कहीं अत्यधिक वर्षा होगी तो कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होगी। भारत के लिहाज से देखें तो ऐसे में चरम मौसम का सीधा सा मतलब है कि जब अक्टूबर नवंबर के बाद ठंड बढ़ती है, ऐसे में एलनीनो की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी। गर्मी ज्यादा होगी तो नमी कम होगी और इसका सीधा असर रबी की फसल पर होगा। और ऐसी कई सारी रिपोर्ट मेरे हाथ में जो कह रही है कि गेहूं की फसल पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। और खासकर एशियाई जैसे देशों में जो पहले ही वैश्विक संकट से जूझ रहे हैं, हमारे पास ऊर्जा का संकट है, ऐसे में अनाज पर, उसकी बुआई पर और फसलों की पूरी गुणवत्ता और उसकी क्वांटिटी पर असर पड़ सकता है। ये सुपर एलनीनो बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आया है, जिसका सीधा असर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों पर पड़ेगा। भारत इसलिए क्योंकि उसकी जरूरतें बड़ी हैं, उसकी आबादी बड़ी है और उसकी क्षमता जो है, उसका जो उत्पादन है वो आत्मनिर्भर अपने अनाज पर है, और ऐसे में एलनीनो सीधा असर डाल सकता है।
0: आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
1: सवाल यह भी है कि क्या मॉनसून के पैटर्न में आया यह बदलाव, ऊपर से एलनीनो, जिसे इस बार सुपर एलनीनो कहा जा रहा है, उसके प्रभाव की वजह से भी यह खाद्यान्न संकट खड़ा हो सकता है। जयशंकर सुपर एलनीनो का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यह होता क्या है? विशेषज्ञ क्यों कह रहे हैं कि यह एलनीनो खरीफ के साथ साथ रबी की फसल को खराब कर सकता है? इस अगली रिपोर्ट के जरिए समझिए।
2: The science is clear. El Niño is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder.
0: ये है वो खतरा जिसके बारे में पूरी दुनिया को संयुक्त राष्ट्र भी आगाह कर रहा है। El Niño जो अब सुपर अलनीनो हो चुका है, कहीं भारी बाढ़, कहीं भयंकर सूखा, कहीं बहुत गर्मी, कहीं बहुत ठंड, इसके पीछे अलनीनो ही जिम्मेदार है, जो अब सुपर अलनीनो बन चुका है। क्या होता है सुपर अलनीनो? सबसे पहले पर्यावरणविदों से इसे समझें।
3: सुपर अलनीनो हम क्यों इसको बोल रहे हैं? सो हम बताना चाहेंगे क्योंकि जो ओशन टेम्परेचर है, इसके ऊपर एक वैसी पीरियोडिक सिनोसोइडल जो बिहेवियर होता है ओशन टेम्परेचर का, वो करीब 3-5 साल के अंतराल पे बदलता रहता है। कभी ये 3 साल में, कभी 4 साल में, कभी 5 साल में, और इसका एक इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स से हम इसको मेजर करते हैं कि वो कितना ज्यादा उसका प्रभाव है तापमान के ऊपर। तो एलनीनो, सुपर एलनीनो तब बनता है कि जब इसका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कहीं ज्यादा होता है। इस बार जो एलनीनो इवेंट है वो आपकी सुपर एलनीनो की कैटेगरी में आता है।
0: विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि समुद्र तल के तापमान बढ़ने के बाद इसका असर भारत जैसे देशों पर सर्दी के मौसम में दिखाई देगा। यानी अगर सुपर अलनीनो सक्रिय हुआ तो सर्दियों में भी तापमान ज्यादा रहेगा, मौसम में नमी कम होगी तो सीधा असर रबी की फसल पर होगा, यानी गेहूं की फसल में कमी आ सकती है।
1: 2026 का एलनीनो असामान्य इसलिए है क्योंकि प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा पर जिस तरह समंदर की सतह का तापमान बढ़ रहा है, उसके चलते उसका असर सिर्फ प्रशांत महासागर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा, और खासकर एशिया पर, क्योंकि अभी भी भारत में इंडियन ओशन डाइपोल वो पॉजिटिव नहीं हुआ है, जिसके असर के चलते मौसम में चरम बदलाव होंगे। जहां बरसात होगी वहां तेज बरसात होगी, और जहां इस तरह तापमान बढ़ेगा, यानी अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर जब भारत में सर्दियों का समय होगा, ऐसे में तापमान सामान्य से ज्यादा होगा, नमी कम होगी, जिसका सीधा सा असर फसलों पर, खासकर

0: रबी की फसल पर दिखाई देगा।
1: इसके दूरगामी परिणाम है जिसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारे आगे आने वाला जो टेम्परेचर स्पेशली और जो ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर पड़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और ह्यूमिडिटी कम होने का जो मतलब है जितने भी हमारी जो एग्रीकल्चर पार्ट है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। एक इसमें एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो आगे आने वाली हमारी खरीफ की फसल है उस पे हम कैसे हम इसको देखें, क्योंकि अगर हमारे ड्राई स्पेल रहेगा और ड्राई स्पेल रहेगा तो स्पेशली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने में उनका जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसको इम्पैक्ट जरूर कर सकता है। अगर आपका ड्राई स्पेल आ रहा है और उधर से पर्याप्त मॉइस्चर अगर नहीं है तो वो उसको रेन पैटर्न में बदलना मुश्किल होगा। लिहाजा रेन आपका कम हो सकता है और जिस पे हमारे फूड प्रोडक्शन पे उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है।
2: पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स ने रबी की फसल को लेकर होने वाले बदलाव पर बड़ी रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि बढ़ता तापमान गेहूं की फसल के लिए बड़ा जलवायु जोखिम बन रहा है, खासकर फूल आने और दाना भरने के चरण में। फरवरी मार्च में अचानक गर्मी बढ़ने से दाना भरने की अवधि कम हो सकती है, जिससे दाने का आकार और वजन प्रभावित होता है। गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। 2011 से 2025 के बीच हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में गेहूं के मौसम में औसत तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मार्च से मई के दौरान असमय बारिश गेहूं की गुणवत्ता खराब कर सकती है।
0: भारत सरकार का कहना है कि उसके खाद्यान्न बकेट में जरूरत के लिए जितनी संसाधन चाहिए वो सब मौजूद हैं, खाद की किल्लत नहीं होगी। लेकिन पश्चिम एशिया का संकट हमने ऊर्जा के क्षेत्र में देखा है, इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर की किल्लत, और अब जब एल नीनो का असर है तो उसका सीधा असर रबी की फसलों पर, किसानों पर दिखाई देगा। और इन तमाम चुनौतियों को लेकर के सरकार उसे आगाह कर रही है, वैश्विक संगठन आगाह कर रहे हैं कि ये एक ट्रेलर हो सकता है। ये एल नीनो पूरी दुनिया को उस संकट से आगाह कर रहा है जो पर्यावरण में हो रहे बदलाव के चलते सीधे दिखाई देगा। दिल्ली से पवन के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
2: तो कुल मिलाकर एल नीनो भारत के लिए बहुत बड़ा संकट लेकर आ रहा है, इसीलिए सरकार भी शायद अभी से सबको आगाह कर रही है।
0: उधर एसआईआर को करवाने के तौर तरीकों को लेकर के विपक्ष शुरुआत से आक्रामक है, इसका विरोध कर रहा है, उसका हौसला इसे लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद के दावों से बढ़ा है। राहुल ने ज्ञानेश कुमार के बहाने पीएम मोदी तक को घेरा, और इन सब के बीच अब चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत नए वोटरों को अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी होगी। ये नया फैसला वहां लागू होगा जहां एसआईआर पूरा हो चुका है।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन। I have been raising questions. Those questions were ignored. People of India believed it. But institutional framework of India was not interested.
4: जिस फॉर्म 6 को लेकर चुनाव आयोग में उठा पटक का दावा हुआ, दोनों चुनाव आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद के दावे हुए, उसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों में फॉर्म 6 में बड़ा बदलाव किया है। अब एसआईआर में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। आवेदक को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसका माता पिता या दादा दादी का नाम उस लिस्ट में था या नहीं। फॉर्म 6 से इससे जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नाम बिना जाँच के जुड़ जाएगा। वोटर बनने की पात्रता की जाँच पहले की तरह होगी। फॉर्म 6 की सामान्य प्रक्रिया भी जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव फिलहाल सिर्फ उन राज्यों में लागू है जहां एसआईआर पूरा हो चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दोनों चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में एसआईआर से जुड़ी जानकारी जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना वैधानिक फॉर्म 6 में नया हिस्सा जोड़ दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को खारिज किया गया, लेकिन इस पर विवाद के बाद हटाए जाने को विपक्ष नए सिरे से चुनाव आयोग को घेर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और बात करेंगे पाकिस्तान के नशे की साजिश के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की। समंदर के जरिए चल रहे ड्रग्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क को तोड़ने में गुजरात एटीएस को कामयाबी मिली है। अरब सागर में लक्षद्वीप से मुंबई जाते समय गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स बरामद की है।
5: भारत भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की गंदी चाल को बेनकाब कर दिया है। अरब सागर में भारतीय कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर करीब 526 किलो की हाई ग्रेड ड्रग्स जब्त की हैं, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गुजरात एटीएस के मुताबिक उन्हें 10 सितंबर को खबर मिली थी कि एक नाइजीरियन नागरिक ने एक ड्रग्स माफिया से संपर्क किया है और आजाद नाम की एक ईरानी बोट से ड्रग्स को ला रहे हैं और ईरान के कोनार्क बंदरगाह से ये बोट निकली, जिसके बाद पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से 5 पाकिस्तानी तस्कर नाव पर चढ़े और तमिलनाडु में ड्रग्स को उतारना था, जहां इनका प्लान पंजाब ले जाने का था, जिसके बाद 14 सितंबर को भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ ऑपरेशन चलाया गया। पाँच सौ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स लेकर जब बोट लक्षद्वीप के पास पहुंची, तब भारतीय कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने चारों तरफ से घेर कर ड्रग्स समेत 5 पाकिस्तानी नागरिकों को धर दबोचा।
6: पूरे जो इन्फॉर्मेशन वाली जगह है, जिसके अंदर की हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये कोचीन, लक्षद्वीप और मुंबई, इसके सामने समुद्र में किसी जगह पे डिलीवरी करेंगे, उस सब एरिया को स्कैन किया गया। बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत सारा धीरज रखकर के इन लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बहुत बहादुरी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
5: अरब सागर से पकड़ी गई ड्रग्स की खेप को मुंबई बंदरगाह तक लाया गया, साथ ही पकड़ी गई नाव और सभी 5 पाकिस्तानी तस्करों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई लाया गया है। गुजरात से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू कश्मीर के बडगाम में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर का कमांडर मूसा मारा गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, लश्कर का आतंकी इसमें ढेर हो गया।
7: चार साल बाद पाकिस्तान का यह दहशतगर्द सुरक्षा बलों के निशाने पर आया है। इन आतंकी चेहरों को जान लीजिए और पहचान लीजिए। अबू तुल्हा, जो अप्रैल 2025 में मारा गया। दूसरा आतंकी है मोहम्मद आसिफ उर्फ सुलेमान, वो भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन महादेव में 2025 में ही मारा गया। तीसरा आतंकी है जुनैद अहमद, जिसका अंत 2024 में ही हो गया था। और चौथा आतंकी है हाशिम मूसा, जो अब तक बचा हुआ था, लेकिन अब बडगाम में सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराया है। हाशिम मूसा पाकिस्तान के इस आतंकी ग्रुप का इकलौता जिंदा बचा दहशतगर्द था। लश्कर कमांडर हाशिम मूसा कभी पाकिस्तानी फौज में था। सूत्रों के मुताबिक हाशिम मूसा उर्फ मूसा फौजी पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस से रिटायर हुआ था और वो ट्रेंड एसएससी कमांडो था। उसे लश्कर के ट्रेंड आतंकियों के एक ग्रुप के साथ जंगलों से ऑपरेट करने के लिए भेजा गया था। उसे और उसके ग्रुप को खास तौर पर जंगल में सरवाइव करने और सुरक्षा बलों पर शूट एंड स्कूट यानी हमला करके भाग जाने की ट्रेनिंग दी गई थी।
8: वो ग्रुप जंगलों के वारफेयर में काफी ट्रेन भी था और उसको जंगलों में लड़ने की महारत भी थी। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कि पाकिस्तान का ये लश्कर का ग्रुप अब पूरी तरह खत्म हो चुका है।
7: सुरक्षा बलों ने मूसा के मारे जाने के बाद उसके शव को भी बरामद कर लिया है। उसके पास से युद्ध में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी बरामद हुई है। बताया जाता है कि मूसा ने 3 आतंकियों के साथ 2022 में घुसपैठ की थी। तब से इस समूह ने पुंछ, राजौरी से लेकर डोडा और कश्मीर तक पीर पंजाल इलाके में सुरक्षा बलों पर कई आतंकवादी हमले किए। 2024 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये ग्रुप सुरक्षा बलों की नजर में आया था। 2024 में जब सुरक्षा बलों ने जुनैद कुमार गिराया, तब उससे एक मोबाइल मिला था। उसी मोबाइल से इन चारों आतंकियों की तस्वीर मिली थी। बडगाम से इरशाद मलिक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
0: रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: कौन सा पौधा घर में लगाने से घर में दरिद्रता आ जाती है? कौन सा पौधा घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से पौधे का प्रयोग करना चाहिए? अलग अलग ग्रहों के कौन से हैं शुभ पौधे, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दुबई से टेल अवीव जा रहे फ्लाइट को लेकर जबरदस्त सस्पेंस। दोनों पायलट में खूनी झड़प के बाद सऊदी अरब में उतरा विमान। इजरायली मीडिया का दावा, क्रैश कराने की थी साजिश। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल। नवंबर में महारैली का ऐलान। पलटवार में बोले शिवराज, अशांति फैलाने के लिए रची जा रही है साजिश।

चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में हलचल, वर्तमान अध्यक्ष राजा अमरिंदर वडिंग पद से हटाए गए, एक दो दिन में ऐलान संभव, नए अध्यक्ष की रेस में विजय इंदर सिंगला और प्रगट सिंह। गुवाहाटी वनडे में वेस्टइंडीज पर भारत की 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत, 406 रन का लक्ष्य किया हासिल, क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज, कप्तान शुभमन ने जड़ा सबसे तेज, नाबाद दोहरा शतक।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर हम अपने घरों में बालकनी में छत पर जमीन पर अलग अलग तरह के पौधे लगाते हैं, लेकिन अगर आप अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए पौधे लगाएं तो आपको ज्यादा लाभ ज्यादा फायदा हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि अपने ग्रहों के अनुसार ग्रहों को अनुकूल करने के लिए कौन से पौधे लगाने चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

24 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:35 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं कि अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए, अपने ग्रहों से लाभ लेने के लिए आपको किस तरह के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि पेड़ पौधों का ज्योतिष में महत्व क्या है। देखिए, प्रत्येक ग्रह की एक विशेष तरंग, रंग और गंध होती है। मंत्रों का जप करना, रत्न धारण करना और दान करना ग्रहों के तरंगों पर निर्भर करता है। पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, उनकी उपासना करना भी ग्रहों के नियंत्रण का एक सरल और अचूक उपाय है। ग्रहों के इन्हीं तरंगों को, इन्हीं किरणों को नियंत्रित करने के लिए विशेष तरह के पौधे लगाए जाते हैं। पौधे दो तरह से लगाए जा सकते हैं, एक तो अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए ग्रहों के अनुसार, और अपनी आवश्यकता या अपनी जरूरत के अनुसार। गलत तरह के पौधे या गलत तरीके से अगर आप पौधे लगाते हैं तो बिना वजह के जीवन में बाधाएं आ सकती हैं, बिना वजह के जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। तो आप अपने घर में कौन से पौधे लगा रहे हैं, किस स्थान पर लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। पौधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, आज वाद विवाद से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब ये जानते हैं कि जब आप पौधे अपने घर में लगाते हैं तो इनको लगाने का नियम क्या है और सावधानियां क्या हैं? देखिए, कभी भी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने पेड़ पौधा मत लगाइए। ये द्वार वेद है, घर की खुशियों को प्रभावित करेगा। पौधे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के जस्ट पहले या संध्या काल में सूर्यास्त के तुरंत बाद लगाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। दूध वाले पौधे जिनके पत्तियों को तने को तोड़ने से सफेद रंग का पदार्थ निकलता है, दूधदार पौधे या कांटे वाले पौधे घर में ना लगाएं। हालांकि गुलाब के ऊपर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता, गुलाब की झाड़ियां होती हैं जो घर में विशेष जगह पर लगाई जा सकती हैं। घर में अगर आप पेड़ लगाते हैं तो वो इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि उनकी छाया आपके घर पर पड़े, यानी इतना बड़ा वृक्ष ना हो जाए कि उसकी छाया आपके घर पर पड़ने लगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में अगर फूलों के पौधे लगाते हैं तो बिना सुगंध के फूलों के पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। अगर आप केले का पौधा या पेड़ अपने घर में लगाना चाहते हैं तो कभी भी घर के मुख्य द्वार पर केले का पौधा ना लगाएं और पौधों में आवश्यकता अनुसार रोज जल अर्पित करें। और पौधे जिस ग्रह से संबंधित हैं उस दिन को उस पौधे की पूजा उपासना करिएगा। तो अगर आप थोड़ी सावधानी के साथ अपने घर में पौधे लगाएंगे तो आपकी और आपके परिवार की बहुत उन्नति होगी। पौधों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग ग्रह से संबंधित पौधे कौन से हैं और उनको अपने घर में लगाने का स्थान क्या है। सूर्य का जो पौधा है वो है मदार। मदार को घर के द्वार के आसपास लगाना चाहिए, द्वार के सामने नहीं, द्वार के अगल बगल में लगाना बेहतर होगा। चंद्रमा, चंद्रमा के लिए चंदन का पौधा या बेले के फूलों का पौधा लगाना अच्छा होगा। इसको घर के पीछे की ओर लगाएं तो काफी अच्छा रहेगा। मंगल के पौधे की बात करें, मंगल का पौधा है आंवला। इसको घर के मध्य में या घर के पीछे की तरफ आप लगा सकते हैं, लाभ होगा। बुध, बुध के लिए दूर्वा या दूब घास लगाएं। अगर घर में कच्ची जमीन है तो जमीन में लगाएं या गमले में मिट्टी भरकर उसमें लगाएं, दूब लगाएं। दूर्वा घर में कहीं भी लगा सकते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति के लिए केले का पौधा लगाएं। घर के पीछे की तरफ ही केले का पौधा लगाना उत्तम होता है। शुक्र, हर सिंगार या पारिजात का पौधा लगाएं। घर के पीछे अगर आप हर सिंगार का या पारिजात का पौधा लगाएं तो ये आपके लिए शुभ होगा। शनि, शनि के लिए शमी का पौधा लगाएं। इसको घर के मुख्य द्वार के आसपास लगाना बेहतर होगा। राहु और केतु, राहु और केतु के लिए तुलसी का पौधा लगाएं। इसको घर के बीचों बीच में, घर के मध्य में लगाना अत्यंत शुभ होगा। पौधों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब आपने अपने घर में ग्रहों से संबंधित पौधे लगा लिए, इनकी उपासना कैसे करेंगे और इन पौधों का, इनके फूलों का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपने सूर्य देव के लिए मदार लगाया है तो मदार के पौधे में रोज जल डालिएगा और रविवार को प्रातः काल इस पर तिलक करिएगा। मदार जैसे जैसे फलेगा फूलेगा आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। बेला या चंदन का पौधा अगर लगाया है तो इसको साफ सुथरा रखिए, हो सके तो इसके नीचे सोमवार को एक छोटा सा घी का दीपक जलाएं तो इससे काफी लाभ होगा। आंवले का अगर पौधा लगाया है, बड़ा हो गया तो उसके नीचे बैठिए और छोटा है तो उसके पास बैठकर कम से कम

कार्काय नमः। अगर आपने दूर्वा लगाया है जमीन में या गमले में तो दूब की छटाई करते रहें और थोड़े से दूब रोज गणपति को चढ़ाते रहें, आपके लिए बड़ा शुभ होगा। केले के पौधे में रोज जल डालिएगा और अगर पौधा बड़ा हो गया है तो उसके नीचे बैठकर और अगर छोटा है तो उसके पास बैठकर बृहस्पतिवार को प्रातः ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। हर सिंगार का अगर पौधा लगाया है तो हर सिंगार की सफाई करते रहिएगा और इसके फूलों को उठाकर चुन करके अपने बेडरूम में रखते रहिएगा। जीवन में आनंद और सुख आएगा। अगर शमी का पौधा घर के मेन डोर पर लगाया है तो शनिवार की शाम को इसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तुलसी का पौधा अगर घर के बीचों बीच में आपने लगाया है तो तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाइएगा।

की प्राप्ति होगी। आजकल अपने घर में लोग बहुत सारे इंडोर प्लांट लगाते हैं जिसमें खुशबू भी नहीं होती, जिसमें फूल भी नहीं होते, लेकिन ये वायु को शुद्ध करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। ऐसी स्थिति में आप इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इंडोर प्लांट जितने ज़्यादा घने तरीके से लगाएंगे और जितनी ज़्यादा उनके अंदर हरियाली होगी उतना ज़्यादा इंडोर प्लांट आपके लिए बेहतर होगा। आगे कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

बोझ कम करिए, खान पान पर ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

रंग के जूते चप्पल पैरों में नहीं पहनने चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, पीला रंग ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है और बृहस्पति को सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप पीले रंग के जूते चप्पल पैरों में पहनेंगे तो बृहस्पति अशुभ होगा, बृहस्पति निगेटिव होगा और जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए सामान्यतः पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल ना पहने, पहनने के लिए पैरों में नीला, काला या सफेद रंग बहुत अच्छा है। इन रंगों के जूते चप्पल पहनना अच्छा रहता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 5, परिवार में अशांति से बचाव करें। नंबर 6, धन की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। और नंबर 9, नए काम की शुरुआत के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है

भगवान कृष्ण की पूजा पीले फूलों से करिएगा, ऐसा करने से आपके नाम यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो जल में हल्दी मिला करके सूर्य देव को अर्पित करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन भूमि भवन आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ हो।

के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव परेशान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है। आज अपनी संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए और आज तामसिक आहार ग्रहण करने से बचाव करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: वैसे तो वक्त नॉनस्टॉप 100 का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 में कॉकपिट के अंदर हुए हमले के दौरान घायल हुए भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मचार की तारीफ की है। कैप्टन स्मिथ मचार जो फ्लाई दुबई फ्लाइट के हीरो के तौर पर सामने आए, पीएम मोदी ने उन्हें हीरो बताया और कहा कि भारत को उन पर गर्व है। कैप्टन स्मिथ मचार ने घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, गंभीर खतरे के सामने खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मचार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अद्भुत साहस और अटूट संकल्प दिखाया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक कैप्टन मचार की वीरता ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने में मदद की, एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत को कैप्टन मचार पर गर्व है। साथ ही प्रधानमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने, नई ताकत और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ मचार के साहस को सलाम किया, उनकी तारीफ की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके शौर्य को, उनके साहस की जमकर तारीफ की है। तो हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, एक पायलट जो घायल होने की स्थिति में वो कर गुजरता है, वो भी खासकर हवा में, जब आप 32,000 फीट की ऊंचाई पर हों और 30 सेकंड में जहाज अगर 14,000 फीट नीचे, आप समझ सकते हैं कितना डरावना मंजर, क्यों ना हो ऐसे हीरो की तारीफ।
1: जी बिल्कुल, देखिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने तो इसकी ऑब्वियसली अभी जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस पर तो उन्होंने कहा ही है। साथ ही साथ अगर आप विश्व में देखें, आई थिंक बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है कैप्टन स्मिथ की और उनकी ब्रेवरी को लेके कहा जा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया जो ऑफिस में, व्हाइट हाउस में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े हीरो हैं वो, चार अमेरिकी यात्री भी उस प्लेन में थे, तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ अगर आप देखें अमेरिका की जो सेनेट है, सेनेटर्स ने इस बारे में चर्चा की, इसके बारे में उन्हें हीरो बताया है। उसके अलावा जो यहाँ के कांग्रेसमैन है, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को हीरो बताया है। आप यूके देख लीजिए, पूरे विश्व में अगर आप देखें तो हर जगह कैप्टन स्मिथ की ब्रेवरी के चर्चे। और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ऐसी हालत में, ऐसे समय में इतने लोगों की जान बचाना, आई थिंक ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक जितनी भी इनकी सराहना की जाए उतनी कम है यहाँ पे।
0: मुझे ये याद आ रहा है कि सोचिए कि सितंबर का महीना और 30 सितंबर को एक ऐसी तारीख हो जाती जो अमेरिका भी शायद कभी नहीं भूल पाता, अगर वो प्लेन क्रैश होता, किसी इमारत से क्रैश होता। आप सोचिए कोलैटरल डैमेज के नाम पर, एक तो फ्लाइट में आपके मुसाफिर 170, उसके अलावा जहां वो टकराता कितना बड़ा हादसा, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते, मतलब हर आदमी सहम जाए। ये बहादुरी मतलब अद्भुत है, अविश्वसनीय है कि आप घायल भी हैं लेकिन इस बात का ख्याल था कि आपके साथ मुसाफिर हैं और प्लेन जहां क्रैश होगा संख्या न जाने कितनी हो जाती अगर यह हादसा होता तो।
1: बिल्कुल, देखिए 9/11 जब हुआ था तो यही यही इसी तरह का ही, जो हम कह सकते हैं कि एक मॉडस ऑपरेंडी था कि आप कॉकपिट में घुस जाएं, कॉकपिट को अंदर से बंद कर लीजिए एंड देन आप जाके प्लेन को क्रैश कर लीजिए, और वही एग्जैक्टली करने की कोशिश की गई इस यहाँ पे भी। लेकिन आई थिंक इतनी सूझबूझ जो बात आई है, जो बहुत मीडिया के हवाले से सुनने को आ रहा है कि वो लहूलुहान थे, वो ऑलमोस्ट बेहोश थे, बेहोशी की हालत में थे, फिर भी ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कि अगर वो कॉकपिट अंदर से खोल देते हैं तो शायद पैसेंजर्स अंदर आके ओवरपावर कर जाए इस हाईजैकर को, जिसके बारे में अभी भी डिटेल्स पूरी तरह से आई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगेन यू नो टॉक्स दिखाता है, दर्शाता है कि ब्रेवरी, साहस, प्रेजेंस ऑफ माइंड और एट द एंड ऑफ इट ऑल, जब शायद खुद को ये लग रहा हो कि सब कुछ शायद खत्म हो सकता है, उसके बावजूद एक होप देना। उन्हें तो नहीं पता था कि प्लेन में क्या कोई और पायलट है जो लैंड कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन एक चांस देना टू द पैसेंजर्स टू बी एबल टू मेक दिस हैपन, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है एक बहुत बड़े हीरो के रूप में कैप्टन स्मिथ आए हैं, और जैसा कि हर कोई कह रहा है यहाँ पे अमेरिका में भी कि उनकी स्पीडी रिकवरी हो, जल्दी से वो रिकवर हो जाए, हर कोई प्रे कर रहा है उनके लिए। एंड होपफुली जब वो हो जाएंगे तो हमें जानने को पता चलेगा कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी स्थिति को कंट्रोल में लिया और इतनी ज्यादा जाने बचाई।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय कप्तान, वो भारतीय पायलट जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, आज तक भी उनकी बहादुरी को सलाम करता। आइए अब देखते हैं नॉनस्टॉप 100।

वायरस सीजन से पहले महंगाई का बड़ा झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर महंगा, 19 किलो सिलेंडर के दाम 62.50 रुपए बढ़े। दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी की कीमत 2810 रुपए, सितंबर में भी 9.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। अक्टूबर की शुरुआत में कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है, हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे कारोबारियों पर एलपीजी खर्च का बोझ बढ़ेगा, बड़ी लागत का असर आगे खाने पीने की कीमतों पर पड़ सकता है। पीएम मोदी ने फ्लाइट दुबई की फ्लाइट में सूझबूझ और बहादुरी दिखाकर 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ की जमकर तारीफ की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई है, उसके बाद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल भी दफ्तर में मौजूद थे। आरोप है कि बदमाशों ने अनुव्रत को कुर्सी पर बिठाया, उनके सामने दफ्तर में तोड़फोड़ की, इस दौरान अनुव्रत पर भी हमला हुआ। तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर झड़प, इलाके में बढ़ा तनाव। यूनिवर्सिटी के पास बॉयज हॉस्टल के बाहर यह घटना हुई, जब यूथ कांग्रेस ईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर के मार्च निकाल रही थी। हमला बढ़ने के बाद पुलिस ने दखल दिया, कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने और स्थिति में नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली एनसीआर में आज से ईंधन भराने के लिए वैध पीयूसी जरूरी होगा, सीएक्यूएम ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे उपायों तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। पंजाब कांग्रेस में चुनाव से कुछ महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी है, सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह राजावाड़िंग ने अपना इस्तीफा दे दिया है। नए अध्यक्ष का ऐलान 1 या 2 दिनों में हो सकता है, सूत्रों के मुताबिक विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर परगट सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, इनके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी, सुखिंदर सिंह रंधावा के नामों पर भी विचार चल रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण तकनीकों में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत हुई। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल, नवंबर में महारैली का ऐलान किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा, अशांति फैलाने के लिए लोग साजिश रच रहे हैं। पंजाब में अमित शाह का चुनावी शंखनाद, जालंधर की रैली में कहा, बीजेपी को मौका मिला तो 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब नशा मुक्त होगा। अमित शाह ने मान सरकार पर निशान, गृहमंत्री अमित शाह ने रैली में मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पंजाब में नशे और भ्रष्टाचार समेत कई समस्याएं हैं, वादे पूरे नहीं हुए, सिर्फ विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है, किसानों के लिए खजाना खुला, रबी की फसल पर एमएसपी बढ़ाया, दिल्ली की ट्रैफिक को दुरुस्त करने का भी प्लान तैयार। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 3 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, 135 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन क्षमता और 50 गीगावाट बैटरी स्टोरेज का लक्ष्य है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अंबेडकर फुले की किताबों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की चिट्ठी पर उठाए सवाल। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्ती, कहा, यहां डर, आतंक और अत्याचार की कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी ने धनराज नाथवानी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया, 77 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति का ब्यौरा, नामांकन के बाद साथ में दिखे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। शांतिनिकेतन बिल्डिंग हादसे मामले में मालिक हिराम गुप्ता के मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका खारिज, पुलिस ने विरोध किया था। मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल दोनों दोषी करार दिए गए हैं, मर्डर के बाद पति सौरभ के शव को सीमेंट से सील किया था, 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग में दिक्कतों पर दिल्ली हाईकोर्ट, रेल मंत्रालय आईआरसीटीसी को नोटिस भेजा। महाराष्ट्र के भिवंडी में एफडीए का बड़ा एक्शन हुआ है, रहवासी इमारत के 2 फ्लैटों से लाखों का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया। एंटीलिया केस में सचिन वजे को बड़ा झटका, जमानत के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट का अस्थायी रोक, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का जनवरी 2027 से होगा पुनर्विकास, एयरलाइंस को नवी मुंबई शिफ्ट होने का परिचालन रोकने का विकल्प। कानपुर से हरदोई आगरा तक नकली एंटी रेबीज इंजेक्शन की सप्लाई, हरदोई में सैंपल बरामद किए गए। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, पाइपलाइन सीवेज व्यवस्था में लापरवाही का जिक्र है। गुवाहाटी में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम

कप्तान शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ा, 117 गेंदों पर लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। गिल ने 223 नाबाद रन बनाए, गिल की पारी में 26 चौके और 8 छक्के शामिल थे। शुभमन ने रिकॉर्ड्स की छड़ियां लगाई, सीरीज में बैक टू बैक सेंचुरी लगाई। ओपनिंग विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने 255 रन बनाए, दोनों बल्लेबाजों ने जड़े शतक। रोहित शर्मा ने भी शतकीय पारी खेली, 75 गेंदों में शानदार 101 रन बनाए। विराट कोहली ने खेली 19 गेंदों पर 29 रन की तेज पारी, विराट ने अपने पारी में जड़े 3 चौके और 1 छक्का। इससे पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए 405 रन बनाए, वेस्टइंडीज के तीनों बल्लेबाजों ने शतक लगाया। वेस्टइंडीज के लिए कैम्बेल, शाय होप, अमीर जंगू ने शतक लगाया, वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप जडेजा, गुरनूर को मिले 2-2 विकेट, सबसे किफायती गेंदबाज रहे कुलदीप यादव। एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन दिन, तीरंदाजी और शूटिंग मिक्स ट्रैप में जीता 4 गोल्ड प्रिया गंगास, कपिल पोखरिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने चीन की टीम को हराया, भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। चिकिता प्रतिका ज्योति की टिकड़ी ने किया कमाल, 238 अंक के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। एशियन गेम्स में भारतीय कंपाउंड मिक्स आर्चरिकता तनिपार्थी और राजेश जाधव की जोड़ी ने कोरियाई तीरंदाजी में हराकर गोल्ड मेडल जीता। एशियाई खेलों में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है, शूटिंग मिक्स ट्रैप टीम ने जीता गोल्ड मेडल। फिरोजपुर में युद्ध नशे के विरुद्ध टी शर्ट पहने युवक से 6 ग्राम हीरोइन बरामद, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पहले वीडियो बनाया, पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए, पुलिस अब जांच में जुटी है। अमराती में महिला अस्पताल अग्निकांड पर बड़ा सवाल, सीसीटीवी में घटना से पहले स्टाफ नर्स के सोने का दावा। अहमदनगर में पैसों की बारिश का लालच देकर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, 92 लाख से ज्यादा की नकली नोट बरामद। गुजरात के महीसागर में एसटी बस और बाइक की भीषण टक्कर हुई, 2 दोस्तों की मौत। गिर सोमनाथ में भीषण सड़क हादसा, एसटी बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर, 2 की मौत, 14 घायल। राजकोट में पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए पालतू जर्मन शेफर्ड से करवाया हमला, कुत्ते ने युवक को शरीर पर कई जगह काटा, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इंदौर में बस के बाद अब टैंकर का आतंक, 2 बच्चों को कुचला, 1 की मौत। मुक्सर साहिब में नाबालिग बच्चे से मारपीट, पुलिस ने 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया। सागिनाका में बालकनी का एक हिस्सा गिरने से 49 साल के एक व्यक्ति की मौत। महाराष्ट्र के बीड अमजोगोई में आवारा कुत्तों के हमले में 6 साल के बच्चे की मौत, हमले की तस्वीर सामने आई। अकोला में बिजली के तारों पर एक शख्स चढ़ गया, आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। अररिया के बथनाहा स्कूल ग्राउंड में जमीन विवाद को लेकर के छात्र और दावेदार पक्ष आपस में भिड़ गए। भोपाल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की घर में हत्या, 3 दिन पहले रखा केयरटेकर फरार है। गया में युवती के साथ घूम रहे युवक को घेर कर मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद 4 युवक गिरफ्तार। आनंद के पास लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर में 5 की मौके पर ही मौत। डूंगरपुर में पत्नी को घर छोड़ने की बात को लेकर के बेटे का माता पिता से विवाद, मां के सिर पर लाठी से मारा। नागौर में साहूकार ने 16 लाख का कर्ज 60 लाख बनाकर सोना हड़पा। अजमेर में विदेशी महिला पर्यटकों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मध्य प्रदेश के 3 युवक गिरफ्तार। बस्तर के 8 पूर्व नक्सलियों ने पास की 10वीं के दंडकारिणी, जोनल कमेटी का सदस्य भास्कर भी शामिल। नेपाल में लगातार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, सीतापुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला, शहर के 11 मोहल्ले जलमग्न। सीतापुर में बाढ़ के 3 ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, नदी में छोड़े जा रहे पानी को रोकने की मांग की। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी का तटबंध टूटने से कई गांव पानी में डूबे। बेगूसराय में 11 करोड़ का दिनकर सीढ़ी घाट गंगा में समाया, निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए।

0: कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे बैठ, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
8: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbaugh Group.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: जम्मू के छात्र अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में अलाइड और हेल्थ केयर कोर्स कर रहे हैं, लेकिन सबकी एक समस्या है जिसने इन्हें पढ़ाई छोड़कर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर कर दिया है। खबरदार करने वाली बात यह है कि कश्मीर घाटी में इनके साथ पढ़ने वाले छात्रों का कोर्स सही समय पर पूरा हो गया है, मतलब जुलाई में कोर्स खत्म होने के बाद वो नौकरी पाने की जरूरी योग्यता पूरी कर चुके हैं। वहीं जम्मू के छात्र नतीजों और इंटर्नशिप के इंतजार में हैं। अब सवाल ये है कि 3 साल की डिग्री साल भर की देरी से देने के पीछे मेडिकल कॉलेजों की क्या मजबूरी है? आज तक ने यह सवाल कॉलेज प्रशासन से किया, जिसमें उन्होंने माना कि इन छात्रों के मामलों में देरी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि गलती मानने से इन छात्रों की समस्या कैसे खत्म हो जाएगी।
3: एक तरफ समूचे जम्मू कश्मीर में हजारों की संख्या में डेली वेजर्स स्थायी नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में एक नया मामला सामने आया है। दरअसल जम्मू संभाग के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्स के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी परीक्षाएं जो है वो समय पर नहीं होती है, दूसरा उनको इंटर्नशिप भी समय पर नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनकी जो डिग्री है उसमें देरी हो रही है, यानी कि जो कोर्स इनका समाप्त होना था उसमें काफी देरी हो रही है, ऐसा इनका आरोप है। इनका कहना है कि इन्होंने बार बार गुहार लगाई है लेकिन अभी तक कोई फैसला इनके बारे में नहीं किया गया है। इनका कहना है कि अगर इनकी डिग्री आने में देरी होगी तो कहीं ना कहीं इनको अपना भविष्य जो है अंधकारमय लग रहा है।
2: जम्मू की तरह ही बिहार के पटना में मेडिकल छात्र प्रदर्शन करने उतरे। बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के छात्रों ने पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। यहां पर छात्र अपने सेशन में देरी की वजह से परेशान दिखे। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई।
4: मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तस्वीरों में देखिए जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो आक्रोशित हो गए हैं और पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। यहाँ देखिए मेडिकल स्टूडेंट भी पहुंचे थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने और पुलिस पर, देखिए पुलिस पर लगातार पथराव किया जा रहा है मेडिकल स्टूडेंट की ओर से। और पुलिस जो है अब देखिए पुलिस जो है पुलिस पर लगातार पथराव शुरू हो गया है। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे सभी मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे और कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है इस पथराव में। ये तस्वीर पटना के डाकबंगला चौराहे की, एक और वामपंथी संगठन प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही मेडिकल स्टूडेंट भी पहुंच गए यहाँ पे हंगामा करने। और देखिए कई मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों की?
5: हम लोग का 3-3 साल सेशन डिले चल रहा है।
4: किस कॉलेज से?
5: हिमालय कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। हम लोग
4: सेशन डिले चल रहा है
5: जी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स.
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स.
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग.
8: एक दो,
9: विश्राम.

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रोटी थमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
5: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मेरे पास एक आइडिया।
4: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन
2: जूस।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार रुंगटा बार सर एक बार रोटी थमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
5: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मेरे पास एक आइडिया।
4: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस

पर हुई खूनी झड़प में 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट को पूरी दुनिया का सलाम। पीएम मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू ने बताया हीरो। दुबई से टेल अवीव के प्लेन को क्रैश से बचाया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर की बातचीत। द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी हुई बात। चुनाव आयोग के खिलाफ सामूहिक विपक्ष की ओर से अक्टूबर क्रांति का ऐलान। नवंबर में दिल्ली में होगी महारैली। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग। शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। अशांति फैलाने की हो रही है साजिश। चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में हलचल। वर्तमान अध्यक्ष राजा अमरिंदर वड़िंग को पद से हटाए जाने की चर्चा। बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। रेस में विजय इंदर सिंगला और परगट सांग। रनों के पहाड़ को चकनाचूर कर वेस्टइंडीज पर टीम इंडिया के ऐतिहासिक विजय। 406 का रिकॉर्ड रन चेस कर सीरीज में अजय बढ़त। दुनिया का सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाकर कप्तान गिल ने बनाया कीर्तिमान।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आज के सुपर हिट बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे आज की 8 बड़ी खबरों से। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय पायलट की दिलेरी की खबर के साथ और आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया भर में दिलेर पायलट की तारीफ हो रही है। खबर सियासत की भी होगी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष में बदलाव की इनसाइड स्टोरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे और जिक्र करेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी मोर्चेबंदी का भी। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा है। एक खबर दिल्ली से, जहां पर वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं तो तेल नहीं, इस पर पूरी खबर डिटेल के साथ आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे मुंबई में एक हादसे में झटके भर में जान चली गई है। और खबर खेल जगत की भी होगी, दिखाएंगे कि कैसे गुवाहाटी में आया शुभमन रोहित का तूफान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऐसी खबर की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। फ्लाई दुबई उड़ान में जिस तरह से 30,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट पर को पायलट ने हमला कर दिया और हवा में ही इस हमले के बाद हड़कंप बचा रहा, यात्री खौफ से भरे रहे। दरअसल हमले के दौरान प्लेन अचानक से चंद सेकंड में 30,000 फीट से करीब 16,000 फीट की ऊंचाई तक आ गया और इस विमान में 174 यात्री सवार थे जिनकी जान खतरे में थी। लेकिन विमान के पायलट स्मिथ मचार की दिलेरी की वजह से सभी की जान बच गई है। पूरा मामला भी आपको समझाते हैं। देखिए, घायल यात्रियों से नेतन्याहू ने भी मुलाकात की है और कैप्टन की काफी तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की और साथ ही विमान में 150 इजरायली यात्री सवार थे, जिसके बाद नेतन्याहू ने भी उन यात्रियों से बातचीत की है। को पायलट ने पायलट पर चाकू से हमला किया और पायलट ने दिलेरी दिखाते हुए इस पूरे मामले को शांत भी करा दिया। फ्लाइट दुबई फ्लाइट अब इजराइल भी पहुंच चुकी है और पूरा मामला क्या है, उसमें काफी इजरायली यात्री सवार थे, नेतन्याहू ने तारीफ की है। पूरा मामला आपको समझा देते हैं। दुबई से टेल अवीव जा रही थी ये फ्लाइट FZ1073 और ऐसे में कॉकपिट में पायलट और को पायलट की किसी बात पर झड़प हो गई, कहासुनी होने लगी, जिसके बाद को पायलट के कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया गया। को पायलट ने कैप्टन पर चाकू से उस वक्त तुरंत हमला किया, विमान तेजी से नीचे आने लगा और विमान में काफी हड़कंप भी मच गया। जो यात्री उसमें सवार थे वो भी डरने लगे। यात्रियों ने हमलावर को काबू करने की कोशिश की और पायलट ने भी को पायलट को काबू में करने की कोशिश की थी। ताबुक में इमरजेंसी लैंडिंग उस वक्त कराई गई है और साथ ही इस पूरे मामले को शांत कराया गया। वहां पे आरोपी को भी फिलहाल अब हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पायलट की तारीफ की है। तो फ्लाई दुबई की इजराइल की उड़ानें भी अभी फिलहाल सस्पेंड कर दी गई है इस पूरी वारदात के बाद। तो क्या कुछ हुआ ये तो आप समझ ही रहे हैं। नेतन्याहू ने घायल यात्रियों से इसके बाद मुलाकात भी की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लाई दुबई की उड़ान में हमले के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मचार की बहादुरी की सराहना की है। नेतन्याहू ने कहा है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मचार ने हिम्मत

0: भारी हमलावर का सामना किया और कॉकपिट का दरवाजा खोलकर यात्रियों और क्रू को उसे काबू करने का मौका दिया। नेतन्याहू के मुताबिक पायलट की इस कार्रवाई से विमान में सवार 174 लोगों की जान बच सकी है। उन्होंने कैप्टन मचार के जल्द और पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना करते हुए सच्चा हीरो बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मचार की तारीफ की है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है वो आप समझिए। असाधारण बहादुरी दिखाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मचार को मेरा सलाम है, ये नेतन्याहू ने ट्वीट करके बताया। उन्होंने कहा कि चाकू से हमला किए जाने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पलटकर कैप्टन ने मुकाबला किया, सुमित ने मुकाबला किया और हमलावर का प्रतिरोध किया। कॉकपिट का दरवाजा खोला और इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई है और यात्रियों और क्रू को हमलावर पर काबू पाने में सक्षम बनाया गया। तो ये नेतन्याहू ने ट्वीट किया है और हवा में एक बड़ी त्रासदी जो होने वाली थी वो टल गई है, उसकी तारीफ उन्होंने की है और पायलट की सराहना भी की है। कैप्टन स्मिथ मचार से इजरायली नागरिकों सहित 174 लोगों की उन्होंने जान बचाई, उसकी तारीफ की और उन्होंने कहा है कि मैं कैप्टन के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं, वो सच्चे मायने में एक हीरो है। तो ये बात दिलेर भारतीय पायलट पर नेतन्याहू ने कही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मचार की बहादुरी और साहस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गंभीर खतरे का सामना करने और खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मचार ने दूसरे की जान बचाने के लिए अदम्य साहस और अटूट संकल्प दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि भारत को कैप्टन पर गर्व है। स्मिथ घायल भी हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने वहां जितने यात्री मौजूद थे उनकी जान बचाई, इमरजेंसी लैंडिंग वहां से कराई गई है, जिसके बाद आज देश भर में ही नहीं पूरे देश भर में दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। कैप्टन स्मिथ के साहस को देश सलाम कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि कैप्टन स्मिथ मचार एक हीरो हैं, एक हीरो उनको बताते हुए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिलेरी दिखाई है और वही सबसे गंभीर खतरे से बचाने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा भी पीएम मोदी ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई से टेलीविव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में हुए चाकूबाजी के मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उस फ्लाइट में क्या कुछ हुआ पहले आप वो देखिए।
1: दुबई से इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट आसमान में थी, तभी कॉकपिट से आई चीख पुकार ने पूरे विमान में हड़कंप मचा दिया। को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छर पर चाकू से हमला किया। इसी दौरान विमान तेजी से नीचे आने लगा। फ्लाइट ने पहले 7700 इमरजेंसी कोड और फिर 7500 हाईजैक अलर्ट भेजा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में मदद की, जिसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर को काबू किया। विमान में मौजूद दूसरे पायलटों ने कंट्रोल संभाला। फ्लाइट को सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया, जहां उसकी सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सऊदी अधिकारियों ने हमलावर को पायलट को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। विमान में मौजूद एक इजरायली डेंटिस्ट ने घायल कैप्टन की मदद की। यात्रियों, क्रू और दूसरे पायलटों की मदद से बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी को सलाम किया। भारत सरकार ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं इजरायल ने देश में आने वाली उड़ानों के पायलटों की सुरक्षा जांच और कड़ी करने का फैसला किया है। पायलटों की पहचान और बैकग्राउंड की अतिरिक्त जाँच की जाएगी। हमले की वजह अब तक साफ नहीं है। जाँच एजेंसियाँ पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। आज तक ब्यूरो
0: तो पूरे मामले पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं।
2: सिटीजन्स ऑफ इजरायल, दिस मॉर्निंग देयर वाज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट ऑन अ फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू इजरायल। ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स ऑन द फ्लाइट वर इजरायलीज। ड्यूरिंग द फ्लाइट एज दे अप्रोच्ड द कंट्री, वन ऑफ द पायलट स्टैब्ड द अदर पायलट एंड अपेरेंटली ट्राइड टू क्रैश द प्लेन विद एवरीवन ऑन बोर्ड। I spoke with one of the Israeli passengers. He told me that the plane went into a spin and started to dive. He told me that somehow he managed to break into the cockpit with one of the crew members, and together they neutralized the stabbing pilot while he was trying to sabotage the plane's systems.
0: तो वहीं दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में हुए चाकूबाजी के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप के मुताबिक सह पायलट ने पायलट पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया और इसके बावजूद पायलट ने हिम्मत दिखाते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। ट्रंप ने उनकी इस कार्रवाई को बहादुरी भरा कदम बताया है।
3: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर एक अहम बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के नए कानून के बाद पहली टेलीफोन बातचीत हुई। बातचीत में भारत अमेरिका ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने बातचीत को प्रोडक्टिव भी बताया और कहा है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा किए। दरअसल ट्रंप ने 18 सितंबर को रूस और ईरान पर नए प्रतिबंधों से जुड़े कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी प्रशासन को मिलता है। भारत और चीन रूस से तेल खरीदने वाले बड़े देशों में शामिल है। ट्रेड डील को लेकर मोदी और ट्रंप के बीच एक अहम बातचीत हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा की गई, डिफेंस और एनर्जी पर भी चर्चा की गई है। काफी समय बाद ये बात हुई है। दरअसल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर भी दोनों के बीच एक अहम बात हुई। एनर्जी, डिफेंस, अमेरिकी ट्रेड और कई मुद्दे ऐसे थे जिन पर चर्चा की गई है। पीएम मोदी ने बातचीत को प्रोडक्टिव भी बताया है। तो रूस पर अमेरिका के नए प्रतिबंध कानून ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रंप प्रशासन को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिला। भारत और चीन बड़े रूसी तेल खरीदार हैं, ऐसे में भारत पर भी टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी किसी देश का नाम तय नहीं हुआ है और इसी बीच मोदी ट्रंप बातचीत में ट्रेड समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। रूस के ऊर्जा रक्षा सेक्टर पर भी सख्ती बरती जाएगी। रूस प्रतिबंध कानून का भारत पर काफी असर पड़ सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत हुई है और उसके बाद पीएम मोदी ने इस चर्चा को प्रोडक्टिव भी बताया। आपको याद होगा मोदी और ट्रंप की बात 2 फरवरी को भी हुई थी ट्रेड डील को लेकर। वहीं उसके बाद ट्रेड डील और टैरिफ पर 2 फरवरी को चर्चा की गई, फोन पर वो बातचीत हुई और अब चौथी बार फोन पर फिर से दोनों की बात हुई है। 24 मार्च को ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की। वहीं 14 अप्रैल को भी बात हुई, पश्चिम एशिया और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा 14 अप्रैल को की गई। वहीं 30 सितंबर यानी कि अभी हाल ही में ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी पर दोनों की बातचीत हुई है। तो उसको प्रोडक्टिव पीएम मोदी ने बताया है। और अब सीधा आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, चुनावी राज्य पंजाब से जुड़ी। दरअसल यहां पर कांग्रेस में हलचल है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले ही पार्टी ने अध्यक्ष बदलने का फैसला किया और 1-2 दिन में घोषणा हो सकती है। दरअसल पंजाब में राजा अमरिंदर वड़िंग को बता दिया गया है कि पीसीसी प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, उन्हें अब पद छोड़ना होगा। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस का नए अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। आपको ये भी बता दें कि विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे हैं। दूसरे विकल्प परगट सिंह है। राजा अमरिंदर वड़िंग ने 2022 में पंजाब कांग्रेस प्रमुख का पद संभाला था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राजा अमरिंदर वड़िंग आज दिल्ली आ रहे हैं और राहुल गांधी से 1-2 दिन के अंदर मुलाकात करेंगे। कमलजीत संधू जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। कमलजीत दिल्ली आने वाले हैं, दिल्ली आने का प्लान क्या आगे होने वाला है?
4: देखिए एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में हड़कंप है और इसकी वजह है कि पंजाब में जो उनके पीसीसी प्रभारी हैं राजा अमरिंदर वड़िंग, उनकी अब रिप्लेसमेंट हो रही है और ये कुछ नया नहीं है। पिछले कुछ समय से चर्चा में था और मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा जब सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया पंजाब का। उससे पहले भूपेश बघेल थे और उन्हीं गुटबाजी के चलते कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा है। जहां पे राजा वड़िंग जाते थे वहां पे अन्य नेता हैं, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, सुखजिंदर रंधावा हो या तमाम बाकी नेता हैं, वो नहीं जाया करते थे और जहां पे वो जाते थे वहां पे राजा अमरिंदर वड़िंग को बुलाया नहीं जाते थे। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये एक आंकलन जरूर लिया गया हाईकमांड द्वारा कि कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को काफी नुकसान होगा और इसी वजह से ये कवायद पूरी शुरू की गई। और जब सचिन पायलट बनाया गया तो उन्होंने एक यूनिटी मार्च की गई, उसके बाद भी ये गुटबाजी रुकी नहीं। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि परसों देर शाम को राजा अमरिंदर वड़िंग को बता दिया गया कि उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, वो उसके लिए मेंटली तैयार भी हैं। और आपको बता दें 4.5 साल रहे हैं और उसके बाद ये रिप्लेसमेंट हो रही है।
0: ठीक है कमलजीत, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कौन कौन इस रेस में आगे हैं, चलिए अब आपको वो भी समझा देते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात भी वड़िंग कर सकते हैं और दिल्ली में आने का उनका प्लान है। इस रेस में कौन कौन आगे है वो आप समझिए। राजा अमरिंदर वड़िंग अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, विजय इंदर सिंगला वही परगट सिंह इस रेस में ये दोनों आगे हैं। पंजाब कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल सकता है तो कांग्रेस में काफी हलचल तेज हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि नए अध्यक्ष अब कौन बनेगा इसको लेकर लगातार बैठकें भी हुई हैं इससे पहले और कई मुलाकात हुई हैं जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। और इन दोनों के नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, परगट सिंह और विजय इंदर सिंगला। और अभी तक राजा अमरिंदर वड़िंग जो कि अध्यक्ष पद आगे छोड़ेंगे, जिसके बाद इन दोनों के नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं। तो नया अध्यक्ष कौन होगा इस पर सवाल बना हुआ है।
5: कब मौसम बदलने कब किस पार्टी का प्रधान बदलने, ये तो पार्टी की हाईकमांड होती है, उनके हाथ में होता है। मैंने भी आप जैसे ही खबर सुनी, अगर आपके पास कोई और लीड होगी तो मुझे कहेंगे, मुझे इतना ही पता है जितना।
6: सर वो तो कह रहे हैं 48 घंटे में हो जाएगा कुछ ना कुछ,
7: ऐसा मौसम बदल सकता है, वैसे
5: मौसम तो पता है किसी टाइम कुछ भी हो सकता है।
0: और अब खबर यूपी चुनाव से जुड़ी हुई, जिसे लेकर बीजेपी आज एक और अहम संगठनात्मक बैठक करने जा रही है। मिशन 2027 से पहले बीजेपी का फोकस संगठन पर है। आज होने वाली बैठक में बूथ से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक की समीक्षा होगी, साथ ही राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के बीच संगठनात्मक फेरबदल और नई जिम्मेदारियों पर भी फैसला हो सकता है। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े चारों सह प्रभारियों के साथ बैठक में मंथन करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा की जाएगी और इसमें सह प्रभारियों के नए कार्यक्षेत्र भी तय किए जा सकते हैं। और अब खबर चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के मोर्चाबंदी की। गांधी जयंती से इंडिया ब्लॉक चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेगा और विपक्षी दल 2 से 8 अक्टूबर तक देश भर में सेव डेमोक्रेसी रैलियां करेंगे। 6 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद से चुनाव आयोग तक मार्च भी करेंगे। विपक्ष एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। विपक्ष ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी दोहराई है। कल दिल्ली में हुई बैठक में 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी जनसभा का ऐलान किया गया। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों और आंदोलन पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सेव डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सेव द फैमिली मार्च बता दिया है। तो विपक्ष का इस पर क्या प्लान है अब वो आप समझिए। और इस पर अब बवाल भी खड़ा हो रहा है, 2 से 8 अक्टूबर तक सेव डेमोक्रेसी रैलियां विपक्ष की तरफ से इंडिया ब्लॉक की तरफ से निकाली जाएंगी। 6 अक्टूबर को चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की जाएगी जिसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं एसआईआर में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी इस आंदोलन में उठाया जाना है। साथ ही आपको भी बता दें कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग भी की जाएगी इंडिया ब्लॉक की तरफ से। तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 1 नवंबर को दिल्ली में एक जनसभा भी होने वाली है, उसमें भी कई मुद्दों पर बातचीत होगी। और वही 2 से 8 अक्टूबर तक सेव डेमोक्रेसी मार्च निकलेगी और इसको बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सेव द फैमिली मार्च ये होना चाहिए, ना कि सेव डेमोक्रेसी मार्च होना चाहिए। हार का बहाना तलाशने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, ऐसा बीजेपी ने पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह कहा गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में अभी भी मतभेद चल रहा है, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। तो वही सेव डेमोक्रेसी नहीं सेव द फैमिली की बात कर रही है बीजेपी की तरफ से। तो एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। तो अगर आप देश के अन्य हिस्सों से या दिल्ली में ही अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं, अब खबर उसी से जुड़ी। दरअसल पहले अपना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट आप जरूर चेक करा लें, क्योंकि आज से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को राजधानी में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकार ने ये एक्शन प्लान तैयार किया, जिसके तहत वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होने पर ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। इसके लिए दिल्ली में 500 पेट्रोल पंप पर गाड़ियों के नंबर को खास तौर पर रीड करने वाले एएनपीआर कैमरों के जरिए निगरानी होगी। रेखा गुप्ता सरकार के एक्शन प्लान के मुताबिक 1 नवंबर से प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर सख्ती भी शुरू होगी। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान भी 1 नवंबर से लागू होगा। इसके अलावा 1 नवंबर से दिल्ली में BS6 से कम मानक वाले बाहरी राज्यों के पेट्रोल डीजल वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो वर्क फ्रॉम होम की भी बात आगे कही जा रही है। धूल वाले निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है। अब खबर बिहार से जुड़ी। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। नेपाल में छोड़े गए पानी और लगातार बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों में मुश्किल बढ़ा दी है। कहीं पर तटबंध टूट गए हैं तो कहीं पर घर पानी में समा गए। कहीं लोग बांध पर रहने पर मजबूर हैं। और छपरा से मोतिहारी और मुजफ्फरनगर तक एक बाढ़ की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। तो वहीं गुवाहाटी में क्रिकेट का ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसे लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। वेस्टइंडीज ने 405 रन का पहाड़ खड़ा किया, लेकिन टीम इंडिया ने इस पहाड़ को भी बौना कर दिया। गिल ने नाबाद रहते हुए दोहरा शतक जड़ा तो रोहित शर्मा ने शतकीय तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल दोनों की धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने 406 रनों का लक्ष्य महज 43.3 ओवर में हासिल कर इतिहास रच दिया है।
1: चार सौ पांच रन का लक्ष्य, सामने वेस्टइंडीज की मजबूत चुनौती, लेकिन गुवाहाटी में टीम इंडिया के इरादे कुछ और ही थे। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रन ठोक दिए। जॉन कैंपेल, शाई होप और अमीर जांगू ने शतक जमाकर भारत के सामने 406 रन का लक्ष्य रख दिया, लेकिन लक्ष्य जितना बड़ा था टीम इंडिया का जवाब उससे भी बड़ा निकला। क्रीज पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल और दोनों ने शुरुआत से ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। रोहित ने 75 गेंदों में शानदार शतक ठोका और गिल के साथ 255 रन की तूफानी ओपनिंग साझेदारी ने भारत की जीत की नींव रख दी। फिर रोहित आउट हुए, लेकिन गिल का तूफान नहीं रुका। गिल ने बल्ला घुमाया तो रिकॉर्ड टूटते चले गए। 133 गेंदों में नाबाद 223 रन और महज 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर गिल ने वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया। गिल की इस पारी में चौकों छक्कों की बरसात थी और दूसरी तरफ रोहित के शतक ने इस रणचेज को पूरी तरह एकतरफा बना दिया। भारत ने सिर्फ 43.3 ओवर में 406 रन बनाकर 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया, यानी 39 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। वेस्टइंडीज ने 400 पार का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन टीम इंडिया ने जवाब में ऐसा रनचेज किया कि 405 का पहाड़ भी छोटा पड़ गया। इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। गुवाहाटी में जीत के बाद टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, यानी अब आखिरी मुकाबला सिर्फ औपचारिकता रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: ब्रेक में वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक का आपका ही मन जाएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: मैं करता हूँ ना,
10: मैं करूँगा।
11: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
9: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
11: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
9: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
11: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सावधान, विश्राम।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट।
7: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
7: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
10: Maddie, I need to open a savings account.
11: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
10: स्मॉल बैंक?
11: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima, business privilege, RDA, there's nothing small about them.
10: Okay.
11: उज्जीवन, nothing small about us.
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
13: Goldi Chole Masale, jahan jaye, rishte banaye.
14: Goldi laaye hain Fresh Lock Technology, jo rakhe masalon ko har samay fresh.
15: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
16: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
17: इन एसोसिएशन विद सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: हजार फीट ऊपर हुई खूनी झड़प में 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट को पूरी दुनिया का सलाम। पीएम मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू ने बताया हीरो। दुबई से टेलवीव के प्लेन को क्रैश से बचाया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर की बातचीत। द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी हुई बात। आज से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सरकार का बड़ा एक्शन प्लान। निगरानी के लिए 500 पंप पर लगाए जाएंगे कैमरे। चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में हलचल। वर्तमान अध्यक्ष राजा अमरिंदर वडिंग को पद से हटाए जाने की चर्चा। बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। रेस में विजय इंदर सिंगला और परगट सिंह। रनों के पहाड़ को चकनाचूर कर वेस्टइंडीज पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक विजय। 406 का रिकॉर्ड रन चेज कर सीरीज में आगे बढ़त। दुनिया का सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाकर कप्तान गिल ने बनाया कीर्तिमान। वक्त हो गया नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन स्मिथ को लेकर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय पायलट और अन्य लोगों ने मिलकर 9/11 जैसी घटना होने से बचा लिया। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया है कि भारतीय पायलट पर को पायलट ने हमला किया था और इस दौरान स्मिथ किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। फिर से कैप्टन स्मिथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है 9/11 जैसा हमला होने से स्मिथ ने बचा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर से महंगा। 19 किलो सिलेंडर के दाम 62.50 रुपए बढ़े। दिल्ली में अब कीमत 2810, सितंबर में भी 9.50 रुपए की हुई थी बढ़ोतरी। अक्टूबर की शुरुआत में ही कारोबारियों को बड़ा झटका, हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। छोटे कारोबारियों पर भी बढ़ेगा एलपीजी खर्च, बढ़ी लागत का असर आगे खाने पीने की कीमतों पर पड़ सकता है। पीएम मोदी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट में सूझबूझ और बहादुरी दिखाकर 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट की जमकर तारीफ की। हीरो बताते हुए कहा, भारत को गर्व है। हमले में घायल मचार फिलहाल सऊदी अरब के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर। भारतीय दूतावास लगातार उनके परिवार के संपर्क में। मचार की बहादुरी की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी तारीफ की। ट्रंप ने उन्हें बताया हीरो, जबकि नेतन्याहू ने उन्हें सच्चा नायक कहा। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने को पायलट को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ कर रही है। फ्लाई दुबई ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जांच पूरी होने तक इसराइल से आने जाने वाली उसकी उड़ानें निलंबित रहेंगी। घटना के बाद इसराइल ने देश में आने वाली उड़ानों के पायलट की सुरक्षा जांच और कड़ी करने के लिए फैसला लिया। यूपी में मिशन 2027 से पहले बीजेपी का संगठन पर फोकस, आज अहम बैठक में बूथ से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक होगी समीक्षा। राज्यसभा एमएलसी चुनाव के बीच संगठनात्मक फेरबदल और नई जिम्मेदारियों पर भी हो सकता है फैसला। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े चारों सह प्रभारियों के साथ बैठक में मंथन करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे और पुलिस सुधारों पर आधारित पुस्तक संघर्ष का विमोचन भी करेंगे। मथुरा में शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद आश्रम के दीक्षा कार्यक्रम अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया। व्यवस्थाओं में लगे सेवादारों की वेशभूषा में भी बदलाव किया गया है। इसी के साथ टोकन के माध्यम से होने वाले दर्शन भी अनिश्चितकाल के लिए बंद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आने के बाद टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल भी दफ्तर में मौजूद थे। आरोप है कि बदमाशों ने अनुव्रत मंडल को कुर्सी पर बैठाया और उनके सामने ही दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान अनुव्रत मंडल पर भी हमला हुआ। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर झड़प, इलाके में बढ़ा तनाव। घटना केरल यूनिवर्सिटी के पास बॉयज हॉस्टल के बाहर हुई, जब यूथ कांग्रेस सीएसी के इस्तीफे की मांग को लेकर चर्चा में मार्च निकाल रही थी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने दखल दिया और कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। दिल्ली एनसीआर में आज से ईंधन भराने के लिए वैध पीयूसी जरूरी, सीएक्यूएम ने दिए सख्ती के निर्देश। बैठक में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे उपाय, तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। पंजाब कांग्रेस में चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक राजा वडिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। नए अध्यक्ष का ऐलान एक या दो दिन में हो सकता है, सूत्रों के मुताबिक विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे। दूसरे विकल्प के तौर पर परगट सिंह का नाम सामने आ रहा है। इनके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नामों पर भी विचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा। ट्रंप के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकों में द्विपक्षीय सहयोग पर हुई बातचीत। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल, अब नवंबर में महारैली का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार कर कहा, अशांति फैलाने के लिए रची जा रही साजिश। पंजाब में अमित शाह का चुनावी शंखनाद, जालंधर की रैली में कहा, बीजेपी को मौका मिला तो 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब होगा नशामुक्त। अमित शाह ने मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पंजाब में नशे और भ्रष्टाचार समेत कई समस्याएं हैं, वादे पूरे नहीं हुए, सिर्फ विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मोदी सरकार ने तीन बड़े फैसले पर लगाई मुहर, किसानों के लिए खोला खजाना, रबी की फसल पर बढ़ाया एमएसपी, दिल्ली की ट्रैफिक को दुरुस्त करने का भी ऐलान किया। वहीं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 3 को कैबिनेट मंजूरी, 135 GW रिन्यूएबल एनर्जी इक्वेशन क्षमता और 50 GWh बैटरी स्टोरेज का लक्ष्य। तो वहीं राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, अंबेडकर फुले की किताबों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की चिट्ठी पर उठाए सवाल। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्ती, कहा यहां पर डर, आतंक और अत्याचार की कोई जगह नहीं। महाराष्ट्र के भिवंडी में एफडीए का बड़ा एक्शन, रहीवासी इमारत के 2 फ्लैट से लाखों का प्रतिबंधित गुटखा जब्त। एंटीलिया केस में सचिन वाजे को बड़ा झटका, जमानत के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट की अस्थायी रोक, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। मुंबई एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 का जनवरी 2027 से होगा पुनर्विकास, एयरलाइंस को नव मुंबई शिफ्ट होने और परिचालन रोकने का विकल्प। कानपुर से हरदोई आगरा एक तक निकली एंटी रेबीज इंजेक्शन की सप्लाई, हरदोई में सैंपल बरामद। इंदौर भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक, पाइपलाइन सीवेज व्यवस्था में लापरवाही का जिक्र। जलगांव में नगर निगम ने लंबे समय से लगे कबाड़ बाजार के अतिक्रमण हटाए,
भारी पुलिस बल तैनात। संगरूर में 23 साल के युवक की मौत मामले में परिवार ने मुख्यमंत्री के घर के आगे किया प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा पर लगाए आरोप। पटना में दो अलग अलग इलाकों में चेन लूटने का मामला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। महाराष्ट्र के लातूर में ऑटो कट मारने को लेकर बाइक पर जा रहे दो युवकों पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। हैदराबाद में कार ने कई राहगीरों को मारी टक्कर, चालक फरार, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुंबई के साकीनाका में ढांचा गिरने से शख्स की मौत, ढांचा गिरने का खतरनाक वीडियो आया सामने। जोधपुर में आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस, तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हुई, परिजनों ने पुलिस पर लगाया धक्का का आरोप। कानपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 265 प्रतिष्ठानों की चेकिंग, 25 गिरफ्तारी, 5 मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पहले बनाया वीडियो, पत्नी पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस की स्नैचिंग के आरोपी से मुठभेड़, आरोपी घायल। बिजनौर में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला किया, उसके बाद की गई फायरिंग। सहारनपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 65 साल के बुजुर्ग को किया गया गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर हुई पहचान। गिर सोमनाथ में भीषण सड़क हादसा, एसटी बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर, 2 की मौत, 14 घायल। अमरावती में महिला अस्पताल अग्निकांड पर बड़ा सवाल, सीसीटीवी में घटना से पहले स्टाफ नर्स के सोने का दावा। अहमदनगर में पैसों की बारिश का लालच देकर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, 92 लाख से ज्यादा की नकली नोट बरामद। महाराष्ट्र के बीड में अंबाजोगाई से आवारा कुत्तों के हमले में 6 साल के बच्चे की मौत हुई, हमले की तस्वीरें आई सामने। अकोला में बिजली के तार पर चढ़ा शख्स, आधे घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। अररिया के बतनाहा स्कूल ग्राउंड में जमीन विवाद को लेकर भिड़े छात्र और दावेदार पक्ष, मारपीट का वीडियो वायरल। भोपाल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर में हत्या, 3 दिन पहले रखा केयर टेकर फरार। गया में युवती के साथ घूम रहे युवक को घेर कर की गई मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद 4 युवक हुए गिरफ्तार। आनंद के पास लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, 5 की मौके पर मौत हुई, हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। डूंगरपुर में पत्नी के घर छोड़ने की बात को लेकर बेटे का माता पिता से विवाद, मां के सिर पर लाठी से वार कर हत्या की गई। नागौर में साहूकारों ने 16 लाख का कर्ज 7 लाख बनाकर सोना हड़पा और वहीं जान से मारने की धमकी दी गई, पीड़ित ने की आत्महत्या की कोशिश। अजमेर में विदेशी महिला पर्यटकों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मध्य प्रदेश के 3 युवक डिटेन। बस्तर के 8 पूर्व नक्सलियों ने पास की 10वीं दंडकारण्य जोनल कमेटी का सदस्य भास्कर भी शामिल। गुवाहाटी में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड चेस, 2 विकेट खोकर 406 रन का टारगेट का आसानी से जीता। कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 117 गेंदों पर लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। गिल ने बनाए 223 नाबाद रन, गिल की पारी में 26 चौके और 8 छक्के शामिल। शुभमन गिल ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ियां, सीरीज में जड़ी बैक टू बैक सेंचुरी। ओपनिंग विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बनाए 255 रन, दोनों बल्लेबाजों ने जड़े शतक। रोहित शर्मा ने भी खेली शतक के पारी, 75 गेंदों में बनाए शानदार 101 रन। विराट कोहली ने खेली 19 गेंदों पर 29 रन की तेज पारी, विराट ने अपनी पारी में जड़े 3 चौके और 1 छक्का। इससे पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 405 रन, वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों ने लगाए शतक। वेस्टइंडीज के लिए कैंपबेल और शाय होप साथ ही अमीर जंगू ने लगाया शतक, वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप जडेजा और गुरनूर को मिले 2-2 विकेट, सबसे किफायती गेंदबाज रहे कुलदीप यादव।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना

इस दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:35 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, आज वाद विवाद से बचाव करें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, कोई छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन

जन में व्यस्त रहेंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करिए, खान पान पर ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: के राज्यसभा के रण में समाजवादी पार्टी ने तो 2 सीटों के लिए मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की ओर से की जा रही 8 सीटों की दावेदारी के सारे पत्ते खुलने अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती 2 नामांकन से यह तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में सिर्फ यही 2 उम्मीदवार हैं। बाकी 3रा उम्मीदवार अगर उतरा तो उसे अपनी जीत का इंतजाम खुद करना होगा।
1: देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है तो निश्चित रूप से खेला होगा और समाजवादी पार्टी का 3रा प्रत्याशी वो राज्यसभा भी पहुंचेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। जो खेल भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के साथ खेलती है वो खेल उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। समाजवादी पार्टी मजबूत है और मजबूत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक कहाँ कौन क्रॉस वोटिंग करने जा रहा है, कौन भाजपा को छोड़ने जा रहा है, ये समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा। समाजवादी पार्टी समझती कि हम समाजवादी पार्टी का 3रा प्रत्याशी वो आराम से राज्यसभा पहुंचेगा।
2: लड़ाएं, पहले भी समाजवादी पार्टी इसको मैंने जब सत्ता में थी तब भी जो है समाजवादी पार्टी टूट गई थी, और इस बार आप देखिएगा कि यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो समाजवादी पार्टी के कितने विधायक किसके साथ हैं ये सामने पता चल जाएगा।
3: आप लोग भी खेला के लिए तैयार हैं? आप लोग के भी टच में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं क्या?
2: एक नहीं है, दर्जनों है।
0: वैसे समाजवादी पार्टी के पास विधायक 2 सांसद चुनने लायक हैं, लेकिन खबर है कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा नामांकन के लिए 4 पर्चे खरीदे हैं और उन पर प्रस्तावकों के दस्तखत भी करा लिए हैं। अब इंतजार बीजेपी का है कि उसकी ओर से जिन 8 सीटों पर जीत की बिसात बिछाई जा रही है उसके चेहरे कौन होंगे। लेकिन नंबर गेम को लेकर जानकारों का कहना है कि बीजेपी के पास अपने 255 33 सहयोगी दल राजा भैया की पार्टी के 2 वोट पहले से पक्के माने जा रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी खेमे से 5 विधायकों का वोट बीजेपी को मिलता रहा है, इस लिहाज से बीजेपी के पास 295 वोट पहले से हैं, और 1 सीट के लिए 37.9 वोट भी जरूरी हुए तो बीजेपी के पास 8वीं सीट जीतने का दम है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार क्रॉस वोटिंग बीजेपी के खेमे में होने वाली है। समाजवादी पार्टी ने किस भरोसे 4 पर्चे खरीदे ये तो पता नहीं, लेकिन समाजवादी खेमे में संभावित गणित कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एसपी के अपने 101 वोट के अलावा कांग्रेस के 2 वोट हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि राजभर की पार्टी से 2 और जयंत चौधरी की पार्टी से 2 वोट उन्हें मिल सकते हैं, जिन्हें मिलाकर भी 107 वोट होते हैं, और 3री सीट के लिए 7 वोटों की कमी फिर भी होगी। क्रॉस वोटिंग को लेकर किसका गणित सटीक बैठता है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि राज्यसभा चुनाव में 10वीं सीट का दंगल आसान नहीं रहने वाला है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: यूपी में सीटों के बंटवारे की लड़ाई अब इस मुकाम तक पहुंच गई है कि कांग्रेस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। यूपी में कांग्रेस के प्रभारी ने नई लाइन भी खींच ली है।
5: सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
6: 150+ या 150 माइनस?
5: प्लस।
6: 150+
5: जी।
4: राजेंद्र पाल गौतम जो कुछ और जिस अंदाज में कह रहे हैं उस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तलखी पहले ही हद पार करती रही है। याद कीजिए, थोड़े दिन पहले की बात है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम चेहरों की टक्कर हुई थी।
7: नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता।
8: अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए।
4: सीट बंटवारे और गठबंधन पर तनातनी के बीच ही अखिलेश रायबरेली पहुंचे थे। वहां उन्होंने रथ यात्रा की और रायबरेली में अपनी ताकत भी दिखाई। रायबरेली यानी वो सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अखिलेश की इस यात्रा पर भी दोनों पार्टी की तनातनी सामने आई थी। और अब इस बीच यूपी में कांग्रेस के प्रभारी का नया बयान आया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। तो अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
10: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
11: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झड़प में 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट को पूरी दुनिया का सलाम। पीएम मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू ने बताया हीरो। दुबई से तेल अवीव के प्लेन को क्रैश से बचाया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर की बात। द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी हुई बात। आज से बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण कंट्रोल के लिए सरकार का एक्शन प्लान। निगरानी के लिए 500 पंप्स पर लगेंगे नंबर प्लेट कैप्चर करने वाले स्मार्ट कैमरा। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में उठा पटक। वर्तमान अध्यक्ष राजा अमरिंदर वडिंग को पद से हटाए जाने की चर्चा। बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। रेस में विजय इंदर सिंगला और परगट सिंह। रनों के पहाड़ को चकनाचूर कर वेस्टइंडीज पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक विजय। 406 का रिकॉर्ड रन चेज कर सीरीज में अजय बढ़ा दुनिया का सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाकर कप्तान गिल ने बनाया कीर्तिमान।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। बिना ब्रेक के सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। भारतीय पायलट की वीरता, प्लम्बर और डेंटिस्ट की बहादुरी, फ्लाई दुबई प्लेन क्रैश की साजिश नाकाम करने की पूरी कहानी अब से कुछ ही देर बाद। दिल्ली में पेट्रोल डीजल को लेकर आज से सख्त नियम लागू, बगैर पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाए नहीं मिलेगा तेल। पश्चिम बंगाल में एक और टीएमसी नेता पर हमला, वीरभूम में डंडे के साथ टीएमसी दफ्तर में घुसे लोग। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जिसने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हाँ, ये खबर है फ्लाई दुबई के विमान को हाईजैक कर जमीन से क्रैश कराने की साजिश को नाकाम किए जाने की। इस साजिश को नाकाम करने में भारत के पायलट स्मिथ मछार ने अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्मिथ मछार की बहादुरी की तारीफ की है। उन्होंने हीरो इन्हें बताया है। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्मिथ मछार की बहादुरी में मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू ने क्या कहा है।

0: ये कहानी है एक भारतीय पायलट के अदम्य वीरता की, जिसने अपने साहस और सूझबूझ से न सिर्फ 174 विमान यात्रियों की जान बचाई बल्कि एक बड़े हमले को भी टाल दिया। स्मिथ मछार, जिनकी वीरता को दुनिया सलाम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्मिथ की तारीफ में बयान जारी करते हुए उन्हें हीरो बता चुके हैं।
1: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ को नायक बताते हुए एक्स पर लिखा, कैप्टन स्मिथ मछार एक हीरो हैं। बेहद खतरनाक हालत और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया। उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई। भारत को कैप्टन मछार पर गर्व है। हम उनके जल्द ठीक होने, नई ताकत पाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारतीय पायलट की वीरता की तारीफ करने वालों में सबसे आगे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि स्मिथ की बहादुरी से कैसे 174 लोगों की जान बची। नेतन्याहू ने लिखा, भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की असाधारण बहादुरी को मेरा सलाम। चाकू लगने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, विरोध किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और क्रू को हमलावर पर काबू पाने में मदद की, जिससे हवा में होने वाली एक बड़ी दुर्घटना टल गई। उन्होंने 174 लोगों की जान बचाई, जिनमें इजरायली नागरिक और अन्य देशों के लोग शामिल थे। मैं कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना करता हूं। वो एक सच्चे हीरो हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और आइए अब आपको दिखाते हैं दुबई के विमान में कल क्या हुआ था। बुधवार सुबह लगभग 6:05 पर दुबई से तेल अवीव ये विमान रवाना हुआ था। पायलट ने को पायलट पर चाकू से हमला किया, विमान को हाईजैक कर जमीन पर क्रैश कराने की साजिश की। विमान अचानक 30,000 फीट की ऊंचाई से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। विमान से पहले इमरजेंसी का 7700 कोड भेजा गया। कुछ सेकेंड बाद विमान से हाईजैक का 7500 कोड भेजा गया। भारतीय पायलट स्मिथ मछार थे। विमान के पायलट जख्मी होने के बावजूद स्मिथ ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। विमान में मौजूद कुछ यात्रियों ने हमलावर को काबू किया। बुधवार सुबह 9:45 सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। जख्मी होने के बावजूद कैप्टन मछार ने अदम्य साहस दिखाया, जिसकी तीनों राष्ट्राध्यक्ष ने तारीफ की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं।
0: आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर खूनी खेल, कॉकपिट में पायलट पर चाकू से हमला, लहूलुहान पायलट ने दिखाई दिलेरी, विमान पर सवार प्लंबर और डेंटिस्ट ने भी दिखाई बहादुरी, बाल बाल बची 174 लोगों की जान। आसमान में सांस रोक देने वाले ड्रामे की जानिए पूरी कहानी। दुबई से तेल अवीव के लिए उड़े FZ1073 विमान में बुधवार को जो कुछ हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुबई से उड़ने के 2 घंटे बाद विमान अचानक 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से नीचे गिरकर करीब 17,000 फीट पर आ गया। ये किसी तकनीकी गड़बड़ी से नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह थी विमान के भारतीय पायलट स्मिथ मछार पर चाकू से हमला, और हमलावर कोई और नहीं बल्कि सह पायलट था। चाकू के हमले में जख्मी होने के बावजूद पायलट स्मिथ ने गजब की दिलेरी दिखाई। जख्मी हालत में ही सह पायलट से लड़ते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। कॉकपिट का दरवाजा खुला तो विमान यात्री खूनी मंजर देखकर सकते में आ गए। लेकिन विमान यात्रियों के बीच एक और दिलेर भी मौजूद था, वो है ये शख्स, नाम यानिन हायून।
3: बेन पाखद लेबेन इसरदूत तुशात इसरदूत शखयाव लनचह लेमस लामोद बेजे वलनचह खजे।
0: यानी इन पेशे से प्लम्बर हैं। पायलट स्मिथ के कॉकपिट खोलने पर जब उन्होंने खूनी मंजर देखा तो बगैर कोई पल गंवाए वो फुर्ती से कॉकपिट में घुस गए। हमलावर को पायलट को दबोच कर बाहर की तरफ फेंक दिया। फिर बाकी यात्रियों ने हमलावर को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया।
3: הדלת הייתה כנראה לא נעולה, והצלחנו איכשהו לפתוח את הדלת, אני ועוד מישהו שעמד לידי, שנראה לי שהוא מהצוות שלהם, טייס אחר. הצלחנו לפתוח, ובעצם מה שהקשה עלינו זה הטייס עצמו שהיה דקור, והוא היה מהצד השני של הדלת. מישהי צעקה, הבנו שיש תקיפה כי מישהי צעקה דקירות, ואז המטוס התלטל חזק מאוד. ברגע הזה רצתי לקוקפיט, ואז הייתה צלילה של המטוס, עפנו כולם.
4: ואתה
3: שטתי, ואז
4: נכנסתי.
3: מתחיל לקרות במטוס. קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה.
0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यानीव हायून की भूरी भूरी तारीफ की है। हादसे को टालने में एक डेंटिस्ट की भूमिका भी सामने आई है। एक यात्री के मुताबिक चाकू से घायल पायलट की हालत गंभीर थी। विमान में मौजूद एक इजरायली डेंटिस्ट ने उसका इलाज किया और उसकी जान बचाने में मदद की। हाईजैक का अलर्ट मिलने के बाद इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट भेजे और देश की सुरक्षा का अलर्ट बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद फ्लाइट का रास्ता बदलकर सऊदी अरब के ताबूक एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। इसराइल ने कुछ समय के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। आज तक ब्यूरो।
2: प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जो विजुअल्स हम देख पा रहे हैं फ्लाइट के भीतर के, उसमें जो सबसे ज्यादा घायल अवस्था में शख्स दिखाई दे रहा है, क्या वही स्मिथ मचा रहे हैं? और इस पूरे गुत्थम गुत्थी के दौरान उनको कितनी इंजरीज हुई है, अभी उनकी क्या हालत है?
5: देखिए, बताया जा रहा है कि ताबुक अस्पताल के अंदर कैप्टन स्मिथ मचर का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके की चोट उन्हें लगी है, यानी उनके हाथ के ऊपर जो है चोट लगी थी, चाकू से जो पेन नाइफ थे उससे अटैक किया गया था। इसके अलावा उनकी बॉडी के ऊपर कई जगह इंजरी के निशान थे और वो प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहे थे, यानी खून बड़ी तेजी से निकल रहा था। जिस तरीके से अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि विमान में मौजूद एक डेंटिस्ट ने उन्हें स्टेबलाइज किया, उन्हें फर्स्ट एड दी और उसके बाद विमान को जो है वो स्टेबलाइज किया गया, उसे लैंड किया गया। लेकिन जहां तक इस घटनाक्रम का सवाल है, साहस और सूझबूझ दोनों का अद्भुत संयोग इस विमान में देखने को मिला, जिसमें कैप्टन स्मिथ मचर की भूमिका महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ जो अन्य पैसेंजर्स थे उन्होंने भी सूझबूझ दिखाई, विमान को स्टेबलाइज किया और अब उनके साहस की जो सराहना है वो पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया के तमाम नेता इस चीज की सराहना कर रहे हैं, लेकिन जो डिटेल्स सामने आ रहे हैं अभी भी कुछ डिटेल्स पता नहीं चल पाए हैं कि आखिर जब तक दरवाजा नहीं खुला था तब तक दोनों पायलट्स के बीच में क्या हुआ था। और इसकी जांच के लिए यूएई की अथॉरिटीज की तरफ से एक स्पेशलाइज्ड टीम सऊदी अरब भेजी गई है, जो उस विमान को, जो कि इस समय अभी भी ताबुक एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, उस विमान का जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसको एनालाइज किया जा रहा है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन आप कल्पना करिए नेहा, कि एक ऐसा विमान जो कि प्रति सेकंड सैकड़ों फीट की जो ऑल्टीट्यूड है वो तेजी से लूज कर रहा हो, नीचे की तरफ जा रहा हो, हमने विमान में सफर किया है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जरा से भी टर्बुलेंस के अंदर आपके लिए विमान में खड़े होना मुश्किल होता है। उस स्थिति के अंदर कैप्टन स्मिथ मचर ने न केवल एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज किया, कोशिश की, इसके अलावा कॉकपिट का दरवाजा खोला, पैसेंजर्स ने अंदर जाकर उस हमलावर पायलट को काबू करने की कोशिश की, उसको बाहर किया, उसे कंटेन किया, और ये सारी चीजें महज चंद सेकंड के अंदर हो रही थी। और उसके बाद जो विमान में मौजूद पैसेंजर पायलट थे उन लोगों ने विमान को स्टेबलाइज किया, सेफली लैंड किया। तो ये अपने आप में एविएशन की दृष्टि से भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसमें 174 यात्रियों की जान सुरक्षित बचाई गई और इसके साथ साथ विमान को सुरक्षित लैंड किया गया। हालांकि ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना होती, अगर ये हादसा हो जाता तो ये पश्चिम एशिया के का जो मौजूदा टेंशन है नेहा, उसके अंदर और आग के अंदर पेट्रोल का काम करता।
2: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच स्मिथ मचर के माता पिता चेंबूर के स्वास्थ्य हाइट्स में रहते हैं, वो भी उनके साथ रहते हैं और कई साल पहले दुबई शिफ्ट हुए थे। उनके पड़ोसी डॉक्टर जिनीत शाह से आज तक ने खास बातचीत की है।
6: स्मिथ मचर ने एक साहसपूर्ण कार्य किया है, खुद घायल हुए लेकिन प्लेन को सेफली लैंडिंग कराया। हमारे साथ है उनके पड़ोसी डॉक्टर शाहजी। सर, क्या उनके परिवार से आपकी बात हुई इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद उनके माता पिता से बात हुई और वो इस वक्त कहाँ पे हैं?
7: सो उनके पेरेंट्स से मेरी बात तो हुई नहीं है आफ्टर द इंसिडेंट। दे आई थिंक लेफ्ट आफ्टर द इंसिडेंट।
6: बिल्कुल, तो पहले से ही नेक स्वभाव था लोगों की मदद करने वाला स्वभाव था, ऐसा जो उनके दोस्त हैं जो काफी सालों से उनको जानते हैं, डॉक्टर जिनीत शाह, उनका कहना है। और यही वो स्वास्तिक हाइट्स बिल्डिंग है जहां पर स्मिथ जो है अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ साल पहले ही वो दुबई शिफ्ट हुए थे, लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो इसी सोसाइटी में रहते थे, जिसके बाद जैसे ही कल उनको इस घटना के बारे में पता चला वो तुरंत सऊदी निकल गए स्मिथ के पास। और जो आखिरी बात डॉक्टर जिनीत की उनके माता पिता से हुई थी, तब उनको पता चला था कि जो स्मिथ है उस पर इलाज चल रहा है और उसको उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है, उनकी हालत क्रिटिकल है, लेकिन भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
2: और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर कल देर शाम बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के नए कानून के बाद पहली टेलीफोनिक वार्ता है। बातचीत में भारत अमेरिका ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बातचीत को प्रोडक्टिव बताया और कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए। ट्रंप ने 18 सितंबर को रूस और ईरान पर नए प्रतिबंधों से जुड़े कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी प्रशासन को मिलता है। भारत और चीन रूस से तेल खरीदने वाले बड़े देशों में शामिल हैं। अहम मुद्दे जिन पर चर्चा हुई उसमें व्यापार, रक्षा, एनर्जी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शामिल है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ये टेलीफोनिक वार्ता जो दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई है, इसे किस लिहाज से महत्वपूर्ण माने?
5: देखिए, आपने संदर्भ खुद ही समझाया, खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो हाल ही में नया अधिकार मिला है कि वो ईरान और रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों के ऊपर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यही था। इस कॉल को इनिशिएट भारत की तरफ से किया गया था, यानी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से को कॉल किया गया था। और इस बातचीत के दौरान ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और उसके साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हुई, जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट है उसके मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव महसूस कर रही है, खासतौर पर ऊर्जा सप्लाई बाधित है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, बाबल मंदेब हो, इन तमाम रास्तों पर जो चोक पॉइंट लग रहे हैं, जो व्यापार कारोबार बाधित हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बार फिर उस मुद्दे को उल्लेखित किया गया जो खासतौर पर भारतीय सी फेरर्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय सी फेरर्स एक बड़ा मुद्दा है भारत की चिंता के लिहाज से भी और इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो तनाव चल रहा है। साथ ही भारत की तरफ से यह भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा की सप्लाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और करीब 1.4 बिलियन लोगों के लिए जो ऊर्जा सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता है और इसके बारे में जो है चिंता रखनी चाहिए इस चीज को। और अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल के मूल्यों को स्थिर करने में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि भारत को तेल आपूर्ति बाधित होती है तो दुनिया के मार्केट के अंदर भी बड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है। उस लिहाज से भी चर्चा हुई दोनों देशों के बीच में। और चूंकि दोनों नेताओं के बीच में ये पहला फोन कॉल था नेहा, जो जून की जो उनकी मुलाकात थी जो फ्रांस में हुई थी G7 के हाशिए पर, और साथ ही अगले कुछ महीनों के अंदर दोनों नेताओं की पुनः मुलाकात की संभावना है, क्योंकि मनीला के अंदर जो आसियान की बैठक है उसमें भी दोनों नेताओं के मिलने और पहुंचने की संभावना है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को G20 के लिए अमेरिका जाना है, फ्लोरिडा में ये G20 की बैठक दिसंबर में होनी है, तो उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण चर्चा थी। और चूंकि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है, बड़े रणनीतिक साझेदार हैं दोनों देश और उनके बीच में काफी मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर संवाद और जो सहायता और सहयोग है वो लगातार बना रहता है, तो उस लिहाज से भी दोनों नेताओं के बीच का ये संवाद काफी अहमियत रखता है।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब दिल्ली NCR वालों के लिए एक अहम खबर, अगर आप देश के अन्य हिस्सों से या दिल्ली में ही अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं तो पहले अपना वैध PUC सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, क्योंकि आज से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को राजधानी में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण को काबू में करने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वैध PUC सर्टिफिकेट होने पर ही पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों के नंबर को खास तौर पर रीड करने वाली ANPR कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार के एक्शन प्लान के मुताबिक 1 नवंबर से प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान भी 1 नवंबर से लागू होगा। इसके अलावा 1 नवंबर से दिल्ली में BS6 से कम मानक वाले बाहरी राज्यों के पेट्रोल डीजल वाहनों की एंट्री पर बैन लगेगा।
8: अगर आप दिल्ली में हैं और आज आपको पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में भरवाना है तो PUC आपको दिखाना पड़ेगा। सर PUC आज चेक नहीं कर रहे हैं आप लोग?
9: मैनेजर साहब कर रहे
8: हैं। मैनेजर साहब इधर है, मैनेजर साहब से बात करते हैं हम लोग। भाई साहब आज से नियम चेंज हो गया, PUC चेक करके ही पेट्रोल डीजल भरना है, चेकिंग हो रही है?
10: सर अभी हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है, बाकी जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है वहाँ जब वो बोलता है तो उस गाड़ी को हम नहीं देते हैं जब तक पोल्यूशन ना हो।
8: आप बता रहे हैं जो कैमरे इंस्टॉल्ड हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं?
10: काम करता है, उसमें लगा हुआ पोल्यूशन में। जैसी गाड़ी आती है रोड से वो उसको कैच करती है और उसका नंबर बोलती है। अगर
8: गाड़ियां उससे मिस हो गई, वो
10: जो मिस हो गई तो हमारे पास आएगी नहीं, वो अब उसका हम क्या कह सकते हैं?
8: क्योंकि अभी आपके स्टाफ को भी नहीं पता है कि PUC चेक करना है।
10: आया ही नहीं है ना, कोई सर्कुलर ही नहीं आया।
8: तो
10: हमें बताया जाएगा तभी हम कर सकते हैं ना, ये अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते कुछ भी।
8: ये नाम है आपका सर?
10: दिनेश कुमार।
8: दिनेश कुमार जी, तो ये कह रहे हैं कि सर्कुलर नहीं आया है। सरकारी तंत्र के हिसाब से आज से दिल्ली में कम से कम जो 500 पेट्रोल पंप हैं जहां पे कैमरा इंस्टॉल्ड है कि किस गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट है किसका नहीं है, वहां पे पेट्रोल डीजल भरवाने से पहले आपको अपना PUC सर्टिफिकेशन अगर नहीं है तो फ्यूल नहीं मिलेगा। लेकिन ये ग्राउंड जीरो पे हम आपको सिचुएशन दिखा रहे हैं। PUC सर्टिफिकेशन आज भर के लिए इस तरह के कई सारे जो पेट्रोल पंप्स हैं उस पे फ्री आपको PUC सर्टिफिकेशन आज होता हुआ दिखाई देगा। फ्री PUC कैंप, ये जनपद पे भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है जहां पर हम इस वक्त हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि उनको नहीं जानकारी है कि PUC के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। यहां पे देखिए वो सिस्टम बना हुआ है, तो इस छोर से जो गाड़ियां आएंगी ये कैमरा डिटेक्ट करेगा नंबर प्लेट को और अनाउंस करेगा। इसके अंदर एक PA सिस्टम होता है जो अनाउंस करता है कि आपके पास वैलिड PUC है या नहीं है, और फिर जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी होते हैं उस तरह से एक्ट करते हैं। लेकिन वही बता रहे हैं कि अगर सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल उन तक ये सर्कुलर पहुंचा नहीं है। वीडियो सहयोगी मनीष भिधुड़ी के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
2: और अब बात पंजाब की, जहां कांग्रेस पार्टी में हलचल है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले ही पार्टी ने अध्यक्ष बदलने का फैसला कर लिया है। एक दो दिन में इसकी घोषणा की जा सकती है। पंजाब में राजा अमरिंदर वडिंग को बता दिया गया है कि PCC प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और उन्हें अब पद छोड़ना होगा। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश तेज है। आपको बता दें कि विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे हैं, दूसरे विकल्प परगट सिंह हैं। राजा अमरिंदर वडिंग ने 2022 में पंजाब कांग्रेस प्रमुख का पद संभाला था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजा अमरिंदर वडिंग आज दिल्ली आ रहे हैं, वो राहुल गांधी से एक दो दिन के अंदर मुलाकात करेंगे।
11: कब मौसम बदलने और कब किस पार्टी का प्रधान बदलने, ये तो जो पार्टी की हाईकमांड होती है उनके हाथ में होता है। मैंने भी आप जैसी खबर सुनी, अगर आपके पास कोई और लीड होगी तो मुझे कहेंगे, मुझे इतना ही पता है जितना।
12: सर वो तो कह रहे हैं 48 घंटे में हो जाएगा कुछ ना कुछ।
13: ऐसा मौसम बदल सकते वैसे
11: मौसम तो पता है किसी टाइम कुछ भी हो सकता है।
2: वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले नशे के मुद्दे पर सियासत तेज है। जलंधर में बीजेपी की नशा मुक्त यात्रा के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब को ड्रग्स से मुक्त करने की समय सीमा तय करते वक्त कहा कि अगर बीजेपी को मौका मिला तो 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब से इसे खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि पंजाब में कई मुद्दे हैं लेकिन बीजेपी आगामी चुनाव नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए ड्रग्स के बढ़ते कारोबार, भ्रष्टाचार और आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए। सरकार से रोजगार, मेडिकल कॉलेज और किसानों से जुड़े वादों का हिसाब भी मांगा है।
14: पंजाब में 1 ग्राम ड्रग हम बेचने भी नहीं देंगे और पंजाब से 1 ग्राम ड्रग भारत के दूसरे हिस्से में जाने भी नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी तभी कर सकती है, तब नशा मुक्त पंजाब में विश्वास करने वाली हमारी हर माँ, हर बहन, हर बच्ची, उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे। भारतीय जनता पार्टी ये तभी कर सकती है जब पंजाब का युवा, एक एक युवा एक मौका नरेंद्र मोदी को दो, ये कहकर चट्टा मुक्त अभियान का, पंजाब के अभियान का समर्थन करें।
2: और अब बात चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी की। गांधी जयंती से इंडिया ब्लॉक चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू होगा। विपक्षी दल 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में सेव डेमोक्रेसी रैलियां करेंगे। 6 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। विपक्ष एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई है। कल दिल्ली में बैठक में 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी जनसभा का ऐलान किया गया। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों और आंदोलन पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सेव डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सेव द फैमिली मार्च बताया।
13: हमने ये प्रोग्राम दिया है देश के लोगों को और युवाओं को और इंडिया गठबंधन के लोगों को, उसके अलावा जो एनजीओस या जो डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं, संविधान के हिफाजत के लिए जो लोग आगे आते हैं और जो देश के एकता के लिए जो कटिबद्ध है, ऐसे लोग भी इसमें शामिल होकर जो अक्टूबर 2 से लेकर 8 तक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेव डेमोक्रेसी मार्च करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना प्रदर्शन करेंगे और लोगों को अवगत भी कराएंगे कि किस लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो दैट इज ऑन 2nd to 8।
2: और अब बात पश्चिम बंगाल के बीरभूम की, जहां टीएमसी दफ्तर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कुछ युवक हाथ में डंडा लेकर पार्टी कार्यालय में दाखिल हुए और उन्होंने अनुव्रत मंडल को घेर लिया। घटना के दौरान दफ्तर में मौजूद कांच की मेज को मंडल के सामने तोड़ा गया। टूटे हुए कांच के टुकड़े लगने से उन्हें चोट पहुंचने की बात सामने आई है। वहीं डंडा उनकी आंख के पास भी लगा है। आरोपी है कि हमलावरों ने उनके सामने चप्पल लहराई। उन्हें पिछले 15 साल में लोगों पर कथित तौर पर अत्याचार और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जवाब देने के लिए कहा गया। अनुव्रत मंडल कभी बीरभूम में टीएमसी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उनके समर्थक उन्हें टाइगर ऑफ बीरभूम के नाम से संबोधित करते रहे। लंबे समय तक जिले की राजनीति में उनका प्रभाव बेहद मजबूत माना जाता रहा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अनुव्रत मंडल दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और कुछ लोग उनके सामने हंगामा कर रहे हैं।
15: हम लोगों को तो घर से निकालने नहीं देता है। हम देखते हैं, हम लोगों को निकालने नहीं देंगे, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे। हम राहुल जी को, हम खड़गे जी को बोलेंगे। हम और ज्यादा बोलने नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लोकतंत्र वापस आएंगे और डेमोक्रेसी आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करेंगे। ये हमारा वादा है। इसके लिए जान अगर खतरे में जाएगा, वी आर रेडी टू डू इट।
2: और बात क्रिकेट की, भारत ने कल वेस्ट इंडीज पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। इस जीत के महानायक रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने विस्फोटक नाबाद डबल सेंचुरी बनाई है।

0: एक ऐसी पारी जिसने वनडे क्रिकेट का नया इतिहास रच दिया, एक ऐसी पारी जिसने पहाड़ से लक्ष्य को बौना कर दिया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब इंग्लैंड ने भारत के सामने 406 रनों का पहाड़ सरीखा टारगेट दिया था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि दूधिया रोशनी के नीचे शुभमन गिल और रोहित शर्मा की सुपरहिट जोड़ी मुश्किल लक्ष्य को इस तरह आसानी से पार कर लेगी और 39 गेंद रहते टीम इंडिया मैच को अपने नाम कर लेगी।
1: इंडिया रीराइट द रिकॉर्ड बुक्स, दे रजिस्टर देयर हाईएस्ट रन चेस इन ओडीआई क्रिकेट एंड दे मेड अ मॉकरी ऑफ अ 400 प्लस रन चेस।
0: भारत की जीत के सुपर हीरो रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने 133 गेंदों पर 223 रनों की नाबाद पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए गिल ने इस पारी में 8 छक्के और 26 चौके जड़े। गिल के दूसरे छोर से हिटमैन रोहित शर्मा ने भी विस्फोटक साथ निभाया। रोहित शर्मा जब आउट हुए तो 75 गेंदों पर 101 रन अपने नाम कर चुके थे। रोहित ने अपनी शतकीय पारी में 6 छक्के और 10 चौके लगाए। गिल और रोहित ने महज 26 ओवर 2 गेंदों में 255 रन जोड़ दिए। शुभमन गिल ने अपनी आतिशी पारी से कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिल ने सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। गिल ने 117 रन पर दोहरा शतक लगाया। इससे पहले ईशान किशन ने 2022 में 126 गेंदों पर डबल सेंचुरी ठोकी थी। एक कप्तान के रूप में वनडे क्रिकेट में ये सबसे बड़ी पारी है। पहले यह रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम था, जिन्होंने 2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन की पारी खेली थी। रनों का पीछा करते हुए किसी बल्लेबाज का ये सबसे बड़ा स्कोर है। एक से ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले गिल दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा के नाम 3 दोहरा शतक है। जहां तक भारत की बात है तो भारत ने पहली बार 400 या इससे ज्यादा टारगेट को पीछे छोड़ा है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन का स्कोर खड़ा किया था। वेस्टइंडीज से 3 बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली। जॉन कैम्बल ने 68 गेंदों पर 101 रन बनाए। कप्तान शाई होप ने 94 गेंदों पर 104 रन की पारी खेली और आमिर जंगू ने 77 बॉल पर 114 रन बनाए। एक वनडे मैच में 5 शतकीय पारी, ये भी क्रिकेट इतिहास का नया रिकॉर्ड है। भारत ने इस जीत से 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। तीसरा मैच न्यू चंडीगढ़ में 3 अक्टूबर को होगा। आज तक ब्यूरो।
2: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झड़प में 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट को पूरी दुनिया का सलाम। पीएम मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू ने बताया हीरो। दुबई से तेलवीव के प्लेन को क्रैश से बचाया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर की बात। द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर हुई बात। आज से बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण कंट्रोल के लिए सरकार का एक्शन प्लान। निगरानी के लिए 500 पंप्स पर लगेंगे नंबर प्लेट कैप्चर करने वाले स्मार्ट कैमरे। शराब से पहले पंजाब कांग्रेस में उठा पटक। वर्तमान अध्यक्ष राजा अमरिंदर वडिंग को पद से हटाए जाने की चर्चा। बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। रनों के पहाड़ को चकनाचूर कर वेस्ट इंडीज पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक विजय। 406 रन का रिकॉर्ड चेज कर सीरीज में अजय बढ़ा। दुनिया का सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाकर कप्तान गिल ने बनाया कीर्तिमान।

जलगांव में नगर निगम के लंबे समय से लगे कबाड़ बाजार के अतिक्रमण हटाए गए, भारी पुलिस बल तैनात। संगरूर में 23 साल के युवक की मौत मामले परिवार मुख्यमंत्री के घर के आगे किया प्रदर्शन। पटना में दो अलग अलग इलाकों में चेन लूटने का मामला, सीसीटीवी कैद हुई घटना। महाराष्ट्र के लातूर में ऑटो को कट मारने को लेकर बाइक पर जा रहे दो युवकों पर जानलेवा हमला। हैदराबाद में कार ने कई राहगीरों को मारी टक्कर, चालक फरार, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुंबई के साकी नाका में ढांचा गिरने से शख्स की मौत, ढांचा गिरने का खतरनाक वीडियो आया सामने। जोधपुर में आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस, तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया धक्का देने का आरोप। कानपुर में वैध हुक्का बार पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 265 प्रतिष्ठानों की चेकिंग, 25 की गिरफ्तारी, 5 मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पहले बनाया वीडियो, पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने के आरोप। गाजियाबाद के इंद्रापुरम पुलिस की स्नैचिंग के आरोपी से मुठभेड़, आरोपी घायल। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर महंगा, 19 किलो सिलेंडर के दाम 62 रुपए बढ़े। दिल्ली में अब कीमत 2810, सितंबर में हुई थी 9.5 रुपए की बढ़ोतरी। अक्टूबर की शुरुआत में कारोबारियों को झटका, हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमतों में कोई बदलाव नहीं। छोटे कारोबारियों पर बढ़ेगा एलपीजी का खर्च, बड़ी लागत का असर आगे खाने पीने की कीमतों पर पड़ सकता है। पीएम मोदी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट में सूझबूझ और बहादुरी दिखाकर 174 यात्रियों की जान बचाने भारतीय पायलट की तारीफ की। हमले में घायल मचार, फिलहाल सऊदी अरब के एक अस्पताल में भर्ती है, उनकी हालत स्थिर है, भारतीय दूतावास लगातार उनके परिवार के संपर्क में है। मचार की बहादुरी की इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने को पायलट को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। फ्लाई दुबई ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक इसराइल से आने जाने वाली उनकी उड़ानें निलंबित रहेंगी। घटना के बाद इसराइल ने देश में आने वाली उड़ानों के पायलट की सुरक्षा जांच और कड़ी करने का फैसला किया है। यूपी के मिशन 2027 से पहले बीजेपी का संगठन पर फोकस, आज अहम बैठक में बूथ से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक होगी समीक्षा। राज्यसभा एमएलसी चुनाव के बीच संगठनात्मक फेरबदल और नई जिम्मेदारियों पर हो सकता है फैसला, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े चारों से प्रभारियों के साथ बैठक में मंथन करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। मथुरा में शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद आश्रम के दीक्षा कार्यक्रम को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। व्यवस्थाओं में लगे सेवादारों की वेशभूषा में बदलाव किया गया है, इसी के साथ टोकन के माध्यम से होने वाले दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आने के दौरान टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल दफ्तर में मौजूद थे। आरोप है कि बदमाशों ने अनुव्रत मंडल को कुर्सी पर बिठाया, उनके सामने दफ्तर में तोड़फोड़ की, अनुव्रत मंडल पर हमला किया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर झड़प, इलाके में बढ़ा तनाव। घटना केरल यूनिवर्सिटी के पास बॉयज हॉस्टल में बाहर हुई, जबकि यूथ कांग्रेस सीएसी के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकाल रहा था। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने दखल दिया और कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली एनसीआर में आज से ईंधन भराने के लिए वैध पीयूसी जरूरी, सीएक्यूएम ने दिए सख्ती के निर्देश। बैठक में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे उपायों, तैयारियों और विस्तृत समीक्षा की गई। पंजाब कांग्रेस उपचुनाव के कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक राजा वड़िंग ने पद छोड़ने की पेशकश की। नए अध्यक्ष का ऐलान एक या दो दिन में हो सकता है, सूत्रों के मुताबिक विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे है। दूसरे विकल्प के तौर पर परगट सिंह का नाम सामने आया, इनके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम सामने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकों में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल, अब नवंबर में महारैली का किया गया ऐलान। शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार कर कहा, शांति फैलाने के लिए रच रहे हैं साजिश। पंजाब में अमित शाह का चुनावी शंखनाद, जलंधर की रैली में कहा, बीजेपी का मौका मिला तो 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब नशा मुक्त होगा। अमित शाह ने मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पंजाब में नशे और भ्रष्टाचार समेत कई समस्याएं हैं, वादे पूरे नहीं किए गए, सिर्फ विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए।
मोदी सरकार ने तीन बड़े फैसलों पर लगाई मोहर, किसानों के लिए खोला खजाना, रबी की फसल पर बढ़ाया MSP, दिल्ली की ट्रैफिक को दुरुस्त करने का प्लान तैयार। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 3 की कैबिनेट को से मंजूरी, 135 GW रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन क्षमता और 50 GWH बैटरी स्टोरेज का लक्ष्य। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, अंबेडकर फुले की किताब को लेकर शिक्षा मंत्रालय की चिट्ठी पर उठाए सवाल। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्ती, कहा यहां डर आतंक और अत्याचार की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र के भिवंडी में FDA का बड़ा एक्शन, रिहायशी इमारतों में 2 फ्लैट से लाखों का प्रतिबंधित गुटखा जब्त। एंटीलिया केस में सचिन वाजे को बड़ा झटका, जमानत के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट की अस्थायी रोक। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का January 2027 से होगा पुनर्विकास, एयरलाइंस को नवी मुंबई शिफ्ट होने या परिचालन रोकने का विकल्प। कानपुर से हरदोई आगरा तक नकली एंटी रेबीज इंजेक्शन की सप्लाई। इंदौर भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक, पाइपलाइन सीवेज व्यवस्था में लापरवाही का जिक्र। बिजनौर में मामले कहा सुनने के बाद बंगोली युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। सहारनपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में 65 साल के बुजुर्ग को किया गया गिरफ्तार, CCTV के आधार पर हुई पहचान। गीर सोमनाथ में भीषण सड़क हादसा, ST बस में ट्रक के आमने सामने से टक्कर, 2 की मौत, 14 घायल। अमरावती में महिला अस्पताल अग्निकांड पर बड़ा सवाल, CCTV में घटना से पहले स्टाफ नर्स के सोने का दावा। अहमदनगर में पैसों की बारिश का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 92 लाख से ज्यादा नकली नोट बरामद। महाराष्ट्र के बीड में अंबा जोगाई के आवारा कुत्तों के हमले में 6 साल के बच्चे की मौत। अकोला में बिजली के तारों पर चढ़ा शख्स, आधे घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। अरेरा के बथनाहा स्कूल ग्राउंड में जमीन विवाद को लेकर भिड़े छात्र और दावेदार पक्ष। भोपाल में टायर्ड आयस अधिकारी के घर में हत्या, 3 दिन पहले रखा केयर टेकर फरार। गया में युवती के साथ घूम रहे युवक को घेर कर की गई मारपीट, वीडियो वायरल। आनंद के पास लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। डूंगरपुर में पत्नी के घर छोड़ने की बात को लेकर बेटे का माता पिता से विवाद, मां के सिर पर लाठी से वार किया। नागौर में साहूकार ने 16 लाख का कर्ज 60 लाख बनाकर सोना हड़पा, जान से मारने की धमकी। अजमेर में विदेशी महिला पर्यटकों का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मध्यप्रदेश के 3 युवक डिटेन। बस्तर के 8 पूर्व नक्सलियों के पास 10वीं दंडकारण्य जोनल कमेटी के सदस्य भास्कर शामिल। बेतिया में सीएम के सामने बाढ़ पीड़ितों ने जताई नाराजगी, लोगों ने विधायक गायब के लगाए नारे। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी का तटबंध टूटा, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बेगूसराय में 11 करोड़ का दिनकर सीढ़ी घाट गंगा में समाया, निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। सीतापुर में बाढ़ से पीड़ित केशव ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने हाईवे किया जाम, नदी में छोड़ जा रहे पानी को रोकने की करी मांग। सीतापुर में बाढ़ का कहर, शहर के 11 मोहल्ले जलमग्न, हजारों एकड़ फसल बर्बाद। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज, कुशीनगर में NDRF SDRF की तैनाती। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जवानों का राहत बचाव काम तेज, प्रभावित लोगों को राहत केंद्र और सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज में फिर बढ़ने लगा संगम का जलस्तर, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। लखीमपुर खीरी में देखते देखते शारदा नदी में समा गया मां दुर्गा का पूरा मंदिर, वीडियो वायरल। टिहरी गढ़वाल में छाने दर का पहाड़, सड़क पर आया मलबा, वाहनों में लगी लंबी कतार। गुवाहाटी में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड चेज, 2 विकेट खोकर 406 रन का टारगेट को आसानी से हासिल किया। कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 117 गेंदों पर लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। गिल ने बनाया 223 नाबाद रन, गिल की पारी में 26 चौके, 8 छक्के शामिल। शुभमन गिल ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ियां, सीरीज में जड़ी बैक टू बैक सेंचुरी। ओपनिंग विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बनाए 255 रन। रोहित शर्मा ने भी खेली शतकीय पारी, 75 गेंद में नाबाद 101 रन। विराट कोहली ने खेल ली 19 गेंद पर 29 रन की तेज पारी, विराट ने अपनी पारी में जड़े 3 चौके और 1 छक्का। इससे पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते बनाए थे 405 रन। वेस्टइंडीज के लिए कैम्बल, शाय होप और अमीर जंगू ने लगाया शतक, वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप जडेजा और गुरनूर को मिले 2-2 विकेट, सबसे किफायती गेंदबाज रहे कुलदीप यादव। यामी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली का ट्रेलर जारी, एक अनोखे पारिवारिक रहस्य और धमाकेदार एक्शन से भरपूर है फिल्म। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का ट्रेलर लॉन्च, 16 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर ने की पहला गाना रिलीज, सचिन जिगर की है कंपोजिशन। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की हॉरर फिल्म काली खेती की रिलीज डेट का ऐलान, 23 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज।
करण जौहर का ऐलान, 14 अक्टूबर से शुरू हो रहा है कॉफी विद करण का नौवां सीजन। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई, दुबई की फ्लाइट पर मचा कम, विमान ने सऊदी अरब के ऊपर से गुजरते हुए अचानक बदला अपना रास्ता, विमान से भेजा गया इमरजेंसी सिग्नल। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यूएई दौरे से भड़का ईरान, ईरानी विदेश मंत्रालय ने यूएई समेत मध्य पूर्व के दूसरे देशों को दी कड़ी चेतावनी। यूएई और सऊदी अरब के रिश्तों में कम हुई दरार, रिश्तों में आई कड़वाहट के बाद पहली बार यूएई के उपराष्ट्रपति ने किया सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अरब को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान हर संभव तरीके का इस्तेमाल करेगा। रूस ने कलिनिनग्राद को लेकर यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी

लेनिनग्राद को अलग थलग करने की कोशिश हुई तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है रूस। राजधानी कीव पर फिर रूस का बड़ा हमला, रिहायशी इमारतों पर हुए हमले में 2 की मौत, कई घायल होने की खबर। यूक्रेन के प्रति दक्षिण कोरिया ने नरम किए अपने तेवर, कहा जेलेंस्की ने उत्तर कोरिया युद्ध बंदियों के दक्षिण कोरिया ट्रांसफर की जानकारी यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने की नीयत से दी। फ्रांस में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल में छात्र हुए शामिल। नॉर्वे की संसद में जेफरी एपस्टीन के मामले को लेकर शुरू हुई सार्वजनिक सुनवाई, एपस्टीन और नॉर्वे के राजनयिकों और राजनेताओं के संबंध की हो रही है जांच।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: यार लोन भूल गया मैरी।
9: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
10: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल फाइनेंस बैंक
10: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन
11: होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
10: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
12: और भाई कहां गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
15: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट
17: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।

0: परसेंट भी काफी बढ़ गया है। 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ब्रिक्स के 10 पार्टनर देशों से करीब 321.8 अरब डॉलर का सामान खरीदा। इसी दौरान भारत ने करीब 95.7 अरब डॉलर का सामान इन देशों को बेचा, जिससे ब्रिक्स देशों के साथ भारत का ट्रेड डिफिसिट करीब 226.1 अरब डॉलर यानी लगभग 19 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें अकेले चीन के साथ भारत का ट्रेड डिफिसिट 112.2 अरब डॉलर रहा। भारत और चीन के बीच कुल कारोबार भी रिकॉर्ड करीब 155 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोलर इक्विपमेंट और बैटरी जैसे कई सामान के लिए भारत की चीन पर निर्भरता काफी ज्यादा है। यही वजह है कि चीन के साथ बढ़ता कारोबार भारत के लिए फायदे के साथ एक बड़ी चुनौती भी है। बढ़ते ट्रेड डिफिसिट के बीच ब्रिक्स देशों के बीच डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में कारोबार बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। इसका मकसद है देशों के बीच पेमेंट के लिए डॉलर पर पूरी तरह निर्भर न रहना। अगर लोकल करेंसी में कारोबार बढ़ता है तो कारोबारियों के लिए पेमेंट करना आसान हो सकता है और डॉलर के भाव में तेज उतार चढ़ाव का असर भी कुछ कम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर की जगह तुरंत रुपए या दूसरी लोकल करेंसी ले लेंगे। फिलहाल ब्रिक्स देशों के बीच लोकल करेंसी में कारोबार और पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने पर चर्चा और कोशिश जारी है। भारत के लिए दूसरी बड़ी चुनौती सप्लाई चेन की है, यानी जरूरी सामान और उसके कच्चे माल के लिए किसी एक या कुछ गिने चुने देशों पर ज्यादा निर्भरता से जोखिम बना हुआ है। भारत ब्रिक्स के जरिए इस सप्लाई चेन को मजबूत और ज्यादा सुरक्षित बनाने पर भी जोर दे रहा है। खासकर फार्मा, खेती और फूड सिक्योरिटी जैसे सेक्टर में दूसरे ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अगर भारत को अलग अलग देशों से जरूरी सामान और कच्चा माल आसानी से मिल सकेगा तो किसी एक देश में संकट आने पर पूरी सप्लाई पर असर पड़ने का खतरा कम होगा। इसका फायदा आखिर में कारोबार से लेकर आम लोगों तक पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: सो सॉरी
6: आटो हजरातो खवातीन जरा मुआइजा फरमाएं तो खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए। खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए। अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए। हजरात यहाँ अपनी पर गौर फरमाया जाए। हाँ तो अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए और मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए। मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए। झिझकिए मत, खुद को बीवी का गुलाम कीजिए और इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है। गौर फरमाइए, इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है यूसीसी पर तकरार। अगर सुबह, दोपहर, शाम आई लव यू बोल कर करोगे मोहब्बत का इजहार यूसीसी आई मीन आदावर जो है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ग्रुप्स ब्रिक्स का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए भी ब्रिक्स ग्लोबल ट्रेड और दूसरे देशों के साथ कारोबार बढ़ाने का एक बड़ा मंच है, लेकिन ब्रिक्स देशों के साथ बढ़ते कारोबार के बीच एक चिंता की तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल भारत इन देशों से जितना सामान खरीद रहा है उसके मुकाबले बेच कम रहा है, यानी कारोबार बढ़ने के साथ भारत का ट्रेड डिफिसिट

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: नॉर्थ और साउथ की सियासत के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी है।
1: हम द्रविड़ियन से, यहाँ के आर्यन से, हम शिवजी के भक्त है या राम जी के भक्त है, तो राम जी को बीजेपी ने
2: कब्जे कर लिया,
1: चोरी किए तो इट्स अ इमोशन, इट इज एन सेंटिमेंट। तो क्यों हरे हर महादेव क्यों नहीं बोलते, मोदी जी जय श्री राम बोलते, कभी भी देखो बीजेपी वाले कोई भी मंच पे हरे हर महादेव कभी बोला क्या? जय श्री राम ही कहता है, हम हरे हर महादेव बोले तो उन लोगों को पसंद नहीं है। गरीब लोगों का भगवान है शिव जी, अमीर लोगों का भगवान है राम जी, तो बीजेपी तो अमीर पार्टी है।
0: रेवंत रेड्डी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अमीरों के भगवान बता रहे हैं, बीजेपी पर भगवान शिव को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है।
3: रेवंत रेड्डी को भारत के सनातन का इतिहास ही नहीं मालूम है। हमारे मित्रों ने बताया कि वो पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है। रामेश्वरम में कौन स्थापना किया? शिवलिंग की स्थापना, शिव की पूजा प्रभु श्री राम ने की।
4: भगवान को भी आप बांटोगे अमीर और गरीब में? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा और आस्था को आहत किया है।
0: उधर विपक्ष इंडिया ब्लॉक के नेता रेड्डी के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।
5: Whether you love Shiva, Ram, all of them are praiseable gods for us, but in the name of Ram, BJP making votes and playing politics is not acceptable.
6: ये संपत्ति के आधार पर वर्गीकरण तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं वहां शिव और शक्ति की महिमा है। मेरे इलाके में तारा काली ज्यादा पूजी जाती हैं। ये हिंदुस्तान की, हिंदू धर्म की विविधता है।
0: बहरहाल धर्म पर जारी सियासत के बीच रेवंत के इस बयान ने नया सियासी घमासान मचा दिया है। आज तक ब्यूरो।
7: नोटों की गड्डियां, सोने के गहने, जवाहरात, लाखों की कीमत वाली लग्जरी घड़ियां, ये सारी दौलत एक एडीएम के घर से मिली है। देखिए, विजिलेंस की टीम नोटों की गिनती कर रही है। नोटों के बंडल के साथ ये पहली तस्वीर पटना की। ये पटना के एडीएम सप्लाई रविंद्र कुमार दिवाकर का घर है। विजिलेंस की टीम को एडीएम सप्लाई के यहाँ आय से अधिक संपत्ति की खबर लगी तो छापा मारा गया, और छापे के बाद ये दौलत बरामद हुई। 70 लाख कैश, करोड़ों के गहने और महंगी घड़ियां।
8: तलाशी के दौरान अभी तक 70 लाख रुपए कैश बरामद हुए और अभी तलाशी करवाई जा रही है।
7: अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये बेगूसराय की तस्वीरें हैं। ये भी एडीएम का ही घर है। यहाँ छापेमारी के बाद गहने और 9 लाख रुपए का कैश मिला है।
9: 9 लाख से ऊपर जो अभी कार्रवाई चल रही है, और सोने के जेवरात काफी मात्रा में इनके यहाँ तलाशी के क्रम में मिले हैं।
7: एडीएम सप्लाई की पत्नी सब रजिस्ट्रार दफ्तर दानापुर में कार्यरत है। अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। एडीएम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: फीट ऊपर हुई खूनी झड़प में 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट को पूरी दुनिया का सलाम। पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने बताया हीरो। दुबई से तेल अवीव के प्लेन को क्रैश से बचाया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर की बात। द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी हुई बात। आज से बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण कंट्रोल के लिए सरकार का एक्शन प्लान। निगरानी के लिए 500 पंपों पर लगेंगे नंबर प्लेट कैप्चर करने वाले स्मार्ट कैमरे। चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में उठा पटक। वर्तमान अध्यक्ष राजा अमरिंदर वडिंग को पद से हटाए जाने की चर्चा। दिल्ली में आलाकमान से मिलेंगे, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। रनों के पहाड़ को चकनाचूर कर वेस्ट इंडीज पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत। 406 का रिकॉर्ड रन चेज कर सीरीज में अजय भड़त। दुनिया का सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाकर कप्तान गिल ने बनाया कीर्तिमान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अंजलि इस्तवाल मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में एक बार फिर से हाजिर हैं। पहले बता दें कि आगे क्या क्या खास है। आज बात होगी उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 से पहले राज्यसभा की बड़ी लड़ाई की, जिसमें 10वीं सीट को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। हम बताएंगे कि इस सीट पर किसमें कितना है दम। बात होगी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की भी। 100% वाले टैरिफ कानून पास होने के बाद पहली बार दोनों नेताओं की बात हुई है। और आधे घंटे बाद देखिए दुनिया के हीरो कैप्टन मच्छार की जांबाजी की कहानी, जो हम आपको दिखाएंगे 10:30। लेकिन सबसे पहले उस जांबाज पायलट कैप्टन मच्छार को शत शत सलाम, जिन्होंने 9/11 जैसी साजिश को न होने से रोक लिया और वो लहूलुहान हालत में 174 यात्रियों की जान भी उन्होंने बचाई है। अब दुनिया कैप्टन मच्छार की जांबाजी को सल्यूट कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन मच्छार को हीरो बताते हुए सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हें हीरो बताया है। आपको बता दें कि कैप्टन मच्छार जो उस वक्त एक फ्लाई दुबई के प्लेन को मैन कर रहे थे, जिस वक्त उनके को पायलट ने उन पर हमला कर दिया, और उस दौरान उस प्लेन में कई ऐसे लोग मौजूद थे, यात्री थे, जो तेल अवीव की तरफ जा रहे थे। और ये तस्वीर उसी वक्त की है जब उनके ऊपर हमला किया गया, और उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोल दिया कॉकपिट का, जिसकी वजह से कुछ यात्री उनकी मदद के लिए अंदर आ पाए। तो इस पूरे वाक्य पर एक खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10वीं सीट पर सियासी संग्राम तेज है। सीट सिर्फ एक है, लेकिन दांव बड़ा है। और अब मुकाबला सिर्फ वोटों के गणित का नहीं है, बल्कि क्रॉस वोटिंग और सेंधमारी की रणनीति का भी बन गया है। राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों खेमे एक दूसरे के विधायकों पर नजरें गड़ाए हुए हैं, ताकि क्रॉस वोटिंग हो सके। समाजवादी पार्टी का दावा है कि एनडीए के कुछ विधायक उसके संपर्क में हैं और टिकट की गारंटी मिलने पर क्रॉस वोटिंग की तैयारी हो सकती है। विधानसभा की 7 सीटें खाली हैं, अधिकतम 395 वोट पड़ सकते हैं 403 में से, और एक राज्यसभा सीट के लिए करीब 37 वोटों की जरूरत होती है, वो भी पहली वरीयता के। और अखिलेश की पार्टी के पास फिलहाल 2 सीटें जीतने के बाद तीसरी सीट के लिए जरूरी संख्या पूरी नहीं है, उसे 9 अतिरिक्त वोटों का इंतजाम करना ही होगा। राजभर की पार्टी के 2 विधायकों के समर्थन की आस के बीच समाजवादी पार्टी का दावा है कि निषाद पार्टी और अपना दल एस के कुछ विधायक भी उसके संपर्क में हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी बीजेपी के 6 से 7 विधायकों के संपर्क में होने का भी दावा कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि उसके पास 8वीं सीट के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में 10वीं सीट का फैसला अब एक एक विधायक के वोट से तय होने की तस्वीर बन रही है।

0: तो दोनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लखनऊ से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, तीसरी सीट का दावा करती है समाजवादी पार्टी और ये कहती है कि उसके संपर्क में बीजेपी तक के विधायक है। उधर बीजेपी भी पूरी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। आखिर माजरा क्या है, कैसे मुमकिन है ये, क्या कह रही हैं ये पार्टियां?
1: देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ने तीसरा यानी कैंडिडेट उतारने की जो बात कही है वही पूरी कहानी में ट्विस्ट हो गया है। और इसी वजह से, चूंकि अगर 7 और 2 9 अगर एक बीजेपी एक्स्ट्रा उतारती तो भले ही वो अपने जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर इसको पूरी कर सकती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने उतारा है, तीसरा कैंडिडेट उतारने जा रही है, इसका नाम अभी नहीं क्लियर किया है लेकिन कर रही है। तो उसमें ये माना जा रहा है कि जो 9 वोट तकरीबन कम है, एक सीट के लिए 37 चाहिए उस हिसाब से, और जिसमें अगर हम बाने सोए जो राजभर पार्टी के बास अंसारी की सीट रही हो या इससे राय की जो सीट रही हो वो सब भी समाजवादी पार्टी के टच में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अन्य राष्ट्रीय लोकदल की बात कही गई है, अपना दल की बात कही गई है, निषाद पार्टी की बात कही गई, ऐसे जो दल हैं जो सहयोगी दल हैं उनके विधायक भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, ये बात समाजवादी पार्टी लगातार कहती आई। कल एक तस्वीर जो आई भी थी सामने जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, इस बारे में भी काफी चर्चा हुई थी और अखिलेश यादव भी साफ कह रहे हैं कि उनके संपर्क में कई विधायक हैं और कई लोग हैं। तो ये साफ जरूर है कि तीसरी जो 10वीं सीट है वो राज्यसभा की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे तो अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं आइए एक बार सुन लेते हैं।
2: लोकतंत्र में नियत ये होनी चाहिए कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र की व्यवस्था यही है कि जनता से चुन करके आते हैं फिर वो लोग चुनते हैं। पिछली बार जो हार हुई उसके कारण भी आपको पता है। तो हम तो बहुत से लोगों को कह रहे हैं कि पुराना अगर धोलना है तो ये मौका अच्छा है।
0: आशीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। आशीष, तैयारियां तो समाजवादी पार्टी काफी कर रही होगी क्योंकि अखिलेश खुद गठबंधन इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं आए, साथ ही तीसरा जो नाम जो कि आप कह रहे हैं उस सरप्राइज की चर्चा बहुत दिनों से भी हो रही है, तो कॉन्फिडेंस जो उनका नजर आ रहा है उसको देख के लगता है तैयारियां काफी है।
1: बिल्कुल अंजलि, देखिए सबसे बड़ी बात है जो दूसरा कैंडिडेट राज्यसभा के लिए भेजा वह भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था और ये बात अखिलेश यादव कहते भी आए। अब तीसरे कैंडिडेट के लिए क्या वो पीडीए की जो गणित है वो, या पी फॉर जो पंडित बताते हैं वो, और ए फॉर आधी आबादी और अल्पसंख्यक बताते हैं वो, इन तीनों पर दांव लगा सकते हैं अखिलेश यादव। इसको लेकर कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी खुलकर नहीं बोला, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि तीसरा कैंडिडेट जो होगा वह कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा एसेट होगा और इसीलिए वो बीजेपी के सामने लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस बार काफी मुश्किल होने जा रही है। दूसरी तरफ जो उनके विधायक संपर्क में है वो काफी ज्यादा बेचैनी बढ़ा दी गई है बीजेपी की कि आखिर कौन कौन विधायक ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के खेमे में है इस समय। और ऐसा ही नहीं, जो अन्य दल हैं जो सहयोगी दल हैं उनसे अब बीजेपी को सीट शेयरिंग को लेकर बात मजबूती से की जा रही, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सीट शेयरिंग के मामला गड़बड़ाया तो वही विधायक कूदकर दूसरे पाले में चले जाएं। तो इस वजह से भी काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सामने अब इस समय चारों खाने ओपन खुले हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि गणित सिर्फ यही नहीं चल रही, गणित एक और जगह चल रही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10वीं सीट की चुनौती के बीच में बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया। 11 एमएलसी सीटों के लिए बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, इनमें 5 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव आने वाले हैं और इसे यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर बने असंतोष के बीच खास सामाजिक संदेश और डैमेज कंट्रोल की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि खास बात यह है कि बीजेपी ने सिर्फ अपने पुराने पार्टी कैडर पर भरोसा नहीं किया बल्कि शिक्षक संगठनों से जुड़े और दूसरे राजनीतिक दलों से आए चेहरे को भी मौका दिया है जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव माना जाता है। वाराणसी शिक्षक सीट की अगर बात करें तो वहां से बीजेपी ने प्रमोद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया, यानी कि ब्राह्मण चेहरा। जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। इसके बावजूद शिक्षक संगठनों में उनकी अच्छी पकड़ है, इसे देखते हुए पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं गोरखपुर अयोध्या शिक्षक सीट जो होती है उससे ध्रुव कुमार त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। ये भी शिक्षक संगठनों के शर्मा गुट से जुड़े बताए जाते हैं। आगरा शिक्षक सीट पर बीजेपी ने हरिकिशोर तिवारी पर भरोसा जताया है, उनका भी शिक्षक संगठन से जुड़ाव बना रहा है। तो ब्राह्मण कार्ड एक बार हम फिर से यहां देख रहे हैं। एक रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का एक बार फिर से। आशीष, ये जो एमएलसी के सीटों में चुनाव होने वाले हैं इन्हें अहम माना जा रहा था, ऐसे में ये ब्राह्मण कार्ड का जो पैतरा है उसे समझाएं हमें।
1: देखिए अंजलि, जो 11 जो एमएलसी की सीटों पर चुनाव होना है बीजेपी उसमें बहुत फूक के कदम रख रही, क्योंकि आप मानिए अगर ब्राह्मण कार्ड खेला है तो जो स्नातक स्तर की सीटें हैं यानी कि जो स्कूल कॉलेजेस से जुड़ी हुई, जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, उसमें यूजीसी का मुद्दा बहुत अहम था। और ऐसे में अगर स्नातक स्तर पर ब्राह्मण कार्ड खेलकर उन सभी मुद्दों को डिसॉल्व कर सकती है बीजेपी, और यही वजह है कि उन्होंने 5-5 ब्राह्मण कैंडिडेट एमएलसी चुनाव के लिए खड़े किए, कि वही संदेश यूजीसी के जरिए वो यूनिवर्सिटीज में जाएगा, बच्चों में जाएगा, और साथ ही साथ जो मैसेज विपक्ष ने कम्युनिकेट किया है, मिसगाइड किया है, वो कहीं कहीं दूर हो पाएगा। और इसी को साधने के लिए ये कैंडिडेट, हालांकि 2 अदर जाटव और 2 अन्य खड़े किए हैं कैंडिडेट, लेकिन जो 5 की संख्या है ब्राह्मणों की वो जरूर ये दिखाती है कि यूजीसी मामले पर अगर बैकफुट पर बीजेपी थी तो उस दौरान उसने ये तुरुप का इक्का चला है और उसमें ये साफ किया है कि जो स्नातक स्तर की जो ये सीटें हैं जहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज और ये सभी टीचर्स एसोसिएशन जुड़े हुए हैं, क्योंकि वोटर्स भी यही होते हैं इसमें, जो वोटर्स हैं वो भी स्कूल कॉलेज के होंगे, ग्रेजुएट के होंगे, तो वो सभी जब इस बात को जानेंगे समझेंगे तो कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट ये बीजेपी को जाएगा और उसका फायदा भी आने वाले चुनाव में अंजलि मिलेगा। और ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी है बीजेपी की जो इनके जरिए एमएलसी चुनाव के जरिए सामने रखी है।
0: जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब यूपी की विधान परिषद से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की विधानसभा की। एक बड़ी चुनावी खबर पंजाब की, जहां कांग्रेस में हलचल है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले ही पार्टी के अध्यक्ष बदलने का फैसला सामने आया है और 1-2 दिन में इसकी घोषणा भी हो सकती है। पंजाब में राजा अमरिंदर वडिंग को बता दिया गया है कि पीसीसी प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल अब खत्म हो गया है और उन्हें अब पद छोड़ना ही होगा। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस का नए अध्यक्ष की तलाश तेज होती हुई बताई जा रही है। आपको बता दें कि विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे हैं। दूसरे विकल्प परगट सिंह हैं। राजा अमरिंदर वडिंग ने 2022 में पंजाब कांग्रेस प्रमुख का पद संभाला था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राजा अमरिंदर वडिंग आज दिल्ली आ रहे हैं, वो राहुल गांधी से 1-2 दिन के अंदर मुलाकात कर सकते हैं।
3: कब मौसम बदलने कब किस पार्टी का प्रधान बदलने, ये तो जो पार्टी की हाई कमांड होती है उनके हाथ में होता है। मैंने भी आप जैसे ही खबर सुनी, अगर आपके पास कोई और लीड होगी तो मुझे कह दीजिए, मुझे इतना ही पता है जितना।
4: सर वो तो कह रहे हैं 48 घंटे में हो जाएगा कुछ ना कुछ।
3: मौसम बदल सकता है, वैसे मौसम तो आता है, पता है किसी टाइम कुछ भी हो सकता है।
0: और सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी कमलजीत सिंधु का। कुछ ही महीने रह गए हैं इलेक्शंस के लिए और एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि खींचतान शुरू हो गई है, चेंजेस आ रहे हैं। पर सच्ची बात तो कमलजीत ये है कि पंजाब कांग्रेस में हमेशा ही उथल पुथल रही है, खींचतान इन नेताओं के बीच में रही है।
5: देखिए पिछले कुछ दिनों का अंदरूनी बवाल अब बाहर आ चुका है और आपको बता दें पहले भूपेश बघेल थे, उसके बाद अब प्रभारी सचिन पायलट हैं, और उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि एक जनसंपर्क किया गया, प्रधानों से मिला गया और एक वाइडर एक इंट्रोस्पेक्शन भी किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि राजा अमरिंदर वडिंग को बदला जाएगा। और उसी बीच में हमने उनसे बातचीत भी की और आज तक की खबर पर मोहर भी लगाई है उन्होंने, क्योंकि उनका कहना है कि वो पिछले कुछ समय के बाद जब कांग्रेस ने उन्हें बताया वो अब दिल्ली जाएंगे जहां पे ये पूरा प्रोसेस फॉर्मली किया जाएगा। और आपको बता दें 2021 में भी चुनाव से कई महीने पहले इसी तरह का बवाल था, लेकिन उस टाइम जो किरदार थे वो कैप्टन अमरिंदर थे और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई थी, लेकिन उसमें आखिरकार नाम चरणजीत सिंह चन्नी का हुआ। लेकिन क्योंकि इतनी इन फाइटिंग थी, हमने देखा है कि 77 से 2022 के चुनाव में कांग्रेस कुल मिला के 18 सीटों पर आ गई। अब यही कलह एक बार फिर नजर आ रहा है और एक तरह से बोला जा रहा है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है, तो ये कांग्रेस नहीं चाहती और इसी वजह से सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी गई है। और इसके बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि पिछले कुछ समय में आप देख सकते थे कि जब राजा अमरिंदर वड़िंग कहीं जाते थे और या विरोध प्रदर्शन करते थे तो कांग्रेस के तमाम नेता नहीं होते थे, और जहां पे ये तमाम नेता होते थे वहां पे राजा वड़िंग नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं इन फाइटिंग को का नुकसान होगा ये देखते हुए ये बड़ा कदम अब किया जाएगा और अगले 24 घंटे में ये ऐलान हो जाना चाहिए। जैसे आप कह रहे
0: हैं कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार सुन लेते हैं कि खुद राजा वड़िंग क्या कह रहे हैं।
5: सर, आपने इतने टाइम होल्ड किया है फोर्ट और अचानक से बात आ रही है रिप्लेसमेंट की, क्या आपको कम्युनिकेट कर दिया गया है?
6: प्लीज आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग, आई विल ब्रीफ यू आफ्टर सम व्हाइल। थैंक यू
5: सर।
6: नहीं नहीं, आई विल ब्रीफ यू आफ्टर सम व्हाइल, नॉट नाउ, बट थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज मेरे को वॉक करना है।
0: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले नशे के मुद्दे पर भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने नशा मुक्त यात्रा से माहौल बनाया, निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई। गृहमंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए ड्रग्स के बढ़ते कारोबार, भ्रष्टाचार और आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भगवंत मान सरकार से रोजगार, मेडिकल कॉलेज और किसानों से जुड़े वादों का हिसाब भी मांगा है।
7: पंजाब में एक ग्राम ड्रग हम बेचने भी नहीं देंगे और पंजाब से एक ग्राम ड्रग भारत के दूसरे हिस्से में जाने भी नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी तभी कर सकती है तब नशा मुक्त पंजाब में विश्वास करने वाली हमारी हर माँ, हर बहन, हर बच्ची, उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे। भारतीय जनता पार्टी ये तभी कर सकती है जब पंजाब का युवा, एक एक युवा एक मौका नरेंद्र मोदी को दो, ये कहकर चट्टा मुक्त अभियान का, पंजाब के अभियान का समर्थन करें।
0: और पंजाब से वापस आते हैं दिल्ली, जहां इंडिया गठबंधन ने ज्ञानेश कुमार और एसआईआर पर गांधीगिरी का मूड जता दिया है। विपक्षी गठबंधन ने गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देश भर में सेफ डेमोक्रेसी मार्च निकालने का ऐलान किया है। 6 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे। 1 नवंबर को राजधानी दिल्ली में बड़ी जनसभा की भी घोषणा की गई है। दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवालों और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन का रोड मैप तैयार किया गया है। और इस बीच चुनाव आयोग पर एक बार फिर से राहुल गांधी का हमला हुआ है। उन्होंने फॉर्म 6 में गैर कानूनी तरीके से बदलाव का दावा किया है। ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। खुद इलेक्शन कमीशन के आयुक्तों ने ये बात दर्ज कराई है, ये राहुल का कहना है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 6 को लेकर कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश आ चुके हैं। टीसीएस को किसने बदला, किसका आदेश था, ये भी वो सवाल पूछ रहे हैं। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, एक बार फिर से कुछ बातें हैं जिनको लेकर हमलावर हो रहे हैं राहुल गांधी, क्या कह रहे हैं?
8: देखिए, कुल मिला के ये राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 6 है उसको लेके जिस तरीके के खुलासे हुए, अब वो अपने आप में काफी चौंकाने वाले थे। और उसके बाद प्रेस नोट आता है चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमिश्नर जिस तरीके से फॉर्म में ये पूछा गया कि आपके दादा, क्या आपके माता पिता, आपके दादा दादी अगर इस उन्होंने कब चुनाव वोट डाला है इसका भी रिकॉर्ड आप दीजिए, इस तरीके की चेंज को लेके आपत्ति दर्ज कराई थी इलेक्शन कमिश्नर्स ने। उन्होंने कहा था कि अगर फॉर्म 6 में तब्दीली होती है तो ये कानून इसमें तब्दील होना होता है और ये संसद का प्रेरोगेटिव है। इसको लेके जब खुलासे हुए उसके बाद फॉर्म 6 को जो है वापस ले लिया गया है जो तब्दीली की गई थी, और उसके ठीक 24 घंटे बाद राहुल गांधी बड़ा प्रहार कर रहे हैं फॉर्म सिक्स को लेके, कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से फॉर्म सिक्स में बदलाव हुआ,
0: जी मौश में
8: ज्ञानेश कुमार की मनमानी थी इसमें।
0: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी का। और एसआईआर को लेकर और सीईसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, सुनिए।
9: देश के लोगों को और युवाओं को और इंडिया गठबंधन के लोगों को, उसके अलावा जो एनजीओस या जो डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं, संविधान के हिफाजत के लिए जो लोग आगे आते हैं और जो देश के एकता के लिए जो कटिबद्ध है, ऐसे लोग भी इसमें शामिल होकर जो अक्टूबर 2 से लेकर 8 तक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेव डेमोक्रेसी मार्च करेंगे।
10: कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल जी कह रहे थे मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे विश्वास करो। मतलब कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी पर भरोसा नहीं है। ये अलग अलग भ्रम फैला रहे हैं। मित्रों अभी जो बैठक थे उसका नतीजा क्या निकला? इंडी गठबंधन की एक तो शून्य विजन, 100% हताशा और हार का एडवांस बहाना। आने वाले चुनाव के पहले ही भूमिका हार की बना दो।
11: द ऑपोजिशन हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन पुटिंग अक्रॉस टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट इलेक्शंस आर स्टोलन, that Narendra Modi, Amit Shah have destroyed democracy, and there is a new sense of resistance, particularly among young people, that what is going on in India is wrong and needs to be stopped.
12: जब वोट चुरी का बात बिहार में कह गया था राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने, जब वोट चुरी करके बीजेपी 26 में जीता, मध्य प्रदेश में जीता, हरियाणा में जीता, बिहार में जीता, बंगाल में लूट किया पूरा, आपको पता है हम लोगों को लेके आया था इधर में, इलेक्शन कमीशन के पास में गया था। अभी तो खुल्ला खुल्ला हो गया कि भैनिश कुमार चोर है, डाकू है, वोट चोरी किया, ईवीएम मशीन जला दिया, ईवीएम मशीन हाईजैकिंग किया, काउंटिंग रिगिंग किया, क्या नहीं किया है, इसके लिए ही मस्ट रिजाइन इमीडिएटली।
0: तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरने का मामला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अब परमिशन मांग ली है। तो पार्टियां तैयारी कर रही हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था, सब अपने अपने प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक किसी को भी परमिशन हालांकि नहीं दी है। आपको बता दें कि इंडियन यूथ कांग्रेस पार्टी ने 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी है। उधर लेफ्ट और आम आदमी पार्टी ने 2 अक्टूबर को प्रदर्शन करने की परमिशन मांगी है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि नई दिल्ली इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू है, इसलिए वहां पर जमावड़ा नहीं हो सकता लोगों का। अगर कोई भारी भीड़ के साथ वहां पर इकट्ठा होता है तो भीड़ को गैर कानूनी माना जाएगा। तो इजाजत अभी तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली है। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: एक दो, एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर
2: उधर।
3: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
8: जेके मैक्स पेंट्स।
13: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
15: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
14: स्मॉल बैंक?
15: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege rdf, there's nothing small about them.
14: Okay.
15: Ujjivan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार, सर एक दो टूटी थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
7: एकदम
6: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
5: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
4: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
5: इन एसोसिएशन विद सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह। फिट तक सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।

फिर से स्वागत है। अब बात एक ऐसे भारतीय पायलट की जिसकी बहादुरी ने आसमान में मंडरा रही एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इस पायलट ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी सूझबूझ और साहस से 9/11 जैसी साजिश को न सिर्फ अपनी बहादुरी से नाकाम किया बल्कि लहूलुहान हालत में 174 यात्रियों की जान भी बचाई। बात हो रही है कैप्टन स्मिथ मछार की, जिनकी वीरता को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया सलाम कर रही है। दरअसल ये खबर है कि फ्लाई दुबई के विमान को हाईजैक कर जमीन से क्रैश कराने की एक साजिश की जा रही थी जिसे उन्होंने नाकाम कर दिया। इस साजिश को नाकाम करने में विमान के भारतीय पायलट स्मिथ मछार ने अहम भूमिका निभाई। पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्मिथ मछार की बहादुरी की तारीफ करते हुए उन्हें हीरो बताया है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। सीधा आपको लिए चलते हैं इस बड़ी खबर की तरफ। तो पीएम मोदी ने कैप्टन स्मिथ मछार के परिवार से बात की है। न सिर्फ सोशल मीडिया पर पहले उन्होंने स्मिथ मछार की तारीफ की बल्कि अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मिथ मछार के माता पिता से बात की है। कैप्टन स्मिथ मछार के साहस की तारीफ की है। स्मिथ मछार के माता पिता जो कि मुंबई में रहते हैं, जो अब दुबई गए हैं अपने बेटे से मिलने के लिए, उनसे बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी ने और हर संभव मदद का भी भरोसा जताया है और उनके साहस की तारीफ की है। स्मिथ मछार के माता पिता से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत की खबर इस वक्त आ रही है। स्मिथ मछार ने अपनी बहादुरी से 174 यात्रियों की जान बचाई, एक प्लेन को क्रैश होने से बचाया। उनकी बहादुरी की तारीफ सभी दुनिया के सभी बड़े नेता और ये बात मानी जा रही है कि उनकी सूझबूझ की वजह से ही इतने लोगों की जान बच गई। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके माता पिता से भी बातचीत की है।

0: ये कहानी है एक भारतीय पायलट के अदम्य वीरता की, जिसने अपने साहस और सूझबूझ से न सिर्फ 174 विमान यात्रियों की जान बचाई बल्कि एक बड़े हमले को भी टाल दिया। स्मिथ मछार, जिनकी वीरता को दुनिया सलाम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्मिथ की तारीफ में बयान जारी करते हुए उन्हें हीरो बता चुके हैं।
1: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ को नायक बताते हुए एक्स पर लिखा, कैप्टन स्मिथ मछार एक हीरो हैं। बेहद खतरनाक हालत और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया। उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई। भारत को कैप्टन मछार पर गर्व है। हम उनके जल्द ठीक होने, नई ताकत पाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारतीय पायलट की वीरता की तारीफ करने वालों में सबसे आगे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि स्मिथ की बहादुरी से कैसे 174 लोगों की जान बची। नेतन्याहू ने लिखा, भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की असाधारण बहादुरी को मेरा सलाम। चाकू लगने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, विरोध किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और क्रू को हमलावर पर काबू पाने में मदद की, जिससे हवा में होने वाली एक बड़ी दुर्घटना टल गई। उन्होंने 174 लोगों की जान बचाई, जिनमें इजरायली नागरिक और अन्य देशों के लोग शामिल थे। कैप्टन स्मिथ मछार के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना करता हूं। वो एक सच्चे हीरो है। आज तक ब्यूरो।
2: कैप्टन मछार की सूझबूझ और उनकी बहादुरी की प्रशंसा हर जगह से हो रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी भारतीय पायलट स्मिथ मछार की बहादुरी की जमकर तारीफ की। आपको बताते हैं कि वो क्या कहते हैं। सीबीएस इंटरव्यू में उन्होंने एक न्यूज में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पायलट ने, जो कि भारतीय पायलट थे, उनके ऊपर उनके को पायलट ने चाकू से हमला किया, लेकिन गंभीर हमले के बावजूद स्मिथ कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। नेतन्याहू ने कहा कि इस साहस और सूझबूझ की वजह से ही एक बड़ी विमान त्रासदी टल गई। उन्होंने इसे दूसरा 9/11 होने से रोकने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि एक त्रासदी रोकने में कामयाब रहे स्मिथ मछार। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में स्मिथ मछार ने जो किया है उसे किस नजरिए से देखा जा रहा है। प्रणय, आपसे जानना चाहेंगे, पहला तो स्मिथ मछार को लेकर के किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, दूसरा क्या इस तफ्तीश में कोई नए खुलासे भी सामने आए हैं?
3: देखिए अंजलि, अद्भुत साहस और सूझबूझ के नमूने के तौर पर इस घटना को देखा जा रहा है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है स्मिथ मछार के साहस की भी, क्योंकि घायल होने के बावजूद उन्होंने न केवल प्रत्युन्नति यानी जो सूझबूझ है उसका नमूना पेश किया, उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिससे कि जो अन्य नागरिक थे, जो पैसेंजर्स थे, वो ये देख पाए कि कॉकपिट के भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर से किसी भी सूरत में कॉकपिट को नहीं खोला जा सकता है। और उनकी इस सूझबूझ के साथ ही उन्होंने विमान को स्टेबलाइज करने की भी कोशिश की। जो दूसरा पायलट, जो एयर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स हैं, उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, उसको पैसेंजर्स ने वहां पर रोका। उस स्मिथ मछार ने भी जो वहां पर उसके साथ में उसे रोकने की कोशिश की, जिस तरीके से वो एयरक्राफ्ट को संभाल रहे थे, अपने आप को भी संभाल रहे थे, और साथ ही उन्होंने उस हालात को जिस तरीके से संभाला उसको लेकर अब पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, क्योंकि 174 जिंदगियां पैसेंजर्स की उनके हाथ में थी, और अगर वो बच पाई तो उसमें बड़ी भूमिका कैप्टन स्मिथ मछार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके परिवार से बात की है, सऊदी अरब उनका परिवार पहुंच चुका है और उनका इलाज इस समय ताबुक के अस्पताल में चल रहा है, और जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं, रिकवर कर रहे हैं।
2: ये अच्छी खबर है, शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। तो आइए एक बार ये भी सुन लेते हैं कि नेतन्याहू ने क्या कहा है।
4: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day, along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
2: आइए अब आपको बताते हैं कि फ्लाई दुबई के विमान में आखिर हुआ क्या था। दरअसल 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस विमान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पायलट पर चाकू से हमला कर दिया गया। मामला फ्लाई दुबई की फ्लाइट का है, जहां आरोप है कि सह पायलट यानी कि को पायलट ने ही पायलट पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद विमान को करीब 30,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाकर 17,000 फीट पर उड़ाया गया। ये सडन ड्रॉप हुआ था और घायल होने के बावजूद पायलट ने हिम्मत दिखाई और हमलावर को पायलट से भिड़ गए। इसके बाद पायलट ने घायल हालत में कॉकपिट का दरवाजा खोला तो यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची हुई थी। यात्रियों ने पायलट की मदद करते हुए आरोपी सह पायलट को पकड़ने में मदद की। इस घटना के बाद हाईजैक अलर्ट जारी किया गया। इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स भेजे और इजरायल ने कुछ समय के लिए अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया। विमान का रास्ता बदला गया और आखिरकार इसे सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। विमान में 174 यात्री सवार थे।
5: My head is...
6: No, you're...
7: Adjust the head with the pillow.
5: My head is painting. It is hurting.
6: Oh. Rama. Yes, the telephone, Shelly. Give me the pillow. Yeah.
5: No sleep. My head is hurting. Yeah.
0: आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर खूनी खेल, कॉकपिट में पायलट पर चाकू से हमला, लहूलुहान पायलट ने दिखाई दिलेरी, विमान पर सवार प्लंबर और डेंटिस्ट ने भी दिखाई बहादुरी, बाल बाल बची 174 लोगों की जान। आसमान में सांस रोक देने वाले ड्रामे की जानिए पूरी कहानी। दुबई से तेल अवीव के लिए उड़े FZ1073 विमान में बुधवार को जो कुछ हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुबई से उड़ने के 2 घंटे बाद विमान अचानक 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से नीचे गिरकर करीब 17,000 फीट पर आ गया। ये किसी तकनीकी गड़बड़ी से नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह थी विमान के भारतीय पायलट स्मिथ मछार पर चाकू से हमला, और हमलावर कोई और नहीं बल्कि सह पायलट था। चाकू के हमले में जख्मी होने के बावजूद पायलट स्मिथ ने गजब की दिलेरी दिखाई। जख्मी हालत में ही सह पायलट से लड़ते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। कॉकपिट का दरवाजा खुला तो विमान यात्री खूनी मंजर देखकर सकते में आ गए। लेकिन विमान यात्रियों के बीच एक और दिलेर भी मौजूद था, वो है ये शख्स, नाम यानिन हायून।
8: बेन पाखद लेबेन इसरदूत तुशात इसरदूत शखयाव लनचह खयाव लामोद बेजे वलनचह एत ज़े।
0: यानिन पेशे से प्लंबर हैं। पायलट स्मिथ के कॉकपिट खोलने पर जब उन्होंने खूनी मंजर देखा तो बगैर कोई पल गंवाए वो फुर्ती से कॉकपिट में घुस गए। हमलावर को पायलट को दबोचकर बाहर की तरफ फेंक दिया। फिर बाकी यात्रियों ने हमलावर को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया।
8: הדלת הייתה כנראה לא נעולה והצלחנו איכשהו לפתוח את הדלת, אני ועוד

0: सो उनके पेरेंट्स से मेरी बात तो हुई नहीं है आफ्टर द इंसिडेंट. दे आई थिंक लेफ्ट आफ्टर द इंसिडेंट.
1: हाँ बिल्कुल. तो पहले से ही नेक स्वभाव था, लोगों की मदद करने वाला स्वभाव था. ऐसा जो उनके दोस्त हैं जो काफ़ी सालों से उनको जानते हैं, डॉक्टर जिनीत शाह उनका कहना है. और यही वो स्वास्तिक हाइट्स बिल्डिंग है जहाँ पर स्मिथ जो है अपने परिवार के साथ रहते थे. कुछ साल पहले ही वो दुबई शिफ्ट हुए थे, लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो इसी सोसाइटी में रहते थे. जिसके बाद जैसे ही कल उनको इस घटना के बारे में पता चला, वो तुरंत सऊदी निकल गए स्मिथ के पास. और जो आखिरी बात डॉक्टर जिनीत की उनके माता पिता से हुई थी, तब उनको पता चला था कि जो स्मिथ है उस पर इलाज चल रहा है और उसको उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है. उनकी हालत क्रिटिकल है, लेकिन भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए. कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक.
2: और एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहेंगे आज तक.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा.
6: हाँ पर वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर.
7: मेरे पास एक आइडिया.
5: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए. रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
8: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. आई हैव
7: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता
8: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है.
6: ओ नादान परिंदे बैठो. मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है. लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है.
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा. तो कौन सी बनानी है?
9: एकदम सॉलिड.
7: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
10: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी.
6: आई लाइक दिस ओनली.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with Signature Finest Cardamom Seeds,
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी में सीटों के बंटवारे की लड़ाई अब इस मुकाम तक पहुंच गई है कि कांग्रेस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। यूपी में कांग्रेस के प्रभारी ने नई लाइन भी खींच ली है।
1: सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
2: 150 प्लस या 150 माइनस?
1: प्लस।
2: 150 प्लस
1: जी।
0: राजेंद्र पाल गौतम जो कुछ और जिस अंदाज में कह रहे हैं उस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तलखी पहले ही हद पार करती रही है। याद कीजिए, थोड़े दिन पहले की बात है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो मुस्लिम चेहरों की टक्कर हुई थी।
3: नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता।
4: अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए।
0: सीट बंटवारे और गठबंधन पर तनातनी के बीच ही अखिलेश रायबरेली पहुंचे थे। वहां उन्होंने रथ यात्रा की और रायबरेली में अपनी ताकत भी दिखाई। रायबरेली यानी वो सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अखिलेश की इस यात्रा पर भी दोनों पार्टी की तनातनी सामने आई थी। और अब इस बीच यूपी में कांग्रेस के प्रभारी का नया बयान आया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। तो अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सो सॉरी।
8: आटो हजरातो खवातीन, जरा मुआइजा फरमाए तो खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए। खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए। हजरात, यहाँ अपनी पर गौर फरमाया जाए। हाँ, तो अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए, और मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए। मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए। झिझकिए मत, खुद को बीबी का गुलाम कीजिए, और इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है। और फरमाइए, इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है यूसीसी पर तकरार। अगर सुबह दोपहर शाम आई लव यू बोलकर करोगे मोहब्बत का इजहार, यूसीसी आई मीन आदावर जो है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अब 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट के परिजनों से पीएम मोदी ने की बात। ट्रंप ने कहा हीरो। नेतन्याहू बोले ना होते मच्छर तो फिर 9/11 हो जाता, क्रैश से बचाया।
1: प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर की बात। द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भी हुई बात।
0: आज से बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण कंट्रोल के लिए सरकार का एक्शन प्लान। निगरानी के लिए 500 पंपों पर लगेंगे नंबर प्लेट, कैप्चर करने वाले स्मार्ट कैमरे।
1: चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में उठा पटक। वर्तमान अध्यक्ष राजा अमरिंदर वडिंग को पद से हटाए जाने की चर्चा। दिल्ली में आलाकमान से मिलेंगे, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव।
0: रनों के पहाड़ को चकनाचूर कर वेस्ट इंडीज पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक विजय। 406 का रिकॉर्ड, रन चेज कर सीरीज में अजय बढ़त। दुनिया का सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाकर कप्तान गिल ने बनाया कीर्तिमान।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। और रुक करते हैं इस वक्त शतक आज तक।

0: सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट को हाईजैक की कोशिश से बचाने वाले भारतीय कप्तान की पत्नी और माता पिता से बात की है और जमकर तारीफ भी की है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर भी स्मित मच्छार की तारीफ की थी। हीरो बताते हुए कहा था कि भारत को उन पर गर्व है। राष्ट्रपति ने भी पायलट की सूझबूझ और अदम्य साहस की तारीफ की, ट्वीट कर जल्द ठीक होने की कामना भी की। भारतीय खिलाड़ी भी पायलट के कारनामे के हुए मुरीद, शिखर धवन और सहवाग ने ट्वीट कर प्रशंसा करते हुए जल्द ठीक होने की कामना की है। हमले में घायल पायलट फिलहाल सऊदी अरब के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है। भारतीय दूतावास लगातार उनके परिवार के संपर्क में है। मंचार की बहादुरी की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि वो हीरो हैं, जबकि नेतन्याहू ने उन्हें सच्चा नायक कहा। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने को पायलट को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। फ्लाई दुबई ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक इसराइल से आने जाने वाली उसकी उड़ानें निलंबित रहेंगी। घटना के बाद इसराइल ने देश में आने वाली उड़ानों के पायलटों की सुरक्षा जांच और कड़ी करने का भी फैसला किया है।
1: त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर महंगा, 19 किलो सिलेंडर के दाम 62 रुपए बढ़े। ग्लीमअप कीमत 2810 सितंबर में 9.5 रुपए की हुई थी बढ़ोतरी। अक्टूबर की शुरुआत में कारोबारियों को बड़ा झटका, हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमतों में कोई बदलाव नहीं। छोटे कारोबारियों पर बढ़ेगा एलपीजी खर्च, बड़ी लागत का असर आगे खाने पीने की कीमतों पर पड़ सकता है। यूपी में मिशन 2027 से पहले बीजेपी का संगठन पर फोकस, आज अहम बैठक में बूथ से लेकर क्षेत्रीय स्तर पर होगी समीक्षा। राज्यसभा एमएलसी चुनाव के बीच संगठनात्मक फेरबदल और नई जिम्मेदारियों पर हो सकता है फैसला। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े चारों सह प्रभारियों के साथ बैठक में मंथन करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। पुलिस सुधारों पर आधारित पुस्तक संघर्ष का विमोचन करेंगे। मथुरा में शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद आश्रम में दीक्षा कार्यक्रम अनिश्चितकाल के लिए किया बंद। व्यवस्थाओं में लगे सेवादारों की वेशभूषा में किया गया बदलाव, इसी के साथ टोकन के माध्यम से होने वाले दर्शन भी अनिश्चितकाल के लिए बंद।
0: पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई है। घटना के दौरान टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल भी दफ्तर में मौजूद थे। आरोप है कि बदमाशों ने अनुव्रत मंडल को कुर्सी पर बैठाया और उनके सामने ही दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान अनुव्रत मंडल पर भी हमला हुआ। तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर झड़प, इलाके में बड़ा तनाव। घटना केरल यूनिवर्सिटी के पास बॉयज हॉस्टल के बाहर हुई, जब यूथ कांग्रेस सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकाल रही थी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने दखल दिया और कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली एनसीआर में आज से ईंधन भराने के लिए वैध पीयूसी जरूरी, सीएक्यूएम ने दिए सख्ती के निर्देश। बैठक में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे उपायों तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। पंजाब कांग्रेस में चुनाव के कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने की है तैयारी। सूत्रों के मुताबिक राजा वडिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। नए अध्यक्ष का ऐलान एक या दो दिन में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर प्रगट सिंह का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नामों पर भी विचार चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई वार्ता, पीएम मोदी ने एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीकों में द्विपक्षीय सहयोग पर हुई बातचीत। मोदी सरकार ने तीन बड़े फैसलों पर लगाई मोहर, किसानों के लिए खोला खजाना, रबी की फसल पर बढ़ाया एमएसपी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 3 को कैबिनेट मंजूरी, 135 जीडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन क्षमता। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, अम्बेडकर फुले की किताबों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की चिट्ठी पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के भिवंडी में एफडीए का बड़ा एक्शन, रिहायशी इमारतों में दो फ्लैट से लाखों का प्रतिबंधित गुटखा जब्त। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे को बड़ा झटका, जमानत के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का जनवरी 2027 से होगा पुनर्विकास, एयरलाइंस को नवी मुंबई शिफ्ट होने या परिचालन रोकने का विकल्प। कानपुर के हरदोई आगरा तक नकली एंटी रेबीज इंजेक्शन की सप्लाई, हरदोई में सैंपल बरामद। इंदौर भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक, पाइपलाइन सीवेज व्यवस्था में लापरवाही का जिक्र।
0: दिल्ली में स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लगाया झाड़ू, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत लगाए गए पौधे, लोगों के साथ मिलकर लगाए उन्होंने झाड़ू। दिल्ली में स्वच्छता अभियान पर लगाए पौधे, लोगों के साथ मिलकर झाड़ू लगाया गया, ये कोशिश थी स्वच्छता अभियान चलाने की। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत एक घंटा एक दिन एक साथ श्रमदान पर कार्यक्रम, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की साफ सफाई। दिल्ली के सफदरजंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाया झाड़ू, लोगों को स्वच्छता का दिया संदेश। बेतिया में मुख्यमंत्री के सामने बाढ़ पीड़ितों ने जताई नाराजगी, लोगों ने विधायक गायब के लगाए नारे, घंटों बाद सुरक्षा में निकले सांसद। गंडक नदी में बहकर आया तेंदुआ, थककर पेड़ पर चढ़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। छपरा में बाढ़ के पानी में ताश के पत्ते की तरह ढहा मकान, तस्वीरें आई सामने। मोतिहारी में बाढ़ का कहर, केसरिया की 4 पंचायतें जलमग्न, हजारों लोग प्रभावित। गोंडा के 23 गांव की 33,000 की आबादी बाढ़ से पीड़ित, घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
1: वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नाव परिचालन पर लगी रोक, लोगों से सतर्क होकर स्नान करने की अपील। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज। कुशीनगर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर। कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जवानों का राहत और बचाव काम तेज, प्रभावित लोगों को राहत केंद्रों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में देखते देखते शारदा नदी में समा गया मां दुर्गा का पूरा मंदिर, वीडियो हुआ वायरल। जलगांव में नगर निगम ने लंबे समय से लगे कबाड़ बाजार के अतिक्रमण हटाए, भारी पुलिस बल तैनात। संगरूर में 23 साल के युवक की मौत, मामले में परिवार ने मुख्यमंत्री के घर के आगे किया प्रदर्शन, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा पर लगाया आरोप। पटना में दो अलग अलग इलाकों में चेन लूटने का मामला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र लातूर में ऑटो को कट मारने को लेकर बाइक पर जा रहे दो युवकों पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हैदराबाद में कार ने कई राहगीरों को मारी टक्कर, चालक फरार, सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
0: असम के सिलचर में मुख्यमंत्री के काफिले के लिए एम्बुलेंस रोके जाने पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जांच के दिए गए आदेश। रायसेन दबंग महिला में स्कूटी चालक युवती को मारे थप्पड़, अज्ञात महिला ने के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज। संत कबीर नगर में चोरी के आरोप में जेल में बंद कैदी की मौत पर जांच तेज, अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। बिजनौर में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से किया हमला, उसके बाद की फायरिंग। सहारनपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 65 साल के बुजुर्ग को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर हुई पहचान।

0: मुंबई के साकी नाका में ढांचा गिरने से शख्स की मौत, ढांचा गिरने का खतरनाक वीडियो सामने आया। जोधपुर में आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस, तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया धक्का देने का आरोप। कानपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 265 प्रतिष्ठानों की चेकिंग, 25 गिरफ्तारी, 5 मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पहले बनाया वीडियो, पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम पुलिस की स्नैचिंग के आरोपी से मुठभेड़, आरोपी घायल।
1: मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प, वीडियो वायरल। जालना में सूखे के बीच प्रशासन के दो बड़े फैसले, चारा बाहर भेजने पर रोक, फसल नुकसान पर मुआवजा जल्द देने का निर्देश। अकोला में बिजली के तारों पर चढ़ा शख्स, आधे घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। अहमदाबाद में दंपति पर ट्रिपल मर्डर का आरोप, 70 वर्षीय महिला का शव सीमेंट से भरे ड्रम में छिपाया। गया में युवती के साथ घूम रहे युवक को घेर कर की गई मारपीट, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। पूर्व बर्धवान में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे हैं। पूर्व बर्धवान में मूर्ति निर्माण के साथ साथ पंडाल बनाने का काम भी जारी है, अंतिम चरण में पंडाल की तैयारियां। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती। भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद।
0: गुवाहाटी में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड चेस, 2 विकेट खोकर 406 रन का टारगेट का आसानी से जीता। कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 117 गेंदों पर लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। गिल ने बनाए 223 नाबाद रन, गिल की पारी में 26 चौके और 8 छक्के शामिल। शुभमन गिल ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ियां, सीरीज में जड़ी बैक टू बैक सेंचुरी। ओपनिंग विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बनाए 255 रन, दोनों बल्लेबाजों ने जड़े शतक। यामी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली का ट्रेलर जारी, एक अनोखे पारिवारिक रहस्य और धमाकेदार एक्शन से भरपूर है ये फिल्म। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का ट्रेलर रिलीज, 16 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर ने का पहला गाना हुआ है रिलीज, सचिन जिगर की है ये कॉम्पोजिशन। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की हॉरर फिल्म काली खेती की रिलीज डेट का ऐलान, 23 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। करण जौहर का ऐलान, 14 अक्टूबर से शुरू हो रहा है कॉफी विद करण का 9वां सीजन, ये होगा शो का आखिरी सीजन। इंस्टा पर पोस्ट किया भावुक वीडियो। रूस ने कैलिनिनग्राद को लेकर यूरोपीय देशों को दी बड़ी चेतावनी, कहा यूरोपीय देशों को यह याद दिलाना जरूरी है कि अगर कैलिनिनग्राद को अलग थलग करने की कोशिश हुई तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर रूस का बड़ा हमला, रिहायशी इमारतों पर कुछ हमले में 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। यूक्रेन के प्रति दक्षिण कोरिया ने नरम किए अपने तेवर, कहा जेलेंस्की ने उत्तर कोरियाई युद्धबंदियों के दक्षिण कोरिया ट्रांसफर की जानकारी यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने की नीयत से दी थी। फ्रांस में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों के हड़ताल में छात्र भी हुए शामिल, बेहतर सुविधा और शिक्षा पर अधिक बजट की मांग को लेकर प्रदर्शन। नॉर्वे की संसद में जेफरी एपस्टीन के मामले को लेकर शुरू हुई सार्वजनिक सुनवाई, एपस्टीन और नॉर्वे के राजनयिकों और राजनेताओं के संबंधों की हो रही है जांच।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएट।
1: और अब बात पंजाब की, जहां कांग्रेस पार्टी में हलचल है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले ही पार्टी ने अध्यक्ष बदलने का फैसला ले लिया है और एक दो दिन में इसकी घोषणा भी की जा सकती है। पंजाब में राजा अमरिंदर वडिंग को बता दिया गया है कि पीसीसी प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो गया और उन्हें अब पद छोड़ना होगा। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे हैं। दूसरे विकल्प परगट सिंह हैं। राजा अमरिंदर वडिंग ने 2022 में पंजाब कांग्रेस प्रमुख का पद संभाला था। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि राजा अमरिंदर वडिंग आज दिल्ली आ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे।
0: हमारी सहयोगी कमलजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, ये बताएं कि जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से किसका नाम सबसे आगे है? दूसरा, राजा अमरिंदर वडिंग की मुलाकात को लेकर कुछ कंफर्म सामने आया है क्या?
3: देखिए, राजा अमरिंदर वडिंग का बदलाव हो रहा है और खास तौर पे उनसे सुबह हमने बातचीत की तो उन्होंने कंफर्म किया कि बता दिया गया है उन्हें कांग्रेस द्वारा, तो वहाँ पे एक कंफर्मेशन ज़रूर है और आज शाम को वो रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, विजय इंद्र सिंगला हैं, वो हिंदू भी हैं, बनिया हैं, खासतौर पर बात करें मालवा रीजन से आते हैं, संगरूर के इलाके से आते हैं जहाँ से भगवंत मान हैं और आम आदमी पार्टी के जो प्रधान हैं अमन अरोड़ा वो भी वहीं के हैं, हरपाल चीमा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो एक बड़ा रीजन है जहां से वो आते हैं। उसके अलावा नाम आ रहा है परगट सिंह का, और आपको बता दें कि पूर्व ओलंपियन रह चुके हैं और खास तौर पे कांग्रेस में साफ सुथरी इमेज है, वो दुआबा इलाके से आते हैं। तो दो नाम जो कि आगे चल रहे हैं, इसके अलावा गुरजीत औजला का नाम चल रहा है, सुखजिंदर रंधावा का नाम चल रहा है, लेकिन ऐसा भी हमें सूत्र बताते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके नाम नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है जो कॉम्पिटिशन है वो ज्यादा विजय इंद्र सिंगला और परगट सिंह के बीच में बताया जा रहा है। अब हम आपको बता दें कि हम जो हाउस नंबर 19 है उसके सामने खड़े हुए हैं और आपको यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा भी नजर आएगा। और खास तौर पे कुछ समय बाद अमरिंदर वड़िंग ने कहा है कि वो मीडिया से बात करेंगे, पर लेकिन सुबह हमारी बातचीत हुई थी तो तब भी एक अंदेशा जरूर लग गया था। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले कुछ समय से पंजाब में जिस तरह से बवाल चल रहा और अंदरूनी कलह चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, एक चीज साफ थी कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, खास तौर पे जब सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया, क्योंकि राजा अमरिंदर वडिंग की ट्यूनिंग भूपेश बघेल के साथ तो बहुत बढ़िया बताई जा रही थी, लेकिन एक अंदरूनी कलह थी जहां पे हमें पता है कि सुखजिंदर रंधावा है, चरणजीत सिंह चन्नी है या फिर बाकी तमाम नेता हैं वो वहां पे नाराज नजर आए। जहां पे ये नेता जाते थे वहां पे राजा अमरिंदर वडिंग नहीं जाते थे और जहां पे वड़िंग होते थे वहां तमाम नेता नहीं जाते थे और इनको लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। और इसी तरह से 2021 में जब 22 के इलेक्शन हो रहे थे तब भी अंदरूनी कलह थी। और
1: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां पर दो साधुओं की हत्या का मामला सामने आ रहा है। कुछ देर पहले ये हत्या की गई है, जहां पर दो साधुओं की हत्या का मामला शाहजहांपुर में, दिल जलाने वाली वारदात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, उनके शव भी जला दिए गए हत्या के बाद।
0: आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक मंदिर परिसर के पास हुआ है, जहां पर जिस शख्स पर आरोप लग रहे हैं उसने हत्या करने के बाद कहा जा रहा है कि शव को जलाने की भी कोशिश की है। दो साधुओं की बेरहमी से हत्या की है और हत्यारे ने वारदात को छुपाने के लिए साधुओं के शवों को जला भी दिया। मंदिर परिसर के पास से जले हुए शवों के अवशेष मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
1: आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, क्या डिटेल्स मिल रही है, क्या वजह रही हत्या की?
4: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें शाहजहांपुर का ये जो दिल दहलाने वाली घटना, इसमें खुदागंज थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर दो साधुओं को पहले बेरहमी से पिटाई के बाद हत्या कर दी गई है और साथ ही साथ हत्या वारदात को छिपाने के लिए साधुओं के शव को जला भी दिया गया। और इस पूरे मामले को लेकर मंदिर परिसर के पास जले हुए शवों के जब अवशेष मिलते हैं तो उस दौरान पूरे इलाके में तनावपूर्ण बन जाता है। हालांकि कहा जाता है कि इसमें शाहजहांपुर के क्षेत्र में जो ये मंदिर है इसी की देखभाल ये करते थे और जब बाबा गोपाल दास और बाबा बिहारी दास और अज्ञात ये हमलावर हैं जिन्होंने निर्मम हत्या की है। और साथ ही साथ जब उनके जलाने की बात आई जिससे आसपास के गांवों में भी पूरी तरीके से तनाव का माहौल हो गया है और इसको लेकर जो संदिग्ध हैं उनकी अब जांच भी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या कुछ ऐसा विवाद भी हो सकता है जो कि इसकी हत्या की वजह बनी है। पुलिस हर एंगल को जांच की कोशिश कर रही है, तफ्तीश में जुटी है और इस पूरे मामले को लेकर जो व्यवस्था है उसको सुधारने की बात कही गई है। वहीं पुलिस ने एक सुमित नाम का व्यक्ति है जिसको हिरासत में भी लिया है और जो जहां पर मंदिर में कहीं ना कहीं जगह बनाने की जो बात कही जाती थी वो उसके द्वारा किया गया है। और अब ऐसे इस मामले को लेकर पुलिस आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
1: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है सुनिए।
5: देखिए, आज थाना खुदागंज के ग्राम सूथा से सवेरे करीब 7 बजे पुलिस को एक सूचना मिली थी कि गांव के ही बाहर एक देवस्थान बना हुआ है, यहां पे दो सन्यासी हैं, उन लोग दोनों के जो शरीर है वो जले हुए अवस्था मिले। तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस, सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची है। यहाँ गांव में जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है इसमें एक शिव कुमार जी हैं, गांव के ही रहने वाले हैं तथा इस देवस्थान के संरक्षक भी हैं। उन्होंने पुलिस को एक लिखित तहरीरी सूचना दी है कि गांव का ही एक लड़का सुमित, जो कि कुछ दिन पूर्व ही माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त करके जेल के बाहर आया है, वो विगत कुछ दिनों से इस देवस्थान पर दोनों सन्यासियों के साथ में उठने बैठने लगा था तथा गाँव वालों ने प्रारंभिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि दोनों सन्यासियों को ही उसने कुछ एक बार कहा था कि आप दोनों लोग यहाँ से हट जाइए और मैं यहाँ पर अब रहने वाला हूँ, मेरा ही एकाधिकार होगा। इसी प्रथम दृष्टया इसी बात को लेकर के कल देर रात में ये घटना कारित की गई है। मौके से सभी भौतिक साक्ष्य संकलन करते हुए जो दोनों जले हुए शव थे उनको घटना का सही समय और सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। थाना पुलिस को जो तहरीरी सूचना मिली थी उसके आधार पे नामजद आरोपी सुमित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
0: फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
8: यार लोन भूल गया। मैरी?
9: It's just a good bank, ना?
10: Ujjivan Small Finance Bank.
8: Small Finance Bank?
10: Small. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
3: There's nothing small about it.
11: Ujjivan, nothing small about us.

0: प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: AU सोच बदलो और बैंक भी।
10: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का।
0: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाती पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: AU
12: सोच बदलो और बैंक भी।
10: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
13: इन एसोसिएशन विद
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
13: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट एक हिंट तो देते।

0: नेपाल में हुई मूसलाधार बारिश का असर अब बिहार में साफ दिखाई दे रहा है। गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। कहीं गांव डूब रहे हैं तो कहीं तटबंध टूटने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। बगहा में गंडक के बढ़ते दबाव के बीच चंपारण तटबंध टूट गया। खैरठवा के पास तटबंध टूटते ही पानी तेजी से गांव की तरफ फैलने लगा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाने को मजबूर हैं। गोपालगंज में भी गंडक ने रौद्र रूप दिखाया है। निचले इलाकों के कई गांव पानी में समा गए हैं। लोग बच्चों, मवेशियों और जरूरी सामान के साथ ऊंची जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी बागमती,
1: सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया। और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया। हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें। साथियों, आज का ये दिन यूपीएससी के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही एक विरासत का भी उत्सव है। ये उत्सव उस आकांक्षा का है जिसे हर वर्ष लाखों लाख युवा उसे जीते हैं। ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। और ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर अभी यहीं स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक छोटी सी गैलरी बनाई है, उसका निरीक्षण कर रहा था और आप सबसे भी कहूंगा कि 10-15 मिनट लगेंगे, जरूर देखें। और मैंने उसमें 75 साल के कार्यक्रम का भी एक चित्र देखा। जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ दिखते हैं, आज 90 साल की आयु में हमारे बीच मौजूद है। साथियों, से कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा को विश्वास में बदला है, समयाकुल परिवर्तन किए हैं और संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। जब मैं गैलरी देख रहा था तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रक्रिया से जब गुजरे थे, उसकी सारी जानकारी वहां है। और मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करूंगा। आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक राष्ट्र को चलाने की चुनौती भी थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस स्टील फ्रेम की जरूरत थी, वो स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया। साथियों, 1926 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी, तब उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। उस समय व्यवस्था का फोकस और उसका समर्पण दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रति था। देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के सपने और भारत की व्यवस्था, ये फोकस में रहे, केंद्र में रहे। बीते दशकों में यूपीएससी ने अपने दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाया है और इस बारे में यहां मन से भी काफी बातें हुई हैं, और इसलिए मैं न उसका पुनरावर्तन करना चाहता हूं, न ही उसके विस्तार में जाना चाहता हूं। इतिहास से आगे बढ़कर अब हमारे सामने भारत का भविष्य इंतजार कर रहा है। 21वीं सदी का एक क्वार्टर, 25 साल बीत चुके हैं। आने वाले 20-25 साल भारत के लिए, भारत के हर व्यक्ति, भारत की हर संस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए आज मैं अपनी चर्चा का फोकस इसी दिशा में रखूंगा। साथियों, विकसित भारत के लिए अब जिस तरह की गवर्नेंस देश को चाहिए, उसका बहुत बड़ा माध्यम यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोग भी हैं। आज आप जिन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं, वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़ी है बेनिफिशियरी भी होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। पहली कसौटी है नेशन फर्स्ट और दूसरी कसौटी है सिटीजन फर्स्ट। यही दो कसौटियां हैं जिन पर हर सिलेक्शन को कसा जाना है और जब इस भाव से कैंडिडेट को परखा जाएगा, इस भाव से भरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। साथियों 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। भारत आज के मुकाबले और अधिक अर्बन होगा, गांव और शहरों का अंतर कम होगा और हमारे नागरिकों खासकर युवाओं के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आज ही इसका बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सवाल सिर्फ सर्विस डिलीवरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पब्लिक सर्विसेज आज की इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया की गति उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, उस हिसाब से चल पा रहे हैं क्या। आज नागरिक किसी सर्विस के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना चाहता। जब एआई हजारों डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में प्रोसेस कर सकता है, जब सरकार के पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध है, तो नागरिक तेजी से समाधान चाहता है। यही बदलती हुई सोच हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है। क्योंकि जब मोटिवेशन सही होगा तो बदलती जन आकांक्षाओं के साथ चलना भी आसान होगा, ढलना भी आसान होगा। साथियों, आप में से काफी लोग इस बात से परिचित है कि मैं जब ट्रेनी ऑफिसर से मिलता हूं तो उनसे कहता हूं कि वे लिख कर रखे प्रारंभ में ही और खुद लिख करके उसको रखे, वे सिविल सर्विस में क्यों आए हैं। क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नई चुनौतियां आती हैं, ऐसे समय में वही छोटा सा नोट उन्हें उनके मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। यह उनके लिए एक सेल्फ अप्राइजल टूल भी बन जाता है। यूपीएससी और राज्यों के आयोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने अतीत का वो दौर देखा है जब माना जाता था कि सरकार ही माई बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। यानी देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मूल सिद्धांत है प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस। प्रो पीपल यानी सरकार की

नागरिक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करना, प्रोएक्टिव यानी जब समस्या आए तब एक्शन के बजाय समस्या को पहले ही एंटीसिपेट करके उसके समाधान तैयार हो। गुड गवर्नेंस यानी सरकार का अभाव भी ना हो, दबाव भी ना हो और अनावश्यक प्रभाव भी ना हो। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जगह हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इसी स्पिरिट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो देश की आवश्यकताओं को समझे, जो कानून का पालन कराए, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है। साथियों, आज जिस तेजी से युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो हम सब देख रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें नई तरह की चुनौतियां समाज के सामने आने जा रही है। एआई को लेकर इस समय विश्व में जो चर्चा छिड़ी हुई है उससे हम सब परिचित हैं। ऐसे में हमारे सिविल सर्वेंट्स भी अलग तरह की परिस्थितियों में काम करेंगे। इंफॉर्मेशन वॉर की स्थिति होगी, डीपफेक्स होंगे, अल्गोरिथमिक बायस के चैलेंज होंगे, क्लाइमेट जस्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे। ऐसे में हमें चयन प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूरदृष्टि को टेस्ट करने का भी, उस प्रयासों को भी प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हम सभी जानते हैं देश आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से चल रहा है। ऐसे समय में हमारी परीक्षा कराने वाली एजेंसीज को उन रिफॉर्म्स पर तेजी से काम करना होगा जो आज के समय की मांग है। जैसे परीक्षाओं को कराने में लगने वाला समय एक बहुत अहम विषय है। परीक्षा को हमें केवल एक इवेंट की तरह नहीं देखना है, ये इवेंट से कहीं अधिक युवाओं के भविष्य, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं में कुछ महीनों की देरी युवाओं के लिए बड़ा संकट बन सकती है। कोचिंग की फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ये बहुत बड़ा बोझ उस परिवार पर होता है। इसलिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम टाइम सर्टेनिटी के सिद्धांत को अपनाए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यूपीएससी को, देश के सभी चयन आयोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बार को लॉक किए बिना हमारी एग्जामिनेशन साइकिल छोटी कैसे हो। वैसे मैं अभी गैलरी में देख रहा था, करीब 100 दिन कम किए हैं, ये तो अब बधाई के पात्र है ही है और मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, यह एक इक्विटी रिफॉर्म भी होगा।

0: साथियों, आप सभी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। पिछले 10 साल में एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, जिसमें देश के सभी सीएस 3 दिन साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। उसी प्रकार से 3 दिन के लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश के सभी डीजीपी इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं। और इन कॉन्फ्रेंस में एक प्रयास होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जाने, समझे, सीखे और उचित लगे तो उन्हें अपने राज्य में लागू करें। मुझे बताया गया है कि यूपीएससी हर वर्ष स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। अब उसको और विस्तार देकर के और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अधिक नए विचारों से भरने के लिए भी उसके रूप रंग व्यवस्था को कैसे नया आयाम दिया जाए, उस पर जरूर आप सोचते होंगे। ऐसे प्रयासों से अलग अलग संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा होती है, लेकिन साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी ये कैसे बढ़े, इस पर भी फोकस चर्चा होनी चाहिए। क्रॉस लर्निंग के इस प्रयास से यूपीएससी को भी फायदा होगा और हर राज्य के चुनाव चयन आयोग को भी जरूर लाभ होगा। हमें प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल के मानकों को स्टैंडर्डाइज करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इससे युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, एक और विषय यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है। ये काम भी निरंतर होते रहना चाहिए। मिशन कर्मयोगी के तहत जो आईगॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसका उपयोग हमारी इन अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए भी, हमारे साथ काम करने वाली टीम के कैपेबिलिटी के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपका काम युवा शक्ति के भविष्य से जुड़ा है, यानी युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का जो मिशन है, आप उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और बीते वर्षों में आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई भी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ था, तब बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का लाभ अधिक मिलता था, लेकिन आज गांवों और कस्बों के युवा भी पब्लिक सर्विस में पहुंच रहे हैं। हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है। और यूपीएससी के पूरे इतिहास में 4 विमेन चेयरपर्सन रही है, पूरे यूपीएससी के इतिहास में। ताली बजने का समय अब आएगा। पूरे यूपीएससी की हिस्ट्री में 4, उसमें से 3 2014 के बाद बनी है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि देश में अवसरों का दायरा कितना बढ़ा है। साथियों, 1976 में जब यूपीएससी को 50 साल हुए थे, उस समय की तुलना में परीक्षा देने वालों की संख्या में 45 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है, 45 टाइम। यानी आज हमारे सामने टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि जब इतना बड़ा टैलेंट पूल हो, पूरी दुनिया जिस पर ईर्ष्या करती है, जब सामने इतना बड़ा टैलेंट पूल है, तो आप सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ग्राउंड लेवल पर लोग उसी को गवर्नमेंट मानेंगे। इसलिए आप सभी पर सही व्यक्ति के चयन का बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, यूपीएससी ने अपने पहले 100 साल में अपनी विश्वसनीयता को निरंतर मजबूत किया है। अभी संस्था को अपनी दूसरी सदी में नई संभावनाओं, नई चुनौतियों के हिसाब से विश्वसनीयता को और समृद्ध करना है। जो वैल्यूज आज तक हमारी ताकत रही है, उन्हें बनाए रखते हुए भविष्य के अनुरूप अपग्रेड भी करना है। यूपीएससी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, योग्यता, गोपनीयता और निष्पक्ष प्रक्रिया, यही उसकी पहचान है। ये मूल्य हमेशा बने रहना चाहिए। इसी आग्रह के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
3: AU current account ke saath milta hai free UPI QR overdraft facility aur ek hi app se bank ke sare kaam. AU
4: soch badlo aur bank bhi.
1: In association with
2: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
1: Vimal, Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.

0: नॉर्थ और साउथ की सियासत के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी है।
1: हम द्रविड़ियंस है, यहाँ के आर्यंस है, हम शिवजी के भक्त है या राम जी के भक्त है। तो राम जी को बीजेपी ने
2: कब्जे कर लिया,
1: चोरी किए। तो इट्स अ इमोशन, इट इज एन सेंटिमेंट। तो क्यों हरे हर महादेव क्यों नहीं बोलते, मोदी जी जय श्री राम बोलते। कभी भी देखो बीजेपी वाले कोई भी मंच पे हरे हर महादेव कभी बोला क्या? जय श्री राम ही कहता है। हम हरे हर महादेव बोले तो उन लोगों को पसंद नहीं है। गरीब लोगों का भगवान है शिव जी, अमीर लोगों का भगवान है राम जी। तो बीजेपी तो अमीर पार्टी है।
0: रेवंत रेड्डी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अमीरों के भगवान बता रहे हैं, बीजेपी पर भगवान शिव को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है।
3: रेवंत रेड्डी को भारत के सनातन का इतिहास ही नहीं मालूम है। हमारे मित्रों ने बताया कि वो पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है। रामेश्वरम में कौन स्थापना किया शिव, शिवलिंग की स्थापना, शिव की पूजा प्रभु श्री राम ने की।
4: भगवान को भी आप बांटोगे अमीर और गरीब में? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा और आस्था को आहत किया है।
0: उधर विपक्ष इंडिया ब्लॉक के नेता रेड्डी के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।
5: Whether you love Shiva, Ram, all of them are praiseable gods for us, but in the name of Ram, BJP making votes and playing politics is not acceptable.
6: ये संपत्ति के आधार पर वर्गीकरण तो मैं नहीं जानता।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एक हिंदुस्तानी की वजह से टली 9/11 जैसी घटना, भारतीय पायलट की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा स्मिथ पर गर्व है। जख्मी होकर भी 174 यात्रियों की बचाई जान, ट्रंप नेतन्याहू समेत दुनिया का सलाम। 100 साल पूरे होने पर यूपीएससी को पीएम मोदी का मंत्र, चरणबद्ध रिफॉर्म के साथ हो प्रतियोगी परीक्षाएं, सिलेक्शन प्रोसेस का समय घटाने पर गंभीरता से सोच चयन आयोग, 2014 के बाद अवसर बढ़े हैं। यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, दो साधुओं की हत्या के बाद इलाके में तनाव, मर्डर के बाद शव को जलाया गया, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया।

चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में उठापटक, वर्तमान अध्यक्ष राजा अमरिंदर वडिंग को पद से हटाए जाने की चर्चा। दिल्ली में आलाकमान से मिलेंगे, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। अब से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण कंट्रोल के लिए सरकार का एक्शन प्लान। निगरानी के लिए 500 पंपों पर लगेंगे नंबर प्लेट कैप्चर करने वाले स्मार्ट कैमरे।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली खबर से। भारतीय पायलट स्मिथ मछार को आज दुनिया सलाम कर रही है। यूपीएससी के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्मिथ मछार को हीरो बताते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि स्मिथ मछार के साहस पर दुनिया को गर्व है। पीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने स्मिथ के माता पिता और बहन से बात की। उन्होंने कहा कि देशवासी स्मिथ के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूरी दुनिया स्मिथ पर गर्व कर रही है।
1: कल जो एक घटना घटी, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
0: तो पीएम मोदी और ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक सबके हीरो बन गए हैं स्मिथ मछार, जो फ्लाई दुबई के उस विमान के पायलट थे जिसे अगवा कर क्रैश कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन को पायलट के कुल्हाड़ी से हमले में लहूलुहान होने के बावजूद मछार ने साजिश को नाकाम कर दिया। स्मिथ मछार की जाबाजी की कहानी बता रहे हैं प्रणय उपाध्याय।
2: पश्चिम एशिया के आसमान में एक बड़े विमान हादसे और संभावित आतंकी हमले को टालने में एक भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की भूमिका की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें हीरो करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले दिल से उनकी तारीफ करने के साथ साथ उनके परिवार से भी बात की है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके कारनामे की जमकर प्रशंसा की है। कैप्टन स्मिथ मछार इस समय सऊदी अरब के ताबुक के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया उनके बयान का इंतजार कर रही है कि आखिर फ्लाई दुबई की उस फ्लाइट में, जो कि दुबई से तेल अवीव के रास्ते में जा रही थी, आखिर उसमें क्या हुआ था, कैसे उनके को पायलट ने उन पर हमला किया और किस तरीके से उन्होंने 174 से ज्यादा यात्रियों की जिंदगी को बचाया।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन शब्दों में स्मिथ मछार की तारीफ की है वो भी आपको दिखाते हैं।
3: Was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: और अब आपको डिटेल से बताते हैं कि फ्लाई दुबई के विमान में कल हुआ क्या था। बुधवार सुबह 6:05 पर दुबई से तेल अवीव यह विमान रवाना हुआ था। को पायलट ने पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। विमान को हाईजैक कर जमीन पर क्रैश कराने की साजिश थी। अब कहां पर क्रैश कराता यह अब पता चलेगा। विमान अचानक 30,000 फीट की ऊंचाई से करीब 17,000 फीट पर आ गया। इतनी तेजी के साथ नीचे आ रहा था। विमान से पहले इमरजेंसी का 7700 कोड भेजा गया। और कुछ सेकंड बाद विमान से हाईजैक का 7500 कोड भेजा गया। भारतीय पायलट स्मित पछार विमान के पायलट थे, जख्मी हुए वो, लेकिन जख्मी होने के बावजूद स्मित पछार ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। अब जब जैसे ही दरवाजा खोला, विमान में सवार मौजूद कुछ यात्रियों ने हमलावर को, को पायलट को काबू किया और बुधवार सुबह 9:45 पर सऊदी अरब के ताबू के एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई, जिसमें बहुत अहम किरदार था यात्रियों का।
4: फ्लाई दुबई का FZ1073 दुबई से इजराइल के तेल अवीव के लिए उड़ान भरता है, लेकिन कॉकपिट के अंदर को पायलट अपने ही पायलट के ऊपर हमला कर देता है। फ्लाई दुबई ने अब इस बात का कंफर्मेशन कर दिया है कि यह घटना असल में दोनों पायलट्स के बीच ऑल्टरकेशन की वजह से हुआ है और इस पे आगे जांच चल रही है। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें बाहर आई हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से को पायलट ने संभवतः किसी धारदार हथियार से अपने पायलट पर हमला किया और कैप्टन स्मिथ ने इजरायली एजेंसियों के तहत अपनी आखिरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके वीरता दिखाते हुए उन्होंने जो कॉकपिट का कोड होता है उसको दबाया और दरवाजा खोल दिया, जिसकी वजह से दुनिया को एक बड़ी त्रासदी से बचाया गया, इसराइल को एक बड़ी त्रासदी से बचाया गया। इसराइली एजेंसी कैप्टन स्मिथ की इस वीरता के लिए उनको सलाम कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू दोनों ने उनकी वीरता की तारीफ की है। फिलहाल कैप्टन स्मिथ का इलाज चल रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की एक एक पल की सच्चाई तब सामने आएगी जब CVR डेटा यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डेटा डाउनलोड और डिकोड कर लिया जाएगा, तब पता चलेगा कि आखिरकार को पायलट ने अपने कप्तान कैप्टन स्मिथ पर हमला क्यों किया।
0: स्मिथ मछार की बहादुरी से 150 से ज्यादा इजरायलियों की जान बच गई। इसराइल के लोग स्मिथ की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इजरायली इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर स्मिथ की तारीफ से वीडियो डाल रहे हैं।
5: I want to take this opportunity and thank the Indian pilot. What a hero. Without him, it could end up in a whole different way. He fought this terrorist and he fought until the last minute. And according to the Israelis, before he collapsed, he opened the door of the cockpit. Now he is in critical condition. Just imagine what would happen if he would not open the door. I don't even want to think about it. So on behalf of the Jewish people and on behalf of the state of Israel, I want to say thank you, India.
6: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the Fly Dubai flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. And despite being severely wounded and covered in blood, he kept fighting. With what Israeli officials describes as some of his last remaining strength, he managed to release the cockpit door, allowing passengers and crew to rush inside, overpower the attacker, and ultimately regain control of the aircraft. More than 170 people made it home because of Smith. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smith is right now dealing with the wounds caused by the terrorist and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट मुंबई से। मुंबई में हो रही स्मित मछार की ग्रैंड वेलकम की तैयारी। स्मित मछार के माता पिता चेंबूर के स्वास्थ्य हाइट्स में रहते हैं। आज तक संवाददाता दीपेश त्रिपाठी ने स्मित मछार की बिल्डिंग के चेयरमैन और उनके पारिवारिक मित्र से बात की है।
7: हम इस वक्त स्वास्तिक बिल्डिंग में हैं, जहां पर पायलट स्मिथ अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन कुछ सालों से दुबई में रहते थे, लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो यहीं पर रहते थे। हमारे साथ हैं बिल्डिंग के चेयरमैन मकवाना जी और उनके पिता के मित्र लक्ष्मीकांत जोशी जी, हम उन्हीं से जानेंगे। स्मिथ का नेचर कैसा था, आप उसको?
8: स्माइली, एकदम अच्छा, एकदम सीधा, दूसरों को मदद करने वाला। जब कभी देखेगा हाय हेलो करेगा। उसने कहा भाई
9: भाग के आ जाता है हमारे पास, कुछ भी काम बोलो कर देता है, कुछ भी, एकदम नेचर वाइज एकदम बेस्ट।
8: दुबई में ही रहता है,
9: मिसेज भी ऐसी है स्मिथ की, और इनके पिता माँ दोनों एकदम नेचर वाइज सब एकदम।
7: इस हीरोइक एक्ट को आप कैसे देखते हैं?
8: बहुत ही अच्छी बात है, पहले उसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। हमको सबसे ज्यादा खुशी उसकी तबीयत की है, वो तबीयत उसकी ठीक हुई हम लोग खुश, और बाद में उसका गर्व मनाएंगे हम लोग, हम भी उसका सत्कार करेंगे।
0: और 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के नए कानून के बाद पहली टेलीफोनिक बातचीत हुई। बातचीत में भारत अमेरिका ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच और क्या बात हुई बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी।
10: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में नए टैरिफ के ऐलान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से फोन पर बातचीत हुई। ये चौथी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है इस साल में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ट्रेड को लेकर, एनर्जी सेक्टर को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को लेकर और नए टैरिफ्स को लेकर भी बातचीत हुई। हालांकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय लगातार घटनाक्रमों में लगातार होते बदलावों के बीच भी ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल इन चौथी बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल खरीदने और दूसरी चीजों को लेकर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, और जिससे सीधे तौर पर इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा। अब ऐसी बातचीत को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में समन्वय या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ कैसे ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड चीजों को बैलेंस किया जाए, कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर दोनों नेताओं के बीच में ये महत्वपूर्ण बातचीत हुई है।
0: और अब रिपोर्ट यूपी की सियासत की। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर सियासी संग्राम बहुत तेज हो गया। राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों खेमे एक दूसरे के विधायकों पर नजर गड़ाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि एनडीए के कुछ विधायक उसके संपर्क में हैं और टिकट की गारंटी मिलने पर क्रॉस वोटिंग की तैयारी हो सकती है। अब आखिर इस पर एक एक सीट को क्यों फंसा है पेच, बता रहे हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव।
11: राज्यसभा का चुनाव अब केवल एक सियासी तौर पर मतदान नहीं रहा, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक का एक ऐसा रण बन गया है जहां हर एक विधायक का वोट बेहद कीमती है, फिर चाहे दल वो भारतीय जनता पार्टी का हो और चाहे समाजवादी पार्टी का। रात रात, दिन दिन, सुबह सुबह दोनों ही दलों के दफ्तरों में फोन घनघना रहे हैं। किस दल का कौन विधायक किसे फोन कर रहा है ये नहीं मालूम। दल चाहे कोई हो, दोनों ही तरफ सेंधमारी की कोशिशें लगातार जारी हैं। सहयोगी दलों पर भी समाजवादी पार्टी की नजर है, तो भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों से संपर्क होने की बातें कह रही हैं। बड़ी बात तो ये है कि राज्यसभा चुनाव में पेटियों में जब पर्चियां गिरेंगी तो ये भी तय होगा कि किसका वफादार बिकाऊ और किसका टिकाऊ। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनके पास एडजस्ट करने की जगह नहीं बची, इतने विधायक संपर्क में हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है 25 से ज्यादा सपा विधायक संपर्क में। अब दावा किसका सही किसका गलत, 6 अक्टूबर से पहले तस्वीर साफ होगी।
0: उत्तर प्रदेश में 11 एमएलसी सीटों के लिए भी चुनाव हो रहा है और बीजेपी ने 11 सीटों में से 5 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। क्या है बीजेपी की रणनीति वो बता रहे हैं आपको आशीष श्रीवास्तव।
12: उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन 11 सीटों के लिए सबसे बड़ी रणनीति अपनाई है और तकरीबन 5 ब्राह्मण चेहरों को सामने लेकर आए हैं। स्नातक खंड की ये सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ब्राह्मण चेहरे होने के नाते यूजीसी जैसे जो मैटर हैं जिस पर विपक्ष लगातार सत्ताधारी पार्टी को और बीजेपी को घेरने की बात कहता है, वो कहीं ना कहीं इससे दूर किया जा सकता है। यही वजह है कि 5 ब्राह्मण चेहरों को लाकर यूजीसी यानी कि स्नातक स्तर के उन स्टूडेंट और उन टीचर्स और उन लोगों के बीच में एक सही मैसेज दिया जाएगा जिससे कि जो यूजीसी को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा उसको भी दूर किया जा सके और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार ये मैसेज दे के एमएलसी चुनाव जीत कर पूरी तरीके से 2027 के लिए नई रूपरेखा खींच रही है। और यही वजह है कि ब्राह्मण चेहरों के नाम पर बीजेपी अब विपक्ष को बड़ा जवाब देने की तैयारी कर चुकी है।
0: और अब बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग और सरकार को घेरने के लिए कल से बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। पूरी खबर बता रही है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह।
13: इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अब पार्टियां लामबंद हो गई हैं। 2 से 8 अक्टूबर तक सेव डेमोक्रेसी, देश बचाओ, वोट बचाओ अभियान छेड़ा जा रहा है। तमाम इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स ने अपनी अपनी राज्य इकाइयों को ये हिदायत दी है कि सड़क पर ये आंदोलन जो है वो तेज हो, इसके अलावा आपस में सहयोग और समन्वय बना के बैठकों का दौर हो, मार्च किया जाए, चाहे वो गांधी प्रतिमा या अंबेडकर साहब की प्रतिमा, किसी महापुरुष की प्रतिमा तक, और ज्ञानेश कुमार का देश भर में पुतला फूका जाए। उसके बाद 6 अक्टूबर को तमाम सांसद जो है वो चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, जिसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के गठबंधन एक साथ एकजुट नजर आएंगे।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पंजाब से होगी। पंजाब की सियासत में बड़ा सवाल है, कौन बनेगा पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में इसका ऐलान हो सकता है। पूरी खबर बता रही है कमलजीत संधू।
14: पंजाब के विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले एक और बड़ा फेरबदल आ रहा है पंजाब कांग्रेस में, और इस बार है राजा अमरिंदर वड़िंग जिनको हटाया जा रहा है और उनकी जगह एक नया चेहरा आएगा। इसमें विजय इंदर सिंगला और प्रकट सिंह इनका नाम चल रहा है, लेकिन और भी बड़े नेता हैं जिनका नाम इसमें आ रहा है सामने। लेकिन कारण क्या है, अंदरूनी कलह बताया जा रहा है जो कि इन फाइटिंग है, क्योंकि जहां राजा अमरिंदर वड़िंग जाते थे वहां पे दूसरे बड़े सीनियर नेता नहीं जाते थे, और जहां पे चरणजीत सिंह चन्नी या प्रताप बाजवा या फिर तमाम सुखजिंदर रंधावा जैसे नेता हैं वो जाते थे तो वहां पे वड़िंग को नहीं बुलाया जाता था। लेकिन भूपेश बघेल के जाने के बाद सचिन पायलट प्रभारी बने और उसके बाद ये बड़ा फैसला अब किया जा रहा है, क्योंकि उनको मानना है कि 2022 के चुनावों में भी इसी तरह की कलह की वजह से कांग्रेस 77 की नंबर से होकर 18 पे गिर गई थी, और अब एक बार फिर चुनाव पास में है और इसी वजह से अब ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है।
0: पंजाब के बाद 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी दफ्तर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना सामने आई। हमले का वीडियो भी सामने आ गया है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। अनुव्रत मंडल कभी बीरभूम में टीएमसी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। उनके समर्थक उन्हें टाइगर ऑफ बीरभूम के नाम से भी संबोधित करते रहे हैं। लेकिन अब
15: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीरभूम के बाहुबली कहे जाने वाले अनुव्रत मंडल पहली बार बीरभूम के शिवड़ी में टीएमसी कार्यालय पहुंचे तो तोड़फोड़ हो गई। जी हाँ, कुछ युवक इस कार्यालय में घुस आए और अनुव्रत मंडल के सामने ही लकड़ी से जो कांच का टेबल था उसमें काफ़ी जमकर तोड़फोड़ की गई। मामूली चोट अनुव्रत मंडल को लगी। हालांकि इस घटना ने एक बात साफ कर दी है कि कुछ महीनों पहले तक बीरभूम के बाहुबली कहे जाने वाले अनुव्रत मंडल भी अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जो बात वो कह रहे हैं। 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। उनका कहना है कि 15 वर्षों के दौरान जो अत्याचार हुआ है उसी का गुस्सा उन्होंने वहां दिखाया, और इस मामले की जांच पुलिस फिलहाल कर रही है।
0: वहीं दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग के बीच एक बड़ी खबर, इस दिवाली पटाखों पर पूरी पाबंदी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए साफ किया कि लोगों की भावनाओं और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखते हुए सशर्त पाबंदी और छूट का तालमेल होगा।
16: इस बार दिवाली पर पटाखे और आतिशबाजी चलाने के लिए समय और दिन तय हो जाएगा, कुछ शर्तों के साथ लोग पटाखे चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब पर्यावरण संबंधी मामलों को लेकर और पटाखों के इस पर असर को लेकर जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 पहलू थे। एक और पर्यावरण प्रदूषण रोकना, दूसरी ओर जन भावनाओं का ध्यान रखना, और तीसरा था कारोबार। यानी इसमें कारोबारी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है जो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है, और दूसरी तरफ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जन भावनाओं का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जनभावना का ख्याल रखते हुए पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जाएगा, समय और दिन तय किए जाएंगे किस दिन किस समय लोग पटाखे चला सकते हैं और त्योहार मना सकते हैं, और साथ ही ये भी कि पर्यावरण का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। पिछले कुछ सालों को हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों ने पटाखे चलाए और पर्यावरण की बिल्कुल हालत खराब कर दी, लेकिन अब कोर्ट को भी समझ में आ गया है और कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ समझदारी से ही मामला हो सकता है या अपनी अपनी समझ विकसित करने से हो सकता है, सिर्फ आदेश देने से नहीं। लिहाजा जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए ये देखना होगा कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, लोग ज्यादा जागरूक हों।
0: क्रिकेट की बात करते हैं, कल भारत ने वेस्टइंडीज पर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। इस जीत के महानायक रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने विस्फोटक नाबाद डबल सेंचुरी बनाई। हालांकि सपाट पिच को लेकर क्रिकेट प्रेमी कुछ नाराज भी दिखे।
17: वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में भारतीय टीम का अजय रथ जो है वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट से जीत मिली। 405 रन वेस्टइंडीज ने बोर्ड पर लगाए थे, इसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम 8 विकेट से इस मैच को जीत लेती है। रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार 100 रन निकले तो वहीं कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से 223 रन नाबाद शुभमन गिल वापस लौटे। इस पारी में शुभमन गिल ने मैदान के चारों तरफ छक्के और चौके बरसाए और देखने वाली बात यह है कि शुभमन गिल के लिए ये स्कोर कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, क्योंकि अभी आपको न्यूजीलैंड जाना है जहां पर आपको न्यूजीलैंड की कंडीशंस में मुकाबले खेलने हैं। इस पारी में शुभमन गिल के बल्ले से 8 छक्के और 26 चौके निकले। भारतीय टीम अपना तीसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेलेगी, लेकिन उससे एक पहले एक झटका भारतीय टीम को लगा है जहां पर सिद्ध कृष्णा को चोट की वजह से अब रूल आउट कर दिया गया है।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
21: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
22: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: यार लोन भूल गया मैरी, इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
9: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
8: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
9: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
10: There's nothing small about
8: us. Oh, Jeevan, nothing small about us.
11: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
12: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
6: तो कौन सी बनानी है?
7: एकदम सॉलिड।
8: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

2027 से पहले बीजेपी के संगठन पर फोकस, आज अहम बैठक में बूथ से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक होगी समीक्षा। राज्यसभा एमएलसी चुनाव के बीच संगठनात्मक फेरबदल और नई जिम्मेदारियों पर भी हो सकता है फैसला। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े चारों सह प्रभारियों के साथ बैठक में मंथन करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। पुलिस सुधारों पर आधारित पुस्तक संघर्ष का विमोचन भी करेंगे। सीएम योगी ने पायलट मच्छार की तारीफ करते हुए कहा, उनकी हिम्मत, सूझबूझ और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा हमेशा याद रखी जाएगी। अखिलेश यादव के गठबंधन की बैठक में शामिल न होने पर गरमाई सियासत। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, क्यों नहीं हुए शामिल, पूछ। अयोध्या चढ़ावा चोरी के गवाह चंपत राय का बड़ा बयान, कहा यहां कितने लोग आए और राम जन्मभूमि के नाम पर पैसे कमाकर चले गए। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर चंपत राय ने किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं उन साधु को भी जानता हूं जिन्होंने राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा कमाया और चले गए। यूपी के शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, दो साधुओं की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। साधुओं के मर्डर के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया, जिससे अज्ञात कारणों और वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की जा रही। सहारनपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 65 साल के बुजुर्ग को किया गया गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर पहचान। हापुड़ में युवक को कमरे में बंद कर तालिबानी सजा, बेल्टों से पिटाई कर वीडियो वायरल, 6 पर FIR। पीड़ित पक्ष ने घर पहुंचकर भी मारपीट और धमकी का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार मामला 29 सितंबर का बताया गया है। बताया गया कि स्कूली बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, अन्य साक्ष्यों को भी तलाशे जा रहा है। मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी चौक पर सरे बाजार, सपा नेताओं में मारपीट, अल्पसंख्यक सभा का पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। मोत्रा में शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद आश्रम ने दीक्षा कार्यक्रम अनिश्चितकाल के लिए बंद किया। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का पानी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। जलस्तर बढ़ने से नाव परिचालन पर लगी रोक, लोगों से सतर्क होकर स्नान करने की अपील। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के बाद मिशन जिंदगी तेज, कुशीनगर में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और टीम अलर्ट। कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जवानों का राहत बचाव का काम तेज, प्रभावित लोगों को राहत केंद्रों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया मां दुर्गा का पूरा मंदिर, वीडियो वायरल हुआ।

0: यूपी की राजनीति में इन दिनों राज्यसभा चुनाव की गूंज है। बीजेपी ने तो अभी तक खामोशी ओढ़ रखी है, लेकिन समाजवादी सियासत तीसरे के चक्कर में फंसी है, क्योंकि दो सीटों के लिए अखिलेश ने नामांकन करा दिया। अब तीसरी सीट का क्या होगा? क्या अखिलेश तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे भी, या एनडीए के अंकगणित के आगे हथियार डाल देंगे? यह उलझन अभी बरकरार है।
1: यूपी में राज्यसभा चुनाव में अखिलेश ने कैंडिडेट नंबर दो उतारकर ऐसा सरप्राइज दिया है कि पूरी चुनावी सियासत तीसरे के चक्कर में उलझ गई है। हालात ये हैं कि बीजेपी की लिस्ट की सुगबुगाहट तक नहीं और अखिलेश के तीसरे कैंडिडेट पर सियासी शगुफे सातवें आसमान तक पहुंच रहे हैं और गाहे बगाहे इस पतंगबाजी में पेच अखिलेश भी डाल रहे हैं।
2: ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। बीजेपी के लोग उलझन
1: बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को उम्मीद थी कि पार्टी की ओर से दूसरे नंबर का कैंडिडेट मुस्लिम होगा, लेकिन अखिलेश ने दूसरे नंबर पर नाथवानी को उतार दिया है। अब तीसरे नंबर पर चांस की बात कहते हैं।
2: पिछली बार जो हार हुई उसके कारण भी आपको पता है, तो हम तो बहुत से लोगों को कह रहे हैं कि पुराना अगर धोलना है तो ये मौका अच्छा है।
1: समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और खुद अखिलेश भी कहते रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो क्या अखिलेश सिर्फ क्रॉस वोटिंग के रहमो करम पर ही तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे?
2: लोकतंत्र में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी पिछली बार नहीं होती तो समाजवादी पार्टी के तीन राज्यसभा सांसद गए होते।
1: लेकिन अखिलेश जिसे बेईमानी कहते हैं, उस बेईमानी के बिना इस बार समाजवादी पार्टी की तीसरी और बीजेपी की आठवीं सीट का फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर का गणित ऐसा है कि बिना दूसरे दल के विधायकों के वोट किए किसी गुट का प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं सकता। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो राज्यसभा चुनाव का उठ किस करवट बैठेगा, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और उसी का इंतजार शायद समाजवादी पार्टी को भी है। लेकिन विधानसभा के अंदर जो ये आंकड़ों की उलझन है उसे देखें तो 403 सीटों वाली यूपी असेंबली की कुल स्ट्रेंथ अभी 396 है। अब इस हिसाब से एक राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत है। कांटे की लड़ाई बीजेपी के आठवें उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के बीच है। किसके पास कितने वोट हैं वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात टीम योगी की। बीजेपी 255 विधायक हैं, अपना दल 13 विधायक, आरएलडी 9 विधायक, एसबीएसपी 6 विधायक, निषाद पार्टी 5 विधायक, अन्य 3 विधायक और राजा भैया की पार्टी 2 विधायक। अब इस तरह टीम योगी के पास कुल 293 वोट है। कुल वोट में 259 वोट के दम पर बीजेपी 7 सीटें आसानी से जीत सकती है। अब इसके बाद बीजेपी के पास बचेंगे 34 वोट। आठवीं सीट जीतने के लिए बीजेपी को सिर्फ 3 वोट और चाहिए, लेकिन पेच यही, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का खतरा अब एनडीए पर मंडरा रहा है। राजभर की पार्टी के 6 विधायकों में से 3 समाजवादी पार्टी के कोटे से चुने गए थे, ये क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर किया तो बीजेपी के पास 31 वोट बचेंगे। दूसरी तरफ आरएलडी के 2 मुस्लिम विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के पास 29 वोट बचेंगे और आठवीं सीट जीतने के लिए 8 वोट चाहिए होंगे। वहीं टीम अखिलेश कांग्रेस को मिलाकर 103 वोट पर खड़ी है। 74 वोट से 2 सीटें कन्फर्म है, जबकि उसके बाद 29 वोट बचेंगे। यानी तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 8 वोट समाजवादी पार्टी को चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि 5 बाकी विधायक हैं जो एनडीए की तरफ जा सकते हैं। यानी तीसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए 13 वोट चाहिए। ऐसे में एनडीए के 5 विधायक पक्ष में वोट भी कर देते हैं तो समाजवादी पार्टी को भी तीसरे उम्मीदवार के लिए 8 वोट चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या नाथवानी को उम्मीदवार बनाकर अखिलेश तीसरे उम्मीदवार को जिता सकते हैं?
3: जो तीसरा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारने जा रही है उसकी चर्चा क्या है, कौन हो सकता है तीसरा कैंडिडेट, क्योंकि 2 तो उन्होंने उतार दिया है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को अपना समीकरण दुरुस्त रखने के लिए उसे एक मुसलमान चेहरा भेजना है और इसीलिए सलीम शेरवानी, जो कि 5 बार के सांसद रह चुके हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, पिछले चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने उनसे वादा भी किया था कि उनको राज्यसभा भेजेंगे, तो क्या तीसरे कैंडिडेट के तौर पर सलीम शेरवानी होंगे? आपको बताएं कि सलीम शेरवानी ने हाल ही में यह दावा किया था कि वो हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि अगर पूरे विधायक पूरे पूरे हों जो 37 के 37 वोट इंतजाम हो जाए तभी वो चुनाव में उतरेंगे।
4: कोई नामांकन अभी नहीं कर रहा है, अखिलेश जी बैठक करेंगे 2 और 3 को 4 को फैसला लेंगे।
5: आज कोई नामांकन नहीं
4: हुआ? नहीं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है।
5: आपका नाम चल रहा है सर काफी?
4: मैंने सुना है मेरा नाम चल रहा है, मगर जब तक अखिलेश जी मुझे हाँ नहीं कहेंगे तब तक वो कोई भी नाम चले उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है।
5: अभी मिलके भी
4: नहीं, मैं मिलके आया हूँ, मैं उनसे मिलके आया हूँ, मैंने उनसे अपने लिए रिक्वेस्ट भी की है, सारी चीज मैंने की है, और उन्होंने कहा कि आप मुझसे 3-4 में फिर आइए मिलने और हम लोग को बैठ के फैसला करेंगे।
5: ये माना जाए 4 तारीख का आश्वासन मिला है?
4: नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है, हम अभी बात करके फिर तय करेंगे।
3: यहाँ बता दें कि एनडीए अगर एकजुट रहता है तो एनडीए के लिए जीत आसान होगी, अखिलेश यादव को बड़े क्रॉस वोटिंग कराने होंगे। लेकिन जो नाम इस वक्त भी है वो ये कि क्या सलीम शेरवानी ही वो तीसरे कैंडिडेट होंगे। खैर अभी यह तय नहीं है कि क्या धनराज नाथवानी दूसरे ही कैंडिडेट होंगे या फिर ये तीसरे भी हो सकते हैं। ये सब कुछ जब तीनों कैंडिडेट आ जाएंगे समाजवादी पार्टी के तब तय होगा। लेकिन सलीम शेरवानी को लेकर के माना जा रहा है कि 1-2 दिन पहले अखिलेश यादव से उनकी सुबह मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है कि 3 तारीख के बाद 1 मुलाकात होगी और तब यह तय होगा। 6 तारीख आखिरी तारीख है जब समाजवादी पार्टी या कोई भी दल अपना नॉमिनेशन पूरा कर सकता है। ऐसे में अभी 5 से 6 दिनों का वक्त बाकी है। अभी बहुत कुछ भी कहना जल्दबाजी है कि कौन होगा तीसरा कैंडिडेट, क्योंकि अखिलेश यादव फिर कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। कुमार अभिषेक, आज
0: राज्यसभा सीट के उलझन के अलावा एक उलझन और यूपी में है, वो है कांग्रेस की उलझन। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी

0: वो ऐसी उलझन में डाल रखा है कि ना तो हां करते हैं ना करते हैं। जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं के बीच तू मैं होने लगती है तो बीच बीच में अखिलेश ये दिलासा जरूर दे देते हैं कि कांग्रेस घबराए मत, गठबंधन वही रहेगा जो पहले रहा है, यानी 2024 में रहा है। और 2024 की याद दिलाने के पीछे दरअसल अखिलेश उस कामयाबी के फॉर्मूले पर भरोसा दिखाते हैं जिसके कारण यूपी में समाजवादी पार्टी को अद्वितीय कामयाबी मिली थी। अब कल जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और अखिलेश यादव उस बैठक में जाने के बजाय लखनऊ के अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हालांकि अखिलेश ने अपनी पार्टी के दो नुमाइंदों को वहां भेजा था, लेकिन खुद राज्यसभा नामांकन कराने के बाद लखनऊ में ही रहे। और वहां जब अखिलेश से विधानसभा चुनाव गठबंधन और सीट शेयरिंग पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश का क्या जवाब था आपको सुनाते हैं।
1: समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, जीत ही आधार है, जीत ही सीट का आधार है।
0: यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अखिलेश का यह बयान दिल्ली तक जरूर पहुंच गया होगा जिसमें अखिलेश ने साफ साफ दोहरा दिया कि जीत ही सीट का आधार है। और जीत का आंकड़ा क्या है देखिए, 2024 में समाजवादी पार्टी लड़ी 62 सीटों पर, जीती 37 सीटें, अब जीत की दर रही 59.67, कुल वोट कितने मिले 33.84%। कांग्रेस लड़ी 37 सीटों पर, जीती 6, जीत की दर रही 35.29%, कुल वोट कितने मिले 9.53%। अब ऐसे में अखिलेश के बयान की जीत ही सीट का आधार है के मुताबिक अगर 2024 में समाजवादी और कांग्रेस की ओर से लड़ी गई सीटों पर जीत के दर के अनुपात में यानी समाजवादी पार्टी की 59.67% और कांग्रेस की 35.29% के अनुपात में सीटें बांटी जाएं तो कांग्रेस का 150 का दावा तो ठीक ही बैठता है, क्योंकि जीत की दर के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 253 और कांग्रेस को 150 सीटें बैठती है। जिस गणित के हिसाब से यूपी के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने दावा भी कर रखा है तो देखिए, तो सीट ही जीत का आधार माना जाए तो कांग्रेस कुछ ऐसे दावे कर सकती है, लेकिन इसका एक और पक्ष है जिस समाजवादी पार्टी रख रही है, क्योंकि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर 80 सीटों पर लड़कर जीती गई सीटें यानी समाजवादी की 37 बनाम कांग्रेस की 6 के अनुपात से विधानसभा में सीटों का बंटवारा हुआ तो समाजवादी पार्टी को 347 सीटें पड़ती हैं और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 56 सीटें आती हैं। अखिलेश और राहुल के बीच यहीं पर पेच फंस सकता है, क्योंकि एक दल जीत की दर और दूसरा सीटों पर जीत को आधार मानकर दावे कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और आज यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते दिखाई दिए। सीएम योगी के हाथों से सम्मान पाने वाले 26 पुलिसकर्मियों में से 10 को वीरता पदक और 16 पुलिसकर्मियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। सम्मान पाने वाले जो पुलिसकर्मी थे उनमें कीर्ति चक्र पाने वाले निरीक्षक स्वर्गीय सुनील कुमार के परिवार को भी सम्मान दिया गया। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में वीरता पदक पाने वालों में बुलंदशहर के निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर, एसटीएफ के निरीक्षक अमित, उप निरीक्षक केशव शांडिल्य, घनश्याम यादव और राहुल कुमार के अलावा मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह और आरक्षी अमित त्रिपाठी को भी वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मथुरा के उप निरीक्षक अजय कुमार वर्मा, गाजियाबाद के निरीक्षक मनीष बिष्ट और मैनपुरी के उपनिरीक्षक अवनीश कुमार त्यागी को भी सम्मानित किया गया है।
2: उत्तर प्रदेश और हमारे तराई का क्षेत्र एक सुरक्षित क्षेत्रों में से गिना जाता है, देखा जाता है। यह जो न्यू उस समय रखी थी वो अलग विषय है कि बीच के कालखंड में फिर यह अराजकता की चपेट में आया। एक लंबे समय तक उन चुनौतियों से हमें जूझना पड़ा। प्रदेश के सामने पहचान का संकट आया, लेकिन एक लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि सम और विषम परिस्थितियों में उसको निर्णय लेने की सामर्थ्य, पूरी टीम को मोटिवेट करके उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करने की उनकी सामर्थ्य, और वही परिणाम देती है। और वह परिणाम उस समय देखने को मिल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर।
0: तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की कार्य प्रणाली की तारीफ की और विशिष्ट योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने संबल हिंसा मामले से लेकर कुछ अन्य मामलों में यूपी पुलिस को लेकर टिप्पणियां की हैं, जिस तरह से बाकी अदालतों में यूपी पुलिस की कार्य

0: होती है। खासकर एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के आरोप यूपी पुलिस और सरकार पर हमेशा से रहे हैं। सियासी आरोपों की बात अलग, लेकिन आज हुए कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी ने यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 87 इंटरसेप्टर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई है।
1: ₹10 लाख का फाइन लगाया है, ₹10 लाख का, और इससे पहले एक जिलाधिकारी पे भी लग चुका है फाइन। और अगर पूरा रिकॉर्ड उठाएंगे 10 साल का, कभी हाई कोर्ट ने, कभी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए पुलिस पर, और पुलिस ने जैसा व्यवहार किया उत्तर प्रदेश में आप कल्पना नहीं कर सकते। फर्जी इनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे। और सोचिए चप्पल पहन करके इनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने। पुलिस के रिफॉर्म के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति और भी खराब थी, खपड़े के टूटे हुए भवनों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ट्रेनिंग की स्थिति उससे भी खराब थी। 6,000 पुलिस कार्मिक की साल में ट्रेनिंग हो सकती थी, पीएससी की एक एक बहानी को समाप्त किया गया, यानी दंगाइयों के काल को जब आप समाप्त कर देंगे तो दंगाई तो कर्फ्यू लगाएंगे। और यही तो होता था, महीनों कर्फ्यू, कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों।
3: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 80 से ऊपर ऐसे इंटरसेप्टर को अब ला रही जो हाईटेक सुविधा से लैस रहेंगे, और ये हाईटेक इस तरीके से अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से ये मोटरसाइकिल और इनके पीछे जो इंटरसेप्टर्स है कार, यातायात को सुचारू व्यवस्था से करने के लिए साथ ही साथ हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर अगर 500 मीटर तक भी कोई गाड़ी स्पीड से जा रही है तो उसको ये विजन कैमरे के थ्रू कैप्चर कर लेंगे। यही नहीं, इसके अलावा जो तेज गाड़ियां जाती हैं, शराब पीकर चलाते हैं या इस तरीके की किसी भी तरीके को, वो ई चालान के जरिए उनके सीधे नंबरों तक भेजा जा सकेगा। इसके बाद भी नाइट विजन के साथ 360 कैमरा और साथ ही साथ हर उस मैन के आइडेंटिफाई कर पाना जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहा है, जो किसी भी तरीके से इनका उल्लंघन कर रहा है, उन सभी के लिए ये 80 से ऊपर इंटरसेप्टर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब यूपी पुलिस के साथ साथ चलेंगे। पूरे कमिश्नरेट में जहां जहां कमिश्नर्स हैं वहां पर इसको पहले शुरुआती दौर में रखा जाएगा, उसके बाद आगे। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि तकरीबन हाई स्पीड से भी चल रही गाड़ी भी पूरी तरीके से इसमें कैप्चर हो जाएगी। इसके साथ साथ इसमें जिस तरीके से नाइट विजन कैमरे हैं तो देर रात भी अगर कोई ऐसा चलान होता है तो वो भी इनके जरिए किया जा सकता है। तो ये पूरी आप देख सकते हैं किस तरीके से इंटरसेप्टर्स हैं जिनको यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरा पुख्ता किया हुआ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
0: और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, एशियन गेम्स में भारत श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। 124 रन से श्रीलंका को भारत ने हराया है। पूरी टीम श्रीलंका की 45 रन पर सिमट गई। अब 3 अक्टूबर को सबको 3 अक्टूबर का इंतजार। भारत का मुकाबला फाइनल में पाकिस्तान से होगा और जो जीतेगा गोल्ड मेडल ले जाएगा। नितिन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, 124 रन की बहुत बड़ी जीत, श्रीलंका 45 पर सिमट गई और सबकी नजर अब 3 अक्टूबर को।
4: जी बिल्कुल, इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं हमें इस

0: का पहले से ही आप कह सकते हैं कि अंदाजा था कि श्रीलंका के सामने भारत की जो टीम है वो काफी मजबूत साबित होगी। भारत ने ए टीम भेजी हुई, अगर आप देखेंगे श्रीलंका की टीम, उनकी वो टीम ए टीम नहीं है, बी टीम है। कहीं ना कहीं अनुभव का बहुत ज्यादा असर रहा, और खासतौर पर जिस तरीके की बल्लेबाजी भारतीय टीम ने यहाँ पर की है, आप ईशान किशन की पारी को देखिए, 80 रन की वो शानदार पारी ईशान किशन ने खेली, जिसकी बदौलत भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 जो है बोर्ड पर लगा सका, 7 विकेट भारत के गिरे थे। और जवाब में जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने आई तो उनकी पूरी टीम ही 45 रन पर जो है सिमट गई। साफ तौर पर नजर आता है कि इनएक्सपीरियंस था श्रीलंका के अंदर, लेकिन भारत ने बहुत ही शानदार ये सेमीफाइनल का मुकाबला खेला। अगर आप गेंदबाजी की भी बात करेंगे तो देखिए जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा, इन सबको 2-2 विकेट मिले, जबकि सुंदर को 1 विकेट मिले। अब जो आपने भी कहा कि सबकी नजरें अब 3 अक्टूबर पर होंगी, जहां पाकिस्तान के सामने भारत का वो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और आप ये मान के चल सकते हैं कि इस एशिया कप में, इस अगर हम देखें एशिया कप में भी भारतीय की टीम की जीत की जो है प्रदर्शन अच्छा रहा था, और उसके बाद एशियन गेम्स में भी अब भारत पूरी उम्मीद के साथ उतरेगा फाइनल मुकाबला खेलने, जहां पाकिस्तान को मात देकर एक बार फिर से गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिख सकेगा। चाइना में भी जब एशियन गेम्स खेले गए थे भारत ने वहां पर गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान को हरा कर एक बार फिर से उस गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखेगा और टाइटल को भी डिफेंड करेगा।
1: तो ये बड़ी बात कही जा सकती है कि भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हरा दिया है, लेकिन अब सबकी जो नजर है वो 3 तारीख को मुकाबला, जहां मैच होगा भारत और पाकिस्तान का फाइनल में। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
5: आप पे वो पीएमटी बाहर वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
5: आई लाइक दिस ओनली।
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: यूपी में सीटों के बंटवारे की लड़ाई अब इस मुकाम तक पहुंच गई है कि कांग्रेस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। यूपी में कांग्रेस के प्रभारी ने नई लाइन भी खींच दी है।
1: सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
2: 150 प्लस या 150 माइनस?
1: प्लस।
2: 150 प्लस
1: जी।
0: राजेंद्र पाल गौतम जो कुछ और जिस अंदाज में कह रहे हैं उस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तलखी पहले ही हद पार करती रही है। याद कीजिए, थोड़े दिन पहले की बात है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो मुस्लिम चेहरों की टक्कर हुई थी।
3: नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता।
4: अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए।
0: सीट बंटवारे और गठबंधन पर तनातनी के बीच ही अखिलेश रायबरेली पहुंचे थे। वहां उन्होंने रथ यात्रा की और रायबरेली में अपनी ताकत भी दिखाई। रायबरेली यानी वो सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अखिलेश की इस यात्रा पर भी दोनों पार्टी की तनातनी सामने आई थी। और अब इस बीच यूपी में कांग्रेस के प्रभारी का नया बयान आया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। तो अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

एक हिंदुस्तानी की वजह से टली 9/11 जैसी घटना। भारतीय पायलट की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा स्मिट पर गर्व है। जख्मी होकर भी 174 यात्रियों की बचाई जान। ट्रंप ने नेतन्याहू समेत दुनिया का सलाम। 100 साल पूरे होने पर यूपीएससी को पीएम मोदी का मंत्र, चरणबद्ध रिफॉर्म के साथ हो प्रतियोगी परीक्षाएं। सिलेक्शन प्रोसेस का समय घटाने पर गंभीरता से सोचे चयन आयोग। शाहजहांपुर में दिल दलाने वाली वारदात, दो साधु की हत्या के बाद इलाके में तनाव। मर्डर के बाद शव को जलाया गया, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में उठा पटक, वर्तमान अध्यक्ष राजा अमरिंदर वडिंग को पद से हटाए जाने की चर्चा। दिल्ली माला कमान से मिलेंगे, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को रौंद कर फाइनल बनाई जगह। अब तक के सबसे कम स्कोर पर सिमटे विरोधी, गोल्ड मेडल के लिए पाकिस्तान से होगा मुकाबला।

पीएम मोदी ने यूपीएससी के शताब्दी समारोह में कैप्टन स्मिथ वांछार को बहादुरी का जिक्र करते हुए उनके साहस और सूझबूझ की सराहना की। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम के बयान का जिक्र किया, बोले भारतीय ने 9/11 जैसी त्रासदी होने से बचा ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैप्टन स्मिथ का पराक्रम पूरे देश को गौरव से भर देता है। उन्होंने देशवासियों स्मिथ के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने आयोग की साहसिक और ऐतिहासिक भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी पर आज भी लोगों का भरोसा कायम है। यूपीएससी के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने शताब्दी स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट को हाईजैक से कोशिश वाले भारतीय कैप्टन की पत्नी और माता पिता से फोन पर बात की, जमकर की तारीफ। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी पीएम ने ट्वीट कर स्मिथ मचार की तारीफ की थी। हीरो बताते हुए कहा कि भारत को उन पर गर्व है। राष्ट्रपति ने भी पायलट की सूझबूझ और अदम्य साहस की तारीफ की, ट्वीट कर जल्द होने की ठीक होने की कामना की। भारतीय खिलाड़ी भी पायलट के कारनामे के हुए मुरीद, शिखर धवन और सहवाग ने ट्वीट कर प्रशंसा करते हुए जल्द ठीक होने की कामना की। हमले में घायल मचार फिलहाल सऊदी अरब के एक अस्पताल में भर्ती है, उनकी हालत स्थिर है। मचार की बहादुरी का इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी किया इस्तकबाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारीफ की। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने को पायलट को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। फ्लाई दुबई ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक इसराइल से आने वाली सभी उड़ानें लंबित रहेंगी। घटना के बाद इसराइल देश में आने वाली उड़ानों के पायलट की सुरक्षा जांच और कड़ी करने का फैसला किया। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर महंगा। 19 किलो सिलेंडर के दाम 62 रुपए बढ़े। दिल्ली में अब कीमत 2,810 रुपए, सितंबर में 9.5 रुपए बढ़ी थी कीमत। अक्टूबर की शुरुआत में कारोबारियों को बड़ा झटका, हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमतों में कोई बदलाव नहीं। छोटे कारोबारियों पर बढ़ेगा एलपीजी का खर्च, बढ़ी लागत का असर आगे खाने पीने की कीमतों पर पड़ सकता है। यूपी मिशन 2027 से पहले बीजेपी का संगठन पर फोकस, आज अहम बैठक में बूथ से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक वार्ता। राज्यसभा एमएलसी चुनाव के बीच संगठनात्मक फेरबदल और नई जिम्मेदारियों पर हो सकता है फैसला। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े चारों सह प्रभारियों के साथ बैठक में मंथन करेंगे। सीएम योगी ने 87 इंटरसेप्टर वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। कार्यक्रम में पुलिस सुधारों पर आधारित पुस्तक संघर्ष का विमोचन। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, यूपी पुलिस को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पुलिस माफिया के सामने मजबूती है, जिले में माफियाओं का बोलबाला था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना के दौरान टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल दफ्तर में मौजूद। आरोप है कि बदमाशों ने अनुव्रत मंडल को कुर्सी पर बैठाया, उनके सामने दफ्तर में तोड़फोड़ की, अनुव्रत मंडल पर हमला किया। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, इलाके में बड़ा तनाव। घटना केरल यूनिवर्सिटी के पास बॉयज हॉस्टल के बाहर हुई, जब यूथ कांग्रेस सीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकाल रही थी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने दखल दिया और कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली एनसीआर में आज से ईंधन भराने के लिए वैध पीयूसी जरूरी, सीएक्यूएम ने दिए सख्ती के निर्देश। बैठक में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे उपायों, तैयारियों और विस्तृत समीक्षा की गई। पंजाब कांग्रेस चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक राजा वड़िंग को पद छोड़ने की पेशकश की, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। नए अध्यक्ष का ऐलान एक या दो दिन में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक विजय इंदर सिंगला इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर परगट सिंह का नाम सामने आ रहा है। इनके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर विचार चल रहा है। अयोध्या चढ़ावा चोरी के गवाह चंपत राय का बड़ा बयान, यहां कितने लोग आए और राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा कमाकर चले गए। जन्मभूमि आंदोलन को लेकर चंपत राय ने किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं उन साधुओं को भी जानता हूं जिन्होंने राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा कमाया और चले गए। यूपी शाहजहांपुर में एक दिल दिला देने वाली वारदात, दो साधु की हत्या से इलाके में हड़कंप। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर, फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। साधु के मरने के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया, जिसे अज्ञात कारणों और वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।
दिल्ली में स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लगाई झाड़ू, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत लगाए गए पौधे, लोगों ने मिलकर लगाई झाड़ू। दिल्ली में स्वच्छता अभियान पर लगाए गए पौधे, अलग अलग इलाकों में पौधारोपण कार्यक्रम। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत एक घंटा एक दिन एक साथ श्रमदान पर कार्यक्रम। दिल्ली के सफदरजंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाई झाड़ू, स्वच्छता का दिया संदेश। बेतिया में सीएम के सामने बाढ़ पीड़ितों ने जताई नाराजगी, लोगों ने विधायक गायब के लगाए नारे, घंटों बाद सुरक्षा में निकले सांसद। गंडक नदी में बहकर आया तेंदुआ, थककर पेड़ पर चढ़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छबरा में बाढ़ के पानी में ताश के पत्ते गिरता धरा मकान, तस्वीरें आई सामने। मोतिहारी में बाढ़ का कहर, केसरिया की चार पंचायतें जलमग्न, हजारों लोग प्रभावित। गोंडा के 23 गांव की 33,000 से आबादी बाढ़ से प्रभावित, घाघरा नदी खतरे के निशान से पार। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नाव परिचालन पर लगी रोक, लोगों से सतर्क होकर स्नान करने की अपील। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प, वीडियो वायरल। जालना में सूखे के बीच प्रशासन के दो बड़े फैसले, चारा बाहर भेजने पर रोक, फसल नुकसान पर मुआवजा जल्द देने के निर्देश। अहमदाबाद में दंपति पर ट्रिपल मर्डर का आरोप, 70 वर्षीय महिला का शव सीमेंट के बड़े ड्रम में छिपाया गया, 4 साल बाद खुला रास। जलगांव में नगर निगम ने लंबे समय से लगे कबाड़ बाजार के अतिक्रमण हटाए, भारी पुलिस बल तैनात। संगरूर में 23 साल के युवक की मौत, मामले परिवार ने मुख्यमंत्री के घर के आगे किया प्रदर्शन, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा पर लगाया गया आरोप। पटना में दो अलग अलग इलाकों में चेन लूटने का मामला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महाराष्ट्र लातूर में ऑटो को कट मारने को लेकर बाइक पर जा रहे दो युवकों पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हैदराबाद में कार ने कई राह की रुकवारी, टक्कर, चालक फरार, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। असम के सिलचर में सीएम के काफिले के लिए एम्बुलेंस रोके जाने पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जांच के दिए गए आदेश। रायसेन दबंग महिला ने स्कूटी चालक युवती को मारे थप्पड़, अज्ञात महिला के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज। संत कबीर नगर में चोरी के आरोप में जेल में बंद कैदी की मौत पर जांच तेज, अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। बिजनौर में मामले का हासिल के बाद दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से किया हमला, उसके बाद फायरिंग। सहारनपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 65 साल के बुजुर्ग को किया गया गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर हुई पहचान। मुंबई के साकी नाका इलाके में ढांचा गिरने से शख्स की मौत, ढांचा गिरने का खतरनाक वीडियो आया सामने। जोधपुर में आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस, तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया धक्का देने का आरोप। कानपुर में वैध हुक्काबाज पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 265 प्रतिष्ठानों की चेकिंग, 25 की गिरफ्तारी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम पुलिस की स्नैचिंग के आरोपी से मुठभेड़, आरोपी घायल। पश्चिम बंगाल में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। पूर्व बर्धवान में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने संवारने में जुटे हुए। पूर्व बर्धवान में मूर्ति निर्माण के साथ साथ पंडाल बनाने का काम भी जारी, अंतिम चरण में हो रही है तैयारियां। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का मेला, विधि विधान से की गई महाप्रभु जगन्नाथ की मंगला आरती। भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। एशियाड के फाइनल में शान से पहुंची भारत की टीम, 124 रन से श्रीलंका को हराया। 170 रन का टारगेट चेस कर रही श्रीलंका की पारी लड़खड़ा गई, 10वें ओवर में मात्र 45 रन के छोटे स्कोर पर सिमट गई। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए थे। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट झटके, अभिषेक शर्मा को 2 विकेट मिले। इतिहास पहली बार भारत और पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल के भिड़ेंगी, फाइनल 3 अक्टूबर को 10 बजे से खेला जाएगा। एशियन गेम्स, भारत की अच्छी शुरुआत, पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में जीता सिल्वर, भारतीय कंपाउंड आर्चर और महिला स्क्वाश टीम ने जीता ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स 2026 भारत को मिला सेलिंग में पहला मेडल, सिल्वर से खुला खाता, पुरुषों की स्किफ सेलिंग स्पर्धा में मनु, फ्रांसिस और प्रिंस नोबेल ने किया कमाल। महिला स्क्वाश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनहत सिंह की टीम ने किया कमाल। भारतीय कंपाउंड आर्चर में गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, 8वें स्थान पर पहुंचा भारत।
एशियन गेम्स में अब तक कुल 10 गोल्ड 22 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। मेडल की संख्या 63 हुई है। गुवाहाटी में खेले गए वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड चेज, 2 विकेट खोकर 406 रन का टारगेट आसानी से जीता। शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 117 गेंद में लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। गिल ने बनाए 223 नाबाद रन, गिल की पारी में 26 चौके 8 छक्के शामिल। शुभमन गिल ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ियां, सीरीज में जड़ी बैक टू बैक सेंचुरी। ओपनिंग विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बनाए 255 रन, दोनों बल्लेबाजों ने जड़े शतक। यामी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली का ट्रेलर जारी, एक अनोखे पारिवारिक रहस्य और धमाकेदार एक्शन से भरपूर है फिल्म। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का ट्रेलर रिलीज, 16 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर ने की किया पहला गाना लॉन्च, सचिन जिगर की है कॉम्पोजिशन। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की हॉरर फिल्म काली खेती की रिलीज डेट का ऐलान, 23 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। करण जौहर का ऐलान, 14 अक्टूबर शुरू हो रहा है कॉफी विद करण का नौवां सीजन। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सुरक्षा के खतरे से कड़ाई से निपटने का ऐलान किया, यमन की सरकार को पूर्ण समर्थन की कही बात। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति के साथ राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर की चर्चा, पिछले हफ्ते दोनों नेताओं में हुई थी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डीजल निर्यात पर प्रतिबंध पर विचार की कही बात, डीजल कीमत बढ़ने से अमेरिका में चिंता। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एलन मस्क को सौंपी टेक्नोलॉजी वॉरफेयर डिवीजन की कमान, अमेरिका ने कहा प्रोजेक्ट से भविष्य के युद्ध से निपटने में होगी मदद। सीरिया में गैस पाइपलाइन धमाके के बाद बिजली प्लांट उड़ती दिखी लपटें और धुएं का गुबार।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधान परिषद चुनाव में जेडीयू के अंदर बगावत की खबर है। मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पटना स्नातक निर्वाचन सीट से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध किया है। अनंत सिंह इसी सीट से जन सुराज के उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। जन सुराज उम्मीदवार के नामांकन में अनंत सिंह पहुंचे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने का खुलकर विरोध कर रहे हैं अनंत सिंह। जन सुराज उम्मीदवार अनुज सिंह जब नामांकन के लिए जा रहे थे तो उनका काफिला प्रदेश जेडीयू कार्यालय के सामने से गुजरा। जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी इसमें शामिल थे। तो नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार विधान परिषद को लेकर यह तकरार अब खुले तौर पर सड़क पर उतर आई है। नीरज कुमार के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ इस मोर्चे पर अनंत सिंह। जन सुराज प्रत्याशी के नामांकन के लिए पहुंच गए और बाहुबली नेता अनंत सिंह जाहिर तौर पर एक लंबा चौड़ा जन सैलाब, उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी इस विरोध मार्च में देखे जा सकते हैं।
1: कह तो रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
2: कोई नहीं है टक्कर में,
1: कोई नहीं।
0: रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, किस बात पर अनंत सिंह ये विरोध कर रहे हैं?
3: नहीं नेहा, देखिए अनंत सिंह जिस क्षेत्र से आते हैं, बाढ़ और मोकामा का क्षेत्र है पटना ग्रामीण में, वहाँ एक तरीके से कहा जाता है कि बाहुबली अनंत सिंह का एक पैरेलल सरकार वहाँ पे चलती है। अनंत सिंह जो चाहेंगे वही होता है सरकार से इतर, और इसीलिए वहाँ पर नीरज कुमार भी जो है जो MLC प्रत्याशी हैं उनका भी वही क्षेत्र है बाढ़ मोकामा। और पिछले कई वर्षों से नीरज कुमार वर्सेज अनंत सिंह की अदावत जो है उस इलाके में देखने को मिली है। नीरज कुमार के खिलाफ हमेशा अनंत सिंह जो है वो बगावत करते रहे हैं, और अब जब नीरज कुमार MLC का चुनाव एक बार फिर लड़ रहे हैं एक और टर्म के लिए, तो अनंत सिंह एक बार फिर खुलकर उनके विरोध में आ गए हैं। भले ही दोनों एक ही पार्टी में हैं, दोनों JDU में ही हैं, अनंत सिंह MLA हैं और नीरज कुमार MLC हैं, लेकिन फिर भी अनंत सिंह लगातार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं अनुज सिंह उनका समर्थन कर दिया खुलकर, और कहा कि वो उन्हीं को जिताने की के लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ऐसे में जो JDU के दोनों जो MLA और MLC हैं, ये पूरा मामला, ये पूरी लड़ाई अब नीतीश कुमार के दरबार में भी पहुंच गई है। नीतीश कुमार को भी इसकी जानकारी दी गई है। अब देखना यह है कि 23 अक्टूबर के जब चुनाव होगा MLC का, तो उससे पहले नीतीश कुमार क्या कोई कार्रवाई करेंगे अनंत सिंह के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल पार्टी से अलग और इतर जो है एक लाइन ले लिया है और खुलकर नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं, और नीरज कुमार जो है वो कैंडिडेट है JDU के। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर ही सब कुछ है कि वो आखिर अनंत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बिहार से अगली बड़ी खबर है, जहां पर पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से पार है। पटना सिटी इलाके में गंगा का पानी निचले इलाकों और घाटों तक पहुंच चुका है। कई घाट डूब चुके हैं। आसपास की सड़कों पर नदी का पानी आ चुका है। महावीर घाट और भद्र घाट की सड़कों पर गंगा का पानी फैल चुका है। पानी सड़क पर आने से स्थानीय लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, जो इस पूरे इलाके का मुआयना करने पहुंचे।
4: स्टीडी ऐसा कल से फोरकास्ट में आया है सर, कल से रहना शुरू हो जाएगा। अभी स्टीडी हो गया है सर, राइजिंग ट्रेंड रुक के सर गांधी घाट पे
1: तो बेकार है, कुछ है।
0: तो गंगा अब खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है, और ऐसे में गंगा नदी के किनारे कई घाट भी डूब गए। यह अब चिंता का सबब बन गया है बिहार सरकार के लिए। पटना में खतरे के निशान के ऊपर गंगा नदी देखी जा सकती है। ये हम ग्रामीण इलाकों की बात नहीं कर रहे हैं, दरअसल पटना सिटी तक अब ये पानी पहुंच चुका है। सम्राट चौधरी जायजा लेते हुए और अधिकारियों से जानते हुए कि आखिरकार इससे अब निपटा कैसे जा सकता है, कैसे इस जलस्तर से जो खतरा पैदा हुआ है उससे अब क्या एहतियातन कदम उठाने चाहिए।
5: पानी लगता है कि अभी और 48 घंटे हम लोग को पूरी तरह वॉचफुल रहना पड़ेगा। सभी जगह जिलाधिकारी से लेकर सभी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, लेकिन चिंता बना हुआ है, स्वाभाविक है। इतने चाहे गंगा का पानी हो, HFL पूरी तरह बदल गया, हाईएस्ट लेवल पर पानी चला गया। और इसके साथ साथ गंडक में भी नया HFL आ गया, मतलब इससे ज्यादा आज तक पानी न गंगा में आया न गंडक में आया। सोन में भी हाईएस्ट लेवल पर पानी गया, इसलिए और जबकि बिहार में 32% कम बारिश हुई तब ये स्थिति है। इसलिए चिंता का विषय है, पूरी तरह सरकार मुस्तैदी से लगी है कि किस तरह सभी को राहत मिल सके। कटाव की
0: रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। रोहित, सम्राट चौधरी ये तो कह रहे हैं चिंता का विषय है, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कदम है दरअसल क्या?
3: नहीं बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि 32% कम बारिश हुई है बिहार में, इसके बावजूद भी बिहार में रह रहकर इंस्टॉलमेंट में आप कहिए तो बाढ़ की एक स्थिति पैदा हो रही है। याद होगा सितंबर के शुरुआती 10-12 दिन गंगा में बाढ़ आई, जो पटना से लेकर भागलपुर तक जो है त्राहिमाम पूरा मतलब इलाका करता रहा। 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए, 50 लाख से ज़्यादा की आबादी गंगा में आए बाढ़ से प्रभावित हुई। उसके बाद कुछ पानी का स्तर कुछ कम होना शुरू हुआ तो फिर नेपाल से जो है वो पानी आना शुरू हुआ और गंडक में बाढ़ आ गई। अब गंडक में जो पानी का स्तर बढ़ा तो पिछले एक सप्ताह से आप देख लीजिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, छपरा, ये पूरे इलाके जो है आज डूबे हुए हैं, मुजफ्फरपुर भी उसमें शामिल है। अब इधर ये फिर गंडक की समस्या चल ही रही थी कि अब दो दिन से अचानक से फिर से गंगा में जलस्तर जो है वो बढ़ गया है और पटना की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना में एक बार फिर डेंजर लेवल से काफ़ी ऊपर जो है वो गंगा नदी बह रही है। पटना के सभी घाट जो है वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, यानी पटना से लेकर भागलपुर एक बार फिर पर गंगा नदी जो है अपनी पूरी तरीके से उफनाई हुई है। और ऐसे में सरकार के लिए भी बड़ी मुश्किल का सबब है कि किस तरफ देखें, गंगा बाढ़ को देखें, गंडक में देखें, हर मोर्चे पर सरकार लड़ने की कोशिश कर रही है, राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल बिहार में बाढ़ से जो है त्रासदी लगातार देखने को मिल रही है और सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी तरीके से सुरक्षित स्थानों पर निकाला जाए, उनको राहत पहुँचाई जाए किसी तरीके से। जी
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बिहार में बाढ़ के कहर की। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों में मुश्किल बढ़ा दी है। कहीं तटबंध टूट गए हैं, कहीं घर पानी में समा गए और कहीं पर लोग बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं। दो साधु की हत्या मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर वार किया। एसपी नेता दीपक रंजन ने कहा कि यूपी में साधु संत सुरक्षित नहीं है। इन दो साधुओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें मारने के बाद जला भी दिया गया, शव इनके जलाए गए। इसको लेकर पूरे इलाके में इस वक्त दहशत है। मंदिर परिसर के पास ही दोनों के शवों के अवशेष मिले हैं।
6: गांव का ही एक लड़का सुमित, जो कि कुछ दिन पूर्व ही माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त करके जेल के बाहर आया है, वो विगत कुछ दिनों से इस देवस्थान पर दोनों सन्यासियों के साथ में उठने बैठने लगा था तथा गांव वालों ने प्रारंभिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि दोनों सन्यासियों को ही उसने कुछ एक बार कहा था कि आप दोनों लोग यहां से हट जाइए और मैं यहां पर अब रहने वाला हूं, मेरा ही एकाधिकार होगा। इसी प्रथम दृष्टया इसी बात को लेकर के कल देर रात में ये घटना कारित की गई है। मौके से सभी भौतिक साक्ष्य संकलन करते हुए जो दोनों जले हुए शव थे उनको घटना का सही समय और सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। जो मुख्य आरोपी सुमित है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
0: इस बीच उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ब्लर करके, जहां पर इन दो साधुओं के अजले शव बरामद किए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है, क्या कारण रहा है ये भी अब जांच का विषय है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एकदम दो तीन थमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: यार लोन भूल गया मैरी।
6: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
7: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
5: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
7: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
8: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन। देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
9: ओह, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
12: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुमटा TMT बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुमटा TMT से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हिंदुस्तानी की वजह से टली 9/11 जैसी घटना, भारतीय पायलट की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा स्मिथ पर गर्व है, जख्मी होकर भी 174 यात्रियों की बचाई जान, ट्रंप नेतन्याहू समेत दुनिया का सलाम। यूपीएससी को पीएम मोदी का मंत्र, चरणबद्ध रिफॉर्म के साथ हो प्रतियोगी परीक्षाएं, सिलेक्शन प्रोसेस का समय घटाने पर गंभीरता से सोचे चयन आयोग। एमएलसी चुनाव, बिहार जेडीयू में बड़ी बगावत, मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी पार्टी के नीरज कुमार खिलाफ किया खुला विद्रोह, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार। यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, दो साधु की हत्या के बाद इलाके में तनाव, मर्डर के बाद शव को जलाया गया, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। एशियन गेम्स, भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को रौंद कर फाइनल में बनाई जगह, अब तक के सबसे कम स्कोर पर सिमटे विरोधी, गोल्ड मेडल के लिए अब पाकिस्तान से होगा मुकाबला।

0: हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, एक ऐसा साहसिक कारनामा जिसका गुणगान आज पूरी दुनिया कर रही, एक ऐसी दिलेरी जिसकी वजह से 30,000 फीट पर उड़ान भर रहे विमान में अटकी 174 यात्रियों की जान सही सलामत बच गई। और इस पूरी घटना में नायक की भूमिका निभाई है विमान को उड़ा रहे भारतीय पायलट स्मित मच्छाड ने। उनके सहयोगी पायलट ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया, उन्हें खून खून कर दिया, लेकिन आरोपी को पायलट से लड़ते हुए उन्होंने 9/11 जैसी खौफनाक वारदात को टाल दिया। स्मित मच्छाड की दिलेरी की हर कोई तारीफ कर रहा है। तो आपको बता दें, भारतीय कैप्टन स्मित मच्छाड की पूरी दुनिया में तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ प्लेटफॉर्म एक्स पर की। जिस तरह से उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय दिया, वो हर देशवासी के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तानी कैप्टन ने 9/11 होने से बचा लिया।
1: कल जो एक घटना घटी, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया। हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
0: फ्लाई दुबई की वो फ्लाइट हवा में करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर थी। विमान तेजी से तेल अवीव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी हवा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। विमान के को पायलट ने अचानक पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, उस पर ताबड़तोड़ वार किए, और इस हमले में पायलट स्मित मच्छाड गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन उनकी दिलेरी के आगे पायलट का दुस्साहस बेदम हो गया और विमान में सवार सभी 174 यात्री बाल बाल बच गए। अब उस भारतीय पायलट की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है।
2: उड़ते विमान के कॉकपिट में गजब की दिलेरी, और हमले का करारा जवाब देने वाली जाबाजी। आज हर कोई मुरीद है हिंदुस्तान के उस लाल का।
3: मैन जस्ट एक्ट्स विद इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल हीरोइज्म एंड सेव्स द डे along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
2: जिस जाबाज हिंदुस्तानी पायलट का गुणगान हो रहा है, जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है, उसके जज्बे को और उसके हौसले को सराखों पर बैठा रही है, वो बहादुर और हिम्मत वाले पायलट हैं, फ्लाई दुबई के उस विमान के पायलट स्मित मच्छाड। स्मित की दिलेरी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व करने का एक मौका दिया है, तो उनकी बहादुरी को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। पूरा इज़राइल स्मित मच्छाड की जाबाजी की तारीफ करते नहीं थक रहा। हिंदुस्तान के इस बेटे ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मित मच्छाड ने वो कारनामा किया है जिसकी बदौलत 9/11 जैसी आतंकी घटना को अपनी हिम्मत और हौसले से टाल दिया। स्मिथ मछाज का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब विमान के कॉकपिट में उन पर को पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और वो गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। पूरा शरीर खून से सना था। विमान के यात्री और अन्य सहयोगी 174 यात्रियों की जिंदगी बचाने वाले स्मिथ मछाज की जिंदगी बचाने में जुटे हुए थे। विमान के पायलट स्मिथ मछार को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा था। इस बहादुर पायलट की जिंदगी की चिंता में यात्री और मददगार लगातार उनसे बातें कर रहे थे, उन्हें दिलासा दे रहे थे।
4: My head is
5: no, yo.
6: Adjust the head with the pillow.
4: My head is failing. It is hurting. It is hurting.
5: Oh, Rama. Yes, the telephone shelling. Give me the pillow. Yeah.
4: No sleep. My head is hurting. Yeah, in pillow, my hand.
5: Yeah.
4: No, your hand. It's good.
5: Rama. Can I have the Panadol? Yeah. Paracetamol.
2: हिंदुस्तान के इस हीरो ने जो किया है वो एक मिसाल है। स्मिथ मछाज ने जो किया है वो सच्चे मायने में एक नायक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भारतीय पायलट और जहाज में मौजूद अन्य लोगों ने दूसरे 9/11 को रोका है। वो बता रहे हैं कि कैसे कुल्हाड़ी से हमले के बाद भी भारतीय पायलट स्मिथ मछाज ने उनका मुकाबला किया। वो घायल रहे, जान की बाजी लगा दी, फिर भी हार नहीं माने और नतीजा सबके सामने है। 9/11 जैसी घटना टल चुकी है। नेतन्याहू ने पोस्ट कर कहा है कि असाधारण बहादुरी दिखाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछाज को मेरा सलाम है। उन्होंने कुल्हाड़ी से हमला किए जाने और गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी मुकाबला किया, हमलावर का विरोध किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला, यात्रियों और क्रू मेंबर्स को हमलावर पर काबू पाने में सक्षम बनाया। हवा में एक बड़ी त्रासदी टल गई।
3: Plane is nose diving. The passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
2: नेतन्याहू के शब्दों में खतरा किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में हमला होता है, फिर भी जख्मी पायलट स्मिथ मछाज ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर विमान में सवार 174 इजरायली यात्रियों की जान बचा ली। ये सभी यात्री सुरक्षित अपने वतन लौट चुके हैं।
3: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this.
2: कुल्हाड़ी से हमले में जख्मी स्मिथ मछाज का अभी सऊदी अरब के ताबुक शहर में इलाज चल रहा है और पूरी दुनिया उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और इस बीच आपको बता दें, 30,000 फीट की ऊंचाई पर को पायलट ने हमला किया और हवा में ही इस हमले के बाद हड़कंप मच गया। यात्री खौफ से भर गए। दरअसल हमले के दौरान प्लेन अचानक चंद सेकंड में 30,000 फीट से करीब 16,000 फीट की ऊंचाई तक आ गया और इस विमान में 174 यात्री सवार थे जिनकी जान खतरे में थी।

0: विमान में यात्रियों के चेहरे की इस खुशी ने संकेत दे दिया कि उनकी जान सुरक्षित है। अब वो खतरे की जद से निकल चुके हैं। इनकी मुस्कान लौटाने वाला जांबाज भारतीय पायलट ने जो किया है उसके लिए पूरा इजराइल उनका शुक्रगुजार है।
1: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the flight-by-flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. And despite being severely wounded and covered in blood, he kept fighting. With what Israeli officials describes as some of his last remaining strength, he managed to release the cockpit door, allowing passengers and crew to rush inside, overpower the attacker, and ultimately regain control of the aircraft. More than 170 people made it home because of Smit. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero.
0: स्मिथ मच्छर पर नाज है क्योंकि ऐसा साहस दिखाना मामूली बात नहीं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। फ्लाई दुबई का विमान FZ1073 दुबई से तेल अवीव की उड़ान पर था। विमान में 174 इजरायली नागरिक सवार थे। कॉकपिट के अंदर पायलट के रूप में मौजूद थे स्मिथ मच्छर और उनका को पायलट यानी हमलावर भी। विमान करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था कि अचानक ओमानी को पायलट ने स्मिथ मच्छर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले की वजह से विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान नीचे की ओर गिरने लगता है। यात्रियों की जान अटक जाती है। विमान में चीख पुकार बच जाती है। फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा बेकाबू विमान गिरकर 16,750 फीट पर पहुंच गया। तब तक प्लेन के कॉकपिट में वार पलटवार होता रहता है। कुछ सेकंड बाद विमान स्थिर होने लगता है। कुल्हाड़ी से को पायलट के हमले में पायलट स्मिथ गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। यात्रियों की जान हवा में अटकी रहती है।
2: הוא רק התפלל כל התקופה והיה איתי בקונטק ופחדתי שאנחנו באמת נאבד אותו.
0: उड़ान के दरमियान विमान ने पहले सामान्य आपातकालीन कोड 7700 भेजा, फिर गैर कानूनी हस्तक्षेप से जुड़ा कोड 7500 भेजा और अंत में वापस 7700 कोड पर आ गया।
2: אחרי שראינו בגרף, זה היה 16,000 רגל, הבנו עכשיו באירוע שעוד 5-6 שניות ולא היה סיכוי להציל את המטוס. זה המצב חדש שאנשים מתאבדים ולוקחים את החיים של אחרים, של ילדים, של נשים, שאנשים לא קשורים לשום דבר.
0: हालात काबू में आया तो विमान जॉर्डन के हवाई क्षेत्र से होते हुए सऊदी अरब वापस लौट आया और विमान में मौजूद रिजर्व क्रू ने सऊदी अरब ताबूक हवाई अड्डे पर विमान को उतारा।
3: Look, on a flight from Dubai to Israel, as they were approaching Israel, there was an attack by one of the pilots against the other pilot. Apparently he stabbed him or he hit him with an axe. He was bleeding profusely. The plane began to go out of control and began a nosedive.
0: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओमान के को पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय पायलट ने दिलेरी दिखाते हुए बड़ी घटना को टाल दिया। इस मामले में को लेकर विमान कंपनी फ्लाई दुबई ने कहा है कि फ्लाइट FZ1073 से जुड़ी घटना के बाद वो इसराइल जाने आने वाली फ्लाइट को रोक रही है और मामले की जाँच जारी है। आज तक ब्यूरो।
4: आज तक ने भी फ्लाई दुबई FZ1073 के यात्री याने हायून से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हायून ने कॉकपिट में घुसकर हमलावर को रोकने में मदद की थी। आज तक से खास बातचीत में याने ने बताया

0: הדלת לא הייתה נעולה. ואני ועוד חבר צוות פתחנו, דחפנו את הדלת, תגידי לו.
1: אוקיי.
0: הטייס היה על הרצפה, שותה דם,
1: הצלחתם להיכנס.
0: הטייס שכב פצוע ליד הדלת, והיה עוד טייס שפשוט מאוד רחן על המכשירים, כאילו, ותפסתי אותו, בחניקה, ומשכתי אותו אחורה. להוציא אותו, הוצאנו אותו מה... הוא ניסה, הוא התנגד, הוא ניסה לעשות משהו, אבל אני משכתי אותו. הוא היה על המכשירים, ומהר משכתי אותו אחורה. הוא נאבק, הוא רצה להישאר בתוך הקוקפיט, הוא ניסה להיאבק, להישאר בתוך הקוקפיט, והצלחנו למשוך אותו החוצה, מחוץ לקוקפיט. אחרי שהוצאנו אותו החוצה, קראתי לעוד ישראלים, עוד ישראלים הצטרפו. עוד שתי ישראלים הצטרפו לריתוק שלו.
2: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ. अमित, दरअसल जिस तरीके से ये इजरायली बता रहे हैं कि घटना कैसे हुई, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वो वेपन जिससे हमला किया गया वो कॉकपिट तक कैसे पहुंचा.
3: यहां पर नेविगेशन दिखेगा. नेहा देखिए, हम लोग अपने दर्शकों को यह भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार उस कॉकपिट के अंदर क्या कुछ हुआ होगा. ये 737 का सिमुलेटर है और आईजीआई एयरपोर्ट के पास कई सारे पायलट्स इस सीएफए इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जहां पर हम बैठे हुए हैं. और इसी तरह के कॉकपिट के अंदर फ्लाई दुबई का वो एयरक्राफ्ट जिसमें कैप्टन स्मिथ थे, बाएं हाथ पे जो इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं जिनके हाथ में अभी यॉक कंट्रोल आपको दिखेगा, वो कैप्टन स्मिथ की सीट है. और बाएं हाथ पे आपको मॉनिटर्स ऑल्टीट्यूड सारा दिखेगा, उसके साथ जो मॉनिटर है ये नेविगेशन का मॉनिटर है. यहां पे सेंट्रल पैनल है जिस पर कई सारे व्यूज आते हैं. ये जो नीचे का पैनल है हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जब कोई अगर अटेम्प्ट होता है, अनऑथराइज अटेम्प्ट होता है एंट्री का, तो उस वक्त क्या होता है. और सेम पैनल यहां पर, ये कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं. इस वक्त हम मिड एयर हैं और अब हमें इंस्ट्रक्टर बताएंगे सर हमारी ऑल्टीट्यूड क्या है. सर
4: अभी हम 30,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं.
3: जी
4: जी.
3: उस वक्त क्या हुआ होगा जब फर्स्ट ऑफिसर, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि कंट्रोल्स टेक ओवर करने की कोशिश की फर्स्ट ऑफिसर ने, क्या किया होगा.
4: उन्होंने यहां से ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिया होगा. सपोज आई हैव चेंज इट टू 20,000 और यहां से जैसे ही वो चेंज करेंगे तो एयरक्राफ्ट डिसेंट स्टार्ट कर देगा,
3: नीचे जाना
4: स्टार्ट कर देगा. तो जैसे अभी आप देख सकते हैं, देखो एयरक्राफ्ट ने यहाँ से डिसेंट स्टार्ट कर दिया. तो जैसे हम यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी हेडिंग चेंज कर दी, एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिया, और फिर यहाँ से एयरक्राफ्ट वैसे ही उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा,
3: नीचे गिरना शुरू
4: हो जाएगा.
3: ओके. एक और सवाल, 30 सेकंड के अंदर बताया जा रहा है कई हजार फीट का ड्रॉप हुआ है, तो उस वक्त क्या क्या छिड़खानी यहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर ने किया होगा कि इस तरह का एकदम शार्प प्लंज होना शुरू हो गया.
4: शार्प प्लंज के 2-3 तरीके हैं. जैसे अभी ये 2700 फीट पर मिनट की रेट से डिसेंड कर रहा है
3: जी.
4: अभी ये भी एक कंट्रोल है, अगर मैं इसको खींच देता हूँ तो ये ड्रैग प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट और ज्यादा डिसेंट स्टार्ट कर देगा, और जल्दी डिसेंट स्टार्ट करेगा.
3: अच्छा,
4: स्पीड अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो और ज्यादा
3: स्पीड से किस तरह से तब्दीली आएगी इसमें, अगर आप हमें दिखाएं अभी वहां रफ्तार बढ़ रही है.
4: वहां पे देखो आप डिसेंट रेट कितना बढ़ गया है. अभी मेरा उस टाइम आपको मैंने दिखाया था 2700 था, अभी ये 4000 फीट पर मिनट की रेट से बढ़ रहा है,
3: तो ये
4: और ये बढ़ता ही जा रहा है. अभी
3: चंद सेकंड्स के अंदर इसमें 1000 फीट की जो है ड्रॉप आनी शुरू हो जाएगी.
4: ये देखो अभी 27,200, 100 कितनी जल्दी जल्दी हम डिसेंड कर रहे हैं.
3: हम 26,000 पे आ गए.
4: जी 26,000
3: पे आ गए. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी. ऐसी स्थिति में कैप्टन स्मिथ ने अपनी तरफ से क्या किया होगा, क्या कमांड दिया होगा उन्होंने.
4: उन्होंने उनको होल्ड करने की कोशिश की होगी. अगर मैं इसको होल्ड करना चाहूँ, मैं इसी ऑल्टीट्यूड पे होल्ड करूंगा. देखो जैसे वो होल्ड हो गया है, अभी उसने रेट ऑफ डिसेंट कम कर दिया, तो एयरक्राफ्ट
3: मूवमेंट भी शुरू हो गया.
4: मूवमेंट
3: हमारा ऊपर
4: नोज अप होना शुरू हो गया. तो उसने उसी, अब दोनों के बीच में आपसी लड़ाई में इसको बार बार चेंज कर रहे हैं, तो उनके बीच में फिर फिजिकल अब्यूज भी हुआ होगा,
3: हाथापाई भी और तमाम तरह के वर्बल अब्यूज भी हुए होंगे इस चीज को रोकने के लिए. और ये फिर से अटेम्प्ट हुआ होगा इसको नीचे ले जाने का, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे
4: हुआ. हाँ जी.
3: क्या हो सकता है उस वक्त, क्या हो रहा होगा
4: उस वक्त. यही है, कंट्रोल्स को बार बार वो चेंज कर रहे हैं, वो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर

0: पायलट कैप्टन जो है फर्स्ट ऑफिसर उसको फिर से नीचे के लिए तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन उसको।
1: रुकना हो गया एक्चुअली से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: एयू
6: सोच बदलो और बैंक भी।

0: नॉर्थ और साउथ की सियासत के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी है।
1: हम द्रविड़ियंस है, यहाँ के आर्यन से, हम शिवजी के भक्त है या राम जी के भक्त है, तो राम जी को बीजेपी ने
2: कब्जे कर लिया,
1: चोरी किए। तो इट्स अ इमोशन, इट इज एन सेंटिमेंट। तो क्यों हरे हर महादेव क्यों नहीं बोलते, मोदी जी जय श्री राम बोलते? कभी भी देखो बीजेपी वाले कोई भी मंच पे हरे हर महादेव कभी बोला क्या? जय श्री राम ही कहता है। हम हरे हर महादेव बोले तो उन लोगों को पसंद नहीं है। गरीब लोगों का भगवान है शिव जी, अमीर लोगों का भगवान है राम जी। तो बीजेपी तो अमीर पार्टी है।
0: रेवंत रेड्डी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अमीरों के भगवान बता रहे हैं, बीजेपी पर भगवान शिव को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है।
3: रेवंत रेड्डी को भारत के सनातन का इतिहास ही नहीं मालूम है। हमारे मित्रों ने बताया कि वो पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है। रामेश्वरम में कौन स्थापना किया शिव, शिवलिंग की स्थापना, शिव की पूजा प्रभु श्री राम ने की।
4: भगवान को भी आप बांटोगे अमीर और गरीब में? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा और आस्था को आहत किया है।
0: उधर विपक्ष इंडिया ब्लॉक के नेता रेड्डी के बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।
5: Whether you love Shiva, Ram, all of them are praiseable gods for us, but in the name of Ram, BJP making votes and playing politics is not acceptable.
6: ये संपत्ति के आधार पर वर्गीकरण तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं वहां शिव और शक्ति की महिमा है। मेरे इलाके में तारा काली ज्यादा पूजी जाती हैं। ये हिंदुस्तान की, हिंदू धर्म की विविधता है।
0: बहरहाल धर्म पर जारी सियासत के बीच रेवंत के इस बयान ने नया सियासी घमासान मचा दिया है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नोटों की गड्डियां, सोने के गहने, जवाहरात, लाखों की कीमत वाली लग्जरी घड़ियां, ये सारी दौलत एक एडीएम के घर से मिली है। देखिए, विजिलेंस की टीम नोटों की गिनती कर रही है। नोटों के बंडल के साथ ये पहली तस्वीर पटना की। ये पटना के एडीएम सप्लाई रविंद्र कुमार दिवाकर का घर है। विजिलेंस की टीम को एडीएम सप्लाई के यहाँ आय से अधिक संपत्ति की खबर लगी तो छापा मारा गया और छापे के बाद ये दौलत बरामद हुई। 70 लाख कैश, करोड़ों के गहने और महंगी घड़ियां।
1: तलाशी के दौरान अभी तक 70 लाख रुपए कैश बरामद हुए और अभी तलाशी करवाई जा रही है।
0: अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये बेगूसराय की तस्वीरें हैं। ये भी एडीएम का ही घर है। यहाँ छापेमारी के बाद गहने और 9 लाख रुपए का कैश मिला है।
2: 9 लाख से ऊपर जो अभी कार्रवाई चल रही है और सोने के जेवरात काफी मात्रा में इनके यहाँ तलाशी के क्रम में मिले हैं।
0: एडीएम सप्लाई की पत्नी सब रजिस्ट्रार दफ्तर दानापुर में कार्यरत है। अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। एडीएम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: दुनिया भर की इकोनॉमी इस वक्त सुस्ती अनिश्चितता और उठापटक के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। घरेलू मांग, बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट के दम पर देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। इसकी पुष्टि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ताजा रिपोर्ट से भी होती है, जिसके मुताबिक भारत का ग्रोथ आउटलुक दुनिया में सबसे मजबूत है। इस सर्वे में शामिल 74% चीफ इकोनॉमिस्ट ने मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जताई है। वहीं 98% को अगले 12 महीनों में मध्यम या उससे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। बढ़ती आय और मजबूत लेबर मार्केट से सपोर्ट मिलने का भरोसा रिपोर्ट में जताया गया है। ग्लोबल संस्थानों की इस भरोसे की झलक रेटिंग एजेंसियों के अनुमान में भी दिखाई दे रही है। 2026-27 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इससे पहले ये अनुमान 6.4% था। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली तिमाही में भी अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन ने दुनिया भर में भारत की साख को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही। इसकी वजह मजबूत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रही थी। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार के संकेत से भी फायदा मिला था। एक्सपोर्ट और सरकारी निवेश ने भी ग्रोथ को मजबूत सहारा दिया है। इस प्रदर्शन के बाद कई एजेंसियों ने भी अपने अनुमान बेहतर किए हैं। फिच के बाद S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज ने भी 7% ग्रोथ का अनुमान जताया है। हालांकि मजबूत ग्रोथ के साथ आने वाले महीनों में महंगाई और ब्याज दरों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। दरअसल फिच और S&P को उम्मीद है कि अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी में RBI रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। बढ़ती मांग से महंगाई का दबाव बना हुआ है और कुछ सेक्टर्स में सप्लाई से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन बड़ी चुनौती बन गया है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है। दुनिया की बड़ी एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों का बढ़ता भरोसा इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भी भारत वैश्विक ग्रोथ की बड़ी कहानी बना रह सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
4: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एक हिंदुस्तानी की वजह से चली 9/11 जैसी घटना, भारतीय पायलट के पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा स्मिथ पर गर्व है, जख्मी होकर भी 174 यात्रियों की बचाई जान, ट्रंप नेतन्याहू समेत दुनिया का सलाम। 100 साल पूरे होने पर यूपीएससी को पीएम मोदी का मंत्र, चरणबद्ध रिफॉर्म के साथ हो प्रतियोगी परीक्षाएं, सिलेक्शन प्रोसेस का समय घटाने पर गंभीरता से सोचे चयन आयोग, 2014 के बाद अवसर बढ़े। एमएलसी चुनाव में बिहार, जेडीयू में बड़ी बगावत, मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार के खिलाफ किया खुला विद्रोह, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार। यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, दो साधुओं की हत्या के बाद इलाके में तनाव, मर्डर के बाद शव को जलाया गया, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। और एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को रौंद कर फाइनल में बनाई जगह, अब तक के सबसे कम स्कोर पर संभावित विरोधी, गोल्ड मेडल के लिए अब 3 तारीख को पाकिस्तान से होगा मुकाबला।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं और न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। न्यूज रूम लाइव में जैसा होता है वो बता देते हैं आपको, कौन कौन सी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे बिहार की खबर। बिहार में कैसे जेडीयू में आपस में ही लड़ाई होती हुई दिख रही है। एक तरफ है बाहुबली अनंत सिंह तो दूसरी तरफ है नीरज कुमार। अब बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर कौन किसके पक्ष में प्रचार कर रहा है ये हम आपको बताएंगे। समाधान क्या निकाला जा सकता है इस पर बातचीत होगी। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, योगी वर्सेस अखिलेश। अब सुरक्षा पर नया कलेश होता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा मुद्दा उठा इस बार 2027 की लड़ाई के लिए, डिटेल में हम आपको बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर होने वाली है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। और तीसरी हमारी बड़ी खबर होगी गोवा वाला विवाद, आपको याद है 97 नाम जिसमें काट दिए गए थे, अब उसमें से 88 नाम शामिल कर लिए गए। अब आगे क्या होने वाला है इस मामले में ये भी डिटेल में हम आपको बताएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी जब आपकी घड़ी में 2:30 बजेंगे तो उस वक्त हम आपको बताएंगे बिहार में पटना में आसपास के इलाकों में बाढ़ बारिश की वजह से हालात कैसे, क्योंकि नेपाल से भी पानी का जलस्तर है वो तेजी के साथ बढ़ा है, तो बिहार में हालात कैसे हो गए हैं डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। बिहार से ये खबर आ रही है और बिहार से खबर है कि जब एमएलसी चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर अब जेडीयू में दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ऐसे समझिए कि एक तरफ कौन है, एक तरफ बाहुबली जिनको कहा जाता है अनंत सिंह, मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह वो है, तो दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है लेकिन अनंत सिंह ने खुलकर उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर दिया। अनंत सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ जन स्वराज की पार्टी अनुज सिंह के समर्थन में भी वो आ गए हैं प्रत्याशी जो है उनके जन स्वराज के प्रशांत किशोर के। आज नामांकन के वक्त वो जन स्वराज के उम्मीदवार के साथ रहे। देखिए झगड़ा पुराना है, सुलह की कोशिशें भी होती रही लेकिन बात नहीं बनी। अब मामला नीतीश कुमार तक पहुंचा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नीतीश की दखल से मामला सुलझता है या फिर बगावती तेवर कुछ और रास्ता अख्तियार करते हैं। अनंत सिंह कह क्या रहे हैं लेकिन इस प्रत्याशी पर उम्मीदवारी पर इस विवाद पर वो सुनाते हैं आपको।
1: मांगन करने आ गए अनंत सिंह जी के साथ, उम्मीद पूरी है दादा जीत की।
2: कहते रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
1: कोई नहीं है टक्कर में,
2: कोई नहीं,
3: कोई नहीं है टक्कर में,
1: ताकत लगाने हैं।
0: तो ये 7 सितंबर की बात की जा रही है जब सुलह की कोशिशें की जा रही थी। सुलह की कोशिशें किसके बीच, नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच। तो उस वक्त नीरज कुमार की तरफ से क्या कहा गया था उनका बयान भी सुनिए।
4: विधानमंडल में लेकर हम प्रदेश अध्यक्ष को बोलेंगे कि हम ही बोलेंगे,
5: नहीं लंबी बैठक चली,
4: लंबी बैठक कोई चुनाव है तो रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। अरे समन्वय बिल्कुल सही है, एनडीए न जनता दलियों में समन्वय की कमी, हमारी पार्टी का नाम है यूनाइटेड है, न एनडीए में समन्वय की कमी है। हम लोग जो विभिन्न सीटों पर चुनाव लड़े, प्रदेश अध्यक्ष जी पहले जिला अध्यक्ष के साथ बैठक लिए और ये दूसरी बैठक है इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ, हाँ हम लोग का भी चुनाव है, तो उसी के संदर्भ में जो हम लोगों का संगठनिक दायित्व होता है माननीय जनप्रतिनिधि की बड़ी भूमिका होती है उसमें और संगठन को जोड़ करके करते हैं।
5: कोई
4: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, वही पूंजी है।
5: आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे बैठक में,
4: आज आप बयान कोई सुने हैं, किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी, पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है, सब नाराजगी खत्म है,
5: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी वो?
4: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी हैं, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एक्स एमएलए हैं, एमपी हैं, और सब जगह तो हम ही लोग हैं,
5: सब एकजुट है,
4: पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: तो नीरज कुमार को सुना आपने, ये नीरज कुमार खुद किसका बात, किसका जिक्र कर रहे थे, श्रवण कुमार का जिक्र कर रहे थे। श्रवण कुमार कौन है, मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, तो श्रवण कुमार को भी सुन लेते हम।
6: प्रदेश अध्यक्ष जी तो बयान देंगे,
5: नहीं सरवन जी सुलह करवा रहे थे, क्या नाराजगी दूर हो गई दोनों के बीच में?
6: सुलह क्या, पार्टी के सब लोग एक साथ बैठते हैं यहाँ, सुलह या झगड़ा क्या है?
5: लेकिन नाराजगी थी, आपकी विधायक ने कहा था कि अनंत सिंह पर नीरज जी को सपोर्ट नहीं करेंगे,
6: कोई नाराजगी नहीं है,
5: विधायक
6: कोई खिलाफ नहीं है, सब लोग देखिए एक साथ बैठे हैं, बातचीत सब लोगों ने किया है, सुलह हमारा अरे सुलहनामा के लिए यहाँ कोई बात थोड़ी थी, यहाँ तो आगे की रणनीति बना रहे हम लोग चुनाव के लिए। तो आप दूसरे
0: रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, अनंत सिंह वर्सेस नीरज कुमार, कैसे खत्म होगी ये रात?
3: देखिए, जो ताज़ा जो घटनाक्रम है उसमें आपने देखा नीरज कुमार के बयान को किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड है, यूनाइटेड सब कुछ है यहाँ पर और कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए ये तो जो है सब कुछ सामने दिखाने की कोशिश है। लेकिन पीछे पर्दे के पीछे खेल साफ है कि अनंत सिंह जो जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं, उन्होंने आज साफ कर दिया, जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह के नामांकन में वो पहुंचे और कहा कि 200% 500% 1000% जो है अनुज सिंह जीतेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि नीरज कुमार और अनंत सिंह ये दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, बार मोकामा का क्षेत्र है और दोनों की अदावत काफ़ी पुरानी है और इसीलिए अनंत सिंह ने नीरज कुमार को हराने के लिए कमर कस लिया है। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल के लिए नीरज कुमार ने अपनी बात कह दी कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन अब कहानी इसमें ये हो गई है कि अनंत सिंह को समझाएगा कौन? जिस दिन वोटिंग होगी तो उस दिन आखिर क्या होगा, क्योंकि अनंत सिंह खुलकर जन स्वराज के पार्टी के समय उम्मीदवार का जो है वो समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार अनंत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, कर पाएंगे? क्योंकि अनंत सिंह का एक पैरेलल साम्राज्य, एक पैरेलल सरकार चलती है मोकामा में, बाहुबली छवि के नेता है, आप भी जानते होंगे हिमांशु,
0: इंतजार कर लेते हैं समाधान क्या निकलता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार से उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निशाना साधा गया, किस पर साधा गया? 2017 से पहले की जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उस पर। और क्या कहा कि पहले तो नाक रगड़ी जाती थी माफिया के सामने। अखिलेश सरकार पर, पूर्व की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। अब जो चुनावी लड़ाई है वो माफिया गिरी तक आ गई है, पुलिस माफिया के सामने मजबूर थी ऐसा कहा। हर जिले में माफियाओं का बोलबाला था, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के सम्मान समारोह में कही। और सम्मान पाने वाले 26 पुलिसकर्मियों में 10 को वीरता पदक, 16 को पुलिसकर्मियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक से नवाजा। पुलिसकर्मियों में कीर्ति चक्र पाने वाले निरीक्षक स्वर्गीय सुनील कुमार के परिवार को भी सम्मान दिया गया।
7: यहां पर ये भी होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने। पुलिस के रिफॉर्म के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति और भी खराब थी, खपड़े के टूटे हुए भवनों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ट्रेनिंग की स्थिति उससे भी खराब थी। 6000 पुलिसकर्मी की साल में ट्रेनिंग हो सकती थी, पीएससी की एक एक बहानी को समाप्त किया गया, यानी दंगाइयों के काल को जब आप समाप्त कर देंगे तो दंगाई तो कर्फ्यू लगाएंगे। और यही तो होता था, महीनों कर्फ्यू, कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। 2017 के बाद उस हताशा और निराशा को दरकिनार करते हुए, पॉलिसी पैरालिसिस से इस प्रदेश को भारते हुए, आज हम लोगों ने बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम किया।
0: तो देखिए, ये तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, लेकिन एक ही दिन पहले की बात है जब अखिलेश यादव की तरफ से भी निशाना साधा गया था कानून व्यवस्था को लेकर, पहले की व्यवस्था को लेकर, अब की व्यवस्था को लेकर। तो अखिलेश यादव का भी बयान आपको सुनाते हैं।
8: देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का फाइन लगाया है, 10 लाख का, और इससे पहले एक जिलाधिकारी पे भी लग चुका है फाइन, और अगर पूरा रिकॉर्ड उठाएंगे 10 साल का, कभी हाई कोर्ट ने, कभी सुप्रीम कोर्ट ने, सवाल खड़े किए हैं पुलिस पर, और पुलिस ने जैसा व्यवहार किया उत्तर प्रदेश में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फर्जी इनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे। और सोचिए चप्पल पहन करके इनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
0: देखिए आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए। आशीष, ये बात तो तय हो गई कि 2027 का जो चुनाव है वो भी माफियागिरी, सुरक्षा व्यवस्था, एनकाउंटर, इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा, और ये मुद्दा बनाया जा रहा है दोनों तरफ से।
9: बिल्कुल हिमांशु, देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार साफ तौर से कहती है कि पहले माफियाओं के समानांतर सरकार चलती थी, यानी कि एक तरफ सरकार थी तो दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार माफियाओं के संपर्क में रहती थी, और यही वजह है कि अब की सरकार ने कैसे रीढ़ की हड्डी तोड़ी है माफियाओं की, कैसे बुलडोजर चलाया और कैसे इनकाउंटर किया है, और ये साफ तौर से वही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था, यानी कोशी कला मथुरा से लेकर मेरठ तक दंगे हुआ करते थे और उसको देखने के लिए भी कोई नहीं हुआ करता था, सरकारें सपोर्ट करती थी, लेकिन आज न दंगा है सब कुछ चंगा है, इस तरीके के शब्द हैं। तो ये साफ कहना है कि कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा चेंजेस आया, पुलिस के रिफॉर्मेशन में हुआ है, पुलिस को अलग से रिफॉर्म किया है, साथ ही साथ जो अपराधी थे वो पूरी तरीके से खत्म है, जो माफिया थे वो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, इस तरीके का व्यक्तित्व है योगी आदित्यनाथ ने साफ किया। और यही उत्तर प्रदेश 2017 में इन्हीं माफियाओं के कब्जे में रहता था, इन्हीं के लोगों के कब्जे में रहता था, जिसकी वजह से पूरा सफर कर रहा था। तो योगी आदित्यनाथ सरकार अपने इसी एजेंडे के साथ 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और साफ तौर से पहले तो बुलडोजर,
0: ये बहुत स्पष्ट भी कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो वहां पर 10 राज्यसभा की सीटों पर भी अब तैयारी गुड़ागढ़ित वहां पर लगा हुआ है। देखिए 7 तो बीजेपी की पक्की है, 2 समाजवादी पार्टी की पक्की है, लेकिन एक सीट को लेकर जो आजमाइश की जा रही है तो दोनों खेमे एक दूसरे के विधायकों पर नजर गड़ाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि एनडीए के कुछ विधायक उसके संपर्क में हैं और टिकट की गारंटी मिलने पर क्रॉस वोटिंग की तैयारी हो सकती है। विधानसभा की 7 सीटें खाली हैं, अधिकतम 395 वोट पड़ सकते हैं और एक राज्यसभा सीट के लिए करीब 37 वोटों की जरूरत होगी। अब अखिलेश की पार्टी के पास फिलहाल 2 सीटें जीतने की विधायक हैं, लेकिन तीसरी सीट के लिए जरूरी संख्या पूरी नहीं होती, 9 और चाहिए अतिरिक्त। अब राजभर की पार्टी 2 विधायकों के समर्थन की आस के बीच समाजवादी पार्टी का दावा है कि निषाद पार्टी और अपना दल एस के कुछ विधायक भी संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी के 6 से 7 विधायकों के संपर्क में होने का दावा भी कर रही है।
10: विसात पर राज्यसभा की 10 सीट और अखिलेश का ये दांव, पहले कदम के तौर पर अखिलेश ने पहले 2 चेहरे चुनाव में उतारे। राम गोपाल यादव को तो आप पहचानते हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अखिलेश के चाचा भी हैं, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को देखकर सबको हैरानी हुई। इनका परिचय भी जान लीजिए। इनका नाम धनराज परिमल नाथवानी है और ये अंबानी परिवार और ग्रुप से जुड़े हैं। धनराज परिमल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्रुप प्रेसिडेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रमुख यूनिट हेड है। नवंबर 2022 से गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। धनराज परिमल नाथवानी के पिता परिमल नाथवानी 4 बार के राज्यसभा सांसद रहे। धनराज नाथवानी को मैदान में उतारकर अखिलेश ने नई खलबली मचा दी है। अभी यह साफ नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से दूसरे या तीसरे उम्मीदवार होंगे, लेकिन नाथवानी के पास धन की ताकत है और इसलिए इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना अब काफी बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी तीसरी सीट के लिए एनडीए खेमे में सेंध लगा पाएगी?
8: संपर्क में तो बहुत हैं, लेकिन एडजस्ट कैसे करें? हम वादा करके वादा खिलाफी नहीं करना चाहते।
11: क्या माना गया 3 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे?
8: नहीं, देखिए ऐसा है, तो जो हमारे साथी यहाँ से पूछ रहे हैं कि संपर्क में कितने हैं, बहुत लोग संपर्क में आना चाहते हैं। बहुत जल्दी हमारी कोशिश है और जो गठबंधन पहले था वही गठबंधन आगे रहेगा।
10: आंकड़ों की बिसात पर देखें तो मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए तीसरे सीट पर जरूरी वोट का जुगाड़ कर पाना मुश्किल दिख रहा है। तो पहले आंकड़े क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। यूपी विधानसभा में 396 विधायक हैं, इस लिहाज से एक सीट के लिए 37 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 255 विधायक हैं, एनडीए के पास 293 विधायक हैं। इस लिहाज से एनडीए की 7 सीट पर जीत पक्की है। 8वीं सीट के लिए एनडीए के पास 34 वोट हैं और उसे 3 वोट की ओर दरकार है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर 98 वोट होते हैं, तो इस खेमे की 2 सीटों पर जीत पक्की है। तीसरे के लिए 24 वोट बचते हैं, यानी 13 वोट की और दरकार है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन इसमें कई पेच हैं।
12: अखिलेश यादव ने अभी अपना तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारा है और पूछने पर यह भी कहा है कि तब उतारेंगे जब सीटों का यानी विधायकों का इंतजाम हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी को बहुत कम से कम अपने 7 जिताने के बाद उनके पास 33 से 34 विधायक अतिरिक्त है अगर पूरे एनडीए को एकजुट माना जाए तो, और अखिलेश यादव को अगर उनके पास जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसमें 12 विधायकों की जरूरत है, जिसमें उन्हें बीजेपी के सहयोगी दलों में से क्रॉस वोटिंग और साथ साथ कुछ बीजेपी के भी विधायकों की जरूरत पड़ेगी। कौन बाजी मारेगा कहना मुश्किल है, लेकिन तीसरे समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए 8वें यानी कि 1 सीट 10वें सीट के लिए चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: तो ये तो आपने यहाँ पर देख लिया, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी वालों के ऊपर है। बीजेपी वाले 7 लड़ाना चाहते हैं, 8 लड़ाना चाहते हैं, 9 लड़ाना चाहते हैं, 10 लड़ाना चाहते हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। और ये भी कहा कि उनको हराने के लिए जिसको आना है वो आए, उसका स्वागत है। देखिए, हर किसी की नजर वो एक अतिरिक्त सीट पर है, 7 और 2 का तो हिसाब किताब बहुत क्लियर है, लेकिन उस सीट को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं।
13: भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, वो अपनी तैयारी करें, हमारी अपनी तैयारी है, सरप्राइज तो हम देंगे।
14: सर कह रहे 10 विधायक उनके टच में हैं,
13: हमारे पास तो 25 विधायक उनके टच में हैं।
15: देखिए, समाजवादी पार्टी अगर अपने अखाड़े पहलवानों को लाती तब तो समाजवादी पार्टी कहलाते हैं। अब समझ सकते कैसे लोगों को लाई है, अब उसका जवाब जनता देख रही है कि कैसे लोगों के नाम करते हैं, पिछड़े नाम कहते हैं, दलित नाम कहते हैं कि अल्पसंख्यक, लेकिन काम किस तरीके का आप समझ सकते हैं। अब विपक्ष के लोग हैं, अपना इसीलिए विपक्ष में बैठ रहे हैं, खाली इसी तरह के लोगों के प्रत्याशी के चयन में।
16: समाजवादी पार्टी अपने परिवार को देखें, उनको भारतीय जनता पार्टी से एक भी विधायक मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में ही ढेर सारे दूसरे दलों के विधायक आने को आतुर हैं और भारतीय जनता पार्टी समय आने पर जरूर ऐसे सभी माननीय विधायकों के बारे में विचार करेगी, काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं दोहराता हूँ, 27 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं।
17: राज्यसभा चुनाव में तीसरे उम्मीदवार की घोषणा,
16: देखिए आप इंतजार करें और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी शीघ्र ही आपके समक्ष लिस्ट लेकर के हम आएंगे।
0: देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश से आपको ले चलते हैं पंजाब, और पंजाब से ये खबर है कि विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष को बदलने का मन बना लिया गया है। ये बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पंजाब चुनाव के कुछ महीनों पहले ही अध्यक्ष बदलने का फैसला किया है और एक दो दिन में इसकी घोषणा हो सकती है। राजा अमरिंदर वडिंग को बता दिया गया है कि पीसीसी प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और उन्हें अब पद छोड़ना होगा। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे हैं। दूसरा विकल्प परगट सिंह। राजा अमरिंदर वडिंग ने 2022 में पंजाब कांग्रेस प्रमुख का पद संभाला था। सूत्र ये बता रहे हैं कि राजा अमरिंदर वडिंग आज दिल्ली आ रहे हैं, वो राहुल गांधी से एक दो दिन के अंदर मुलाकात भी करेंगे।
18: सर, आपने इतने टाइम होल्ड किया फोर्ट और अचानक से बात आ रही है रिप्लेसमेंट की, क्या आपको कम्युनिकेट कर दिया गया है?
19: प्लीज आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग, आई विल ब्रीफ यू after some while. Huh? Thank you.
20: Sir.
19: I will brief you after some while. Not now, but thank you very much. And please, मैं इनको walk करना है.
20: Sir, क्या आपने resign किया? Offer किया है resign करने के लिए? राजा अमरिंदर वड़िंग जो कि हमसे एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे, और आपको बता दें कि सुबह का समय है और कहा है बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ बात है कि रिप्लेसमेंट हो रही है और उसकी पुष्टि कांग्रेस हाई कमांड से आई ज़रूर है, और उसमें एक बड़ा फेर बदल की बात कर रहे हैं हम लगातार, और सीधा पहली बार राजा अमरिंदर वड़िंग खास तौर पे तब जब ये घोषणा अब हो रही है कल कुछ घंटों में, और उन्होंने कहा वो दिल्ली जा रहे हैं. कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक.
21: और देखिए असीम बसी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. असीम जरा बताइए, चुनावों से पहले अचानक कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष बदलने का जो फैसला लिया गया है, क्या रिएक्शन आ रहे हैं, कौन से नामों पर चर्चा हो रही है, अंदर से क्या खबर है?
22: देखिए चर्चा तो नहीं है, अब तो क्लियर हो गया है. अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने, जब हम बात कर रहे हैं तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक्स के ऊपर पोस्ट कर दिया अपने आप को फॉर्मर पंजाब यूथ पंजाब कांग्रेस चीफ. सो उन्होंने फॉर्मर चीफ अपने आप को लिख दिया है. सुबह वो कमेंट नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, बोला था मैं मीडिया ब्रीफिंग करूंगा, लेकिन अब कुछ मिनट पहले ही उन्होंने अपने आप को फॉर्मर पंजाब कांग्रेस चीफ जो है एक्स हैंडल पर लिख दिया है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है. डेफिनेटली पंजाब कांग्रेस जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, आपस में गुटबाजी थी, डिवीजन बहुत ज्यादा थी. एक गुट था बड़ा गुट चन्नी और दूसरे बड़े नेता जो चाहते थे कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो है वो उनको कांग्रेस की प्रधानगी ना दी जाए, उनको हटाया जाए, बदला जाए. लेकिन अब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस पूरी चर्चा के बीच में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने खुद अपने आप को फॉर्मर चीफ जो है वो डिक्लेयर कर दिया है एक्स के ऊपर. जहां तक कि नामों की बात है, जी हां, फॉर्मर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला जो कि हिंदू फेस हैं, उनका नाम जो है फ्रंट रनर जो है माना जा रहा है. इसके अलावा प्रगट सिंह जो कि ओलंपियन है, पहले वो श्रोमणी अकाली दल में भी रहे थे, कांग्रेस में भी अभी वो मौजूदा एमएलए हैं जलंधर कैंट से, उनका भी नाम जो है वो रेस में है. सुखजिंदर सिंह रंधावा एक नाम है, गुरजीत औजला एक नाम है. लेकिन जो अगर माना जाए तो जो कहा जा रहा है कि विजेंद्र सिंगला और प्रगट सिंह के बीच में जो काफी मुकाबला है इस पूरी रेस में. लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह है, सुबह से अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो है टालमटोल कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, लेकिन वो आज दिल्ली जा रहे हैं. इन्होंने आज तक पे कंफर्म किया था कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद को
21: अच्छा जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे असीम, वो हम तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं कि आप यहां पर देखेंगे उनका जो एक्स वायु है उस पर आप देखेंगे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और लिखा है फॉर्मर प्रेसिडेंट आईएनसी पंजाब. ये अब पुष्टि उन्होंने खुद कर दी है, फॉर्मर प्रेसिडेंट उन्होंने बताया है पंजाब कांग्रेस का. और यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक.
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो. इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
24: Maddie, I need to open a savings account.
25: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
24: स्मॉल बैंक,
25: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege rdf, there's nothing small about them.
24: Okay.
25: Ujjivan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
8: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
10: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

एक हिंदुस्तानी की वजह से टली 9/11 जैसी घटना। भारतीय पायलट की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा स्मित पर गर्व है। जख्मी होकर भी 174 यात्रियों की बचाई जान। ट्रंप नेतन्याहू समेत दुनिया का सलाम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के इस्तीफे पर लगी मोहर। सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा, पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। एमएलसी चुनाव में बिहार जेडीयू में बड़ी बगावत। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार के खिलाफ किया खुला विद्रोह। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार। यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। दो साधुओं की हत्या के बाद इलाके में तनाव। मर्डर के बाद शव को जलाया गया, एक संदिग्ध हिरासत में। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को रौंद कर फाइनल में बनाई जगह। अब तक के सबसे कम स्कोर पर सिमटे विरोधी। गोल्ड मेडल के लिए अब पाकिस्तान से होगा मुकाबला।

देखिए अक्टूबर में इस वक्त बिहार पानी पानी हो गया है और ऐसे हालात वहां पर हो गए हैं, नेपाल से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और पानी छोड़ने की वजह से बिहार का पटना हो या फिर अलग अलग इलाके हो, जितने भी नदियों के किनारे से लगते हैं वहां पर हर जगह लोगों की परेशानियों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जल स्तर थोड़ा सा कम होता है उसके बाद दोबारा से, अब जहां पर लोगों के सैर सपाटा हुआ करता था सुबह शाम, वहां पर अभी आप देखिए वहां पर गंगा जी का पानी इस वक्त देखा जा रहा है। इतना ज्यादा पानी इस वक्त भर चुका है, महावीर घाट भद्र घाट की सड़कों पर गंगा जी का जल पानी है। पानी सड़क पर आने से स्थानीय लोग, आने जाने वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अब निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता बढ़ गई है फिर से, क्योंकि सैलाब आया। अब देखिए जो खाट है खटिया है वहां तक पानी पहुंच गया है, छज्जे तक पानी पहुंच गया है, ट्रैक्टर का सहारा लिया जा रहा है वरना छोटी गाड़ियां तो चल ही नहीं पा रही हैं। और एक बार फिर शहर में चलने लगी है नाव,

0: पटना में गंगा ने फिर से रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, घाट डूब चुके हैं, सड़कें डूब गई हैं और अब और निचले इलाकों में पानी दस्तक देने लगा। जिस रास्ते पर कभी लोगों की आवाजाही होती थी, आज वहां गंगा जी का पानी है। पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट कर दिया। सीएम सम्राट चौधरी ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया। बिहार में बाढ़ की दूसरी बड़ी तस्वीर गंडक के इलाकों से सामने आई। नेपाल में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद नारायणी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। अब पानी में कमी के संकेत हैं, लेकिन बिहार के निचले इलाकों में पानी पहुंचा और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी।
1: पश्चिम चंपारण में गंडक नदी जब उफान पे आई तो कई जगह पे तटबंध टूटे। हमने आपको खैरटवा की तस्वीर दिखाई और इस वक्त हम जो दूसरी जगह पर तटबंध टूटा है वहां मौजूद है और नतीजा देखिए आपको दिखाते हैं। ये चंपारण तटबंध का दूसरा छोर है जहां पे टूट हुई और पूरा का पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो चुका है। आबादी किसी तरह अपने जीवन को सुरक्षित निकालने के लिए यहां से जुगत कर रही है। ये सामने स्कूल भी है और ये सब कुछ डूब चुका है। पूरी आबादी, किसी के घर में ना तो चूल्हा जल रहा है ना फिर लोग हैं।
0: अब नेपाल में बारिश थम चुकी है, नारायणी के जलस्तर में भी कमी आई, लेकिन जो पानी नीचे की तरफ बढ़ा उसका असर बिहार के कई इलाकों में दिखा। गंडक की बाढ़ ने बगहा में भी लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
1: आपदा कैसे आपको घर से विस्थापित करती है और कैसे आपको ससुराल जाना पड़ता है, उसकी एक

0: है ना फिर लोग हैं।
1: अब नेपाल में बारिश थम चुकी है, नारायणी के जलस्तर में भी कमी आई, लेकिन जो पानी नीचे की तरफ बढ़ा उसका असर बिहार के कई इलाकों में दिखा। गंडक की बाढ़ ने बगहा में भी लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
0: आपदा कैसे आपको घर से विस्थापित करती है और कैसे आपको ससुराल जाना पड़ता है, उसकी एक कहानी यहाँ दिखती है। जब हम वाल्मीकि नगर बगहा के मुख्य सड़क पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं किशोर जी, सबको लेकर गया?
2: अब हमारा ससुराल है वहाँ लौरिया।
1: हार में सिर्फ इंसान ही नहीं जंगली जानवर भी फंस गए। यह तेज बहाव से बचने के लिए तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब मोतिहारी की तस्वीर देखिए। नेपाल से आया पानी अरिराज और संग्रामपुर के बाद अब केसरिया के इलाकों को भी मुश्किल में डाल रहा है। घर में पानी घुसा तो लोगों ने बांध को अपना नया ठिकाना बना लिया। एक तरफ पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, दूसरी तरफ गंडक के किनारे बने गांवों में बाढ़ का पानी, यानी बिहार में बाढ़ का खतरा भी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
3: तो जो हालात बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश में भी इससे कुछ अलग हालात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ बारिश की वजह से परेशानी लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई और यह बताया जा रहा है कि करीबन 23 गांव हैं और वहां की 33,000 की आबादी प्रभावित है। रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश में नदियों का बढ़ता जलस्तर अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सीतापुर हो या गोंडा, बाढ़ का पानी गाँव से लेकर शहरों तक पहुँच चुका है। कहीं घरों के अंदर पानी है तो कहीं लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। चारों ओर पानी और तबाही की तस्वीर बता रही है कि सीतापुर में बाढ़ का कहर कितना खतरनाक है।
4: सीतापुर में इस वक्त बाढ़ के हालात बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुके हैं। हालात ये हैं कि केवल ग्रामीण इलाकों में नहीं, शहरी इलाकों में लोग इतना परेशान हैं कि अपने मकानों को छोड़कर वो यहां से जा चुके हैं। मकानों की स्थिति हम कहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरीके से पूरा पूरे मकान पानी में डूबे हुए हैं। यह मकान वो हैं जो नदी से काफी दूरी पर बने हुए हैं और दूर दूर तक देखेंगे उस तरफ, अपने हमारे बाएं हाथ की तरफ देखेंगे किस तरीके से मकान पानी में पूरे पूरे डूब चुके हैं। लोग यहाँ पर घरों को छोड़कर जा चुके हैं। कुछ लोगों ने सरकारी व्यवस्थाओं का सहारा लिया है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते नातेदारों के यहाँ शिफ्ट हुए हैं। दूर दूर तक जहाँ तक मेरी नजर जाती है सिर्फ पानी और पानी ही दिख रहा है।
1: सीतापुर में बीते 3 दिनों से शहरी इलाकों की सरायन के साथ साथ तेरई नदी और ग्रामीण इलाकों की घाघरा और शारदा नदियों में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
5: हो गया पानी उसमें और सब लोगों का सामान सब डूब गया है और टाइम भी नहीं दिया गया। एक दिन में ये सब काम हो गया, 24 घंटे भी नहीं हुए तो सबका इतना नुकसान हुआ है। सब जरूरी कागज बच्चों के सब जो भी है बैग वगैरह ये वो सब सब सब तबाह हो गया सबका घर।
6: इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, उनका क्या होने वाला है ना। हमें सूचना दीजिएगा, 2 घंटे के अंदर हमारे घुटनों तक घरों के अंदर पानी था, अब हमारे पलंग तैर रहे हैं, एक एक मंजिल पानी भर चुका है, उसका क्या होगा।
7: प्रिया और मेरी माँ की भी देख लीजिए, माँ की भी मेरी दवा चल रही है, अभी रात रात उनकी तबियत खराब हो तो हम कैसे जाएंगे। पीछे भी पानी आ रहा है, ऑटो सब मेन सड़क से आएंगे, गली से नहीं आएंगे, तो हमें तो ये भी देखना है, माँ को भी देखना, अपना घर भी देखना है।
1: उधर गोंडा में भी घाघरा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर पहले की तुलना में कुछ नीचे आया जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गोंडा की तरबगंज और करनैलगंज तहसील के 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 33,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में बताई जा रही है। कई परिवारों के घरों में पानी भर गया तो उन्होंने सड़क किनारे ही अपना डेरा जमा लिया। बाढ़ के पानी ने दोनों जिलों में लोगों की जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। प्रशासन राहत और बचाव के इंतजामों में जुटा है, लेकिन नदियों का जलस्तर और बढ़ा तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल बाढ़ प्रभावित लोगों को इंतजार है पानी उतरने और जिंदगी के फिर से पटरी पर लौटने का। आज तक ब्यूरो।
3: और देखिए अब जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां पर 2 साधुओं की हत्या के मामले में माहौल काफी गर्मा गया है और ये बताया जा रहा है कि जो 2 साधुओं की हत्या की गई, यहां पर देवस्थान के भीतर ही दोनों साधुओं के शव मिले। हत्या के बाद शवों को मंदिर परिसर में ही जलाने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है।

0: शाहजहांपुर में सनसनीखेज वारदात। दो साधुओं की बेरहमी से हत्या। पहले मर्डर, फिर मंदिर में जलाया। मंदिर पर कब्जे के चक्कर में मर्डर। शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र के सूथा गांव की ये भीड़ अचंभे में है। इस गांव में होश उड़ा देने वाली वारदात हुई है, जिस यूपी के सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ है, उस यूपी के इस गांव में दो साधुओं का कत्ल हुआ है। सिर्फ कत्ल ही नहीं हुआ, देवस्थान के भीतर दोनों साधुओं के शवों को जलाने का भी कृत्य हुआ।
1: गांव के ही बाहर एक देवस्थान बना हुआ है, यहाँ पे दो सन्यासी हैं, उन लोगों दोनों के जो शरीर है वो जले हुए अवस्था मिले। तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस, सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची है।
0: इस देवस्थान का हाल देखिए, यहाँ चारों तरफ जली लकड़ियों के टुकड़े और साधुओं के अधजले शवों के अवशेष बिखरे हैं। दो बूढ़े साधु बाबा गोपाल दास और बाबा बिहारी दास इसी देवस्थान में लंबे अरसे से रह रहे थे, लेकिन बीती रात उनकी हत्या कर दी गई। अब सवाल यह है कि दो बुजुर्ग साधुओं से आखिर किसकी दुश्मनी थी, साधुओं की बेरहमी से हत्या के पीछे वजह क्या थी। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और हत्या के पीछे जो कहानी बताई जा रही है वो आप खुद एसपी से सुनिए।
1: गांव वालों ने प्रारंभिक तौर पे इस बात की पुष्टि की है कि दोनों सन्यासियों को ही उसने कुछ एक बार कहा था कि आप दोनों लोग यहां से हट जाइए और मैं यहां पर अब रहने वाला हूं, मेरा ही एकाधिकार होगा। इसी प्रथम दृष्टया इसी बात को लेकर के कल देर रात में ये घटना कारित की गई है। मौके से सभी भौतिक साक्ष्य संकलन करते हुए जो दोनों जले हुए शव थे उनको घटना का सही समय और सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। थाना पुलिस को जो तहरीरी सूचना मिली थी उसके आधार पे नामजद आरोपी सुमित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
0: अगर पुलिस की थ्योरी सही है तो सवाल यह है कि एक अकेला शख्स दो साधुओं की हत्या कैसे कर सकता है। क्या इस हत्याकांड में कई लोग शामिल रहे, यानी कि यह सामूहिक हत्या का मामला तो नहीं है। पुलिस को भी इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने हैं और इस केस की कड़ियां जोड़ना बाकी है। विनय पांडे, शाहजहांपुर, आज तक।
2: आप दिल्ली में रहते हैं तो देखिए, नया महीना जो नई तारीख आई है ना, ये आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आई है, तो वो आप तक पहुंचा देते हैं हम। और अगर आपकी गाड़ी में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो अब आपको पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। क्योंकि किया क्या गया है कि करीबन ये बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो गाड़ी की नंबर प्लेट देखते हुए बताएंगे, और उसमें से अगर आपकी गाड़ी में पॉल्यूशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर आपको वहां पर ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल मिलेगा। ये पूरी तैयारी कर दी गई। देखिए, 500 पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड सेंटर ऐसे लगाए गए हैं, पीयूसी नहीं तो पेट्रोल नहीं। अब पेट्रोल पंप पर जो कैमरे लगाए गए हैं वो आपकी जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है उस नंबर प्लेट से पहचान करेंगे, और उसमें सारा जो डाटा आता है वो डाटा सामने आ जाएगा, पीयूसी वैध नहीं है, एक्सपायर हो गया है, हुआ नहीं है, तो वहां पर अनाउंसमेंट हो जाएगा तुरंत। मतलब आपको तो पता चलेगा ही चलेगा, बाकियों को भी पता चल जाएगा। पीयूसी बनाने का विकल्प भी होगा, जो पेट्रोल पंप पर आमतौर पर आपने देखा होता है तो वहां पर आप पीयूसी बनवा भी सकते हैं, और नहीं बनवाने पर 10,000 का जुर्माना है। मतलब ऐसा नहीं, अच्छा खासा खर्चा होगा, तो इसीलिए आप गाड़ियों का अब पीयूसी बनाकर आप रखें। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: देखें, यहाँ पे ये कैमरेज लगे हुए हैं, ये कैमरा जो है ये सीधा परिवहन ऐप जो है या जो वेबसाइट है उसके सर्वर से कनेक्टेड है। इन कैमरेज के तहत जैसे ही कोई भी गाड़ी इन पेट्रोल पंप पर पहुंचती है, जिसके पास एक वैलिड जो है वैलिड

0: हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके लिए कुछ समय मिलता है और अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इन्हीं पेट्रोल पंप्स पे आप देखें तो कुछ इस तरीके से जो है ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने वाले जो कियोस्क हैं वो भी लगे हुए हैं लगातार। और जैसे ही ये पता लगता है कि अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, कुछ समय दिया जाएगा और आपने उसके बाद भी अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन फिट चेक नहीं कराया तो करीब 10,000 रुपए तक का जो फाइन है ये आएगा।
1: देखिए, वो कहा जाता है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मतलब सरकारी स्कूलों में छात्र जाते हैं शिक्षा पाने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए, लेकिन होता क्या है, ये दो तस्वीरों को देखिए आपको समझ में आएगा। यही इमारतें बच्चों के लिए खतरा बन जाएं तो सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी और जवाबदेही का है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी स्कूल की छत का एक हिस्सा उस वक्त गिरा जब क्लास में बच्चे मौजूद थे, 6 छात्राएं घायल हुई, 1 की हालत गंभीर। तो बिहार से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई।
2: खगड़िया के अमनी गांव का यह सरकारी स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई के बीच अचानक मातम पसर गया। स्कूल की सीढ़ी का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। हादसे में 9 साल की एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 3 बच्चे घायल हो गए।
3: आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी का जो है कुछ हिस्सा जो है आज जो है टूट करके जो है नीचे कर गिर गया, ये जिस कारण जो है इसमें इसके मलबे में दब करके कुल 4 बच्चे आए जिसमें 1 की मौत हो गई मौके पर जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
2: हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। गांव वालों का आरोप है कि स्कूल की सीढ़ी पिछले करीब 6 साल से जर्जर थी क्योंकि इसके निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया।
4: देखिए सर, ये 2020 से ही जर्जर था। 2020 से ही इसे इसके 25 में बोला गया था कि मास्टर को बोला गया था कि देखिए, हम सब खुद चढ़ते थे तो जो है ना हिलता था।
2: हादसे के बाद जिलाधिकारी ने जाँच के लिए टीम गठित कर दी है। टीम को 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सीढ़ी लंबे वक्त से जर्जर थी तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हुई? स्कूल भवन की स्थिति की नियमित जांच कौन करता है? और अगर कहीं निर्माण में गुणवत्ता से समझौता हुआ था तो उसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन का कहना है कि जाँच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी।
5: इसमें जो भी जाँच है वो जाँच करे और केवल विभागीय कार्रवाई नहीं, अगर आवश्यक पड़ेगी तो हम लोग कानूनी कार्रवाई जो दोषी हैं उन पे करेंगे।
2: अब तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ की। माहूर तहसील के इस स्कूल में भी इमारत सवालों के घेरे में आ गई। यहाँ स्कूल की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। हादसा उस वक्त हुआ जब दोपहर की क्लास में करीब 15 से 20 छात्राएं मौजूद थीं। छत गिरते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गई। शिक्षकों ने तत्काल छात्राओं को क्लासरूम से बाहर निकाल लिया। हादसे में 6 छात्राएं घायल हुई, इनमें 1 छात्रा की हालत गंभीर बताई गई जबकि 5 छात्राओं को मामूली चोटें आईं। यह भी शुरुआती तौर पर स्कूल भवन की खराब हालत को हादसे की वजह बताया जा रहा है। यानी बिहार के खगड़िया से लेकर महाराष्ट्र के नांदेड़ तक कहीं सीढ़ी बच्चों के लिए खतरा बनी तो कहीं स्कूल की छत। ये घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं है बल्कि स्कूल भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। खगड़िया से स्वतंत्र कुमार और नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले आज तक।
1: और यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मुंबई के साकिनाका से हादसे की सीसीटीवी की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक गोदाम की बालकनी का हिस्सा गिर जाता है, जिससे एक शख्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। मृतक के परिवार वाले इसकी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही निष्पक्ष जांच की भी मांग की जा रही है। हादसे का विजुअल देखकर मुंबईकर गुस्से में हैं और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: यूपी में सीटों के बंटवारे की लड़ाई अब इस मुकाम तक पहुंच गई है कि कांग्रेस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। यूपी में कांग्रेस के प्रभारी ने नई लाइन भी खींच ली है।
1: सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
2: 150 प्लस या 150 माइनस प्लस 150 प्लस
1: जी।
0: राजेंद्र पाल गौतम जो कुछ और जिस अंदाज में कह रहे हैं उस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तलखी पहले ही हद पार करती रही है। याद कीजिए, थोड़े दिन पहले की बात है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो मुस्लिम चेहरों की टक्कर हुई थी।
3: कि नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता।
4: अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए।
0: सीट बंटवारे और गठबंधन पर तनातनी के बीच ही अखिलेश रायबरेली पहुंचे थे। वहां उन्होंने रथ यात्रा की और रायबरेली में अपनी ताकत भी दिखाई। रायबरेली यानी वो सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अखिलेश की इस यात्रा पर भी दोनों पार्टी की तनातनी सामने आई थी। और अब इस बीच यूपी में कांग्रेस के प्रभारी का नया बयान आया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। तो अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: एक हिंदुस्तानी की वजह से टली 9/11 जैसी घटना, भारतीय पायलट की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ, कहा स्मित पर गर्व है, जख्मी होकर भी 174 यात्रियों की बचाई जान, ट्रंप और नेतन्याहू समेत दुनिया भर के नेताओं का भी सलाम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के इस्तीफे पर लगी मोहर, सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। एमएलसी चुनावों में बिहार जेडीयू में भी बड़ी बगावत, मोकामा में बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार के खिलाफ किया खोला खुला मोर्चा, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के जहांजहांपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, दो साधुओं की हत्या के बाद इलाके में तनाव, मर्डर के बाद शव को जलाया गया, एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को रौंदकर फाइनल में अपनी जगह बनाई, गोल्ड मेडल के लिए अब पाकिस्तान से होगा मुकाबला, हॉकी मेंस टीम में भी पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: पीएम मोदी ने यूपीएससी के शताब्दी समारोह में कैप्टन स्मिथ मझार की बहादुरी का जिक्र करते हुए उनके साहस और सूझबूझ की सराहना की है। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री के बयान का भी जिक्र किया, बोले कि एक भारतीय ने 9/11 जैसी त्रासदी होने से बचा ली। पीएम मोदी ने कहा कि कैप्टन स्मिथ का पराक्रम पूरे देश को गौरव से भर देता है, उन्होंने देशवासियों के स्मिथ के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने की भी अपील की है। यूपीएससी शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने आयोग की ऐतिहासिक भूमिका का भी जिक्र किया, बोले कि यूपीएससी का पर आज भी लोगों का भरोसा कायम है। यूपीएससी के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शताब्दी समारोह में सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। पीएम मोदी ने फ्लाई दुबई की फ्लाइट को हाईजैक की कोशिश से बचाने वाले भारतीय कैप्टन की पत्नी और माता पिता से भी बातचीत की है, जमकर उनकी तारीफ भी की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने इस त्रासदी किसे इस बात पर जोर भी दिया कि भारतीय मिशन हर संभव मदद कर रहा है। पीएम इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर भी स्मिथ मझार की तारीफ की थी, हीरो बताते हुए उन्हें भारत पर गर्व ये बात कही थी। राष्ट्रपति ने भी की है पायलट के सूझबूझ और अदम्य साहस की तारीफ, ट्वीट कर जल्द ठीक होने की कामना भी की। भारतीय खिलाड़ी की खिलाड़ी भी पायलट के कारनामे के हुए मुरीद, शिखर धवन और सहवाग ने ट्वीट कर प्रशंसा करते हुए जल्द ठीक होने की कामना की। अमर मेघाल मझार फिलहाल सऊदी अरब के एक अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत स्थिर है, भारतीय दूतावास लगातार उनके परिवार से संपर्क में है। मझार की बहादुरी की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारीफ की है, ट्रंप ने कहा कि उन्हें हीरो बताया जबकि नेतन्याहू ने उन्हें सच्चा नायक कहा है। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। दुबई ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जांच पूरी होने तक इसराइल से आने जाने वाली उसकी सभी उड़ानें निलंबित रहेंगी। घटना के बाद इसराइल ने देश में आने वाली उड़ानों पर के पायलटों की सुरक्षा जांच और कड़ी करने का फैसला किया है। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर फिर हुआ महंगा, 19 किलो सिलेंडर के दाम 62.50 रुपए बढ़ गए। दिल्ली में अब कीमत 2810 रुपए हो गई, सितंबर में भी ही 9.50 रुपए इसकी बढ़ोतरी हुई थी। अक्टूबर की शुरुआत में ही कारोबारियों की को बड़ा झटका लगा है, हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे कारोबारियों पर भी बढ़ेगा एलपीजी का खर्च, बड़ी लागत का असर आने खाने पीने की कीमतों पर पड़ सकता है। बिहार विधान परिषद चुनाव में जीडीयू के अंदर बगावत हो गई है। मोकामा से जीडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। पटना स्नातक निर्वाचन सीट से जीडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के विरोध में उतरे हैं अनंत सिंह। जन स्वराज के प्रत्याशी अनुज सिंह की का समर्थन किया है। जीडीयू नेतृत्व के आदेश की अनदेखी करते हुए जन स्वराज उम्मीदवार के नामांकन में भी शामिल हुए अनंत सिंह। लोगों से वोट देने की अपील की। अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर साधा है निशाना, कहा कि डिप्टी सीएम को ई रिक्शा बुक कर लेना चाहिए, उन्होंने अस्पताल को ही बीमार कर दिया है। योगी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले समय में पीडी और जेंजी बीजेपी का सफाया कर देगी। यूपी में मिशन 2027 से पहले बीजेपी का संगठन पर फोकस, आज अहम बैठक में बूथ से लेकर क्षेत्रीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। यूपी बीजेपी के सह प्रभारी की बैठक भी शामिल हुई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी ने 87 इंटरसेप्टर वाहनों को फ्लैग ऑफ किया है और कार्यक्रम में पुलिस सुधारों पर आधारित पुस्तक संघर्ष का विमोचन भी मुख्यमंत्री ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी पुलिस को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस माफिया के सामने मजबूर थी, हर जिले में माफियाओं का बोलबाला था, महीनों महीनों दंगा चलता था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। मारपीट की घटना के सामने आया है वीडियो भी और टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल भी दफ्तर में मौजूद थे। आरोप है कि बदमाशों ने अनुब्रत मंडल को कुर्सी पर बैठाया और उनके सामने ही दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान अनुब्रत मंडल पर भी हमला किया गया। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर झड़प, इलाके में बड़ा तनाव। घटना केरल यूनिवर्सिटी के पास बॉयज हॉस्टल के बाहर हुई थी, जब यूथ कांग्रेस सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकाल रही थी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने दखल दिया है और कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया गया। अयोध्या चढ़ावा चोरी गवास चंपत राय पर बड़ा बयान, कहा कि कितने लोग आए और राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा कमाकर चले गए। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर चंपत राय ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं उन साधुओं को भी जानता हूं जिन्होंने राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा कमाया और चले गए। यूपी के शाहजहांपुर में एक दिन दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दो साधुओं की हत्या से इलाके में मचा है हड़कंप। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम की साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। साधुओं के मर्डर के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया, जिससे अज्ञात कारणों और वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लगाई झाड़ू, लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। दिल्ली के कालिंदी कूच घाट पर भी स्वच्छता अभियान के तहत लगाए गए पौधे, लोगों के साथ मिलकर लगाए गए झाड़ू। दिल्ली में स्वच्छता अभियान पर लगाए गए हैं पौधे, लोगों के साथ मिलकर झाड़ू भी लगाई गई। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत एक घंटा एक दिन एक साथ श्रमदान पर कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी इसमें शामिल। दिल्ली के सफदरजंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाए झाड़ू, लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। बेतिया में सीएम के सामने बाढ़ पीड़ितों ने जताई नाराजगी, लोगों ने विधायक गायब के लगाए नारे, घंटों बाद सुरक्षा में निकले सांसद। कनक नदी में बहकर आया तेंदुआ थककर पेड़ पर चढ़ गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छपरा में बाढ़ के पानी में ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान, तस्वीरें आई सामने। में बाढ़ का कहर, केसरिया की चार पंचायतें जलमग्न हो गई हैं, हजारों लोग प्रभावित हुए। गोंडा में 23 गांव की 33,000 की आबादी बाढ़ से पीड़ित हो गई है। घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जल स्तर। गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद नाव परिचालन पर लगी है रोक, लोगों से सतर्क रहने और स्नान न करने की अपील की गई है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई है झड़प, वीडियो हो रहा वायरल। मुश्किल में सूखे के बीच प्रशासन के दो बड़े फैसले, चारा बहाकर बाहर भेजने पर रोक लगा दी गई, फसल नुकसान पर मुआवजा जल्द देने के निर्देश दिए गए। अहमदाबाद में दंपति पर ट्रिपल मर्डर का आरोप है, 70 वर्षीय महिला का शव सीमेंट से भरे ड्रम में छिपाया, 4 साल बाद खुला राज। हापुड़ में युवक को कमरे में बंद कर तालिबानी सजा दी गई है, बेल्टों से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, 6 पर FIR दर्ज की गई है, पीड़ित पक्ष के घर पहुंचकर भी मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार मामला 29 सितंबर का है, बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, अन्य साक्ष्यों को भी तलाशने में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में भी मीनाक्षी चौक पर सरे बाजार सपा नेता में मारपीट हुई, अल्पसंख्यकों सभा का पूर्व जिला अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है। मथुरा में शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद आश्रम में दिशा कार्यक्रम अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। राजस्थान के धौलपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, करीब 200 बीघा जमीन से अधिक जमीन पर फसल बो रही थी। जलगांव में नगर निगम के लंबे समय से लगे कबाड़ बाजार के अतिक्रमण हटाया गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। संगरूर में 23 साल के युवक की मौत के मामले में परिवार ने मुख्यमंत्री के घर के आगे प्रदर्शन किया, कैबिनेट मंत्री आरोपों पर लगाए गए आरोप। पटना में 2 अलग अलग इलाकों में चेन लूटने की का मामला सामने आया, CCTV में कैद हुई पूरी घटना। महाराष्ट्र के लातूर में ऑटो को कट मारने को लेकर बाइक पर जा रहे 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया, CCTV में कैद हुई पूरी ये घटना। हैदराबाद में कार ने कई राहगीरों को मारी है टक्कर, चालक फरार हो गया, CCTV फुटेज आया सामने। असम के सिलचर में सीएम के काफिले के लिए एम्बुलेंस रोके जाने पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, जांच के बाद आदेश दिए गए। रायसेन दबंग महिला ने स्कूटी चालक युवती को मारे थप्पड़, अज्ञात महिला के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। संत कबीरनगर में चोरी के आरोपों में जेल में बंद कैदी की मौत पर जांच तेज कर दी गई, अधिकारियों ने CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। बिजनौर में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, उसके बाद भी फायरिंग की।

पश्चिम बंगाल में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज हो गई है। मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है कारीगर। पूर्व वर्धमान में कलाकार दिन रात मां की प्रतिमाओं को सजाने और संवारने में जुटे हुए हैं। पूर्व वर्धमान में भी मूर्ति निर्माण के साथ साथ पंडाल बनाने की अभी काम तेजी से, अंतिम चरण में पंडाल की तैयारी चल रही है। पूरी के जगन्नाथ मंदिर में आस्था का भी मेला है। विधि विधान के साथ की गई है महाप्रभु जगन्नाथ की मंगल आरती। भजन कीर्तन पर झूमे श्रद्धालु, भगवान श्री जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। एशिया के फाइनल में शाम से पहुंची भारत की टीम, श्रीलंका को 124 रन से हराया। पाकिस्तान से होगा गोल्ड मेडल का मैच। 170 रन पर टारगेट चेज कर रही थी श्रीलंका की पारी लड़खड़ाकर 10वें ओवर में ही मात्र 45 रन के छोटे स्कोर पर सिमट गई। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेटों पर 159 रन बनाए हैं। ईशान किशन 80 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि वैभव सूर्यवंशी 21 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह और अक्षय पटेल ने दो दो विकेट झटके हैं। अभिषेक शर्मा को भी दो विकेट मिले हैं। इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेगी। फाइनल 3 अक्टूबर को होगा। सुबह 10 बजे से इस खेल को खेला जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सुरक्षा के खतरे को कड़ाई से निपटारे की ऐलान किया। यमन की सरकार को पूर्व समर्थन की भी बात कही है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति के साथ राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर भी की है चर्चा। पिछले हफ्ते दोनों नेताओं में हुई थी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डीजल निर्यात पर प्रतिबंध पर विचार कर रही है की बात कही है। डीजल कीमतें बढ़ने से अमेरिका में चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एलन मस्क को सौंपी है टेक्नोलॉजी वॉरफेयर डिवीजन की कमान। अमेरिका ने कहा है कि प्रोजेक्ट से भविष्य के युद्ध से निपटने में मदद मिलेगी। सीरिया में गैस पाइपलाइन धमाके के बाद बिजली प्लांट में उठती दिखी लपटे। धुएं का गुब्बार गैस सप्लाई ठप होने से 3 पावर प्लांट को उत्पादन रोकना पड़ा है। एंटनी में सनी देओल के साथ साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका भी आएंगी नजर। फिल्म के किरदार में नजर आएंगे विजय वर्मा। अगले साल फिल्म होगी रिलीज। 17 साल बाद आर बालकी की फिल्म में नजर आएंगी विद्या बालन। सोशल मीडिया पर शेयर किया कैप्शन में लिखा नई शुरुआत द न्यू तमिल फिल्म के साथ। हनुमान अंश पर बरस रही है सीताराम की कृपा। 55वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 410 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है फिल्म। यामिनी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एक अनोखे पारिवारिक रहस्य और धमाकेदार एक्शन से भरपूर है फिल्म। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 16 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर ने का पहला गाना रिलीज कर दिया गया। सचिन जिगर की ये कंपोजिशन है। श्रॉफ और शरद केलकर की हॉरर फिल्म काली खेती की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया। 23 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। करण जौहर का ऐलान, 14 अक्टूबर से शुरू हो रहे कॉफी विद करण का 9वां सीजन होगा शो का आखिरी सीजन। इंस्टाग्राम पोस्ट पर हुए भावुक।

0: चले बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर कैप्टन स्मिथ की कुछ ऐसी तस्वीरें जब वो घायल हुए थे कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जब ये पूरी घटना हुई थी उस समय वो कितने ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और देखिए ये तस्वीर है जब उनके घायल होने के बाद की तस्वीर है और खून से लथपथ फिर भी जान बचाने में सक्षम एक ऐसी अनोखी खबर जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है कि कैसे लगातार एक जाबाज पायलट ने करीबन 175 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जाबाज पायलट सैन्य कैप्टन स्मिथ का एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पे देख सकते हैं जब उनको कितनी ज्यादा चोट लगी थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साहस और पराक्रम की एक अनोखी मिसाल दुनिया को के सामने पेश किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय अभी ये ताजा तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग रहा है कितनी ज्यादा घायल वो हो गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने इस सभी की सुरक्षा का ध्यान रखा। अभी उनकी हालत कैसी है क्या इसको लेकर कोई हेल्थ बुलेटिन या कोई जानकारी मिल पाई है?
1: देखिए जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक उनकी हालत फिर बताई जा रही है खतरे से वो बाहर हैं लेकिन उनका इलाज लगातार चल रहा है सऊदी अरब के तबुक में वहीं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जब ये विमान लैंड किया था। लेकिन हर तस्वीर जो इस विमान हादसे को लेकर सामने आ रही है सुमित वो एक बार फिर दहला भी देती है और साथ ही जो है एक बार फिर आपको सलाम करने पर मजबूर करती है कैप्टन स्मिथ मच्छर के साहस को और जिस तरीके की प्रतिनिधि उन्होंने दिखाई उस समय में कि अपनी जान की परवाह किए बिना जिस तरीके से उन्हें लगातार चोटें आई उनके सीने में चोट लगी थी उनके गले के पास चोट लगी थी जिस तरीके से डॉक्टर शौत मुसाव ने कहा जिन्होंने उनका प्राथमिक तौर पर उपचार किया था डेंटिस्ट हैं इसराइल के और इस विमान में सवार थे सबसे पहले उन्होंने ही कैप्टन स्मिथ मच्छर को अटेंड किया था और उसके बाद उनके एब्डोमेन में पेट के अंदर भी चोट लगी थी लेकिन खून निकलने के बावजूद वो लगातार न केवल कॉन्शियस भी बने रहे उन्होंने एयरक्राफ्ट को भी स्टेबलाइज किया कॉकपिट का दरवाजा भी खोला वो जो हमलावर को पायलट था उनका उसको भी वो संभालने की कोशिश कर रहे थे उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे थे और इतनी सारी चीजें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर यानी जहां हर एक सेकंड जो है वो कीमती होता है उस दौरान कैप्टन स्मिथ मच्छर ने जिस तरीके के साहस का नमूना पेश किया वो सभी को पूरी दुनिया में चौंकाता भी है साथ ही भारत के लिए जैसा आपने कहा गर्व का कारण तो बनता ही है लेकिन हर एक डिटेल जो अब सामने आ रहा है वो बताता है कि कितनी मुश्किल हालात के अंदर कैप्टन स्मिथ मच्छर ने उन स्थितियों को संभाला उस विमान को संभाला और कई जिंदगियों को बचाया करीब 180 लोग उसमें सवार थे 154 इजरायली नागरिक उसके ऊपर थे अलग अलग देशों के जो नागरिक उसमें सवार थे उन तमाम देशों की तरफ से भी सराहना की जा रही है कैप्टन स्मिथ मच्छर की।
0: और मेरे हिसाब से पढ़े ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा मामला होगा जहां पर फिक्शन ऑफ सेकंड में क्योंकि आप बात कर रहे थे फिक्शन ऑफ सेकंड में आपको समझ पाना आपको एहसास हो पाना कि परिस्थितियां कैसी ऐसे में आपको डिसीजन लेना कि आपको अपने सभी तमाम यात्रियों की सुरक्षित रखना है आपको उसके आपको आपको गेट भी खोलना है आपको लगातार उस हमलावर को कंट्रोल भी करना है तमाम चीजों को एक साथ हैंडल करना वो भी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सच में एक ऐसा बड़ा अद्भुत आप कह सकते वाक्य होगा जिसमें साहस के साथ साथ पराक्रम के साथ साथ आपकी सूझबूझ भी आप बहुत बड़ी एक तरीके से एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा माइलस्टोन है या फिर एक बड़ा उदाहरण है।
1: बिल्कुल सुमित अदम्य साहस और ये सूझबूझ का मेल कहा जा सकता है जिसमें केवल पायलट ही नहीं बल्कि जो क्रू मेंबर थे जो अन्य यात्री थे सभी लोगों ने आप अंदाजा करिए सुमित उस स्थिति का जहां विमान जो है वो नीचे की तरफ जा रहा हो जहां प्रति सेकंड कई सैकड़ों फीट वो अपना हाइट लूज कर रहा हो और उस दौरान आप हम भी जब सफर करते हैं जरा सा जो टर्बुलेंस होता है उस समय विमान में खड़े होना मुश्किल होता है उस स्थिति के अंदर तमाम लोग इन हालात को भी संभाल रहे थे विमान को संभालने की कोशिश की जा रही थी पायलट्स को जो है वो उनको भी उनकी भी साथ संभाल की जा रही थी यानी जो घायल पायलट हैं और उनको जो है उपचार दिया गया और उसके साथ ही जो पायलट हमलावर था उसको दबिश देकर उसको कंटेन किया गया उसको एक जगह पर रेस्ट्रेन किया गया और उसके बाद जो पायलट थे जैसे आप संयोग कहिए उस विमान के अंदर दो अतिरिक्त पायलट भी सवार थे यात्रियों के अंदर उन्होंने उसको विमान को संभाला और सेफली लैंड किया तबुक के एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसी घटना थी कि यदि इसमें कोई हादसा हो जाता तो अनेक मासूम जिंदगियां जो हैं वो चली जाती तो ये निश्चित रूप से पायलट के साहस की कहानी भी है और साथ ही साथ जो यात्री थे उन लोगों ने भी बड़े साहस का परिचय दिया उन हालात में उन मुश्किल कठिन घड़ियों के अंदर।
0: बिल्कुल प्रणय आप हमारे साथ बने रहिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बता दें कि जो टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल कैप्टन स्मिथ की वो तस्वीर है जब उनको घायल होने के बाद जो वहां पर उस फ्लाइट में मौजूद डेंटिस्ट वो डॉक्टर थे जब उनका उपचार कर रहे थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये था जैसा बड़े उपाध्याय हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तमाम चीजों को कैसे मैनेज करना होता है, अद्भुत साहस का, अपने पराक्रम का और यहां तक कि अपनी सूझबूझ का एक बड़ी मिसाल कैप्टन स्मिथ ने दिया। अब आपको अगली खबर बताते हैं। दरअसल पंजाब चुनाव से पहले बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। पार्टी अध्यक्ष बदलने की खबरों के बीच राजा अमरिंदर वडिंग ने अपने एक्स हैंडल पर स्टेटस बदल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष की जगह अब उन्होंने पूर्व अध्यक्ष लिख दिया है। पंजाब कांग्रेस का एक नए अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी गई। आपको बता दें कि विजय इंदर सिंगला इस दौर में सबसे आगे है। दूसरे विकल्प प्रगट सिंह है और राजा अमरिंदर वडिंग ने 2022 में पंजाब कांग्रेस प्रमुख का पद संभाला था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राजा अमरिंदर वडिंग आज दिल्ली आ रहे हैं। वो राहुल गांधी से एक दो दिन के अंदर ही मुलाकात करेंगे। चलिए पंजाब की बात करते हैं बिहार की। बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबरें मिलने सामने आ रही हैं। विधान परिषद चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में खुलकर विरोध के स्वर सामने आ गए। मोर्चा मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने खोला है। आपको बता दें कि पटना स्नातक निर्वाचन सीट से जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अनंत सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ जन स्वराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में भी आ गए हैं और आज नामांकन के वक्त वो जन स्वराज के उम्मीदवार के साथ वहां मौजूद रहे। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
5: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है।
6: मेरे पास एक आइडिया।
4: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
9: ओ नादान परिंदे बैठो, मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
11: एकदम
10: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
12: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
13: आई लाइक दिस ओनली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
5: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: यार लोन भूल गया। मैरी
11: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
12: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
10: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
12: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
13: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
14: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
15: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंबल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
5: एकदम सॉलिड।
4: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एक भारतीय की वजह से टली 9/11 जैसी घटना। भारतीय पायलट की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा स्मिथ पर गर्व है। जख्मी होकर भी 174 यात्रियों की जान बचाई, ट्रंप नेतन्याहू समेत दुनिया का सलाम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर लगी मुहर। सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा, पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। एमएलसी चुनाव में बिहार जेडीयू में बड़ी बगावत। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार के खिलाफ किया खुला विद्रोह। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार। यूपी के शाहजहांपुर में दिल दहलाने वाली वारदात। दो साधुओं की हत्या के बाद इलाके में तनाव। मर्डर के बाद शव को जलाया गया, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को रौंदकर फाइनल में बनाई जगह। गोल्ड मेडल के लिए अब पाकिस्तान से होगा मुकाबला। हॉकी मेंस टीम भी पाकिस्तान को हराकर फाइनल में।

0: Like, David, my head is...
1: No, you... Adjust the head with it.
2: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero.
3: הדלת הייתה כנראה לא נעולה, והצלחנו איכשהו לפתוח את הדלת, אני ועוד מישהו שעמד לידי, שנראה לי שהוא מהצוות שלהם, טייס אחר.
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हर कोई हैरान, एक ऐसा साहसिक कारनामा जिसका गुणगान आज पूरी दुनिया कर रही है, एक ऐसी दिलेरी जिसकी वजह से 30,000 फीट पर उड़ान भर रहे विमान में अटकी 174 यात्रियों की जान सही सलामत रही। इस पूरी घटना में नायक की भूमिका निभाई है विमान को उड़ा रहे भारतीय पायलट स्मिथ मछार ने। मामला दुबई से टेलीविव जा रहे विमान का है। प्लेन के पायलट पर को पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, उन्हें खून खून कर दिया। फिर भी आरोपी से लड़ते हुए पायलट ने 9/11 जैसी खौफनाक वारदात को टाल दिया। स्मिथ मछार की दिलेरी की हर कोई तारीफ कर रहा है।

0: विमान में यात्रियों के चेहरे की इस खुशी ने संकेत दे दिया कि उनकी जान सुरक्षित है, अब वो खतरे की जद से निकल चुके हैं। इनकी मुस्कान लौटाने वाला जांबाज भारतीय पायलट ने जो किया है उसके लिए पूरा इजराइल उनका शुक्रगुजार है।
1: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. And despite being severely wounded and covered in blood, he kept fighting. With what Israeli officials describes as some of his last remaining strength, he managed to release the cockpit door, allowing passengers and crew to rush inside, overpower the attacker, and ultimately regain control of the aircraft. More than 170 people made it home because of Smit. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero.
0: स्मिथ मच्छर पर नाज है क्योंकि ऐसा साहस दिखाना मामूली बात नहीं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। फ्लाई दुबई का विमान FZ1073 दुबई से तेल अवीव की उड़ान पर था। विमान में 174 इजरायली नागरिक सवार थे। कॉकपिट के अंदर पायलट के रूप में मौजूद थे स्मिथ मच्छर और उनका को पायलट यानी हमलावर भी। विमान करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था कि अचानक ओमानी को पायलट ने स्मिथ मच्छर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले की वजह से विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान नीचे की ओर गिरने लगता है। यात्रियों की जान अटक जाती है। विमान में चीख पुकार बच जाती है। तीस हजार 875 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा बेकाबू विमान गिरकर 16,750 फीट पर पहुंच गया। तब तक प्लेन के कॉकपिट में वार पलटवार होता रहता है। कुछ सेकंड बाद विमान स्थिर होने लगता है। कुल्हाड़ी से को पायलट के हमले में पायलट स्मिथ गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। यात्रियों की जान हवा में अटकी रहती है।
2: הוא רק התפלל כל התקופה והיה איזה קונטקט כי פחדתי שאנחנו באמת נאבד אותו.
0: उड़ान के दरमियान विमान ने पहले सामान्य आपातकालीन कोड 7700 भेजा, फिर गैर कानूनी हस्तक्षेप से जुड़ा कोड 7500 भेजा और अंत में वापस 7700 कोड पर आ गया।
2: אחרי שראינו בגרף, זה היה 16,000 רגל, הבנו עכשיו באירוע שעוד 5-6 שניות לא יספיק לייצר את המטוס. זה מצב כזה שאנשים מתאבדים ולוקחים את החיים של אחרים, של ילדים, של נשים, שאנשים לא קשורים לשום דבר.
0: हालात काबू में आया तो विमान जॉर्डन के हवाई क्षेत्र से होते हुए सऊदी अरब वापस लौट आया और विमान में मौजूद रिजर्व क्रू ने सऊदी अरब ताबूक हवाई अड्डे पर विमान को उतारा।
3: Well, look, in, on a flight from Dubai to Israel, as they were approaching Israel, there was an attack by one of the pilots against the other pilot. Apparently he stabbed him or he hit him with an axe. He was bleeding profusely. The plane began to go out of control and began a nosedive.
0: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओमान के को पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय पायलट ने दिलेरी दिखाते हुए बड़ी घटना को टाल दिया। इस मामले में को लेकर विमान कंपनी फ्लाई दुबई ने कहा है कि फ्लाइट FZ1073 से जुड़ी घटना के बाद वो इसराइल जाने आने वाली फ्लाइट्स को रोक रही है और मामले की जांच जारी है। आज तक ब्यूरो।
4: कैसी स्थिति रही होगी उस समय, कितनी बड़ी बहादुरी हम देखें इसमें। इस सब को समझने के लिए आपको उस कॉकपिट में चलना होगा। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने बोइंग 737 के सिम्युलेटर में एक्सपर्ट के साथ बातचीत की है।
5: इस वक्त मैं बोइंग एयरक्राफ्ट के उस मॉडल के अंदर हूं जिसमें फ्लाई दुबई FZ1073 था, यानी कि 737 बोइंग का ये एयरक्राफ्ट जिसके अंदर मैं बैठा हुआ, ये कॉकपिट है। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ और उनका को पायलट बैठा हुआ था। इस वक्त जिस सीट पे मैं हूं दर्शकों, ये फर्स्ट ऑफिसर की सीट है जिसपे सारी सुई आके अटकी हुई है कि आखिरकार उस को पायलट ने, उस फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ही कैप्टन पे अटैक क्यों किया। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ आज खुद एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे। ये CFA इंस्टीट्यूट है जहां पर एक सिमुलेटर है 737 का, ठीक IGI एयरपोर्ट के पास ये CFA इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर तमाम पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और आज उसी सिमुलेटर में बैठकर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्लाई दुबई के इस एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ क्या था। ये देखिए, इस वक्त हम मिड एयर हैं और जो हमारा ऑल्टीट्यूड है वो स्क्रीन पे आप देखेंगे तो 30,000 फीट पर हम हैं। आप कैप्टन की साइड पर देख रहे हैं क्योंकि कैप्टन के पास कंट्रोल्स थे उस वक्त। जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैप्टन के पास सारे कंट्रोल्स थे और कैसे वो कंट्रोल्स बदले अपने आप में, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बेसिक्स आप समझिए, ये योक है हमारे हाथ में जिससे आप अलाइन करते हैं किसी क्राफ्ट को, मैं सही कह रहा हूं
6: जी?
5: और ये क्या है,
6: ये थ्रस्ट लिवर्स
5: है। और इसके बाद हम आपको जो एरिया दिखाने वाले हैं वो इस पूरी रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है, ट्रांसपॉन्डर। और ट्रांसपॉन्डर आप समझिए, पहले योक, थ्रस्ट लिवर और उसके साथ साथ ट्रांसपॉन्डर। यहां पे कई सारे कंट्रोल्स हैं एयरक्राफ्ट के, बोइंग का ये 737 एयरक्राफ्ट है, ठीक ऐसा ही वो हवाई जहाज का कंट्रोल दिखता था। और सामने हम मिड एयर हो चुके हैं। अब जहां से खेल शुरू होगा उस खेल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस सारे पैनल को समझिए, बाएं हाथ को जो है वो कैप्टन का मॉनिटर है और कैप्टन का ये अलाइनमेंट है या
6: नेविगेशन डिस्प्ले
5: ये नेविगेशन डिस्प्ले है 737 का। और राइट हैंड साइड पे भी मेरे सामने ये मॉनिटर है जिसपे ऑल्टीट्यूड दिखेगा और उसके साथ साथ यहां पर नेविगेशन दिखेगा। नेहा देखिए, हम लोग अपने दर्शकों को यह भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार उस कॉकपिट के अंदर क्या कुछ हुआ होगा। ये 737 का सिमुलेटर है और IGI एयरपोर्ट के पास कई सारे पायलट्स इस CFA इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग के लिए आते हैं जहां पर हम बैठे हुए हैं। और इसी तरह के कॉकपिट के अंदर फ्लाई दुबई का वो एयरक्राफ्ट जिसमें कैप्टन स्मिथ थे, बाएं हाथ पे जो इंस्ट्रक्टर बैठे हुए जिनके हाथ में अभी योक कंट्रोल आपको दिखेगा, वो कैप्टन स्मिथ की सीट है। और बाएं हाथ पे आपको मॉनिटर्स ऑल्टीट्यूड सारा दिखेगा, उसके साथ जो मॉनिटर है ये नेविगेशन का मॉनिटर है। यहाँ पे सेंट्रल पैनल है जिस पर कई सारे व्यूज आते हैं। ये जो नीचे का पैनल है हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जब कोई अगर अटेम्प्ट होता है, अनऑथराइज अटेम्प्ट होता है एंट्री का, तो उस वक्त क्या होता है। और सेम पैनल्स यहाँ पे, ये कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं। इस वक्त हम मिड एयर हैं।
4: भारतीय कैप्टन स्मिथ मचार की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू के बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तानी कैप्टन ने 9/11 होने से बचा लिया।
7: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें।
4: फ्लाई दुबई की वो फ्लाइट हवा में करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर थी। विमान तेजी से टेलवीव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी हवा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी आशंका किसी को नहीं थी। विमान के को पायलट ने अचानक पायलट पर कुल्हाड़ी से अटैक कर दिया, ताबड़तोड़ वार किए। इस हमले में पायलट स्मित मछार गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन उनकी दिलेरी के आगे को पायलट का दुस्साहस बेदम हो गया। विमान में सवार सभी 174 यात्री बच गए। अब उस भारतीय पायलट को पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
8: उड़ते विमान के कॉकपिट में गजब की दिलेरी, और हमले का करारा जवाब देने वाली जांबाजी। आज हर कोई मुरीद है हिंदुस्तान के उस लाल का।
3: मैन जस्ट एक्ट्स विद इनक्रेडिबल हीरोइज्म एंड सेव्स द डे along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
8: जिस जाबाज हिंदुस्तानी पायलट का गुणगान हो रहा है, जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है, उसके जज्बे को और उसके हौसले को सराखों पर बैठा रही है, वो बहादुर और हिम्मत वाले पायलट हैं, फ्लाई दुबई के उस विमान के पायलट स्मित मछार। स्मित की दिलेरी ने पूरे हिंदुस्तान को गर्व करने का एक मौका दिया है, तो उनकी बहादुरी को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। पूरा इजराइल स्मित मछार की जाबाजी की तारीफ करते नहीं थक रहा। हिंदुस्तान के इस बेटे ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मित मछार ने वो कारनामा किया है जिसकी बदौलत 9/11 जैसी आतंकी घटना को अपनी हिम्मत और हौसले से टाल दिया। स्मित मछार का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब विमान के कॉकपिट में उन पर को पायलट ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और वो गंभीर रूप से

0: לוקח את ה... שאני יכול לעזור. וטיפלנו במיסטר סמית. אהו, אהו, תשאלי אותו, קודם כל, מה שלום מיסטר סמית? אנחנו, אני לא בטוח, אבל הוא שכב ליד הדלת. הבטוח שהמפגע לא רצה שניכנס. אז אני מעריך שהטייס הוא זה שפתח את הדלת לפני שהוא קרס.
1: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
6: सोच बदलो और बैंक भी
2: In association with
3: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक
2: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट एक हिंट तो देते
7: The opposition has been quite successful in putting across to the people of India that elections are stolen. That Narendra Modi, Amit Shah have destroyed democracy, and there is a new sense of resistance, particularly among young people, that what is going on in India is wrong and needs to be stopped.
8: जब वोट चुरी का बात बिहार में कह गया था राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने जब वोट चुरी करके बीजेपी 26 में जीता मध्य प्रदेश में जीता हरियाणा में जीता बिहार में जीता बंगाल में लूट किया पूरा आपको पता है हम लोगों को लेके आया था इधर में इलेक्शन कमीशन के पास में गया था अभी तो खुल्ला खुल्ला हो गया कि भैनिश कुमार चोर है डक्कू है वोट चोरी किया ईवीएम मशीन जला दिया ईवीएम मशीन हाईजैकिंग किया काउंटिंग रिगिंग किया क्या नहीं किया है इसके लिए ही मस्ट रिजाइन इमीडिएटली

405 रन का लक्ष्य। सामने वेस्ट इंडीज की मजबूत चुनौती, लेकिन गुवाहाटी में टीम इंडिया के इरादे कुछ और ही थे। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रन ठोक दिए। जॉन कैंपेल, शाई होप और अमीर जांगू ने शतक जमाकर भारत के सामने 406 रन का लक्ष्य रख दिया, लेकिन लक्ष्य जितना बड़ा था, टीम इंडिया का जवाब उससे भी बड़ा निकला। क्रीज पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल और दोनों ने शुरुआत से ही वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। रोहित ने 75 गेंदों में शानदार शतक ठोका और गिल के साथ 255 रन की तूफानी ओपनिंग साझेदारी ने भारत की जीत की नींव रख दी। फिर रोहित आउट हुए, लेकिन गिल का तूफान नहीं रुका। गिल ने बल्ला घुमाया तो रिकॉर्ड टूटते चले गए। 133 गेंदों में नाबाद 223 रन और महज 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर गिल ने वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया। गिल की इस पारी में चौकों छक्कों की बरसात थी और दूसरी तरफ रोहित के शतक ने इस रणचेज को पूरी तरह एकतरफा बना दिया। भारत ने सिर्फ 43.3 ओवर में 406 रन बनाकर 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया, यानी 39 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। वेस्ट इंडीज ने 400 पार का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन टीम इंडिया ने जवाब में ऐसा रनचेज किया कि 405 का पहाड़ भी छोटा पड़ गया। इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। गुवाहाटी में जीत के बाद टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, यानी अब आखिरी मुकाबला सिर्फ औपचारिकता रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एक हिंदुस्तानी की वजह से टली 9/11 जैसी घटना, भारतीय पायलट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रशंसा, कहा हमें स्मित पर है गौरव। जख्मी होकर भी 174 यात्रियों की बचाई जान, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया का सलाम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर लगी मुहर, सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। एमएलसी चुनाव में बिहार जेडीयू में बड़ी बगावत, मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार के खिलाफ किया खुला विद्रोह, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार।

शव को जलाया गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम, गोल्ड के लिए पाकिस्तान से शनिवार को मुकाबला। पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को दी करारी मात।

नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। कल ठीक इसी समय हम आपको इजराइल जा रहे विमान में हुई उस घटना की जानकारी सबसे पहले दे रहे थे, विस्तार से दे रहे थे। आज उस घटना से जुड़े कई और बेहद चौंकाने वाले खुलासे हम रणभूमि पर करने जा रहे हैं। एक विमान 180 जिंदगियां और आसमान में मौत से महज 90 क्षणों का, 90 सेकंड का फासला। जी हां, फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुबई से टेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे विमान में ओमान का कोपायलट था और भारत का कैप्टन था, यानी कैप्टन इन कमांड भारत के कैप्टन स्मिथ मचहार थे। और ओमान के कोपायलट ने धारदार हथियार से उन पर बार बार हमला किया, विमान के कंट्रोल में दखल देने की कोशिश की। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती आकलन यह था कि उस ओमानी कोपायलट का जो मकसद था वो विमान को क्रैश कर देने का था, या फिर 9/11 जैसी कोई वारदात को अंजाम देना इजरायल के अंदर, यानी इजरायल की वायुसीमा में घुसकर उस विमान को किसी बिल्डिंग के अंदर घुसा देना था। हालांकि हमले का असली मकसद अभी जांच के दायरे में है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि 9/11 जैसा हमला होने वाला था, जिसे भारत के पायलट कैप्टन स्मिथ मचहार की असाधारण वीरता ने होने नहीं दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल कैप्टन स्मिथ के साहस का, उनके पराक्रम और उनके शौर्य की उन्होंने प्रशंसा की। उनकी बहादुरी ने 180 जाने बचाई और एक बहुत बड़ी त्रासदी होने से बच गई। लेकिन इस कहानी का जो सबसे खौफनाक हिस्सा है वो अभी भी सामने आना बाकी है। आखिर विमान जमीन से हजारों फीट ऊपर एकाएक अचानक नोज डाइव कैसे करने लगा? ओमान का जो को पायलट था, दरअसल उसका इरादा था क्या, और आखिर क्यों उसने एक बार नहीं बार बार एक धारदार हथियार से कैप्टन स्मिथ पर हमला किया? सवाल यह भी है कि अगर समय रहते, और ये देखिए कैप्टन स्मिथ की सूझबूझ है, उन्होंने नोजडाइव करते विमान को, पहले उसका नोजडाइव नीचे जाना, उसको अरेस्ट किया यानी उसको खींच के फिर से लेवल लेकर आए, फिर इमरजेंसी सिग्नल, पहले 7700 इमरजेंसी और फिर 7500 हाईजैक अलर्ट, ये उजागर किया, फिर चोटिल होने के बावजूद उन्होंने विमान का दरवाजा खोल दिया, कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। अगर वो कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोलते तो बाहर से चाहे वो अन्य उनके एयरक्रू हो या यात्री हो या फिर जो रिजर्व पायलट थे, वो नहीं सामने आ पाते। उन्होंने चोटिल होने के बावजूद दरवाजा खोला, वरना अगले 90 सेकंड में क्या हो जाता अगर वो नहीं खोल पाते, अगर खून रिसाव से वही उनकी जानमाल को नुकसान पहुंचता तो फिर 180 जाने नहीं बच पाते। क्या होने वाला था उस 90 सेकंड में, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये आज तक का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये उस समय का वीडियो है जब फ्लाई दुबई की जो फ्लाइट थी वो सऊदी अरब के तबूक में उतर गई थी। इस वीडियो में कैप्टन स्मिथ, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, हम आपको इसीलिए ये कुछ धीरे ब्लर करके भी और कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ हम नहीं दिखा पाएंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैप्टन स्मिथ लहूलुहान थे लेकिन होशो हवास में। उनके साथ मौजूद इजरायली नागरिक बार बार ये मांग कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया की पुलिस को बुलाया जाए ताकि कैप्टन स्मिथ की जान को किसी से खतरा ना हो। और जो इजरायल के नागरिक थे उन्होंने कैप्टन स्मिथ के चारों ओर एक ह्यूमन वॉल बना ली थी कि कोई उन तक ना पहुंच पाए। कैप्टन स्मिथ की बहादुरी से वो उनको बचा के जीवित रखना चाहते थे और वो इलाज का इंतजार कर रहे थे। ये उस समय का वीडियो है। विमान से स्ट्रेचर पर उतारा गया, नीचे लाया गया, यहां से उन्हें तबूक के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन इससे ठीक पहले ये कहते वो सुने जा सकते हैं कि ओमान का जो को पायलट था उस को पायलट ने उन पर बार बार कई बार हमला किया। यही नहीं, वो कह रहे थे कि चल फिर तो सकते हैं लेकिन अपने हाथों को वो मुट्ठी बंद नहीं कर पा रहे हैं, यानी हाथ भींच नहीं पा रहे हैं, यानी योग को
हैंडल करना उनके लिए मुश्किल होगा। सोचिए इस चोटिल अवस्था में भी विमान और कॉकपिट उनके दिमाग में था। हालांकि इसके बाद विमान में पहले से सवार जो ऑफ ड्यूटी पायलट थे उन्होंने सुरक्षित इस विमान की लैंडिंग करा ली थी। लेकिन सुनिए क्या हुआ उस समय। देखिए चौकन्ना थे, आंखें खुली थी, बोल रहे थे कि मैं बस हाथ बंद नहीं कर पा रहा हूं। आई कांट डू दिस, आई कैन मूव, मैं हिल तो सकता हूं लेकिन अपना हाथ बंद नहीं कर पा रहा हूं। एक चौंकाने वाला खुलासा। फ्लाई दुबई की ये जो फ्लाइट थी FZ1073 उसमें जो हुआ महज 90 सेकंड में एक बड़े विमान हादसे में वो बदल सकता था। यानी विमान करीब 30 से 35 हजार फीट की ऊंचाई पर जो उड़ रहा था तभी कॉकपिट में जो ओमान का को पायलट था उसने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ पर, पायलट इन कमांड पर हमला कर दिया। इसके बाद विमान नोज डाइव करने लगा, तेजी से नीचे आने लगा। करीब 30 सेकंड में विमान 14,000 फीट नीचे आ गया था। यानी विमान सीधे जमीन पर बहुत तेजी से आ रहा था और तब एक मिनट का वक्त और बचा था, एक मिनट का वक्त। और इसी एक मिनट में कैप्टन स्मिथ मछार ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। एक यात्री वो किसी तरह दाखिल हुआ कॉकपिट में और उसने योक को, यानी जिस डंडी को पकड़कर, वो देखिए वो जो पायलट जिसका इस्तेमाल करते हैं प्लेन को नेविगेट करने के लिए, उस योक को ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ खींचा और विमान दोबारा ऊपर की ओर गया। यानी अगर वो 90 सेकंड की देरी हो जाती, महज 90 सेकंड, तो 180 जिंदगियां और उनके साथ न जाने कितने परिवार तबाह हो जाते। इज़राइल के रिटायर्ड फौजी कर्नल उदेद शपीरा ने माना है कि कॉकपिट का दरवाजा खोल देना यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था कैप्टन स्मिथ का। अगर कैप्टन स्मिथ दरवाजा नहीं खोल पाते तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती। एक दूसरी बड़ी खबर विमान में हुई घटना की अब जांच को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हाईजैकिंग की कोशिश के बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिनबेट की टीम दुबई पहुंच रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल फ्लाई दुबई मामले की जांच में यूएई की मदद करेगा, यूएई का साथ देगा। वही यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने फ्लाई दुबई हाईजैकिंग की कोशिश की जांच औपचारिक तौर पर शुरू कर दी है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि क्या हाईजैकिंग के पीछे आतंकवाद मकसद था। इस दौरे का मकसद दुबई से इजराइल के लिए उड़ान भरने वाले विमानों की सुरक्षा की अब पूरी जांच करना है और अब प्रोटोकॉल को देखना है कि इजराइल जा रहे विमान कौन कौन पायलट उड़ा सकते हैं और कौन नहीं। चूंकि फ्लाई दुबई ने इजराइल के लिए उड़ानों को फिलहाल रोक दिया है, जबकि वो हर दिन 10 विमान इजराइल के लिए भेजता था, इसीलिए अब कल यानी शुक्रवार से एमिरेट्स और एतिहाद एयरवेज यूएई और इजराइल के बीच अपनी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब यह साफ कर दिया है कि विमान को क्रैश कराने की कोशिश या साजिश करने वाले सह पायलट, को पायलट को फिलहाल सऊदी अरब में हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उसे संयुक्त अरब अमीरात जांच के लिए भेजा जा सकता है क्योंकि फ्लाइट वहीं से उड़ी थी। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल इस पूरी अंतरराष्ट्रीय जांच पर बारीकी से नजर रख रहा है और एक अलग जांच इजराइल भी इस पूरे मामले की करेगा। अच्छा, अब हम आपको बता दें कि कल ये जो घटना हुई इसके बाद बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक इस समय दुबई में फंसे हुए हैं, क्योंकि हर रोज वहां से लगभग फ्लाई दुबई की 10 उड़ानें
तेलवीव के लिए निकलती थी, अब वो रुक गई है। इसराइल की एक विमान कंपनी है एल अल, वो अब दुबई से तेलवीव के बीच उड़ान भर रहा है, लेकिन कल की घटना के बाद उड़ानों को रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि दुबई से पहली वापसी उड़ान कल होने की उम्मीद है। टिकट की कीमत लगभग $250 तय की गई है। इसराइल के मुख्य एयरलाइन एलएल का कहना है कि उसे उम्मीद है कि दुबई से तेलवीव के लिए पहली वापसी उड़ान शुक्रवार यानी कल रवाना होगी, ताकि वहां फंसे इजरायली नागरिक अब अपने घर लौट सके। इसराइल आने जाने वाली सभी फ्लाई दुबई की उड़ानों को रद्द करने के बाद एलएल दुबई में मौजूद इसराइलियों को वापस लाने के लिए एक विशेष विमान सेवा शुरू कर रहा है। एलएल का विमान बिना यात्रियों के तेलवीव से रवाना होगा। सुरक्षा अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद इन उड़ानों की बुकिंग एलएल की वेबसाइट और ट्रैवल एजेंट्स के जरिए अब की जा सकती है।

0: 166 इजरायलियों समेत 180 लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मिथ आज न केवल पूरे इजरायल में, पूरे भारत में, बल्कि प्रजातंत्र पसंद करने वाले पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय है। और ये बात आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत में इजरायल के राजदूत रूबिन अजार, उन्होंने कहा कि इजरायल भारतीय पायलट को 180 लोगों की जान बचाने के लिए सम्मानित करेगा। इजरायल के राष्ट्रपति और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर इजरायल में जो आम लोग हैं, यहां तक कि पूरा इजरायल इस समय कैप्टन स्मिथ मचहार की बहादुरी की चर्चा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल मुश्किल समय में जो दोस्त इजरायल का साथ देते हैं, अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता, खासकर ऐसे दोस्त जो सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 9/11 जैसे आतंकी हमले को दोबारा होने से रोकने के लिए इजरायल ने अपने लड़ाकू विमान भी उड़ा दिए थे, और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी खतरे से निपटने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक कर रहे थे कि अगर हाईजैक होने के बाद यह विमान इजरायल की वायु सीमा में घुस गया और इजरायल में किसी इमारत से टकराने की साजिश हुई तो क्या कदम उठाएंगे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उस विमान में 166 उनके नागरिक मौजूद थे। लेकिन कैप्टन स्मिथ की वीरता, उनके साहस, उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम ने 180 लोगों की जान और विमान दोनों को बचा लिया। सुनिए।
1: नई दिल्ली हो या जेरूसलम या विश्व के और भाग, चर्चा इस समय उस फ्लाई दुबई विमान की और कैप्टन स्मिथ मचहार की हो रही है जिन्होंने 180 लोगों को मौत के मुंह से निकालकर जीवित बचा लिया। इस समय इजरायल के भारत में राजदूत एम्बेसडर रूबिन अजार मेरे साथ हैं। सर, आज तक पर आपका स्वागत है। कैप्टन मचार की जो कैप्टन स्मिथ की जो वीरता है, हिज वैलर, इजरायल उसे किस रूप में देखता है? हाउ डज इजरायल सी दैट वैलर?
2: धन्यवाद सवंत।
3: ये सच में असाधारण हिम्मत, बहादुरी और दृढ़ता का काम है जो कैप्टन स्मिथ माचर ने कर दिखाया। हमले में चाकू से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने केबिन का दरवाजा खोला। ये उनके लिए बेहद तकलीफ देह रहा होगा। अनुभवी पायलट और मजबूत चरित्र वाले इंसान के तौर पर उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। अगर वो ऐसा न करते तो 180 लोगों की जान चली जाती। उनके दरवाजा खोलने की वजह से ही तीन यात्री अंदर आकर हमलावर को काबू कर पाए, इसी के बाद क्रू प्लेन को स्थिर कर पाया। ये वाकई अद्भुत है और उस समय बहुत जरूरी था।
1: और इसमें दोनों देशों के लोग थे, इंडिया एंड इजरायल टुगेदर, द इंडियन पायलट एंड द इजरायली सिटीजंस हु वर एबल टू ओवरपावर दिस ओमानी ओरिजिन पायलट एंड रिकवर द एयरक्राफ्ट। सो डज दिस इंडिकेट इफ दे टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म यू कैन डिफीट टेरर? क्या ये संदेश जाता है?
3: इससे पता चलता है कि सिर्फ सरकारों का सहयोग काफी नहीं है, लोगों के सहयोग की भी जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो परवाह करते हैं, और जब हम न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी एकजुट होते हैं तभी हम जीत सकते हैं।
1: एंड दिस कॉन्वर्सेशन अराउंड कैप्टन स्मिथ इवन इन इजरायल वेरी एक्सटेंसिवली?
3: बिल्कुल, सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि इजरायल के राष्ट्रपति, इजरायल की संसद के प्रमुख और पूरा इजरायली मीडिया भी उनके और उनकी बहादुरी के बारे में बात कर रहा है।
2: मीडिया
3: वे उन गवाहों का इंटरव्यू ले रहे हैं जिन्होंने पायलट का शुक्रिया अदा किया।
2: इंटरव्यूइंग द विटनेसेस,
3: मुझे लगता है कि यह एक बहुत खास पल है और सच में एक चमत्कार है। लेकिन चमत्कार इसलिए होते हैं क्योंकि लोग उन्हें मुमकिन बनाते हैं, और इस चमत्कार में शामिल किसी भी व्यक्ति के पक्के इरादे के बिना यह चमत्कार नहीं हो पाता।
1: What protocols need to be changed in your view now, Ambassador, to ensure that there's no repeat of this? And what can India and Israel do together? What can democracies do together? Because does this also indicate the timing of this attack? Third anniversary of October 7, 25th anniversary of 9/11. What is it that these terrorists were trying?
3: असल में हमें ठीक-ठीक नहीं पता है। हमें जांच पूरी करनी होगी। हमें सिविल एविएशन, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से जुड़ी प्रोफेशनल एजेंसियों को अपना काम करने, जानकारी शेयर करने और और नतीजे निकालने देने होंगे, इसलिए हमें उन्हें अपना काम करने देना होगा और फिर शायद हम कुछ चीजों में बदलाव कर पाएंगे और ये पक्का कर पाएंगे कि ऐसा दोबारा ना हो।
1: Absolutely. For joining me here on India Today, आज तक से बात करने के लिए एम्बेसडर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते।
1: इसराइल के राजदूत भारत में कह रहे हैं कि इसराइल में इस समय कैप्टन स्मिथ मचहार की बहुत चर्चा है और एक इंटरव्यू में मुझसे ये भी कह रहे हैं कि इसराइल कभी अपने मित्रों को कठिन परिस्थिति में जो साथ रहते हैं उनको भूलता नहीं है। कैमरामैन आलोक दास के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।
0: और इस समय दुनिया भर में भारत के सपूत कैप्टन स्मिथ की प्रशंसा हो रही है। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद वो ना हटना चाहते थे ना आराम चाहते थे, उनकी केवल एक चिंता थी कि कैसे वो होश में रहे और जरूरत पड़ने पर प्लेन को लैंड करा सके, यात्रियों को सुरक्षित रख सके। हालांकि उसी प्लेन में सवार फ्लाई दुबई के जो दूसरे पायलट्स थे, तबुक की लैंडिंग उन्होंने कराई, लेकिन घायल कैप्टन स्मिथ हमले के ठीक बाद क्या क्या बातचीत हुई उनकी, क्या वो कह रहे थे, उनके मन में किस तरह के विचार थे।
4: My head is failing. It is hurting. It is hurting.
5: Oh, Rama. Yes, the telephone shelling.
6: Give me the pillow. Give me the pillow. Yeah.
4: No sleep. No sleep.
5: No sleep.
4: My head is hurting. Yeah,
5: I'm pinkilo
4: my hand.
5: Yeah.
4: No, your hand. It's Rama. Good.
6: Rama. Can I have the Panadol? Yeah. Paracetamol.
7: Check it on me, Mr. Casotano.
6: Yeah.
4: You won't sleep.
5: You save the
4: no.
5: pain. It's good for you.
7: Yeah.
5: It's good for you.
7: Check your command on here.
8: It's a challenge of time with the men, shall I have some more?
9: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס.
10: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, ניסו לרצוח את הטייס, והשתלטנו על הצוות.
6: למה?
4: זה הטייס
6: שרצה לרצוח.
0: आपने इन चोटिल प्रत्यक्षदर्शियों को देखा, ये जो पैसेंजर्स थे क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि कोक पायलट ने पायलट पर अटैक किया, उन्होंने को पायलट को अलग किया, उसको बांध दिया वहां पर, पायलट की सुरक्षा में एक ह्यूमन वॉल बना दी कि उनको ये नहीं मालूम था। और इसराइल के नागरिक है, इनमें से कुछ पुलिस वाले हो सकते हैं, कुछ आर्मी के रिजर्विस्ट हो सकते हैं, तो वो जानते थे कि हमला दोबारा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने पायलट के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया कि कोई उनके आसपास आ ही ना सके, किसी को नहीं आने दे रहे थे वो पायलट के आसपास। उन्होंने कहा हम इनकी रक्षा करेंगे, हम इनको पहले उतारेंगे, कोई इनके पास नहीं आएगा। कॉकपिट के बाहर जहां कैप्टन स्मिथ घायल अवस्था में लेटे थे, उनके पास ओमानी मूल का वो को पायलट भी एक कोने में था, देखिए उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसको इसराइल के यात्रियों ने न केवल काबू कर लिया बल्कि उसके हाथ उसके पीछे बांध दिए, वो भी घायल अवस्था में था, उसे भी क्योंकि इतना पीटा गया उसके बाद कि वो घायल हो गया, उसे भी ऑक्सीजन दिया गया। अब ये जो को पायलट है ये सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरब की पुलिस के कब्जे में है, उसको उसके हवाले कर दिया गया है। और कैप्टन स्मिथ की वीरता की, उनके अदम्य साहस की प्रशंसा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी की। अमेरिका के चैनल फॉक्स न्यूज से बातचीत में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर कैप्टन स्मिथ ने बहादुरी दिखाते हुए कैप्टन कॉकपिट का वो दरवाजा नहीं खोला होता तो 9/11 जैसा एक हमला होने का डर था। सुनिए,
11: नाउ यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अनदर 9/11 एंड एन इजरायली पैसेंजर, अ सिविलियन। I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day, along with the Indian pilot who was there. And the others who came to help.
0: और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की प्रशंसा की।
12: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया। और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: कैप्टन स्मिथ का यह पराक्रम हर देशवासी को गौरव से भर देता है। इस खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
16: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: और वही कहाँ गए थे घूमने?
19: जीके मैक्स।
20: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
19: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
20: जेके वॉल मैक्स
19: बेस्ट पेंट,
20: जेके मैक्स।
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने पर।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

एक हिंदुस्तानी की वजह से टली 9/11 जैसी दुर्घटना। भारतीय पायलट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रशंसा, कहा हमें कैप्टन स्मिथ पर गर्व है। जख्मी होकर भी 174 यात्रियों की बचाई जान। ट्रंप और नेतन्याहू समेत दुनिया ने किया सलाम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर लगी मुहर। सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा, पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। सीजेपी के अभिजीत दीके की सीएम देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती, कहा पुलिस की इजाजत के बगैर 2 अक्टूबर को करेंगे प्रदर्शन, 3 महीने तक जेल जाने को तैयार।

जलाया गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम, गोल के लिए पाकिस्तान से शनिवार को मुकाबला। पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को दी करारी मात।

0: रणभूमि पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दुबई से टेलवीव जाते समय विमान में जो हाईजैकिंग की कोशिश का मामला सामने आया है, फ्लाई दुबई मामले में भारत ने भी जांच शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक फ्लाई दुबई घटना के बाद सामने आए घटनाक्रम पर भारत पड़ताल कर रहा है, भारत घटना की समीक्षा कर रहा है। मंत्रालय की तरफ से पूरे मामले को अब सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी मोका सचिव समीर सिन्हा ने कहा कि अगर इस मामले में किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी करने की भी जरूरत महसूस होती है तो इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों के साथ साझा की जाएगी। यानी फ्लाई दुबई की घटना के बाद भारत भी एविएशन सिक्योरिटी को लेकर अब यहां मंथन तेज हो गया है। भारतीय एयरपोर्ट्स पर फुल बॉडी स्कैनर लगाए जा रहे हैं। 8 एयरपोर्ट्स पर ये मशीनें लगाई जाएंगी। 3 एयरपोर्ट्स पर ये मशीनें पहुंच चुकी हैं। 5 अन्य एयरपोर्ट्स पर जल्दी पहुंच जाएंगी। इन डिवाइस से जुड़ा डेटा इकट्ठा और एनालाइज किया जाएगा और प्रिवेसी से जुड़ी, आपकी निजता से जुड़ी जो चिंताएं हैं उन पर अलग मंथन हो रहा है। इसमें जो असली तस्वीर है फुल बॉडी स्कैनर में वो तस्वीर नहीं दिखेगी, ये शरीर का सिर्फ एक मॉडल होगा। शरीर की खास डिटेल्स या पहचान जाहिर नहीं की जाएगी, शरीर पर मौजूद चीजों की केवल इमेज इस पर दिखेगी। भारतीयों द्वारा आमतौर पर पहनी जाने वाली चीजों के लिए जो इसका एल्गोरिदम है उसे अलग से अपलोड किया जा रहा है। और मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कि इसकी वजह से दुनिया भर में चिंता होगी और ऐसी परिस्थिति अगर कोपायलट ही पायलट पर हमला कर दे तो ऐसे में क्या बचाव, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसे होगा बचाव, लेकिन भारत में क्या मंथन चल रहा है विस्तार से बताइए।
1: गौरव, देखिए जो फ्लाई दुबई की घटना हुई है उसने इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेक्टर में एक तरह से भूचाल मचा दिया है और सभी देश जहां भी एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा है या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहुत तेज चलती हैं, इन सेंस फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वहां उन देशों में जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटर्स हैं, वो लोग इस वक्त अलर्ट मोड में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से भारत भी इस पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, ये बात स्पष्ट की गई है कि सुरक्षा के लिहाज से भारत देख रहा है कि फ्लाई दुबई की घटना कैसी हुई और संभवतः एक बार जब प्रीलिम रिपोर्ट आ जाएगी उस घटना को लेकर, जो आमतौर पर 30 दिनों के अंदर आती है लेकिन यहां संभवतः जल्दी आ सकती है क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर FDR दोनों का डेटा बहुत जल्दी मिल जाएगा, उसको एनालाइज करने में आसानी होगी एजेंसीज को। तो ऐसी स्थिति में जैसे वो रिपोर्ट आएगी आप देखेंगे कि भारतीय एजेंसीज अपने काम में लग जाएंगी। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को और ज्यादा कैसे स्ट्रांग किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, इस पर काम शुरू हो गया, यानी कि अलर्ट मोड में हम आ गए हैं। और जैसे ही प्रीलिम रिपोर्ट आती है एक तरह से यहां मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उस पर काम करेगा और अगर कोई एडवाइजरी हमें बताया जा रहा है इशू करने की जरूरत होगी तो वो तुरंत अपने हायर अप्स को, सेक्रेटरी सिविल एविएशन समीर सिन्हा ये बात कह रहे हैं, हायर अप्स तो इस मामले में मान के चल सकते हैं चाहे वो मंत्री हो या फिर तमाम विभाग हो या केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट एजेंसीज हो, उन सबके बीच इस पर एक तरह से बातचीत हो सकती है और मंत्रालय खुद अपने हिस्से में निर्णय ले सकता है। तो कुल मिलाकर दुबई कि फ्लाई दुबई वाली घटना के बाद भारत एक तरह से अलर्ट मोड में जरूर है। गौरव,
0: इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य लाभ के लिए और उनके दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना और विशेष अर्चना पूजा अर्चना इस समय की जा रही है। सोमनाथ मंदिर ने बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है, लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मछार के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा हो रही है। तेलवीव की दुबई से उड़ान के दौरान उन्होंने अदम्य साहस, सूझबूझ और अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए 9/11 जैसे क्रूर षड्यंत्र को नाकाम किया। 180 अनमोल जिंदगियों को सुरक्षित बचाने वाले कैप्टन स्मिथ मछार के लिए श्री सोमनाथ महादेव की विशेष महापूजा कराई गई एवं अवृत महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान प्रारंभ किया। इस जाबाज युवा को भगवान शिव अपनी विशेष कृपा से शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ करें।
2: विष्णुरा विष्णुरा विष्णु श्री मद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिपतम चरणे भारत वर्षे भरत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गते संकल्पमस्तु।
0: और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने फ्लाई दुबई प्लेन में हुई घटना को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत की, उन्हें पूरी जानकारी दी। सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन शब्दों में न केवल कैप्टन स्मिथ मछार की बल्कि इजराइल के वो जो नागरिक और उनमें एक प्लंबर शामिल था वो तेजी से कॉकपिट में घुसा और जब विमान ऐसे गिर रहा था तो कैसे उसके योक को पीछे खींच कर विमान को फिर लेवल किया, उन्होंने उसकी उन्होंने किस तरह से प्रशंसा की, सुनिए।
3: एंड इट सीम्स एज दो द को-पायलट वाज परहैप्स अ टेररिस्ट और परहैप्स अ व्हैक जॉब एंड he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
0: अच्छा, इसराइल के टेलीविजन पर भी बस इसी खबर की चर्चा लगातार है। एक टेलीविजन कमेंटेटर एनाव एमी जेमर ने कैप्टन स्मिथ को पूरी दुनिया के लिए एक शानदार हीरो बताया, जिन्होंने विमान को क्रैश होने से बचा लिया, 180 लोगों की जान बचा ली। उन्होंने कैप्टन स्मिथ की तारीफ करने के साथ साथ भारत को भी धन्यवाद दिया कि इसराइल के लोगों की भारत के कैप्टन ने रक्षा की।
4: I want to take this opportunity and thank the Indian pilot. What a hero. Without him, it could end up in a whole different way. He fought this terrorist and he fought until the last minute. And according to the Israelis, before he collapsed, he opened the door of the cockpit. Now he is in critical condition. Just imagine what would happen if he would not open the door. I don't even want to think about it. So on behalf of the Jewish people and on behalf of the state of Israel, I want to say थैंक यू इंडिया।
0: और ये धन्यवाद भारत या थैंक यू इंडिया केवल एक ये महिला कंटेंट क्रिएटर ही नहीं, इस तरह की कई आवाजें इसराइल से उठ रही हैं कि एक भारतवासी ने इसराइल में 180 लोगों की जान बचा ली और एक और 9/11 होने से रोक लिया।
5: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the Fly Dubai flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. And despite being severely wounded and covered in blood, he kept fighting. With what Israeli officials describes as some of his last remaining strength, he managed to release the cockpit door, allowing passengers and crew to rush inside, overpower the attacker, and ultimately regain control of the aircraft. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted, and we will never forget it.
0: और ये इसराइल से इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि कैप्टन स्मिथ, आपने जो किया इसराइल ये कभी भूलेगा नहीं। यही बात इसराइल के राजदूत ने भी मुझे कही और यही बात इसराइल के न केवल प्रधानमंत्री बल्कि इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने भी फ्लाई दुबई की इस फ्लाइट में बहादुरी दिखाने वाले लोगों के बारे में की, जो चार इसराइली नागरिकों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उससे सम्मानित किए जाने का उन्होंने ऐलान किया। अच्छा, उन्होंने ये भी जो चर्चा की उसमें याने भायुन, वो पेशे से दरअसल प्लंबर है, चिल्लाने की आवाज सुनकर सबसे पहले वो कॉकपिट की तरफ भागे और उसमें दाखिल हुए और हमलावर को चोक होल्ड में लिया, नीचे गिराया और विमान के कंट्रोल को संभालकर वो विमान जो तेजी से धरती की ओर आ रहा था उसको संभाला। दूसरा, जिविका मेंस जिन्होंने याने भाइयों के साथ मिलकर कॉकपिट में हमलावर जो ओमान के मूल का कोपायलट था उसे दबोचकर पूरी तरह न केवल काबू किया बल्कि उसी का जो हेडफोन था जो उसके ईयरप्लग्स थे उससे उसके हाथ उसके पीछे बांध दिए। आसफ रिजवान वो तीसरा यात्री है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कॉकपिट के भीतर संघर्ष किया और हमलावर को न्यूट्रलाइज करने में और जमीन पर गिरा देने पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चौथे डॉक्टर शोटा मुअसिफ वो पेशे से डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उन्होंने न केवल हमलावर पर काबू किया बल्कि गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ कैप्टन स्मिथ मछार को कॉकपिट में ही उनका इमरजेंसी इलाज किया, उनका खून रिसने से बहने से रोका और लगातार उनसे बात करते रहे, कहा होश में रहो, होश में रहो, आंखें बंद मत करो, मुझसे बातें करते रहो क्योंकि अगर होश खोया तो कोमा में जाने का भी डर है। और इसी तरह कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर बनाई रखी जब तक वो एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर गए। अच्छा, और ये याने भी वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि विमान उड़ाने के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं है लेकिन टीवी पर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखने के दौरान उन्होंने ये तो सीख लिया था कि अगर विमान नीचे गिर रहा हो तो जो उसका योक होता है या जो जिसको बोलचाल की भाषा में उसका स्टीयरिंग लीवर कह सकते हैं तो उसको अपनी तरफ पीछे से खींचे तो फिर विमान जो नोज डाइव कर रहा है वो इक्वलाइज करके फिर उसकी नोज अप हो जाती है और एक बार उसकी नोज अप हो जाए तो विमान गिरने के बजाय ग्लाइड करते हुए आगे जा सकता है, ऐसा उन्होंने टीवी पर देखा था। लेकिन जब याने इसराइल के टेलवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे बात करना शुरू किया। उनसे क्या बात हुई उसके कुछ अंश सुनिए।
6: לחץ כוח כזה שמשך אותי למטה ובדלת עמד עוד מישהו עם חולצה לבנה, אני מניח שזה הטייס כי בפנים היו שני טייסים ובחוץ, במקרה, ישבו שני טייסים במחלקה. לא יודע מה הם עשו שם. בטייסים שלהם. אני והוא תחפנו את הדלת. הטייס שהיה דקור היה פשוט מאוד סמוך לדלת, אז היה קשה לנו לפתוח אותה. אבל נראה לי, לפי דעתי, מסקנה שלי...
7: אתה חושב שהוא פתח? הוא פתח, הוא צריך להגיע למעלה, לא?
6: לפני שהוא התמוטט.
7: לפני שהוא התמוטט, הוא הצליח.
6: הוא הצליח.
7: בתושייה גדולה.
6: כשנכנסתי, ראיתי את המפגע. על המכשירים, בין שני הכיסאות, לא היה טייסים על הכיסאות, אחד היה למטה, אחד על המכשירים, ואיתי נכנס עוד אחד, תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו, קודם כל החוצה.
7: מה הוא עשה על המכשירים האלה? מה הוא עשה?
6: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי
7: לנטרל
6: את המטוס.
7: זה מה שאתה ראית.
6: כן.
7: טוב.
6: הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות, המטוס היה עם האף ככה. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו למטוס, קראתי להם, באו, ניגשו אליי עוד שני חבר'ה, אמרתי להם שריתקנו אותו לעזר, קפצתי בחזרה לזה, משכתי את ההגעים, התחלתי למשוך את ההגעים, ואז...
7: אתה משכת את ההגעים?
6: כן.
7: אתה ידעת, אחורה?
6: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה מפה.
0: अच्छा, भारतीय पायलट स्मिथ मछार के साथ साथ यानेव की बहादुरी की प्रशंसा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की। दरअसल यानेव पेशे से तो प्लम्बर है लेकिन उनका कहना है कि उन्हें यह पता चल गया था कि कैसे प्लेन को कंट्रोल में करना है क्योंकि उन्होंने इस तरह के कई टीवी शोज देखे हैं, इसमें उनकी बहुत दिलचस्पी है। तो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यानिव को लेकर क्या कहा, हम आपको वो सुनाते हैं।
3: ए प्लंबर, एन इजरायली प्लंबर, नेवर फ्लू अ प्लेन, वाज रेयरली इन प्लेन्स, वेरी रेयरली फ्लू. An Israeli plumber saw what was happening, and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. And he saw what was going on, and he heard the screaming. He was toward the front, where you had security in the back, you know, you had security, and you had another flight crew, but they didn't have time. The plane was going sharply down at an unbelievable angle, so sharp that the rudder ripped off the back of the plane. The plane wasn't designed to go at a speed anywhere near that.
0: तो इतना तेजी से प्लेन नीचे जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं कि उसका जो रडर पीछे होता है, पीछे का जो टेल के पास होता है, वो बिल्कुल उससे एक उसका हिस्सा कट के अलग गिर गया, क्योंकि इस गति से नीचे जाने के लिए वो बना ही नहीं है। अच्छा, इस घटना को करीब से समझने के लिए बोइंग 737 का जो सिमुलेटर है उसमें एक एक्सपर्ट के साथ पहुंचे मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज, और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर विमान के कॉकपिट के अंदर पायलट पर हमला कैसे हुआ होगा, वह कितनी जगह होती है। कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में भी होंगे, उन्हें समझने का

0: जिसमें फ्लाई दुबई FZ1073 था, यानी कि 737 बोइंग का ये एयरक्राफ्ट जिसके अंदर मैं बैठा हुआ, ये कॉकपिट है। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मिथ और उनका को पायलट बैठा हुआ था। इस वक्त जिस सीट पे मैं हूं दर्शकों, ये फर्स्ट ऑफिसर की सीट है जिसपे सारी सुई आके अटकी हुई है कि आखिरकार उस को पायलट ने, उस फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ही कैप्टन पे अटैक क्यों किया। लेकिन उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ होगा, ये समझने के लिए हमारे साथ आज खुद एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे। ये CFA इंस्टीट्यूट है जहां पर एक सिमुलेटर है 737 का, ठीक IGI एयरपोर्ट के पास ये CFA इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर तमाम पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और आज उसी सिमुलेटर में बैठकर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्लाई दुबई के इस एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ क्या था। ये देखिए, इस वक्त हम मिड एयर हैं और जो हमारा ऑल्टीट्यूड है वो स्क्रीन पे आप देखेंगे तो 30,000 फीट पर हम हैं। आप कैप्टन की साइड पर देख रहे हैं क्योंकि कैप्टन के पास कंट्रोल्स थे उस वक्त। जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैप्टन के पास सारे कंट्रोल्स थे और कैसे वो कंट्रोल्स बदले अपने आप में, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बेसिक्स आप समझिए, ये योक है हमारे हाथ में जिससे आप अलाइन करते हैं किसी क्राफ्ट को, मैं सही कह रहा हूं
1: जी?
0: और ये क्या है?
1: ये थ्रस्ट लिवर्स
0: है। और इसके बाद हम आपको जो एरिया दिखाने वाले हैं वो इस पूरी रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है, ट्रांसपॉन्डर। और ट्रांसपॉन्डर आप समझिए, पहले योक, थ्रस्ट लिवर और उसके साथ साथ ट्रांसपॉन्डर। यहां पे कई सारे कंट्रोल्स हैं एयरक्राफ्ट के, बोइंग का ये 737 एयरक्राफ्ट है, ठीक।
2: तो कैप्टन स्मिथ मछार के अदम्य साहस और पराक्रम, उनकी वीरता ने 180 लोगों की जानें बचा ली। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: देश के लोगों को और युवाओं को और इंडिया गठबंधन के लोगों को, उसके अलावा जो एनजीओस या जो डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं, संविधान के हिफाजत के लिए जो लोग आगे आते हैं और जो देश के एकता के लिए जो कटिबद्ध है, ऐसे लोग भी इसमें शामिल होकर जो अक्टूबर 2 से लेकर 8 तक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेव डेमोक्रेसी मार्च करेंगे।
1: कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल जी कह रहे थे मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो। मतलब कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी पर भरोसा नहीं है। ये अलग अलग भ्रम फैला रहे हैं। मित्रों, अभी जो बैठक थे उसका नतीजा क्या निकला? इंडिया गठबंधन की एक तो शून्य विजन, 100% हताशा और हार का एडवांस बहाना। आने वाले चुनाव के पहले ही भूमिका हार की बना दो।

0: यूपी में सीटों के बंटवारे की लड़ाई अब इस मुकाम तक पहुंच गई है कि कांग्रेस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। यूपी में कांग्रेस के प्रभारी ने नई लाइन भी खींच दी है।
1: सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
2: 150 प्लस या 150 माइनस?
1: प्लस।
2: 150 प्लस
1: जी।
0: राजेंद्र पाल गौतम जो कुछ और जिस अंदाज में कह रहे हैं उस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तलखी पहले ही हद पार करती रही है। याद कीजिए, थोड़े दिन पहले की बात है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो मुस्लिम चेहरों की टक्कर हुई थी।
3: नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता।
4: अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए।
0: सीट बंटवारे और गठबंधन पर तनातनी के बीच ही अखिलेश रायबरेली पहुंचे थे। वहां उन्होंने रथ यात्रा की और रायबरेली में अपनी ताकत भी दिखाई। रायबरेली यानी वो सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अखिलेश की इस यात्रा पर भी दोनों पार्टी की तनातनी सामने आई थी। और अब इस बीच यूपी में कांग्रेस के प्रभारी का नया बयान आया है कि 150 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। तो अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: एक हिंदुस्तानी के वजह से टली 9/11 जैसी घटना, भारतीय पायलट की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा हमें स्मिथ पर गर्व, ट्रंप नेतन्याहू समेत दुनिया का सलाम, भारत में सलामती के लिए मंदिर मंदिर पूजा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावारिंग के इस्तीफे पर लगी मुहर, सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान। एमपी के दौरे पर राहुल गांधी का सीएम मोहन यादव पर वार, कहा यहां सरकार 100% फेल, बीजेपी का पलटवार, भारत के लिए खराब बोलना उनकी फितरत। सीजेपी के अभिजीत दिपके की सीएम फडणवीस को खुली चुनौती, कहा पुलिस की इजाजत के बगैर 2 अक्टूबर को हम करेंगे प्रदर्शन, 3 महीने तक भी जेल जाने को तैयार। एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम गोल्ड के लिए, पाकिस्तान से शनिवार को मुकाबला, पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को दी मात।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर होगा। सीएम योगी ने आज यूपी के 26 जाबांज पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। 16 जवानों को राष्ट्रपति गैलेंट्री मेडल और 10 को सीएम गैलेंट्री मेडल मिला है। इनमें से ज्यादातर जाबांज पुलिस अधिकारी वो है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बदमाशों, शूटर्स, तस्करों को और अपराधियों का मुकाबला किया और या तो उन्हें मार दिया या तो पकड़ लिया। सीएम योगी जब इन जाबाजों को पुरस्कार दे रहे थे तब उसी मंच पर उन्होंने यूपी में पुलिसिंग के बदलते मिजाज और कानून व्यवस्था में अब के फर्क का अंडरलाइन करके पूरा ब्यौरा दिया। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में हालात ये थे कि माफिया के सामने पुलिस मां उनको नाक रगड़नी पड़ती थी। हर जिले में माफिया के समानांतर सरकार चलाई जाती थी। सीएम योगी ने यूपी के कानून व्यवस्था में बदलाव का हवाला भी देते हुए कहा कि सब आरोप लगाएं, जबकि अखिलेश यादव यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए जाति के आंकड़े गिनाने लगते हैं। अखिलेश एसटीएफ को स्वजातीय टास्क फोर्स कहने लग जाते हैं। अखिलेश अपने दफ्तर में ऐसे वीडियोस और आंकड़े अक्सर दिखाते हैं और आरोप लगाते हैं कि इन मुठभेड़ों में पीडीएस समाज के लोग ही मारे जा रहे हैं। वैसे मई तक के आंकड़े बताते हैं कि योगी राज में पिछले 9 साल में 17,000 से अधिक बार पुलिस ने इनकाउंटर किया है और 34,000 से अधिक अपराधी पकड़े हैं, 290 के करीब मारे गए हैं। हालांकि यह आंकड़ा मुलायम सिंह सरकार के 2003 और 2007 के दौर से सिर्फ 4 साल में मारे गए 499 अपराधियों के आंकड़े के मुकाबले काफी कम है। फिर भी अखिलेश यादव एनकाउंटर राज का आरोप लगाते हैं और यूपी में पुलिसिंग की मिसाल के तौर पर संभल केस, जो बेगुनाहों पर एनएसए लगा देने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए 10,00,000 के जुर्माने का जिक्र भी करते हैं। ऐसे में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि यूपी में क्या कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा होगा, माफिया राज और सख्त शासन को लेकर किए जा रहे दावे और प्रतिदावे की बुनियाद हकीकत आखिरकार क्या है। तमाम सवाल होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसटीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र
2: भेंट कर और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता देते हैं। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
3: चुनावी यूपी में सियासत का हाल कुछ ऐसा है कि मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, सीएम योगी विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुनाने का मौका नहीं चूकते। यूपी के जाबाज पुलिस कर्मियों का सम्मान करते हुए भी सीएम अखिलेश राज की नाकामियां गिना रहे थे।
4: पीएससी की एक एक बहानी को समाप्त किया गया, यानी दंगाइयों के काल को जब आप समाप्त कर देंगे तो दंगाई तो कर्फ्यू लगाएंगे और यही तो होता था, महीनों कर्फ्यू। कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों, कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था।
1: बधाई।
3: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे और ये फर्क उस मंच पर था जहां यूपी पुलिस के बहादुर जवानों और अफसरों को सम्मानित किया जा रहा था। सम्मान पाने वालों में शामली में 4 अपराधियों को ढेर करने वाले शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी भी थी, जबकि वाराणसी में अपराधी मनीष सिंह को ढेर करने वाली टीम के 2 पुलिसकर्मी, मथुरा में अपराधी पंकज यादव को ढेर करने वाली टीम के 3 पुलिसकर्मी, उन्नाव में हिस्ट्री शीटर अनुज सिंह को ढेर करने वाली टीम के 3 पुलिसकर्मी, सहारनपुर में आबाद नाम के खूंखार अपराधी को ढेर करने वाले 3 पुलिसकर्मी और बिसरख में कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर करने वाले अक्षय त्यागी को राष्ट्रपति मेडल मिला। इसके अलावा सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 7 बड़े पुलिस अभियानों में शामिल 10 पुलिसकर्मियों को सीएम वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। लखनऊ में यूं तो सीएम योगी यूपी पुलिस के जाबाजों को सम्मानित करने पहुंचे थे, लेकिन सियासत वहां भी हो गई। सीएम ने 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया, पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना डाली।
4: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे, यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
3: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा या ढेर कर दिया। लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
5: काउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
3: पिछले 9 साल में 17,043 बार पुलिस ने मुठभेड़ की, इसमें 289 अपराधी मार डाले गए, 11,834 अपराधी घायल हुए, 34,253 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,852 पुलिसकर्मी जख्मी। इसके मुकाबले पिछले अखिलेश राज में पुलिस एनकाउंटर में कुल 40 अपराधी ढेर हुए थे। उससे पहले मायावती राज में 261 अपराधी मारे गए थे, और उससे पहले मुलायम सिंह के दौर में 499 अपराधियों का पुलिस ने सफाया किया।
5: ये हमेशा याद दिलाएंगे कि
3: लेकिन यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जातीय भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
6: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूँ, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
5: और चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाति हैं, और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई है।
3: एक तरफ सीएम योगी 2017 से पहले और 2017 के बाद की पुलिसिंग में बदलाव की तमाम मिसालें गिनाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर से लेकर पीएससी की बटालियन और थाने की बिल्डिंग्स से लेकर हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों का उदाहरण दिखाते हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश पुलिसिंग में सियासी घालमेल के ताने दे रहे हैं।
5: देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का फाइन लगाया है, 10 लाख का, और इससे पहले एक जिलाधिकारी पे भी लग चुका है फाइन, और अगर पूरा रिकॉर्ड उठाएंगे 10 साल का, कभी हाई कोर्ट ने कभी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए पुलिस पर, और पुलिस ने जैसा व्यवहार किया उत्तर प्रदेश में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
3: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस के सामने का बयान कोई मंत्र नहीं कि फूंक कर हर कानूनी चुनौती को खत्म कर दिया जाए। ऐसे कानून का इस्तेमाल आरोपी के पंख कतरने के लिए नहीं होना चाहिए। अदालत ने यूपी सरकार को कहा कि 10 लाख का जुर्माना आरोपी मुल्ला अफरोज को दिया जाए। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर की डीएम ने भी एक छात्रा पर एनएसए लगा दिया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने डीएम मेधा रूपम को कड़ी फटकार लगाई थी और निंदा वाले वाक्य अफसरों के सर्विस बुक में एंट्री करने को कहा था। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दरअसल 2022 में योगी आदित्यनाथ जब एक बार फिर यूपी की जनता के सामने मैंडेट मांगने गए थे, तब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उनका सबसे बड़ा पिच था, और आज विपक्ष उसी पिच पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि योगी एक बार फिर उसी पिच पर जनता के सामने जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार में माफिया राज मिट चुका है। तो यूपी की कानून व्यवस्था पर कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब भी होंगे, लेकिन काउंटर क्वेश्चंस भी होंगे। चर्चा करेंगे हमारे साथ शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में आ रहे हैं, अमित जमई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो भी चर्चा में होंगे, और शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या यूपी में माफिया राज बनाम एनकाउंटर 2027 का चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक बार फिर कह रहे हैं कि एनकाउंटर मानो किसी विशिष्ट जातियों का ही हो रहा है और एनकाउंटर राज एक तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है, आंकड़े क्या कहते हैं उस पर भी हम जाएंगे। दूसरा सवाल, क्या पुलिस एनकाउंटर में पीड़ितों दलितों अल्पसंख्यकों के मारे जाने के अखिलेश के आरोप क्या सही है, बार बार समाजवादी पार्टी से आरोप लगाए जा रहे हैं। तीसरा सवाल, यूपी में सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद अदालतों से पुलिस पर लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं? कई केसेस हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं, खास करके 2026 में एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट, कई टिप्पणियां कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन पर ली गई। चर्चा की शुरुआत करते हैं शिवम त्यागी। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि माफिया राज खत्म किया, पहले माफियाओं के सामने पुलिस को झुकना पड़ता था, आज की स्थिति में स्थिति उल्टी हो गई है। तो एक बार फिर आपके सरकार का पिच कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, क्या यही होगा?
7: जी साहिल जी, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए एक हमेशा एक बड़ा चैलेंजिंग विषय रहा है। जिस तरीके से स्थितियां उत्तर प्रदेश में थी, मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आता हूं मेरठ से, मतलब मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता और शब्दों में शायद बता भी नहीं सकता हालत उतनी थी। कुछ एक केसेस से बस हाईलाइट करके आगे बढ़ूंगा। एक नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हुआ करते थे राकेश बहादुर, उत्तर प्रदेश और नोएडा के सबसे पॉश सेक्टर में रहते थे 14A में। अतीक अहमद से टेंडर को लेकर एक विशेष विषय पर मामला बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद यह हुआ कि वो अतीक अहमद अपने गुंडों के साथ नोएडा के सेक्टर 14A में आया, घुस गया, घुस के मारपीट करी, गमले तोड़े, 2 घंटे तक राकेश बहादुर जी को कमरे में बंद रहना पड़ा। स्थिति ऐसी हो गई कि उसके बाद पूरी अधिकारी लॉबी ने, आईएएस लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर कोशिश की कि एफआईआर करा दें, लेकिन एफआईआर तक नहीं कर पाए। ये हैसियत थी गुंडों की, बदमाशों की, चोरों की, गैंगस्टर की, डकैतों की। किसी की हैसियत है आज कोई इस तरीके से 14A छोड़ो नोएडा के पेरिफेरी में इस तरीके का काम कर दे? और अगर इस तरीके का काम करेगा तो जाहिर है अगले सिंगल पर अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ेगा तो उसके लिए जवाब तैयार है वहां पर। आज स्थितियां बदली हैं, डेटा तो बेइंतहा बदला ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। डकैती हो चाहे वो 84% से कम हुई, चाहे वो दंगे हो वो 66% से कम हुए, अपहरण 54% से कम हुए, मर्डर 41% से कम हुए, रेप जो कि एक भी गलत है वो भी 26% से कम हुए, और इसके अलावा जो दहेज में हत्याएं होती हैं, डेथ होती है, वो भी 17-17.5% से कम हुई। ये तो एक रिकॉर्ड है, लेकिन स्थितियां इतनी भयावह थी क्योंकि रीजन था गुंडे गैंगस्टर्स कोई सरकार की शय पे काम नहीं करते थे, वो सरकार के साथ मिलकर करते थे, वो एक्सटेंडेड विंग की तरह काम करते थे। वो ऐसे लगता था जैसे कि गुंडा गैंगस्टर जो है एक अलग से पुलिस बल बना रखा है इन्होंने, और वो भी एक्सट्रॉशन का काम जो है जनता से करता है, मारना पीटना, जिसको जहां चाहा गोली मार दी, जिसको जहां चाहा मारा, जिसको जहां चाहा पीट दिया, जब मन मर्जी करी खुली जिप्सी लेकर पिस्टल घुमाते हुए निकल लिए। उत्तर प्रदेश में इस तरह की सारी स्थितियों पर पूर्ण विराम लग गया है। हां, सुधार की और जरूरत है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है, क्योंकि जिन लोगों ने यह माहौल पैदा कर दिया था, जिन लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बना दिया था, जिन लोगों ने गैंगस्टर्स को जो है एक जनता के सेवक से भी बड़ा ओहदा दे दिया था, जो जब जैसा चाहते थे वो कर लेते थे, वो अगर गलती से भी वापस आ गए, जो कि नहीं आएंगे, तो उत्तर प्रदेश में स्थिति यह हो जाएगी कि साहिल जी जब कभी आप महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में नोएडा में भी घूमने आया करेंगे ना, आपको भी मुझे लग रहा है बहुत बहुत सारे पुलिस वालों की आवश्यकता हो जाएगी। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में कोई नहीं चाहता, शांति है और बेहतर करने की आवश्यकता है।
0: ठीक है अमित जमाई, दरअसल शिवम त्यागी ये पिच करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई परसेप्शन तो इस बात का बना लिया गया है। आमतौर पर समाजवादी पार्टी की जो प्रतिक्रिया इस पर देखी जाती है वो पुलिस एक्शन पर देखी जाती है, और खास करके स्पेसिफिक कुछ पुलिस एक्शंस पर देखी जाती है, जैसे अखिलेश यादव संभल का मामला गिनवा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एक्शन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, उस पर भी मैं आऊंगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो परसेप्शन उत्तर प्रदेश के भीतर बनाया गया है कि जो स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन है वो जरूरी है, और इसी के वजह से जो रोजमर्रा के गुनाह या अपराध की घटनाएं वहां पर हो रही है, कम से कम उस पर लगाम लगाने में योगी सरकार कामयाब रही है, उसको आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे?
8: देखिए साहिल भाई, मैं पुलिसिंग के बारे में बात करना चाहता हूं, और हमारे सामने फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह जी यहां पे मौजूद हैं और वो सच्चाई के लिए भी जाने जाते हैं
0: जी।
8: पुलिस फोर्स के मामले में, चाहे पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर हो, पुलिस फोर्स के वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, पुलिस फोर्स की चाहे उनकी जो इनोवा गाड़ियां, बोलेरो गाड़ियां, मोस्ट मॉडर्न बाइक, और जो NYPD का पुलिस सिस्टम है वो मणिकेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश किया। 1090 महिलाओं की अलग से लाइन करी, जो हमारी सारी एम्बुलेंस हैं उसके सब अलग अलग उन्होंने उसको बांटा। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज एक इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री के चलते पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो फोर्स है हमारा, वो पूरा बेलगाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश लीड करना नहीं आता है। मैं कोई इल्जाम, मणिकेश जी ने जो कुछ आज कहा है उसे आपने स्क्रीन पे ऑलरेडी चला दिया है, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जस्टिस देशवाल जो उच्च न्यायालय के जो बहुत सीनियर जज हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बनने नहीं दूंगा, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो कप्तान हैं वो सीजीएम पर जज पर आके उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि उनके उनके जरिए मन माफिक फैसले करवाए जाएं। कल क्या कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने, कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को भंग कर देना चाहिए, रहना तो छोड़िए एग्जिस्टिंग तो छोड़िए, इस नाकाबिल मुख्यमंत्री के चलते कहा जा रहा है कि, और मेघा रूपम जो डीएम है ज्ञानेश कुमार की बिटिया, उसने जिस तरह से एनएसए डीयू की छात्रा पे लगाया, आखिर 5-5 लाख रुपया उनको देना पड़ रहा है। कल जो संभल के मामले में एनएसए में आपने देरी करी, सवाल यह है कि जब आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं कि संभल में चला बुलडोजर, संभल में हमने जेल भेजा, एनएसए लगाया, लेकिन जो जिंदगियां आप बर्बाद कर रहे हैं, जैसे देशवाल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस फोर्स अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, अपना प्रमोशन पाने के लिए, जस्टिस देशवाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इसी बारे में एक बार बहुत पहले कहा गया था, विक्रम सिंह जी बताएंगे कि जस्टिस मोल्ला ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का गैंग बन चुका है। आज हम दोबारा याद करते हैं कि अगर जस्टिस मोल्ला आज होते और जस्टिस देशवाल जो उन्हीं की बात को कह रहे हैं कि पुलिस स्टेट बन गया है, इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश में सुबह शाम हत्या रेप के कांड, और उसमें अगर आप पुलिस में गए बतौर कंप्लेनेंट साहिल भाई तो 50,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में।
0: नहीं अमित जमाई, देखिए मैं देखिए आप जो पिच कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स हो रहा है, पुलिस जातियां ज्यादा हो रही है, और कानून व्यवस्था से निपटने के लिए या अपराधियों से निपटते वक्त पुलिस स्टेट ना बन जाए कोई भी राज्य, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये पिच आप रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स भी मैं सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा स्पेसिफिक सवाल जो आपको था इस बात को लेकर, देखिए ये लड़ाई हमेशा चलती है, मैं मुंबई से आता हूं जिसका जिक्र शिवम त्यागी भी कर रहे हैं, एक वक्त था कि मुंबई के भीतर गैंग वॉर इतने चरम पर पहुंच गया था कि पुलिस को कुछ एक्शन इस तरीके से करनी पड़ी कि जिसके बाद मुंबई का गैंग वॉर एक तरीके से खत्म हो गया, और उसी बात को लेकर पुलिस पर भी कई आरोप लगे। मेरा सवाल आपसे यह स्पेसिफिक है कि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश माफियाओं का राज माना जाता था, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से माने जाते थे, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई सारी वेब सीरीज बन चुकी है, यह क्यों हो रहा था, जिस तरीके से एक वक्त पे मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर वेब सीरीज बनती थी या फिल्म्स बनती थी, कम से कम वो परसेप्शन बदलने में क्या आपको लगता है कि ये सरकार कामयाब हुई है? पुलिस की जातियों पर मैं आऊंगा, मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं, लेकिन मेरा स्पेसिफिक सवाल जो आम लोग हैं उनको नहीं लगता कि भाई कम से कम मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, आम जनता की बात कर रहा हूं, उस पर पहले जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अखिलेश जी के पास
8: अलग भाई। मैं आपसे साहिल भाई मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश अपहरण में नंबर वन क्यों है? अगर ये 2-4-5 माफिया जिनका नाम लिया जाता है, चलिए वो तो जहां उनको जाना था वो चले गए, लेकिन आज जो अपहरण में नंबर वन उत्तर प्रदेश बना है वो क्यों बना है? नंबर टू, जो मुख्यमंत्री के सौजाती माफिया डी कंपनी के लोग हैं, हो सकता है विक्रम सिंह जी नाम ले लें, वो जो पूर्वांचल के जितने बाहुबली हैं क्या कार्रवाइयां करी हैं? मुख्यमंत्री जी के साथ वो बैठ के आलू पूड़ी खाते हैं, उनके साथ जो है हलवा और क्या कहते हैं लड्डू खाते हैं, जितने पूर्वांचल के माफिया हैं सबके संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। तो हमारा यह कहना है कि जब मुख्यमंत्री जी खुद सौजाती माफिया डी कंपनी के लोगों को उत्तर प्रदेश में पाल रहे हैं, ठीक है आपने अतीक अहमद के लिए जो करना था आपने किया, मुख्तार अंसारी साहब के साथ जो हुआ वो हुआ, वो तो हो गया, लेकिन जो मुख्यमंत्री के सौजाती जितने भी माफिया डी कंपनी के लोग हैं वो आज भी कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है,
0: यानी समाजवादी पार्टी का आरोप यह है इसमें, जिसका मैं शांतनु गुप्ता के पास इसके बारे में जाऊंगा, कि माफिया बदल गए हैं, राज बदल गया, एनकाउंटर हो गया, कुछ माफिया खत्म हो गए, लेकिन उन माफियाओं की जगह अब कोई और माफिया ले रहे हैं। शांतनु जी इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, एनकाउंटर राज का आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है, आपके प्रभारी जो है उन्होंने कहा है कि भाई एनकाउंटर राज चल रहा है, और लगातार कांग्रेस पार्टी का ये कहना रहा है, जरा एक बार वो पहले रिएक्शन सुना देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। राजेश कुमार गौतम क्या कह रहे थे वो जरा एक बार सुना देते
9: हैं। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। पुलिस को मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने अपने डायरी में उसका नाम मेंशन किया ही नहीं, बकायदा अज्ञात व्यक्ति लिख दिया। जब अपराधी अगर कोई अपराधी को पकड़ा, जनता ने पुलिस के हवाले किया, तो पुलिस ने उसका नाम अपनी डायरी में क्यों नहीं लिखा, अज्ञात व्यक्ति क्यों लिखा? और सीसीटीवी कैमरे मांगे गए तो कहा गया पुलिस की तरफ से कि सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। कई लाखों का पैसा उनको पुलिस को कैमरे के लिए मिला, काम पूरा हुआ नहीं, पेमेंट हो गई। ये भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भाई पेमेंट कैसे होगी अगर कैमरे नहीं लगे तो। और इसके साथ साथ मैं आपको कई चीजें बताना चाहता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि पुलिस झूठों का झुंड है, यानी झूठ बोलने वालों का झुंड है।
0: तो कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की टिप्पणियां भी राजेंद्र पाल गौतम यहां पर गिनवा रहे हैं, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी एक ग्राफिक्स हम यहां पर चलाना चाहेंगे, जरा वो ग्राफिक चलवाइए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के समय पे कितने इनकाउंटर होते थे, जरा वो हम पूरे स्क्रीन पर चलाएंगे और उसी बात को लेकर आएंगे। जब आप उत्तर प्रदेश जो हमारे स्टोरी में अभी चला था ग्राफिक्स, वही एक बार फिर चला दीजिएगा, क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एनकाउंटर राज का करा दिया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2012 के बाद, तब कुल 40 अपराधी ढेर हुए थे उसमें। उससे पहले जब मायावती 2007 से 2012 तक मुख्यमंत्री थी, तब 261 अपराधी इसी तरीके के एनकाउंटर्स में मारे गए थे। आज ये आंकड़ा 289 का है। इससे पहले जब मुलायम सिंह यादव 4 साल मुख्यमंत्री थे, उसमें 499 अपराधियों का एनकाउंटर इस तरीके से किया गया था। तो राज्य किसी का भी हो, उत्तर प्रदेश के भीतर एनकाउंटर ये फॉर्मूला रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस का। अखिलेश प्रताप सिंह, सवाल इस बात को लेकर है कि जब मुलायम सिंह यादव एनकाउंटर कर रहे थे, मायावती एनकाउंटर कर रही थी, या अखिलेश यादव की सरकार में एनकाउंटर हो रहा था, तब एनकाउंटर राज नहीं कहा गया? योगी आदित्यनाथ जब एनकाउंटर करते हैं, तब उन्हें एनकाउंटर राज क्यों कहा जाता है?
10: देखिए साहिल भाई, उत्तर प्रदेश में सचमुच में एक क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट रन कर रही है। ये गवर्नमेंट क्राइम्स में या क्रिमिनलों में अपना और पराया का भेद करके कार्रवाई करती है, और दुनिया की पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने विधानसभा में कानून ला करके अपने लोगों पे 20,000 से ज्यादा लोगों के मुकदमे वापस किए हैं। अब इनकाउंटर तो हमेशा होते रहे हैं, सही बात है, हर प्रदेशों में होते रहे, ये भी सही बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश का इनकाउंटर जो है ना, बड़ा ही अनोखा है। अदालतों ने भी बताया है, मैं 99.9% इनकाउंटर में पैर में गोली लगी है और हड्डी भी नहीं टूटी है, और इतने दूर से इतने सटीक यूपी पुलिस के निशानेबाज हैं कि इतने सटीक निशाना लगाते हैं 150-200 गज से, कि सिर्फ पैर में, घुटने के नीचे वाले पैर में लगी है अधिकांश लोगों को। ये चर्चा का विषय, ये काबिलियत है हमारे यूपी के बीजेपी की सरकार के इनकाउंटर के स्पेशलिस्टों का, इसलिए इसकी बात होती है। इस पे भी इन बीजेपी जो इनकाउंटर वाले या पुलिस वाले लोग हैं या ये जो सरकार है, उसे पुरस्कार भी देना चाहिए। कई इनकाउंटरों में अभी कोर्ट से सजाएं हुई है, अरेस्टिंग हुई है, आदेश पारित हुआ यूपी में, कई लोग पकड़े गए हैं, और ये पता नहीं भविष्य में इन लोगों का क्या होगा, भगवान जाने। तो इनकाउंटर इनकाउंटर में फर्क है, सटीक निशानेबाज है यूपी के पुलिस वाले, घुटने के नीचे सिर्फ मांसपेशी में गोली लगती है। कई बार आपने देखा, हाँ खड़े हो, वो वीडियो थोड़ा पहले से जो बनाते हैं वो भी सोशल मीडिया पे आ गया। दूसरी बात साहिल जी, गौर करिए, जितने कमेंट उत्तर प्रदेश की पुलिस पे पिछले 5-7 वर्षों में अदालतों ने किए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, वो किसी भी प्रदेश की पुलिस पे इतने बार इतने तक कमेंट नहीं किए हैं। अब तो पेनाल्टियां लग रही हैं, इलाहाबाद में, देवरिया में, 2-2 थानों में, कई थानों में 3-4 दिन के अंदर 3-4 थानों के पुलिस वालों पे 50,000 रुपए के पेनाल्टी लगी है। पुलिस को क्यों ना भंग कर दिया जाए, यूपी पुलिस को, इससे बड़ा कमेंट क्या होगा? ये सामान्य कमेंट नहीं है, और बहुत बहुत कुछ सर के ऊपर गुजर गया होगा तब मानी अदालत ने ये तल्ख टिप्पणी की होगी, बहुत कुछ। इसी में ये जो दाग हमारे यूपी पुलिस में, बहुत होनहार और अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल अधिकारी हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस को भी क्राइम के लिए क्रिमिनल फ्रेंडली बनाया जा रहा है, पुलिस से अपराध कराया जा रहा है, प्रशासन से अपराध कराया जा रहा है, बेगुनाहों को सलाखों में डाला जा रहा है।
0: उत्तर प्रदेश के ऊपर जो माफिया राज का दाग था वो धुलाए कि नहीं धुलाए अखिलेश जी?
7: साहिल जी मुझे जवाब दे,
0: बिहार के भीतर जंगल राज कहने पर किसी विशेष सरकार का नाम आता था, क्या उसी तरीके से माफिया राज का जो दाग था वो धुलाए कि नहीं धुलाए, या अभी भी वो चल रहा है?
10: मैंने बताया ना ये क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट है। आप जितने इनके घोषित यूपी सरकार के गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उस पे किसी एक दो पे भी कार्रवाई हुई हो बता दे, सारे सत्ता का सुख उठा रहे हैं, सारे सत्ता के साथ है। मैक्सिमम जिले वाइज क्राइम बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, ये सरकार ने सूची जारी की है, मंडल वाइज में जारी की है, तो वो उनपे कौन सी कार्रवाइयां हुई है? ये जो कारण है, मैंने कहा ना अपना और पराया, क्राइम क्रिमिनल को पुलिस पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस अपना और पराया छांट के कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष कार्रवाई कर। आप किसी जिले के पुलिस अधिकारियों को दरोगा से ऊपर रह के आप सीओजी नंबर मिला लीजिए, 99% फोन नहीं उठाते। आज से नहीं, कई सालों से मैं देखता हूं, मैं रोजाना दो चार लोगों को मिलाता हूं, उनका गनर उठाएगा या उनका
0: शांतनु गुप्ता
10: सिपाही उठाएगा,
0: जो नहीं उठाएगा। मैं जो आपको ओरिजिनल सवाल मैंने पूछा था उस पर कुल मिलाकर शांतनु गुप्ता इसका जवाब आपसे मुझे चाहिए, आपने तो किताब भी लिखी है उत्तर प्रदेश पर, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। देखिए आरोप ये लग रहा है कि भाई माफिया राज आप कह रहे हैं कि खत्म हो गया, लेकिन आपने माफियाज को बदल दिया है, मतलब जो पहले माफिया थे आतिक अहमद थे, बाकी मुख्तार अंसारी थे या जो भी थे, अब नए माफिया वहां पर आ गए। एक पूरी लिस्ट बताइए, आज तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाई जो सिंह या ठाकुर है उनको तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, एक लिस्ट यहां पर भी मेरे पास भी किसी ने भेजी हुई है, ये सही है कि नहीं है? आप बताइएगा कि 2024 में इनके नाम इसमें थे, कोई ब्रिजेश सिंह है 106 मुकदमे उनके खिलाफ, बादशाह सिंह है जिनके खिलाफ 88 मुकदमे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह है 84 मुकदमे हैं, उदय भान सिंह है 83, अजय सिंह सिपाही है 81, संग्राम सिंह 54, सोनू सिंह 58 उनके खिलाफ मुकदमे हैं, चुलबुल सिंह है 53 मुकदमे हैं, सनी सिंह 43, मोनू सिंह, धनंजय सिंह, चुन्नू सिंह, अशोक चंदेल, विनित सिंह, राजा भैया, पिंटू सिंह। तो बाकी माफिया तो खत्म हो गए, लेकिन ये माफिया कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाई ये माफिया तो जिंदा है, उनकी पूरी लिस्ट आज पढ़ के बता दी है कि इतने सारे उनके खिलाफ पेंडिंग केसेस है। ये जो रिप्लेसमेंट तो नहीं हो गया ये माफिया राज?
11: साहिल भाई जब आपने शुरू में बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में 290 एनकाउंटर हुए, और साथ में आपने एक अच्छी चीज बताई कि 34,000 अरेस्ट भी हुए। देखिए पुलिस का, अभी विक्रम जी बताएंगे, पुलिस का मेन काम होता है अरेस्ट करना, जिससे अरेस्ट करके वो एक माफिया को पकड़ के 10 माफिया के बारे में और पता लग पाए। बिल्कुल एक खास मौका होता है तो सामने से फायरिंग होती है, सामने काउंटर फायरिंग होती है। आप इन 34,000 की जातियां देख लीजिए जिनको अरेस्ट करा, या फिर जो उत्तर प्रदेश में 75% से ज्यादा कन्विक्शन उनकी जातियां देख लीजिए, आप जितने एनकाउंटर उनकी जातियां देख लीजिए, उसमें आपको ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान, यादव सब मिलेंगे। ये तो देखिए बचने का तरीका है। जितने भी नाम बता रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, ये तो बहुत सारे वकीलों को जानते हैं, इनकी पार्टी में आधे वकील ने दो केस आप सैंपल केस लेके तो पहुंचे इलाहाबाद का हाईकोर्ट में पहुंचिए। तो देखिए मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं, जिस दिन अतीक अहमद के लड़के असद का एनकाउंटर हुआ, 5 लाख का इनामी था गुलाम और असद, यही एनकाउंटर हुआ झांसी के पास। उसी दिन आदित्य राणा का यही बिजनौर में एनकाउंटर हुआ, वो भी 2.5 लाख का इनाम था, वो तो सुजातीय भी था, वो तो ठाकुर भी था, लेकिन वो खबर ही नहीं बनी। देखिए खबर कब बनती है, जब कोई ऐसी बात हो जब आप लोगों को टीआरपी मिले, आप लोग भी डिबेट नहीं करते उस पर। आपने आदित्य राणा पर डिबेट करी क्या? वो सेम दिन जिस दिन असद की हुई, उसी दिन हमारे बिजनौर में विक्रम जी बताएंगे इस वेस्ट की बेल्ट पर बड़ा दुर्दांत माफिया था, वो उसको खत्म करा। तो देखिए ये तो बचने का तरीका है, सबको पता है। देखिए मैं आपको फिलोसफी बताता हूं, 2017 से पहले माफिया के अगेंस्ट फिलोसफी क्या थी? लड़के हैं गलती हो जाती। आज फिलोसफी क्या है? माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और वो दिख रहा है सामने से। लड़के हैं गलती हो जाती से उत्तर प्रदेश आ चुका है माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आपके इसी नोएडा में अडोब का सॉफ्टवेयर जो सब आप यूज करते होंगे अपनी एडिटिंग के लिए, उसके सीईओ का लड़का यहीं पर किडनैप हो गया था नोएडा में। जिले बने हुए थे कि नोएडा किडनैपिंग के लिए, कौन सा बालू माफिया के लिए, कहां पे कारों की चोरी होगी, कहां पे रंगदारी होगी, कहां पे चीटिंग माफिया होगा। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चला गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, अभी बिल्कुल नोएडा इंटरनेशनल में
8: एक्सपो भाई, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने।
0: नहीं, कहां चला गया? मैंने तो अभी आपको लिस्ट पढ़ के बताई ना, जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक लिस्ट पढ़ के बताई थी, मैंने लिस्ट आपके सामने रखी।
11: उनकी लिस्ट से माफिया नहीं होता ना, उनकी लिस्ट से माफिया नहीं होता। मैं बताता हूँ, देखिए उनके पास पूरा पॉलिटिकल इंसेंटिव है नामों को लेकर कोर्ट पे जाने का। वो नहीं जाएंगे क्योंकि ये केवल चैनल की चीज है, उनकी लिस्ट से नहीं होता भाई। उसके पास क्या मुकदमा? मुकदमे तो हर पॉलिटिशियन के ऊपर है। राहुल गांधी पे 14 मुकदमे
8: जेल में,
11: राहुल गांधी पे 14 मुकदमे है, राहुल गांधी पे इस समय फर्जरी से लेकर 14 मुकदमे बाहर है ना, तो उससे नहीं पड़ता। आप तो कितने भी ले दिए, अभी अखिलेश जी कहते 20,000 मुकदमे वापस ले लिए। भैया नेता वापस नहीं लेता है, नेता रिकमेंड कर सकता है कि भैया पिछले 20-20 साल से चार्जशीट नहीं हुई, 20-20 साल से मुकदमा नहीं चला, फर्जी केस पॉलिटिकल लगाया था, कोर्ट में दिया, कोर्ट एक एक की विवेचना करता है, हटाता है मुकदमों को, हटा दिया कोर्ट में। अखिलेश यादव जी ने मुकदमे हटवाए थे, ऐसी बात नहीं, पहली बार अखिलेश यादव जी ने जिन्होंने अयोध्या में ब्लास्ट करे, जिन्होंने बनारस में ब्लास्ट करे, उनके हटवाए और कोर्ट ने कहा आप तो पद्म विभूषण दे देंगे। बल्कि विक्रम सिंह जी बैठे हैं, विक्रम सिंह जी उनकी टीम एक बार, बल्कि पूछेगा उनसे, बिजराल जी जो अब सांसद भी हैं, उनकी टीम एक बार आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही थी, एक कोर्ट से मेरे ख्याल से जेल से कोर्ट में लेके जा रही थी, उनकी उनकी डिहाइड्रेशन से मौत हो गई, केस हो गया विक्रम सिंह पर। अरे आतंकवादी को मार दिया आपने, अरे उसको डिहाइड्रेशन होने दिया, उसको लिम्का क्यों नहीं पिलाया आपने, उसको दावत क्यों नहीं दी आपने? ये ऐसे सरकार चलती थी? आप कितने भी आंकड़े दिखा दिए, जनता को पता है, जनता के दिल में योगी आदित्यनाथ बसे हैं, खासकर सुरक्षा के मामले में। आप किसी भी इल्जाम लगा लीजिए योगी आदित्यनाथ मामले में, आप लॉ एंड ऑर्डर में छू भी नहीं सकते योगी आदित्यनाथ।
0: यानी पुलिस राज का कोई भी आरोप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक जनता को लग रहा होगा, पुलिस की जाति कितनी भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की कितनी भी टिप्पणियां आ जाए, लेकिन जब तक जनता को लग रहा है कि भाई हम तो सिक्योर्ड फील कर रहे हैं, नोएडा में लोगों को सिक्योर्ड लग रहा है, तब तक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्ग्यूमेंट यही है ना,
10: क्योंकि 5 केसेस यहां पर।
11: पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनता को सिक्योर होना चाहिए, लेकिन हाँ 34,000 अरेस्ट में अगर आप 5 केस गिनाएंगे जहां पुलिस का अतिरेक रहा हो, तो उसमें कार्रवाई होगी पुलिस के खिलाफ भी। भाई 34,000 मामलों में
0: सिर्फ 5 केसेस का मामला नहीं है,
11: 10 का मान लीजिए,
0: 5 केसेस का सिर्फ मामला नहीं है, मामला नहीं है।
11: 5 सिग्मा का फॉर्मूला भी लगा लीजिए, 5 सिग्मा
0: सुप्रीम कोर्ट अगर
11: फॉर्मूला भी लगा लीजिए, तब भी नहीं।
0: विक्रम सिंह जी, चलिए विक्रम सिंह जी, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को हम लोग एक मामला करके छोड़ देना चाहिए? मैं 5 मामले आपके पास गिनवाता हूं। पहला मामला जिसका जिक्र अभी कई बार हो चुका है कि यूपी पुलिस को भंग कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2026 में यह टिप्पणी की संभल वाले मामले में, जब 10,00,000 का जुर्माना उन्होंने लगा दिया कि भाई गलत तरीके से एनएसए लगा दिया। जो हाफ एनकाउंटर की बात की जा रही है कि पैरों पर गोली मार के जख्मी किया जा रहा है, वो कह रहे हैं वो मामला भी कोर्ट में गया, कोर्ट ने फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि भाई ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है, पूरी तरीके से गैरकानूनी है, ये उन्होंने कहा। यूपी पुलिस झूठों का झुंड है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसके भी जो पुलिस स्टेशन के भीतर जो सीसीटीवी था वो फुटेज पूरी तरीके से बदल दिया गया था, अवैध हिरासत में रखने का मामला था, सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में केस में तब्दीली का मामला था, गुंडा एक्ट को लेकर भी अदालत ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं, पत्रकार की गिरफ्तारी थी उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो क्या हमें इन मामलों को गिने चुने 4-5 मामले और उसको लेकर पूरी पुलिस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, आपको लगता है? या आपको लगता है कि ये समतोल रहना चाहिए कहीं ना कहीं, कि पुलिसिया राज ना बन जाए और दूसरी तरफ माफिया राज भी ना बन जाए, ये कैसे बनाया?
12: साहिल जी नमस्कार, आपके बड़ा विद्वतापूर्ण और बड़े कटाक्षपूर्ण प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा मुझे भी कुछ अवसर दें, ऐसा ना हो कि मैं कोई अप्रिय बात या मतभेद करूं तो आप मेरे स्पीच और मेरा मॉड्यूलेशन काट दें। 1961 में जस्टिस अमरनाथ मुल्ला ने कहा था यूपी पुलिस इज द बिगेस्ट गैंग ऑफ गुंडास, ये उनका अभिमत हो सकता माननीय न्यायाधीश महोदय का, और न्यायपालिका की जो भी टिप्पणी आती है उसका ससम्मान, हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, जांच करते हैं। और पहले के जमाने में पैरा 500 पुलिस रेगुलेशन की इंक्वायरी होती थी, दोषी पाए जाने पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी दंडित होते थे और इसका अनुपालन अख्यन न्यायालय को भी जाती थी। मेरा ख्याल है मैं भारतीय नागरिक हूं, सूप बोले तो बोले, छल्ली क्या बोले जिसमें 72 छेद हो, बंडलों के बंडल, बोरे के बोरे, नोट मिल रहे, कुछ कार्रवाई कर लीजिए। माना कि पुलिस सबसे बड़ी गुंडा है, मान लिया मैंने, लेकिन अगर एक सिपाही आपके घर से कम हो जाए तो आप ये चिट्ठी लिख देंगे डीजी को कि हमारे यहां से एक सिपाही कम हो गया। मैं बड़े सम्मान के साथ फिर कह रहा हूं, अब हम आते हैं आपकी बात पे, चप्पल में एनकाउंटर, अखिलेश प्रताप सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के और उसके बाद श्रीपद मिश्रा साहब के टाइम से सैकड़ों एनकाउंटर किए मैंने, कभी नंगे पैर, कभी चप्पल, कभी नाविक बन के, कभी साधु बन करके, जैसा होता है देश वैसा होता है देश। मैं चाहूंगा कि जरा अगर आप चाहें तो पुलिस महानिदेशक से निवेदन करके आपको भी किसी इनकाउंटर में शामिल, आप स्वयं फर्स्ट हैंड देखें इनकाउंटर कैसे होता है। तीसरी चीज, त्रुटियां हुई है और मैं शांतनु जी से कहूंगा, सीसीटीवी अगर लगे थे, बजट था, पेमेंट हुआ, सीसीटीवी क्यों काम नहीं कर रहे हैं? एक विद्वान वक्ता ने यह भी कहा कि हम फोन मिलाते हैं, उसको कोई गनर उठाता है या कोई नंबर दो उठाता है, इसलिए तो सीयूजी नहीं मिला, ये सीयूजी मिला आपको, इसलिए आप व्यक्तिगत उठाएं, व्यक्तिगत समाधान करें, इतने बड़े लाट साहब ना हो जाएं कि सीयूजी कोई और उठाए आपका। और ये मैं आपकी अपनी बात मैं आपके विद्वान प्रवक्ताओं से कहूंगा, और ये शिवम जी और शांतनु जी इस चीज पे गौर करें, हर चीज मतलब हम उसको काट थोड़ी सकते हैं। अब हम तीन बातें और बताते हैं, चरमपंथियों के इंडियन मुजाहिदीन के मुकदमे जब आप ले रहे हैं तो जरा पहले आपको सोचना चाहिए था कर क्या रहे हैं। उच्च न्यायालय की जब फटकार पड़ी तब आपकी समझ में आए, बाद में उनको आजीवन कारावास मिला, और एंड प्रोडक्ट क्या है, आपके डकैती 94% कम, रॉबरी 70% कम, हत्या जो कभी मिनिमाइज नहीं सकती है 52% कम, बलात्कार 46% कम, अखिलेश प्रताप सिंह जी की मुस्कुराहट ही कम नहीं हो रही है, वो समझते कि आंकड़े हमने बनाए। सवाल ये उठता है कि आंकड़े हमने नहीं बनाए और आप लोग इतने प्रबुद्ध
8: जी, जब FIR नहीं लिखी जाएगी तो आंकड़े तो कम होंगे।
12: अमित जी एक मिनट, बस मेरी बात खत्म करने दे, मैं आप ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप मेरे बेटे की तरह मैं 30 सेकंड और लूंगा। सवाल ये उठता है कि आपने एक चरमपंथी लू खा के मर गया, शांतनु जी ने किया, मैं रिटायर हुए 3 साल ब्रिजलाल सिविल डिफेंस में और हत्या का मुकदमा मेरे ऊपर, और आपने आके मजबूरी क्या थी कि चरमपंथियों के मुकदमे आपने वापस लिए, आपकी मजबूरी क्या थी और आपका उत्पीड़न कहिए। मैं तो आपको अमीक जी आपको कहूंगा, अखिलेश जी ने कहा यह मुकदमा फर्जी है, लेकिन हमारे आजम खान साहब ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने जरा जल्दी कर दी इसमें कमेंट करने में, वो चाहते थे कि और टांगे जाए। रही बात जातीयता की, इस चीज में मुझे घोर आपत्ति है, मेरा ड्राइवर था सुशील अनुसूचित जाति का, मेरा पीए था बरकत मुसलमान, मेरा जो सेकंड इन कमांड था रिजवान जो आज इंस्पेक्टर है मुसलमान,
13: आप उनकी दुआई दे रहे थे, अब विक्रम सिंह बोल चुके हैं जो बोलना था वो क्लियरली बोल चुके हैं। और कुछ आंकड़े मैं आपको और जोड़ देता हूं, जो दंगों का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, देखिए जब आपकी सरकार थी 2012 से लेकर 2016 तक अगर हम देखें 8018 तक दंगों के नंबर्स पहुंच गए, जबकि 2024 में ये संख्या 2610 तक आ चुकी है। जो कम्युनल राइट्स हैं उनकी संख्या आपके सरकार के वक्त पे 31 तक पहुंच गई थी, 31 तक, आज की संख्या में 0 लिखा गया है उसके सामने, NCRB का डेटा है। और जो मैंने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि बिहार के भीतर जब भी जंगल राज की बात होती है लोग किसी स्पेसिफिक रिजीम के बारे में सोचते हैं, माफिया राज की बात होती है तो किसी स्पेसिफिक रिजीम के बारे में सोचा जाता है, विक्रम सिंह भी जो कह रहे हैं, कैसे जवाब देंगे इसका अमित जी?
8: देखिए मैं बहुत सम्मान के साथ विक्रम जी से कहना चाहता हूं कि विक्रम जी मैं जस्टिस RD निमेश कमीशन का एक एक वर्क आज भी मेरे जहन में हिफ्ज है, मतलब मैं पढ़ सकता हूं, कभी इत्मीनान से मैं आपके सामने पढ़ सकता, लेकिन मैं अभी उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं कि उस पूरे मामले में क्या हुआ था, कैसे FIR हुई,
12: ये भी अरमान पूरे कर लें।
8: दूसरी बात ये है, नए विक्रम जी वो बहुत पुरानी बात है, फिर वो कभी हो जाएगी, अभी की बात जो है पूरे देश में विक्रम जी मैं निवेदन के साथ रिक्वेस्ट के साथ, VP सिंह साहब मुख्यमंत्री थे क्या हुआ, वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री थे क्या हुआ, अरे 17 से 26 में एक नाकाम इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लीड कर रहा है, उसके राज में जो ये कहते थे कि सर है अपराधी यूपी छोड़कर चले गए, जब यूपी छोड़कर चले गए तो क्या बात है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध के खिलाफ के कोर्ट केसेस, कि सार्वजनिक स्थल का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी रास्ते से वो जा नहीं सकते, पूरे देश में आपके उत्तर प्रदेश की में आपके आपके उत्तर प्रदेश में है और पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। ये जो सामंती स्वजाति जो गुंडों की पूरी एक फौज है, जो इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री के चलते पूरा जो हमारा STF में आप डाइवर्सिटी उठा के देख लीजिए क्या हो रहा है इसमें STF में, आप जिलेवार जोनवार STF का पूरा आंकड़ा निकाल लीजिए विक्रम जी, तो आप ये कहेंगे कि ये एक जाति का गलबा यहां पे क्यों है?
10: बोलूं?
8: जब डाइवर्सिटी नहीं होगी अन्याय होगा, अन्याय होगा।
13: लेकिन अमित जी
8: जो आज
13: जी, आज जो सम्मान बांटे गए
8: कुर्मी नौजवान बच्चे की बात बोली
13: अमित जी,
8: वो सच नहीं, वो सच
13: अमित जी, अमित जी आज जो जिन लोगों को सम्मान मिला है, आज जिन लोगों को सम्मान मिला है उसमें देखिए ना, मथुरा के अपराधी पंकज यादव को ढेर करने वालों की टीम में 3 पुलिसकर्मी, उनको सम्मान दिया गया। उन्नाव के हिस्ट्री शीटर अनुज सिंह को ढेर करने वाली टीम के 3 पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया। आबाद नाम के सहारनपुर के एक खूंखार अपराधी थे, उनको ढेर करने वाली टीम को सम्मान दिया गया। बिसरख में कुख्यात अपराधियों को एनकाउंटर करने वाले अक्षय त्यागी को राष्ट्रपति मेडल दिया गया। कोई भी जाति का हो उसका सम्मान यहां पर किया गया। मेरा एक बार फिर आपसे ये सवाल है, उसके बाद शिवम त्यागी उसका जवाब देंगे। एक बार फिर आपसे मुझे सवाल है, ये परसेप्शन का बैटल समाजवादी पार्टी कब तक लड़ती रहेगी माफिया राज के? क्या आपको नहीं लगता कि ये परसेप्शन का बैटल है आज की स्थिति में?
8: साहिल भाई सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स की जो जिंदगी है, पुलिस के जवान हमारे ही देश के जवान हैं, हमारे ही किसान मजदूर के बेटे हैं, उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने में किसी मुख्यमंत्री ने काम किया? माननीय अखिलेश यादव जी थे, किसे शक है? चाहे पुलिस हेडक्वार्टर हो, चाहे उनके वेलफेयर के प्रोग्राम्स हो, और हम ये कह रहे हैं कि ये मेडल के जो प्रशस्तिकरण के कार्यक्रम हैं वो हर सरकार में होते हैं और उनको मुबारकबाद दिया जाना चाहिए। 18 घंटे 20 घंटे हमारे पुलिस के जवान काम करते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस के हेडक्वार्टर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा टांग रहे हैं, हमारे पुलिस के जवानों को मिसयूज किया जा रहा है। अखिलेश जी ने हमेशा कहा, मेरे नेता मुख्यमंत्री
13: सबसे बड़ी बात
8: कहा है
13: जवानों से, जवानों
8: ये नेता काम नहीं आएंगे भारतीय जनता पार्टी के।
13: एनकाउंटर तो हर राज्य में होते हैं, उसके आंकड़े तो मैंने भी यहां पर रखे, एनकाउंटर जब होते हैं इसके आंकड़े हमने भी देखे। ये बात भी ठीक है कि कई माफियाओं को ढेर किया गया, लेकिन जीवन त्यागी सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में यह भी उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि पुलिस राज होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हाई कोर्ट की टिप्पणियां हाफ एनकाउंटर को लेकर, गुंडा एक्ट को लेकर, या जिस तरीके से एनएसए लगाया जाता है, लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है उसके लिए पुलिस का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजों पर क्या पुलिस राज ना बन जाए, इसकी कोशिश अब इसके आगे सरकार की तरफ से की जाएगी? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, ये भी कानून व्यवस्था का एक हिस्सा है।
7: आपने उत्तर प्रदेश के 5 पुलिस के विषयों को लेकर कोर्ट की टिप्पणी बताई, मैं आपको 10 बताऊंगा कर्नाटक की और हिमाचल की, लेकिन इन्होंने जो कहा वो उस पर पहले जवाब दे
13: दो, उस पर चर्चा होगी तब करेंगे।
7: पढ़े लिखे को फाड़ दी क्या
8: उत्तर प्रदेश?
7: प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में उत्तर प्रदेश, हाँ प्लीज रोकिए, बीच में मत बोलिए, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बताता हूँ,
8: उत्तर प्रदेश की बताओ।
7: अरे बीच में नहीं रोके ना प्लीज, आप इनको रोके
8: करा मुख्यमंत्री,
7: नहीं नहीं साहिल जी, आप उत्तर प्रदेश की यहां यहां ड्रामा मत करें,
8: गुंडा बनाने पे
13: सवाल है, मैं भी
8: उत्तर प्रदेश के लिए गुंडा नहीं है, जो आम नागरिक को,
7: मेरा निवेदन है भाई, थैंक यू, उत्तर प्रदेश पर
13: शिवम त्यागी बोले,
7: आप इनको रोके, मेरा निवेदन है ड्रामा मत करिए, शुक्रिया। मैं कहता हाँ डेटा पर आते हैं, डेटा पर आते हैं, समय आ जाते हैं डेटा पर। हमने अगर एनकाउंटर्स की, आपने कहा कि एनकाउंटर तो सब सरकारों में होते हैं, लेकिन सब सरकारों में कानून में जो है क्राइम कम नहीं होता, हमने कैसे कम किया? मैं एग्जांपल देता हूं, उत्तर प्रदेश में 2016 में हत्याएं होती थी 4,330, 2025 में होती है 2,358, अप्रोक्सीमेटली 50% कम। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार एक भी गलत है, 2016 में थे 3,196, 2025 में 1,487, लूट होती थी 3,797 2016 में, और 2025 में होते हैं 610, डकैती 240 होती थी, अब होती
13: एक बार फिर आपसे पूछता हूं,
7: 7,100,
13: लेकिन पुलिस स्टेट ना बने उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी कि नहीं होगी? क्या यह भी कानून व्यवस्था का हिस्सा है कि नहीं है? पुलिस स्टेट ना बने इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है कि नहीं? सवाल इस बात को लेकर भी था, हालांकि नंबर्स तो अलग अलग तरीके से इस पर रखे जाएंगे, लेकिन चर्चा भी इसी तरीके से होती रहेगी। लेकिन आज की स्थिति में एक बार फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा योगी आदित्यनाथ की तरफ से चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन पिच के तौर पर उसको देखा जा रहा है, उसका काउंटर समाजवादी पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
7: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
8: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
7: स्मॉल बैंक?
8: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
7: ओके
8: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर एक बार दो ठुमका लगाने पर।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: टू इलेक्शन कमिश्नर्स, टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन। आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested.
3: जिस फॉर्म 6 को लेकर चुनाव आयोग में उठा पटक का दावा हुआ, दोनों चुनाव आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद के दावे हुए, उसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने SIR पूरा हो चुके राज्यों में फॉर्म 6 में बड़ा बदलाव किया है। अब SIR में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। आवेदक को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसका माता पिता या दादा दादी का नाम उस लिस्ट में था या नहीं। फॉर्म 6 से इससे जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नाम बिना जांच के जुड़ जाएगा। वोटर बनने की पात्रता की जांच पहले की तरह होगी। फॉर्म 6 की सामान्य प्रक्रिया भी जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव फिलहाल सिर्फ उन राज्यों में लागू है जहां SIR पूरा हो चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दोनों चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में SIR से जुड़ी जानकारी जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना वैधानिक फॉर्म 6 में नया हिस्सा जोड़ दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को खारिज किया गया, लेकिन इस पर विवाद के बाद हटाए जाने को विपक्ष नए सिरे से चुनाव आयोग को घेर रहा है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
4: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन। I have been raising questions. Those questions were ignored. People of India believed it. But institutional framework of India was not interested.
5: जिस फॉर्म 6 को लेकर चुनाव आयोग में उठा पटक का दावा हुआ, दोनों चुनाव आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद के दावे हुए, उसे लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने SIR पूरा हो चुके राज्यों में फॉर्म 6 में बड़ा बदलाव किया है। अब SIR में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। आवेदक को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसका माता पिता या दादा दादी का नाम उस लिस्ट में था या नहीं। फॉर्म 6 से इससे जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नाम बिना जाँच के जुड़ जाएगा। वोटर बनने की पात्रता की जाँच पहले की तरह होगी। फॉर्म 6 की सामान्य प्रक्रिया भी जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव फिलहाल सिर्फ उन राज्यों में लागू है जहां SIR पूरा हो चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दोनों चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में SIR से जुड़ी जानकारी जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना वैधानिक फॉर्म 6 में नया हिस्सा जोड़ दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को खारिज किया गया, लेकिन इस पर विवाद के बाद हटाए जाने को विपक्ष नए सिरे से चुनाव आयोग को घेर रहा है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: बहुत बहुत बधाई और तल तल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एनसीएस को नगद धनराशि और अंग वस्त्र
1: एक तरफ और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता देते हैं। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: चुनावी यूपी में सियासत का हाल कुछ ऐसा है कि मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, सीएम योगी विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुनाने का मौका नहीं चूकते। यूपी के जावाज पुलिस कर्मियों का सम्मान करते हुए भी सीएम अखिलेश राज की नाकामियां गिना रहे थे।
3: पीएससी की एक एक बहानी को समाप्त किया गया, यानी दंगाइयों के काल को जब आप समाप्त कर देंगे तो दंगाई तो कर्फ्यू लगाएंगे और यही तो होता था, महीनों कर्फ्यू। कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों, कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे, और ये फर्क उस मंच पर था जहां यूपी पुलिस के बहादुर जवानों और अफसरों को सम्मानित किया जा रहा था। सम्मान पाने वालों में शामली में 4 अपराधियों को ढेर करने वाले शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी भी थी, जबकि वाराणसी में अपराधी मनीष सिंह को ढेर करने वाली टीम के 2 पुलिसकर्मी, मथुरा में अपराधी पंकज यादव को ढेर करने वाली टीम के 3 पुलिसकर्मी, उन्नाव में हिस्ट्री शीटर अनुज सिंह को ढेर करने वाली टीम के 3 पुलिसकर्मी, सहारनपुर में आबाद नाम के खूंखार अपराधी को ढेर करने वाले 3 पुलिसकर्मी और बिसरख में कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर करने वाले अक्षय त्यागी को राष्ट्रपति मेडल मिला। इसके अलावा सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 7 बड़े पुलिस अभियानों में शामिल 10 पुलिसकर्मियों को सीएम वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। लखनऊ में यूं तो सीएम योगी यूपी पुलिस के जाबाजों को सम्मानित करने पहुंचे थे, लेकिन सियासत वहां भी हो गई। सीएम ने 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया, पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना डाली। सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा या ढेर कर दिया। लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: काउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिले।
2: पिछले 9 साल में 17,043 बार पुलिस ने मुठभेड़ की, इसमें 289 अपराधी मार डाले गए, 11,834 अपराधी घायल हुए, 34,253 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,852 पुलिसकर्मी जख्मी। इसके मुकाबले पिछले अखिलेश राज में पुलिस एनकाउंटर में कुल 40 अपराधी ढेर हुए थे। उससे पहले मायावती राज में 261 अपराधी मारे गए थे, और उससे पहले मुलायम सिंह के दौर में 499 अपराधियों का पुलिस ने सफाया किया।
4: ये हमेशा याद दिलाएंगे कि
2: लेकिन यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जातीय भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं। एक तरफ सीएम योगी 2017 से पहले और 2017 के बाद की पुलिसिंग में बदलाव की तमाम मिसालें गिनाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर से लेकर पीएससी की बटालियन और थाने की बिल्डिंग से लेकर हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों का उदाहरण दिखाते हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश पुलिसिंग में सियासी घालमेल के ताने दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला फिरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस के सामने का बयान कोई मंत्र नहीं कि फूंक कर हर कानूनी चुनौती को खत्म कर दिया जाए। ऐसे कानून का इस्तेमाल आरोपी के पंख कतरने के लिए नहीं होना चाहिए। अदालत ने यूपी सरकार को कहा कि 10 लाख का जुर्माना आरोपी मुल्ला फिरोज को दिया जाए। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर की डीएम ने भी एक छात्रा पर एनएसए लगा दिया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने डीएम मेधा रूपम को कड़ी फटकार लगाई थी और निंदा वाले वाक्य अफसरों के सर्विस बुक में एंट्री करने को कहा था। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: तो दंगल पे मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: एक हिंदुस्तानी की वजह से टली 9/11 जैसी घटना, भारतीय पायलट की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ, कहा हमें स्मिथ पर गर्व, ट्रंप नेतन्याहू समेत दुनिया का सलाम, भारत में सलामती के लिए मंदिर मंदिर पूजा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के इस्तीफे पर लगी मुहर, सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस, बहुत जल्द नए चेहरे का ऐलान संभव। एमपी के दौरे पर राहुल गांधी का मुख्यमंत्री मोहन यादव परिवार, कहा यहां सरकार 100% फेल, बीजेपी का पलटवार, भारत के लिए खराब बोलना उनकी फितरत। सीजेपी के अभिजीत दीपके को की सीएम फडणवीस को खुली चुनौती, कहा पुलिस की इजाजत के बगैर 2 अक्टूबर को हम करेंगे प्रदर्शन, 3 महीने तक भी जेल जाने को तैयार। एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम, गोल्ड के लिए पाकिस्तान से शनिवार को मुकाबला, पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को दी मात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: He hit me like
3: no.
2: So many times. My hand, I can move, but I can't do this. I can't squeeze my hand.
4: देशवासी के लिए स्मित का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है।
5: नाउ यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अनदर 9/11। दिस यंग मैन जस्ट एक्ट्स विद इनक्रेडिबल हीरोइज्म।
6: ही स्टैब्ड द पायलट वाज इन वेरी बैड शेप। I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door.
2: My head is failing. It is hurting.
7: You won't sleep?
8: You saved the no. pain. It's good for you. Yeah.
0: अंजना ओमकश्यप, वक्त हल्ला बोल का है। आज पूरी दुनिया एक हीरो के लिए कह रही है जय हो। इस हीरो का नाम आप जान ही गए होंगे, कैप्टन स्मिथ। दुबई से तेलवीव के लिए उड़े विमान पर कल विमान के ओमानी को पायलट ने हमला किया था, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने बहादुरी से उनका सामना किया। घायल थे, पेट, हाथ, पैर, कई जगहों पर उन्होंने कॉकपिट के अंदर ही मौजूद जो फायर सेफ्टी के लिए होता है हैमर, उससे हमला किया था कैप्टन स्मिथ पर। लेकिन घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा उन्होंने खोल दिया, जिसकी वजह से अन्य यात्री कॉकपिट में अंदर जा सके और विमान को सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया जा सका। हमलावर अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता, सोचिए 174 यात्रियों की जिंदगी दांव पर थी। ये बिल्कुल 9/11 जैसा हमला हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ के परिवार वालों से बात की। कैप्टन स्मिथ का सऊदी अरब में इलाज चल रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन स्मिथ की तारीफ की। इसलिए आज हम हल्ला बोल कैप्टन स्मिथ की इस वीरता पर बात करेंगे, साथ ही आतंकवाद के इस नए स्वरूप के खतरे पर भी चर्चा करेंगे। देश का हीरो कैसा होता, कैप्टन स्मिथ जैसा होता, यही है आज का हल्ला बोल। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए।
2: My head is failing. It is hurting.
8: Oh. Rama. Yes, the telephone shilling.
9: Give me the pillow. Yeah.
2: No sleep.
8: No sleep.
2: My head is hurting. Yeah, painkiller my hand.
8: Yeah.
2: No, your hand it's Rama. Good.
9: Rama. Can I have the Panadol? Yeah. Paracetamol.
2: You want sleep?
8: You saved the pain. It's good for you.
2: Yeah.
8: It's good for you.
9: תקי כמה נוגעים.
7: אחי, תצלם גם אותנו, את עצמנו, שאנחנו שומרים פה. תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס ש...
10: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, עשו לרצוח את הטייס, והשתלטנו על הצוות.
9: למה?
2: זה הטייס ש...
9: למה?
11: बहादुरी का कोई चेहरा होता है तो ऐसा होता है, कैप्टन स्मिथ मचार जैसा होता है।
2: He just, he hit me like...
8: No, no, no, no, no.
2: So many times. My hand, I can move, but I can't do this. I can't squeeze my hand.
11: आतंकवाद का एक और 9/11 का मंसूबा पूरा नहीं हुआ क्योंकि उस FZ-1073 फ्लाइट का पायलट एक भारतीय जाबाज था।
4: कल जो एक घटना घटी और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया। हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
11: बुधवार सुबह दुबई से तेलवीव के लिए उड़े फ्लाई दुबई के विमान के ओमानी को पायलट ने भारतीय पायलट स्मिथ पर कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन गंभीर तौर पर जख्मी हो गए स्मिथ ने हार नहीं मानी और कैप्टन स्मिथ डटे रहे।
12: שים על הכיסא, אחד היה למטה, אחד על המכשירים, ואיתי נכנס עוד אחד, תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה.
13: מה הוא עושה על המכשירים האלה? מה הוא עושה?
12: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי
13: לנטרל
12: את המטוס.
13: זה מה שאתה ראית?
12: כן.
13: טוב.
12: הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות, המטוס היה עם האף ככה.
11: इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले उस फ्लाइट के यात्रियों ने बताया कि कैप्टन स्मिथ ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने का असाधारण साहस और सूझबूझ दिखाया जिससे 174 यात्रियों की जान बच सकी।
5: Now you had the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day, along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
11: कॉकपिट का दरवाजा खुलने के बाद फ्लाइट में मौजूद कुछ यात्रियों ने भी हिम्मत दिखाई। इनमें से एक थे यानीव हायून। पेशे से प्लम्बर हायून ने हमलावर ओमानी कोपायलट को नियंत्रण में लिया। इसके अलावा असाफ राजवान और ज्विका मानेज नाम के दो अन्य यात्रियों ने भी क्रू मेंबर की मदद से हमलावर को काबू में रखने में मदद की। विमान के एक और यात्री डेंटिस्ट शोता मुसाएव ने घायल पायलट स्मिथ को मेडिकल हेल्प दी। बाद में विमान में मौजूद एक अन्य पायलट ने विमान को सुरक्षित सऊदी अरब के ताबू एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया।
14: אני לא בטוח, אבל הוא שכב ליד הדלת. בטוח שהמפגע לא רצה שניכנס. אז אני מעריך שהטייס הוא זה שפתח את הדלת לפני שהוא קרס.
11: कैप्टन स्मिथ ने न सिर्फ कॉकपिट का दरवाजा खोला बल्कि इमरजेंसी कोड 7700 और हाईजैकिंग कोड 7500 भेजा। जब ये घटना हुई तब विमान लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर था और सिर्फ 30 सेकंड में 14,000 फीट नीचे आ गया।
6: एंड इट सीम्स एज दो द कोपायलट वाज परहैप्स अ टेररिस्ट और परहैप्स अ वैक जॉब एंड ही स्टैब्ड द पायलट। द पायलट वाज इन वेरी बैड शेप एंड आई गेस ही स्टिल इज इन वेरी बैड शेप। But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
11: Captain Smith 2022 से फ्लाई दुबई में पायलट थे। उन्हें स्पाइस जेट के साथ कमर्शियल विमान उड़ाने का लंबा अनुभव है। क्या देश, क्या विदेश, हर कोई कैप्टन स्मिथ के शौर्य को नमस्कार कर रहा है।
15: I want to take this opportunity and thank the Indian pilot. What a hero. Without him, it could end up in a whole different way. He fought this terrorist and he fought until the last minute. I want to say thank you, India.
16: Pakistani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit. Smith fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. And despite being severely wounded and covered in blood, he kept fighting. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted and we will never forget it.
11: Captain Smith ne apni bahaduri se Bharat ka seena chauda kar diya hai. तो उधर आतंकवाद के खतरे की गंभीरता फिर सामने आई है। आज तक ब्यूरो।
0: और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त राजीव प्रताप रूडी जी, पूर्व सिविल एविएशन मंत्री भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, कई बार के सांसद हैं और एक पायलट भी हैं। तो राजीव प्रताप रूडी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जो इस वक्त स्थिति आपको दिख रही है, जितनी भी जानकारी, मुझे पता है कि आप कहीं और हैं अभी इस वक्त देश से बाहर, फिर भी आप जुड़े हैं हमारे साथ, क्या समझ में आ रहा है? भारतीय पायलट मतलब कैप्टन स्मिथ मचार ने तो देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है, क्या आप समझाएंगे? मतलब एज अ पायलट, मतलब ऐसी सिचुएशन हो कितनी भयावह होती है?
17: देखिए बा, पूरी दुनिया में हम यूएस मरीन्स की बात करते हैं जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, भारत में एनएसजी है और सब जगह इस प्रकार से ऐसे फोर्सेस हैं जो इस तरह की लड़ाई लड़ती है। यहाँ एक कैप्टन जो भारतीय मूल का हो, मुंबई का नौजवान हो और कमांड में हो, 10 साल भारत में काम करने के बाद फ्लाई दुबई के जहाज में हो, और जिस प्रकार से ये कोई कमांडो भी नहीं कर सकता है, अगर उस जहाज में कई बार हम लोग विमान उड़ाते हैं तो कई सारे सेक्टर्स में कई कमांडोज भी हमारे साथ सुरक्षा के लिए भेजे जाते हैं, ये लगभग असंभव है। मतलब क्योंकि मैं उस परिस्थिति में यदि मुझे ही बैठा दिया जाए, और क्योंकि कॉकपिट में अंदर जो वस्तुएं रखी जाती है उसमें एक एक एक एक एक असला भी रखा जाता है कि कभी जरूरत हो तो आप शीशा तोड़ सके, और उसी से इस पर हमला हुआ। ये किसी
0: ये हैमर
17: भी
0: तरह
17: की तरह
0: होता है सर,
17: वहां तक भी ठीक है,
0: हैमर की तरह
17: हैमर बिल्कुल ही छोटा सा एक्स होता है,
0: अच्छा।
17: सेफ्टी एक्स कहते हैं, बिल्कुल एक बार अगर गर्दन पर उसको चला दिया जाए तो आपका धड़ अलग हो जाएगा, वो होता है कॉकपिट में होता है सब। अब पता नहीं आने वाले दिनों में उसको अब क्या उस पर कानून बनेगा, लेकिन वो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स के रूप में हमारे सीट के फर्स्ट ऑफिसर के सीट के पीछे होता है। मैं उसकी भी बात उसको भी यदि छोड़ देता हूं कि ये अचानक ही जिस तरह से उसने अगर वो गर्दन पर किया जिस तरह से किया, और ये कैप्टन स्मिथ का प्रेजेंस ऑफ माइंड है क्योंकि जगह बहुत ही कम होता है, एक क्षण वो अगर उठा होगा उसको निकालने के लिए या पहले से अपने बगल में रखा होगा तो कहीं पता नहीं चलता है, बीच में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके बाद बाईं तरफ कमांडर होता है, दाहिने तरफ फर्स्ट ऑफिसर, ये कभी दिखेगा नहीं। और अगर खुल दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग है कि कैप्टन स्मिथ ने कैसे अपना कोड इमरजेंसी से 7700 को उन्होंने उसको टाइप करना पड़ता है साहब, उसको 7500 हाईजैक में परिवर्तन किया, ये अजूबा है, असंभव है। तीसरा है कि जब हम कॉकपिट के भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो हम जनरली कोई बाहर से प्रवेश नहीं कर सकता है, उसकी व्यवस्था 9/11 के बाद की गई है, और खुद अपने कमांड की सीट को छोड़ करके जब जहाज डाइव कर रहा हो उस समय दरवाजे पर पहुंच करके मैन्युअली भी खोला जा सकता है, ऑटोमेटिकली भी खोला जा सकता है, लेकिन जब लगातार कोई दूसरा प्रहार कर रहा हो तो ये एक पार्ट हो गया, जब ये भी असंभव सा है, ये बिल्कुल अगर किसी तरह से इसको सिमुलेट भी किया जाए तो आप इसको सिमुलेट भी नहीं कर पाएंगे या हम कर पाएंगे। दूसरा है कि वो इसमें कई चीजें हैं, दूसरा है कि वो यात्री जो आगे बैठे थे जब दरवाजा थोड़ा सा क्लिक किया होगा तो उसको उन्होंने धक्का दिया, क्योंकि यू हैव टू पुश द डोर व्हेन देयर इज अ क्लिक कि दरवाजा डिसएंगेज हो गया है, फिर वो यात्रियों का अंदर आना और उसमें पहचान कर लेना कि ये अटैकर है और ये नॉन अटैकर है, और उसके बाद उसको कब्जे में लेना। उससे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति को वहां से कॉकपिट से निकालना जबकि कैप्टन दूसरे कैप्टन भी सीट पर ना हो, इसका मतलब है कि कुछ क्षण के लिए जहाज के दोनों पायलट्स नहीं है, जहाज ऑटोमेशन में होगा नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है कि तीसरा व्यक्ति जो उनको पकड़ के बाहर डॉक्टर उनकी कर रहा है, और चौथा एक पीछे बैठा हुआ कप्तान जो 737 क्योंकि जिस तरह से लैंडिंग हो गई है सामान्य रूप से, ऐसा जैसे मैं A320 एयरबस का कप्तान हूं, तो मुझे अगर 737 में डाल दीजिएगा तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उस विमान को उतारने में, क्योंकि उसकी टाइप रेटिंग नहीं है। उसी प्रकार से पीछे एक बैठा हुआ व्यक्ति, उसके बारे में अभी तक किसी ने चर्चा नहीं किया है, उसने आके सिंगल पायलट कमांड लेकर के जहाज उतारा, वो भी अजीब है। मतलब ये सभी आप किसको किसी भी रूप से एक्सप्लेन करें तो ये ईश्वर की कृपा है और असंभव है। और डॉक्टर कैप्टन स्मिथ ने जैसे इसको किया होगा, ये अपने आप में उसने सिर्फ यात्रियों को नहीं बचाया, उसने धरती पर एक ऐसा कर चीज दिखा कर दिखाया जो असंभव से भी आगे है। और उसने तो इतना तो जरूर किया, पूरी दुनिया में आज भारत का एक ऐसा सम्मान कि भारतीय एक लड़ाकू कौम है, भारतीय एक देशभक्त कौम है, भारतीय एक दुनिया में, उसने हम लोगों ने राजनीतिक रूप से जो आज तक दुनिया में नहीं पहचान बनाई होगी, आज पूरी दुनिया में एक एक्शन से उसने पूरी दुनिया में भारत की एक पहचान बना दी। तो शायद ये हीरो, हम लोग इसको हीरो कहे, सुपर हीरो कहे, वर्ल्ड हीरो कहे या कोई भी तगमा दे, वो कम होगा। ये असामान्य है, मैं तो इसको असामान्य में सब चीज को असामान्य मानूंगा कि एक कप्तान पीछे से आके जहाज को भी चला देता है, एक आदमी प्रवेश करके कुछ यात्रियों के साथ उसको कब्जा कर लेता है, वो बेहोश हो चुका होता है, उसको निकाल के तीसरे डॉक्टर ने उसको जीवित रखने का प्रयास किया, उस दौरान एक सिंगल कैप्टन ने आकर के जहाज को कंट्रोल लिया, वापस लौट के आए रेगिस्तानी एरिया में। ये कोई भी चीज अगर इसको पिक्चराइज किया जाए तो कम से कम मैं तो कॉकपिट में बैठता हूं, पिछले 16 साल से बड़े विमान का कप्तान हूं, लेकिन ऐसा मैं अपने आप को उस जगह पर डाल के देख रहा हूं, मैं तो कल्पना, क्योंकि सील होने के बाद कॉकपिट के भीतर दो ही लोग होते हैं और उसमें से बाहर निकलना असंभव है। और वो निकलते निकलते उसने दरवाजा भी खोल दिया, उसने कोड भी चेंज कर दिया, उसने जहाज को भी बहुत से, मुझे लगता है कि जहाज को भी उसने कंट्रोल किया होगा, जहाज डाइव कर रहा था लोगों ने कहा, और फिर उस दौरान में जब वो रिकवर कर रहे हैं, वो जो पैसेंजर उस दूसरे पैसेंजर को खींच रहा है, वो पायलट को, उस समय जहाज अनियंत्रण में हो, पीछे से वो कप्तान को याद करके कंट्रोल, ये बिल्कुल असंभव है,
0: बिल्कुल बहुत
17: ईश्वर की बड़ी कृपा।
0: बिल्कुल। और रूडी साहब, मैं कई बार उस विमान में रही हूँ जिसमें आप पायलट रहे हैं और मैंने देखा है कि आपका भी अपना एक अलग अंदाज है, लेकिन आप खुद एक पायलट होते हुए कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में शायद आपके भी हाथ पैर कांप जाते कि भाई, और आप सोचिए तीन सवाल है इससे पहले कि हम हमारे हीरो तो हैं ही कैप्टन स्मिथ मछार जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं पर यानिव हायून भी जो व्यक्ति थे 16वीं नंबर की सीट पर थे, वो भागकर आगे आए और मतलब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे पूछा कि आप करते क्या हैं, तो उन्होंने कहा आई एम अ प्लम्बर, मैं सीवेज में जहां पर चोक होता है उसकी सफाई करता हूं। और उस व्यक्ति ने ऐसी अद्वितीय ताकत दिखाई, उसने उस कैप्टन को दबोचा पहचानते हुए कि ही इज द अग्रेसर, उन्होंने इनको बचाने की कोशिश की, विमान को इनिशियली हैंडल करने की कोशिश की, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन मुझे बताइए सिचुएशनली सर, चूंकि आप कॉकपिट में हमेशा मतलब जब भी फ्लाई करते रहते हैं, मतलब ये कहां से कॉकपिट का दरवाजा उन्होंने कैसे अनलॉक किया होगा, और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि उनको टाइप करके कोड भेजना रहा होगा 7700 या जो भी, वो कहां पर होता है, इसके कंट्रोल्स कहां पर होते हैं?
17: देखिए, मैं बोइंग का 737 का कप्तान नहीं हूं, लेकिन मूलतः सभी का प्रिंसिपल से एक प्रकार का होता है। जैसे एयरबस में हमारे पास हम टाइप करते हैं कोड देने के लिए, उसमें स्क्वाप नंबर होता है 4 डिजिट का, उसको करते हैं, तो वो भी इंस्ट्रूमेंट पैनल पर होता है, और वो आप बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिना देखे हुए कोई बटन सिंगल दबाना हो, वो भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो उसको सेट करना पड़ता होगा, बोइंग में भी ऐसा ही होगा। फिर दरवाजा जो हम लोग एक बार कॉकपिट सिक्योर हो जाता है, लड़कियां एयरहोस्टेस हमारी बंद कर देती हैं, फिर आप उनके पास भी कोड होता है, वो चाहे ये सब बातें पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो भी खोल सकती है, लेकिन इस परिस्थिति में ये समझ जाना कि भीतर में ऐसा संकट हो, कोई कैमरा तो होता नहीं है, और अंदर की आवाज इतनी हो कि आगे बैठा हुआ पैसेंजर समझ जाए, क्योंकि आवाज का अपना आवाज होता है, और उसमें ये सब ये तो हर व्यक्ति को डिटेल में जाना पड़ेगा, अनकोड करने पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा कि हर चीज कैसे हुआ। ऑटोमेशन में जहाज तो जरूर होगा, क्योंकि 34,000 फीट पर यह क्रूज लेवल पर था, तो क्रूज लेवल पर जब भी जहाज होगा तो ऑटोमेशन में होगा, बिल्कुल वो एक प्रकार से उस उसको ऑटो पायलट पर ही होगा, लेकिन उस समय भी लगातार मॉनिटरिंग का काम चलता है। और जब ये अटैक हुआ और उसके बाद मुझे लगता है अटैक करने के बाद उस जो भी को पायलट है उसने जहाज को ऑटोमेशन को डिसंगेज करके उसको नाक की तरफ दबाने का कोशिश किया होगा, थ्रॉटल किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन इससे पूरा ऑटो सिस्टम उस समय गिवअप कर देता है। जब आप असामान्य एक्शंस कॉकपिट में करेंगे तो वो बिल्कुल ही आप, लेकिन मुझे लगता है कि कंट्रोल सेंटर आने वाले दिनों में बोइंग का भी या इस कंपनी के भी कंट्रोल सेंटर में हर एक्शन कैसे कैसे किस किस मिनट पर क्या हो रहा था वो सभी एक्शन कम से कम जो इंजिन्स के पैरामीटर्स हैं, फ्लाइट में जो डाइव है, ये सब आ जाएगा। तो ये सब अनुसंधान का विषय, ये सब बातें हम लोग छोड़ दें। ये जो आप अंजना जी अभी डिस्कस कर रही हैं ये बाय द बुक तो है ही नहीं, और इसमें इस प्रकार से किसी को मतलब ये पैसेंजर्स की भूमिका, डॉक्टर की भूमिका, कप्तान ने जो किया वो तो सबसे आगे है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन ये अपने आप में अद्भुत है, और मैं समझता हूं कि जो सम्मान कैप्टन स्मिथ ने पूरे भारतीयों को दिया है वो बहुत बड़ा सम्मान है, और पूरे दुनिया आज हर भारतीय चाहे दुनिया के किसी कोने में हो एक गर्व के साथ सलाम कर रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो अपने युद्ध के बाद कोई कामयाबी नहीं होती है, कोई जीत के बाद कामयाबी नहीं होती है, कोई ओलंपिक्स की गेम के बाद कामयाबी नहीं होती है, उससे बड़ी कामयाबी भारत को कैप्टन स्मिथ ने दिया है, मेरा ऐसा मानना। लेकिन ये कहना ये कैसे हुआ और कैसे हुआ, ईश्वर की कृपा कही जा सकती है, असंभव ही हुआ है और ये असंभव है जितना कुछ हुआ। ये हमारे कमांडोज भी अगर होते तो भी शायद वो यूएस मेरीन कि जो सील्स भी होते तो शायद वो भी इसको नहीं कर पाते जो इन्होंने इन चार लोगों ने किया है।
0: कमाल है एकदम। मतलब आप तो खैर पायलट की तरह सोच रहे हैं कि भाई मेरी स्थिति क्या होती, लेकिन मतलब 98% लोग तो दुनिया में अभी ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इस प्लेन का पैसेंजर होता तो मुझ पर क्या बीतती। 14,000 का फॉल इन 29 seconds, इसका क्या मतलब होता है साहब?
17: ये बिल्कुल ही मतलब ये अपने आप नहीं हुआ होगा, इसका मतलब कि उसको पायलट ने पूरे जहाज को उसको उस कमांडर को कैप्टन स्मिथ को इंजर करने के पश्चात उन्होंने इस जहाज को नीचे ले जाने का क्रैश करने का कोशिश किया है, और उस स्थिति में ऑटोमेशन हटा करके जब उन्होंने डाइव किया है जिसके लिए मतलब बिल्कुल ही ऑटोमेशन से बाहर जाना पड़ेगा, उस एनवलप के बाहर जाना पड़ेगा, और फिर तब कैप्टन ने देखा कि अब कैप्टन के पास वो मरते मरते उसने कहा कि ऐसे भी शायद उनको पता नहीं क्या लगा, वो खुद ही बताएंगे, लेकिन वो उन्होंने क्योंकि जब वो हमला घायल हो चुके होंगे और उसने कंट्रोल पकड़ लिया होगा तो उस समय कैप्टन ने शायद उस कंट्रोल पैनल को छोड़ करके पीछे भागे होंगे, या उन्होंने पहले भी इमरजेंसी कोड दिया होगा उसके बाद दरवाजे की तरफ भागे होंगे, जब दरवाजे की तरफ भागे होंगे तो फिर वो उठ करके उनके पीछे गया होगा, तब तक इन्होंने दरवाजा खोल दिया होगा और उस बीच में बाकी लोग आ गए। वो भी अद्भुत है कि एक ने उसको पकड़ लिया, दूसरा कप्तान आके बैठ गया, बैठने में भी वक्त लगता है, समझने में भी वक्त लगता है, पोजिशन में, कंट्रोल में, कम्युनिकेशन में, ये ऐसा नहीं है कि आप मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कॉकपिट में आके सीट बेल्ट लगा करके आप सामान्य गाड़ी में भी कोई कूद के दूसरा ड्राइवर बैठे तो तब तक तो एक्सीडेंट हो ही चुका होता है, हो ही जाएगा। तो ये असंभव सी परिस्थिति है, और जो एक्स होता है वो तो इतना घातक है कि वो एक एक बार के वार में वो पर्याप्त है किसी की जान लेने के लिए। तो यही है स्थिति, असंभव स्थिति है। ख्याति उन्होंने जो हम सब लोग को पूरे भारतीयों को दिया अद्भुत है, और हम
0: सबसे बड़ी बात है
17: और सभी कप्तान कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा संवाद दिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अब नए चर्चा होगा, नए सिरे से पूरे सुरक्षा की, आखिर जो कप्तान ही स्वयं आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हो वही बागी हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसका तो शायद उत्तर देना बड़ा कठिन है।
0: और इसके लिए न जाने कैसे सेफ्टी नॉर्म्स बनाए जाएंगे, मतलब अभी तो इसकी कल्पना करना भी बहुत भयावह दिख रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा कहा कि इस भारतीय कप्तान ने अपनी सूझबूझ से 9/11 जैसी घटना होने से बचा लिया। 9/11 में हमने देखा था किस तरह से विमान मतलब ऐसी इमारत के बीचों बीच गया और उसके बाद जो परिस्थिति बनी, मतलब जिसको तांडव कहते हैं मौत का, वो आतंकवाद की उस घटना ने मतलब ऐसा दाग जो हमेशा लोगों के जहन में रहेगा, ऐसी घटना होने से बचा दिया, तब जाकर तो समझ में आता है कि इसका क्या मैग्नीट्यूड हो सकता था।
17: ये सुसाइडल मिशन तो होगा ही, अगर उस लड़के को पायलट ने, अगर फर्स्ट ऑफिसर ने मन बना लिया था तो ये पूरा का पूरा सुसाइडल मिशन था। अगर कहीं जाकर के किसी में किसी में टकरा के मरना ना हो, तो अगर क्रैश करके ही मरना हो और उनका ऑब्जेक्टिव भी
18: लोगों को मारना हो
17: इसराइल, हाँ, तो फिर वो ये सुसाइड मिशन था। और सुसाइड मिशन में बाहर निकल जाना और जबकि पूरा मान के चलिए कि वो एक्सप्लोसिव पर ही बैठा हुआ व्यक्ति पूरे कमांड में है, तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा का पूरा सूझबूझ कैप्टन स्मिथ का है कि उन्होंने परिस्थिति समझ लिया। वो जख्मी हो चुके थे, वो समझ गए थे कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए एक ही ऑप्शन था कि दरवाजा खोल दो। जैसे भी वो दरवाजा खोले, और उनके साथ उनकी भी किस्मत बड़ी है लोगों की कि वैसे वैसे लोग उस जहाज में बहादुर थे जिन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफिसर लगातार उस कॉकपिट में बैठा हुआ वही प्रयास कर रहा, और जहाज ऊपर जाने के बाद आप ऐसे दबा देंगे तो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 34,000 फीट से जहाज को नीचे आने में वक्त लगेगा, क्योंकि आपके इंजन फेलियर नहीं है, आपका ऑटोमेशन समाप्त नहीं है, आपका पावर समाप्त नहीं है, हाँ। तो ये दूसरे प्रकार से है। तो ये कई सारी टेक्निकल चीजें हैं जिस पर विमर्श अलग अलग दृष्टिकोण से किया जा सकता है।
18: राजीव प्रताप रूडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए, धन्यवाद। इस बीच कई अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है कि ओमानी हमलावर पर नेतन्याहू का बड़ा बयान। अभी तक इस्लामिस्ट कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हो उसे बता रहे हैं। अभी तक इंतजार हो रहा था कि उनका नाम आखिर कौन है वो, क्योंकि उनकी पूरी जानकारी नहीं आई। एपी की रिपोर्ट में नेतन्याहू का ये बयान आया है जिसमें वो ओमानी जो को पायलट है, ओमानी हमलावर बताते हुए उसे नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो एक इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति था। उनकी तस्वीर आप उस प्लंबर के साथ देख रहे हैं जिन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है, अपनी बहादुरी से बचाई है, यानी हायून, और वो नेतन्याहू से मिले भी हैं। एयर मार्शल संजीव कपूर हमारे साथ, पूर्व डीजी जांच और सुरक्षा इंजन एयरफोर्स के जुड़ गए हैं, कैप्टन सौरभ भटनागर जुड़ गए हैं पायलट, डॉक्टर वंदना सिंह चेयरपर्सन एविएशन कार्गो फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री की जुड़ गई हैं, और रीना पुष्करणा इसराइल से हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपके साथ कपूर साहब शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि मतलब जैसा हमने रूडी साहब को भी सुना, एयर मार्शल ये खबर देख मतलब एज अ पर्सन जो है जहाजों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जब आप ये देखते हैं ऐसी घटना को, आपका एनालिसिस क्या कहता है?
19: ये जो जैसे कि कैप्टन रूडी भी बता रहे थे, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ, इसकी डिटेल्स अभी पूरी तरह बाहर नहीं आई हैं, बट ब्रॉडली जो मैंने आपके व्यूअर्स के लिए एनालाइज किया है कि 2 घंटे 20 मिनट जहाज नॉर्मल उड़ा है, टेक ऑफ से 2 घंटे 20 मिनट तक वो जहाज नॉर्मल उड़ा है, सब चीजें नॉर्मल हुई हैं, जैसे जो प्लान रूट है उस हिसाब से जा रहा था। व्हेन इट वाज इन नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, उस टाइम पे ये हमला हुआ है, और उस पे जब कैप्टन स्मिथ ने उसका जो ट्रांसपॉन्डर का कोड लगाया है इमरजेंसी वाला 7700, उसके बाद उसको हाईजैक पे कन्वर्ट करके फिर बाद में उसको वापस से इमरजेंसी पे किया है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो करीब 7 मिनट है। सो मेरी समझ से जो एनालिसिस है कि 7 मिनट के अंदर उनको पहले उनपे वार किया गया है, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, उसके बाद जब उनको हावी कर लिया है और जहाज एक्यूट डिसेंट में है जो कि फ्लाइट रडार में आया है, इजराइली F-35 एयरबॉर्न हुए हैं जो ORP पे रहते हैं हमारे, उस एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए,
18: मैं एक सेकेंड आपको रोक रही हूं क्योंकि विमान में मौजूद रहे यात्री अल्मोग इटली हमें बताया जा रहा है इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मिस्टर मॉग। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज बीइंग अलाइव एंड सेफ आफ्टर दिस नाइटमेयर, मतलब एक बुरे सपने, आई विल बी यूजिंग सम हिंदी वर्ड्स इन बिटवीन सो दैट आवर व्यूअर्स आल्सो अंडरस्टैंड, after this massive incident that has happened, being alive and safe and now that this nightmare is over, what would you, and I really respect your courage that you're here to talk about it because it must have been a really bad experience for you, what would you say about the entire experience, sir? Aap is puri ghatna ke bare mein kya batayenge?
20: Thank you for having me. My first reaction is that I would like to wish a very, very quick recovery to our global hero, Captain Smith, and a safe return and quickly to his home, sweet home. It was quite a very, very, it started as a regular flight, 2 hours nothing happened. We were on the way to Tel Aviv, and then suddenly the aircraft started to descend very rapidly, like a roller coaster. I thought we hit some very hard turbulences, but it was much more than that. The G power was so hard, and because we didn't have any alert, so we had to buckle ourselves during the falling. And I had to buckle my daughter and my son and my wife, who were to me, who were next sitting next to me. And after 30 seconds, the aircraft started to balance and then falling again. So we understood that there is a problem with the aircraft, and we saw people running towards the cockpit, the front part of the aircraft. And then it balanced again. And after 3-4 minutes, one of the people came and told us that there was an attack on the in the cockpit, and the crew members along with the passenger took over. And now there is a third pilot that they're flying to the aircraft into safe landing.
18: Yeah, it must have been a crazy free fall, like you said, like a roller coaster. And did your children and others panic? Were they crying? मतलब 14,000 feet 29 second में गिरना. I'm just telling my viewers in Hindi as well. It must have been really difficult, like panic situation when 14,000 feet जब ये विमान नीचे आया 30 second.
20: To tell the truth, my children, they were afraid, but also they kept calm, because I told them it's like a roller coaster, and it is. It was a very, very hard roller coaster, like falling down without notice. I told them, okay, 1 week ago we were in Osaka in Universal for a roller coaster. This is an extension, and this is how it has to be treated. And the way they saw it, that we are calm and we are in control, they also remain seated, remain calm. They were asking what is going on, of course, but no panic, no history. This is basically what saved our life.
18: And what about, you say that you were in your own seat, you were taking care of people around you, but what did you get to know finally about what exactly happened in the cockpit? Aap apni jagah par maujood the, apne bachon ke saath the, aap keh rahe hain ki kai log shant bhi baithe the, par sab ghabraye hue the. Lekin cockpit mein kya hua, is bare mein aapko kya jankari baad mein mili? What did you know about, what do you know, or what can you tell us about what happened in the cockpit?
20: I didn't see exactly what happened, but I spoke, immediately I spoke with the 3-4 people who went into the cockpit, and then explained to me that they heard fighting in the cockpit, and the Indian pilot managed to open the locked door from inside, and then they jumped inside and knocked down the attacker, took out the Indian pilot, Mr. Captain Smith, and managed to balance the aircraft. And immediately they gave him a medical care, because we had, fortunately, we had a doctor on board, and he saved his life.
18: There is some anonymity about how things happened after Mr. Yaniv, is the plumber on the flight, it is being said that he actually went in first, and he took control over this attacker, this aggressor co-pilot, and he also tried to save our Indian pilot, Captain Smith. Who ultimately landed the aircraft in Saudi? Again, the question in Hindi for my viewers, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस विमान को अंततः सऊदी में किसने लैंड कराया? No.
20: Yeah, well, one of the passenger that knocked down the attacker, he managed to pull up the wheel, the steering wheel of the aircraft, and then the third pilot, who was outside the cockpit, managed to get in and take over control on the airplane.
18: Thank you so much for joining us. But in the end, I believe you have a message. You wanted to say something about this whole incident. It's so tragic that this happened. You all had to go through this, but at the same time, you all have come out alive. It's something that we're all happy about. What is your message, Anmol?
20: I have one message, if I may.
18: Yeah, please go ahead.
20: I think it's very important for us and Israeli to see your support, the Indian nation support. We support you. You support us. It's a very strong bonding, and we have to strengthen it. And the action that Captain Smith did, he's a real hero. And it's strengthening the bond, the bondage that we have between the two great nations.
18: We are so glad you all are safe and with your family now. Thank you so much for joining us. I'm sure it must be a difficult time for you. Thank you so much for joining us. Thank you. Marshal Kapoor, आप अपनी बात पूरी करें. मैंने बीच में आपको टोक दिया था. अपनी बात पूरी करें. सबसे बड़े गर्व की बात है Marshal ये है कि कैप्टन स्मिथ मचार. आप देखिए, मतलब एक इंडियन है, उन्होंने जो सूझबूझ और जो ताकत दिखाई, मतलब इतने वो जो एक्स होता है, जिसको एक्स कहते हैं शायद, आप बताएंगे बेहतर, उससे ऐसा हमला होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मचार ने कॉकपिट का दरवाजा खोला, उन्होंने सिग्नल भेजा फ्लाइट से टाइप करके. क्या बताएंगे आप?
19: जो आई हैव नॉट फ्लोन बोइंग 737, बट जो मुझे पढ़ा है और जो मेरे को ध्यान है कि जो जो कॉकपिट का जो दरवाजा खोलने का लीवर दाहिनी तरफ है, जहां को पायलट बैठता है, तो अगर आप विजुअलाइज करें तो कैप्टन स्मिथ जख्मी है. उस गुत्थम गुत्था में उन्होंने कैसे भी ऊपर से चढ़ के अपनी सूझबूझ से वो लीवर दबाया होगा, जिसके कारण ये दरवाजा खुला है. और दरवाजा खुला है उसके बाद ही बाकी लोग उसके अंदर आ पाए हैं, क्योंकि 9/11 के बाद ये इतने रीइंफोर्स हो चुके हैं डोर्स कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ओपन इट फ्रॉम आउटसाइड अनलेस यू हैव एन एक्सेस. तो ये और एक्स की जो बात है, वो हर एयरक्राफ्ट के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट होता है. दिस एक्स सपोज टू कट वायर्स, ये बड़ी बड़ी तारों को काट सकता है, ये बल्क हेड को काट सकता है. इसके अंदर एक हैमर होती है जो ग्लास को तोड़ सकती है इनकेस ऑफ एनी इमरजेंसी लैंडिंग. यू वांट ए क्विक इवैक्यूएशन, अगर आपको कॉकपिट से निकलना है, अगर क्रैश लैंड करना है या रेस्क्यू में, तो ये सारी चीजें. तो मैं सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले एक और चैनल पे था, मैंने बोला था कि एक डॉक्टर का नाइफ होता है, उसी नाइफ से डॉक्टर सर्जरी भी करता है और उसी नाइफ से किसी का कत्ल भी किया जा सकता है. तो हाउ यू यूज दैट एड विच इज प्रोवाइडेड इन द कॉकपिट, जो आपको जहाज के अंदर वो चीज दी गई है, उसका कैसे आप प्रयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये उसका एक उदाहरण है.
18: जी जी, डॉक्टर वंदना सिंह, आप किस तरह से इसके बारे में बताएंगे? क्योंकि अगर विमान में को पायलट ही ऐसा हो जाए, मतलब अभी तक तो आप कॉकपिट के दरवाजे को और लॉकिंग सिस्टम सब कुछ ऐसा मुझको कि कोई अटैक करके वहां पायलट्स को डिस्टर्ब ना करे, बट को पायलट ही ऐसा कर दे, बड़ी भयावह स्थिति है.
1: एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड लाइक कैप्टन रूडी ऑल्सो मेंशन्ड, इट इज डिफिकल्ट टू ज्वाइन द डॉट्स ओवर हियर, बट ऑफकोर्स ये इन्वेस्टिगेशन के बाद, फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर के बाद, जब सब कुछ डॉट्स ज्वाइन करेंगे तो पूरी स्टोरी बाहर आएगी. व्हेन कैप्टन स्मिथ मचान आल्सो इज एबल टू गिव हिज स्टेटमेंट ऑफ दिस होल इंसिडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल अंजना जी, आई सी दिस एज एन अटेम्प्ट टू मर्डर. दिस वॉज नॉट अल्टरकेशन, जिसको बोलते हैं फिजिकल अल्टरकेशन और अ ब्रॉल दैट हैपन, क्लियर अटेम्प्ट टू मर्डर टू इनकैपेसिटेट द पायलट, द कैप्टन इन कमांड. And then crash this.
18: तो हिंदी में बोले आप तो अच्छा रहेगा डॉक्टर वंदना, हमारे दर्शकों के लिए.
1: इनका इनका यही जो ओमानी पायलट थे, this is what seems to be जो मकसद था कि he is going to crash it into the Israeli territory. Now how? Because it had already done over 2 hours. It was reaching the point of descent.
18: बिल्कुल, और इसीलिए अब मैं कैप्टन सौरभ के पास जाती हूँ. कैप्टन सौरभ, कितना बड़ा खतरा आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि अब आपने देखा ये मिस्टर नितिन्याहू कह रहे हैं कि वो इस्लामिक कट्टरवाद की वजह से ऐसा कर रहा था, जो भी है, मतलब ये तो ऐसा सिचुएशन था ना कि आप प्लेन को क्रैश करा रहे थे जाहिर तौर पर, तो 174 लोगों को मारने की मंशा तो साफ दिखाई देती है. अब इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि क्या हुआ, क्या कर रहा था, लेकिन अगर प्लेन को आप क्रैश करा रहे हैं, आप पायलट, मेन पायलट को अटैक कर रहे हैं, लहूलुहान उसको कर दिया आपने, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है.
21: नमस्कार अंजना जी और सभी को पैनलिस्ट. सॉरी, आप कुछ कह रही थी?
18: नहीं, मैं कह रही थी एयर में बहुत बड़ा चैलेंज है, बताएं.
21: ऑफ कोर्स चैलेंज तो है ही, और ये एक अभूतपूर्व घटना है, मैंने अपने 35 साल के एविएशन करियर में भी देखा नहीं। और इस जो भी कैप्टन स्मिथ मच्छर ने किया, नेचुरली इतने जख्मी होने के बावजूद समझदारी सूझबूझ से काम लिए, तो वाकई काबिल तारीफ है। जांच पड़ताल में सब पूरा निकल के आ ही जाएगा कि क्या हुआ, बट मेरे हिसाब से एविएशन और पायलट फ्रेटर्निटी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इसको, इस घटना को पूरी इंटरनेशनल रेगुलेटर्स जो हैं आईकाओ, एफए, इयासा, इन सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या क्रैश एक्स अब कॉकपिट के अंदर होना चाहिए। अभी तक जिस क्रैश एक्स को हम यूसेज हम लोग को बताया गया, सिखाया जाया गया, जो है मार्शल कपूर ने बोला कि ये इमरजेंसी क्रैश एक्स है जिसका इस्तेमाल होता है जब क्रैश लैंडिंग हो रही है, फायर, ये दो, इसके दो वो होते हैं सिर, एक तरफ ब्लेड होता है, दूसरी तरफ स्पाइक होता है, जिससे कि आप बल्कहेड में छेद करके अपने जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का नोजल घुसा सकते हैं फायर, अगर वहाँ पर आग लग गई हो तो, या कोई बल्कहेड को तोड़ना हो या क्रैश लैंडिंग के बाद खिड़की तोड़नी हो, दरवाजा तोड़ना है, उसके लिए उसका दूसरा पार्ट यूज होता है, इसलिए ये रखा जाता है कॉकपिट के अंदर। बोइंग 737 में ये कैप्टन की सीट के पीछे होता है, एयरबस 320 में ये फर्स्ट ऑफिसर सीट के पीछे होता है। अब उस पायलट ने कैप्टन के पीछे जाके निकाला उसको, उसके बाद वार किया, ये सब चीजें जांच पड़ताल में आई जाएंगी, पर अब ये चीज सोचने में मजबूर हो गई कि हां इसका इस्तेमाल इस मकसद से भी किया जा सकता है, तो क्या अब ये रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज तक ऐसा ये कभी
18: एक सवाल है मेरे मन में जो मैं पूछ रही हूँ, अगर आप कह रहे हैं कॉकपिट नहीं तो बाहर रखना तो उसको और भी चैलेंज है, क्योंकि पैसेंजर्स को
21: इसमें कॉकपिट में आता है, पर क्या ये होना चाहिए, क्योंकि ये
18: होना चाहिए नहीं होना चाहिए,
21: बिल्कुल आज तक किसी ने सोचा नहीं कि इसका इस्तेमाल कोई ऐसे भी कर सकता है, कोई इनसेन पायलट होगा, बिकॉज जो इस्तेमाल कर रहा है उसको ये भी पता है कि अगर पायलट नहीं है मैं भी मरूंगा तो वो नेचुरली अगर सुसाइडल मिशन होगा,
18: क्योंकि सबसे पहले तो यही लोगों के मन में सवाल आया कि पैसेंजर्स की ऐसी चेकिंग होती है, पायलट्स की भी होती है, सबकी होती है, मतलब छोटा नेल कटर भी आप कोई शार्प चीज नहीं ले जा सकते हैं, है ना,
21: इसीलिए जो है पहले जो खबरें आ रही थी कि नुकीला चाकू था या कुछ फोल्डिंग नाइफ था, तो हम सब सोचने मजबूर थे कि कैसे ये सिक्योरिटी से पास हो गया, दुबई की सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा, ऐसे कैसे पास हो, बट अब जब ये खबर आ रही है जो कि मीडिया में भी बोला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू ने भी बोला है कि क्रैश एक्स यूज किया गया, तो अब ये रेगुलेटर्स को सोचना है कि इसका अब ये अगर इस्तेमाल हो सकता है तो इसको कैसे बचाया जाए, या अगर कोई पायलट इस मकसद से गया है कि हाँ इसको दूसरे पायलट को जख्मी करके या मार के मैं इसको सुसाइडल मिशन में क्रैश कर दूंगा, जो कि मुझे लगता है कि जैसे कि इंटेंशन रही है उस ओमानी पायलट की, बट ये जांच पड़ताल के बाद समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली हुआ था, कॉकपिट डोर कैसे खोला गया, कैसे कैप्टन स्मिथ मच्छर ने अपनी जो इमरजेंसी कोड जो कि सेंट्रल पेडेस्टल में बिल्कुल दोनों पायलट के बीचों बीच होता है, मगर कॉकपिट डोर जो है वो फर्स्ट ऑफिसर के राइट साइड की साइड में होता है पीछे की तरफ, वो खोलना या खाली उसको खोल दिया आवाजों से पीछे धक्का लग के और किसी ने धक्का मार के खोला, ये सब चीजें, या उठ के खोला, ये सब चीज जांच पड़ताल का है, बट जो भी हुआ एक बहुत ही भयंकर घटना, या आप कहिए क्रैश जो भी हो सकता था, वो कैप्टन स्मिथ की सूझबूझ उसकी समझदारी के कारण एक टल गया, और हम सबको
18: बहुत ही सलाम है उनको, वाकई यार पूरा देश, बहुत गर्व है, आज बहुत गर्व कर रहा है इस बात पर कैप्टन सौरभ। मार्शल कपूर, 174 लोग जो सवार थे जिसमें ज्यादातर इजरायली थे, उनकी जान लेने की मंशा तो सीधा दिखाई देती है इस को पायलट की।
19: ये जियोपॉलिटिकली आपके साथ मैंने कई प्रोग्राम किए हैं, अगर आप इसको देखें लार्जर पिक्चर में तो पायलट इंडियन है, क्रू इजरायली हैं और जहाज यूएई से उड़ा है, इन तीनों देशों की बहुत घने एंड क्लोज संबंध है, तो इस एक एयरक्राफ्ट को एज ए सुसाइडल मिशन यूज करने के बाद जो मंशा थी कि इन तीनों देशों को बुरा दिखा, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ हादसा होता तो ये दर्शाया जाता है कि इंडियन पायलट ने ले जाके इस जहाज को क्रैश किया है, क्योंकि ये जो हम घटना भी डिस्कस कर रहे हैं ये कभी जीवन में बाहर आती ही नहीं, क्योंकि कोई बचता ही नहीं ये बताने के लिए कि क्या हुआ, अनलेस बहुत, तो ये जो उस पूरी कहानी को ट्विस्ट दिया जा सकता था या उस पूरी कहानी को एक नया रूप दिया जा सकता था, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अब ये जो चीजें हैं इसमें हाइफा, अगर ऑपरेशन आपने देखी होंगी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो भारतीय लैंसर्स ने इसराइल का जो हाइफा पोर्ट और हाइफा शहर है उसको बचाया था, और जो तीन मूर्ति क्रॉसिंग है दिल्ली में वो उसको दर्शाता है, और एक इंडियन एयरहोस्टेस रही है नीरजा बनोट, जिन्होंने बहुत सारे पैसेंजर्स को बचाया था, और आज कैप्टन स्मिथ ने ये जो बहादुरी का काम किया है, तो ये जो चीजें हैं ये इसराइलीज के मन में उम्र भर रहेगी। और एक ऐसी कौम है जो कि भूलती नहीं है, उनके साथ जो भी अच्छा काम किया जाता है, और जब भी कोई इसराइली उच्च अध्यक्ष भारत आता है, वो हाइफा का जो मेमोरियल है जो तीन मूर्ति में दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के साइड में, उधर जाके अपने दे पे द रिस्पेक्ट्स। सो आई एम श्योर कि ये घटना
18: दोनों देशों के लिए तो रिश्तों में अपने आप अपने इंपॉर्टेंस रखती है। कैप्टन भटनागर, जल्दी से हम दिखा रहे हैं एक स्क्रीन पर, इसी तरह का ये एक्स होता है जो कॉकपिट में यूज होता है, आपके सामने कोई स्क्रीन है क्या?
21: या बिल्कुल यही है, अब इसमें देखेंगे, इसका एक नुकीला हिस्सा है, पीछे एक ब्लेड का हिस्सा है। नुकीला हिस्सा जो है वो छेद करने के काम आता है, ताकि फायर एक्सटिंग्विशर, आग अगर पैनल के पीछे लगी है तो अपना नोजल उसके अंदर जा सके, और दूसरा उनको काटने के लिए, पैनल को शीशा तोड़ने के लिए, या इमरजेंसी एग्जिट में काम आता है। बिल्कुल यही है।
18: आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अच्छी बात यही है कि हमारे इंडियन पायलट की सूझबूझ से, आप सोचिए, कैप्टन स्मिथ मचार, और उनके सामने आज पूरा देश मस्तक है, और इसराइल के लोग भी, क्योंकि उनके यात्रियों की जान बची है, और आज उनका डंका पूरे विश्व में बोल रहा है उनकी सेहत के लिए। आप सोचिए, भारत में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर हर मंदिर में पूजा पाठ महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है, आज पूरा देश सामने खड़े होकर उनकी इस बहादुरी के सामने नतमस्तक है। आज रात 9 बजे रहिएगा हमारे साथ ब्लैक एंड व्हाइट में, आपको आसमान में साहस, धैर्य और सूझबूझ की वो दास्तान सुनाएंगे जिसने क्रैश होते विमान में 180 लोगों को जीवन दान दिया। ये दास्तान है कैप्टन स्मिथ मच्छार की, जिन्हें आज पूरी दुनिया सल्यूट कर रही है और कह रही है हिंदुस्तान की शान, जियो कप्तान। आज आपको इस पूरी घटना की वो तस्वीर और वो पहलू भी बताएंगे जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। रात 9 बजे जरूर रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: सजेस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा
5: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर
6: मेरे पास एक आइडिया
4: क्या
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना रहा है
7: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आई हैव वन एक रॉक स्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
5: ओ नादान परिंदे बैठ मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
9: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा
10: तो कौन सी बनानी है
11: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
12: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी
5: आई लाइक दिस ओनली
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ कपीवा डायफ्री जूस
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा
5: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर
6: मेरे पास एक आइडिया
4: क्या
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना रहा है
7: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आई हैव वन एक रॉक स्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
5: ओ नादान परिंदे बैठ मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
9: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा
10: तो कौन सी बनानी है
4: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
12: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी
5: आई लाइक दिस ओनली
15: और वही कहाँ गए थे घूमने
16: जीके मैक्स
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
17: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट
17: जेके मैक्स
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
5: इन एसोसिएशन विद
6: सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक दो टूटी थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
5: आप पे वो पीएमटी बाहर वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
9: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
10: तो कौन सी बनानी है?
11: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
12: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
5: आई लाइक दिस ओनली।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: कट इसलिए टला, कैसे टला और क्या कुछ हुआ था, वो आपको जरा इस बिग वॉल के ऊपर, इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर समझाते हैं, क्योंकि फ्लाई दुबई की फ्लाइट जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ी थी, भारतीय समय के अनुसार करीब 8:35 का वक्त था और इस फ्लाइट की उड़ान में करीब 180 यात्री सवार थे, 154 उसमें इजरायली नागरिक थे, लेकिन इस फ्लाइट में अचानक ऐसा हुआ जो शायद जिसकी अंदाजा भी नहीं लगाया जाता है। दो पायलट्स के बीच में खूनी जंग हुई, उनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट को पेन नाइफ से घायल कर दिया, साथ ही उसे कॉकपिट से बाहर धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला, यात्रियों ने देख लिया कि झगड़ा हुआ है पायलट्स के बीच में, और इसी दौरान एयरक्राफ्ट का जो है वो कई हजार फीट की नीचे पे आ गया वो, और इसके बाद पूरी एयरक्राफ्ट के अंदर हड़कंप मच गया, विमान के अंदर हड़कंप मचा, और इसी दौरान जो एक घायल पायलट था उसने पहले इमरजेंसी कोड दबाया और साथ ही उसके बाद उस कोड को चेंज भी कर दिया, यानी पहले 7700 कोड दबाया गया, इसका मतलब होता है विमान के अंदर कोई इमरजेंसी है, वहीं इस कोड को बदल दिया गया 7500 में, इसका मतलब होता है कि विमान हाईजैक हो गया है या विमान में हाईजैक की आशंका है। तो और इसी दौरान जब हड़कंप विमान के अंदर मच रहा था, वो तस्वीरें जो दहला देने वाली तस्वीरें हैं जो यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर अपने कैमरास में कैद की हैं, वो बताती हैं कि कैसा हड़कंप था, कैसा संकट था उस विमान के अंदर, और इसी दौरान क्रू मेंबर्स भी जो पीछे की तरफ थे वो भागकर पहुंचे कॉकपिट के पास में, और साथ ही उस विमान के अंदर दो पायलट्स भी मौजूद थे जो फ्लाई दुबई के ही पायलट्स थे, और उन्होंने और साथ ही जो इजरायली नागरिक वहां पर मौजूद थे उन्होंने उस पायलट को अपने नियंत्रण में किया जो दूसरे पायलट को घायल कर रहा था, और उसके साथ ही उसे बैठाया गया, उसको बांध दिया गया, उसको जो है ओवर पावर किया गया, और उसके बाद विमान को स्टेबलाइज किया गया।
3: भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की गंदी चाल को बेनकाब कर दिया है। अरब सागर में भारतीय कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर करीब 526 किलो की हाई ग्रेड ड्रग्स जब्त की हैं, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गुजरात ATS के मुताबिक उन्हें 10 सितंबर को खबर मिली थी कि एक नाइजीरियन नागरिक ने एक ड्रग्स माफिया से संपर्क किया है और आजाद नाम की एक ईरानी बोट से ड्रग्स को ला रहे हैं, और ईरान के कोनार्क बंदरगाह से ये बोट निकली, जिसके बाद पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से 5 पाकिस्तानी तस्कर नाव पर चढ़े और तमिलनाडु में ड्रग्स को उतारना था, जहां इनका प्लान पंजाब ले जाने का था, जिसके बाद 14 सितंबर को भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ ऑपरेशन चलाया गया। पाँच सौ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स लेकर जब बोट लक्षद्वीप के पास पहुंची, तब भारतीय कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS ने चारों तरफ से घेर कर ड्रग्स समेत 5 पाकिस्तानी नागरिकों को धर दबोचा।
17: पूरे जो इन्फॉर्मेशन वाली जगह है, जिसके अंदर की हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये
11: कोचीन, लक्षद्वीप और मुंबई, इसके सामने समुद्र में किसी जगह पर डिलीवरी करेंगे। उस सब एरिया को स्कैन किया गया, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत सारा धीरज रख करके इन लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बहुत बहादुरी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
3: अरब सागर से पकड़ी गई ड्रग्स की खेप को मुंबई बंदरगाह तक लाया गया, साथ ही पकड़ी गई नाव और सभी पांचों पाकिस्तानी तस्करों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई लाया गया है। गुजरात से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: अब देख रहे थे हल्ला बोल में आज चर्चा इस बात को लेकर कि कैसे कैप्टन स्मिथ मछार ने न सिर्फ इतने सारे 174 से ज्यादा लोगों की जान विमान में बचाई बल्कि इसी के साथ उन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया है और आज पूरे देश में प्रार्थना हो रही है उनकी सेहत के लिए. हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, आगे देखिए सात तक नेहा के साथ.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। शाम के 7 बजने वाले आज तक इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हेडलाइंस के साथ। प्लेन क्रैश रोकने के लिए संकट मोचक बने हिंदुस्तानी पायलट, जान पर खेलकर बचाई यात्रियों की जान, पीएम ने बताया देश का गर्व। ट्रंप नेतन्याहू ने किया सलाम, स्मिथ की सलामती के लिए प्रार्थना। चुनाव आयोग ममता का फिर निशाना, कहा ज्ञानेश कुमार को माफ नहीं करेगी देश की जनता। मैंने सबसे पहले उठाया मुद्दा, देश भर में काटा गया है 13 करोड़ वोट। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में उथल पुथल, राजा वडिंग ने दिया इस्तीफा, जल्द नए अध्यक्ष का हो सकता है ऐलान, राज्य में आंतरिक खींचतान जारी। एमपी के दौरे पर राहुल गांधी का सीएम मोहन यादव परिवार, कहा यहां सरकार 100% फेल, बीजेपी का पलटवार, भारत के लिए खराब बोलना उनकी फितरत है। एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम, गोल्ड के लिए पाकिस्तान से शनिवार को मुकाबला, पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को दी मात। आज यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जांबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने पहुंचे। सीएम योगी के हाथों सम्मान पाने वाले 26 पुलिसकर्मियों में 10 को वीरता पदक और 16 पुलिसकर्मियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। इस दौरान योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया, उधर अखिलेश भी योगी पर पलटवार करते दिखाई दिए।
1: बहुत बहुत बधाई और तरतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसपीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र भेंट कर और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता देते हैं। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
3: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे, साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
3: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
2: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया, लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल ये है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
5: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूँ, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
4: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाति हैं, और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
2: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और वहीं बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। विधान परिषद चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में खुलकर विरोध के सुर सामने आ रहे हैं। मोर्चा मोकामा से जेडीयू विधायक करण सिंह ने खोला है। पटना स्नातक निर्वाचन सीट से जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
6: तस्वीरें जेडीयू के भीतर खलबली मचाने वाली हैं। बिहार में परिषद के चुनाव हैं और मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह खुली जीप में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार का खुला समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये रहे अनुज सिंह और उनके समर्थन में ये रहे अनंत सिंह। अनुज सिंह का नामांकन कराने अनंत सिंह साथ में पहुँचे थे। बात सिर्फ इतनी नहीं है, अनंत सिंह दावा कर रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी 1000% जीतेगा।
7: कहते रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%,
8: कोई नहीं है।
6: मामला पटना स्नातक निर्वाचन सीट का है। यहां से जेडीयू की ओर से नीरज कुमार एनडीए के प्रत्याशी हैं और नीरज कुमार के विरोध में अनंत सिंह प्रचार कर रहे हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्यों है? क्या जेडीयू में दरार पड़ गई है?
9: हमरा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए, एको झो पार्टी हमको भी नहीं समझाए।
6: तो अनंत सिंह स्वीकार करते हैं कि ये पार्टी की दरार नहीं है, बल्कि ये नीरज कुमार से उनका व्यक्तिगत बैर है। अब जेडीयू कह रही है कि अनंत सिंह के बारे में पार्टी के आला नेताओं को मालूम है, वो संज्ञान लेंगे।
10: होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं, वो लोग निर्णय लेंगे।
6: 7 सितंबर को जेडीयू की बैठक हुई थी, तब नेताओं ने कहा था कि पार्टी एकजुट है, लेकिन जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करके अनंत सिंह ने नीरज कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: उधर परिवार से विवाद के बाद पहली बार रोहिणी आचार्य पटना पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर उन्हें लेने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती पहुंचे। यहाँ रोहिणी से मिलकर परिवार भावुक हो गया। बिहार चुनाव के बाद पारिवारिक विवाद के बीच रोहिणी सिंगापुर लौट गई थी, जिसके बाद जमकर बयानबाजी हुई। रोहिणी का ये कहना है कि पिता लालू के बुलाने पर वो वापस आई हैं।
11: बहुत दिनों बाद मैं पटना पहुंची हूँ, तो इसको राजनीति में रंग मत दीजिए आप लोग। ये बहुत ही इजी कार्यक्रम है। पापा ने बुलाया, जैसे मैंने पूछ भी किया था, मैं यहाँ पे अपने माँ बाप से मिलने के लिए।
0: उधर पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की खबर आ रही। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस पंजाब का नया अध्यक्ष कौन होगा? जल्दी इसका ऐलान किया जा सकता है। इस बीच राजा वडिंग दिल्ली पहुंचे, जहां वो आला कमान से मुलाकात करेंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राजा वडिंग ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया, जहां अब वो खुद को पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है?
12: ये अधिकार क्षेत्र राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कौन बन रहा है, कब बन रहा है, हाँ मैं प्रधान नहीं हूँ, ये मेरे को पता है।
6: सूत्रों का कहना है कि वडिंग को बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है, जिसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
13: सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आपको बुलाया गया है?
14: बुलाया सर पार्टी ऑफिस में।
15: अब कुछ चीजें बहुत सी इंटरनल होती हैं और वो आपको बता दूंगा मैं जल्दी।
6: पिछले काफी वक्त से पंजाब में राजा वडिंग के खिलाफ चन्नी गुट ने मोर्चा खोल रखा था। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मामला सुलझाने पंजाब भी आए थे, जिसके बाद दिल्ली से साफ किया गया था कि राजा वडिंग को पंजाब अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। हालात को देखते हुए सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद अब राजा वडिंग को हटाए जाने का जल्द ऐलान किया जा सकता है।
16: कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ किसको लगाना है, कब बदलना है वो जानते हैं। जो सचिन पायलट जी आए हैं वो हमारे साथ वाले क्षेत्र से हैं, साथ वाले स्टेट से हैं, उनके आने से एक नई उम्मीद हमारे जो कार्यकर्ता उनमें जागी है और हमें लग रहा है कि इस उम्मीद को आगे लेकर जाएंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बाद राजा वडिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें AICC से फोन आया था जिसमें उन्हें बताया गया कि 4.5 साल तक प्रमुख रहने के बाद उन्हें बदला जा रहा है। अब राजा वडिंग को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
14: आखिरकार राजा वडिंग का इस्तीफा हो गया कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान। हाईकमांड के मुंह से करारी चपेट। हाईकमांड ने कहा सीगा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि राजा वडिंग साढ़े पंजाब के प्रधान बने रहेंगे।
17: जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वो पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना। उनका पहला फैसला था उसने पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना।
6: पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीन ली थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान आला कमान की टेंशन बढ़ा रहा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अब सवाल ये है कि राजा वडिंग की जगह कांग्रेस अब किस चेहरे पर दाम लगाती है। कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी आज तक।
0: आज राहुल गांधी मध्यप्रदेश के बालाघाट में आदिवासियों से मुलाकात करने पहुंचे। यहां पर वो बैगा आदिवासियों से मुलाकात करने पहुंचे और यहां करीब एक घंटे रुके। बीमारी से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों से मुलाकात की। बालाघाट पिछले 3 महीनों में कुपोषण और मलेरिया से 32 आदिवासी बच्चों की जान जा चुकी है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार पर निशाना साधा।
18: पता नहीं कौन सी दुनिया में हो आप, 24 घंटा विकास की बात करते हो, 24 घंटा भ्रष्टाचार होता है, मगर जब हमारे आदिवासी भाइयों को जरूरत है आप गायब हो गए। नहीं, ये मध्य प्रदेश में पूरा गवर्नमेंट फेलियर है। जहां भी आप जाएं ये आपको दिखता है, टोटल 100% सरकारी फेलियर है।
19: जिन लोगों ने समस्या जिनके द्वारा दी गई है आज वो जाके वहां पर अपने संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में इस समस्या के जनक वही लोग रहे हैं, कांग्रेस रही है, और इसलिए राहुल गांधी इस समय पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग का मामला हो चाहे वो अन्य मामले हो। इस भरोसे के साथ वो काम कर रहे हैं कि 100 बार हम झूठ बोलेंगे तो शायद लोग सही मान लेंगे।
0: वहीं यूपी के शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां 2 साधु की हत्या मामले में और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर अब सियासत तेज है।

0: जिस देवस्थान पर साधु पूजा करते थे वहीं पर उनके अधजले शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां दो साधुओं का कत्ल कर दिया गया, वृद्ध साधु बाबा गोपाल दास और बाबा बिहारी दास। इसी देवस्थान में लंबे अरसे से रह रहे थे, जिन्हें पहले मारा गया और फिर किसी को पता न चले इसलिए जलाने की कोशिश की गई।
1: एक देवस्थान बना हुआ है, यहाँ पे दो सन्यासी हैं, उन लोगों दोनों के जो शरीर है वो जले हुए अवस्था मिले। तत्काल इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस, सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची है।
0: पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया गया।
1: गांव वालों ने प्रारंभिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि दोनों सन्यासियों को ही उसने कुछ एक बार कहा था कि आप दोनों लोग यहां से हट जाइए और मैं यहां पर अब रहने वाला हूं, मेरा ही एकाधिकार होगा। इसी प्रथम दृष्टया इसी बात को लेकर के कल देर रात में ये घटना कारित की गई है। मौके से सभी भौतिक साक्ष्य संकलन करते हुए जो दोनों जले हुए शव थे उनको घटना का सही समय और सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। थाना पुलिस को जो तहरीरी सूचना मिली थी उसके आधार पे नामजद आरोपी सुमित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
0: उधर साधुओं की हत्या पर यूपी में सियासत तेज हो गई है।
2: खबर मिली है कि साधुओं की हत्या हुई है। इस सरकार में सच्चे साधु बहुत अपमानित हुए, सच्चे साधुओं को भी न्याय नहीं मिल रहा है और ये आपातकाल ज्यादा घातक है।
0: अगर पुलिस की ये थ्योरी सही है तो सवाल ये है कि एक अकेला शख्स दो साधुओं की हत्या कैसे कर सकता है? क्या इस हत्याकांड में कई लोग शामिल रहे, यानी कि ये सामूहिक हत्या करने का मामला तो नहीं है? पुलिस को अभी इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने हैं। विनय पांडे, शाहजहांपुर, आज तक।
3: और अब शेयर बाजार की। कारोबार के दौरान आज लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ है। दौरान सेंसेक्स 571 अंक टूटकर 71,910 और निफ्टी 199 अंक की गिरावट के साथ 22,422 के स्तर पर बंद हुआ। महंगा कच्चा तेल, ऊंची ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बाजार का सेंटिमेंट कमजोर रहा। अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5.34% के आसपास पहुंचने से उभरते बाजार पर दबाव पड़ा। शेयर बाजार में गिरावट के साथ रुपया कमजोर हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे कमजोर होकर 96.31 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी, मजबूत डॉलर, महंगा कच्चा तेल और विदेशी फंड आउटफ्लो से रुपये पर दबाव पढ़ा। रुपया कारोबार के दौरान 96.34 के स्तर पर पहुंच गया। सराफा बाजार में सोने चांदी की तेजी रही। सोना 799 बढ़कर 1,48,687 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 1,519 रुपए बढ़कर 2,21,954 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। अमेरिका में महंगाई के नरम आंकड़ों से ब्याज दर बढ़ने की आशंका कुछ कम हुई, जिससे सोने चांदी को सपोर्ट मिला। हालांकि ऊंची अमेरिकी बॉन्ड यील्ड अभी भी कीमतों पर दबाव बनाए हुए है। बात दिल्ली में प्रदूषण की, जिसके बढ़ने का दौर शुरू होने से पहले सरकार ने नए कदम उठाए हैं। इनमें सबसे अहम है नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नो फ्यूल नियम। इसके तहत अगर आपकी गाड़ी के पास वैध पीयूसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर आज से नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। राजधानी के तकरीबन 500 पेट्रोल पंप्स पर ऑटोमेटेड सेंटर्स हैं, जिनके कैमरे परिवहन विभाग के डेटाबेस से जुड़े हैं। अब बिना वैध पीयूसी यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसे वाहन पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट के जरिए इनकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि वाहन मालिक पेट्रोल पंप पर मौजूद प्रदूषण जांच केंद्र से पीयूसी बनवा सकते हैं। अगर पीयूसी नहीं बनवाया तो कुछ घंटों के भीतर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
4: देखें, यहाँ पे ये कैमरेज लगे हुए हैं। ये कैमरा जो है ये सीधा परिवहन ऐप जो है या जो वेबसाइट है उसके सर्वर से कनेक्टेड है। इन कैमरेज के तहत जैसे ही कोई भी गाड़ी इन पेट्रोल पंप पर पहुंचती है जिसके पास एक वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होती है, गाड़ी के नंबर के साथ अनाउंसमेंट होती है और ये बताया जाता है कि इस गाड़ी में जो है फ्यूल या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है और इसको जो है फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिकली एक चालान भी कट सकता है जो करीब 10,000 रुपए तक का हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके लिए कुछ समय मिलता है और अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इन्हीं पेट्रोल पंप्स पे आप देखें तो कुछ इस तरीके से जो है ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने वाले जो कियोस्क हैं वो भी लगे हुए हैं लगातार। और जैसे ही ये पता लगता है कि अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, कुछ समय दिया जाएगा और आपने उसके बाद भी अपने गाड़ी का पॉल्यूशन फिट चेक नहीं कराया तो करीब 10,000 रुपए तक का जो फाइन है ये आएगा।
3: और बात क्रिकेट की, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। कप्तान शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है हिटमैन रोहित शर्मा के शतक की। और अब तो क्रिकेट के दिग्गज भी कह रहे हैं कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की जगह पक्की है।
5: गेंदबाजों के धागे खोला, हिटमैन का बल्ला बोला, रनों की बौछार, 27 के वर्ल्ड कप के लिए रोहित तैयार। गुवाहाटी के मैदान पर रनों की बाढ़ आ गई। पहले वेस्टइंडीज ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, 405 रन। लगा कि इतना बड़ा स्कोर कैसे चेज होगा, मगर फिर उतरी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी। फिट एंड फाइन हिटमैन अपने अंदाज में खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने मात्र 75 बॉल पर करीब 135 की स्ट्राइक रेट से 101 रन ठोक दिए, जिसमें 6 लंबे छक्के और 10 चौके भी शामिल थे। रोहित के इस नॉक ने एक बार फिर बता दिया कि वर्ल्ड कप 2027 के लिए रोहित शर्मा तैयार हैं। उनमें अभी क्रिकेट बाकी है। उन्होंने अपने आलोचकों के मुंह पर फिर से शतक दे मारा।
6: उन्होंने तो उस वक्त ही जवाब दिया 100 बना के लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में। उसके बाद में अभी देखिए इस तरह के उन्होंने 100 बनाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दुनिया चर्चा कर रही है उनकी जगह के बारे में, उसका खत्मा आज ही होना चाहिए।
3: उधर एशियन गेम्स, भारत ने मेंस क्रिकेट के फाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 169 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 45 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 38 रन बनाए। अब फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीम एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल के लिए आमने सामने होंगी। उधर हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वक्त ब्रेक का उछला है, दिखते रहिए आज तक।
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। In association with
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो विश्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
12: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
11: स्मॉल बैंक?
12: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
11: ओके
12: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
13: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर, एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
14: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
15: मेरे पास एक आइडिया है।
13: क्या?
15: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
16: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
17: क्योंकि वो मजबूत रूमटा टीएमटी से बना है।
14: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
18: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
19: तो कौन सी बनानी है? तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
10: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
14: आई लाइक दिस ओनली।
2: आगे आगे।
14: अरे उधर उधर।
2: करेक्ट करेक्ट।
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार धोती थमका लगाने पर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो
3: विश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
9: मैडी, I need to open a savings account.
10: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
9: स्मॉल बैंक?
10: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
9: Okay.
10: Ujjivan, nothing small about us.

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बाल सर एक बार धोती ठुमका लगाने पर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ट्रेन क्रैश रोकने के लिए संकट मोचक बने हिंदुस्तानी पायलट, जान पर खेलकर बचाए यात्रियों की जान, पीएम ने बताया देश का गर्व। ट्रंप नेतन्याहू ने किया सलाम, स्मिथ की सलामती के लिए प्रार्थना। चुनाव आयोग ममता का फिर निशाना, कहा ज्ञानेश कुमार को माफ नहीं करेगी देश की जनता, मैंने सबसे पहले उठाया मुद्दा। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में उथल पुथल, राजा वडिंग ने दिया इस्तीफा, जल्दी नए अध्यक्ष का हो सकता ऐलान, राज्य में आंतरिक खींचतान जारी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुपर हीरो, पूरी दुनिया में आज एक ही सुपर हीरो की चर्चा है, उसका नाम है कैप्टन स्मिथ मच्छार, जो दुबई से तेल अवीव जाने वाली उस फ्लाइट के मेन पायलट थे जिसे ओमानी पायलट क्रैश कराना चाहता था। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय पायलट ने अपनी बहादुरी से एक और 9/11 होने से बचा लिया। पूरी दुनिया भारत के इस बहादुर पायलट की तारीफ कर रही है। कैप्टन स्मिथ मच्छार ने कैसे कारनामा किया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
4: एक हिंदुस्तानी पायलट ने कैसे इजराइल का 9/11 होने से रोका, एक इंडियन पायलट ने कैसे 174 यात्रियों की जान बचाई, एक हिंदू पायलट ने कैसे आतंकी हमले को विफल करके 100 से ज्यादा यहूदियों को बचाया, यह कहानी है उस बहादुर हिंदुस्तानी पायलट स्मिथ मच्छार की, जिनकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है।
5: मैन जस्ट एक्ट्स विद incredible heroism and saves the day along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
6: किस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।
4: सोचिए, फ्लाइट उड़ा रहे पायलट पर अचानक से उसका साथी पायलट ही किसी कुल्हाड़ी या चाकू से अचानक हमला कर दिया। पायलट जब तक कुछ समझ पाए तब तक उसके सिर पर, हाथ पर, शरीर पर ताबड़तोड़ हमले कर दें। ऐसा हाल हो जाए कि शरीर के अंग लगभग अलग हो जाए और इतने खतरनाक हमले के बाद भी वो बहादुरी से उठ खड़ा हो, कॉकपिट का दरवाजा खोल दे और अपनी फ्लाइट को क्रैश होने से बचा दे, तो उसकी तारीफ तो दुनिया करेगी ही। भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार ने कल यही कारनामा किया है। फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से लोकल टाइम सुबह 6:05 पर उड़ी थी, जिसे अपने पश्चिम में इजराइल की राजधानी तेल अवीव जाना था, लेकिन टेक ऑफ के 2 घंटे के बाद हवाई जहाज में हलचल होने लगी और वो नीचे की तरफ जाने लगा। सिर्फ 2 मिनट में ही हवाई जहाज 17,400 फीट नीचे चला गया। तुरंत फ्लाइट के अंदर हंगामा और चीख पुकार मच गई, लोग चिल्लाने लगे। तुरंत फ्लाइट की तरफ से 8:31 पर इमरजेंसी कॉल की गई और कोड 7500 भेजा गया। इस कोड का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया है। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ओमानी मूल के कोपायलट ने भारतीय मूल के मेन पायलट स्मिथ मच्छार पर हमला कर दिया था। वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, उनके सिर पर, हाथों पर, पेट पर वार किए थे, जिससे वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गए थे। इसी दौरान स्मिथ मच्छार ने बहादुरी दिखाई और वो कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। फ्लाइट के कॉकपिट में पायलट जब बैठते हैं तो वो लॉक हो जाता है, उसे अंदर से पायलट ही खोल पाता है। भारतीय पायलट ने कॉकपिट अनलॉक किया और फिर बाहर से इजरायली पैसेंजर कॉकपिट के अंदर दाखिल हुए।
7: הטייס שהיה דקור היה פשוט מאוד סמוך לדלת, אז היה קשה לנו לפתוח אותה, אבל נראה לי, לפי דעתי, מסקנה שלי,
8: אני חושב שהוא פתח, הוא פותח, הוא צריך להגיע למעלה, לא?
7: לפני שהוא התמוטט.
8: לפני שהוא התמוטט, הוא הצליח.
7: הוא הצליח.
8: תושייה גדולה.
7: כשנכנסתי, ראיתי את המפגע על המכשירים, בין שני הכיסאות, לא היה טייסים על הכיסאות, אחד היה למטה, אחד על המכשירים, ואיתי נכנס עוד אחד, תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה.
8: מה הוא עשה על המכשירים האלה? מה הוא עשה?
7: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי
4: तुरंत इजरायली पैसेंजर्स ने हमलावर ओमानी पायलट पर काबू पाया, उसे विमान की मशीनों से दूर किया क्योंकि वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था, वो विमान की मशीनों को क्षतिग्रस्त कर रहा था, इसी वजह से विमान बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था। बताया जा रहा है कि इजरायली पैसेंजर्स ने हमलावर को हेडफोन के तार से बांधा ताकि वो हमला न कर सके। विमान लगातार नीचे जा रहा था तो एक इजरायली शख्स यानी भायून ने विमान का लीवर ऊपर किया और उसे स्थिर किया। उसे विमान उड़ाना नहीं आता है, लेकिन उसने एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन नाम के एक टीवी कार्यक्रम में यह सब देखा था। इतनी देर में विमान स्थिर हो गया।
7: קראתי לחבר'ה ישראלים איתם שהיו למטוס, קראתי להם, באו, ניגשו אליי עוד שני חבר'ה, אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה לזה, משכתי את ההגאים, התחלתי למשוך את ההגאים, ואז
8: אתה משכת את ההגאים?
7: כן.
8: אתה ידעת, אחורה?
7: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה מפה.
4: इसी दौरान कॉकपिट के अंदर श्रोता मौसे भी पहुंच गए, जो इजराइल में एक डेंटिस्ट हैं। उन्होंने एक घायल भारतीय पायलट का इलाज किया, उनको फर्स्ट एड दिया, उनका खून रोका। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। आप सुन सकते हैं कि वो घायल पायलट से ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं आपको नींद तो नहीं आ रही।
9: Yeah.
10: No sleep.
11: No sleep.
12: No sleep.
13: My head is hurting. Yeah. I'm thinking of my hand.
9: Yeah.
13: No,
14: your hand, it's Rama. Good.
9: Rama, can I have the Panadol? Yeah. Paracetamol.
15: Check it on me, I've got some time.
9: Yeah.
14: You won't sleep?
15: You save the
14: no.
15: pain. It's good for you.
14: Yeah.
15: It's good for you.
4: इन तस्वीरों में दिख भी रहा है कि घायल भारतीय पायलट स्मित बच्चार कॉकपिट के अंदर लेटे हैं। दूसरी तरफ वो हमलावर पायलट भी है जिसे इजराइल के नागरिकों ने पकड़ा हुआ है। इन इजराइलियों के कपड़ों पर खून लगा है, पूरे कॉकपिट में खून बिखरा हुआ है। ये सवाल उठ रहे हैं कि विमान में तो आप एक नेल कटर लेकर भी नहीं जा सकते, तो फिर इस हमलावर ओमानी पायलट के पास ऐसा कौन सा हथियार था जिससे उसने भारतीय पायलट को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया। जानकार मान रहे हैं कि इस पायलट ने संभवतः कॉकपिट के अंदर रहने वाली इस कुल्हाड़ी से हमला किया होगा। इसे क्रैश एक्स कहते हैं। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति के लिए इसे कॉकपिट में रखा जाता है और इस तक सिर्फ पायलट की ही पहुंच होती है। ये माना जा रहा है कि ओमानी हमलावर पायलट ने स्मित बच्चार पर इसी से हमला किया होगा, क्योंकि इजरायली पैसेंजर्स के मुताबिक स्मित बच्चार बहुत बुरी तरह से घायल है। उनका बहुत ज्यादा खून बह गया था, उनके हाथों पर, सिर पर बहुत से गहरे घाव।
16: क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या कोई वेपन आप लेकर जा सकते हैं दुबई के एयरपोर्ट में?
17: नहीं, वेपन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कॉकपिट में।
16: चाकू?
17: चाकू
16: भी छोटा सा चाकू?
17: छोटा सा भी नहीं है, वो पूरा
16: ब्लेड
17: होती है, ब्लेड भी नहीं अलाउड,
16: कुछ भी नहीं,
17: कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट कुछ भी अलाउड नहीं है।
16: तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कॉकपिट के अंदर कौन सा वेपन बचता है फिर हमारे पास?
17: सिर्फ एक क्रैश एक्स बचता है जो कॉकपिट के इनसाइड द कॉकपिट इट इज अवेलेबल।
16: और वो किस काम के लिए?
17: वो इमरजेंसी के काम के लिए होता है, इन केस ऑफ क्रैश लैंडिंग हुई है कहीं पे, हमें कुछ ब्रेक करना है या तो उस चीज के लिए वो क्रैश एक्स की रिक्वायरमेंट।
16: ओके, तो मतलब इस बहस के बाद, मल्टीपल बार जो ये झड़प हुई है, इसके बाद जो अटेम्प्ट हुआ होगा, वो फर्स्ट ऑफिसर जो जहां मैं बैठा हुआ हूं अपनी सीट को साइड करके इस जगह से निकला होगा और वो संभवतः यहां से निकलने के बाद सीधे पहुंचा होगा इस एंड पे जहां पायलट के पीछे क्रैश एक्स होता है। एक तरह से आप समझिए कि शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे आप इमरजेंसी के सिचुएशन में दरवाजा तोड़ने का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लेकर फिजिकल हमला किया गया होगा कैप्टन के ऊपर, ये एक पॉसिबिलिटी है।
4: लेकिन इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी भारतीय पायलट ने न सिर्फ अपने हमलावर का बहादुरी से मुकाबला किया बल्कि वो कॉकपिट का दरवाजा खोलने में भी कामयाब रहे, जिसके बाद बाकी इजरायली पैसेंजर्स कॉकपिट के अंदर दाखिल हुए और इस स्थिति पर काबू पाया। इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री से लेकर उनका हर नागरिक भारतीय पायलट की बहादुरी की तारीफ कर रहा है।
5: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day, along with the Indian pilot who was there and the others who came to help.
4: अब ये भी सवाल है कि जब एक पायलट हमलावर था और दूसरा पायलट घायल हो गया था तो फिर इस विमान की लैंडिंग कैसे हुई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के अंदर फ्लाई दुबई के ही दो पायलट मौजूद थे जिन्हें रिजर्व पायलट बताया जा रहा है। बाद में इन पायलट्स ने विमान पर नियंत्रण किया और उसे सऊदी अरब के ताबूक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा। आमतौर पर लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट में दो पायलट के अलावा दो और रिजर्व पायलट होते हैं, लेकिन 3.5 घंटे के इस फ्लाइट में फ्लाई दुबई एयरलाइंस के दो रिजर्व पायलट क्यों मौजूद थे, इसका जवाब नहीं मिल पाया है। यह भी संभव है कि उन्हें तेल अवीव से किसी और फ्लाइट को उड़ाना रहा होगा। इसराइल ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। इसराइल इसे आतंकी घटना के तौर पर ही देख रहा है। इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शिनबैट दुबई पहुंच गई है ताकि वो इसराइल के लिए उड़ने वाली फ्लाइट्स की सुरक्षा जांच कर सके। अभी फिलहाल कल के हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश के बाद इसराइल के लिए तमाम फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। ये भी जांचा जा रहा है कि जिन देशों के साथ इसराइल के कूटनीतिक संबंध नहीं है उनके पायलट को फ्लाइट क्यों उड़ाने दी जा रही है। जैसे कि इस केस में आरोपी हमलावर ओमानी बताया जा रहा है और ओमान के साथ इसराइल के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। अभी उस आरोपी पायलट की पहचान नहीं बताई जा रही। वो सऊदी अरब की हिरासत में है और वहां भी उसकी जांच की जा रही है। आज तक ब्यूरो।
3: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला किया। उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी हैं, वो घायल हैं और सऊदी अरब के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब उन्हें आबू धाबी शिफ्ट करने की तैयारी है। इसमें पूरे देश ने कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू किया। देश भर के कई मंदिरों में कैप्टन स्मिथ मचार के जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया गया।
6: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाटी वटकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना।
1: विशेष वक्त से ब्रेक का उछला, आप बने रहिए हमारे साथ, दिखते रहिए आज तक।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: यूपी में राज्यसभा चुनाव में अखिलेश ने कैंडिडेट नंबर 2 उतारकर ऐसा सरप्राइज दिया है कि पूरी चुनावी सियासत तीसरे के चक्कर में उलझ गई है। हालात ये हैं कि बीजेपी के लिस्ट की सुगबुगाहट तक नहीं और अखिलेश के तीसरे कैंडिडेट पर सियासी शगुफे सातवें आसमान तक पहुंच रहे हैं और गाहे बगाहे इस पतंगबाजी में पेच अखिलेश भी डाल रहे हैं।
1: ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, बीजेपी के लोग उलझे रहे।
0: उलझन बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को उम्मीद थी कि पार्टी की ओर से दूसरे नंबर का कैंडिडेट मुस्लिम होगा, लेकिन अखिलेश ने दूसरे नंबर पर नाथवानी को उतार दिया है। अब तीसरे नंबर पर चांस की बात कहते हैं।
1: पिछली बार जो हार हुई उसके कारण भी आपको पता है, तो हम तो बहुत से लोगों को कह रहे हैं यार, पुराना अगर ढोलना है तो ये मौका अच्छा है।
0: समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और खुद अखिलेश भी कहते रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो क्या अखिलेश सिर्फ क्रॉस वोटिंग के रहमो करम पर ही तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे?
1: लोकतंत्र में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी पिछली बार नहीं होती तो समाजवादी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद गए होते।
0: लेकिन अखिलेश जिसे बेईमानी कहते हैं, उस बेईमानी के बिना इस बार समाजवादी पार्टी की तीसरी और बीजेपी की 8वीं सीट का फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर का गणित ऐसा है कि बिना दूसरे दल के विधायकों के वोट किए किसी गुट का प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं सकता। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, वो अपनी तैयारी करें, हमारी अपनी तैयारी है, सरप्राइज तो हम देंगे।
3: सर कह रहे 10 विधायक उनके टच में हैं।
2: हमारे पास तो 25 विधायक उनके टच में हैं।
4: देखिए, समाजवादी पार्टी अगर अपने अखाड़े के पहलवानों को लाती तब तो समाजवादी पार्टी कहलाती। अब समझ सकते कैसे लोगों को लाई है, अब उसका जवाब जनता देख रही है कि कैसे लोगों के नाम करते पिछड़े, नाम कहते हैं दलित का, नाम कहते हैं कि अल्पसंख्यक, लेकिन काम किस तरीके का आप समझ सकते हैं। अब विपक्ष के लोग हैं अपना, इसीलिए विपक्ष में बैठ रहे हैं, खाली इसी तरह के लोगों के प्रत्याशी के चयन में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कार्यकाल समिति अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एनसीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र भेंट कर
1: और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: चुनावी यूपी में सियासत का हाल कुछ ऐसा है कि मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, सीएम योगी विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुनाने का मौका नहीं चूकते। यूपी के जावाज पुलिस कर्मियों का सम्मान करते हुए भी सीएम अखिलेश राज की नाकामियां गिना रहे थे।
3: पीएससी की एक एक बहानी को समाप्त किया गया, यानी दंगाइयों के काल को जब आप समाप्त कर देंगे तो दंगाई तो कर्फ्यू लगाएंगे और यही तो होता था, महीनों कर्फ्यू। कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों, कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। बधाई।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे, और ये फर्क उस मंच पर था जहां यूपी पुलिस के बहादुर जवानों और अफसरों को सम्मानित किया जा रहा था। सम्मान पाने वालों में शामली में 4 अपराधियों को ढेर करने वाले शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी भी थी, जबकि वाराणसी में अपराधी मनीष सिंह को ढेर करने वाली टीम के 2 पुलिसकर्मी, मथुरा में अपराधी पंकज यादव को ढेर करने वाली टीम के 3 पुलिसकर्मी, उन्नाव में हिस्ट्री शीटर अनुज सिंह को ढेर करने वाली टीम के 3 पुलिसकर्मी, सहारनपुर में आबाद नाम के खूंखार अपराधी को ढेर करने वाले 3 पुलिसकर्मी और बिसरख में कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर करने वाले अक्षय त्यागी को राष्ट्रपति मेडल मिला। इसके अलावा सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 7 बड़े पुलिस अभियानों में शामिल 10 पुलिसकर्मियों को सीएम वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। लखनऊ में यूं तो सीएम योगी यूपी पुलिस के जाबाजों को सम्मानित करने पहुंचे थे, लेकिन सियासत वहां भी हो गई। सीएम ने 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया, पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना डाली। सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा या ढेर कर दिया। लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: काउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिले।
2: पिछले 9 साल में 17,043 बार पुलिस ने मुठभेड़ की, इसमें 289 अपराधी मार डाले गए, 11,834 अपराधी घायल हुए, 34,253 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,852 पुलिसकर्मी जख्मी। इसके मुकाबले पिछले अखिलेश राज में पुलिस एनकाउंटर में कुल 40 अपराधी ढेर हुए थे। उससे पहले मायावती राज में 261 अपराधी मारे गए थे, और उससे पहले मुलायम सिंह के दौर में 499 अपराधियों का पुलिस ने सफाया किया।
4: ये हमेशा याद दिलाएंगे कि
2: लेकिन यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जातीय भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं। एक तरफ सीएम योगी 2017 से पहले और 2017 के बाद की पुलिसिंग में बदलाव की तमाम मिसालें गिनाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर से लेकर पीएससी की बटालियन और थाने की बिल्डिंग्स से लेकर हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों का उदाहरण दिखाते हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश पुलिसिंग में सियासी घालमेल के ताने दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला फिरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस के सामने का बयान कोई मंत्र नहीं कि फूंक कर हर कानूनी चुनौती को खत्म कर दिया जाए। ऐसे कानून का इस्तेमाल आरोपी के पंख कतरने के लिए नहीं होना चाहिए। अदालत ने यूपी सरकार को कहा कि 10 लाख का जुर्माना आरोपी मुल्ला फिरोज को दिया जाए। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर की डीएम ने भी एक छात्रा पर एनएसए लगा दिया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने डीएम मेधा रूपम को कड़ी फटकार लगाई थी और निंदा वाले वाक्य अफसरों के सर्विस बुक में एंट्री करने को कहा था। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रोकने के लिए संकटमोचक बने हिंदुस्तानी पायलट, जान पर खेल कर बचाई यात्रियों की जान, पीएम ने बताया देश का गर्व। ट्रंप, नेतन्याहू ने किया सलाम, स्मिथ की सलामती के लिए प्रार्थना।

चुनाव आयोग पर ममता का फिर निशाना, कहा ज्ञानेश कुमार को माफ नहीं करेगी देश की जनता। सबसे पहले उठाया ट्रंप, नेतन्याहू ने किया सलाम, स्मिथ की सलामती के लिए प्रार्थना।

जनता का फिर निशाना, कहा ज्ञानेश कुमार को माफ नहीं करेगी देश की जनता। सबसे पहले उठाया मुद्दा देश। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, पिकनिक मनाने गए 8 छात्र समुन्द्र में डूबे, पुणे के रहने वाले थे सभी स्टूडेंट्स।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No, no, thank you.
1: I'm a good guy from a good family.
0: Thank you. क्या बोल रहे
2: हैं? मिलेंगे?
3: आपको ड्रॉप करना है देंगे।
4: आपने एक मिनट क्या समझा है?
0: No, thank you.
4: आप क्या पूछ रहे हैं? रेट पूछ रहे हैं?
5: अश्लील कमेंट्स, गंदे इशारे, घूरना और पीछा करना। दिल्ली की बेटियां कभी ना कभी इनका शिकार होती हैं। भले ही वो चाहे कोई भी, किसी भी इलाके में रहती हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ती हो, बड़ी से बड़ी वारदात भी दिल्ली को नहीं बदल पाती। आखिर क्यों? दिल्ली में अकेली लड़की देखकर उसके करीब आना, लड़की के पास जाकर उसे घूरना, गंदी नजरों से किसी लड़की को असहज करना, दिल्ली की ये वो कड़वी हकीकत है जो देश की राजधानी को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बनाता है, क्योंकि ऐसा करने वालों को कानून का खौफ नहीं। तभी तो कालका जी जैसे कांड होते हैं। दिल्ली में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? इससे खबरदार करने के लिए आज तक की चार महिला रिपोर्टर ऐश्वर्या पालीवाल, जेसिका गोयल, श्रेया चटर्जी और कार्तिकी शर्मा दिल्ली की चार दिशाओं में एक सवाल के साथ गई कि आखिर दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों है। इस सवाल की जड़ में वो सोच है जो निर्भया जैसे कांड के बाद भी दिल्ली में कुछ नहीं बदलने देती। 14 साल बाद भी गैंगरेप नहीं रुकते, बेटियों को बार बार सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ता है।
4: The thing is, कि उनको डर नहीं है। अगर जैसे ये पार्क वाला इंसिडेंट हुआ, आप उनको पकड़ के या तो कैपिटल पनिशमेंट दो या फिर आप उनको जेल में डालो ताकि लोग उनसे डरे। फियर क्रिएट करने की जरूरत है। That's how I see it.
5: आखिर दिल्ली की सड़क पर अकेली चलती महिला सुरक्षित क्यों नहीं? क्यों उसे हर खतरा महसूस होता है? क्यों उसे संविधान से मिले सुरक्षा के अधिकार का एहसास नहीं होता? दिल्ली में बेटियों से अपराध के बाद तो बड़ी बड़ी बातें होती, लेकिन इस अपराध से पहले जो होता है उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? क्यों घूरना, पीछा करना, अकेली लड़की को देखकर गाड़ियों का पीछा करना, बार बार रुकना,
0: No, thank you.
5: बिना लड़की की इजाजत के करीब आना,
4: क्या वो?
5: बेखौफ और बेशर्मी के साथ प्रस्ताव रखने से पहले मंचलों को 100 बार नहीं सोचना पड़ता।
4: क्या हुआ? क्या बोल रहे
3: हैं? मिलेंगे?
5: क्या इसकी वजह वो मानसिकता है जो सड़क पर चलने वाली हर औरत को ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी? दिल्ली की बेटियों के इसी दर्द को जानने दिखाने हम निकले सुनसान गलियों, ऐसी जगह पर नहीं जहाँ आमतौर पर औरत से कहा जाता है तुम वहाँ क्यों गई। हम वहाँ गए जहाँ दिल्ली बसती हजारों की भीड़ होगी। इसमें मेट्रो स्टेशन, बाजार, अस्पताल, कॉलेज, मंदिर, ऑफिस एरिया और कनॉट प्लेस बाजार शामिल है। आज तक की चार महिला रिपोर्टर पूरी राजधानी में निकलती हैं बेटियों की सुरक्षा के सवाल के साथ कि आखिर क्यों दिल्ली का कोई भी इलाका बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है।
6: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जो हिस्सा हमने आपको हमारी चार महिला रिपोर्टर्स का दिखाया, उनकी रिपोर्टिंग का, कि दिल्ली में एक रात में जब वो अकेले ऐसा प्रतीत होता है आसपास चलने वाले लोगों को कि वो अकेले निकल रही हैं, तो उनके साथ क्या होता है, किस तरह की बातें, किस तरह की नजरों का सामना उन्हें करना पड़ता है, आज वो चार रिपोर्टर्स मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम उनका अनुभव, उनके एहसास, उनकी बातें, उनके रिपोर्ट्स, हमारे सवाल उनके जवाबों के साथ आपके सामने रखने वाले हैं। हमारी चार रिपोर्टर्स बीती रात दिल्ली में बाहर निकली, सड़कों पर निकली, उन्होंने देखा कि किस तरीके से आते जाते लोग व्यवहार करते हैं। हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल स्टूडियो में है, हमारे साथ श्रेया चटर्जी हैं, हमारे साथ इस समय जेसिका गोयल हैं और कार्तिकी हमारे साथ हैं, कार्तिकी अरोड़ा। ये एक एक करके आप सब बताइए, सामान्य कपड़े पहने, नॉर्मल, ऐसा भी नहीं है जो जिसके लिए कई दफा ब्लेम कर दिया जाता है कि भैया तुमने कपड़े ही ऊटपटांग पहने थे, तुम देखी गलत तरीके से रही थी। आप नॉर्मल तरीके से कहां पर निकली थी ऐश्वर्या, कहां गई थी आप?
7: मैं आपको बताऊं श्वेता, मैंने यही कपड़े पहने थे और मैं जान करके यही कपड़े पहन के आई हूं कि आपको मेरे शायद पैर दिख रहे हैं, आपको मेरे हाथ का इतना हिस्सा दिख रहा है, इसके अलावा मतलब क्या मैंने अपने आप को ऐसे आउट इन दी ओपन किया है? मुझे नहीं लगता। आप हम देखेंगे कि हम सब जितनी जगह गए थे, और मैं और श्रेया तो कैनॉट प्लेस भी गए थे, इससे ज्यादा जगमगाता इलाका आपको कौन सा मिलेगा? और हमारी जो स्टोरी थी, क्राइम होता है वो लास्ट स्टेप है, पहला स्टेप क्या होता है? मैं अगर ऐसे बैठ के आपको घूरने लग जाऊंगी श्वेता, आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा? क्योंकि आप समझ रही हैं कि मैं कहां देख रही हूं, मेरे मन में क्या चल रहा है। और कितनी बार आप जहां जहां जाती हैं, आप भीड़ वाले इलाकों में आप भी जाती हैं, आपने देखा होगा कि भीड़ वाले इलाकों में इतनी जगह खाली है लेकिन वो चिपक के इतनी सी जगह में से ही निकलेंगे। अरे भाई क्यों इतनी सी जगह से निकलोगे आप?
6: यही एक्सपीरियंस यहां इस बार भी रहा है।
7: इस बार वो फिल्म है ना श्वेता, नो मीन्स नो, महिलाओं को बहुत अच्छा लगा था वो डायलॉग जब अमिताभ बच्चन जी ने बोला था एक फिल्म के अंदर, नो मीन्स नो। आप इसको किसी भी तरह से घुमा के देख लीजिए, नो का मतलब नो ही होता है और यस का मतलब यस होता है। एक गाड़ी आती है और ये LSR के पास है, क्योंकि वहां पे लगभग 1700 PG हैं, बहुत सारी बच्चियां वहां पे पढ़ने जाती हैं, पीजी में रहती हैं, रात को 8 बजे के आसपास बाहर भी निकलती हैं। 7:30 बजे का समय था, महज LSR से 2 किलोमीटर दूर मैं खड़ी थी, मैं एक लाइट के नीचे खड़ी थी जान करके, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि अरे आप तो ऐसे इलाके में खड़ी थी। मैं खड़ी हूँ, 2-3 लोग पास कर रहे हैं, एक जना आया थोड़ा दूर खड़ा हो गया, वो सिगरेट पी रहा है, देख रहा है, आप यूज टू होते हो, आप चुप रहते हो, तो कहने को क्या है जी, हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ भाई आपने कुछ छूके नहीं किया, देखा तो आपने। एक गाड़ी आती है और यहाँ पे ना ये फियर हो जाता है श्वेता, ये सिर्फ एक महिला समझ सकती हो, कि आप किसी पुरुष को ये बोलेंगे ना कि वो घबराहट सी हो रही थी, तो वो आपको पलट के यही बोलेंगे अरे भाई वो तो इतनी दूर था। ये गाड़ी आती है और इसने मुझे बोला कि आपको कहीं छोड़ दूं, तो आप देखेंगे इशारों में मैं उसे मना कर रही हूं कि भाई मुंह से नहीं समझ आ रहा तो शायद हाथ से समझ आ जाएगा, नो थैंक यू। फिर उसने बोला कि नहीं मैं अच्छा लड़का हूं, तो मैंने बोला नो थैंक यू, तो दूसरी बार मैंने मना किया। तीसरी बार उसने बोला आप श्योर हैं, तो मैंने बोला नो मतलब मैं श्योर हूं। वो थोड़ा सा आगे गया महज 50 मीटर, फिर वापस आया, तो आप श्योर हैं कि आप ढूंढ नहीं रही हैं किसी को? तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई मेरे मना करने पे, मुंह से बोलने पे, हाथ के इशारे से आपको क्या चीज समझ नहीं आई? एंड इट वॉज टेरिफाइंग, मेरे पास कोई और वर्ड नहीं है, जबकि मैं जानती हूँ, मेरे जहन में मैं जानती हूँ कि मेरे बैकअप है, मेरे कैमरा पर्सन पास खड़े,
6: जो कि एक नॉर्मल लड़की जो सड़क पर खड़ी रहती है उस समय किसी भी कारणवश, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि उसका कोई बैकअप नहीं होता है। पहले हम ऐश्वर्या आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर हम एक एक करके आप सबके एक्सपीरियंसेस जानते हैं। आपने अपनी उस पूरी रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या फेस किया, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: एंड गंदी डिटेल्स सुनने को मिल रहा है और कुछ इससे हो नहीं रहा, एवरीबडी इज जस्ट गेटिंग डिसेंसिटाइज्ड एंड इट्स वुमेन सेफ्टी, तो हम ही जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने, कोई इतना दे नहीं रहा।
9: दिल्ली की प्रियांशी जब छोटी थी तो उसे लगा कि बड़ी होने पर वो सुरक्षित महसूस करेगी, लेकिन भारत जैसे देश में और दिल्ली जैसे शहर में लड़कियों की सुरक्षा की हालत सुधरना तो दूर, बद से बदतर होती जा रही है।
8: Women's safety is really bad currently. The state of the country is absolutely unsafe for women, as it has always been. While I was in college, then it was safe, unsafe. While I was in school, it was unsafe. We have seen protests for Nirbhaya. Now this, the cases are getting worse and worse.
9: Delhi ki Priyanshi, suraksha ko lekar is kadar nirash kyun hai? Ab usse Moolchand ilake mein khadi. आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल के साथ हुए वाकये से समझिए। वक्त शाम के 7:30 बजे, जगह दिल्ली का मूलचंद अस्पताल। दिल्ली में लड़कियों को घूरना कितनी आम बात है, उसे आपको गलत साइड से बिना हेलमेट लगाकर आ रहे ये दो बाइक सवार समझाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश के मुकाबले दिल्ली में लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों पर दोगुना उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
5: इस आंकड़े का सबूत अब आपको ऐश्वर्या के साथ हुआ वाकया समझाएगा, जिनके पास एक गाड़ी रुकती है, अकेली लड़की देख सीधे छेड़ देने का ऑफर होता है। तो ऐश्वर्या को ये गाड़ी सवार बार बार ड्रॉप कर देने का ऑफर देता, वो भी आज तक संवाददाता के बार बार मना करने के बावजूद। दिल्ली की सड़कों, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों के बाहर अनजान लोग अक्सर अकेली लड़कियों को ड्रॉप कर देने या लिफ्ट देने का ऑफर देते हैं। लेकिन ये कोई परोपकार या मदद की भावना नहीं, बल्कि अधिकांश मामलों में महिलाओं को फंसाने, उनका यौन उत्पीड़न करने या उनके साथ गंभीर अपराध करने की एक सोची समझी आपराधिक साजिश होती है। बावजूद इसके ये सिलसिला नहीं रुकता। बल्कि ऐश्वर्या के साथ भी यही होता है, और तीसरी बार साफ तौर पर मना करने के बाद ये गाड़ी सवार चला जाता है। कई बार अपराधी अच्छी गाड़ियों में सभ्य दिखने वाले कपड़ों में आते हैं, ताकि लड़कियां उन पर आसानी से भरोसा कर लें। इसीलिए इस तरह ड्रॉप करने का ऑफर और उसकी तरफ से की जाने वाली जिद खतरनाक हो सकती है। मूलचंद अस्पताल के बाहर भी ऐसा ही कुछ होता है, जहाँ ट्रैफिक के बीच आते जाते लोगों के बीच अकेली खड़ी लड़की पर सबकी नजर जाती है। इसी बीच एक गाड़ी आकर रुकती, जिसमें सवार ड्राइवर तब तक ड्रॉप करने का ऑफर देता है जब तक उस आदमी को यकीन नहीं हो जाता कि लड़की के जवाब का मतलब सच में ना ही।
7: अगर आप एक महिला हैं तो आपने वो फिल्म देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत साफ कहा है, नो मीन्स नो। अगर आप किसी को मना करते हैं तो उसका मतलब है कि आप उस चीज को नहीं करना चाहते, नहीं का मतलब नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था उसमें मुझे यही समझ आया कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भी अगर आप किसी को मना करते हैं तो हो सकता है कि उनकी वो समझ में ना आता हो, लेकिन उनका ये ना समझना ही महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत का कारण बन चुका है। हम बहुत सारे क्राउडेड जगहों पे जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, हमने इस चीज को आदमियों को महिलाओं को एक तरीके से देखने को नॉर्मल कर दिया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी और नो मीन्स नो का मतलब जो है वो सोसाइटी में बताना पड़ेगा, लड़कियों को भी और लड़कों को भी।
5: दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों की आजादी, उनकी गरिमा का हनन होना कोई नई बात नहीं। आज तक के कैमरे में जो कैद हुआ, बात उससे भी आगे बिगड़ जाती है, जैसा 23 तारीख को दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जिस वक्त दिल्ली की लड़कियां कालकाजी गैंगरेप के बाद आक्रोशित थी, पुलिस कटघरे में थी। तब मुखर्जी नगर में दो छात्राओं को चार गाड़ी सवार लड़कों ने गाड़ी में खींचने की कोशिश की। ये सब कुछ नॉर्थ कैंपस में हुआ।
10: क्यों हम लड़कियां हैं तो क्या हमें रात में निकलना नहीं चाहिए? 9 बजे कौन सी रात होती है? DU है ये। हमने बोला कि आप मतलब आप इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमसे क्या होगा। दिस वॉज स्टेटमेंट, दिस वॉज एग्जैक्ट स्टेटमेंट, मैं चल के वहां बोल सकती हूँ। उन्होंने ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो तो हमारा लक था ना कि हम थोड़े दिन दहाड़े थे। वॉट इफ दे वुड हैव बीन सक्सेसफुल एट टेकिंग मी इनसाइड देयर कार, व्हाट वुड हैव बीन डन देन।
5: दिल्ली में बेटियों को लेकर पुलिस हर बड़ी वारदात के बाद जो दावे करती है वो चंद घंटे भी नहीं ठहर पाते। दिल्ली में अगर कुछ बचता है तो बेटियों से छेड़खानी, उनकी असुरक्षा।
6: ये बड़ी अजीब सी बात है कि आज से 20 साल पहले भी अगर हमारी कोई महिला साथी निकलती थी सड़क पर, अगर एक रिपोर्टर के तौर पर हम रियलिटी चेक करने जाते थे, जो चीज उस समय होती थी आज भी वही होती थी। कुछ तो समाज को आईना दिखाना है, कुछ प्रशासन को आईना दिखाना है, कुछ सरकारों को आईना दिखाना है, कुछ पुलिस को आईना दिखाना है। श्रेया, कुछ बदला है इतने सालों में भी? मुझे तो याद है जब निर्भया का आंदोलन भी हो रहा था उस समय भी इस तरह के मामले सामने आ जाते थे।
11: श्वेता, उस समय पे तो आप पत्रकार के तौर कवर भी किए थे। मैं कॉलेज में थी, मैं प्रोटेस्ट कर रही थी सड़कों पे। आज मेरी 6 महीने की बेटी है, आज भी मैं वही सवाल उठा रही हूँ। कुछ नहीं बदला है। और अगर आप अभी मेरे रिपोर्ट जब आप देखेंगे, एक तो होता है कि आप खड़े रहते हो, हम सबको पता है कि कोई ना कोई आपको घूर के देखेगा। इतना नॉर्मलाइज कर दिया हमने इस चीज को कि हम आगे ही नहीं सोचते कि यह गलत है। और इसीलिए मैं हॉस्कास विलेज गई, वहां पे मैंने देखा कि लोग ना बस बैठे रहते औरतों को घूरने के लिए, यही काम है। शाम को आते हैं, कोई काम नहीं है, कोई जगह ना पब में घुसते हैं, कुछ नहीं करते, बस बैठते हैं कि भैया घूर के औरतों को देखे। ये इतना नॉर्मल हो गया है कि सामने वाला बंदा जो उसे देख भी रहा है वो उसे टोकता नहीं है। थोड़े आगे जाके वहां पे ना एक हनुमान मंदिर है, थोड़ा एंड में अगर आप हाउसकास्ट में जाओ, वहां पे चार पांच लोग ऐसे बैठे हैं, एक औरत आस्था में झुक रही है, आप उसे भी देख रहे हो। एक औरत अगर अपनी आस्था में भी सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित है? तो ये सवाल, जैसा कि आपने कहा ना, सिर्फ पुलिस से नहीं है, समाज से है। क्योंकि हमें ना एक परफेक्ट रेप विक्टिम, एक परफेक्ट मोलेस्टेशन का विक्टिम, उनका इंतजार नहीं करना चाहिए, तब हमें आउटरेज नहीं होना चाहिए। हमें वो करेक्शन अभी करना चाहिए, क्योंकि आपको एक औरत के तरफ ऐसे गंदे नजर से घूर के देखना वो गलत है, और उसे टोकना भी चाहिए।
12: और वही नॉर्मल नहीं करो इस चीज को, अगर हमने नॉर्मलाइज कर लिया कार्तिकी, तो आई थिंक प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है। और लोग भी बोलेंगे कि अरे देख ही तो रहा था, तुमको क्या इतना प्रॉब्लम हो गया।
13: तो वही तो, हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि हमारे पास कुछ, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। हमारे साथ प्रूफ नहीं है, हम उसको एविडेंस के तौर पे ना पुलिस को दिखा सकते हैं, ना किसी को कुछ कर सकते हैं। हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी कि आप सोती पुलिस को जगा रहे थे, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं एम्स पे गई थी एंड एक जगह जाके खड़ी हो गई थी सीधा। सिर्फ आई डेंट डिसाइड कि मैं एक घंटे के लिए खड़ी रहेंगी, लेकिन ये 5 मिनट के अंदर जो गाड़ी आनी चालू हुई मेरे आसपास, इट मेड मी स्टैंड देयर। मैं खड़ी रही वहां पे, कोई यहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई आगे से पूछ रहा है, मैं लिफ्ट दे दूं, मैं ड्रॉप दे दूं। अरे क्यों, मैं खड़ी नहीं रह सकती क्या वहां पे? मैं सिर्फ खड़ी हूं ना, मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक जगह पे। मेरा भी तो देश है, मैं खड़ा रहना है यहाँ पे, दिक्कत क्या है आपको? आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, मुझे नहीं पता, जस्ट लीव मी अलोन। कोई गाड़ी जाके आगे जाके खड़ी होगी, मैंने मना किया, फिर आगे जाके खड़ी हुई, फिर पीछे से आई, फिर आगे से आई। उस टाइम पे मुझे सच में डर लगने लगा कि व्हाट इफ, आई नो रिकॉर्डिंग हो रही है, व्हाट इफ कि एकदम से मुझे अंदर गाड़ी में खींच के ले जाए, मुझे कौन बचाएगा? मैं मिलूंगी भी नहीं नेक्स्ट दिन।
12: सही बात है,
13: क्या होगा मेरा?
12: सही बात।
13: एक मेरे फादर के एज का बंदा आके मुझसे, आदमी आके मुझसे पूछता आप मिलेंगी, और मैं कांपना चालू कर दी उस टाइम पे। मतलब ये तो चलो मेरे पास रिकॉर्डिंग में है, बट व्हाट इफ नहीं होता, मैं सेफ हूं, मुझे पता है। कितनों के साथ होता है ये, कितनों के साथ, कितनी बार मेरे साथ हो चुका है पहले, कोई रेट लगा रहा है मेरा वहां से खड़े होकर।
12: कार्तिकी एक्चुअली सही बात ये है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाहर नहीं होता है, लेकिन इंडिया के बाहर अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको 4 लोग सीरियसली लेने वाले भी मिलते हैं, वरना ये बोलने वाले भी, अगर आप कहीं पर खड़े हैं, कहीं जाते हैं, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अफ्रीका, मैंने कई जगहों पर यह देख लिया है, लेकिन वो आप चेंज तो तभी आएगा जब आप चेंज करने को तैयार होंगे। जैसे आपका क्या पूरा एक्सपीरियंस रहा?
13: बिल्कुल,
12: मेरे ये साथ इस तरह की रिपोर्ट के लिए पहली बार आप गई थी बाहर?
13: हाँ, इस तरह की रिपोर्ट के लिए, इस तरह के सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए मैं पहली बार गई थी बाहर, और मेरा भी काफी सिमिलर एक्सपीरियंस था जैसे बाकी लोगों का था। मैं कॉलेजेस के पास गई, एक वेस्ट दिल्ली में गई, भारती कॉलेज के पास गई, मैं एक हैप्पी स्कूल के पास गई वहां पे, और वो सारे इलाके। और हम लोग जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हम ये 5 से 9 बजे के बीच में ही कर रहे थे, तो हमने बहुत ज्यादा रात का समय भी नहीं चुना था, क्योंकि आस्था
12: कुछ कितने बजे,
13: 5 शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक, 11 बजे तक हम लोग थे बाहर। बट उस समय जब मेरे साथ हुआ तब आई थिंक उस समय कुछ 9:30 बज रहे होंगे, जब मैं उधर एक इलाके में वहां पे खड़ी थी और एक गाड़ी थी जो फॉलो करने लगी, और पहले फिर हमें रियलाइज हुआ कि अच्छा ये गाड़ी फॉलो कर रही है, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं खड़ी हो जाती हूँ, शायद से वो निकल जाएगी। तो मैं जैसे ही खड़ी हुई, वो गाड़ी निकली नहीं, वो मेरे आगे जाके खड़ी हो गई। और उस समय ऑफकोर्स हमारा कैमरा पर्सन भी था, बट हमें लगा कि ठीक है देखते हैं वो क्या करेगा, क्या वो निकलेगा बाहर, कुछ करता है, या वो उधर बस खड़े होने ही आया है। बट उसने फिर वो गाड़ी से बाहर निकला, उसने अपनी सिगरेट जलाई और वो वहां पे खड़े होके मुझे घूरते घूरते अपनी सिगरेट पीने लगा। और उस समय तो हाँ ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, तो मुझे पता था कि कोई है साथ में, बट अगर मैं सही में अकेले होती तो कितना डरावना है। उस टाइम पे भी डरावना था ही कि वो बंदा आके अब क्या अप्रोच करेगा, क्या बोलेगा। तो आप वो वीडियो में भी देखेंगे, वो आके क्रॉस करके जाता है, वो देखता है जाता है, फिर फाइनली मैं उसको क्रॉस करके आगे निकलती, वो गाड़ी से बैठ के निकल जाता है। उसके लिए तो मतलब ये शायद रोज की बात होगी, वो ऐसा हाँ मैं आया, मैंने देखा, लड़की देखी और मैं आगे चला गया। हमारे लिए भी ये काफी नॉर्मल हो गया है कि अब आप कहीं भी जाते हो आपको लोग घूरते, अब तो इतना देखते भी नहीं हो कि कितने लोग आपको घूर के देख रहे हैं, कितने लोग आपके पास खड़े हो जाते हैं। ये कैमरा पे एक और भी हुआ था कि हम लोग वहां पे लास्ट में अपना PTC रिकॉर्ड कर रहे थे, और उस समय कैमरा और मेरे बीच में ही वो बंदा आके वहां से निकलता है और वो ऐसे छूने की कोशिश करता है, और ये कैमरा पर रिकॉर्ड हुआ है, वो इतना पूरी खुली सड़क है जिसमें आप पीछे से जा सकते हो, आप यहीं से क्यों जा रहे हो? और ये सब इंस्टेंसेस इतने नॉर्मल हो गए, अब ऐसा लगता भी नहीं है कि हाँ मैं इसके बारे में किससे शिकायत करूँ, क्या बोलूँ, मैं अपने दोस्तों को आके बोल दूंगी, अब परिवार में तो मैं क्या ही बताऊँ, किसको क्या बोलूँ, मतलब ये कब से होता आ रहा है, कितना नॉर्मल लगने लगा है। बट अच्छी बात है कि अब हम इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, बट हम आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं जो इंडिया टुडे ने पहले भी की है 2012 में, और तब से लेके अब तक तो कुछ भी नहीं बदला है, तो हमारी रिपोर्टिंग से भी क्या ही बदलेगा, ऐसा भी लगता है।
12: अगर एक व्यक्ति भी बदल पाए हम तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत होगी। ना का मतलब ना होता है, इतनी छोटी सी बात दिल्ली के वो मर्द क्यों नहीं समझते जो अकेली लड़की को देखते ही उसे घूरने लगते हैं, उसके करीब जाकर उसे असहज करते हैं, कई बार तो जानबूझकर छूने की कोशिश करते हुए निकल जाते हैं। क्या यही मानसिकता आगे चलकर गैंगरेप जैसी वारदात की वजह बनती है, क्योंकि घूरना हो या फिर अकेली लड़की को देखकर उसे ड्रॉप करने का ऑफर देना हो? यह सारी हिम्मत लोगों में इसीलिए आती है क्योंकि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। मतलब गलती तो तब मानेंगे जब लगेगा कुछ गलत कर रहे हैं। खबरदार करने वाली बात यह है कि बस, मेट्रो, सड़क, इन सभी जगहों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले ज्यादातर पुरुषों की मानसिकता यही होती है, वो इसे अपराध या गलती मानते ही नहीं है। मतलब शुरुआत यहीं से करने की जरूरत है।
14: पटेल नगर, कीर्ति नगर, राजौरी गार्डन, जनकपुरी और तिलक नगर पश्चिमी दिल्ली का वो इलाका जहां पर आज तक संवाददाता जेसिका कोयल गई। इस दौरान जेसिका गोयल के साथ वो सब कुछ हुआ जिसका सामना दिल्ली की हर लड़की करे। जो अब इतना नॉर्मल हो चुका है कि किसी का ध्यान नहीं जाता सिवाय दिल्ली की बेटियों को, जो ये सब सहने को मजबूर। मतलब लड़की को देखकर बाइक सवारों का रुकना, अजनबियों का घूर कर देखना, पीछा करना, कार से उतरकर इंतजार करना, पटेल नगर और कीर्ति नगर में जेसिका को चलते फिरते लोग बार बार बाइक और कार रोककर बस घूरते हैं। ये देखिए, राजौरी गार्डन बस स्टॉप पर बिना किसी साफ वजह के बाइक वाले रुक जाते हैं। जनकपुरी में हैप्पी मॉडल स्कूल के पास एक कार कुछ दूर तक जेसिका का पीछा करती कैमरे में कैद होती। ये आदमी भले ही जेसिका के पास नहीं आया लेकिन गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है, सिगरेट जलाकर पीता है, बार बार आज तक संवाददाता की तरफ देखता है। दिल्ली की एक चलती सड़क पर आज तक संवाददाता को अकेली लड़की देखकर एक कैब ड्राइवर रुकता है, गाड़ी से बाहर निकलता है, रिपोर्टर के आगे से होकर देखता हुआ जाता है, सिगरेट सुलगाकर वापस लौटता है और फिर गाड़ी के पास सिगरेट पीते हुए बार बार देखता है, फोन पर बात करता है। ये सिलसिला 6 मिनट तक चलता है। इस आदमी की हरकतों को देखते हुए जेसिका इस गाड़ी से आगे जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद भी ये वहीं रहता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है। देखने में भले ही आम लग रहा हो लेकिन एक लड़की के नजरिए से रात के वक्त में दिल्ली की सड़क पर किसी अजनबी का इस तरह से पीछा करके रुकना, बार बार देखना अलर्ट कर देता है। दिल्ली में सड़क पर एक औरत के लिए कुछ नहीं हुआ का मतलब हमेशा कुछ नहीं हुआ नहीं होता, क्योंकि कुछ नहीं हुआ में लड़की का पीछा किया जाना, नजर रखे जाना, पास आने की कोशिश करना, बेचैन महसूस करवाए जाना शामिल है। ये दिल्ली का भारती कॉलेज यहाँ बता रहा अंधेरा महिला सुरक्षा के दावों और खराब लाइटों की हकीकत दिखाता है। तिलक नगर की ये तस्वीर देखिए जिसमें एक आदमी जेसिका के बहुत करीब से गुजरता है, मानो उसका मकसद गुजरते हुए उसे छूने की कोशिश करना।
13: रिपोर्टिंग करते हुए मुझे सबसे हैरानदायक चीज यही लगी कि बाकी जनता के लिए ये सब होना कितना आम था। मेरे पास आके गाड़ियां रुकी, मुझे गाड़ियों ने फॉलो किया, बाइक वाले लोग मेरे पास आकर रुके और किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उन्हें लगा कि एक आम जिंदगी की तरह मुझे इसमें चलते ही रहना चाहिए, जब तक कुछ गंभीर नहीं हो जाता तब तक इसको शिकायत के लायक भी नहीं समझा जाता। लेकिन एक औरत होने के नाते आप वो फर्क समझते हैं।
12: हम समझ सकते हैं कि बदलाव एक झटके में नहीं आ सकता, लेकिन बदलाव की शुरुआत कहीं पर तो होगी। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि सारे के सारे लड़के एक जैसे, नहीं, इनमें ऐसे लोग भी हैं जो बचाते भी हैं, रक्षा भी करते हैं। आखिरकार हम सब अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो बाकी लड़कियों को लेकर भी रिस्पेक्टफुल होंगे. हमारे घर में हमारे पिता हैं जिनको हम आइडलाइज करते हैं, तो ऐसा नहीं है सब है. लेकिन सड़क पर चलते हुए आप जितनी संख्या में उन लड़कों को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, उन आदमियों को देख रहे हैं, उसको देखकर सोचिए कि अगर कोई बिना किसी साथी के कहीं पर जा रही हो, किसी के पास कोई साधन ना हो, गाड़ी ना हो, पैदल जाना हो अपने घर तक, क्या किन किन चीजों से होकर वो नहीं गुजरेंगी. ऐश्वर्या एक चीज बताइए, क्या आपको सारे इलाके वेल लिट दिखे, लाइटें थी या डार्क कॉर्नर्स ऐसे थे जिसको लेकर कोई भी असहज हो जाएगा?
7: डार्क कॉर्नर्स थे, और मुझे लगता है ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे आपको ऐसे इलाके मिलेंगे जो वेल लिट नहीं होते हैं. वहां पर किसी को खींचना, किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी के सामने अचानक से आ जाना, यहां तक कि किसी को बेहोश करना भी बहुत आसान है. लेकिन एक रीजन जो हम वेल लिट इलाकों में गए श्वेता, वो ये था कि अगर आप ये सोचिए अगर ये वेल लिट इलाकों में हो सकता है तो अगर कोई अंधेरी गली है तो वहां क्या क्या हो सकता है. हमने कोशिश ये करी दिखाने की, और हम सब जो हमने फेस किया वो ये कि अप्रोच तो सेकंड था, वो जो गेज थी, आप सोचिए आप मंदिर जा रहे हैं और ज्यादातर लोगों की हमारी जो आस्था होती है, हम जब मंदिर की दहलीज पे पहुंचते हैं हम झुककर उसको छूते हैं. ये श्रेया ने अपने कैमरे में कैप्चर किया कि वहां पर ऐसे लोग थे जो वहां बैठे ही इसलिए थे कि अगर महिलाएं आएंगी वो झुकेंगी वो, और वो सब कैप्चर हुआ है. तो आप इससे ये समझ सकती हैं कि मानसिकता क्या है. मुझे लगता है ये तो स्टेप वन है, लास्ट स्टेप जो है वो हीनियस क्राइम होता है, वो शुरुआत यहीं से होती है.
12: सही बात है. छोटी छोटी बच्चियां हैं, और जो कालका जी वाला केस है वो भी तो एक मंदिर से जुड़ा हुआ है. मंदिर में दर्शन करके गई थी
15: जन्मदिन पे,
12: जन्मदिन पर. उससे अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है,
15: वो कोई भी जन्मदिन पे अब कंफर्टेबल नहीं रह पाएगी. हाँ. उसके साथ ऐसा दर्दनाक सा हादसा हो गया, अपने जन्मदिन पे वो मंदिर गई. और उस पूरी घटना, क्योंकि एक बीट ऑफिसर से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि वो जो आस्था कुंज पार्क है वो ऐसे जगह पे स्थित है कि अगर आप चाहो तो आप कालका जी मंदिर का दर्शन करो, आप आस्था कुंज पार्क से होते हुए इस्कॉन मंदिर जा सकते हैं. तो उसको इस्कॉन मंदिर जाना भी था आगे, तो वो वहां पे आ गई. अच्छा, पहले ही क्या बातचीत हो गई, अरे वो पार्क में क्यों गई, क्यों नहीं जा सकती है, आपने पार्क बनाया क्यों है ताकि हम कोई भी एज ए लेजर एक्टिविटी वहां जाके बैठ सकते हैं. तो अगर तो कहते हैं कि नहीं वो तो एक बॉयफ्रेंड के साथ गई, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई तो भी क्या,
12: उसे ये भी तो कहा था ना उसने कि तुम अपने घर में बात करो, उसने कहा कि मैं घर में बता कर आई हूं.
15: हाँ?
12: तो मतलब क्यों नहीं ऐसा हो सकता है,
15: अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी पार्क में गई तो क्या वो आपको एक इनविटेशन देता है कि आप मेरे को मोलेस्ट कर सकते हो, आप मेरे पे सवाल कर सकते हो या रेप कर सकते हो. ये जो सोच है, ये मानसिकता भी हमें बदलना पड़ेगा. क्योंकि आपने भी अभी हम बात कर रहे थे कि जम्मू की घटना के बाद महिलाओं की ऐसे बाइटें आ रही थी,
12: सोशल मीडिया पर रील्स चल रही हैं ऐसी कई सारी जिसमें वो कह रही है कि भाई शादी ही तो करने ले जा रहा है. तो मतलब ये जस्टिफाई करने भी लगते हैं लोग उसके बाद. लेकिन कार्तिकी, आपसे इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि अब अगर मैं कॉन्ट्रास्ट के तौर पर देखूं, जेसिका काफी अपनी बातचीत में भी सॉफ्ट स्पोकन रहती हैं, उतना पलट कर वो स्नैप नहीं करेंगी. आप स्नैप कर रही थी सामने जो आपको बोलने आ रहा था, आपने पलट कर सीधा उसको कन्फ्रंट किया. कन्फ्रंट करने पे वो बैकफुट पर जा रहे थे?
16: नहीं
12: नहीं,
16: नहीं वो वहीं खड़े थे, वो घूम कर आ रहे थे, वो पीछे से आ रहे थे, वो आगे से आ रहे थे, वो वहीं खड़े थे. एक इंसान I don't know, but हाँ, वो एक एडवोकेट थे. He was playing subtle, कि मतलब मैं ही जाऊंगी उनसे पूछूंगी कि मैं ही अपना कुछ अप्रोच लेके जाऊंगी कि हाँ मैं कॉल गर्ल हूँ टाइप, आप मुझसे पूछो मैं लिंक में चलूंगी. ऐसे काफी लोग थे. वो आधा घंटा खड़ा रहा, मैं एक घंटा थी वहां पर, वो आधा घंटा खड़ा रहा वहां बाहर खड़े होके मुझसे, मुझे देख रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है किसी से फोन पे. एक और कैब वाला आया, कैब तो मतलब और ही मुझे स्कैरी लगा क्योंकि हम लड़कियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ऐसे ट्रांसपोर्ट पे यकीन करती हैं, ट्रस्ट करती हैं कि हम हमारे डेस्टिनेशन पे ढंग से पहुंचाएं. लेकिन वही सोर्स ऑफ फियर बन रहा है हमारे लिए. वो कैब वाला आके रुक रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि ड्रॉप कर दूं. मैंने कहा आपके पास राइड है हमारी, आपके पास राइड है मेरी, तो ड्रॉप करने की बात करिए ना. जब राइड नहीं है आप दिखाइए आप पे. बोलते नहीं मैं तो ऊबर से हूं ना. तो आप ऊबर से हैं तो क्या मतलब है इसका, आप जाके मुझे ड्रॉप कहीं पे भी, लड़की खड़ी है तो ड्रॉप कर दोगे कहीं पे भी जाके?
15: मार्सल है क्या,
16: मतलब घर पे नहीं जा पाएंगे हम?
15: कर दो.
16: अरे
12: आपने देखा कि कैसे हमारी एक संवाददाता को एक गाड़ी सवार ने बार बार ड्रॉप करने का ऑफर दिया, तो एक गाड़ी वाले को कई मिनटों तक रात के वक्त गाड़ी खड़ी करके हमारी रिपोर्टर को घूरता रहा. कई बाइक सवारों ने भी यही किया. कई लोग जानबूझकर रिपोर्टिंग के दौरान करीब से निकले. चिंता की बात यह है कि ये हालात दिल्ली के किसी एक इलाके के नहीं है. एम्स, लाजपत नगर, हर जगह यही होता मिला. सबसे खबरदार करने वाली बात पुलिस की गैर मौजूदगी.
5: दिल्ली का लाजपत और एम्स इलाका, जहां आज तक संवाददाता कार्तिकी शर्मा सड़क किनारे खड़ी है। कार्तिकी एम्स इलाके के पास एक जगह पर लगभग एक घंटे तक खड़ी रही। करीब 60 मिनट के अंदर 7 से 8 गाड़ियां उनके पास रुकी।

0: ज्यादातर ने उन्हें कहीं छोड़ने की पेशकश भी की। कुछ हिचकिचाए, वहीं कई वापस आए मना करने के बावजूद, और फिर ड्रॉप करने वाले ने वो बात कही जिसका सामना दिल्ली की लड़कियां अक्सर करती हैं।
1: क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं?
2: आप मिलेंगे?
1: मिलेंगे? आप क्या पूछ रहे हैं? रेट पूछ रहे हैं?
2: हाँ जी,
1: रेट पूछ रहे हैं।
0: तो दिल्ली में एक लड़की अगर सड़क पर अकेली खड़ी है तो अजनबी के लिए ये मौका होता है। तभी तो घंटे भर में 7 से 8 गाड़ी वाले रुकते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बाद भी 2 से 3 गाड़ियां वापस लौटती, 2-3 तो पूछ भी लेते हैं।
1: क्या बोल रहे हैं?
2: मिलेंगे?
1: मिलेंगे? मैं किसी की तरफ नहीं जा रही थी, मैं बस वहाँ खड़ी थी, मैं लिफ्ट नहीं मांग रही थी, लेकिन लगभग 1 घंटे के अंदर वहाँ पे कई गाड़ियां आके रुक गई। कुछ ने मुझे कहीं छोड़ने की पेशकश की, कुछ ने मेरे मना करने के बावजूद वो वापस आए मुझसे पूछने के लिए, और कुछ मर्द तो ऐसे थे जिन्होंने मुझसे पूछा आप मिलेंगी। एक औरत के लिए ये सुनना छोटी मोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जब ये बार बार हो तो हर मर्द, हर गाड़ी, हर मोड़, आपको देखने वाला हर इंसान, आप उनका हिसाब किताब करने लगती हैं।
3: तो पुलिस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, जैसिका आपको पुलिस की का प्रेजेंस दिख रहा था उन एरियाज?
4: नहीं, एक्चुअली अब मैं सोच रही थी मुझे कहीं पे भी पुलिस आसपास नहीं दिखी। मैं जिस भी इलाके में गई, मैं वेस्ट दिल्ली में थी, मैं वहाँ कॉलेज के पास गई, वो एरिया भी अच्छे से लिट नहीं था, वहाँ पे अच्छी लाइट भी नहीं थी, और एक हैप्पी स्कूल था जहाँ से मैं गई। मैं एक मेट्रो के पास भी गई जहाँ पे हो सकता है अंदर गार्ड्स होंगे, बट बाहर तो कोई पुलिस वैन नहीं थी। एक पुलिस वैन शायद बीच में गुजरी थी और वो तभी था जब वो आदमी वहाँ पे खड़ा था, बट पुलिस के साइड से ही 2-4 लोग अपनी बाइक पे बुलेट वाली बाइक फड़फड़ाते हुए भी जा रहे थे, और उनको किसी ने कुछ नहीं रोका। और ये जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी ऐसे और लड़के बाहर आ रहे थे, और पुलिस उतनी ही कम होती जा रही थी मेरे एक्सपीरियंस में।
3: ऐश्वर्या, आपको दिख रहे थे पुलिस वाले?
5: नहीं श्वेता, मैं तो LSR के 2 गेट हैं, एक मेन गेट है, एक बैक गेट है, उसके पीछे एक पार्क है। तो बैक गेट से निकलते ही जरूर वहां पे एक पुलिस वैन खड़ी थी, वहां पे 2
3: मैंडेटरी है, जो मैंडेटरी है कॉलेज के लिए,
5: कॉलेज के लिए वो था। बट हाँ, मेरी सड़क पे मुझे कोई भी पुलिस ना वैन दिखी ना पुलिस वाले।
6: मैं पहले जैसिका वाला कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि उसने जहां से रिपोर्ट फाइल किया है भारती कॉलेज, वहां से डीसीपी वेस्ट का ऑफिस इज अ स्टोन थ्रो अवे, लेकिन वहां कभी भी लाइट नहीं है। वो सही कह रही है, वहां इट्स अ ब्लैक स्पॉट।
3: ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है,
6: पता नहीं सच में डीसीपी वेस्ट ऑफिस, मतलब आप चल के जा सकते हो, लेकिन वहां पे लाइट नहीं है। और अगर मेरी बात करें तो कुछ जगह है, जैसे माता सुंदरी कॉलेज के बाहर मुझे ITBP की तैनाती दिखी। ITBP वाले वहाँ पे तैनाती थे कि भैया छेड़खानी ना हो। और बाकी श्वेता, आपको भी पता है कि हमें ना विजुअल्स मिलते हैं, पुलिस घोड़े पे सवार होकर पेट्रोलिंग कर रही है, तो ये ना दिखावा हो गया है।
3: नहीं तो आप तो क्राइम भी कवर करती है, क्यों नहीं पुलिस की प्रेजेंस हो पाती है? इतने शॉर्ट स्टाफ
6: है, तभी आपको ITBP पर्सनल बुलाने पड़ रहा है।
3: तो फिर आप सारे कॉर्नर्स को लाइट अप क्यों नहीं कर ले?
6: वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी कितने बार सुना है कि हमने इतनी सीसीटीवी लगवा दिए, ये लाइटें लगवा दी, कहां है लाइटें? आस्था कुंज पार्क में सीसीटीवी क्यों नहीं चल रही थी? आस्था कुंज पार्क में लाइटें क्यों नहीं है? ये तो टेंडर्स आप निकालते हो, हर बार लगता है, फिर क्या हो जाता है लाइट का? तो ये सवाल करते करते हम थक जाएंगे। हर बार जब घटनाएं होंगी उसके बाद हमें विजुअल्स दिए जाएंगे कि पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, फिर वापस से सब शांत हो जाता है।
3: दिल्ली में हमने अपनी इस पड़ताल के दौरान कई महिलाओं से भी बात की है। उनमें से ज्यादातर ने बताया कि वो जब छोटी थी तो उन्हें लगता था कि बड़े होने पर ठीक हो जाएगा, सुरक्षित महसूस करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि असुरक्षा का जो भाव था वो बढ़ता ही चला गया। विडंबना देखिए, ये डर सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, दिल्ली में लड़कियों के भाई तक अपनी बहनों की सुरक्षा को लेकर उतने ही चिंतित हैं।
7: Did you see any of the incident happening in front of your eyes?
8: Recently, I've seen many such incidents happening, like some boys checking out over a walking girl and all these things. And it really aches my heart to see a society in such deformed.
9: दिल्ली का अवध, जो अपनी बहन के बाहर जाने पर परेशान हो जाता है क्योंकि माहौल बहुत खराब है।
7: Do you feel scared for your sister and your friends?
8: Yeah, I do have a sister and I really feel scared when she just tells me that she's going out with her friends and all that at this place. I just really feel sad thinking that there might be an instance where something would happen to her.
9: दिल्ली में लाखों परिवार रोज इसी डर से गुजरते हैं। बेटी जब तक घर के बाहर रहती है उसकी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। भाई के तौर पर अवध भी परेशान रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी वाली बात उन्हें लोगों का रवैया लगता है।
7: Have you ever confronted them?
8: I once confronted a guy. He just said, "Bhai, kya hota hai? India hai, and all that shit." And he just moved on, and that's all. Then I just realized how much big of a problem it is.
7: It's totally damaged, like
8: yeah, totally damaged at a fundamental level, at the basics. Everything has been ruined.
9: भारत में छेड़खानी को इतना सामान्य मान लिया गया है कि अब ये परेशान करने लगा है। मुखर्जी नगर की घटना हमारे सामने है, जहां दो छात्राओं को गाड़ी में खींचने की कोशिश होती है और FIR दर्ज करने में पीड़ित को 3 पुलिस स्टेशन दौड़ना पड़ता है। पुलिस के रवैये के तो कहने ही क्या।
2: तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन गई, बिकॉज़ दिस वाज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम विजयनगर। तो हम यहां आते हैं, देयर वाज अ वुमन कांस्टेबल, तो उन्होंने हमसे इतना भी नहीं पूछा कि व्हाट हैज हैपेंड। मैं दो लड़कियां थी, मैं और मेरी दोस्त थी, हम दोनों वहां पर जाते हैं, वो हमसे इतना भी नहीं पूछते कि हुआ क्या है, फॉर व्हाट हैव यू कम हियर, कुछ नहीं पूछते हैं। हमारे अंदर तो हमारे अंडर वो एरिया आता नहीं है, मॉडल टाउन आता है, तो वहां चले जाइए। हमने बोला कि आप मतलब आप इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमसे क्या होगा। दिस वॉज द स्टेटमेंट, दिस वॉज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट।
9: ऐसे ही दावे ये यकीन करने पर मजबूर कर देते हैं कि दिल्ली में पुलिस से बहुत ज्यादा उम्मीद लड़कियों को नहीं होती। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब महिलाएं खुद ये मानने लगती हैं कि कुछ नहीं होगा, तो घटना केस बनने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसका फायदा बेटियों को सताने वाले उठाते हैं। दिल्ली में महिलाएं हर जगह असहज होती रहती हैं। दिल्ली के हौस खास की ये तस्वीर देखिए, जिसके विलेज के एंट्री गेट पर एक आदमी वहां से गुजरने वाली महिलाओं को देख रहा था। बोल कुछ नहीं रहा, न ही घूम रहा है, बस हर उस अगली महिला के आने का इंतजार कर रहा है जो उसके करीब से गुजरती है। दिल्ली में घूरने की यह आदत किस कदर आम है, उसे इस बाइक सवार से समझिए, जो गुजरती दो महिलाओं को देखने के लिए अपना सिर लगभग 180 डिग्री घुमाता है। अपनी इस हरकत को न छिपाने की कोई कोशिश और न ही देखे जाने का कोई डर, यही दिल्ली की हकीकत है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में ये बर्ताव इतना आम हो गया है कि किसी को देखते हुए पकड़े जाने पर भी अब शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। ये सब कुछ मंदिर के बाहर भी होता है। आज तक संवाददाता श्रेया हनुमान मंदिर गई, जिसके प्रवेश द्वार के पास 4-5 आदमी बैठे थे। इसी दौरान एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आती है, वो प्रार्थना करती है। जाने से पहले जैसे ही वो झुकती है, एक आदमी की नजर इस महिला का पीछा करती है, उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसके शरीर को देखती है। आस्था महिला को झुकने के लिए कहती है, लेकिन ये भी किसी और के लिए घूरने का मौका बन जाता है। आखिर क्यों? इसके बाद फिर से हमने कुछ और देखा, जिसे सिर्फ देखना तो नहीं कहा जा सकता। इस तरह एक महिला सामूहिक मनोरंजन का विषय बन जाती है। एक देखता है, दूसरा ध्यान देता है, पूरा समूह देखता है।
6: मेरे लिए असहज कोई एक खास नजर नहीं था, बल्कि ये था कि कितना सामान्य हो गया है। कुछ आदमियों का एक साथ बैठे रहना, एक महिला का गुजरना, एक कोनी से धक्का, एक आदमी का मुड़के देखना, और किसी को भी ये नहीं लगता कि ये गलत है। और शायद यही सबसे बड़ी असहज सवाल है कि एक महिला को अनकंफर्टेबल फील करवाना इतना नॉर्मल हो गया है कि किसी को अब इस पर ध्यान भी नहीं जाता।
3: नंबर वन, किसी का ध्यान नहीं जाता। नंबर टू, ओनस ऑफ प्रूफ
6: इज ऑन अस,
3: लड़की पर है। आप बताइए कि आप प्रूव कीजिए कि वो इसी वजह से देख रहा था।
6: और अभी हम मतलब ये दिखा रहे पेशकश, श्वेता आपको भी पता है, हम यही बात कर रहे थे, लोग बोलेंगे अरे वो तो ऐसे ही देख रहा था। तो देखना, घूरना, इसे हम इतना नॉर्मलाइज कर दिए कि हर बार हमें इंतजार करना पड़ता है कि एक कोई घटना घट जाए जिसमें हमारे हिसाब से एक परफेक्ट विक्टिम लगे, तब जाके हम आवाज उठाएं। ये क्यों है? ये जो नॉर्मलाइजेशन का पूरा कल्चर है, हमें इसे बदलना तो पड़ेगा ना। क्योंकि हम लगातार सेम सवाल कह रहे हैं, जैसे 2012 में भी हमने सवाल उठाया, आप आधे कंजावाला के समय में भी जब एक इंसिडेंट हुआ था, हम तब भी रियलिटी चेक करने निकले, आज भी हम रियलिटी चेक करने निकले, कुछ नहीं बदल रहा है, डर क्यों नहीं है, कोई डर क्यों, कोई डरता क्यों नहीं है कि भाई कोई हमें देखते टोकेगा नहीं, कोई ये जो डर है ये तो अंदर से आना पड़ेगा ना।
3: उसमें तो आंखों की शर्म होगी कि अरे किसी ने देख लिया कि मैं इतनी देर से घूर रहा हूं, पर ये डर ही नहीं है। इसका मतलब है कि को आपको वही चीज है कि एकदम नॉर्मलाइज। और ऐश्वर्या आई थिंक शुरू वहां से करना होगा, पार्लियामेंट के उतने डिबेट्स हो गए, आपके पास इतना एक बजट बन गया निर्भया फंड जिसमें कितना कहां खर्च हो रहा है वो भी समझ में आए, और उसके साथ साथ ये बदलाव।
5: मुझे लगता है सबसे ज्यादा श्वेता जरूरत जो इस समय है वो है पॉलिटिकल विल की। बट बड़ा सवाल है क्या किसी भी पार्टी में इतनी पॉलिटिकल विल है? हमने तो देखा है, हम देखा है कि हम भाई पार्टीज बदली हैं, एक पार्टी कोई भी या कोई एक बड़ा नेता या फिर कोई एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस कोई भी ये बोले कि भाई ठीक है इस आधे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हम कोई कॉर्पोरेट हाउस बोले कि भाई इतनी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम मेक श्योर करेंगे सीसीटीवी लगे। अच्छा मजे की बात क्या है, कई बार आप देखेंगे सीसीटीवी लगा है वो काम ही नहीं कर रहा, मेजोरिटी केसेस में सीसीटीवी लगे होते हैं बट वो काम नहीं कर रहे होते। बट मुझे लगता है हमें टोकना पड़ेगा। कई बार आप भी ऐसी जगह बैठी होंगी, मैं कई बार ऐसी जगह बैठती हूँ जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं ही अकेली महिला होती हूँ, तो हम आप बैठे हैं वहां पे जिस टाइप के जोक्स क्रैक होते हैं वो डिमीनिंग होते हैं, बट आप कई बार कुछ बोल नहीं पाते, खून का घूट पी के रह जाते हो बिकॉज आपको भी पता है मेजोरिटी।
6: और जो ऐश्वर्या तुम कह रहे हो ना कि जो पॉलिटिशियंस है पॉलिटिकल पार्टीज है वुमेन सेफ्टी उनके लिए एक स्कोर कार्ड है कि आप एक मैनिफेस्टो में बता देंगे कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, लेकिन हम सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं रह सकते ना। क्या हम सब जो पार्टीज कवर करते हैं जो रैलीज में जाते हैं क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्डर ने हमें अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाया है, क्या रैलीज में हमें सेफ लगता है? तो इसे सिर्फ एक ना मैनिफेस्टो में कह जाने वाली बात नहीं कीजिए, सच में ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने के लिए जो करना है वो करिए।
3: खासकर जब एक भीड़ होती है और वहां पर लोगों को लगता है किसी को पता नहीं चलेगा किसने छू दिया वहां पर ज्यादा, इसीलिए जो रैलीज की बात आप कर रही हैं, अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो सारे हो सकता है उसी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स उस टाइम हो सकता है उसमें लोग भी ऐसे घुस आए हो जो सोच रहे हो कि वहां मौके का फायदा उठाया जाए। ये सोच अब दिल्ली के जितने भी इलाकों से आपने लड़कियों की सुरक्षा से जुड़ा हमारा रियलिटी चेक देखा वो सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर ट्रैफिक या फिर लोग ना हो, इसके बावजूद हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके आधार पर कहा जा सके कि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित हैं।
10: कनॉट प्लेस राजधानी का दिल, रोशनी से भरा, भीड़ भाड़ वाला, आम लोग सुरक्षित कम से कम कागजों पर, लेकिन ध्यान से देखिए एक नजर एक और नजर, लगातार घूरना, लेकिन जैसे ही घूरने वाले पर ध्यान जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है। लड़कियों को घूरने की आदत महिलाओं की मानसिक शांति और उनकी आजादी को छीनने वाली हरकत है जिसे विजुअल हरासमेंट यानी नजरों से की जाने वाली छेड़खानी कहा जाता है। दिल्ली की सड़कों मेट्रो बसों और बाजारों में लगभग हर लड़की को रोजाना इस असहज कर देने वाले अनुभव से गुजरना पड़ता है। ये कई घटनाओं का मिला जुला असर होता है। देखना, रोकना, पीछा करना, पास आना, मना करना, लौटना और फिर से पूछना। सेंट्रल दिल्ली, मूलचंद, कनॉट प्लेस, वेस्ट दिल्ली, पटेल नगर, कीर्ति नगर, राजौरी गार्डन, जनकपुरी, तिलक नगर, साउथ दिल्ली, एम्स, लाजपत नगर, हौज खास। अलग अलग रिपोर्टर, अलग अलग जगह, अलग अलग पुरुष, अलग अलग पल, लेकिन व्यवहार का मूल पैटर्न एक जैसा है। और बेटियों को होने वाली पीड़ा के बारे में प्रियांशी से सुनिए।
11: ये तो नॉर्मल है बहुत ज्यादा, एवरीबडी इट हैज बीन नॉर्मलाइज सो मच दैट इट इज जस्ट नॉर्मल। सो व्हाट एक्सपीरियंस डिड यू? अभी भी हमने एक कैब बुक करा था लाइक एन ऑटो एंड देयर वर टू पीपल सॉर्ट ऑफ सिटिंग इन द ऑटो जो हमारे को बोल रहे हैं कि मैम आप हमारे साथ चल रहे हो, दारू पी के आए हुए हैं, एंड देयर लाइक आप हमारे साथ चल लो, देयर इज नो अदर वे। ऑटो में भी आप बैठो तो ऑटो का वो एडजस्ट करते रहते हैं। इट्स जस्ट लाइक व्हाट डू वी डू एज वुमेन? हम क्या गन्स लेके घूमे अब, क्या आप चलो ये करें या तो लाइसेंस कर दो गन्स वुमेन के लिए? लाइक समबडी इज किसी और के साथ हो रहा है, इफ आई हैव लाइक टू थ्री वुमेन विद मी देन ऑफ कोर्स आई वुड, बट नॉट लाइक कि मेरे साथ हो रहा है तो मैं जाके कन्फ्रंट कर रही हूं।
10: तो महिलाओं का सीधा सा सवाल है, महिलाओं पर पाबंदी की बात तो होती है लेकिन मर्दों के बर्ताव पर नकेल कैसे कसी?
11: मैन नीड टू डू बेटर, and men need to be raised better. That's the whole point of all of this. And men need to be raised better by their fathers, not just by their mothers.
0: और शायद यही असल बात है, क्योंकि अगर किसी लड़की पर कोई शारीरिक हमला नहीं होता तो अक्सर मान लिया जाता है कि कोई समस्या ही नहीं। लेकिन इसे नॉर्मल मान लेने की आदत महिलाओं के आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा खाए जा रही है।
11: A man was just sitting in front of me, rickshaw mein, so he was just continuously gazing and it was thoda sa uncomfortable for me, that's all.
12: And that's it, abhi aap yahan pe khade ho, nobody is staring at you, kahin se bhi aa rahe ho.
11: I think because I'm living here from last past, I think 3.5 years, and I've experienced a lot, I have, you know, learned to live in that way, you can say.
0: सोचिए, दिल्ली की एक बेटी इस माहौल में जीना सीख लेने को मजबूर है, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद कुछ नहीं बदलता।
11: I was traveling by metro, so it was really crowded and someone was trying to, you know, touch you inappropriately, like just to take advantage of the crowd. But then I kind of moved away, went to the another coach, but I could feel it, that bad touch, I could feel it, that someone was deliberately trying to touch me. Going in the park just for running, I feel that someone is going to follow me, so I just keep looking back just to make sure that no one is following me back home. So yeah, it's like a constant fear for me and I think other girls as well, living in Delhi.
0: सड़क पर घूरने वाली नजर का असर वहीं खत्म नहीं होता, ये महिलाओं का घर तक पीछा करता है।
5: अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं, कहां से शुरुआत करनी चाहिए कार्तिकी?
12: मुझे सच में नहीं पता कहां से शुरुआत करनी चाहिए। ये माइंडसेट है, लैक ऑफ एजुकेशन है, अपब्रिंगिंग

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात, सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
7: यार लोन भूल गया। मैरी
8: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
9: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
7: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
9: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
10: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
11: There's nothing small about it.
12: Ujjivan, nothing small about us.
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
15: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
16: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
17: इसे कैसे दिलाऊ मजा भगवान?
18: ये लो बस।
19: मजा! अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: आगे आगे,
2: अरे उधर
1: उधर,
2: करेक्ट करेक्ट,
3: मिल गया।
0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं, गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: चलो
3: मैं,
2: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो
4: सखी अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट,
2: बड़ी जल्दी सीख गई,
3: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
4: स्वाद सपनों का।
5: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
6: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको भारत के उस साहसी बेटे की दास्तां सुनाएंगे जिसे पूरी दुनिया आज झुककर नतमस्तक हो रही है और कह रही है जियो कप्तान। दुनिया को एक और 9/11 जैसे भयावह आतंकी हमले की तबाही से बचाने वाले भारत के जाबाज बेटे कैप्टन स्मिथ मच्छाड़ ने जो किया वो आज मिसाल बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कैप्टन स्मिथ की इस ऐतिहासिक और असाधारण बहादुरी को नमन किया है। आज आपको इस घटनाक्रम से जुड़े उन सवालों के जवाब भी देंगे जिनके जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमला करने वाले को पायलट का आखिर मकसद क्या था? क्या वो इस प्लेन को हाईजैक करना चाहता था या उस प्लेन को तत्काल वो क्रैश कराना चाहता था? आखिर इसराइल ने क्यों ऐसा दावा किया कि इस हमलावर ने जानबूझकर योग को आगे खींचा था ताकि फ्लाइट क्रैश हो जाए? आज एक और बड़ा सवाल यह है कि जिस समय पूरी दुनिया कैप्टन स्मिथ मच्छाड़ को सलाम कर रही है, उनकी बहादुरी के किस्से सुना रही है, उनके घर तक उनकी कुशलता जानने और तारीफ करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तब हमला करने वाले पायलट का नाम तक क्यों सामने नहीं आया? आखिर 174 लोगों की जान लेने की कोशिश करने वाला इतना तो तय है ना। अगर उसने हमारे भारतीय पायलट जो मेन पायलट थे कैप्टन स्मिथ मच्छाड़ उन पर कॉकपिट पे जो इमरजेंसी एक्ट होता है उससे हमला किया, धारदार हथियार से हमला किया, उनकी जान लेने की कोशिश की और विमान नीचे नोज डाइव कर रहा था, क्रैश होने ही वाला था, तो इतना तो तय है कि वो इस प्लेन को क्रैश कराना चाहता था, 174 लोगों की जान लेना चाहता था। आखिर उस पायलट का नाम, उसकी पहचान क्यों छिपाई जा रही है? आज आपको इस हमलावर द्वारा अल्लाहू अकबर का नारा लगाने का सच भी बताएंगे, क्योंकि आपने भी शायद अब तक सोशल मीडिया पर यह खबरें देखी है। आज एक और सवाल पूछा जा रहा है कि जिस ओमान के साथ इसराइल के राजनयिक संबंध भी नहीं है, उस देश का व्यक्ति आखिर इसराइल कैसे आ रहा था? दावा है कि हमला करने वाला को पायलट ओमान का है, जबकि इसराइल में उन्हीं देशों के पायलट्स आ सकते हैं जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध है या जिन्हें वो मंजूरी देता है। तो आखिर फ्लाई दुबई में ओमान का एक पायलट उस विमान पर कैसे था जो दुबई से तेल अवीव आ रही थी, इसके पीछे का रहस्य क्या है? और इसके बाद आपको बताएंगे कि सुपर पावर अमेरिका ने इराक का मैदान भी छोड़ दिया। 21 साल, दो दो दौर की जंग और हासिल क्या हुआ? शून्य। अफगानिस्तान तालिबान से लड़े, तालिबान को सत्ता सौंप के लौट आए। वियतनाम के बाद अब इराक से भी अमेरिकी सेना की विदाई हो गई, यानी इरबिल एयरबेस से भी अपने आखिरी दस्ते को रवाना कर दिया अमेरिका ने। सोचिए, जो देश, अगली खबर हम आपको जो दिखा रहे हैं, जो देश दुनिया को कच्चा तेल बेचता हो, जहां 11,000 करोड़ बैरल तेल का खजाना जमीन के नीचे दबा, क्या वो भी पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई से जूझ सकता है? यूएई में अचानक पेट्रोल डीजल के दाम 16% बढ़े हैं। हैरानी की बात यह है कि यूएई में आज डीजल भारत से महंगा है।
1: I need like $12,000 because there's just like a lot of stuff that I like really want to buy online.
0: और अब आपको कुर्ला स्टेशन से एक वीडियो दिखाते हैं जहां महिला कोच में महिलाओं को परेशान कर रहे एक व्यक्ति को यात्रियों ने रंगे हाथों दबोच लिया। फिर क्या था, गुस्साए लोगों और पुलिस ने मिलकर उस आरोपी के हाथ पैर बांधे, उसे रेलवे ओवरब्रिज से घसीटते हुए नीचे ले आए।
2: भाई
0: लेकिन आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहते हैं कि जिस कोपायलट पर तेलवीव जा रही फ्लाइट को क्रैश या हाईजैक करने का आरोप लग रहा है उसका नाम अब भी सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आरोप है कि ये कोपायलट ओमान का नागरिक है जो पिछले 8 महीने से यूएई की फ्लाई दुबई एयरलाइन में नौकरी कर रहा था और कई कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में था, लेकिन यूएई ने कहा है कि वो इन आरोपों पर अभी कुछ नहीं करेगा। यूएई के मुताबिक बहुत जल्द सऊदी अरब इस आरोपी को उसे सौंपेगा और उसके बाद दुबई में उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। यानी इसराइल इस मामले में सीधे कोई जांच नहीं कर पाएगा और ना ही अभी उसे इस कोपायलट की हिरासत मिलेगी। इसके अलावा इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि इस आरोपी का नाम आने वाले दिनों में भी बाहर आएगा और इसके पीछे कारण है यूएई का कानून। हालांकि इसकी कोई वजह नहीं दिखाई देती कि जिस पायलट ने हमला किया है या फिर हमलावर पायलट, उसकी पहचान अभी तक इस घटना के इतने घंटों बाद तक क्यों छिपा कर रखी जा रही है। हमें भी इंतजार है कि किसी ना किसी तरह से या तो एयरलाइन की तरफ से या फिर कोपायलट से या जो अन्य लोग इस एयरलाइन में काम करते हैं या फिर जो यात्री सवार थे, क्या जो अन्य क्रू मेंबर्स थे, क्या किसी के हवाले से इसका नाम आएगा। लेकिन अभी तो देखिए यूएई का मामला क्या है। यूएई का कानून कहता है कि जो लोग आतंकी गतिविधियों से जुड़े अपराधों में गिरफ्तार होते हैं उनका नाम और पहचान तब तक सार्वजनिक नहीं होते जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाएं। सीएनएन ने भी अपनी आज शाम की एक रिपोर्ट में यह लिखा है कि यूएई ने आधिकारिक तौर पर जांच पूरी होने तक समय से पहले की अटकलों और बिना पुष्टि के पहचान उजागर करने पर सख्त हिदायत दी है जिसका पालन पूरी दुनिया का मीडिया कर रहा है। और आप इसका मतलब समझिए, सूत्रों के हवाले से या इसराइल के दावों में एक बार के लिए इस कोपायलट का नाम बाहर आ भी सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप से यूएई अपने कानून के तहत इसको पायलट का नाम अपनी जांच पूरी होने तक कभी सार्वजनिक नहीं करेगा। और इस बात की अभी इसराइल का मीडिया खूब आलोचना भी कर रहा है। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इन सब के बीच क्या यूएई वाकई इसको पायलट का नाम सामने रखेगा या फिर जांच पूरी होने तक नाम नहीं आने देगा। अभी तो ये एक सवाल बना हुआ है। यहां पश्चिमी मीडिया में कुछ विश्लेषक ऐसा भी लिख रहे हैं कि अगर आरोपी का नाम और उसकी पहचान सार्वजनिक होती है तो इससे उससे जुड़ा आतंकी नेटवर्क और स्लीपर सेल एक्टिव हो सकता है जिसके कारण इस कोपायलट का नाम अब तक बाहर नहीं आया। आपको भी अजीब बात लग रही हो, जब पश्चिमी देशों में कोई आतंकी हमला होता है या आतंकी हमले की कोशिश होती है तो उसमें शामिल आरोपियों की पहचान तुरंत सार्वजनिक की जाती है। भाई ये तो माना ही जाता है कि जो अपराधी है उसको नेम शेम करने की जरूरत है, उसकी पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन इसराइल के मामले में कई बार ऐसा हुआ है जब हमलावरों की पहचान को गोपनीय रखा गया और इस बार भी ऐसा ही करने के आरोप लग रहे हैं और अब तो इस मामले की जांच भी यूएई को मिलने वाली है। हमारे पास इस घटना का वीडियो है जिसमें मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के घायल होने के बाद कुछ यात्रियों ने इस को पायलट को दबोच लिया था और उसके हाथ पैर बांध दिए थे। वो पूरी बात भी बता रहे हैं, देखिए। हमारे पास इस घटना के कई नए वीडियो आए हैं जिनसे ये पता चलता है कि दुनिया इसे 9/11 जैसे हमले की कोशिश आखिर क्यों बता रही है। इनमें भी सबसे खतरनाक वीडियो ये है जिनमें उस वक्त का खौफनाक मंजर कैद हुआ जब विमान महज 2 मिनट के अंदर 34,000 फीट की ऊंचाई से 14,000 फीट तक नीचे गिर गया और इस दौरान विमान के अंदर चारों तरफ यात्रियों की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। सुनिए।
2: שקט, שקט, די, די.
0: कुछ और तस्वीरों में मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मचार खून से लथपथ नजर आते हैं, जिन्होंने इस फ्लाइट को क्रैश होने से बचाया। और आज पूरा देश कह रहा है जियो कैप्टन। जब कुछ यात्रियों ने आगे आकर को पायलट को दबोचा, तब कैप्टन स्मिथ मचार का लगातार खून बह रहा था और वो दर्द से कराह रहे थे। उनकी जान बचाने के लिए इसी फ्लाइट में मौजूद एक डेंटिस्ट आगे आए, जिन्होंने सबसे पहले उन्हें एक मास्क लगाया, उनसे बात करने की कोशिश की ताकि वो बेहोश ना हो और उनकी जान को खतरा ना बढ़े। देखिए,
2: תצלם גם אותנו, את עצמנו, שאנחנו שומרים פה. תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס ש...
3: תקפו אותנו עכשיו, במטוס הזה, עשו לרצוח את הטייס, והשתלטנו על הצוות.
2: למה?
4: זה הטייס
2: שרצו לרצוח.
0: सोचिए विमान के अंदर की क्या स्थिति रही होगी, भयावह स्थिति थी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि कैप्टन स्मिथ मचार की हालत अब स्थिर है और राहत की बात यह है कि उनका इलाज सऊदी अरब के तबूक में चल रहा है और पूरी दुनिया आज उनको हीरो कह रही है। हम सबको उन पर गर्व है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ कह रहा है जियो कैप्टन। 174 लोगों की जान बचाना, अपनी जान को ताक पर रखकर किसी तरह से चोटिल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलना, सोचिए अगर उन्होंने ये हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज मैं आपके सामने क्या खबर पड़ रही होती। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की असाधारण बहादुरी को सलाम करते हुए ये कहा है कि उन्होंने दुनिया को एक और 9/11 जैसी भयानक त्रासदी से बचा लिया है। इजराइल के राजनयिकों और नेताओं ने भी ये कहा है कि इजराइल इस भारतीय पायलट का हमेशा कर्जदार रहेगा। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कैप्टन स्मिथ मचार असली हीरो हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी तबाही को होने से टाल दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि कैप्टन स्मिथ मचार पर पूरे भारत को गर्व है और दुनिया उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है। कैप्टन स्मिथ ने जो किया है, एक बार को सोचिए, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज मैंने अपने शो में अनेकों पायलट से बात की, वो कह रहे थे कि हम अगर ऐसी स्थिति में फंसते तो हमारे हाथ पांव फूल जाते, ये मुमकिन ही नहीं था कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी, वो ऐसा धारदार हथियार होता है। स्क्रीन पर आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये एक्स होता है, ये इमरजेंसी एक्स होता है, कॉकपिट के अंदर होता है, ऐसी धारदार हथियार है जिससे किसी की तुरंत मौत हो सकती है। लेकिन इससे बार बार हमला किया उस शख्स ने, कैप्टन स्मिथ मच्छार पर, बावजूद इसके चोटिल होने के बावजूद वो लड़ते रहे उस को पायलट से और किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब हुए। उन्होंने स्क्वॉक 7700 का जो मैसेज भी था हाईजैकिंग का, वो भी उन्होंने टाइप करके भेजा। कल्पना कीजिए ऐसी भयावह स्थिति, अगर उनकी सूझबूझ, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत उन्होंने नहीं दिखाई होती तो जैसा मैंने पहले आपको कहा, आज मैं कुछ और ही खबर पढ़ रही होती। जब विमान 34,000 फीट की ऊंचाई से 14,000 फीट तक नीचे गिर गया था और कॉकपिट के अंदर खून बह रहा था, तब भी कैप्टन स्मिथ ने आपा नहीं खोया। चाकू या कुल्हाड़ी के वार सहते हुए भी उन्होंने विमान को स्थिर रखने की कोशिश की, कॉकपिट का दरवाजा खोलकर ऐसा साहस दिखाया, क्योंकि अगर कॉकपिट का दरवाजा लॉक रह जाता तो फिर कोई ताकत उसको बाहर से खोल नहीं पाता, बहुत मुश्किलें आती। लेकिन उन्होंने अंदर से कॉकपिट का दरवाजा खोला, बाहर बताया कि क्या हो, और जो साहस उन्होंने उन परिस्थितियों में दिखाया बहुत मुश्किल था। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही है।

0: זה מי שרצה לתקור אותו, מי שדקר אותו, לא שרצה.
1: יוהן?
2: He just, he hit me like...
1: No.
2: So many times. My hand, I can move, but I can't do this. I can't squeeze my hand.
0: זה משהו מסוכן.
3: हिंदुस्तान की शान भारत का कप्तान। जब भारत का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में जीतता है, तिरंगा लेकर मैदान में उतरता है, तो उस खिलाड़ी के साथ सिर्फ उसके परिवार या उसके शहर की उम्मीदें नहीं होती, उसके साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। और जब वो खिलाड़ी मेडल जीतता है, पोडियम पर खड़ा होता है, तिरंगा लहराता है, तो उसे एक पल में पूरी दुनिया भारत का नाम देखती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब जन गण मन वहां पर बजता है तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देश की ताकत होती है और हमें उस खिलाड़ी पर गर्व इसलिए नहीं होता कि उसने सिर्फ एक मेडल जीता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसने दुनिया के सामने भारत की पहचान को मजबूत किया है। अपने खून पसीने से उस स्टेडियम में पहुंचा और फिर उस पोडियम तक उसका सफर हुआ। क्रिकेट में भी हमने यही देखा है, जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उस जीत सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं होती, उस जीत के साथ करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, तिरंगा लिए सब सड़कों पर उतर जाते हैं। और इसी तरह जब कोई वैज्ञानिक दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो कोई कलाकार दुनिया के बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, या कोई सैनिक असाधारण साहस दिखाता है, तो ऐसी हर उपलब्धि भारत की छवि को दुनिया के सामने मजबूत करती है। और शायद यही बात कैप्टन स्मिथ के मामले में भी कही जा सकती है। जिस घटना में कैप्टन स्मिथ ने असाधारण साहस और सूझबूझ दिखाई, वो सिर्फ एक विमान में हुई एक घटना नहीं रह गई। उसने भारत से जुड़े एक ऐसे सवाल को भी दुनिया के सामने रखा कि संकट की घड़ी में एक भारतीय किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाता है। आज अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं तो ये केवल उनकी तारीफ नहीं है, ये उस भरोसे की भी बात है जो एक भारतीय की पेशेवर क्षमता, प्रोफेशनल एबिलिटी, धैर्य, साहस को लेकर पैदा होता है। और यही तो किसी देश की असली ताकत होती है, उसकी पहचान होती है। सॉफ्ट पावर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया भारत की फिल्में देखे, भारतीय खाना खाए या योग करे। सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि दुनिया भारत के लोगों को किस नजर से देखती है। और कैप्टन स्मिथ ने आज एक नया नजरिया जरूर दिया है। उन्होंने एक मुश्किल परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाई। सोचिए, इतने विदेशी नागरिकों की जान बचाई, अपनी जान को ताक पर डालकर दुनिया को भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसमें साहस है, धैर्य है, संकट के आगे डटकर खड़े होने का जज्बा है। और यही है असली सॉफ्ट पावर। यानी आज कैप्टन स्मिथ ने अपनी बहादुरी से भारत के लिए वो सम्मान हासिल किया है जो किसी मेडल से कम मूल्यवान नहीं है, और उन्हीं की वजह से आज दुनिया भारत की इतनी चर्चा कर रही है। और इसराइल तो यह कह रहा है कि वो भारत का हमेशा आभारी रहेगा। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए अब आप ये समझिए कि कल फ्लाई दुबई की इस फ्लाइट में क्या हुआ था और कैसे कैप्टन स्मिथ ने 174 यात्रियों की जान बचाई। देखिए, इस विमान का फ्लाइट नंबर यानी उड़ान संख्या FZ1073 था और इस फ्लाइट ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के लिए रात 3:05 पर उड़ान भरी थी। इस विमान को दो पायलट उड़ा रहे थे जिनमें मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मछार थे जो जून 2022 से लगातार फ्लाई दुबई एयरलाइन में कैप्टन पायलट की नौकरी कर रहे हैं, जबकि दूसरे को पायलट की पहचान को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि ये को पायलट ओमान से था और ओमान मिडल ईस्ट के उन देशों में शामिल है जिसके इसराइल के साथ राजनयिक संबंध है ही नहीं और ओमान इसराइल को एक राष्ट्र की भी मान्यता नहीं देता है। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि इस फ्लाइट में कुल 174 यात्री मौजूद थे जिनमें 166 यात्री इसराइल के नागरिक थे और इसी वजह से अभी इसराइल इस घटना को एक आतंकी हमले की साजिश बता रहा है। उसका आरोप यह है कि ओमान के एक मुस्लिम को पायलट ने ऐसी फ्लाइट को क्रैश या हाईजैक कराने की कोशिश की जिसमें उसके यहूदी नागरिक यात्रा कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि जब इस फ्लाइट ने उड़ान भरी तब सब कुछ सामान्य था। इस फ्लाइट को 3:15 में दुबई से तेल अवीव पहुंचना था और घटना के वक्त 2 घंटे की उड़ान पूरी हो चुकी थी और विमान लगभग 34,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर था। इस ऊंचाई का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर विमान या उसके इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो पायलट के पास स्थिति को संभालने और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने का पर्याप्त समय होता है। और यहां भी ये विमान रिलैक्स मोड में था। विमान के अंदर यात्रियों की सीट बेल्ट खुली हुई थी। इसी के बाद जब ये फ्लाइट अपने 2 घंटे पूरे कर चुकी थी तब कॉकपिट से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आरोप है कि ये वही समय था जब ओमान के को पायलट ने 34,000 फीट की ऊंचाई पर मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मछार पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि यह हमला एक पेन या छोटी उंगली जितने चाकू से हुआ जो ओमान का को पायलट अपने साथ छिपा कर लाया था। लेकिन अब CBS न्यूज का दावा है कि यह हमला फायर एक्ट से किया गया जो एक तरह की कुल्हाड़ी होती है, यानी कॉकपिट के अंदर ही अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपातकालीन स्थिति के लिए जो कुल्हाड़ी लगाई जाती है उसे CBS न्यूज के मुताबिक ओमान के को पायलट ने तोड़कर निकाला और उससे मुख्य कैप्टन स्मिथ मछार पर हमला कर दिया। और इस दौरान जब कॉकपिट में यह घटना हो रही थी तब अंदर बैठे यात्री और क्रू मेंबर्स इस शोर को सुन रहे थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा है। आरोप है कि कैप्टन स्मिथ मछार को घायल करने के बाद इसको पायलट ने विमान के कंट्रोल्स को नीचे की तरफ धकेल दिया, यानी ये प्लेन क्रैश हो जाए ऐसी स्थिति पैदा कर दी। ऐसा करने से ये विमान अचानक सीधी नाक के बल यानी नोज डाइव करते हुए नीचे गिरने लगा। यहां यह भी समझिए कि यह विमान खुद अपने आप नीचे की तरफ नहीं आ सकता। यह तभी संभव है जब इसको पायलट ने कॉकपिट में लगे कंट्रोल योक को आगे की तरफ धकेल दिया। जब ऐसा होता है तो विमान के पीछे के पंखे यानी जो एलिवेटर्स और स्टेबलाइजर्स का एंगल है वो बदल जाता है और हवा के दबाव के कारण विमान की नाक नीचे झुक जाती है। और यहां भी हो सकता है कि ऐसा ही हुआ, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू आरोप लगा रहे हैं कि ओमान का को पायलट इस फ्लाइट को क्रैश कराना चाहता था। यात्रियों के ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए, विमान बुरी तरह हिलने लगा, यात्रियों को लगा कि अब उनकी जान जाने वाली है। बड़ी बात यह है कि कॉकपिट में जब मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मछार पर हमला हुआ तब उनकी आवाजें और धक्का मुक्की अंदर बैठे यात्री महसूस कर पा रहे थे। अब यहां इसी मौके पर घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मछार ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए पूरी दुनिया आज उन्हें अपना हीरो कह रही है और हम सबको गर्व है कि वो भारतीय है। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को स्क्वॉक 7700 का सिग्नल भेजा, जिसका मतलब होता है ट्रैफिक कंट्रोल को यह बताना कि विमान किसी मुसीबत में है। सुबह 5:31 पर इस सिग्नल को भेजा गया और इसके सिर्फ 11 मिनट बाद एक और सिग्नल भेजा गया जिसे स्क्वॉक 7500 कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि विमान हाईजैक हो गया है या हाईजैक होने वाला है। जैसे ही इंटरनेशनल एयर स्पेस में हाईजैक का सिग्नल मिला उसके तुरंत बाद दुबई से लेकर इसराइल तक खलबली मच गई और इसराइल की वायुसेना के सुरक्षा के मद्देनजर अपने लड़ाकू विमानों को हवा में इस फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए रवाना कर दिया। इसी बीच लहूलुहान हालत में कैप्टन स्मिथ मछाल ने बहादुरी दिखाई और वो अंदर से कॉकपिट का दरवाजा अनलॉक करने में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और बहुत बड़ी बहादुरी का कदम था। ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान नहीं था। कॉकपिट का दरवाजा अंदर से लॉक था, वो लहूलुहान थे, उन पर हमला किया जा चुका था, बावजूद इसके उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा किसी तरह से हिम्मत दिखाते हुए खोल दिया। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद दुनिया भर के यात्री विमानों और खासकर बोइंग 737 के कॉकपिट दरवाजों को बुलेट प्रूफ और ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है जिसे हाईजैकर कॉकपिट में दाखिल ना हो सके। लेकिन किसे पता था कि अंदर बैठा कोई पायलट ही ऐसी हरकत करने वाला था। यह दरवाजा किसी सामान्य चाबी या हैंडल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच या टॉगल स्विच द्वारा नियंत्रित होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बोइंग विमानों में कॉकपिट के गेट को खोलने का यह स्विच को पायलट की सीट की तरफ होता है, यानी को पायलट जिसने मारा था उसी की सीट की तरफ कंट्रोलर था। यानी यहां इस घटना में कॉकपिट को खोलने का स्विच ओमान के को पायलट की तरफ था और इस दौरान कैप्टन स्मिथ मछार घायल हालत में, उनके सिर में चोट लगी थी, उनके हाथ में, उनके छाती, पेट पर कुल्हाड़ी से हमले के कारण खून बह रहा था। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से लहूलुहान थे, आसपास खून फैला था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ओमान के को पायलट के पीछे धकेल कर चोट लगे होने के बावजूद ताकत और हिम्मत दिखाई, ओमान के को पायलट को पीछे धकेला और जो कॉकपिट का गेट है उसे खोलने में वो कामयाब रहे और वो तुरंत बाहर निकलते ही नीचे गिर गए। कॉकपिट का गेट खुलते ही क्रू मेंबर्स और विमान में सवार कुछ यात्री कॉकपिट के अंदर घुस आए। उन्होंने हमलावर को पायलट को कसकर दबोच लिया और उसे बांधकर काबू में किया। इस हाथापाई के दौरान कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई और इनमें भी जो यात्री 16वीं रो से बैठकर उठकर आया था उसकी सूझबूझ ने भी विमान को क्रैश होने से बचा लिया। इस यात्री का नाम है यानीव हायून, जो पेशे से एक प्लम्बर है और यही व्यक्ति सबसे पहले कॉकपिट में दाखिल हुआ था। फॉक्स न्यूज के मुताबिक इसने सबसे पहले ओमान के को पायलट का गला दबोचा, उसे कंट्रोल पैनल से घसीटकर बाहर किया और इसके बाद जब हायून ने यह देखा कि कॉकपिट में कोई भी कंट्रोल पर नहीं है और विमान तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है तो उसने मुख्य कंट्रोल स्टिक यानी विमान के कंट्रोल योक को अपने हाथों में ले लिया और विमान का अगला हिस्सा उठाकर उसे सीधा कर दिया। यानी हायून का कहना है कि उसने कभी विमान उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी लेकिन क्योंकि वो क्रैश होने वाले विमानों पर बना एक टीवी शो देखता था इसलिए उसे पता था कि जब विमान नीचे जा रहा हो तब उसके कंट्रोल योग को अपनी तरफ खींचना चाहिए और यहां भी उसने यही किया, विमान स्थिर हो गया। इसके बाद जो विमान तेजी से नीचे गिर रहा था उसे इसी विमान में सफर कर रहे एक पायलट ने सूझबूझ से संभाला, उसकी नाक ऊपर उठाई, जो नोज डाइव कर रहा था उसे ऊपर की तरफ बैलेंस किया, विमान को फिर से एक सुरक्षित ऊंचाई पर लाकर स्थिर कर दिया जिससे ये विमान क्रैश होने से बच गया। इसके अलावा जब ये सब कुछ हो रहा था तब विमान में मौजूद इसराइल के एक डेंटिस्ट ने कैप्टन स्मिथ मछार की जान बचाने की कोशिश की, उनके शरीर से जो खून बह रहा था उसे रोकने की कोशिश की। और क्योंकि इस पूरी घटना के वक्त फ्लाई दुबई का यह विमान जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा के पास था, कैप्टन स्मिथ मछार भी गंभीर रूप से घायल थे, इसीलिए इसराइल जाने के बजाय इस विमान को सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। और अब पूरी दुनिया कह रही है कि अगर कैप्टन स्मिथ मछार नहीं होते तो शायद 174 यात्रियों की जान खतरे में होती, 9/11 जैसी ये दूसरा बड़ा हमला कोई नहीं रोक पाता। देखिए आज भी बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि कैप्टन स्मिथ का सपना कभी भी पायलट बनने का नहीं था। स्कूल के बाद उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी और इनका इरादा था कि वो आगे चलकर परिवार के कपड़ों के कारोबार को संभालें और उन्होंने अपने भविष्य को लेकर सब कुछ पहले से तय किया हुआ था। लेकिन एक दिन इसी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वो अपने दोस्तों के कहने पर एक सेमिनार में शामिल होने गए जो एविएशन यानी विमानों के बारे में था। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। वो सेमिनार में बताई गई बातों से इतना प्रभावित हो गए कि उन्हें विमान उड़ाने पायलट बनने की ठान ली उन्होंने। उनकी मां शुरुआत में इस फैसले को लेकर चिंतित थी लेकिन किसी तरह कैप्टन स्मिथ ने अपने परिवार को भी राजी कर लिया और बच्चों की खुशी के सामने आखिरकार माता पिता राजी हो ही जाते हैं और फिर वो पढ़ने के लिए पायलट बनने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गए। अब उन्होंने न्यूजीलैंड में मेनलैंड एयर से फ्लाइट ट्रेनिंग की। जब ट्रेनिंग के बाद वो भारत लौटे तो उनकी पहली उड़ान बेंगलुरु से दिल्ली की थी। अपने शानदार अनुभव और अनुशासन के कारण वो 2022 में फ्लाई दुबई के डायरेक्ट एंट्री कैप्टन बने और मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गए। बड़ी बात यह है कि उन्होंने 2025 में एक पॉडकास्ट में उन्हीं परिस्थितियों का जिक्र किया था जिनका सामना उन्होंने कल फ्लाई दुबई की फ्लाइट में किया था। एक बार उस बयान को भी सुनिए और यह भी सुनिए कि इसराइल के सोशल मीडिया पर उन्हें हीरो बताते हुए खूब वीडियोज आज बनाए जा रहे हैं।
4: when we are up there and if something happens, you know, who's going to save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
5: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the Fly Dubai flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. And despite being severely wounded and covered in blood, he kept fighting. With what Israeli officials describes as some of his last remaining strength, he managed to release the cockpit door, allowing passengers and crew to rush inside, overpower the attacker, and ultimately regain control of the aircraft. More than 170 people made it home because of Smit. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist, and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted, and we will never forget it.
3: कैप्टन स्मिथ पर जिस co-pilot ने हमला किया था, उसे लेकर कई दावे पश्चिमी मीडिया और इजराइल के मीडिया में भी किए जा रहे हैं. जैसे इसराइल के चैनल 16 से बात करते हुए फ्लाई दुबई के एक दूसरे पायलट ने ओमान के को पायलट के बारे में यह दावा किया है कि वो बहुत ज्यादा धार्मिक था और कट्टर व्यवहार करता था. वो महिलाओं से हाथ मिलाने से इनकार करता था. ये उस वही शख्स है इसके हाथ बांध दिए थे इन लोगों ने. इसका भी इलाज किया गया है. कुछ महिला सहकर्मी भी उसे बता रहे हैं कि उसे धार्मिक कट्टरपंथी वो कहती हैं, और कई बार वो दिन में नमाज की बातें भी करता था. और यहां हम इस बात को साफ करना चाहते हैं कि हम इस को पायलट के नमाज पढ़ने को गलत नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर उनके साथ काम करने वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये उनका नजरिया था. उसको लेकर उन्होंने इस को पायलट के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. जो लोग भी इनके साथ काम करते थे उन्होंने इस को पायलट के रवैये पर ऐसे सवाल खड़े किए हैं. इसके अलावा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नतन्याहू ने भी कहा है कि ये को पायलट इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था. इसके बारे में उन्हें कई ऐसी पुख्ता बातें पता चली. यहां फ्लाई दुबई में काम करने वाले कर्मचारी नाम ना बताने की शर्त पर ये सवाल भी उठा रहे हैं कि एयरलाइन ने ओमान के को पायलट की ड्यूटी इसराइल जाने वाले विमान के कॉकपिट में आखिर कैसे लगाई और आखिर इसे मंजूरी मिली कैसे. तो समझिए, इसराइल जाने वाले विमानों को उन्हीं देशों के पायलट ऑपरेट कर सकते हैं जिन्हें इसराइल मंजूरी देता है या जिनके इसराइल के साथ राजनयिक संबंध है. जबकि इसराइल और ओमान के बीच कट्टर दुश्मनी मानी जाती है और ओमान एक मुस्लिम देश है जो इसराइल को एक देश मानता ही नहीं. यहां बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इस घटना के दौरान अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया गया था. ये बीबीसी की रिपोर्ट का दावा है. हालांकि बीबीसी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि यह नारा आरोपी को पायलट ने ही लगाया था. लेकिन इसराइल का मीडिया लिखता है कि इस फ्लाइट में बाकी यात्री इसराइल से ही थे, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि यह नारा इसी को पायलट ने लगाया हो. हालांकि हम अपनी तरफ से पुष्टि नहीं करते. इस फ्लाइट में जो कुछ भी हुआ वो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था. लेकिन जिंदगी और मौत की इस जंग के बीच 5 रियल लाइफ हीरोज खड़े थे जिन्होंने इस खूनी हमले के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना अदम्य साहस, सूझबूझ और धैर्य का परिचय दिया. और आज अगर 174 यात्रियों की जान बची है, वो अपने घरों को सुरक्षित लौटे हैं, तो हमने सोचा कि इन 5 हीरोज की पहचान जरूर करनी चाहिए. सबसे पहले वही नायक जिसके सामने आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है, कैप्टन स्मित मच्छार, मेन पायलट. भारत के स्मित मच्छार, मुंबई के रहने वाले सीनियर कमर्शियल पायलट स्मित अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दुबई में रहते हैं. उन्होंने 2008 से 2009 में न्यूजीलैंड से अपनी एविएशन ट्रेनिंग पूरी की थी. इस घटना के दूसरे बड़े हीरो हैं इसराइल के रहने वाले एक साधारण से प्लम्बर यानूव हायून. शोर और चीख पुकार सुनने के बाद वो सबसे पहले कॉकपिट के अंदर घुसे। वो कॉकपिट से काफी दूर 16वीं रो में बैठे थे। जैसे ही कैप्टन स्मिथ ने दरवाजा अनलॉक किया, यानी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए, बिना डरे अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि हमलावर कंट्रोल व्हील दबाकर विमान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। यानीव ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पीछे से दबोचा, उसका गला दबाते हुए उसे कंट्रोल सीट से खींचकर कॉकपिट में बाहर किया। विमान उड़ाने का कोई अनुभव ना होने के बावजूद उन्होंने विमान के योक यानी कंट्रोल हैंडल को पीछे की ओर खींचा, जिससे तेजी से नीचे गिरता विमान थोड़ा समतल हो सका। उन्होंने बताया कि हवाई हादसों पर आधारित एक टीवी शो वो देखते हैं, मे डे, और उन्होंने मे डे टीवी शो में देखा था कि गिरते विमान को कैसे सीधा करते हैं, और उन्होंने वही किया। जब वो विमान से बाहर निकले तो उनकी कमीज खून से सनी हुई थी।
6: אני והוא תחפנו את הדלת, הטייס שהיה דקור היה פשוט מאוד סמוך לדלת, אז היה קשה לנו לפתוח אותה, אבל נראה לי לפי דעתי, מסקנה שלי,
7: אני חושב שהוא פתח, הוא פותח, הוא צריך להגיע למעלה, לא?
6: לפני שהוא התמוטט.
7: לפני שהוא התמוטט, הוא הצליח.
6: הוא הצליח.
7: התושייה גדולה.
6: כשנכנסתי, ראיתי את המפגע על המכשירים בין שני...
3: इस घटना के तीसरे हीरो हैं ज़्विका मानेस। वो इसराइल के प्रमुख बैंक बैंक ल्यूमी की अंडरराइटिंग ब्रांच के सीईओ हैं। हमलावर को शारीरिक रूप से काबू करने और बांधने की कमान संभालने वाले फाइटर। उन्होंने हमलावर को काबू करने में और बांधने में बहादुरी का जबरदस्त परिचय दिया। जब प्लेन में चीख पुकार मची थी और विमान के तेजी से नीचे जाने की वजह से लोग इधर उधर गिरने लगे, तब ये बैंकर बहादुरी से कॉकपिट की ओर भागे। कॉकपिट खून से पटा हुआ था, हमलावर बहुत आक्रामक हो चुका था। तब ज़्विका मानेस ने साथी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर पूरी ताकत से हमलावर को दबोचा, क्योंकि एक आदमी ये नहीं कर सकता था। जब बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं मिली, तब उन्होंने विमान में यात्रियों को बांटे जाने वाले जो हेडफोन के तार हैं और केबल्स हैं उसका इस्तेमाल किया और हमलावर को कसकर उनके हाथ बांधने थे ताकि वो दोबारा हमला ना कर सके। ये ज़्विका ने किया। इस घटना के चौथे हीरो हैं एक बिजनेसमैन असाफ राजवान। वो एक इंश्योरेंस एजेंसी के मालिक हैं और थाईलैंड में छुट्टियां बिताकर दुबई के रास्ते इस फ्लाइट से वापस लौट रहे थे। ये इस घटना में फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। जब वॉशरूम के पास से एक महिला की चीख सुनाई दी, तब वो समझ चुके थे कि प्लेन बेकाबू हो चुका है। आसमान में मौत को सामने देखते हुए भी वो घबराए नहीं। तुरंत ज़्विका मानेस और यानिव हायून के साथ कॉकपिट में घुसे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से हमलावर को पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया, सुनिश्चित किया कि 50 मिनट बाद जब तक आपातकालीन लैंडिंग नहीं हो गई, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई, हमलावर जरा भी हिल ना सके। उनकी सतर्कता ने कॉकपिट का कंट्रोल दोबारा क्रू और ऑफ ड्यूटी पायलट्स के हाथों में सुरक्षित रखा। और इस घटना के पांचवें हीरो हैं डॉक्टर शोता मुसायेव। ये पेशे से एक डेंटिस्ट हैं और इस विमान में मौजूद इकलौते मेडिकल पेशेवर थे। वो उस वक्त मौत से जूझ रहे भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए मसीहा बने। उन्होंने ही उनका इलाज किया। बुधवार को जब फ्लाई दुबई की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तो पूरे इसराइल की सांसें थम गई। इजरायली नागरिकों के जहन में एकाएक वो पुराना खौफनाक मंजर जिंदा हो उठा जिसने दशकों तक दुनिया के आसमान में दहशत फैला रखी थी। विमान अपहरण, हाईजैकिंग या क्रैश कराने की कोशिश की ये पहली घटना नहीं है। साल 1968 से 1986 के बीच का दौर इसराइल के लिए आसमान में मंडराते काल जैसा था। फिलिस्तीन, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों के कट्टरपंथी और आतंकी संगठनों ने इसराइल से जुड़ी कम से कम एक दर्जन से ज्यादा उड़ानों को निशाना बनाया या उन्हें अगवा करने की कोशिश की। इस खूनी खेल का सबसे चर्चित चेहरा बनी लैला खालिद। ये पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन की वो आतंकी है जिसने 1969 में रोम से तेल अवीव जा रही TWA की फ्लाइट को बंदूक की नोक पर सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर मोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये मसला इसराइल की जेलों से कई कैदियों के रिहाई के बदले सुलझा। जुलाई 1968 में इसी संगठन के तीन आतंकियों ने रोम से ही तेल अवीव जा रही फ्लाइट का अपहरण किया और उसे अल्जीरिया ले गए। इसराइल के इतिहास की एल अल एयरलाइन का यह इकलौता सफल अपहरण था जो 40 दिनों के भयानक बंधक संकट के बाद 12 इजरायली नागरिकों के बदले 16 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के साथ जाकर खत्म हुआ। सितंबर 1970 में आतंकवादियों ने एक साथ तीन विमानों का अपहरण किया। दो विमानों को जॉर्डन के डॉसन फील्ड और एक को काहिरा ले जाया गया। अमेरिकी और इजरायली यात्रियों को बंधक बनाकर लैला खालिद समेत चार आतंकियों को छुड़ा लिया गया। सोचिए। फिर मई 1972 में जापानी रेड आर्मी के तीन हमलावरों ने इसराइल के लॉर एयरपोर्ट पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अक्टूबर 1972 में लुफ्तांसा की फ्लाइट 615 को दमिश्क से टेक ऑफ के बाद अगवा कर लिया गया, जिसके बाद म्यूनिक ओलंपिक में मारे गए इजरायली एथलीट्स के कातिलों को छुड़ाने के लिए जर्मन सरकार को घुटने टेकने पड़े। एक के बाद एक 1976 जब एयर फ्रांस के अगवा विमान को युगांडा ले जाया गया, जहां तानाशाह ईदी अमीन ने आतंकियों का स्वागत किया। 100 से ज्यादा इजरायली और यहूदी बंधकों को बचाने के लिए इजरायली कमांडो ने ऑपरेशन एंटीबेकॉन जान दिया। इसी मिशन में इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अपने भाई योनी नेतन्याहू शहीद हुए थे। इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग सऊदी अरब के तबूक में हुई, लेकिन विमान के पहिए रनवे पर टिकते ही इंटरनेट से लेकर राजनीति के गलियारों तक एक भयंकर इन्फॉर्मेशन वॉर छिड़ गई। एक तरफ सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि यह कोई हमला नहीं है बल्कि इसराइल का ही रचा हुआ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी एक प्रायोजित नाटक है। दूसरी तरफ इसराइल और अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग संस्थानों ने इसे यहूदियों को बदनाम करने की एंटी सेमेटिक साजिश करार दिया। फॉल्स फ्लैग बताने वाले इसके पीछे अलग अलग तर्क देने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि इसराइल में 27 अक्टूबर को चुनाव है, 7 अक्टूबर 2023 के इंटेलिजेंस फेलियर से घिरे बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी नेशनल सिक्योरिटी की छवि चमकाने के लिए बड़े खतरे की जरूरत थी। सोचिए, इस घटना के बाद सऊदी अरब की मेडिकल टीम द्वारा इजरायली यात्रियों के इलाज की तस्वीरें आई। इसे लेकर कुछ लोगों ने दावा किया कि सऊदी अरब और इसराइल के रिश्तों को सहज बनाने के लिए यह ह्यूमैनिटेरियन बैकड्रॉप तैयार किया गया। जब इसराइल ने इसे 9/11 जैसा आतंकी हमले की साजिश बताया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि बिना जांच जल्दबाजी में ऐसा क्यों कहा गया, इसलिए यह फॉल्स फ्लैग है। लेकिन इन दावों के जवाब में यहूदी समर्थक कॉम्बैट एंटीसेमिटिज्म मूवमेंट और साइबर वेल की रिपोर्ट ने हैरान करने वाले आंकड़े सामने रखे। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के इमरजेंसी सिग्नल के सिर्फ 67 मिनट के भीतर एक्स पर पहली पोस्ट आई, जिसमें इसराइल मोसाद और नेतन्याहू पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया। 12 घंटे के भीतर 3000 से ज्यादा ऐसे पोस्ट हुई जिनमें फॉल्स फ्लैग कीवर्ड था और इन 82% पोस्ट में सीधे तौर पर इसराइल को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिर्फ 67 मिनट में किसी भी जांच का नतीजा आना असंभव है। यह साबित करता है कि फॉल्स फ्लैग का दावा किसी तथ्य पर आधारित नहीं बल्कि एक प्री रिटन स्क्रिप्ट थी जिसे मौका मिलते ही इंटरनेट पर छोड़ दिया गया ताकि पीड़ितों को ही अपराधी बनाया जा सके, इसराइल के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। हालांकि फॉल्स फ्लैग का आरोप लगाने वाले कुछ लोगों ने नेतन्याहू के बयान का सहारा लिया। उन्होंने शुरुआत में ही इस घटना के तार ईरान से जोड़ दिया और कहा कि अगली बार प्लेन हाईजैक हो तो बगल में इजरायली बैठा होना चाहिए। इस बयान पर इसराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू यात्रियों की जान को इलेक्शन प्रोपेगेंडा बनाकर चुनावी फायदा बटोर रहे। और अगली खबर का रुख करते हैं, जो देश दुनिया को कच्चा तेल देता हो क्या वहां पर पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो सकती है? आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो देश कच्चा तेल खरीदते हैं वहां की सरकारें जो हैं वो कीमतों में बढ़ोतरी करती हैं। लेकिन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16% की बढ़ोतरी हो गई है। सोचिए, जो देश कच्चे तेल के भंडार के मामले में दुनिया का छठा देश है, जिसके पास 11,000 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है, उसी यूएई में अब पेट्रोल करीब 104 रुपए लीटर, डीजल 125 रुपए लीटर मिल रहा है। पिछले चार वर्षों में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। इस वक्त पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से वहां के पेट्रोल पंप्स पर भी लाइनें लगी हैं। स्थानीय मीडिया का दावा है कि दुबई में आधे आधे घंटे लाइन में लगकर लोग टैंक फुल करवा रहे हैं। लगातार तीसरा महीना है जब यूएई में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आज खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच में, उसकी वजह से हॉर्मूज जिस तरह से बाधित है, वहां पर देखिए असर क्या हो रहा है और कैसे आज भी अगर खाड़ी के देशों में, अगर मिडिल ईस्ट के देशों में कीमतें ऐसी बढ़ रही हैं तो बाकी दुनिया में भारत जैसे देश अन्य देशों पर इसका प्रभाव कैसे आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ये सोचने वाली बात है कि जो देश कच्चे तेल का उत्पादन करता है उसे बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है, उसके यहां पेट्रोल 104 रुपए, डीजल 125 रुपए लीटर है, जबकि अगर आप देखिए तो अन्य देशों में कीमतें कम है। अब भारत में आप देखिए अपनी जरूरत का 80-85% कच्चा तेल हम खरीदते हैं। यहां पर कीमत हमारी पेट्रोल की लगभग उतनी ही है जितनी इस वक्त यूएई में है, 102 रुपए लीटर, और डीजल करीब 95 रुपए लीटर मिल रहा है। अब सवाल यह है कि यूएई में कच्चे तेल के भंडार होने के बावजूद जो पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर क्यों बढ़ाए गए, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम समझेंगे कि अब भारत में क्या कीमतें और बढ़ सकती हैं, क्या उसका असर अब भारत तक पहुंच सकता है। देखिए, दरअसल यूएई पेट्रोल डीजल की घरेलू कीमतों को अपने कच्चे तेल के उत्पादन की लागत के आधार पर तय नहीं करता है, बल्कि उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा है। यानी जिस तरह से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से तय होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं, ठीक वैसे ही व्यवस्था जो आप देखें यूएई ने भी ऐसा ही बनाया हुआ है। इसके अलावा यूएई में कच्चे तेल के दाम कुछ हफ्तों को औसत के आधार पर तय होती है, इसीलिए बढ़ोतरी का असर देर से दिखता है लेकिन होता है। इस तरह से यूएई में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह वही है जो पूरी दुनिया में है। पहली वजह कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, उसमें इजाफा जो पिछले एक महीने में 90 से $100 प्रति बैरल तक बढ़ी है। अब इसका असर धीरे धीरे अन्य देशों में भी पड़ सकता है और भारत के लिए भी ये वक्त है जब हम सबको सतर्क रहना होगा। दूसरी वजह, ईरान युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना, इस वजह से कच्चे तेल का व्यापार कम हुआ है जिससे आपूर्ति रुकी है, कीमतों पर असर पड़ा है। और तीसरी वजह है सऊदी अरब के तेल ठिकानों और लाल सागर में हूती के हमले, जिससे कच्चे तेल के व्यापार जो है वो दूसरा मार्ग भी प्रभावित हुआ है और आपूर्ति बाधित हुई है। इसी का असर यूएई पर पड़ा, इसी वजह से उन्हें भी पेट्रोल डीजल की घरेलू कीमतें बढ़ानी पड़ी। अमेरिकी सेना युद्ध के एक लंबे दौर के बाद एक और मैदान छोड़कर भाग गई। जी हां, ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका को इतना भारी पड़ रहा है कि इराक में उसे अपने पुराने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। करीब 12 साल से इराक में आईसिस के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चला रही अमेरिकी सेना का आखिरी दल कल इराक से रवाना कर दिया गया। हालांकि इस कदम का ऐलान करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, गलत फैसलों की वजह से अमेरिकी सेना लंबे समय से एक दलदल में फंसी हुई थी, लेकिन अब यह इतिहास बन गया है। अमेरिकी सेना के हर पन्ने में जब आप देखिएगा विदेश की, मतलब किसी भी दूसरे देश की धरती पर उनके ऑपरेशंस को, तो आखिर में उनकी रुखसती ऐसे ही होती है। उन्होंने इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी को चुनाव जीतकर नई शुरुआत के लिए बधाई दी और अमेरिकी जनता को याद दिलाया है कि साल 2003 में जॉर्ज बुश के कार्यकाल में अमेरिकी सेना को वहां उतारा गया था, फिर बराक ओबामा और जो बाइडेन के कार्यकाल में भी उसे जारी रखा गया, लेकिन अब उनके कार्यकाल में यह खत्म हो गया है और यह इराक और आईसिस पर अमेरिका की एक बड़ी जीत है। अमेरिका और अमेरिकी सेना आईसिस की वजह से पिछले करीब 12 वर्षों से इराक में, और इस दौरान उसने पहले सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करवाया, फिर इसके बाद आईसिस के खिलाफ जंग लड़ी। साल 2003 में सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट के लिए जॉर्ज बुश के आदेश पर अमेरिकी सेना इराक में उतरी थी। इसके बाद साल 2006 में सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, फिर 2011 में अमेरिकी सेनाओं को वापस बुला लिया गया, लेकिन अमेरिकी सेना के जाते ही आईसिस का आतंक शुरू हो गया और 3 साल बाद 2014 में अमेरिकी सेना फिर से इराक में उतर गई। साल 2019 में आईसिस चीफ अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद अमेरिकी सेना ने 2024 तक इराक की सेना को ट्रेनिंग दी ताकि वो प्राइवेट मिलिशिया से लड़ सके, और साल 2024 में यह तय हुआ कि अमेरिकी सेना धीरे धीरे इराक में अपनी मौजूदगी कम करेगी। इराक से जाने की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से हो रही थी जिसमें सारे अमेरिकी सैनिक अपने देश लौट गए। आखिरी चरण में इरबिल एयरबेस से सैनिकों की वापसी हुई है, ये वही एयरबेस है जिस पर ईरान भी हमले कर चुका है। इराक में सेना की मौजूदगी पर अमेरिका को भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ रहा था, जंग में 172 लाख करोड़ रुपए ये से ज्यादा खर्च हो चुका था। अमेरिकी सेना की ये वापसी उसकी एक हार की तरह देखी जा रही है, क्योंकि इराक में अभी भी आतंकी संगठनों और प्राइवेट मिलिशिया का खतरा सरकार के ऊपर बना हुआ है। लेकिन ईरान युद्ध ने अमेरिका को भागने के लिए मजबूर कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सेना किसी मिशन को बीच में छोड़कर ऐसे भागी। इससे पहले 2 अन्य युद्ध जिसमें अमेरिकी सेनाएं उतरी लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ और वापस चली गई। साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से भी ऐसे ही भागी थी। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ उसने 20 साल का लंबा युद्ध लड़ा, फिर तालिबान को सत्ता सौंप कर वापस चली गई। जिस तालिबान से लड़े उन्हीं को सत्ता सौंपी और निकल लिए। 1965 के वियतनाम युद्ध में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इस युद्ध में अमेरिकी सैनिक करीब 8 साल फंसे रहे, फिर बिना कुछ हासिल किए वापस चले गए। अमेरिकी सेना की वापसी का आखिरी चरण खत्म होने के बाद इराक में जश्न का माहौल है। बगदाद में लोग सड़कों पर उतरकर खुशी से रैलियां निकाल रहे हैं। वो इस बात से खुश है कि आखिरकार अमेरिकी सेनाएं उनके देश से निकल गई। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही जैम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैं करता हूँ ना,
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
5: एक दो, एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट
1: तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
7: जेके वॉल मैक्स।
5: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: आगे आगे,
10: अरे उधर
9: उधर, करेक्ट करेक्ट,
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: इन एसोसिएशन विद
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
6: उत्तर प्रदेश और हमारे तराई का क्षेत्र एक सुरक्षित क्षेत्रों में से गिना जाता है, देखा जाता है। ये जो न्यू उस समय रखी थी, अलग विषय है कि बीच के कालखंड में फिर यह अराजकता की चपेट में आया। एक लंबे समय तक उन चुनौतियों से हमें जूझना पड़ा। प्रदेश के सामने पहचान का संकट आया, लेकिन एक लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि सम और विषम परिस्थितियों में उसको निर्णय लेने की सामर्थ्य, पूरी टीम को मोटिवेट करके उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करने की उनकी सामर्थ्य, और वही परिणाम देती है। और वह परिणाम उस समय देखने को मिल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर।
7: देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का फाइन लगाया है, 10 लाख का, और इससे पहले एक जिलाधिकारी पे भी लग चुका है फाइन। और अगर पूरा रिकॉर्ड उठाएंगे 10 साल का, कभी हाई कोर्ट ने, कभी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए पुलिस पर, और पुलिस ने जैसा व्यवहार किया उत्तर प्रदेश में आप कल्पना नहीं कर सकते। फर्जी इनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे। और सोचिए, चप्पल पहन करके इनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो
3: विश्राम।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और रिश्ते अब दिल से नहीं, इवेंट बेसिस पर निभाए जा रहे हैं। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: साहस से हाईजैक संकट टालने वाले हिंदुस्तानी पायलट के दुनिया भर में जय जय। ट्रंप नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन के स्वास्थ्य में सुधार। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कल गांधी जयंती पर विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेफ डेमोक्रेसी मार्च, राहुल ममता ने साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीईसी के खिलाफ कॉकरोच, जनता पार्टी ने भी कसी कमर। मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी, परमिशन को लेकर सीएम को दी चुनौती। जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारी। बिहार एमएलसी चुनाव से पहले जेडीयू में बगावत। नीतीश के करीबी माने जाने वाले अनंत ने खोला मोर्चा। जन स्वराज प्रत्याशी के नामांकन के जुलूस में पहुंचे। और क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होंगे मुकाबले। टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे सीजीपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन की। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी ने मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि वो 2 अक्टूबर यानी कि कल से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। कल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। अगर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो यह आंदोलन देश भर में होगा। बड़ी बात यह है कि सीजेपी को मुंबई के शिवाजी पार्क में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि रोक सको तो रोक लो।
1: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी का नया आंदोलन शुरू।
2: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे।
1: सीजेपी की हुंकार, अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार।
3: चुनाव आयोग में क्लियरली एक रिप्ट है।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरुआत, फिर देश भर में आंदोलन। अभिजीत दीपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी का ऐलाने आंदोलन, इंडिया गठबंधन भी तैयार। आज लेफ्ट पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार एक्सपोज के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने उतरे। इससे पहले कांग्रेस ने 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर में हल्ला बोला।
4: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
1: फिर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने का अक्टूबर प्लान बनाया। और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कल से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी ने कहा है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन देश भर में चलेगा।
5: कल से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जो मुंबई से स्टार्ट होगा।
1: सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े जेन जी आंदोलन के बाद अब ये दूसरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सीजेपी के आंदोलन ने धार पकड़ी और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 शर्तों के साथ आंदोलन को खत्म किया।
6: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: और अब कॉकरोच जनता पार्टी फिर से 3 डिमांड्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क से आंदोलन करने उतर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले ही अपनी 3 मांगे बता दी हैं।
5: हमारी 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो एसआईएल की जो लिस्ट है, जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर इलेक्शन होना चाहिए। अगर एसआईआर पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसको बना देते हैं।
1: आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में दीपके ने और सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
2: कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
7: ज्ञानेश कुमार को बोलिए ना रिजाइन कर दे, ज्ञानेश कुमार को बोल दिए रिजाइन कर दीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे क्यों?
2: प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है,
7: तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए। अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है। आप ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, और एसआईआर से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रखने वाले लोग नहीं है।
8: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे, एंड जो जो उन्होंने SIR जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो जो इलीगल काम किया है, देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो।
1: CJP का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया जाएगा, साथ ही गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन होगा।
9: CJP क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ पेपर लीक वाले मुद्दे पे, तो सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए।
0: मुंबई का मशहूर छत्रपति शिवाजी पार्क जहां बड़े बड़े आंदोलन हुए, आज तक की टीम वहां पर पहुंची, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि CJP के ऐलान से पहले वहां चल क्या रहा है।
10: कॉकरोच जनता पार्टी जिसे सीजन 2 कह रही है, ऐसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की जो प्रोटेस्ट की शुरुआत है वो मुंबई से होने जा रही है। इस वक्त हम मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान के बाहर खड़े हैं। ये वही गेट है, वही द्वार है जहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए CJP ने परमिशन मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने वो परमिशन नकार दी है। बहुजन जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो लोग BMC के पास भी परमिशन के लिए अप्लाई किए थे, कोर्ट में वो जाने वाले नहीं हैं, प्रोटेस्ट उनका अधिकार है, और क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो परमिशन नहीं मिलने वाली है। तो बिना परमिशन मिले शिवाजी पार्क मैदान पर ये जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का पहला आंदोलन रहेगा। CJP वो जो फ्रंट है जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया था, उनको कामयाबी मिली थी, उस कामयाबी को आगे बढ़ाकर अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो लोग मैदान में उतरते हुए दिख रहे हैं, मुंबई से शुरुआत कर रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि जब अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन किया था वो बड़ा सक्सेसफुल था, मुंबई में जब उन्होंने BKC में आंदोलन किया तो वो इतना हिट नहीं था, तो CJP अपने आप को कल मुंबई में टेस्ट करता हुआ दिखेगा। इसी मैदान में देखना यह होगा कितने लोग जुड़ते हैं और क्या इस पूरे आंदोलन को, जो नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, वैसा मोमेंटम मिल पाता है या फिर SIR ये विषय है जो सभी लोगों को अफेक्ट नहीं करता। ये सारी चीजों के जो जवाब है वो अक्टूबर 2 को मिलने वाले हैं, जब कॉकरोच जनता पार्टी का यहां पर शिवाजी पार्क में बिना पुलिस परमिशन के प्रोटेस्ट होगा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भले ही हंसते हंसते की ये बात कही है कि 3 दिन जेल में जाने के लिए तैयार रहे क्योंकि बैंक हॉलीडे है, तो आप उस पर अभिजीत दिपके ने कहा है कि वो 3 महीने जेल में रहने के लिए तैयार है। तो अब देखना ये होगा किस तरह से ये आंदोलन होता है। मुंबई शुरुआत है, आगे कई राज्यों में ये आंदोलन CJP का होने वाला है जो कि कंक्लूड होगा जंतर मंतर पर। एम प्रसाद मंत्रा चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी 2 अक्टूबर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने भी एक बैठक करके ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अक्टूबर में हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया। 2 अक्टूबर यानी कि कल से 8 अक्टूबर तक इंडिया गठबंधन सेव डेमोक्रेसी मार्च निकालने जा रहा है।
1: अब एक तरफ मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से कॉकरोच जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने जा रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने नई दिल्ली में बैठक करके ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अक्टूबर संग्राम छेड़ने की तैयारी कर ली है। जी हां, इंडिया गठबंधन भी 2 अक्टूबर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हल्ला बोलने जा रहा है। 2 से 8 अक्टूबर तक देश भर के जिलों में सेव डेमोक्रेसी मार्च निकाला जाएगा। 6 अक्टूबर को विपक्षी पार्टियों के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकालेंगे। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगेंगे। इंडिया गठबंधन 5 बड़ी रैलियां आयोजित करेगा। अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी।
11: 6 अक्टूबर को वो सांकेतिक ही ना सिर्फ समझा जाए, वो संदेश के साथ वो संकेत होगा। उसके अलावा 2 से 8 अक्टूबर के बीच में हर जिले पे कार्यक्रम होगा।
12: भाई, जहां प्रजातंत्र जमहूरियत खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, तो उसमें अपोजिशन पार्टीज का नैतिक दायित्व है। यही काम तो हो रहा था ब्रिटिश हुकूमत में।
13: 10 साल UPA की सरकार रहा, जिसके चेयरपर्सन, क्योंकि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बन सकती थी, ये मुद्दा विहीन है। जिंदगी भर कांग्रेस ने लोकतंत्र को अपने पैरों के नीचे कुचलने का काम किया।
8: हम लोग तो बोल रहे हैं वोट चोरी नहीं होना चाहिए, हम लोग बोल रहे हैं इलेक्शन का चोरी नहीं होना चाहिए, हम लोग बोल रहे हैं कि देश के युवाओं के साथ जो गद्दारी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी को क्यों आग लग रही है, बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है ये सब चीजों को? कोई भी किसी भी आइडियोलॉजिकल लीनिंग का हो, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन का हो, किसी को भी सपोर्ट कर रहा हो, उसको तो ये जरूर बोलना चाहिए कि एक फेयर सिस्टम होना चाहिए चुनाव करने का।
1: कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दल वोट चोरी की बात कहकर एक तरफ मोदी सरकार और बीजेपी को बेईमान बताकर घेरते हैं, तो दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार और सरकार में पूरी मिलीभगत है।
14: हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन।
15: आज जो बिग स्कैम हुआ है, इट्स अ स्कैंडलस मैटर, एंड इसके लिए जनता ने भोग रहा है। जो वोट चुरी करके बीजेपी 26 में जीता, अभी तो खुल्ला हो गया कि भैनिश कुमार चोर है, डाकू है, वोट चोरी किया। इसके लिए ही मस्ट रिजाइन इमीडिएटली। भैनिश कुमार अगर नहीं रिमूव होगा तो ये आंदोलन बहुत देर दूर पहुंच जा सकता है।
1: वैसे तो चुनावों में पक्षपात के आरोप विपक्ष शुरुआत से लगाता आ रहा है, और सरकार पर ईवीएम में धांधली के आरोपों से शुरू हुआ विपक्ष का हंगामा अब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ साथ महाभियोग लाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कल यानी कि गांधी जयंती पर इंडिया गठबंधन और सीजेपी सड़कों पर उतरेंगी। ये लड़ाई कहां तक जाएगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार में जेडीयू के अंदर आर पार की लड़ाई का बिगुल खुद नीतीश कुमार के करीबी और बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने फूंक दिया है। आज मोकामा से एमएलए अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के विरोध में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज के नामांकन में साथ में नजर आ गए। अनंत सिंह ने दावा कर दिया कि जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार को हराएंगे, तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत की शुरुआत हो चुकी है?
1: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
16: कार में जा रहे हैं, बैठक पार्टी की कोचिंग में है।
1: एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
16: अब चल है जहां उसको कहे अभी कहा तभी निकाल।
1: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह, नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत
17: मिलती है।
1: बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि जेडीयू के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने जन स्वराज पार्टी से हाथ मिला लिया। पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया, बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
18: नामांकन करने आ गए अनंत सिंह जी के साथ, उम्मीद पूरी है दादा जीत की?
19: कह तो रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
18: कोई नहीं
19: है
18: टक्कर में,
19: कोई नहीं
18: है टक्कर में।
1: जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खिंच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
20: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संज्ञान में बात आई है। और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
17: लग रहा है ये नहीं होना चाहिए,
20: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं वो लोग।
1: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा। लेकिन जन सुराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
21: पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत जदयू में नहीं है, पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए, एको झोंक पार्टी हमको भी नहीं समझाए, चार झोंक किया कोई हम समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए, हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब इससे नहीं।
1: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ, यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
22: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
1: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को जेडीयू की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
23: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, कोई पूंजी है,
24: आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे।
25: आज आप बैठक में आए थे,
23: आज आप बयान कोई सुने हैं, किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी, पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है। सब नाराजगी खत्म है,
24: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी वो?
23: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी है, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधान है, विधायक है, विधान पार्षद है, एक्स एमएलए है, एमपी है, और सब जगह तो हम ही लोग हैं। पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: वैसे नीरज कुमार लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। 2020 में भी अनंत सिंह ने नीरज कुमार का विरोध किया था लेकिन नीरज कुमार एमएलसी का चुनाव जीत गए थे। अब सवाल यही है कि जेडीयू के दो नेता अपनी अहम की लड़ाई के लिए पार्टी की किरकिरी आखिर क्यों करवा रहे हैं?
1: अनंत सिंह और नीरज कुमार की अदावत 2015 में शुरू हुई जब मोकामा से अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तब नीरज कुमार उनके खिलाफ जेडीयू के प्रत्याशी थे। भले ही नीरज कुमार चुनाव हार गए लेकिन तभी से दोनों नेताओं के रिश्तों में दरार पड़ गई। अनंत सिंह का आरोप है कि उनके घर से बरामद AK-47 नीरज कुमार ने ही प्लांट कराई थी। इसी केस में पहले अनंत को 10 साल की सजा हुई, उनकी विधायकी चली गई, वो जेल में रहे लेकिन पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।
26: मैं पहले तो पार्टी में हम थे, चार झोंक हमारा विरोध किया है, ललन सिंह पार्टी में थे, विरोध चार झोंक किया।
27: तो आप कह रहे हैं कि AK-47 फसवाया?
26: हाँ वही फसवाया, हमको घर में रखवा के मांग के लाया, रखवा दिया। RPC सिंह और गुरु थे, गुरु गरिया रहा है, RPC गुरु थे, उसको भी गाड़ी देता है, ककड़ा गाड़ी नहीं देगा जगह हिसाब नहीं है, इसको बैलेंस है, कथा पढ़ल है, इतना तो हम होकर बुड़बक नहीं देखे हैं।
1: 2025 में अनंत सिंह ने जेडीयू से चुनाव लड़ा, तब नीरज कुमार ने ये कहते हुए अनंत सिंह का प्रचार करने से मना कर दिया कि वो आपराधिक छवि के उम्मीदवार हैं। वैसे अतीत में नीरज कुमार ने भी कई मौकों पर अनंत सिंह का कड़ा विरोध किया था, अब उसी विरोध का बदला नीरज कुमार को चुनाव हरा कर अनंत सिंह देना चाहते हैं।
26: नीरज कुमार कहे बात तो छोड़ दीजिए, वो कौची ने कहा है, से आप बता दीजिए हम
2: तो
26: कौची ने कहा है अच्छा, कोई शब्द नहीं बचल है जो हम उसको कहे कि अबड़ी कहा तबड़ी ने कहा इधर कह रहा 15 साल 18 साल से।
1: आपको बता दें कि अनंत सिंह के साथ साथ नीरज कुमार भी ललन सिंह के खास माने जाते हैं, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के विरोध के चलते ललन सिंह भी नीरज कुमार से नाराज हैं। पार्टी के कुछ नेता यही मानते हैं कि ललन सिंह ने इसी वजह से अब तक विवाद से खुद को दूर रखा है, लेकिन सच्चाई यही है कि ललन सिंह के दखल से ही दोनों का विवाद खत्म हो सकता है। हालांकि ललन सिंह की खामोशी को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वो नीरज के साथ हैं या नहीं। बड़ी बात यह है कि दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। नीरज कुमार जेडीयू के मुखर प्रवक्ता रहे हैं तो अनंत सिंह बाहुबली विधायक। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने जेडीयू के नेताओं में आपसी लड़ाई से दूरी बना ली है। दावा यही है कि उनके प्रत्याशी को जीतने के लिए अनंत सिंह की जरूरत नहीं है।
3: ये उनका मामला है, हम लोग उसमें क्या बोलना है, राजनीतिक दल है उसमें वही बता सकते हैं, उनके अंदरूनी मामले में हम लोग की कोई दिलचस्पी नहीं।
4: अनंत सिंह कह रहे हैं कि अनुज सिंह अगर आपकी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे।
3: हमारी पार्टी से क्या, अनुज सिंह जनसुराज में ही हैं, जनसुराज से नवादा के उम्मीदवार थे, तो अनंत सिंह क्या करेंगे वो हम लोग के लिए विषय नहीं है। हम लोग के लिए विषय यह है कि दल किसको उम्मीदवार बनाता है।
5: दर्शक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दर्शक के अगले हिस्से में स्मिथ द वॉरियर प्लेन को हाईजेक और क्रैश से बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मिथ की कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
9: जीके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट।
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: स्ट्रेचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
2: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: सजेस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
2: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार रोटी थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा
5: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर
6: मेरे पास एक आइडिया
4: क्या
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
7: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आई हैव एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
9: ओ नादान परिंदे बैठो मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा
11: तो कौन सी बनानी है
12: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
13: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी
14: आई लाइक दिस ओनली
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
16: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम
17: एयू
18: सोच बदलो और बैंक भी
19: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कण कण में जान
20: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर
21: इन एसोसिएशन विद सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा अनमोल बिस्किट्स स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल
22: जहां जुर्म वहीं कहानी जहां कहानी वहीं साजिश जहां साजिश वहां क्राइम जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो उसकी परतें हम सुलझाते हैं देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से
23: Thank you.

0: डूब चुके हैं, सड़कें डूब गई हैं और अब और निचले इलाकों में पानी दस्तक देने लगा। जिस रास्ते पर कभी लोगों की आवाजाही होती थी, आज वहां गंगा जी का पानी है। पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट कर दिया। सीएम सम्राट चौधरी ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया। बिहार में बाढ़ की दूसरी बड़ी तस्वीर गंडक के इलाकों से सामने आई। नेपाल में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के बाद नारायणी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। अब पानी में कमी के संकेत हैं, लेकिन बिहार के निचले इलाकों में पानी पहुंचा और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अब नेपाल में बारिश थम चुकी है, नारायणी के जलस्तर में भी कमी आई, लेकिन जो पानी नीचे की तरफ बढ़ा उसका असर बिहार के कई इलाकों में दिखा। गंडक की बाढ़ ने बगहा में भी लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब छपरा से एक और तस्वीर। यहाँ बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि गंडक के पानी की तेज धार में देखते ही देखते एक पक्का मकान बह गया। बताया गया कि बाढ़ के पानी की तेज धार ने मकान की नींव को कमजोर कर दिया और कुछ ही मिनटों में पूरा मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। छपरा से ये दूसरी तस्वीर, जहां गंडक की तेज धार में सिर्फ इंसान ही नहीं जंगली जानवर भी फंस गए। यहां तेज बहाव से बचने के लिए तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब मोतिहारी की तस्वीर देखिए। नेपाल से आया पानी अरिराज और संग्रामपुर के बाद अब केसरिया के इलाकों को भी मुश्किल में डाल रहा है। घर में पानी घुसा तो लोगों ने बांध को अपना नया ठिकाना बना लिया। एक तरफ पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, दूसरी तरफ गंडक के किनारे बने गांवों में बाढ़ का पानी, यानी बिहार में बाढ़ का खतरा भी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
1: देश के लोगों को और युवाओं को और इंडिया गठबंधन के लोगों को, उसके अलावा जो एनजीओस या जो डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं, संविधान के हिफाजत के लिए जो लोग आगे आते हैं और जो देश के एकता के लिए जो कटिबद्ध है, ऐसे लोग भी इसमें शामिल होकर जो अक्टूबर 2 से लेकर 8 तक डिस्ट्रिक्ट लेवल सेव डेमोक्रेसी मार्च करेंगे।
2: कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल जी कह रहे थे, मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे विश्वास करो। मतलब कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी पर भरोसा नहीं है। ये अलग अलग भ्रम फैला रहे हैं। मित्रों, अभी जो बैठक थे उसका नतीजा क्या निकला? इंडी गठबंधन की एक तो शून्य विजन।
3: प्लेन हाईजैक हो गया है, कॉकपिट के अंदर क्या हुआ कोई यात्री नहीं जानता था। बस प्लेन थरथराता है, अचानक से कॉकपिट के दरवाजे पर हलचल होती है। एक यानिन नाम का यात्री फौरन कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वो कॉकपिट का दरवाजा खोलता है, पूरा मंजर सामने आ जाता है। फ्लाई दुबई की फ्लाइट को उड़ा रहे भारतीय मूल के मेन पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और उनके साथ थे ओमान मूल के उनके को पायलट। कैप्टन स्मिथ बुरी तरह से लहूलुहान थे, उनके सिर हाथ पैर पेट पर बांध किए गए थे। को पायलट के हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये साफ हो जाता है कि कैप्टन स्मिथ पर उन्हीं के को पायलट ने न सिर्फ हमला किया बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की।
4: אני והוא תחפנו את הדלת, הטייס שהיה דקור היה פשוט מאוד סמוך לדלת, אז היה קשה לנו לפתוח אותה, אבל נראה לי לפי דעתי, מסקנה שלי,
5: שהוא פתח, הוא פותח, הוא צריך להגיע למעלה, לא? מה הוא עשה על המכשירים האלה? מה הוא עשה?
4: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי ל...
3: यात्री यानिन ने को पायलट को काबू में किया।

पटना में गंगा ने फिर से रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, घाट

0: स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
1: कैप्टन स्मिथ ने फ्लाइट में सवार 174 यात्रियों की जान बचा ली। अब इसराइल ने पूरी घटना की जांच भी शुरू कर दी है। इसराइल इसे आतंकी घटना के तौर पर देख रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: आज भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मच्छार की शौर्य गाथा को दुनिया सलूट कर रही है। एविएशन के इतिहास में पायलट स्मिथ का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। आज दुनिया के लिए पायलट स्मिथ की सूझबूझ एक मिसाल है, क्योंकि शक यही है कि साजिश 9/11 जैसे आतंकवादी हमले को अंजाम देने की थी। सोचिए, हमले में स्मिथ घायल हो गए, लेकिन कॉकपिट में मौजूद हमलावर पायलट के नापाक मंसूबों को उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। अगर पायलट स्मिथ ने अपनी जान जोखिम में डालकर को पायलट को नहीं रोका होता, तो आज एक और 9/11 जैसी आतंकवादी वारदात से दुनिया दहल गई होती।
1: क्या फिर 9/11 जैसे आतंकी हमले की तैयारी थी? क्या पायलट की जाबाजी से फेल हुआ प्लान 9/11? इजरायली यात्री, ओमानी हमलावर और प्लान 9/11। तारीख 11 सितंबर 2001, इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला। आतंकियों ने विमान को हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया था। इस आत्मघाती और सुनियोजित हमले में 2900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो क्या 9/11 की तर्ज पर विमान को हाईजैक करके बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग थी? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मानते हैं कि दुबई से उड़ान भरने वाली फ्लाइट के ओमानी पायलट का भारतीय मूल के पायलट पर हमला करना विमान को अपने कब्जे में करने की कोशिश था। 9/11 जैसे आतंकी हमले की साजिश का संकेत है।
3: Now you have the possibility of having another 9/11 and an Israeli passenger, a civilian. I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. I spoke earlier today with President Trump, who really was appreciative of this. And he said, you know, when a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world.
0: Israel ke Pradhan Mantri ne kaha कि एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया।
1: सवाल यही है कि पायलट ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए UAE ने संभावित आतंकी हमले की साजिश के एंगल से जांच शुरू की। फिलहाल सऊदी अरब की जांच एजेंसियां आरोपी पायलट से राज उगलवाने में जुटी हैं। जांच का पूरा फोकस इस बात पर है कि ओमानी मूल के पायलट ने किसी आतंकी साजिश के मकसद से दूसरे पायलट पर हमला किया ताकि विमान को हाईजैक करके 9/11 जैसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। मामले की जांच जारी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है।
4: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. And I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
1: अगर प्लान 9/11 जैसे हमले का था, तो साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या विमान को हाईजैक करके किसी इमारत से टकराने की तैयारी थी, या फिर प्लेन को क्रैश करवाकर इजरायली यात्रियों को बेमौत मारने का प्लान था? अभी पूरे मामले को लेकर सवाल कई हैं, क्योंकि आरोपी पायलट के मकसद को लेकर बड़ा सस्पेंस है। यूएई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पूरे मामले की जांच करने का अधिकार उनका है, क्योंकि विमान उनके देश में रजिस्टर्ड है, लिहाजा विमान में किए गए अपराध पर यूएई का कानून लागू होता है, भले ही वो देश की सीमा से बाहर घटित हुआ हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पायलट से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आरोपी पायलट के पास ओमान की नागरिकता है। आरोपी से हुई शुरुआती पूछताछ को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री ने बड़ा दावा किया है। दावा ये कि को पायलट कट्टरपंथी सोच से प्रभावित था। इसराइल की बात यही है कि मामले की जांच के लिए आरोपी पायलट का जल्द प्रत्यर्पण होना चाहिए।
3: The attacker, the co-pilot who attacked the captain, is now being interrogated. But here's what we do know. First, we know that he underwent Islamist radical indoctrination. That appears to be something we're gathering from the information, his personal information.
1: इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया है कि पकड़े जाने के बाद आरोपी पायलट ने खुद को जान से मारने की बात कही थी, यानी पकड़े जाने के बाद वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इजरायल मानता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि आरोपी पायलट के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। वहीं यूएई और सऊदी अरब ने आतंकी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया है। दूसरी ओर ओमान की तरफ से आरोपी पायलट को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी पायलट 9 महीने पहले ही फ्लाई दुबई से जुड़ा था, लेकिन उसके बैकग्राउंड को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। अभी तक जो बात सामने आई है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट में मौजूद चश्मदीदों ने बताया है।
5: עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה.
3: מה הוא עשה על המכשירים האלה? מה הוא עשה?
5: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי
3: לנטרל
5: את המטוס.
3: זה מה שאתה ראית?
5: כן.
3: טוב.
5: הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות. המטוס היה עם האף ככה. הקוקפיט.
1: चश्मदीदों का दावा भी यही है कि आरोपी पायलट की साजिश जब नाकाम हुई तो वो प्लेन को क्रैश करवाने की कोशिश करने लगा। मतलब आरोपी पायलट यही चाहता था कि विमान क्रैश हो जाए और उसमें सवार सभी इजरायली यात्रियों की मौत हो जाए। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इस घटना ने दुनिया भर में हवाई सफर करने वालों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि शक यही है कि पायलट किसी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है या फिर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर उसने लोन वुल्फ अटैक की साजिश रची। मतलब ऐसे आतंकी हमले से है जिसमें हमलावर बिना किसी आतंकी संगठन से जुड़े अकेले ही हमले को अंजाम देता है।
2: भारतीय मूल के पायलट स्मित की जांबाजी ने आज एयर होस्टेस नीरजा की बहादुरी की यादें ताजा कर दी। 40 साल पहले एयर होस्टेस नीरजा ने अपनी जान देकर हाईजैक हुए विमान में सवार यात्रियों की जान बचाई थी। नीरजा भनोट के बलिदान को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
6: तारीख 5 सितंबर 1986 ये तारीख इतिहास के पन्नों में एयर होस्टेस नीरजा भनोट की वीर गाथा के तौर पर दर्ज है। उस दिन तय वक्त पर फ्लाइट 73 ने मुंबई से उड़ान भरी, जिसमें 360 यात्री और 19 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट को मुंबई से पाकिस्तान के कराची और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से होते हुए न्यूयॉर्क में लैंड होना था। किसी को नहीं पता था कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि यहीं पर फ्लाइट के अंदर 4 आतंकी घुस गए। दहशतगर्दों से नीरजा डरी नहीं, बल्कि उन्होंने असाधारण साहस का परिचय देते हुए यात्रियों की जान बचाने का निर्णय लिया। बड़ी ही सूझबूझ से नीरजा ने हाईजैक कोड एक्टिव कर दिया। इमरजेंसी कोड एक्टिव होने की वजह से विमान को उड़ान भरने से रोका जा सका। आतंकियों की प्लानिंग थी हाईजैक करके फ्लाइट को साइप्रस ले जाना, ताकि यात्रियों के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करवाई जा सके। बहुत जल्द आतंकी समझ गए कि अब उड़ान भरना संभव नहीं, लिहाजा उन्होंने अमेरिकी नागरिकों की पहचान करने के लिए पासपोर्ट मांगने शुरू कर दिए। नीरजा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कई अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छिपा दिए, जिससे आतंकियों के लिए तय करना मुश्किल हो गया कि कौन अमेरिकी नागरिक है। कई घंटों के बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी तो नीरजा ने विमान का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। तीन बच्चों को बचाने की कोशिश में नीरजा आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गई, लेकिन अपनी जान देकर उन्होंने सैकड़ों यात्रियों की जान बचा दी। महज 23 साल की उम्र में नीरजा ने अपना बलिदान देकर वीरता की अमर कहानी लिख डाली।
7: उस टाइम ना टीवी तो होता नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था, वो भी सिर्फ शाम को आता था, बेसिकली न्यूज़पेपर थे और वो सुबह आते थे। तो उस टाइम पे एक मिड डे करके बॉम्बे में नया पेपर शुरू हुआ था जो 12 बजे निकलता था, मैंने उसमें पढ़ा था। मेरे फादर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला था कि क्योंकि तो जर्नलिस्ट थे, और अखिल को मेरे फादर ने फोन करके बता दिया था। उन्होंने मेरे को भी फोन किया, लेकिन उस टाइम मोबाइल तो होते नहीं थे। मैं किसी असाइनमेंट के लिए बाहर गया हुआ था ऑफिस से, तो जब मैं वापस आया तो मेरे को पता चला कि हाईजैक हो गया है।
6: नीरजा की वीरता के लिए भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया, पाकिस्तान सरकार की तरफ से तमगाए इंसानियत और अमीर की सरकार की तरफ से जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से नवाजा गया।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
11: जेके मैक्स पेंट्स।
10: जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर एक दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो टीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
6: तो कौन सी बनानी है?
7: एकदम सॉलिड।
8: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर। बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: In association with Signature Finest Cardamom Seeds. E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: अनमोल बिस्किट्स स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Apache, a premium product from Dilbar Group.
1: ये कहानी है एक भारतीय पायलट के अदम्य वीरता की, जिसने अपने साहस और सूझबूझ से न सिर्फ 174 विमान यात्रियों की जान बचाई बल्कि एक बड़े हमले को भी टाल दिया। स्मिथ मछार, जिनकी वीरता को दुनिया सलाम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्मिथ की तारीफ में बयान जारी करते हुए उन्हें हीरो बता चुके हैं।
2: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मिथ को नायक बताते हुए एक्स पर लिखा, कैप्टन स्मिथ मछार एक हीरो हैं। बेहद खतरनाक हालत और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया। उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई। भारत को कैप्टन मछार पर गर्व है। हम उनके जल्द ठीक होने, नई ताकत पाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारतीय पायलट की वीरता की तारीफ करने वालों में सबसे आगे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि स्मिथ की बहादुरी से कैसे 174 लोगों की जान बची। नेतन्याहू ने लिखा, भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की असाधारण बहादुरी को मेरा सलाम। चाकू लगने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, विरोध किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और क्रू को हमलावर पर काबू पाने में मदद की, जिससे हवा में होने वाली एक बड़ी दुर्घटना टल गई। उन्होंने 174 लोगों की जान बचाई, जिनमें इजरायली नागरिक और अन्य देशों के लोग शामिल थे। कैप्टन स्मिथ मछार के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना करता हूं। वो एक सच्चे हीरो हैं। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

हाईजैक, संकट टालने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय। ट्रंप नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कल गांधी जयंती पर विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च। राहुल गांधी और ममता ने साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कसी है कमर। मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी, परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चुनौती। जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। बिहार एमएलसी चुनाव से पहले जेडीयू में बगावत। नीतीश का करीबी माने जाने वाले अनंत ने खोला मोर्चा। जन स्वराज प्रत्याशी के नामांकन जुलूस में पहुंचे। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। देश या दुनिया में होने वाले जितने भी कत्ल होते हैं, कातिल हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह ढूंढता है। लेकिन आज जिन तीन कत्ल की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उन तीनों कत्ल की वजह जानने के बाद आप भी कहेंगे कि भला कत्ल करने की ये क्या वजह हुई। एक शख्स 2 साल के अंदर पहले अपनी माँ, फिर दादी और आखिर में अपनी साली का कत्ल करता है। इन तीनों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहता था। जमीन पर बिछे इस नए तिरपाल के ऊपर जिम्मेदारियों से भागते सदियों पुराने इंसानी लालच का सबसे नया मलबा है। पर यह मलबा थोड़ा अलग है, क्योंकि इस मलबे की मिट्टी में मिला दिए गए एक इंसान की चंद हड्डियां भी शामिल है। धीरे धीरे ये मलबा इस तिरपाल को पाटता जा रहा है। उधर सीमेंट में घुलकर पत्थर बन चुके उसी पत्थर को छेनी हथौड़े से इस तरह पूरी एहतियात के साथ काटा और तोड़ा जा रहा है, ताकि सीमेंट में घुल चुकी इंसानी हड्डियों को कोई नुकसान न पहुंचे। हम सब भी अजीब हैं, जिंदा इंसानों की जिंदगी जीते जी मुर्दों से भी बदतर बना देते हैं, पर इस बात का ख्याल रखते हैं कि मुर्दों को कोई चोट न पहुंचे। दिल को कचोट देने वाली ये कहानी गुजरात के उस सूरत की है, जिसकी सूरत की चर्चा दुनिया भर में होती है। लेकिन इसी सूरत का एक बदसूरत चेहरा आज जब सामने आया, तो हर सुनने वाला इस कहानी पर संदेह। कोई कैसे यकीन कर ले कि एक इंसान अपने जैसे 3 इंसानों का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दे क्योंकि वो बीमार है, उन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें दवा की जरूरत है, लेकिन वो इन जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाहता, अपनी जिम्मेदारियों से बस दूर भागना चाहता है। क्या आपने इससे पहले कभी सुना है कि एक शख्स अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मार डाले क्योंकि उसे लकवा था, अपनी दादी का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दे क्योंकि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अपनी साली को इसलिए मौत दे दे क्योंकि वो टीबी की मरीज थी? पर आज आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि खुद कानून के रखवाले ऐसा कह रहे हैं।
1: दादी सासू थी, उसकी हत्या उसने मतलब जो पीलो होता है तकिए से उसका सर ढक के उसको मतलब वह पर हत्या कर दी जब सो रही थी, और उसकी हत्या को लेकर किसी को मतलब उस टाइम पे कोई शंका इसलिए नहीं हुई थी कि जो 2021 का जो टाइम था उस टाइम पे कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई है, तो कोई उनके जो सगा संबंधी है वो उनकी ज्यादा पूछताछ वगैरह नहीं की, और उनको लगा कि उन्होंने उसी तरह से जो अंतिम विधि है वो कर दी गई थी। हालांकि उन्होंने उनकी हत्या करने के बाद प्लास्टिक के बैरल में उस मृतदेह को डालने के बाद उसमें सीमेंट डाल के उसको दफनाया था। उसके कुछ महीनों के बाद मतलब ये जो माधव दास है उसने अपनी माता को भी उसी तरह से मारा था, और उनकी माता को लकवा था, वो पैरालिसिस होने की वजह से हमेशा पथारी में ही रहती थी, तो वो ऐसे ही उसी हालत में मर गई बता के उनके मृतदेह का अग्निदाह कर दिया।
0: तो दादी और माँ की कहानी आपने सुनी, अब साली के कत्ल की कहानी भी सुनते चलिए।
1: उन्होंने अपनी साली जो इसमें मतलब साथ में दूसरी महिला अभियुक्त है जो कि माधव दास की वो पत्नी है, उसका जो उसकी बहन टीबी की बीमारी से पीड़ित थी, और उसी को भी उन्होंने गला घोट कर मार दिया था और उसकी लाश को दफना दिया था। वो टीबी की हालत से उसकी मतलब हालत और खराब हो गई थी टीबी की वजह से, तो उसी में मर गई करके उन्होंने सबको बताया था।
0: अब शुरू से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। होता ये है कि बस कुछ दिन पहले पुलिस का एक मुखबिर माधव दास पुलिस के पास पहुंचता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी ने अफजल नाम के एक शख्स के साथ मिलकर 4 साल पहले अपनी दादी सास का कत्ल कर उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया। इस खबर के बाद पुलिस जांच शुरू करती है, अफजल और फिर माधव दास की पत्नी उर्मिला से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ खत्म होते होते एक नई कहानी सामने आ जाती है।
1: अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच को कुछ दिन पहले एक इन्फॉर्मर खुद सामने आके इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनकी मतलब जो दादी सासू है उनकी हत्या उनकी पत्नी और उनके कजिन अफजल ने की थी मिलकर। तो जो तफ्तीश में शुरू में अफजल से इंट्रोगेशन में उसको बुलाया गया और अफजल से सारी जानकारी ली गई तो पता चला कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें अफजल का कोई रोल नहीं है, या तो फिर इन्फॉर्मेशन पूरी गलत है। तो पहले ये लगा कि जो इन्फॉर्मर था माधवदास साधु उसको बुलाया गया और उसको पूछा गया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन देने के पीछे उसका क्या इरादा है, और उसके ऊपर शंका बढ़ने से उससे जो पूछताछ की गई उस पूछताछ में उसने उसकी माता, उसकी दादी सासू और उसकी साली तीनों की हत्या करने की उसने मतलब कबूल किया है।
0: इसी के बाद पुलिस उस घर में पहुंचती है और फिर खुदाई शुरू होती है और जिम्मेदारी से भागते माधवदास की सच्चाई सामने आ जाती है। हालांकि हैरान करने वाली बात ये थी कि अपने बीमार और लाचार रिश्तेदारों से अकेले माधवदास नहीं बल्कि उसकी पत्नी उर्मिला भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी। बाद में जब पुलिस ने माधव से पूछा कि तुमने 3 कत्ल किए, 4 साल तक किसी को कानोकान भनक तक नहीं लगी, तो फिर 4 साल बाद खुद ही पुलिस के पास पहुंचकर उन्हीं में से एक कत्ल के इल्जाम में अपनी पत्नी को क्यों फंसाना चाहते थे। तब उसने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे। माधव दास को शक था कि उसकी पत्नी का अफजल से अफेयर है। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने दोनों को फंसाने का फैसला किया।
1: जब माधव दास को पूछा गया कि भाई इतने साल के बाद तुम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसकी वजह क्या है, तो उसका जो मेन कंसर्न था वो था कि उसकी पत्नी उर्मिला उर्फ जया वो अपने हिसाब से अलग से रहती है और अपना स्वतंत्र जीवन जी रही है, तो उसने और उसको लगा कि ये किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, तो बदला लेने के लिए उसने अफजल और मतलब उसकी पत्नी का नाम दिया था।
0: माधवदास और उर्मिला ने ये तीनों कत्ल 2021 और 22 के दौरान उस वक्त किए जब पूरा देश कोरोना की जद में था। ये वो दौर था जब लोग मुर्दों को छोड़िए जिंदा इंसानों से भी दूरी बनाकर रखते थे। मुर्दों के तो कहने ही क्या, और बस इसी दौर का माधवदास ने फायदा उठाया। उसे पता था कि उस वक्त किसी की मौत पर अर्थी देना तो छोड़िए, मुर्दों का हाल पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक। सूरत से दूर जयपुर में भी एक घर के अंदर गड्ढा खोदा जा रहा था, क्योंकि यहां भी रिश्तों और जिम्मेदारियों में लिपटी एक लाश दफन थी। 22 साल के एक लड़के को अपनी चाची से प्यार हो जाता है, फिर वो अपनी चाची को लेकर जयपुर एक घर में पहुंचता है। अब दोनों लिविन में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक हफ्ता पहले उसी घर के अंदर चाची घर से निकलकर गड्ढे में दफन हो चुकी थी।
2: जयपुर की प्रेस्टीज कॉलोनी का ये मकान और मकान की लॉन में बना ये छिछला सा गड्ढा, इस मामूली गड्ढे को देखकर ये सोचना भी मुश्किल है कि इसमें कोई किसी की लाश भी दफना सकता है। वैसे भी भला किसी घर की लॉन में लाश कौन दफनाता है, लेकिन जो सोचना मुश्किल है, इस मकान की लॉन में 27 सितंबर की दोपहर कुछ वैसा ही देखने को मिला। असल में इस मकान के आसपास रहने वाले लोग यहां से तेज बदबू की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद मकान मालिक यहां जांच के लिए पहुंचा, लेकिन उसने यहां पहुंचकर देखा कि उसका किरायेदार गायब है और दरवाजे पर ताला लटक रहा है। किरायेदार का फोन भी स्विच्ड ऑफ था। इसी दौरान उसकी नजर चार दीवारी के अंदर लॉन में खुदी हुई मिट्टी पर गई, जिसे देखकर लग रहा था कि शायद यहां कोई चीज दफनाई गई है। इस पर मकान मालिक ने कुछ लोगों की मदद से कच्ची मिट्टी वाली जगह की खुदाई की और अंदर से झांकते एक इंसानी हाथ को देखकर सन्न रह गए। जाहिर है अंदर किसी की लाश दफन। अब मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने केस की तफ्तीश शुरू कर दी। पता चला कि मकान मालिक ने प्रवेश रावत नाम के एक नौजवान को यह मकान किराए पर दिया था। वो पास की ही एक फैक्ट्री में काम करता था और यहां अपनी पत्नी किरण के साथ रहता था, लेकिन अब प्रवेश भी गायब था और उसकी पत्नी किरण भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इधर जब पुलिस ने लॉन में दफन ये लाश खोदकर बाहर निकाली तो महिला की पहचान किरण के तौर पर ही हुई। किरण यानी किरायेदार प्रवेश रावत की पत्नी। पुलिस ने किरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई।
3: 27 सितंबर 2026 करीब सुबह 10 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि बिंदायका थाने इलाके में जो प्रेस्टीज गार्डन कॉलोनी है उसके प्लॉट नंबर 160 के पास जो मकान के सामने आता है प्लॉट के अंदर, उसमें किसी की डेड बॉडी गाड़ी होने की सूचना हमारे पास आई थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जो एसीपी धर्मेंद्र शर्मा हैं और एसएचओ अनिल जैमिन, ये मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जो वहां पर जो स्मेल आ रही थी और इन सब चीज़ों को देखते हुए वहां पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। एफएसएल की टीम को बुलाने के बाद जब वहां पर खुदाई की गई तो एक महिला की डेड बॉडी वहां पर मिली। उस महिला की डेड बॉडी की जब शिनाख्त करवाई गई तो जो मकान मालिक हैं जिन्होंने शक व्यक्त किया था, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कपल को मैंने रेंट पे मकान दिया है और इसमें जो महिला है जिसका नाम किरण रावत है ये उसकी बॉडी हो सकती है।
2: पुलिस प्रवेश रावत को ढूंढ रही थी, हालांकि उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इस बीच पुलिस को प्रवेश के कुछ रिश्तेदारों से पता चला कि उसने अपनी पत्नी किरण की हत्या कर उसकी लाश को 23 की सुबह को ही इस लॉन में दफना दिया था। इसके बाद यहां से भागते हुए उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को ये बात बताई थी। आखिरकार करीब 48 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रवेश को उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास से धर दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली। यूपी बॉर्डर पहुंचकर उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑन किया था, जिसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
3: जो प्रवेश जो उस महिला का लिविंग पार्टनर बता रहे हैं उसके साथ जो रहता था उसके बारे में जब जानकारी इकट्ठा की गई तो वो सामने आया कि वो कुछ दिनों से यहाँ पर दिख नहीं रहा है और उसका फोन जब हमने ट्राई किया तो फोन बंद आया। इस पर उस पर शक गहराया और बॉडी को वहाँ से निकालकर एफएसएल से जांच करवाने के बाद पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल में जमा करवाया गया और जो महिला का लिविंग पार्टनर है प्रवेश उसकी तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान उसको दस्तयाब किया गया।
2: अब घर की लॉन में लाश दफनाने वाला कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, लेकिन कत्ल की असली कहानी का खुलासा होना अभी बाकी था। प्रवेश को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो एक और नई कहानी सामने आ गई। पता चला कि वो जिस महिला के साथ पत्नी की तरह रह रहा था वो असल में उसकी लिव इन पार्टनर होने के साथ साथ रिश्ते में चाची भी लगती थी। जी हाँ, चाची। लेकिन 22 साल के प्रवेश को खुद से 10 साल बड़ी चाची से ही प्यार हो गया और वो उसे अपने साथ भगा कर ले आया। इसके बाद दोनों यूपी के बाराबंकी से जयपुर चले आए और यहीं से उन्होंने नई शुरुआत की। लेकिन इसके बावजूद जल्द ही इस कहानी का दी एंड हो गया। पोस्टमार्टम से साफ हुआ कि जब किरण का कत्ल किया गया तो वो करीब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसके बावजूद प्रवेश को किरण और अपने होने वाले बच्चे पर दया नहीं आई और उसने दोनों की हत्या कर दी।
3: दस्तयाब करने के बाद जब उसको पकड़ कर लेके आए उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि ये रिश्ते में उसकी चाची लगती थी, परंतु इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग के अंतर्गत जनवरी महीने में, इस वर्ष के जनवरी महीने में वो इस महिला को वहाँ से, जो इनका नेटिव प्लेस है बाराबंकी का, वहाँ से लेके लिए जयपुर ले आता है और बाद में इनके सामाजिक स्तर पे कोई समझौता होता है, उसके बाद ये साथ रहने लगते हैं। ये महिला की बॉडी जब निकाली गई तो महिला प्रेग्नेंट पाई गई, महिला के अंदर जो भ्रूण था वो बॉडी डिकम्पोजिशन की वजह से वो भ्रूण भी बाहर आ गया था।
2: तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि प्रवेश ने अपनी चाची कम लिव इन पार्टनर का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे उस पर धोखा देने का शक था। असल में किरण के पास अपना कोई मोबाइल फोन नहीं था, इसीलिए काम पर जाते हुए प्रवेश अपना फोन किरण को दे जाता था। लेकिन हाल के कुछ दिनों में प्रवेश को यह शक होने लगा था कि उसके घर से बाहर जाने पर उसी के मोबाइल फोन से किरण किसी और से बात करती है और इसी शक के कीड़े ने प्रवेश के दिमाग में ऐसी जगह बनाई कि उसने किरण की जान ही ले। 22 और 23 सितंबर की रात को दोनों के बीच इस बात पर तीखी लड़ाई हुई और 23 सितंबर की अल सुबह प्रवेश ने कपड़े से गला घोंटकर किरण की हत्या कर दी, लेकिन लाश को कहीं बाहर ठिकाने लगाने की कोशिश करने पर उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने घर के अंदर ही किरण की लाश को दफनाने का फैसला किया। किरण की लाश को घर के अंदर छुपाकर वो पहले 2 किलो नमक लेकर आया। सुबह सुबह लॉन में गड्ढा खोदा और उसी में किरण की लाश डालकर ऊपर से नमक छिड़क कर उसे मिट्टी से दफना दिया। उसे यकीन था कि एक बार लाश गल जाने पर किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ किसी को दफनाया गया है। लेकिन शायद गड्ढा खोदते वक्त उससे एक गलती हो गई। अकेले होने की वजह से और पकड़े जाने के डर से ही वो ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोद सका और उसने छिछले गड्ढे में ही अपनी चाची की लाश दफना दी, जिसके चलते लाश से बदबू आने लगी और आखिरकार इसी बदबू ने उसकी करतूत की पोल खोल दी। पकड़े जाने के बाद जब मीडिया ने प्रवेश से उसकी करतूत की वजह पूछी तो उसने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए।
4: सर दूसरे से बात करते चाची का रिश्ता। जी सर।
5: कितने साल?
4: डेढ़ दो साल हो गए।
5: मारा कैसे?
4: सर ऐसे
5: क्या सकता?
4: सर दूसरे से बात करते थे, दूसरे से बात करते थे। अब ये नहीं पता, मैं दूसरे से बात करते थे।
5: उसके पास एक ही था?
4: एक ही था, वो मेरा फोन था। जी सर।
5: और फोन तुम घर छोड़ कर जाता?
4: जी सर।
5: कैसे कैसे मारा? क्या क्या?
4: सर ऐसे गला दबा दिया। जी सर।
3: ये जब इससे गहन पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि 23 सितंबर को इसके मृतका और ये प्रवेश, इनके बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी होती है। जो प्रवेश इनका लिविंग पार्टनर था उसको ये शक था कि क्योंकि ये दोनों सेम फोन यूज करते थे, महिला के पास कोई फोन नहीं था। ये जब फैक्ट्री में काम करने चला जाया करता था तो महिला इसका फोन इस्तेमाल करती थी, तो उसको शक हुआ कि इसका किसी महिला का किसी और के साथ कोई चक्कर है। इस शक पे इनकी लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई के दौरान ये लड़ाई बढ़ जाती है और उसी दौरान ये कपड़े से उनका गला घोंट के और चेहरा दबाकर उनकी हत्या कर देता। हत्या के बाद इसने उनकी बॉडी को छुपाने के लिए वहाँ पर जो हाथे में जगह थी वहाँ पर गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद उस बॉडी को वहाँ पर दफनाया, उसके ऊपर नमक डाला ताकि बॉडी जो है डिकम्पोज हो जाए और किसी प्रकार की स्मेल नहीं आए।
2: पुलिस सूत्रों की माने तो उसने लाश को इस तरह लॉन में ठिकाने लगाने के लिए फिल्मों से आइडिया लिया था। उसने कत्ल से पहले कई क्राइम थ्रिलर फिल्में देखी थी ताकि ये पता कर सके कि किसी की लाश कैसे ठिकाने लगाई जाए जिससे उसके बारे में किसी को पता ही न चले। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। 23 सितंबर को हत्या के बाद लाश ठिकाने लगाने के बाद वो मकान में ताला लगाकर मौके से निकल गया। चूंकि वो काफी तनाव में था, उसने सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए। वो सामोद हनुमान मंदिर पहुंचा। इस तरह कत्ल के बाद वो 2 दिनों तक गायब रहा और फिर शक से बचने के लिए 25 और 26 सितंबर को फिर से जयपुर वापस लौटा और फैक्ट्री पहुंचकर आराम से काम में जुट गया ताकि किसी को उस पर शक ना हो।
3: फिर वो वहां से 2-3 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में जाके रहने लग गया। इसी दौरान जब वहां पर जो डिकम्पोजिशन बॉडी की शुरू हुई तो उससे स्मेल आना शुरू हुआ और जो मकान मालिक हैं उनको किसी ने अवगत कराया कि यहाँ पर किसी तरह की स्मेल आ रही है। जब वो वहां पहुंचते हैं और मौके की स्थिति को देखते हैं तो उन्हें संदेह होता है। संदेह पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस पूरे घटनाक्रम को खोलने में हमें 48 घंटे से भी कम लगे हैं, तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी। जी की एक यात्रा निकली थी सामोद की तरफ, तो ये उस यात्रा के साथ होके वहाँ सामोद की तरफ भी गया था। दर्शन से ज्यादा ये अपने आप को बचाना चाह रहा था, तो ये चीजें अभी हमारे सामने हैं।
2: हालांकि पकड़े जाने पर उसने पुलिस को एक और ही कहानी सुनाई। प्रवेश का कहना था कि उसकी लिव इन पार्टनर ने खुद ही अपने गले में फंदा लगाकर जान दे दी थी, लेकिन उसने घबराकर उसकी लाश को घर की लॉन में गड्ढा खोदकर दफना दिया ताकि वो पकड़ा न जाए। पुलिस की माने तो उसका ये इरादा था कि लाश को दफना कर कुछ दिनों के बाद वो किरण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देगा जिससे वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। हालांकि जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया और मौके वारदात की जांच की तो उसे प्रवेश और किरण के घर से दोनों के बीच कत्ल से पहले हुई मारपीट और संघर्ष के निशान मिले, जिससे ये साफ हो गया कि प्रवेश ने ही किरण का कत्ल किया था, न कि किरण ने खुदकुशी की।
3: अलग अलग प्रयास करके कुछ टेक्निकल एविडेंसेस, कुछ ह्यूमन एविडेंसेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करके हमने इसको यूपी के बॉर्डर के पास दस्तयाब किया है और इससे अभी इसकी गिरफ्तारी आज डाल दी गई है और इससे भी पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, जब इनसे पहली बार पूछताछ की गई तो उसने बताया कि महिला ने खुदकुशी कर ली है, परंतु जब इससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उसने सारी चीज़ें कबूल करी। जो हमने मौके का जब निरीक्षण भी किया था तो वहाँ पर भी जो स्ट्रगल है वो वहां पे हमें देखने को मिला था, तो इससे ये सुसाइड वाली जो इसकी थ्योरी थी वो प्रूफ नहीं हो रही थी। और जिस तरीके से इसने बॉडी गाड़ी और पुलिस को सूचना नहीं दी कि वो अपने आप इसको संदेह के घेरे में लाता है। ये अभी तक जो पूछताछ की है तो कहीं ना कहीं इसको ये फिल्मों से ये इसका आइडिया आया था कि इस तरह से बॉडी दफना के कुछ दिन में जब बॉडी गल जाएगी तो मैं महिला की गुमशुदगी की रपट डलवा दूंगा और उसके बाद जो है मैं पुलिस को गुमराह करके अपने आप को इससे बचा लूंगा, ऐसी इससे इसकी प्लानिंग हमारे सामने।
2: फिलहाल पुलिस ने कत्ल के इस चौंकाने वाले मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अव्वल तो चाची से रिश्ते और फिर महज शक की बिना पर उसके कत्ल की इस वारदात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
6: प्रेमिका को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने ही चाची से प्रेम कर बैठा, उसके बाद लिविंग में काफी समय से रह रहा था, लेकिन काफी समय से ये बात निकल के आ रही थी दोनों के बीच अनबन है। प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और से बातचीत करती रहती है। एक दिन ऐसा आया जब आरोपी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद शव को उसने मिट्टी में दफन कर दिया, ऊपर से नमक डाल दिया। ये वारदात उसने फिल्मी तरीके से की और फिल्मों को देखते हुए, लेकिन जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो आरोपी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर पे पहुंचा, लेकिन उसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतका प्रेमिका 8 महीने से गर्भवती थी। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर आज तक।
7: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: प्यार उनका बात सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तो धमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
2: कौन सी बनानी है?
5: The opposition has been quite successful in putting across to the people of India that elections are stolen, that Narendra Modi, Amit Shah have destroyed democracy, and there is a new sense of resistance, particularly among young people, that what is going on in India is wrong and needs to be stopped.
6: जब वोट चुरी का बात बिहार में कह गया था राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने, जब वोट चुरी करके बीजेपी 26 में जीता, मध्य प्रदेश में जीता, हरियाणा में जीता, बिहार में जीता, बंगाल में लूट किया पूरा, आपको पता है हम लोगों को लेके आया था इधर में, इलेक्शन कमीशन के पास में गया था। अभी तो खुल्ला खुल्ला हो गया कि भैनिश कुमार चोर है, डक्कू है, वोट चुरी किया, ईवीएम मशीन जला दिया, ईवीएम मशीन हाईजैकिंग किया, काउंटिंग रिगिंग किया, क्या नहीं किया है, इसके लिए ही मस्ट रिजाइन इमीडिएटली।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: साहस से हाईजैक संकट टालने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय ट्रंप। नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकी का, ईरान से हो सकता है कनेक्शन। पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कल गांधी जयंती पर विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च। राहुल गांधी और ममता ने साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी भी कस चुकी है कमर। मुंबई में प्रदर्शन की तैयारियां। परमिशन को लेकर सीएम को दी की चुनौती। जंतर मंतर पर विरोध की तैयारी। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल्स का ऐलान। 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: कैप्टन स्मिथ को इजराइल करेगा सम्मानित। इजरायली राजदूत ने जानकारी दी। मुंबई में स्मिथ मछार के घर बाहर लगा बधाई या देने वालों का तांता। हाथों में कैप्टन की फोटो लेकर पहुंच गए लोग जश्न मनाने। कैप्टन मछार के घर के बाहर लगा लोगों का तांता। लोगों ने खुशी से कहा हमें कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। मुंबई में फडणवीस ने कैप्टन स्मिथ मछार के चाचा और किशोर भाई मछार और चाची से मुलाकात की। सीजेपी के अभिजीत दिपके की सीएम फडणवीस को खुली चुनौती का। पुलिस की इजाजत के बगैर 2 अक्टूबर को हम करेंगे प्रदर्शन। 3 महीने तक भी जेल जाने को तैयार। फिल्म एंटनी में सनी देओल के साथ साथ साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका भी नजर आएंगी। विलेन के किरदार में नजर आएंगी विजय वर्मा। अगले साल फिल्म रिलीज होगी। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का पहला गाना रिलीज हुआ। 16 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी फिल्म। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म तू है मेरी किरण का पहला लुक जारी। 23 अक्टूबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कल रिलीज होगी फिल्म दृश्यम। 3 रिलीज से पहले ही कमा डाले हैं करीब 20 करोड़ रुपए। फिल्म मिस्ट्री 3 की रिलीज डेट टल गई है। 2027 के बदले अब साल 2028 में होगी रिलीज। 1 अक्टूबर से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 62.5 रुपए महंगा हुआ। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक एफडी और एसबीआई के सैलरी खातों के एटीएम से कैश निकासी से जुड़े नियमों में भी बदलाव। पिछले साल के त्योहारी पीक से सोने के करीब 9% महंगा होने के गहनों से बिक्री में कमी आई है। ग्राहकों ने हल्की ज्वेलरी और पुराने सोने के एक्सचेंज का रुख करना शुरू किया। सिबिल के मुताबिक मार्च 2026 में पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वालों में आधा हिस्सा जेनजीज का रहा। बैंकों ने युवाओं को जोड़ने के लिए मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स के तरीकों में बदलाव किया। वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद 2 बड़े व्यापारी संगठनों ने 2 अक्टूबर के प्रस्तावित यूपीआई विरोध प्रदर्शन को वापस लिया है। सरकार से नए एमडीआर नियमों को त्योहारी सीजन के बाद लागू रखने की मांग रखी। आरबीआई की संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी और कमजोर मानसून का भारतीय उद्योग और ग्रामीण मांग पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने का सिबिल का दावा। कंपनियों की क्रेडिट क्वालिटी में भी सुधार देखा गया। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-3 के अंतर से हराया। फाइनल में जगह पक्की। अब 3 अक्टूबर को मलेशिया और साउथ कोरिया की टीम के बीच में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की विजेता टीम को फाइनल मुकाबला भारत का होगा। भारत ने पुरुष क्वाड्रेट ग्रुप ए के मुकाबले में वियतनाम को 2-0 से हराया। सेमीफाइनल में जगह बनाई। 1 पदक पक्का किया। एशियाई गेम्स के सेमीफाइनल मेन स्क्वैश में भारत को ब्रॉन्ज गोल्ड के लिए जगह पक्की। एशियन गेम्स मेन्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा है भारत। श्रीलंका को 124 रन से हराया। 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से फाइनल। मुंबई के लालबाग से राजा को मिले करोड़ों रुपए के दान और कीमती आभूषणों की हो रही है नीलामी। दान में बापा को मिली 1 किलो 24 कैरेट सोने की ईंट जिसकी कीमत है करीब 1,48,00,000 रुपए। बापा को दान में मिली है बाइक की नीलामी भी की गई। सोने की बापा की 141 ग्राम की गणेश प्रतिमा भी भेंट की गई जिसकी कीमत है 15,65,000 रुपए। नीलामी में सोने के कई आभूषण हैं, मोदक हैं, चांदी की गदा है, क्रिकेट बैट है जिसकी कीमत लाखों में है। नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अलग अलग समाज कल्याण के कामों में किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी और अहम खबर आ रही है अमेरिका से, जहां ट्रंप ने फ्लाई दुबई के को पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा यह है कि हमलावर पायलट जो है वो संदिग्ध आतंकवादी हो सकता है, उसके ईरान के साथ कनेक्शन हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जांच जारी है घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा रही है, ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि आशंका पहले ही लगाई जा रही थी और आपको बता दें कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भी इस बारे में बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमलावर पायलट जो है संदिग्ध आतंकी हो सकता है, जिसके कनेक्शन ईरान के साथ हों।
2: Has anybody briefed you about whether or not the guy, the pilot of the Fly Dubai plane, is linked to Iran?
3: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
2: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then you tried to take down the plane.
3: It could have been, yeah.
0: पूरी दुनिया आज एक ही सुपर हीरो की चर्चाएं कर रही है और उनका नाम है कैप्टन स्मिथ मच्छर, जो दुबई से तेल अवीव जाने वाली उस फ्लाइट के मेन पायलट थे जिसे ओमानी पायलट क्रैश करना चाहता था। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय पायलट ने अपनी बहादुरी से एक और 9/11 जैसा हमला होने से बचा लिया है। पूरी दुनिया भारत के इस बहादुर पायलट की तारीफें कर रही है। कैप्टन स्मिथ की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नेतन्याहू तक कर चुके हैं। आज सीएम फडणवीस ने मुंबई में उनके घर पहुंचकर परिजनों से उनके मुलाकात की।
4: भारतीय पायलट का अदम्य साहस, उड़ते विमान के कॉकपिट में गजब की दिलेरी, हमले का करारा जवाब देने वाली जाबाजी, आज हर कोई मुरीद है हिंदुस्तान के वीर सपूत स्मिथ मच्छर का।
5: मैन जस्ट एक्ट्स विद इनक्रेडिबल हीरोइज्म एंड सेव्स द डे अलोंग विद द इंडियन पायलट हु वाज देयर एंड द अदर्स हु केम टू हेल्प।
4: पीएम मोदी ने भी उनके धैर्य, सूझबूझ और साहस की तारीफ की।
6: कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
4: वहीं मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के चाचा किशोर भाई और उनकी पत्नी से घर जाकर मुलाकात की। फडणवीस ने कहा कि आज कैप्टन स्मिथ की वजह से पूरे देश और दुनिया में उनके जज्बे और हिम्मत की तारीफ हो रही है।
7: विष्णुरा विष्णुरा विष्णु,
4: पूरे देश में कैप्टन स्मिथ की सलामती के लिए पूजा पाठ हो रहा है। फ्लाई दुबई के विमान के पायलट स्मिथ मच्छर के सम्मान में पूरा इसराइल सजदा कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के इस बेटे ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। इस वीडियो से समझिए कैसे कॉकपिट में उन पर को पायलट ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।
8: No sleep. My head is hurting. Yeah, I'm feeling my hand. Yeah. No, your hand, it's Rama. Good.
9: Rama, can I have the Panadol? Yeah. Paracetamol.
4: हमले में जख्मी कैप्टन स्मिथ मच्छर का इलाज दुबई में चल रहा है। इधर मुंबई में जिस सोसाइटी में स्मिथ के माता पिता रहते हैं, वहाँ के लोग भी स्मिथ के हौसले को सलाम कर रहे हैं, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।
10: देखिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। 174 लोगों की जान बचाई, कॉकपिट खोला और अपने प्राणों को, जान को बाजी पर लगाकर इतने लोगों की जान बचाई, ये हमें बहुत प्राउड है। ये हमारे तिरंगा है, इनकी मान सम्मान को आगे बढ़ाए, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। भारत माता की जय। हमारी भारत सरकार से मांग है कि उन्हें शौर्य चक्र मिलना चाहिए।
11: जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मिथ के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
12: मुंबई से स्मिथ के माता पिता दुबई पहुंच चुके हैं। मुंबई से बीजेपी विधायक और स्मिथ के पारिवारिक मित्र पराग शाह स्कूल में उनके सीनियर थे।
11: पराग जी, किस तरीके से देखते हैं स्मिथ के इस कार्य को और क्या आपके परिवार से कोई बात हुई, उनकी तरफ से कुछ कहा गया, कोई स्टेटमेंट है?
13: जैसा कल रात को कल लेट इवनिंग जब ही मालूम पड़ा तभी से हम लोग उनके परिवार के साथ संपर्क में है। स्मिथ के माता पिता दोनों आज दुबई गए हैं, आज सुबह अर्ली फ्लाइट में दुबई गए, अभी शायद दुबई पहुंचे हो गए। स्मिथ की तबीयत अभी ठीक है, वहाँ पे जो भी ऑपरेशन करना था वो भी हो गया है। वहाँ की गवर्नमेंट, इजरायली गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट, दुबई गवर्नमेंट, दे ऑल आर सपोर्टिंग वेल। इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से भी उनको जो जो मदद की ज़रूरत रहेगी अपडेट पर। हाँ, अभी तक स्मिथ को उनके परिवार के साथ मिलना नहीं हुआ है, सिक्योरिटी रीजन ऑल्सो, एंड ही इज़ इन सऊदी, दे आर इन दुबई, बट ही इज़ सेफ।
12: मुंबई में जाबाज भारतीय पायलट स्मिथ बछार के माता पिता की सोसाइटी में लोगों का तांता लगा हुआ है।
11: स्वास्तिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो जगह है जहां पर समित ठक्कर के माता पिता रहते हैं, यहीं पर वो मुंबई में जब आते हैं तो रहते थे और फिलहाल इस सोसाइटी के लिए गर्व की बात है क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्मिथ ने ये अपनी जान पर खेलकर 174 लोगों की जान बचाई, उसका अब हर जगह से गौरव हो रहा है, सम्मान हो रहा है और इसी सम्मान में सोसाइटी में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है शौर्यला मनपूर्वक सलाम, यानी शौर्य को दिल से सलाम है। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं समित सावंत जी, सुषम सावंत जी। सुषम जी, पहले तो क्या आपकी फीलिंग्स है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे?
14: हमारे इस सोसाइटी के लड़का स्मिथ जो पायलट थे और उनके को पायलट ने उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन फिर भी अपनी जो ड्यूटी थी सारे प्रवासियों को सुख सही सलामत ले फिर से रिटर्न लाना, उसके लिए उन्होंने खुद की जान की परवाह किए बगैर सारे प्रवासी को जो जान बचाई और उसके लिए आज पूरे विश्व से उनका जो अभिनंदन हो रहा है, ऐसे हमारे स्मिथ भारत के सुपुत्र, उनका हम भारत के सारे वासी, महाराष्ट्र के सारे वासी, मुंबई कर और इस तिलक नगर और इस सोसाइटी के सारे लोग उनका मन से अभिनंदन करते हैं।
12: स्मिथ ने अपनी बहादुरी से भारत का सीना चौड़ा किया है, लेकिन आतंकवाद के खतरे की गंभीरता भी सामने आने के बाद दुनिया भर में नई बहस छिड़ गई है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इस पूरे मामले पर भारत की भी नजर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से हमारी सहयोगी अमित भारद्वाज ने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
15: आपने, प्रधानमंत्री ने, दोनों ने ही कैप्टन स्मिथ की वीरता के बारे में बात की, किस तरह से उनके पूरे रोल को आप लोग देख रहे हैं?
16: ये बहुत ही सराहनीय है एंड हम भारत के ही नहीं बट पूरे विश्व में जितने लोग हैं सब उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके ब्रेवरी और उनके करेज, जो साहस उन्होंने दिखाया है ये कभी आपने इस तरह का देखा नहीं होगा। इस तरह के ये इंसिडेंट भी बहुत शॉकिंग है, पायलट ही दूसरे पायलट के ऊपर ऐसा अटैक करना, जो भी रिपोर्ट अभी तक आया प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो उसके हिसाब से आई थिंक ही हैज डन एन एग्जेम्पलरी वर्क। उनके खुद के लाइफ पे इतना इम्पैक्ट था फिर भी उन्होंने इतने सारे लोगों के जान बचाए तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण विषय है
15: सर। लेकिन इसकी वजह से क्या हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी वाइज एक तरह से अलर्ट मोड में आए हैं अपने खुद के एविएशन सेक्टर को लेकर?
16: देखियो, ऐसे अगर एविएशन के सेफ्टी के बारे में आप पूछते हैं तो सब हर टाइम अलर्ट मोड पे रहते हैं, बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैं हर बार इसके ऊपर मैं कह चुका हूं कि ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का विषय है एविएशन ऑपरेशंस के लिए। इसमें नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ हम करते हैं और जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स देश में या कहीं और होते हैं तो उससे जो लर्निंग होती है उससे भी हम सीख कर हमें कुछ और अगर दूसरे चीजें करनी हो, हमें और बेहतर करने के लिए कुछ विषय उठाने हो तो वो सब हम करते हैं। तो जरूर इसके बाद जो भी अभी क्योंकि वहां पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं तो जैसे ही उनके साथ एक फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके तहत हम उनके ऊपर हमारे यहां पे भी जो निर्णय लेने होंगे वो लेंगे जरूर।
0: मुंबई में कल से शुरू हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी अहम और बड़ी खबर आपको बताएं। उससे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है। रायगढ़ जिले के दिवेआगर में समुद्र में तैरने के लिए उतरे 8 छात्रों की डूबने से दर्दनाक जान चली गई है। इस हादसे के बाद आलंदी इलाके में मातम पसरा हुआ है। मृतक छात्रों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुल 42 छात्र थे जो सैर के लिए रायगढ़ पहुंचे थे। लहरों का अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं हो पाया और इसी वजह से ये छात्र पानी में फंस गए। बहुत ही दर्दनाक हादसा। और आपको बता दें कि
17: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में दिवेआगर बीच पर एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि विनर्स एकेडमी फॉर 11th एंड 12th ये एक कोचिंग क्लासेस है आलंदी पुणे में, और इस क्लास की एक टूर गई थी इस दिवेआगर बीच पर, जिसमें 25 जो लड़के हैं वो गए थे, 17 लड़कियां थी और 6 शिक्षक थे। कुल मिला के ये 48 लोग गए थे दिवेआगर बीच पर, टूर थी, पिकनिक थी क्लासेस की, और इसीलिए ये लोग गए थे। 8 बच्चे, इनमें से 8 बच्चे इनकी डूबकर मृत्यु हो गई है। इन सभी बच्चों की जो एज ग्रुप है वो 16 और 17 के बीच में है, और 8 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई है। उन सारे की बॉडीज पुलिस ने लोकल जो वाटर स्पोर्ट्स चलाने वाले वहां पर लोग हैं या फिर लोकल जो गांव के लोग हैं उनकी मदद लेकर पुलिस ने 8 बॉडीज को निकाल लिया है और बॉडीज को प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया है। जो मृत बच्चे हैं उनके परिवारजनों को सूचना बता दी गई है। अब परिवार रायगढ़ के दिवेआगर बीच पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन स्वराज दीक्षित और महबूब जमादार के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: आगे बढ़ेंगे। मुंबई में 2 अक्टूबर यानी कि कल से कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक छत्रपति शिवाजी पार्क में आंदोलन के लिए मंजूरी नहीं दी, लेकिन सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने चेतावनी दी है कि वो जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने सरकार और मुंबई पुलिस को चेतावनी दी है, रोक सको तो रोक लो। दिपके ने साफ कहा है कि जब तक सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। कल से इंडिया गठबंधन भी अलग अलग शहरों में डेमोक्रेसी मार्च निकालने वाला है।
18: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी की हुंकार।
19: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है।
18: अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार। मुंबई के शिवाजी पार्क से आगाज, फिर पूरे देश में आंदोलन। अभिजीत दिपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी की यलगार, इंडिया गठबंधन भी तैयार। पेपर लीक आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद से कॉकरोच जनता पार्टी के हौसले बुलंद।
20: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
18: इसीलिए अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा उनका आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा।
21: कल से कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जो मुंबई से स्टार्ट होगा शिवाजी पार्क से गेट नंबर 6 से। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कल के प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर में शामिल हो, क्योंकि ये देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए आंदोलन है।
18: मुंबई के शिवाजी पार्क में आंदोलन शुरू करने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी।
21: हमारी 3 डिमांड है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो एसआईआर की जो लिस्ट है, जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर ही इलेक्शन होना चाहिए। अगर एसआईआर पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे इसको बना देते हैं।
18: लेकिन हैरानी की बात है कि मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है।
19: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद जिसको जो मतलब हमारे अगेंस्ट एक्शन लेना है, अरेस्ट करना है, जेल डालना है, वो डाल सकते हैं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
1: ज्ञानेश कुमार को बोलिए रिजाइन कर दीजिए. क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं? तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे क्यों आते हैं? प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए. अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है. आप ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, और SIR से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रखने वाले लोग नहीं है.
2: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे, एंड जो जो उन्होंने SIR जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो जो इलीगल काम किया है, देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो, अंडन हो, एंड फिर आगे जाके एक फेयर और जस्ट सिस्टम बने जिससे एटलीस्ट हमारा जो

0: बहुजन जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो लोग बीएमसी के पास भी परमिशन के लिए अप्लाई किए थे, कोर्ट में वो जाने वाले नहीं है, प्रोटेस्ट उनका अधिकार है, और क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो परमिशन नहीं मिलने वाली है। तो बिना परमिशन मिले शिवाजी पार्क मैदान पर ये जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी का पहला आंदोलन रहेगा।
1: अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का ट्रेलर रिलीज हो गया और ये फिल्म 26/11 आतंकी हमले पर और मशहूर एडवोकेट उज्जवल निकम की जिंदगी पर आधारित है। आज तक से खास बातचीत में उज्जवल निकम ने फिल्म के फेमस डायलॉग्स को भी बोला। ट्रेलर देखने के बाद हर कोई राजकुमार राव की एक्टिंग की तारीफें कर रहा है और खास बात यह है कि राजकुमार राव ने शूटिंग खत्म होने तक एक बार भी उज्जवल निकम से मुलाकात तक नहीं की थी।
2: जिसने आप पर आपकी मां पर गोलियां चलाई थी वो आज है यहां इस कोर्ट में।
3: अपराधी जिनके नाम से थर थर कांपते हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमेशा चर्चाओं में बने होते हैं और इस बार अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, फिल्म का नाम है प्रहार और बहुत ही ज्यादा मशहूर वकील मिस्टर उज्जवल निकम जी के जीवन पर आधारित वो फिल्म है। राजकुमार राव इसमें उनकी भूमिका निभा रहे हैं और खुद इस समय हमारे साथ उज्जवल सर हैं। सर बहुत ज्यादा स्वागत आपका, और उनके बेटे अनिकेत भी हमारे साथ हैं। सर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे लगता है मैं कम से कम 3 बार ट्रेलर देखा है मैंने। आप संतुष्ट हैं क्या अपने खुद को फिल्मों में ट्रेलर के रूप में देखकर?
4: नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हूं, क्योंकि जो ट्रायल केस मैंने चलाई वो सिर्फ अजमल के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, जंग नहीं थी, तो हमारे देश की जंग कसाब यानी पाकिस्तान से थी, मैं ऐसा मानता हूं। और मुझे खुशी इस बात क्या है कि हमारा संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, और हर कोई व्यक्ति में, वो कोई फर्क नहीं करता, हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है कि ये फॉरेन टेररिस्ट है, इंडियन टेररिस्ट है, नहीं। और इसलिए अजमल अमीर कसाब को भी हमने पूरी तरह से ये एक संधि दी थी कि तेरे बचाव के लिए उसके लिए 2 वकील थे, और ये ट्रायल ओपन कोर्ट में चली, आखिर अजमल अमीर मोहम्मद अमीर कसाब को फांसी पे जाना पड़ा।
3: बिल्कुल सर, ये ट्रेलर में मैं राजकुमार राव में काफी।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सॉरी,
3: हाटो हजरातो खवातीन, जरा मुआइजा फरमाए तो खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए। खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए। हजरात, यहाँ अपनी पर गौर फरमाया जाए। हाँ, तो अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए, और मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए। मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए। झिझकिए मत, खुद को बीवी का गुलाम कीजिए, और इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है। गौर फरमाइए, इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है यूसीसी पर तकरार। अगर सुबह, दोपहर, शाम आई लव यू बोलकर करोगे मोहब्बत का इजहार, यूसीसी आई मीन आदावर जो है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सास से हाईजैक संकट टालने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय। ट्रंप नेतन्याहु ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का ईरान से हो सकता है कनेक्शन। पूरे मामले की जा रही है जांच।

हल्ला बोल, दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च, राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच, जनता पार्टी ने भी कसी है कमर, मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी, जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला, टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ।

चुनाव आयोग पर फिर से ममता बनर्जी का निशाना, कहा ज्ञानेश कुमार को माफ नहीं करेगी देश की जनता। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने सबसे पहले उठाया मुद्दा, देश भर में काटा गया 13 करोड़ लोगों का वोट। वोटर लिस्ट नाम हटाने के मुद्दे पर राहुल गांधी का इसी पर सवाल, कर्नाटक सीईओ कार्यालय में एफआईआर की मांग का जिक्र किया। राहुल गांधी का दावा, बेलगावी में 22-24 सितंबर के बीच करीब 15,000 नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा किए गए मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी वोटर्स को निशाना बनाने का आरोप लगाया। एमपी के दौरे पर राहुल गांधी का सीएम मोहन यादव पर वार, का यहां सरकार 100% फेल। एमपी में मोहन सरकार पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, भारत के लिए खराब बोलना उनकी फितरत में है। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस ने सियासी उठापटक, राजा वडिंग ने दिया इस्तीफा, जल्दी नए अध्यक्ष का किया जा सकता है ऐलान, राज्य में आंतरिक खींचतान जारी। दुर्गा पूजा प्रीव्यू शो में वित्तीय अनियमितताओं, कई जांच तेज हुई, ईडी ने पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और मैस आर्ट से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। ईडी की जांच में ममता बनर्जी का नाम, इंद्रनील सेन की फर्म से करीब 30 लाख ट्रांसफर का दावा, तलाशी में डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त। प्लेन क्रैश रोकने के लिए संकट मोचक बने हिंदुस्तानी पायलट, जान पर खेलकर बचाई यात्रियों की जान, पीएम मोदी ने बताया देश का गर्व। कैप्टन स्मिथ को इजराइल करेगा सम्मानित, इजरायली राजदूत ने जानकारी दी। मुंबई में स्मिथ पछार के घर के बाहर लगा बधाई देने वालों का तांता, हाथों में कैप्टन की फोटो लेकर लोगों ने जश्न मनाया। कैप्टन मच्छार के घर के बाहर लगा लोगों का तांता, लोगों ने खुशी से कहा, हमें कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। कैप्टन मच्छार की जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ वाराणसी में पूजा अर्चना की गई। इंदौर के खरजाना गणेश मंदिर पहुंचे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, कैप्टन स्मिथ मच्छाना के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। पायलट स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने के लिए कालकाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। मुंबई में फडणवीस ने कैप्टन स्मिथ मच्छार के चाचा किशोर भाई मच्छार और चाची से मुलाकात की। सीजीपी के अभिजीत दिपके और सीएम फडणवीस को खुली चुनौती का, पुलिस की इजाजत के बगैर 2 अक्टूबर को हम करेंगे प्रदर्शन, 3 महीने तक भी जेल जाने को तैयार। उत्तर प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चा में नई नियुक्तियां, विकास किशोर बने प्रदेश उपाध्यक्ष, कौशल किशोर के हालिया बयानों के बीच मिली है अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी। प्रयागराज में यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2025 की नियुक्ति पत्र जारी करने के हाईकोर्ट में लगाई गई रोक, 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई। नोएडा में स्कॉटा कार युवक की दबंग गई, सोसाइटी का बूम बैरियर तोड़कर भागा। कौशाम्बी में शादी का लालच देकर युवती से दुष्कर्म, युवती हुई प्रेग्नेंट, एफआईआर दर्ज। धमतरी हाईवे पर वेंटिलेटर एम्बुलेंस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई, नर्स की दर्दनाक मौत। कोटद्वार में सोशल मीडिया पर एक कमेंट को लेकर विवाद, व्यापारी से बदसलूकी के आरोपों में मोहम्मद दीपक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, पिकनिक मनाने गए 8 छात्र समंदर में डूब गए थे, पुणे के रहने वाले थे सभी स्टूडेंट्स। भीड़ में कर्ज और फसल बर्बादी से तंग आकर 35 साल के युवा किसान ने की आत्महत्या, 8 दिनों में 3 किसानों की आत्महत्या, 9 महीने में भीड़ में सबसे ज्यादा 168 किसानों की मौत। मुजफ्फरपुर में ट्यूशन पढ़ रहे बच्चों पर गिरी सामुदायिक भवन की छत, 10 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। संगरूर में युवक की मौत के बाद हंगामा, परिजन और कांग्रेस के नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ऑनलाइन डिलीवरी मार्ट में भीषण आग लगी, सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना, इलाके में हड़कंप। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पलट गई स्लीपर बस, 30 यात्री घायल हुए, 7 लोगों का इलाज जारी। असम के नौगांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने नाबालिग को मारी थी टक्कर, हादसे के बाद फरार हुआ, पुलिस ने पीछा करके 2 आरोपियों को पकड़ा। रायसेन दबंग महिला में स्कूटी चालक युवती को मारे गए थप्पड़, अज्ञात महिला के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज। हापुड़ में युवक को कमरे में बंद करके तालिबानी सजा, बेल्टों से पिटाई करके वीडियो वायरल हुआ, 6 पर एफआईआर दर्ज, पीड़ित पक्ष ने घर पहुंचकर मारपीट और धमकी का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी चौक पर सरे बाजार, सपा नेताओं में मारपीट, अल्पसंख्यक सभा का पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। अहमदाबाद में दंपति पर ट्रिपल मर्डर का आरोप है, 70 वर्षीय महिला का शव सीमेंट से भरे हुए ड्रम में छुपाया गया, 4 साल के बाद राज खुला। पटना में फिर से बढ़ गया गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया, कई घाट पानी में डूबे। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के मरीन ड्राइव पहुंचकर किया था बाढ़ का जायजा लिया, अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए। गोपालगंज के लगातार इलाके में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, कई इलाकों पानी पानी। सरदार सरोवर डैम पर 7वीं बार
38.68 मीटर पहुंच गया जलस्तर। सीएम भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा का पूजन करके स्वागत किया। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का पानी, खतरे के निशान के करीब पहुंच गया जलस्तर। गोंडा में लगातार बढ़ रहा घाघरा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा। घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से 23 गांव में बाढ़, 33,000 लोग प्रभावित हुए हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में तैनात किए 174 नावें। पटना में गंगा के खतरे के निशान से ऊपर घाट डूबे हुए हैं, चारों ही तरफ पानी। महावीर और भद्र घाट की सड़कों पर पहुंच गया है पानी। गंडक नदी में बहकर आ गया था तेंदुआ, थककर पेड़ पर चढ़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छपरा में बाढ़ के पानी में ताश के पत्ते की तरह ढह गया मकान, तस्वीरें सामने आई। मोतिहारी में बाढ़ का कहर, केसरिया की 4 पंचायतें जलमग्न हुई, हजारों लोग प्रभावित हुए। महोबा में लगातार बारिश के बाद भारी तबाही, 6,000 परिवार प्रभावित हुए। विधायक प्रतिनिधि ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। नागालैंड में ताजा भूस्खलन से दिकहू नदी में रुकावट की आशंका, प्रशासन अलर्ट पर है, जरूरत पड़ने पर होगा सुरक्षित स्थानों पर पलायन। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-3 के अंतर से हराया, फाइनल में जगह पक्की की। अब 3 अक्टूबर को मलेशिया और साउथ कोरिया की टीम के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की विजेता टीम से फाइनल मुकाबला खेलेगा भारत। टकराव में भारत ने पुरुष क्वाड्रेट ग्रुप ए के मुकाबले में वियतनाम को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है, एक पदक पक्का किया। एशियाई गेम्स के सेमीफाइनल मेन स्क्वैश में भारत को ब्रॉन्ज, गोल्ड के लिए जगह पक्की। एशियन गेम्स मेन्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा है भारत, श्रीलंका को 124 रनों से हराया, 3 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ फाइनल। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड, 22 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कुल मेडल की संख्या हुई है 63। 3 महीने के बाद आज रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, पहले दिन पहुंचे सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक। रणथंभौर नेशनल पार्क में सैलानियों ने किया बाघ का दीदार, बाघ की अटखेलियों ने सैलानियों को रोमांचित किया। पर्यटकों के लिए 3 महीने के बाद खुला कान्हा टाइगर रिजर्व, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, गगन नारंग और ओलंपियन खिलाड़ी इलावेनिल हरी झंडी दिखाने पहुंचे। 3 महीने के बाद आज से सरिस्का, कुंभलगढ़, विषधारी, मुकुंदरा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुले हैं, पहले दिन पहुंचे सैकड़ों पर्यटक। 92 दिन के बाद फिर से गुलजार हुआ नर्मदापुरम में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मड़ई, चूरना समेत सभी 10 पर्यटकों के लिए गेट खोले गए। यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे, दिल्ली में भारत मंडप में खास प्रदर्शनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। वाराणसी में रुका बेल्जियम से आया 108 पहियों वाला विशाल रिएक्टर, 50 किलोमीटर का सफर तय करने में लगे 4 दिन। लखीमपुर खीरी में देश के पहले आधुनिक बायोपॉलीमर प्लांट में इस्तेमाल होगा। देश के पहले आधुनिक बायोपॉलीमर प्लांट में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। फुटब्रिज हटने का इंतजार गाजीपुर, सैदपुर, गोरखपुर बस्ती के रास्ते लखीमपुर खीरी। दिल्ली में दिवाली के जश्न की तैयारियां, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण में बिक्री की छूट दी है, पटाखों को फोड़ने का समय को लेकर भी निर्देश आ सकते हैं। मुंबई के लालबाग के राजा को मिले हैं करोड़ों रुपए के दान और कीमती आभूषणों की हो रही है नीलामी। दान में बप्पा को मिली 1 किलो 24 कैरेट सोने की ईंट जिसकी कीमत करीब 1,48,00,000 रुपए। बप्पा को दान में मिली बाइक की नीलामी हुई, सोने की बप्पा की 141 ग्राम की गणेश जी की प्रतिमा भेंट की गई थी जिसकी कीमत 15,65,000 रुपए। नीलामी में सोने के कई आभूषण हैं, मोदक, चांदी की गदा, क्रिकेट बैट भी शामिल है जिसकी कीमत लाखों में है। नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अलग समाज के कल्याण के कामों के लिए किया जाएगा। फिल्म एंटनी में सनी देओल के साथ साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका नजर आएंगी, विलेन के किरदार में नजर आएंगी विजय वर्मा, अगले साल फिल्म रिलीज होगी। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का पहला गाना रिलीज हुआ, 16 अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म तू है मेरी किरण का पहला लुक जारी किया गया, 30 अक्टूबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आज रिलीज होगी फिल्म दृश्यम 3, रिलीज से पहले ही कमा डाले करीब 20 करोड़ रुपए। स्त्री 3 की रिलीज डेट टल गई है, 2027 के बदले अब 2028 में रिलीज की जाएगी। 1 अक्टूबर से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 62.5 रुपए महंगा हुआ, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक एफडी और एसबीआई के सैलरी खातों के एटीएम से कैश निकासी से जुड़े नियमों में भी बदलाव। पिछले साल के त्योहारी पीक से सोने के करीब 9% महंगा होने से गहनों की बिक्री में कमी आई है, ग्राहकों ने हल्की ज्वेलरी और पुराने सोने के एक्सचेंज का काम शुरू किया।
ट्रांसयूनियन CIBIL के मुताबिक मार्च 2026 में पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने वालों में आधा हिस्सा जेंजी का रहा। बैंकों ने युवाओं को जोड़ने के लिए मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स के तरीकों में बदलाव किया। वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद दो बड़े कारोबारी संगठनों ने 2 अक्टूबर प्रस्तावित UPI विरोध प्रदर्शन के वापस ले लिया है। सरकार से नए MDR नियम को त्योहारी सीजन के बाद लागू करने की मांग की है। RBI की संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी और कमजोर मानसून का भारतीय उद्योग और ग्रामीण मांग पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने का भरोसा। कंपनियों की क्रेडिट क्वालिटी में भी सुधार देखा गया। हॉलमार्किंग चार्जेस बढ़ने के बाद नकली हॉलमार्क और HUID को लेकर ज्वेलरी कारोबारियों में चिंता बढ़ी। सोना खरीदते वक्त अब HUID को BIS केयर ऐप पर जांचना पहले से ज्यादा जरूरी। इस साल जनवरी से सितंबर के बीच में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक के रजिस्ट्रेशन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में ग्राहकों के लिए विकल्प और बढ़ने का अनुमान। 1 अक्टूबर से विदेश से ली जाने वाली डिजिटल सेवाओं के क्रेडिट कार्ड भुगतान की रिपोर्टिंग से जुड़े नए RBI के नियम लागू होंगे। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या विदेशी डिजिटल सब्सक्रिप्शन के भुगतान पर बैंकिंग कंप्लायंस की नई जरूरत होगी। संगठित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार और मजदूरी दोनों को अच्छी कमाई दर्ज की गई। औद्योगिक नौकरियों के बाजार की तस्वीर बेहद बेहतर होने का भी भरोसा बढ़ा है। 25,000 तक कमाने वालों के लिए PF नियम में बदलाव के बाद टेक होम सैलरी घटने की आशंका। PF में योगदान बढ़ने से हाथ में आने वाली सैलरी पहले से थोड़ी कम होने की आशंका। जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति अभियान में शामिल होने पहुंची फ्रांस की एयर एंड स्पेस टीम। 4 सराफेल समेत 9 विमान पहुंचे जोधपुर। फ्रांस ने 2024 में भी तरंग शक्ति एक्सरसाइज के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था। 12 अक्टूबर तक चलेगा यह अभियान। ब्रिटेन का दावा, हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हुआ था हमला। एक कच्चे तेल से लदे टैंकर समेत 2 अन्य टैंकर्स को बनाया गया था निशाना। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत ओडेसा में रूस का भीषण हमला। कीव में रूसी ड्रोन ने स्कूल को बनाया था निशाना। किसी के घायल होने की खबर नहीं। रूस को सबसे बड़ा खतरा बताने वाले नेटो महासचिव मार्क रूटे का बड़ा बयान। कहा, रूस ने नेटो देशों को तत्काल नहीं है कोई खतरा। रूसी सरकार ने अमेरिका पर साधा निशाना। रूस पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश का अमेरिका पर आरोप लगाया। कहा, यूक्रेन युद्ध खत्म होने की शर्त पर रूस को आर्थिक सहयोग देने की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण। ट्रंप सरकार ने जर्मनी और फ्रांस को दिया धमकी। कहा, दोनों ही देश अपने आपातकालीन डीजल भंडार को करें कम। ऐसा नहीं करने पर जर्मनी फ्रांस को होने वाले डीजल निर्यात पर लग सकता है बैन। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने फिर से बरसाए हैं बॉम्ब। अफगान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान के द्वारा किए गए हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत, 11 लोग घायल हुए हैं। फ्रांस में स्कूलों की खराब हालत के खिलाफ नहीं थम रहा है प्रदर्शन। पेरिस समेत कई शहरों पर सड़कों पर उतर आए छात्र। स्कूलों के लिए अधिक फंड की मांग को लेकर भी प्रदर्शन।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको भारत के उस साहसी बेटे की दास्तां सुनाएंगे जिसे पूरी दुनिया आज झुककर नतमस्तक हो रही है और कह रही है जियो कप्तान। दुनिया को एक और 9/11 जैसे भयावह आतंकी हमले की तबाही से बचाने वाले भारत के जाबाज बेटे कैप्टन स्मिथ मच्छाड़ ने जो किया वो आज मिसाल बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कैप्टन स्मिथ की इस ऐतिहासिक और असाधारण बहादुरी को नमन किया है। आज आपको इस घटनाक्रम से जुड़े उन सवालों के जवाब भी देंगे जिनके जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमला करने वाले को पायलट का आखिर मकसद क्या था? क्या वो इस प्लेन को हाईजैक करना चाहता था या उस प्लेन को तत्काल वो क्रैश कराना चाहता था? आखिर इसराइल ने क्यों ऐसा दावा किया कि इस हमलावर ने जानबूझकर योग को आगे खींचा था ताकि फ्लाइट क्रैश हो जाए? आज एक और बड़ा सवाल यह है कि जिस समय पूरी दुनिया कैप्टन स्मिथ मच्छाड़ को सलाम कर रही है, उनकी बहादुरी के किस्से सुना रही है, उनके घर तक उनकी कुशलता जानने और तारीफ करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तब हमला करने वाले पायलट का नाम तक क्यों सामने नहीं आया? आखिर 174 लोगों की जान लेने की कोशिश करने वाला, इतना तो तय है ना, अगर उसने हमारे भारतीय पायलट जो मेन पायलट थे कैप्टन स्मिथ मच्छाड़ उन पर कॉकपिट पे जो इमरजेंसी एक्ट होता है उससे हमला किया, धारदार हथियार से हमला किया, उनकी जान लेने की कोशिश की और विमान नीचे नोज डाइव कर रहा था, क्रैश होने ही वाला था, तो इतना तो तय है कि वो इस प्लेन को क्रैश कराना चाहता था, 174 लोगों की जान लेना चाहता था। आखिर उस पायलट का नाम, उसकी पहचान क्यों छिपाई जा रही है? आज आपको इस हमलावर द्वारा अल्लाह अकबर का नारा लगाने का सच भी बताएंगे क्योंकि आपने भी शायद अब तक सोशल मीडिया पर यह खबरें देखी है। आज एक और सवाल पूछा जा रहा है कि जिस ओमान के साथ इसराइल के राजनयिक संबंध भी नहीं है, उस देश का व्यक्ति आखिर इसराइल कैसे आ रहा था? दावा है कि हमला करने वाला को पायलट ओमान का है, जबकि इसराइल में उन्हीं देशों के पायलट आ सकते हैं जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध है या जिन्हें वो मंजूरी देता है। तो आखिर फ्लाई दुबई में ओमान का एक पायलट उस विमान पर कैसे था जो दुबई से तेल अवीव आ रही थी, इसके पीछे का रहस्य क्या है? और इसके बाद आपको बताएंगे कि सुपर पावर अमेरिका ने इराक का मैदान भी छोड़ दिया। 21 साल, दो दो दौर की जंग और हासिल क्या हुआ? शून्य। अफगानिस्तान तालिबान से लड़े, तालिबान को सत्ता सौंप के लौट आए। वियतनाम के बाद अब इराक से भी अमेरिकी सेना की विदाई हो गई, यानी इरबिल एयरबेस से भी अपने आखिरी दस्ते को रवाना कर दिया अमेरिका ने। सोचिए जो देश, अगली खबर हम आपको जो दिखा रहे हैं, जो देश दुनिया को कच्चा तेल बेचता, जहां 11,000 करोड़ बैरल तेल का खजाना जमीन के नीचे दबा, क्या वो भी पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई से जूझ सकता है? यूएई में अचानक पेट्रोल डीजल के दाम 16% बढ़े हैं। हैरानी की बात यह है कि यूएई में आज डीजल भारत से महंगा है।
1: I need like $12,000 because there's just like a lot of stuff that I like really want to buy online.
0: और अब आपको कुर्ला स्टेशन से एक वीडियो दिखाते हैं जहां महिला कोच में महिलाओं को परेशान कर रहे एक व्यक्ति को यात्रियों ने रंगे हाथों दबोच लिया। फिर क्या था, गुस्साए लोगों और पुलिस ने मिलकर उस आरोपी के हाथ पैर बांधे, उसे रेलवे ओवरब्रिज से घसीटते हुए नीचे ले आए। लेकिन आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहते हैं कि जिस को पायलट पर तेल अवीव जा रही फ्लाइट को क्रैश या हाईजैक करने का आरोप लग रहा है, उसका नाम अब भी सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आरोप है कि ये को पायलट ओमान का नागरिक है जो पिछले 8 महीने से यूएई की फ्लाई दुबई एयरलाइन में नौकरी कर रहा था और कई कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में था, लेकिन यूएई ने कहा है कि वो इन आरोपों पर अभी कुछ नहीं करेगा। यूएई के मुताबिक बहुत जल्द सऊदी अरब इस आरोपी को उसे सौंपेगा और उसके बाद दुबई में उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। यानी इसराइल इस मामले में सीधे कोई जांच नहीं कर पाएगा और ना ही अभी उसे इस को पायलट की हिरासत मिलेगी। इसके अलावा इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि इस आरोपी का नाम आने वाले दिनों में भी बाहर आएगा, और इसके पीछे कारण है यूएई का कानून। हालांकि इसकी कोई वजह नहीं दिखाई देती कि जिस पायलट ने हमला किया है या फिर हमलावर पायलट, उसकी पहचान अभी तक इस घटना के इतने घंटों बाद तक क्यों छिपा कर रखी जा रही है। हमें भी इंतजार है कि किसी ना किसी तरह से, या तो एयरलाइन की तरफ से या फिर को पायलट से, या जो अन्य लोग इस एयरलाइन में काम करते हैं या फिर जो यात्री सवार थे, क्या जो अन्य क्रू मेंबर्स थे, क्या किसी के हवाले से इसका नाम आएगा। लेकिन अभी तो देखिए यूएई का मामला क्या है। यूएई का कानून कहता है कि जो लोग आतंकी गतिविधियों से जुड़े अपराधों में गिरफ्तार होते हैं, उनका नाम और पहचान तब तक सार्वजनिक नहीं होते जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाएं। सीएनएन ने भी अपनी आज शाम की एक रिपोर्ट में यह लिखा है कि यूएई ने आधिकारिक तौर पर जांच पूरी होने तक समय से पहले की अटकलों और बिना पुष्टि के पहचान उजागर करने पर सख्त हिदायत दी है, जिसका पालन पूरी दुनिया का मीडिया कर रहा है। और आप इसका मतलब समझिए। सूत्रों के हवाले से इसराइल के दावों में एक बार के लिए इस को पायलट का नाम बाहर आ भी सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप से यूएई अपने कानून के तहत इसको पायलट का नाम अपनी जांच पूरी होने तक कभी सार्वजनिक नहीं करेगा। और इस बात की अभी इसराइल का मीडिया खूब आलोचना भी कर रहा है। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इन सब के बीच क्या यूएई वाकई इसको पायलट का नाम सामने रखेगा या फिर जांच पूरी होने तक नाम नहीं आने देगा। अभी तो ये एक सवाल बना हुआ है। यहां पश्चिमी मीडिया में कुछ विश्लेषक ऐसा भी लिख रहे हैं कि अगर आरोपी का नाम और उसकी पहचान सार्वजनिक होती है तो इससे उससे जुड़ा आतंकी नेटवर्क और स्लीपर सेल एक्टिव हो सकता है, जिसके कारण इस को पायलट का नाम अब तक बाहर नहीं आया। आपको भी अजीब बात लग रही होगी, जब पश्चिमी देशों में कोई आतंकी हमला होता है, आतंकी हमले की कोशिश होती है, तो उसमें शामिल आरोपियों की पहचान तुरंत सार्वजनिक की जाती है। भाई ये तो माना ही जाता है कि जो अपराधी है उसको नेम शेम करने की जरूरत है, उसकी पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन इसराइल के मामले में कई बार ऐसा हुआ है जब हमलावरों की पहचान को गोपनीय रखा गया, और इस बार भी ऐसा ही करने के आरोप लग रहे हैं। और अब तो इस मामले की जांच भी यूएई को मिलने वाली है। हमारे पास इस घटना का वीडियो है जिसमें मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के घायल होने के बाद कुछ यात्रियों ने को पायलट को दबोच लिया था और उसके हाथ पैर बांध दिए थे। वो पूरी बात भी बता रहे हैं, देखिए। हमारे पास इस घटना के कई नए वीडियो आए हैं जिनसे ये पता चलता है कि दुनिया इसे 9/11 जैसे हमले की कोशिश आखिर क्यों बता रही है। इनमें भी सबसे खतरनाक वीडियो ये है जिनमें उस वक्त का खौफनाक मंजर कैद हुआ जब विमान महज 2 मिनट के अंदर 34,000 फीट की ऊंचाई से 14,000 फीट तक नीचे गिर गया, और इस दौरान विमान के अंदर चारों तरफ यात्रियों की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। सुनिए।
2: שקט, שקט, די, די.
0: कुछ और तस्वीरों में मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मचार खून से लथपथ नजर आते हैं, जिन्होंने इस फ्लाइट को क्रैश होने से बचाया। और आज पूरा देश कह रहा है जियो कैप्टन। जब कुछ यात्रियों ने आगे आकर को पायलट को दबोचा, तब कैप्टन स्मिथ मचार का लगातार खून बह रहा था और वो दर्द से कराह रहे थे। उनकी जान बचाने के लिए इसी फ्लाइट में मौजूद एक डेंटिस्ट आगे आए, जिन्होंने सबसे पहले उन्हें एक मास्क लगाया, उनसे बात करने की कोशिश की ताकि वो बेहोश ना हो और उनकी जान को खतरा ना बढ़े। देखिए,
2: תצלם גם אותנו, את עצמנו, שאנחנו שומרים פה. תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס ש...
3: תקפו אותנו עכשיו, במטוס הזה, עשו לרצוח את הטייס, והשתלטנו על הצוות.
2: למה?
4: זה הטייס
2: שרצו לרצוח.
0: सोचिए विमान के अंदर की क्या स्थिति रही होगी, भयावह स्थिति थी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि कैप्टन स्मिथ मचार की हालत अब स्थिर है और राहत की बात यह है कि उनका इलाज सऊदी अरब के तबूक में चल रहा है और पूरी दुनिया आज उनको हीरो कह रही है। हम सबको उन पर गर्व है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ कह रहा है जियो कैप्टन। 174 लोगों की जान बचाना, अपनी जान को ताक पर रखकर किसी तरह से चोटिल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलना, सोचिए अगर उन्होंने ये हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज मैं आपके सामने क्या खबर पड़ रही होती। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की असाधारण बहादुरी को सलाम करते हुए ये कहा है कि उन्होंने दुनिया को एक और 9/11 जैसी भयानक त्रासदी से बचा लिया है। इजराइल के राजनयिकों और नेताओं ने भी ये कहा है कि इजराइल इस भारतीय पायलट का हमेशा कर्जदार रहेगा। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कैप्टन स्मिथ मचार असली हीरो हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी तबाही को होने से टाल दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि कैप्टन स्मिथ मचार पर पूरे भारत को गर्व है और दुनिया उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है। कैप्टन स्मिथ ने जो किया है, एक बार को सोचिए, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज मैंने अपने शो में अनेकों पायलट से बात की, वो कह रहे थे कि हम अगर ऐसी स्थिति में फंसते तो हमारे हाथ पांव फूल जाते, ये मुमकिन ही नहीं था कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी, वो ऐसा धारदार हथियार होता है। स्क्रीन पर आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये एक्स होता है, ये इमरजेंसी एक्स होता है, कॉकपिट के अंदर होता है। ऐसी धारदार हथियार है जिससे किसी की तुरंत मौत हो सकती है, लेकिन इससे बार बार हमला किया उस शख्स ने, कैप्टन स्मिथ मच्छार पर। बावजूद इसके चोटिल होने के बावजूद वो लड़ते रहे उसको पायलट से और किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब हुए। उन्होंने स्क्वॉक 7700 का जो मैसेज भी था हाईजैकिंग का, वो भी उन्होंने टाइप करके भेजा। कल्पना कीजिए ऐसी भयावह स्थिति, अगर उनकी सूझबूझ, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत उन्होंने नहीं दिखाई होती तो जैसा मैंने पहले आपको कहा, आज मैं कुछ और ही खबर पढ़ रही होती। जब विमान 34,000 फीट की ऊंचाई से 14,000 फीट तक नीचे गिर गया था और कॉकपिट के अंदर खून बह रहा था, तब भी कैप्टन स्मिथ ने आपा नहीं खोया। चाकू या कुल्हाड़ी के वार सहते हुए भी उन्होंने विमान को स्थिर रखने की कोशिश की, कॉकपिट का दरवाजा खोलकर ऐसा साहस दिखाया, क्योंकि अगर कॉकपिट का दरवाजा लॉक रह जाता तो फिर कोई ताकत उसको बाहर से खोल नहीं पाता, बहुत मुश्किलें आती। लेकिन उन्होंने अंदर से कॉकपिट का दरवाजा खोला, बाहर बताया कि क्या हो, और जो साहस उन्होंने उन परिस्थितियों में दिखाया, बहुत मुश्किल था। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही है।

0: זה מי שרצה לדקור אותו, מי שדקר אותו, לא שרצה.
1: יוהן?
2: He hit me like
3: no.
2: So many times. My hand, I can move, but I can't do this. I can't squeeze my hand.
3: זה משהו מסוכן.
4: हिंदुस्तान की शान भारत का कप्तान. जब भारत का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में जीतता है, तिरंगा लेकर मैदान में उतरता है, तो उस खिलाड़ी के साथ सिर्फ उसके परिवार या उसके शहर की उम्मीदें नहीं होती, उसके साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं. और जब वो खिलाड़ी मेडल जीतता है, पोडियम पर खड़ा होता है, तिरंगा लहराता है, तो उसे एक पल में पूरी दुनिया भारत का नाम देखती है. आपने अक्सर देखा होगा कि जब जन गण मन वहां पर बजता है, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. ये देश की ताकत होती है. और हमें उस खिलाड़ी पर गर्व इसलिए नहीं होता कि उसने सिर्फ एक मेडल जीता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसने दुनिया के सामने भारत की पहचान को मजबूत किया है. अपने खून पसीने से उस स्टेडियम में पहुंचा और फिर उस पोडियम तक उसका सफर हुआ. क्रिकेट में भी हमने यही देखा है, जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उस जीत सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं होती, उस जीत के साथ करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, तिरंगा लिए सब सड़कों पर उतर जाते हैं. और इसी तरह जब कोई वैज्ञानिक दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तो कोई कलाकार दुनिया के बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, या कोई सैनिक असाधारण साहस दिखाता है, तो ऐसी हर उपलब्धि भारत की छवि को दुनिया के सामने मजबूत करती है. और शायद यही बात कैप्टन स्मिथ के मामले में भी कही जा सकती है. जिस घटना में कैप्टन स्मिथ ने असाधारण साहस और सूझबूझ दिखाई, वो सिर्फ एक विमान में हुई एक घटना नहीं रह गई. उसने भारत से जुड़े एक ऐसे सवाल को भी दुनिया के सामने रखा कि संकट की घड़ी में एक भारतीय किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाता है. आज अगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये केवल उनकी तारीफ नहीं है, ये उस भरोसे की भी बात है जो एक भारतीय की पेशेवर क्षमता, प्रोफेशनल एबिलिटी, धैर्य, साहस को लेकर पैदा होता है. और यही तो किसी देश की असली ताकत होती है, उसकी पहचान होती है. सॉफ्ट पावर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया भारत की फिल्में देखे, भारतीय खाना खाए या योग करे. सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि दुनिया भारत के लोगों को किस नजर से देखती है. और कैप्टन स्मिथ ने आज एक नया नजरिया जरूर दिया है. उन्होंने एक मुश्किल परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाई. सोचिए, इतने विदेशी नागरिकों की जान बचाई अपनी जान को ताक पर डालकर. दुनिया को भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसमें साहस है, धैर्य है, संकट के आगे डटकर खड़े होने का जज्बा है. और यही है असली सॉफ्ट पावर. यानी आज कैप्टन स्मिथ ने अपनी बहादुरी से भारत के लिए वो सम्मान हासिल किया है जो किसी मेडल से कम मूल्यवान नहीं है. और उन्हीं की वजह से आज दुनिया भारत की इतनी चर्चा कर रही है. और इसराइल तो ये कह रहा है कि वो भारत का हमेशा आभारी रहेगा. और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए अब आप ये समझिए कि कल फ्लाई दुबई की इस फ्लाइट में क्या हुआ था और कैसे कैप्टन स्मिथ ने 174 यात्रियों की जान बचाई. देखिए, इस विमान का फ्लाइट नंबर यानी उड़ान संख्या FZ1073 था. और इस फ्लाइट ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के लिए रात 3:05 पर उड़ान भरी थी. इस विमान को दो पायलट उड़ा रहे थे, जिनमें मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मछार थे, जो जून 2022 से लगातार फ्लाई दुबई एयरलाइन में कैप्टन पायलट की नौकरी कर रहे हैं, जबकि दूसरे को पायलट की पहचान को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है. अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि ये को पायलट ओमान से था और ओमान मिडल ईस्ट के उन देशों में शामिल है जिसके इसराइल के साथ राजनयिक संबंध है ही नहीं, और ओमान इसराइल को एक राष्ट्र की भी मान्यता नहीं देता है. ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि इस फ्लाइट में कुल 174 यात्री मौजूद थे, जिनमें 166 यात्री इसराइल के नागरिक थे. और इसी वजह से अभी इसराइल इस घटना को एक आतंकी हमले की साजिश बता रहा है. उसका आरोप यह है कि ओमान के एक मुस्लिम को पायलट ने ऐसी फ्लाइट को क्रैश या हाईजैक कराने की कोशिश की जिसमें उसके यहूदी नागरिक यात्रा कर रहे थे. बड़ी बात यह है कि जब इस फ्लाइट ने उड़ान भरी तब सब कुछ सामान्य था. इस फ्लाइट को 3:15 में दुबई से तेल अवीव पहुंचना था, और घटना के वक्त 2 घंटे की उड़ान पूरी हो चुकी थी और विमान लगभग 34,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर था। इस ऊंचाई का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर विमान या उसके इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो पायलट के पास स्थिति को संभालने और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने का पर्याप्त समय होता है। और यहां भी ये विमान रिलैक्स मोड में था। विमान के अंदर यात्रियों की सीट बेल्ट खुली हुई थी। इसी के बाद जब ये फ्लाइट अपने 2 घंटे पूरे कर चुकी थी तब कॉकपिट से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आरोप है कि ये वही समय था जब ओमान के को पायलट ने 34,000 फीट की ऊंचाई पर मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मछार पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि यह हमला एक पेन या छोटी उंगली जितने चाकू से हुआ जो ओमान का को पायलट अपने साथ छिपा कर लाया था। लेकिन अब CBS न्यूज का दावा है कि यह हमला फायर एक्ट से किया गया जो एक तरह की कुल्हाड़ी होती है, यानी कॉकपिट के अंदर ही अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपातकालीन स्थिति के लिए जो कुल्हाड़ी लगाई जाती है उसे CBS न्यूज के मुताबिक ओमान के को पायलट ने तोड़कर निकाला और उससे मुख्य कैप्टन स्मिथ मछार पर हमला कर दिया। और इस दौरान जब कॉकपिट में यह घटना हो रही थी तब अंदर बैठे यात्री और क्रू मेंबर्स इस शोर को सुन रहे थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा है। आरोप है कि कैप्टन स्मिथ मछार को घायल करने के बाद इसको पायलट ने विमान के कंट्रोल्स को नीचे की तरफ धकेल दिया, यानी ये प्लेन क्रैश हो जाए ऐसी स्थिति पैदा कर दी। ऐसा करने से ये विमान अचानक सीधी नाक के बल यानी नोज डाइव करते हुए नीचे गिरने लगा। यहां यह भी समझिए कि ये विमान खुद अपने आप नीचे की तरफ नहीं आ सकता। ये तभी संभव है जब इसको पायलट ने कॉकपिट में लगे कंट्रोल योक को आगे की तरफ धकेल दिया। जब ऐसा होता है तो विमान के पीछे के पंखे यानी जो एलिवेटर्स और स्टेबलाइजर्स का एंगल है वो बदल जाता है और हवा के दबाव के कारण विमान की नाक नीचे झुक जाती है। और यहां भी हो सकता है कि ऐसा ही हुआ, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू आरोप लगा रहे हैं कि ओमान का को पायलट इस फ्लाइट को क्रैश कराना चाहता था। यात्रियों के ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए, विमान बुरी तरह हिलने लगा, यात्रियों को लगा कि अब उनकी जान जाने वाली है। बड़ी बात यह है कि कॉकपिट में जब मुख्य पायलट कैप्टन स्मिथ मछार पर हमला हुआ तब उनकी आवाजें और धक्का मुक्की अंदर बैठे यात्री महसूस कर पा रहे थे। अब यहां इसी मौके पर घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मछार ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए पूरी दुनिया आज उन्हें अपना हीरो कह रही है और हम सबको गर्व है कि वो भारतीय है। उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को स्क्वॉक 7700 का सिग्नल भेजा, जिसका मतलब होता है ट्रैफिक कंट्रोल को यह बताना कि विमान किसी मुसीबत में है। सुबह 5:31 पर इस सिग्नल को भेजा गया और इसके सिर्फ 11 मिनट बाद एक और सिग्नल भेजा गया जिसे स्क्वॉक 7500 कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि विमान हाईजैक हो गया है या हाईजैक होने वाला है। जैसे ही इंटरनेशनल एयर स्पेस में हाईजैक का सिग्नल मिला उसके तुरंत बाद दुबई से लेकर इसराइल तक खलबली मच गई और इसराइल की वायुसेना के सुरक्षा के मद्देनजर अपने लड़ाकू विमानों को हवा में इस फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए रवाना कर दिया। इसी बीच लहूलुहान हालत में कैप्टन स्मिथ मछाल ने बहादुरी दिखाई और वो अंदर से कॉकपिट का दरवाजा अनलॉक करने में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और बहुत बड़ी बहादुरी का कदम था। ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान नहीं था। कॉकपिट का दरवाजा अंदर से लॉक था, वो लहूलुहान थे, उन पर हमला किया जा चुका था, बावजूद इसके उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा किसी तरह से हिम्मत दिखाते हुए खोल दिया। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद दुनिया भर के यात्री विमानों और खासकर बोइंग 737 के कॉकपिट दरवाजों को बुलेट प्रूफ और ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है जिसे हाईजैकर कॉकपिट में दाखिल ना हो सके। लेकिन किसे पता था कि अंदर बैठा कोई पायलट ही ऐसी हरकत करने वाला था। यह दरवाजा किसी सामान्य चाबी या हैंडल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच या टॉगल स्विच द्वारा नियंत्रित होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बोइंग विमानों में कॉकपिट के गेट को खोलने का यह स्विच को पायलट की सीट की तरफ होता है, यानी को पायलट जिसने मारा था उसी की सीट की तरफ कंट्रोलर था। यानी यहां इस घटना में कॉकपिट को खोलने का स्विच ओमान के को पायलट की तरफ था और इस दौरान कैप्टन स्मिथ मछार घायल हालत में, उनके सिर में चोट लगी थी, उनके हाथ में, उनके छाती, पेट पर कुल्हाड़ी से हमले के कारण खून बह रहा था। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से लहूलुहान थे, आसपास खून फैला था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ओमान के कोपायलट के पीछे धकेलकर चोट लगे होने के बावजूद ताकत और हिम्मत दिखाई, ओमान के कोपायलट को पीछे धकेला और जो कॉकपिट का गेट है उसे खोलने में वो कामयाब रहे और वो तुरंत बाहर निकलते ही नीचे गिर गए। कॉकपिट का गेट खुलते ही क्रू मेंबर्स और विमान में सवार कुछ यात्री कॉकपिट के अंदर घुस आए। उन्होंने हमलावर को पायलट को कसकर दबोच लिया और उसे बांधकर काबू में किया। इस हाथापाई के दौरान कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई और इनमें भी जो यात्री 16वीं रो से बैठकर उठकर आया था उसकी सूझबूझ ने भी विमान को क्रैश होने से बचा लिया। इस यात्री का नाम है यानीव हायुंग, जो पेशे से एक प्लम्बर है और यही व्यक्ति सबसे पहले कॉकपिट में दाखिल हुआ था। फॉक्स न्यूज के मुताबिक इसने सबसे पहले ओमान के कोपायलट का गला दबोचा, उसे कंट्रोल पैनल से घसीटकर बाहर किया और इसके बाद जब हायुंग ने यह देखा कि कॉकपिट में कोई भी कंट्रोल पर नहीं है और विमान तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसने मुख्य कंट्रोल स्टिक यानी विमान के कंट्रोल योक को अपने हाथों में ले लिया और विमान का अगला हिस्सा उठाकर उसे सीधा कर दिया। यानी हायुंग का कहना है कि उसने कभी विमान उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन क्योंकि वो क्रैश होने वाले विमानों पर बना एक टीवी शो देखता था, इसलिए उसे पता था कि जब विमान नीचे जा रहा हो तब उसके कंट्रोल योग को अपनी तरफ खींचना चाहिए और यहां भी उसने यही किया, विमान स्थिर हो गया। इसके बाद जो विमान तेजी से नीचे गिर रहा था उसे इसी विमान में सफर कर रहे एक पायलट ने सूझबूझ से संभाला, उसकी नाक ऊपर उठाई, जो नोज डाइव कर रहा था उसे ऊपर की तरफ बैलेंस किया, विमान को फिर से एक सुरक्षित ऊंचाई पर लाकर स्थिर कर दिया, जिससे ये विमान क्रैश होने से बच गया। इसके अलावा जब ये सब कुछ हो रहा था तब विमान में मौजूद इसराइल के एक डेंटिस्ट ने कैप्टन स्मिथ मछार की जान बचाने की कोशिश की, उनके शरीर से जो खून बह रहा था उसे रोकने की कोशिश की। और क्योंकि इस पूरी घटना के वक्त फ्लाई दुबई का यह विमान जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा के पास था, कैप्टन स्मिथ मछार भी गंभीर रूप से घायल थे, इसीलिए इसराइल जाने के बजाय इस विमान को सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। और अब पूरी दुनिया कह रही है कि अगर कैप्टन स्मिथ मछार नहीं होते तो शायद 174 यात्रियों की जान खतरे में होती, 9/11 जैसी ये दूसरा बड़ा हमला कोई नहीं रोक पाता। देखिए आज भी बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि कैप्टन स्मिथ का सपना कभी भी पायलट बनने का नहीं था। स्कूल के बाद उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी और इनका इरादा था कि वो आगे चलकर परिवार के कपड़ों के कारोबार को संभालें और उन्होंने अपने भविष्य को लेकर सब कुछ पहले से तय किया हुआ था। लेकिन एक दिन इसी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वो अपने दोस्तों के कहने पर एक सेमिनार में शामिल होने गए जो एविएशन यानी विमानों के बारे में था। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। वो सेमिनार में बताई गई बातों से इतना प्रभावित हो गए कि उन्हें विमान उड़ाने पायलट बनने की ठान ली उन्होंने। उनकी मां शुरुआत में इस फैसले को लेकर चिंतित थी, लेकिन किसी तरह कैप्टन स्मिथ ने अपने परिवार को भी राजी कर लिया और बच्चों की खुशी के सामने आखिरकार माता पिता राजी हो ही जाते हैं। और फिर वो पढ़ने के लिए, पायलट बनने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गए। अब उन्होंने न्यूजीलैंड में मेनलैंड एयर से फ्लाइट ट्रेनिंग की। जब ट्रेनिंग के बाद वो भारत लौटे तो उनकी पहली उड़ान बेंगलुरु से दिल्ली की थी। अपने शानदार अनुभव और अनुशासन के कारण वो 2022 में फ्लाई दुबई के डायरेक्ट एंट्री कैप्टन बने और मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गए। बड़ी बात यह है कि उन्होंने 2025 में एक पॉडकास्ट में उन्हीं परिस्थितियों का जिक्र किया था जिनका सामना उन्होंने कल फ्लाई दुबई की फ्लाइट में किया था। एक बार उस बयान को भी सुनिए और यह भी सुनिए कि इसराइल के सोशल मीडिया पर उन्हें हीरो बताते हुए खूब वीडियोज आज बनाए जा रहे हैं।
1: when we are up there and if something happens, you know, who's going to save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew. But when things are going wrong, you need them.
5: I want every single one of you to know the name Smit Machar. He is the Indian captain of the Fly Dubai flight carrying more than 170 people from Dubai to Tel Aviv. When his Omani terrorist co-pilot attacked him and stabbed him inside the cockpit, Smit fought back, even as the plane began plunging thousands of feet towards the ground. And despite being severely wounded and covered in blood, he kept fighting. With what Israeli officials describes as some of his last remaining strength, he managed to release the cockpit door, allowing passengers and crew to rush inside, overpower the attacker, and ultimately regain control of the aircraft. More than 170 people made it home because of Smit. 170 families that didn't lose their loved ones because he chose to take action and fight. He chose to be a hero. And that's exactly what he is. Smit is right now dealing with the wounds caused by the terrorist, and he is in critical condition. So I want to wish him speedy recovery. Refuah shlema. Thank you so much from the people of Israel for your courage and for your sacrifice. We do not take it for granted, and we will never forget it.
4: कैप्टन स्मिथ पर जिस co-pilot ने हमला किया था, उसे लेकर कई दावे पश्चिमी मीडिया और इजराइल के मीडिया में भी किए जा रहे हैं. जैसे इसराइल के चैनल 16 से बात करते हुए फ्लाई दुबई के एक दूसरे पायलट ने ओमान के स्को पायलट के बारे में यह दावा किया है कि वो बहुत ज्यादा धार्मिक था और कट्टर व्यवहार करता था. वो महिलाओं से हाथ मिलाने से इनकार करता था. ये वही शख्स है. इसके हाथ बांध दिए थे इन लोगों ने. इसका भी इलाज किया गया है. कुछ महिला सहकर्मी भी उसे बता रहे हैं कि उसे धार्मिक कट्टरपंथी वो कहती हैं, और कई बार वो दिन में नमाज की बातें भी करता था. और यहां हम इस बात को साफ करना चाहते हैं कि हम इस co-pilot के नमाज पढ़ने को गलत नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर उनके साथ काम करने वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये उनका नजरिया था. उसको लेकर उन्होंने इस co-pilot के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. जो लोग भी इनके साथ काम करते थे उन्होंने इस co-pilot के रवैये पर ऐसे सवाल खड़े किए. इसके अलावा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि ये co-pilot इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था. इसके बारे में उन्हें कई ऐसी पुख्ता बातें पता चली है. यहां फ्लाई दुबई में काम करने वाले कर्मचारी नाम ना बताने की शर्त पर यह सवाल भी उठा रहे हैं कि एयरलाइन ने ओमान के co-pilot की ड्यूटी इसराइल जाने वाले विमान के कॉकपिट में आखिर कैसे लगाई और आखिर इसे मंजूरी मिली कैसे. तो समझिए, इसराइल जाने वाले विमानों को उन्हीं देशों के पायलट ऑपरेट कर सकते हैं जिन्हें इसराइल मंजूरी देता है या जिनके इसराइल के साथ राजनयिक संबंध है. जबकि इसराइल और ओमान के बीच कट्टर दुश्मनी मानी जाती है और ओमान एक मुस्लिम देश है जो इसराइल को एक देश मानता ही नहीं. यहां बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इस घटना के दौरान अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया गया. ये बीबीसी की रिपोर्ट का दावा है. हालांकि बीबीसी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि यह नारा आरोपी co-pilot ने ही लगाया था. लेकिन इसराइल का मीडिया लिखता है कि इस फ्लाइट में बाकी यात्री इसराइल से ही थे, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि यह नारा इसी co-pilot ने लगाया हो. हालांकि हम अपनी तरफ से पुष्टि नहीं करते. इस फ्लाइट में जो कुछ भी हुआ वो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था. लेकिन जिंदगी और मौत की इस जंग के बीच 5 रियल लाइफ हीरोज खड़े थे जिन्होंने इस खूनी हमले के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना अदम्य साहस, सूझबूझ और धैर्य का परिचय दिया. और आज अगर 174 यात्रियों की जान बची है, वो अपने घरों को सुरक्षित लौटे हैं, तो हमने सोचा कि इन 5 हीरोज की पहचान जरूर करनी चाहिए. सबसे पहले वही नायक जिसके सामने आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है, कैप्टन स्मित मच्छार, मेन पायलट. भारत के स्मित मच्छार, मुंबई के रहने वाले सीनियर कमर्शियल पायलट स्मित अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दुबई में रहते हैं. उन्होंने 2008 से 2009 में न्यूजीलैंड से अपनी एविएशन ट्रेनिंग पूरी की थी. इस घटना के दूसरे बड़े हीरो हैं इसराइल के रहने वाले एक साधारण से प्लम्बर यानूव हायून. शोर और चीख पुकार सुनने के बाद वो सबसे पहले कॉकपिट के अंदर घुसे। वो कॉकपिट से काफी दूर 16वीं रो में बैठे थे। जैसे ही कैप्टन स्मिथ ने दरवाजा अनलॉक किया, यानी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए, बिना डरे अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि हमलावर कंट्रोल व्हील दबाकर विमान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। यानी ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पीछे से दबोचा, उसका गला दबाते हुए उसे कंट्रोल सीट से खींचकर कॉकपिट में बाहर किया। विमान उड़ाने का कोई अनुभव ना होने के बावजूद उन्होंने विमान के योक यानी कंट्रोल हैंडल को पीछे की ओर खींचा, जिससे तेजी से नीचे गिरता विमान थोड़ा समतल हो सका। उन्होंने बताया कि हवाई हादसों पर आधारित एक टीवी शो वो देखते हैं, मे डे,

0: אני והוא תחפנו את הדלת, הטייס שהיה דקור היה פשוט מאוד סמוך לדלת, אז היה קשה לנו לפתוח אותה, אבל נראה לי, לפי דעתי, מסקנה שלי,
1: שהוא פתח. לפתוח. הוא פתח, הוא צריך להגיע למעלה, לא?
0: לפני שהוא התמוטט.
1: לפני שהוא התמוטט, הוא הצליח.
0: הוא הצליח.
1: בתושייה גדולה.
0: כשנכנסתי, ראיתי את המפגע על המכשירים בין שני...
2: इस घटना के तीसरे हीरो हैं ज्विका मानेस। वो इसराइल के प्रमुख बैंक बैंक ल्यूमी की अंडरराइटिंग ब्रांच के सीईओ हैं। हमलावर को शारीरिक रूप से काबू करने और बांधने की कमान संभालने वाले फाइटर। उन्होंने हमलावर को काबू करने में और बांधने में बहादुरी का जबरदस्त परिचय दिया। जब प्लेन में चीख पुकार मची थी और विमान के तेजी से नीचे जाने की वजह से लोग इधर उधर गिरने लगे, तब ये बैंकर बहादुरी से कॉकपिट की ओर भागे। कॉकपिट खून से पटा हुआ था, हमलावर बहुत आक्रामक हो चुका था। तब ज्विका मैनेस ने साथी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर पूरी ताकत से हमलावर को दबोचा, क्योंकि एक आदमी ये नहीं कर सकता था। जब बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं मिली, तब उन्होंने विमान में यात्रियों को बांटे जाने वाले जो हेडफोन के तार हैं और केबल्स हैं, उसका इस्तेमाल किया और हमलावर को कसकर उनके हाथ बांधने थे ताकि वो दोबारा हमला ना कर सके। ये ज्विका ने किया। इस घटना के चौथे हीरो हैं एक बिजनेसमैन असाफ राजवान। वो एक इंश्योरेंस एजेंसी के मालिक हैं और थाईलैंड में छुट्टियां बिताकर दुबई के रास्ते इस फ्लाइट से वापस लौट रहे थे। ये इस घटना में फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। जब वॉशरूम के पास से एक महिला की चीख सुनाई दी, तब वो समझ चुके थे कि प्लेन बेकाबू हो चुका है। आसमान में मौत को सामने देखते हुए भी वो घबराए नहीं। तुरंत ज्विका मानेस और यानिव हायून के साथ कॉकपिट में घुसे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से हमलावर को पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया, सुनिश्चित किया कि 50 मिनट बाद जब तक आपातकालीन लैंडिंग नहीं हो गई, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई, हमलावर जरा भी हिल ना सके। उनकी सतर्कता ने कॉकपिट का कंट्रोल दोबारा क्रू और ऑफ ड्यूटी पायलट्स के हाथों में सुरक्षित रखा। और इस घटना के पांचवें हीरो हैं डॉक्टर शोता मुसायेव। ये पेशे से एक डेंटिस्ट हैं और इस विमान में मौजूद इकलौते मेडिकल पेशेवर थे। वो उस वक्त मौत से जूझ रहे भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए मसीहा बने। उन्होंने ही उनका इलाज किया। बुधवार को जब फ्लाई दुबई की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तो पूरे इसराइल की सांसें थम गई। इसराइली नागरिकों के जहन में एकाएक वो पुराना खौफनाक मंजर जिंदा उठा जिसने दशकों तक दुनिया के आसमान में दहशत फैला रखी थी। विमान अपहरण, हाईजैकिंग या क्रैश कराने की कोशिश की ये पहली घटना नहीं है। साल 1968 से 1986 के बीच का दौर इसराइल के लिए आसमान में मंडराते काल जैसा था। फिलिस्तीन, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों के कट्टरपंथी और आतंकी संगठनों ने इसराइल से जुड़ी कम से कम एक दर्जन से ज्यादा उड़ानों को निशाना बनाया या उन्हें अगवा करने की कोशिश की। इस खूनी खेल का सबसे चर्चित चेहरा बनी लैला खालिद। ये पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन की वो आतंकी है जिसने 1969 में रोम से तेल अवीव जा रही TWA की फ्लाइट को बंदूक की नोक पर सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर मोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यह मसला इसराइल की जेलों से कई कैदियों के रिहाई के बदले सुलझा। जुलाई 1968 में इसी संगठन के तीन आतंकियों ने रोम से ही तेल अवीव जा रही फ्लाइट का अपहरण किया और उसे अल्जीरिया ले गए। इसराइल के इतिहास की एल एयरलाइन का यह इकलौता सफल अपहरण था जो 40 दिनों के भयानक बंधक संकट के बाद 12 इजरायली नागरिकों के बदले 16 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के साथ जाकर खत्म हुआ। सितंबर 1970 में आतंकवादियों ने एक साथ तीन विमानों का अपहरण किया। दो विमानों को जॉर्डन के डॉसन फील्ड और एक को काहिरा ले जाया गया। अमेरिकी और इसराइली यात्रियों को बंधक बनाकर लैला खालिद समेत चार आतंकियों को छुड़ा लिया गया। सोचिए। फिर मई 1972 में जापानी रेड आर्मी के तीन हमलावरों ने इसराइल के लॉर एयरपोर्ट पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अक्टूबर 1972 में लुफ्तांसा की फ्लाइट 615 को दमिश्क से टेक ऑफ के बाद अगवा कर लिया गया, जिसके बाद म्यूनिक ओलंपिक में मारे गए इसराइली एथलीट्स के कातिलों को छुड़ाने के लिए जर्मन सरकार को घुटने टेकने पड़े। एक के बाद एक 1976 जब एयर फ्रांस के अगवा विमान को युगांडा ले जाया गया, जहां तानाशाह ईदी अमीन ने आतंकियों का स्वागत किया। 100 से ज्यादा इजरायली और यहूदी बंधकों को बचाने के लिए इजरायली कमांडो ने ऑपरेशन एंटीबेक को अंजाम दिया। इसी मिशन में इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन

नतन्याहू के अपने भाई योनी नतन्याहू शहीद हुए थे। इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग सऊदी अरब के तबूक में हुई, लेकिन विमान के पहिए रनवे पर टिकते ही इंटरनेट से लेकर राजनीति के गलियारों तक एक भयंकर इन्फॉर्मेशन वॉर छिड़ गई। एक तरफ सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि यह कोई हमला नहीं है बल्कि इसराइल का ही रचा हुआ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी एक प्रायोजित नाटक है। दूसरी तरफ इसराइल और अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग संस्थानों ने इसे यहूदियों को बदनाम करने की एंटी सेमेटिक साजिश करार दिया। फॉल्स फ्लैग बताने वाले इसके पीछे अलग अलग तर्क देने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि इसराइल में 27 अक्टूबर को चुनाव है, 7 अक्टूबर 2023 के इंटेलिजेंस फेलियर से घिरे बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी नेशनल सिक्योरिटी की छवि चमकाने के लिए बड़े खतरे की जरूरत थी। सोचिए, इस घटना के बाद सऊदी अरब की मेडिकल टीम द्वारा इजरायली यात्रियों के इलाज की तस्वीरें आई। इसे लेकर कुछ लोगों ने दावा किया कि सऊदी अरब और इसराइल के रिश्तों को सहज बनाने के लिए यह ह्यूमैनिटेरियन बैकड्रॉप तैयार किया गया। जब इसराइल ने इसे 9/11 जैसा आतंकी हमले की साजिश बताया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि बिना जांच जल्दबाजी में ऐसा क्यों कहा गया, इसलिए यह फॉल्स फ्लैग है। लेकिन इन दावों के जवाब में यहूदी समर्थक कॉम्बैट एंटीसेमिटिज्म मूवमेंट और साइबर वेल की रिपोर्ट ने हैरान करने वाले आंकड़े सामने रखे। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के इमरजेंसी सिग्नल के सिर्फ 67 मिनट के भीतर एक्स पर पहली पोस्ट आई जिसमें इसराइल मोसाद और नेतन्याहू पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा दिया गया। 12 घंटे के भीतर 3000 से ज्यादा ऐसे पोस्ट हुई जिनमें फॉल्स फ्लैग कीवर्ड था और इन 82% पोस्ट में सीधे तौर पर इसराइल को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिर्फ 67 मिनट में किसी भी जांच का नतीजा आना असंभव है। यह साबित करता है कि फॉल्स फ्लैग का दावा किसी तथ्य पर आधारित नहीं बल्कि एक प्री रिटन स्क्रिप्ट थी जिसे मौका मिलते ही इंटरनेट पर छोड़ दिया गया ताकि पीड़ितों को ही अपराधी बनाया जा सके, इसराइल के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। हालांकि फॉल्स फ्लैग का आरोप लगाने वाले कुछ लोगों ने नेतन्याहू के बयान का सहारा लिया। उन्होंने शुरुआत में ही इस घटना के तार ईरान से जोड़ दिया और कहा कि अगली बार प्लेन हाईजैक हो तो बगल में इजरायली बैठा होना चाहिए। इस बयान पर इसराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू यात्रियों की जान को इलेक्शन प्रोपेगेंडा बनाकर चुनावी फायदा बटोर रहे। और अगली खबर का रुख करते हैं, जो देश दुनिया को कच्चा तेल देता हो क्या वहां पर पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो सकती है? आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो देश कच्चा तेल खरीदते हैं वहां की सरकारें जो हैं वो कीमतों में बढ़ोतरी करती हैं। लेकिन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16% की बढ़ोतरी हो गई है। सोचिए, जो देश कच्चे तेल के भंडार के मामले में दुनिया का छठा देश है जिसके पास 11,000 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है, उसी यूएई में अब पेट्रोल करीब 104 रुपए लीटर, डीजल 125 रुपए लीटर मिल रहा है। पिछले चार वर्षों में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। इस वक्त पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से वहां के पेट्रोल पंप्स पर भी लाइनें लगी हैं। स्थानीय मीडिया का दावा है कि दुबई में आधे आधे घंटे लाइन में लगकर लोग टैंक फुल करवा रहे हैं। लगातार तीसरा महीना है जब यूएई में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आज खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच में, उसकी वजह से हॉर्मूज जिस तरह से बाधित है वहां पर देखिए असर क्या हो रहा है और कैसे आज भी अगर खाड़ी के देशों में, अगर मिडिल ईस्ट के देशों में कीमतें ऐसी बढ़ रही हैं तो बाकी दुनिया में भारत जैसे देश अन्य देशों पर इसका प्रभाव कैसे आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ये सोचने वाली बात है कि जो देश कच्चे तेल का उत्पादन करता है उसे बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है, उसके यहाँ पेट्रोल 104 रुपए, डीजल 125 रुपए लीटर है, जबकि अगर आप देखिए तो अन्य देशों में कीमतें कम है। अब भारत में आप देखिए, अपनी जरूरत का 80-85% कच्चा तेल हम खरीदते हैं। यहां पर कीमत हमारी पेट्रोल की लगभग उतनी ही है जितनी इस वक्त यूएई में है, 102 रुपए लीटर, और डीजल करीब 95 रुपए लीटर मिल रहा है। अब सवाल यह है कि यूएई में कच्चे तेल के भंडार होने के बावजूद जो पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर क्यों बढ़ाए गए, इसको समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से हम समझेंगे कि अब भारत में क्या कीमतें और बढ़ सकती हैं, क्या उसका असर अब भारत तक पहुंच सकता है। देखिए, दरअसल यूएई पेट्रोल डीजल की घरेलू कीमतों को अपने कच्चे तेल के उत्पादन की लागत के आधार पर तय नहीं करता है बल्कि उसने इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा है। यानी जिस तरह से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से तय होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं, ठीक वैसे ही व्यवस्था जो आप देखें यूएई ने भी ऐसा ही बनाया हुआ है।
इसके अलावा यूएई में कच्चे तेल के दाम कुछ हफ्तों को औसत के आधार पर तय होती है, इसीलिए बढ़ोतरी का असर देर से दिखता है लेकिन होता है। इस तरह से यूएई में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह वही है जो पूरी दुनिया में है। पहली वजह कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, उसमें इजाफा जो पिछले एक महीने में 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ी है। अब इसका असर धीरे धीरे अन्य देशों में भी पड़ सकता है और भारत के लिए भी ये वक्त है जब हम सबको सतर्क रहना होगा। दूसरी वजह ईरान युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना, इस वजह से कच्चे तेल का व्यापार कम हुआ है जिससे आपूर्ति रुकी है, कीमतों पर असर पड़ा है। और तीसरी वजह है सऊदी अरब के तेल ठिकानों और लाल सागर में हूती के हमले, जिससे कच्चे तेल के व्यापार जो है वो दूसरा मार्ग भी प्रभावित हुआ है और आपूर्ति बाधित हुई है। इसी का असर यूएई पर पड़ा, इसी वजह से उन्हें भी पेट्रोल डीजल की घरेलू कीमतें बढ़ानी पड़ी। अमेरिकी सेना युद्ध के एक लंबे दौर के बाद एक और मैदान छोड़कर भाग गई। जी हां, ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका को इतना भारी पड़ रहा है कि इराक में उसे अपने पुराने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। करीब 12 साल से इराक में आईसिस के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चला रही अमेरिकी सेना का आखिरी दल कल इराक से रवाना कर दिया गया। हालांकि इस कदम का ऐलान करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, गलत फैसलों की वजह से अमेरिकी सेना लंबे समय से एक दलदल में फंसी हुई थी, लेकिन अब यह इतिहास बन गया है। अमेरिकी सेना के हर पन्ने में जब आप देखिएगा विदेश की, मतलब किसी भी दूसरे देश की धरती पर उनके ऑपरेशंस को, तो आखिर में उनकी रुखसती ऐसे ही होती है। उन्होंने इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी को चुनाव जीतकर नई शुरुआत के लिए बधाई दी और अमेरिकी जनता को याद दिलाया है कि साल 2003 में जॉर्ज बुश के कार्यकाल में अमेरिकी सेना को वहां उतारा गया था, फिर बराक ओबामा और जो बाइडेन के कार्यकाल में भी उसे जारी रखा गया, लेकिन अब उनके कार्यकाल में यह खत्म हो गया है और यह इराक और आईसिस पर अमेरिका की एक बड़ी जीत है। अमेरिका और अमेरिकी सेना आईसिस की वजह से पिछले करीब 12 वर्षों से इराक में, और इस दौरान उसने पहले सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करवाया, फिर इसके बाद आईसिस के खिलाफ जंग लड़ी। साल 2003 में सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट के लिए जॉर्ज बुश के आदेश पर अमेरिकी सेना इराक में उतरी थी। इसके बाद साल 2006 में सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, फिर 2011 में अमेरिकी सेनाओं को वापस बुला लिया गया, लेकिन अमेरिकी सेना के जाते ही आईसिस का आतंक शुरू हो गया और 3 साल बाद 2014 में अमेरिकी सेना फिर से इराक में उतर गई। साल 2019 में आईसिस चीफ अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद अमेरिकी सेना ने 2024 तक इराक की सेना को ट्रेनिंग दी ताकि वो प्राइवेट मिलिशिया से लड़ सके, और साल 2024 में यह तय हुआ कि अमेरिकी सेना धीरे धीरे इराक में अपनी मौजूदगी कम करेगी। इराक से जाने की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से हो रही थी जिसमें सारे अमेरिकी सैनिक अपने देश लौट गए। आखिरी चरण में इरबिल एयरबेस से सैनिकों की वापसी हुई है, ये वही एयरबेस है जिस पर ईरान भी हमले कर चुका है। इराक में सेना की मौजूदगी पर अमेरिका को भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ रहा था। जंग में 172 लाख करोड़ रुपए ये से ज्यादा खर्च हो चुका था। अमेरिकी सेना की ये वापसी उसकी एक हार की तरह देखी जा रही है क्योंकि इराक में अभी भी आतंकी संगठनों और प्राइवेट मिलिशिया का खतरा सरकार के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ईरान युद्ध ने अमेरिका को भागने के लिए मजबूर कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सेना किसी मिशन को बीच में छोड़कर ऐसे भागी। इससे पहले 2 अन्य युद्ध जिसमें अमेरिकी सेनाएं उतरी लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ और वापस चली गई। साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से भी ऐसे ही भागी थी। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ उसने 20 साल का लंबा युद्ध लड़ा, फिर तालिबान को सत्ता सौंप कर वापस चली गई। जिस तालिबान से लड़े उन्हीं को सत्ता सौंपी और निकल लिए। 1965 के वियतनाम युद्ध में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इस युद्ध में अमेरिकी सैनिक करीब 8 साल फंसे रहे, फिर बिना कुछ हासिल किए वापस चले गए। अमेरिकी सेना की वापसी का आखिरी चरण खत्म होने के बाद इराक में जश्न का माहौल है। बगदाद में लोग सड़कों पर उतरकर खुशी से रैलियां निकाल रहे हैं। वो इस बात से खुश है कि आखिरकार अमेरिकी सेनाएं उनके देश से निकल गई। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और रिश्ते अब दिल से नहीं इवेंट बेसिस पर निभाए जा रहे हैं। नमस्कार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसटीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र
2: एक तरफ और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
3: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिस कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
4: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
3: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे। साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
4: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
3: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया। लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
5: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे। और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया। और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
3: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
6: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूँ, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
5: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाति हैं और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
3: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है पटना स्नातक निर्वाचन सीट से। जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
7: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
8: कार में जा रहे हैं, बैठक पार्टी की कोचिंग में।
7: एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
9: अब जो निर्वाचन है जहां उसको कहे कि अभी कहा तभी निकाल।
7: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह। नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत। बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि जेडीयू के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने जन सुराज पार्टी से हाथ मिला लिया पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
10: अनुज सिंह जी के साथ
11: कहते रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
7: जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खींच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
12: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संज्ञान में बात आई है और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
13: लग रहा है ये नहीं होना चाहिए?
12: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं वो लोग।
7: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
14: पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए तो को झोंक पार्टी हमको भी नहीं समझाए, तो चार झोंक किया कोई झोंक समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब इससे नहीं।
7: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ, यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
15: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
7: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को जेडीयू की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
16: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, कोई पूंजी है?
17: आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे।
16: आज आप बयान कोई सुने हैं? किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी, पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है। सब नाराजगी खत्म है,
17: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी? वो
16: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी है, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एक से मिले हैं, एमपी हैं, और सब जगह तो हम ही लोग हैं।
17: तो सब एकजुट है,
16: पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला बोला, उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी है, यूएई के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर पूरे देश में कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है।
18: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें।
19: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मित मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मित के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मित मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाटी भटकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भटकों के हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी पायलट स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 100,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया।
1: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मच्छार ने 180 जिंदगियों को बचा लिया, क्योंकि उनके को पायलट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मिथ मच्छार ने कई जिंदगियों को बचाया। और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं।
2: बहादुर पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
0: इधर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी 174 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। स्मिथ बुरी तरह से घायल।
3: ये जो प्रार्थना है, विशेष पूजा है, वो स्मिथ मच्छार जी के लिए है कि जल्द कालकमई उनको स्वस्थ करे, क्योंकि वो आज के डेट में पूरे विश्व के रियल हीरो है। आपने देखा कि विश्व के सभी बड़े देश हो या उनके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबने माना है कि ऐसा मानवता का जो संदेश स्मिथ मच्छार जी ने दिया है वो सबके लिए प्रेरणा।
4: हम जिस प्रकार स्मिथ मच्छार जी ने अपना बहादुरी का वो बहादुरी दिखाई, तो आज बड़ा हम गर्व से भी महसूस करते हैं कि उतने सारे यात्री को उन्होंने आज जान बचाने का कार्य किया। और जिस प्रकार उनको चाकू मारा गया, उसके बाद भी जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित उनको लैंड कराया, तो इस प्रकार हम माता के चरणों में हमने पूजा अर्चना करी है, माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।
0: कैप्टन स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां तो क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। खजराना इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां कैप्टन मच्छार के लिए पूजा की गई।
5: कैप्टन स्मिथ मच्छार स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे।
1: इस प्रकार से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में बैठे 170 यात्री और एक तरीके से एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिए जाने की एक साजिश का उन्होंने एक तरीके से वहीं पर उस साजिश को समाप्त कर दिया है। अनेक बार अपनी गर्दन पर सहने के बाद वे घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, वे अभी आश्वस्त हैं और उनकी लंबी आयु की कामना को लेकर वे जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों।
0: पायलट स्मिथ मुंबई के रहने वाले हैं, तिलक नगर में उनका निवास है। वहां भी आज आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए और पायलट स्मिथ की बहादुरी के लिए नारे भी लगाए।
6: स्मिथ के घर के नीचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो काम सराहनीय काम समिति ने किया है उसकी सराहना यहाँ पे की जा रही है। नित्या जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
7: देखिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, 174 लोगों की जान बचाई।
8: सीधी सीधी मांग है, हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
6: तो बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मिथ के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
0: आज तक
9: इस दुनिया में कैप्टन स्मिथ माचर को सुपर हीरो बताया जा रहा है। 13 साल का एविएशन अनुभव, मुंबई में स्पाइस जेट एयरलाइंस से अपना करियर शुरू करने वाले पायलट स्मिथ ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ माचर का परिवार मूल रूप से गुजरात के अमरेली जिले का रहने वाला है।
10: वो वॉरियर है।
11: This young man just acts with incredible, incredible heroism.
10: वो जाबाज है।
12: I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to amazing, to in a way he was a hero, to open the door.
10: ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
13: שהיה דקור, היה פשוט הוא סמוך לדלת, אז היה קשה לנו. על המכשירים, בין שני הכיסאות, לא היה...
10: वो पराक्रमी है।
14: स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है।
10: वो हीरो है।
15: जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ही वुड नॉट ओपन द डोर।
10: स्मिथ द वॉरियर। फ्लाइट दुबई की फ्लाइट FZ1073 सुबह 6:05 पर इसराइल की राजधानी तेल अवीव के लिए टेक ऑफ होती है और टेक ऑफ के 2 घंटे बाद प्लेन में हलचल होने लगती है। अचानक से यात्रियों को जोर का झटका लगता है और 2 मिनट में प्लेन 17,400 फीट नीचे आ जाता है। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार बजने लगती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, कॉकपिट का दरवाजा बंद था। सुबह 8:31 पर विमान के कॉकपिट से इमरजेंसी कॉल होती है और कोड 7500 भेजा जाता है, यानी प्लेन हाईजैक हो गया है। कॉकपिट के अंदर क्या हुआ कोई यात्री नहीं जानता था, बस प्लेन थरथराता है। अचानक से कॉकपिट के दरवाजे पर हलचल होती है। एक यानिन नाम का यात्री फौरन कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वो कॉकपिट का दरवाजा खोलता है पूरा मंजर सामने आ जाता है।
9: स्मिथ मच्छार की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है और सेहत में धीरे धीरे सुधार जारी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर भारत की भी पैनी नजर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
16: ने प्रधानमंत्री ने दोनों ने ही कैप्टन स्मिथ की वीरता के बारे में बात की, किस तरह से उनके पूरे रोल को आप लोग देख रहे हैं?
17: ये बहुत ही सराहनीय है एंड हम भारत के ही नहीं बट पूरे विश्व में जितने लोग हैं सब उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके ब्रेवरी और उनके करेज, जो साहस उन्होंने दिखाया है, ये कभी आपने इस तरह का देखा नहीं होगा। इस तरह के ये इंसिडेंट भी बहुत शॉकिंग है, पायलट ही दूसरे पायलट के ऊपर ऐसे अटैक करना। जो भी रिपोर्ट अभी तक आया है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से आई थिंक ही हैज डन एन एग्जेम्पलरी वर्क। उनके खुद के लाइफ पे इतना इम्पैक्ट था, फिर भी उन्होंने इतने सारे लोगों के जान बचाए, तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण विषय है
16: सर। लेकिन इसकी वजह से क्या हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी वाइज एक तरह से अलर्ट मोड में आए हैं अपने खुद के एविएशन सेक्टर को लेकर?
17: देखियो, ऐसे अगर एविएशन के सेफ्टी के बारे में आप पूछते हैं तो सब हर टाइम अलर्ट मोड पे रहते हैं, बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैं हर बार इसके ऊपर मैं कह चुका हूं कि ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का विषय है एविएशन ऑपरेशंस के लिए। इसमें नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ हम करते हैं और जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स देश में या कहीं और होते हैं तो उससे जो लर्निंग होती है उससे भी हम सीख कर हमें कुछ और अगर दूसरे चीजें करनी हो, हमें और बेहतर करने के लिए कुछ विषय उठाने हो तो वो सब हम करते हैं। तो जरूर इसके बाद जो भी अभी क्योंकि वहां पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं, तो जैसे ही उनके साथ एक फुल फ्लेज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके तहत हम उनके ऊपर हमारे यहाँ पे भी जो निर्णय लेने होंगे वो लेंगे जरूर।
9: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सांस से हाईजैक संकट आने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय ट्रंप। नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का ईरान से हो सकता है कनेक्शन। पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च। राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कसी है कमर। मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी। जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान। 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने, और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र भेंट कर और जरूरत पड़ने पर रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
3: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे। साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
3: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
2: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया। लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे। और सोचिए चप्पल पहनकर के एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
5: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूँ, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
4: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाती हैं और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की होगी।
2: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है पटना स्नातक निर्वाचन सीट से। जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
6: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
7: कान में जा रहे हैं बैठक पार्टी की कोचिंग में।
6: MLC चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
8: अब जो निर्वाचन है जहां उसको कहे कि अबड़ी का हाथ अभी निकाल।
6: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह। नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत। बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद JDU में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि JDU के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए JDU के विधायक अनंत सिंह ने जन स्वराज पार्टी से हाथ मिला लिया। पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और JDU उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
9: कह तो रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
10: कोई नहीं है टक्कर में।
6: JDU के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खिंच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
11: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संज्ञान में बात आई है और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
12: लग रहा है ये नहीं होना चाहिए।
11: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं वो लोग।
6: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
13: पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत है, पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए तो कुछ हो, पार्टी हमको भी नहीं समझाए, तो चार्ज हो किया कोई हम समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए, हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब इससे नहीं।
6: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन JDU नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ। यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
14: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
6: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को JDU की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
15: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, कोई पूंजी है,
16: आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे।
15: आज आप बयान कोई सुने हैं, किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधान मंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी, पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है, सब नाराजगी खत्म है।
16: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी वो?
15: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी है, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधान है, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एक एमएलए हैं, एमपी हैं, और सब जगह तो हम ही लोग हैं। पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: उधर पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पंजाब का नया अध्यक्ष कौन होगा, जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच राजा वडिंग दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आला कमान से मुलाकात करेंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राजा वडिंग ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया, जहां अब वो खुद को पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।
12: ये अधिकार क्षेत्र राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कौन बन रहा है, कब बन रहा है, हाँ मैं प्रधान नहीं हूँ, ये मेरे को पता है।
6: सूत्रों का कहना है कि वडिंग को बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है, जिसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
17: सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आपको बुलाया गया है?
18: बुलाया सर पार्टी ऑफिस में।
19: अब कुछ चीजें बहुत सी इंटरनल होती हैं और वो आपको बता दूंगा मैं जल्दी।
6: पिछले काफी वक्त से पंजाब में राजा वडिंग के खिलाफ चन्नी गुट ने मोर्चा खोल रखा था। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मामला सुलझाने पंजाब भी आए थे, जिसके बाद दिल्ली से साफ किया गया था कि राजा वडिंग को पंजाब अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। हालात को देखते हुए सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद अब राजा वडिंग को हटाए जाने का जल्द ऐलान किया जा सकता है।
20: कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ किसको लगाना है, कब बदलना है वो जानते हैं। जो सचिन पायलट जी आए हैं वो हमारे साथ वाले क्षेत्र से हैं, साथ वाले स्टेट से हैं, उनके आने से एक नई उम्मीद हमारे जो कार्यकर्ता उनमें जागी है और हमें लग रहा है कि इस उम्मीद को आगे लेकर जाएंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बाद राजा वडिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें एआईसीसी से फोन आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि 4.5 साल तक प्रमुख रहने के बाद उन्हें बदला जा रहा है। अब राजा वडिंग को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
21: आखिरकार राजा वडिंग का इस्तीफा हो गया कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान, हाईकमान के मुंह से करारी चपेट। हाईकमांड ने कहा सीगा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि राजा वडिंग साढ़े पंजाब के प्रधान बने रहेंगे।
22: जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वो पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना, उनका पहला फैसला था उसने पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना।
6: पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीन ली थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान, आला कमान की टेंशन बढ़ा रहा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अब सवाल ये है कि राजा वडिंग की जगह कांग्रेस अब किस चेहरे पर दाम लगाती है। कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी आज तक।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज से इंडिया गठबंधन बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इस बार सीजेपी मुंबई में धरना देगी।
6: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी का नया आंदोलन शुरू।
23: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे।
6: सीजेपी की हुंकार अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार।
24: चुनाव आयोग में क्लियरली एक रिफ्ट है।
6: मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरुआत, फिर देश भर में आंदोलन। अभिजीत दिपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी का ऐलाने आंदोलन, इंडिया गठबंधन भी तैयार। आज लेफ्ट पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार एक्सपोज के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने उतरे। इससे पहले कांग्रेस ने 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर में हल्ला बोला।
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
6: फिर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने का अक्टूबर प्लान बनाया और अब कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कल से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, सीजेपी ने कहा है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन देश भर में चलेगा।
2: कल से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है जो मुंबई से स्टार्ट होगा।
6: सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े जेन जी आंदोलन के बाद अब ये दूसरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सीजेपी के आंदोलन ने धार पकड़ी और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 शर्तों के साथ आंदोलन को खत्म किया।
3: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
6: और अब कांग्रेस जनता पार्टी फिर से 3 डिमांड्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क से आंदोलन करने उतर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले ही अपनी 3 मांगे बता दी हैं।
2: हमारी 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो SIR की जो लिस्ट है, जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर ही इलेक्शन होना चाहिए। अगर SIR पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे इसको बना देते हैं।
6: आपको बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है लेकिन पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में दिपके ने और सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
4: कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
5: ज्ञानेश कुमार को बोलिए ना रिजाइन कर दे। ज्ञानेश कुमार को बोल दिए रिजाइन कर दीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं? तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पे क्यों आते हैं? प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए। अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है। आप ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट और SIR से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रुकने वाले लोग नहीं है।
25: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे एंड जो उन्होंने SIR जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो इलीगल काम किया है देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो।
6: सीजेपी का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया जाएगा, साथ ही गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन होगा।
26: सीजेपी क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ पेपर लीक वाले मुद्दे पे, तो सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए।
0: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला बोला। उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी है, UAE के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर पूरे देश में कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है।
27: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मित मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मित के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मित मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाठी भटकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भटकों के हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी पायलट स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 100,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया।
1: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के

0: वैसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मित मछार ने कई जिंदगियों को बचाया और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं।
1: बहादुर पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
2: इधर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में थी 174 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। स्मित बुरी तरह से घायल,
3: जो प्रार्थना है, विशेष पूजा है, वो अस्मित मच्छार जी के लिए है कि जल्द कालकमाई उनको स्वस्थ करे, क्योंकि वो आज के डेट में पूरे विश्व के रियल हीरो है। आपने देखा कि विश्व के सभी बड़े देश हो या उनके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबने माना है कि ऐसा मानवता का जो संदेश अस्मित मच्छार जी ने दिया है वो सबके लिए प्रेरणा।
4: हम जिस प्रकार अस्मित मच्छार जी ने अपना बहादुरी का वो बहादुरी दिखाई, तो आज बड़ा हम गर्व से भी महसूस करते हैं कि उतने सारे यात्री को उन्होंने आज जान बचाने का कार्य किया। और जिस प्रकार उनको चाकू मारा गया, उसके बाद भी जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित उनको लैंड कराया, तो इस प्रकार हम माता के चरणों में हमने पूजा अर्चना करी है, माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।
2: कैप्टन स्मित मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां तो क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। खजराना इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां कैप्टन मच्छार के लिए पूजा की गई।
5: कैप्टन स्मित मच्छार स्वस्थ रहे।
6: इस प्रकार से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में बैठे 170 यात्री और एक तरीके से एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिए जाने की एक साजिश का उन्होंने एक तरीके से वहीं पर उस साजिश को समाप्त कर दिया है। अनेक बार अपनी गर्दन पर सहने के बाद वे घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, वे अभी आश्वस्त हैं और उनकी लंबी आयु की कामना को लेकर वे जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों।
2: पायलट स्मित मुंबई के रहने वाले हैं, तिलक नगर में उनका निवास है। वहां भी आज आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए और पायलट स्मित की बहादुरी के लिए नारे भी लगाए।
7: स्मित के घर के नीचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो काम सराहनीय काम समिति ने किया है उसकी सराहना यहाँ पे की जा रही है। नित्या जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
8: देखिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, 174 लोगों की जान बचाई।
9: सीधी सीधी मांग है, हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
7: तो बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मित के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
2: आज तक
10: स्मित मच्छार की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है और सेहत में धीरे धीरे सुधार जारी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर भारत की भी पैनी नजर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
11: ने प्रधानमंत्री ने दोनों ने ही कैप्टन स्मिथ की वीरता के बारे में बात की, किस तरह से उनके पूरे रोल को आप लोग देख रहे हैं?
12: ये बहुत ही सराहनीय है एंड हम भारत के ही नहीं बट पूरे विश्व में जितने लोग हैं सब उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके ब्रेवरी और उनके करेज, जो साहस उन्होंने दिखाया है ये कभी आपने इस तरह का देखा नहीं होगा। इस तरह के ये इंसिडेंट भी बहुत शॉकिंग है, पायलट ही दूसरे पायलट के ऊपर ऐसे अटैक करना, जो भी रिपोर्ट अभी तक आया प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से आई थिंक ही हैज डन एन एग्जेम्पलरी वर्क। उनके खुद के लाइफ पे इतना इम्पैक्ट था, फिर भी उन्होंने इतने सारे लोगों के जान बचाए, तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण विषय है
11: सर। लेकिन इसकी वजह

0: से क्या हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी वाइज एक तरह से अलर्ट मोड में आए हैं अपने खुद के एविएशन सेक्टर को लेकर?
1: देखियो, ऐसे अगर एविएशन के सेफ्टी के बारे में आप पूछते हैं तो सब हर टाइम अलर्ट मोड पे रहते हैं, बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैं हर बार इसके ऊपर मैं कह चुका हूं कि ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का विषय है एविएशन ऑपरेशंस के लिए। इसमें नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ हम करते हैं, और जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स देश में या कहीं और होते हैं तो उससे जो लर्निंग होती है उससे भी हम सीखकर हमें कुछ और अगर दूसरे चीजें करनी हो, हमें और बेहतर करने के लिए कुछ विषय उठाने हो तो वो सब हम करते हैं। तो जरूर इसके बाद जो भी अभी क्योंकि वहां पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं, तो जैसे ही उनके साथ एक फुल फ्लेज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके तहत हम उनके ऊपर हमारे यहाँ पे भी जो निर्णय लेने होंगे वो लेंगे जरूर।
2: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: साहस से हाईजैक, संकट टालने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय। ट्रंप नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का ईरान से हो सकता है कनेक्शन। पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च, राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच, जनता पार्टी ने भी कसी है कमर। मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी, परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी। जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने, और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसटीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र भेंट कर, और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
3: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे। साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया, पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
3: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
2: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया, लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
5: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूं, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
4: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाती हैं, और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
2: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है पटना स्नातक निर्वाचन सीट से। जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
6: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
7: कान में जा रहे हैं बैठक, पार्टी की कोई चीज नहीं है।
6: एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
8: अब जो निर्वाचन है जहां उसको कह रहे अबड़ी का हाथ अबड़ी निकाल।
6: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह। नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत। बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि जेडीयू के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने जन स्वराज पार्टी से हाथ मिला लिया। पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
9: कहते रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
10: कोई नहीं है टक्कर में।
6: जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खींच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
11: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संज्ञान में बात आई है और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
12: लग रहा है ये नहीं होना चाहिए।
11: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं वो लोग।
6: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
13: पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत जदयू में नहीं है, पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए तो कुछ हो, पार्टी हमको भी नहीं समझाए, तो चार जो किया कोई हम समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए, हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब इससे नहीं।
6: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ। यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
14: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
6: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को जेडीयू की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
15: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, कोई पूंजी है,
16: आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे।
15: आज आप बयान कोई सुने हैं, किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी, पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है। सब नाराजगी खत्म है,
16: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी वो?
15: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी हैं, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधान है, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एक एमएलए हैं, एमपी हैं, और सब जगह तो हम ही लोग हैं। पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: उधर पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पंजाब का नया अध्यक्ष कौन होगा, जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच राजा वडिंग दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आलाकमान से मुलाकात करेंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राजा वडिंग ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया, जहां अब वो खुद को पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।
12: ये अधिकार क्षेत्र राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कौन बन रहा है, कब बन रहा है, हाँ मैं प्रधान नहीं हूँ, ये मेरे को पता है।
6: सूत्रों का कहना है कि वडिंग को बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है, जिसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
17: सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आपको बुलाया गया है,
18: बुलाया सर पार्टी ऑफिस में।
19: अब कुछ चीजें बहुत सी इंटरनल होती हैं और वो आपको बता दूंगा मैं जल्दी।
6: पिछले काफी वक्त से पंजाब में राजा वडिंग के खिलाफ चन्नी गुट ने मोर्चा खोल रखा था। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मामला सुलझाने पंजाब भी आए थे, जिसके बाद दिल्ली से साफ किया गया था कि राजा वडिंग को पंजाब अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। हालात को देखते हुए सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद अब राजा वडिंग को हटाए जाने का जल्द ऐलान किया जा सकता है।
20: कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ किसको लगाना है, कब बदलना है वो जानते हैं। जो सचिन पायलट जी आए हैं वो हमारे साथ वाले क्षेत्र से हैं, साथ वाले स्टेट से हैं, उनके आने से एक नई उम्मीद हमारे जो कार्यकर्ता उनमें जागी है और हमें लग रहा है कि इस उम्मीद को आगे लेकर जाएंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बाद राजा वडिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें एआईसीसी से फोन आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि 4.5 साल तक प्रमुख रहने के बाद उन्हें बदला जा रहा है। अब राजा वडिंग को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
21: आखिरकार राजा वडिंग का इस्तीफा हो गया कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान, हाईकमांड के मुंह से करारी चपेट। हाईकमांड ने कहा सीगा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि राजा वडिंग साडे पंजाब दे प्रधान बने रहेंगे।
22: जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वो पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना, उनका पहला फैसला था उसने पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना।
6: पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीन ली थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान, आला कमान की टेंशन बढ़ा रहा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अब सवाल ये है कि राजा वडिंग की जगह कांग्रेस अब किस चेहरे पर दाम लगाती है। कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी आज तक।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज से इंडिया गठबंधन बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इस बार सीजेपी मुंबई में धरना देगी।
6: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी का नया आंदोलन शुरू।
23: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे।
6: सीजेपी की हुंकार अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार।
24: चुनाव आयोग में क्लियरली एक रिफ्ट है।
6: मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरुआत, फिर देश भर में आंदोलन। अभिजीत दिपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी का ऐलाने आंदोलन, इंडिया गठबंधन भी तैयार। आज लेफ्ट पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार एक्सपोज के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने उतरे। इससे पहले कांग्रेस ने 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर में हल्ला बोला।
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
6: फिर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने का अक्टूबर प्लान बनाया और अब कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कल से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, सीजेपी ने कहा है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन देश भर में चलेगा।
2: कल से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है जो मुंबई से स्टार्ट होगा।
6: सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े जेन जी आंदोलन के बाद अब ये दूसरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सीजेपी के आंदोलन ने धार पकड़ी और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 शर्तों के साथ आंदोलन को खत्म किया।
3: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
6: और अब कांग्रेस जनता पार्टी फिर से 3 डिमांड्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क से आंदोलन करने उतर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले ही अपनी 3 मांगे बता दी हैं।
2: हमारी 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो SIR की जो लिस्ट है, जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर ही इलेक्शन होना चाहिए। अगर SIR पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे इसको बना देते हैं।
6: आपको बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है लेकिन पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में दिपके ने और सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
4: कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
5: ज्ञानेश कुमार को बोल के रिजाइन कर दीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे क्यों? प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए। अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है। आप ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट और SIR से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रखने वाले लोग नहीं है।
25: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे एंड जो उन्होंने SIR जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो इलीगल काम किया है, देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो।
6: सीजेपी का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया जाएगा, साथ ही गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन होगा।
26: CJP क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ पेपर लीक वाले मुद्दे पे, तो सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए।
0: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला बोला, उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी है, UAE के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर पूरे देश में कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है।
27: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मित मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मित के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मित मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाटी बटकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बटकों के हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी पायलट स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 1,00,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया।
1: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मच्छार ने 180 जिंदगियों को बचा लिया, क्योंकि उनके को पायलट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मिथ मच्छार ने कई जिंदगियों को बचाया। और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं।
2: बहादुर पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
0: इधर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी 174 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। स्मिथ बुरी तरह से घायल है।
3: जो प्रार्थना है, विशेष पूजा है, वो अस्मित मच्छार जी के लिए है कि जल्द कालकमाई उनको स्वस्थ करे, क्योंकि वो आज के डेट में पूरे विश्व के रियल हीरो है। आपने देखा कि विश्व के सभी बड़े देश हो या उनके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबने माना है कि ऐसा मानवता का जो संदेश अस्मित मच्छार जी ने दिया है वो सबके लिए प्रेरणा।
4: हम जिस प्रकार अस्मित मच्छार जी ने अपना बहादुरी का वो बहादुरी दिखाई, तो आज बड़ा हम गर्व से भी महसूस करते हैं कि उतने सारे यात्रियों को आज जान बचाने का कार्य किया। और जिस प्रकार उनको चाकू मारा गया, उसके बाद भी जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित उनको लैंड कराया, तो इस प्रकार हम माता के चरणों में हमने पूजा अर्चना करी है। माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।
0: कैप्टन स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां तो क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। खजराना इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां कैप्टन मच्छार के लिए पूजा की गई।
5: कैप्टन स्मिथ मच्छार स्वस्थ रहे।
6: इस प्रकार से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में बैठे 170 यात्री और एक तरीके से एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिए जाने की एक साजिश का उन्होंने एक तरीके से वहीं पर उस साजिश को समाप्त कर दिया है। अनेक बार अपनी गर्दन पर सहने के बाद वे घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, वे अभी आश्वस्त हैं और उनकी लंबी आयु की कामना को लेकर वे जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों।
0: पायलट स्मिथ मुंबई के रहने वाले हैं, तिलक नगर में उनका निवास है। वहां भी आज आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए और पायलट स्मिथ की बहादुरी के लिए नारे भी लगाए।
7: समिति के घर के नीचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो काम सराहनीय काम समिति ने किया है उसकी सराहना यहाँ पे की जा रही है। नित्या जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
8: देखिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, 174 लोगों की जान बचाई।
9: सीधी सीधी मांग है, हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
7: तो बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मिथ के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
0: आज तक
10: स्मिथ मच्छार की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है और सेहत में धीरे धीरे सुधार जारी है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर भारत की भी पैनी नजर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
11: ने प्रधानमंत्री ने दोनों ने ही कैप्टन स्मिथ की वीरता के बारे में बात की, किस तरह से उनके पूरे रोल को आप लोग देख रहे हैं?
12: ये बहुत ही सराहनीय है एंड हम भारत के ही नहीं बट पूरे विश्व में जितने लोग हैं सब उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके ब्रेवरी और उनके करेज, तो साहस उन्होंने दिखाया है ये कभी आपने इस तरह का देखा नहीं होगा। इस तरह के ये इंसिडेंट भी बहुत शॉकिंग है, पायलट ही दूसरे पायलट के ऊपर ऐसे अटैक करना, जो भी रिपोर्ट अभी तक आया है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो उसके हिसाब से आई थिंक ही हैज डन एन एग्जेम्पलरी वर्क। उनके खुद के लाइफ पे इतना इम्पैक्ट था फिर भी उन्होंने इतने सारे लोगों के जान बचाए, तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण विषय है
11: सर। लेकिन इसकी वजह से क्या हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी वाइज एक तरह से अलर्ट मोड में आए हैं अपने खुद के एविएशन सेक्टर को लेकर?
12: देखियो ऐसे अगर एविएशन के सेफ्टी के बारे में आप पूछते हैं तो सब हर टाइम अलर्ट मोड पे रहते हैं, बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैं हर बार इसके ऊपर मैं कह चुका हूं कि ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का विषय है एविएशन ऑपरेशंस के लिए। इसमें नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ हम करते हैं, और जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स देश में या कहीं और होते हैं तो उससे जो लर्निंग होती है उससे भी हम सीखकर हमें कुछ और अगर दूसरे चीजें करनी हो, हमें और बेहतर करने के लिए कुछ विषय उठाने हो तो वो सब हम करते हैं। तो जरूर इसके बाद जो भी अभी क्योंकि वहां पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं, तो जैसे ही उनके साथ एक फुल फ्लेज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके तहत हम उनके ऊपर हमारे यहाँ पे भी जो निर्णय लेने होंगे वो लेंगे जरूर।
10: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सास से हाईजैक संकट आने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय। ट्रंप नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का ईरान से हो सकता है कनेक्शन। पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च, राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच, जनता पार्टी ने भी कसी है कमर। मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी, परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी। जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने, और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसटीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र भेंट कर, और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
3: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे। साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया, पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
3: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
2: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया, लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
5: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूं, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
4: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाति हैं, और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
2: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खुला हुआ है पटना स्नातक निर्वाचन सीट से। जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
6: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
7: कार में जा रहे हैं बैठक पार्टी की कोचिंग में।
6: एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
8: अब तो नहीं चल है जहां उसको कह रहे कि अबड़ी कहा तभी निकाल।
6: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह। नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत। बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि जेडीयू के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने जन स्वराज पार्टी से हाथ मिला लिया। पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
9: कह तो रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
6: जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खींच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
10: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संज्ञान में बात आई है और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
11: लग रहा है ये नहीं होना चाहिए।
10: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं वो लोग।
6: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
12: पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए तो को झोंक, पार्टी हमको भी नहीं समझाए, कुछ चार झोंक किया को झोंक समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए, हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब नहीं।
6: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ, यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
13: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
6: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को जेडीयू की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
14: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, कोई पूंजी है,
15: आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे।
14: आज आप बयान कोई सुने हैं, किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी, पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है, सब नाराजगी खत्म है।
15: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी वो?
14: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी है, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधान है, विधायक है, विधान पार्षद है, एक से मिले हैं, एमपी हैं, और सब जगह तो हम ही लोग हैं। पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: उधर पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पंजाब का नया अध्यक्ष कौन होगा, जल्दी इसका ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच राजा वडिंग दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आला कमान से मुलाकात करेंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राजा वडिंग ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया, जहां अब वो खुद को पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।
16: ये अधिकार क्षेत्र राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कौन बन रहा है, कब बन रहा है, हाँ मैं प्रधान नहीं हूँ, ये मेरे को पता है।
6: सूत्रों का कहना है कि वडिंग को बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है, जिसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
17: सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आपको बुलाया गया है?
18: बुलाया सर पार्टी ऑफिस में।
19: अब कुछ चीजें बहुत सी इंटरनल होती हैं और वो आपको बता दूंगा मैं जल्दी।
6: पिछले काफी वक्त से पंजाब में राजा वडिंग के खिलाफ चन्नी गुट ने मोर्चा खोल रखा था। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मामला सुलझाने पंजाब भी आए थे, जिसके बाद दिल्ली से साफ किया गया था कि राजा वडिंग को पंजाब अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। हालात को देखते हुए सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद अब राजा वडिंग को हटाए जाने का जल्द ऐलान किया जा सकता है।
20: कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ किसको लगाना है, कब बदलना है वो जानते हैं। जो सचिन पायलट जी आए हैं वो हमारे साथ वाले क्षेत्र से हैं, साथ वाले स्टेट से हैं, उनके आने से एक नई उम्मीद हमारे जो कार्यकर्ता उनमें जागी है और हमें लग रहा है कि इस उम्मीद को आगे लेकर जाएंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बाद राजा वडिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें एआईसीसी से फोन आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि 4.5 साल तक प्रमुख रहने के बाद उन्हें बदला जा रहा है। अब राजा वडिंग को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
21: आखिरकार राजा वडिंग का इस्तीफा हो गया कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान, हाईकमांड के मुंह से करारी चपेट। हाईकमांड ने कहा सीगा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि राजा वडिंग साढ़े पंजाब के प्रधान बने रहेंगे।
22: जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वो पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना, उनका पहला फैसला था उसने पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना।
6: पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीन ली थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान आला कमान की टेंशन बढ़ा रहा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अब सवाल ये है कि राजा वडिंग की जगह कांग्रेस अब किस चेहरे पर दाम लगाती है। कमलजीत संधु के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी आज तक।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज से इंडिया गठबंधन बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इस बार सीजेपी मुंबई में धरना देगी।
6: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी का नया आंदोलन शुरू।
23: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे।
6: सीजेपी की हुंकार अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार।
24: चुनाव आयोग में क्लियरली एक रिप्ट है।
6: मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरुआत, फिर देश भर में आंदोलन। अभिजीत दिपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी का ऐलाने आंदोलन, इंडिया गठबंधन भी तैयार। आज लेफ्ट पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार एक्सपोज के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने उतरे। इससे पहले कांग्रेस ने 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर में हल्ला बोला।
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
6: फिर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने का अक्टूबर प्लान बनाया और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कल से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, सीजेपी ने कहा है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन देश भर में चलेगा।
2: कल से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है जो मुंबई से स्टार्ट होगा।
6: सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े जेन जी आंदोलन के बाद अब ये दूसरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सीजेपी के आंदोलन ने धार पकड़ी और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 शर्तों के साथ आंदोलन को खत्म किया।
3: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
6: और अब कॉकरोच जनता पार्टी फिर से 3 डिमांड्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क से आंदोलन करने उतर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले ही अपनी 3 मांगे बता दी हैं।
2: हमारी 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो एसआईआर की जो लिस्ट है, जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर ही इलेक्शन होना चाहिए। अगर एसआईआर पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे इसको बना देते हैं।
6: आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है लेकिन पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में दिपके ने और सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
4: कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
5: ज्ञानेश कुमार को बोलिए ना रिजाइन कर दे, ज्ञानेश कुमार को बोल दिए रिजाइन कर दीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे क्यों आते हैं? प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए, अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट और एसआईआर से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रखने वाले लोग नहीं है।
25: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे एंड जो उन्होंने एसआईआर जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो इलीगल काम किया है देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो।
6: सीजेपी का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया जाएगा, साथ ही गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन होगा।
26: सीजेपी क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ पेपर लीक वाले मुद्दे पे, तो सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए।
0: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला बोला, उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी है, यूएई के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर पूरे देश में कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है।
27: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मित मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मित के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मित मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाटी बटुकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बटुकों के हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी पायलट स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 100,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया।
1: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मच्छार ने 180 जिंदगियों को बचा लिया, क्योंकि उनके को पायलट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मिथ मच्छार ने कई जिंदगियों को बचाया। और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं।
2: बहादुर पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
0: इधर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी 174 लोगों की जान बचाने वाले

0: में बुरी तरह से घायल।
1: जो प्रार्थना है, विशेष पूजा है, वो अस्मित मछार जी के लिए है कि जल्द कालकामाई उनको स्वस्थ करें, क्योंकि वो आज के डेट में पूरे विश्व के रियल हीरो है। आपने देखा कि विश्व के सभी बड़े देश हो या उनके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबने माना है कि ऐसा मानवता का जो संदेश अस्मित मछार जी ने दिया है वो सबके लिए प्रेरणा।
2: हम जिस प्रकार अस्मित मछार जी ने अपना बहादुरी का वो बहादुरी दिखाई, तो आज बड़ा हम गर्व से भी महसूस करते हैं कि उतने सारे यात्री को उन्होंने आज जान बचाने का कार्य किया। और जिस प्रकार उनको चाकू मारा गया, उसके बाद भी जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित उनको लैंड कराया, तो इस प्रकार हम माता के चरणों में हमने पूजा अर्चना करी है। माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।
3: कैप्टन स्मित मछार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां तो क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। खजराना इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां कैप्टन मछार के लिए पूजा की गई।
4: कैप्टन स्मित मछार स्वस्थ रहे।
5: इस प्रकार से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में बैठे 170 यात्री और एक तरीके से एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिए जाने की एक साजिश का उन्होंने एक तरीके से वहीं पर उस साजिश को समाप्त कर दिया है। अनेक बार अपनी गर्दन पर सहने के बाद वे घायल होने के बावजूद लड़ते रहे। वे अभी आश्वस्त हैं और उनकी लंबी आयु की कामना को लेकर वे जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों।
3: पायलट स्मिथ मुंबई के रहने वाले हैं, तिलक नगर में उनका निवास है। वहां भी आज आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए और पायलट स्मिथ की बहादुरी के लिए नारे भी लगाए।
6: समित के घर के नीचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो काम सराहनीय काम समित ने किया है उसकी सराहना यहाँ पे की जा रही है। नित्या जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
7: देखिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। 174 लोगों की जान बचाई।
8: सीधी सीधी मांग है, हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
6: तो बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मिथ के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
3: आज तक
9: इस दुनिया में कैप्टन स्मिथ माचर को सुपर हीरो बताया जा रहा है। 13 साल का एविएशन अनुभव, मुंबई में स्पाइस जेट एयरलाइन से अपना करियर शुरू करने वाले पायलट स्मिथ ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ माचर का परिवार मूल रूप से गुजरात के अमरेली जिले का रहने वाला है।
10: वो वॉरियर है।
11: This young man just acts with incredible, incredible heroism.
10: वो जाबाज है।
12: I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to amazing, to in a way he was a hero, to open the door.
10: ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
13: שהיה דקור, היה פשוט הוא סמוך לדלת, אז היה קשה לנו. על המכשירים, בין שני הכיסאות, לא היה...
10: वो पराक्रमी है।
14: स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है।
10: वो हीरो है।
15: Just imagine what would happen if he would not open the door.
10: स्मिथ द वॉरियर। फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 सुबह 6:05 पर इसराइल की राजधानी तेल अवीव के लिए टेक ऑफ होती है और टेक ऑफ के 2 घंटे बाद प्लेन में हलचल होने लगती है। अचानक से यात्रियों को जोर का झटका लगता है और 2 मिनट में प्लेन 17,400 फीट नीचे आ जाता है। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार बजने लगती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, कॉकपिट का दरवाजा बंद था। सुबह 8:31 पर विमान के कॉकपिट से इमरजेंसी कॉल होती है और कोड 7500 भेजा जाता है। यानी

0: प्लेन हाईजैक हो गया है। कॉकपिट के अंदर क्या हुआ कोई यात्री नहीं जानता था। बस प्लेन धड़धड़ाता है, अचानक से कॉकपिट के दरवाजे पर हलचल होती है। एक यानिन नाम का यात्री फौरन कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वो कॉकपिट का दरवाजा खोलता है पूरा मंजर सामने आ जाता है।
1: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सांस से हाईजैक संकट टालने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय। ट्रंप नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का ईरान से हो सकता है कनेक्शन। पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च। राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कसी है कमर। मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी। परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी। जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान। 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसटीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र भेंट कर और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
3: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे। साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
3: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था। समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
2: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया। लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे। और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
5: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूं, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
4: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाती हैं और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
2: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है पटना स्नातक निर्वाचन सीट से। जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
6: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
7: कार में जा रहे हैं बैठक, पार्टी की कोई चीज नहीं है।
6: एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
8: अब चल है जहां उसको कहे अभी कहा तभी निकाल।
6: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह। नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत। बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि जेडीयू के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने जन स्वराज पार्टी से हाथ मिला लिया। पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
9: कह तो रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
10: कोई नहीं है टक्कर में।
6: जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खींच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
11: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संज्ञान में बात आई है और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
12: लग रहा ये नहीं होना चाहिए।
11: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं, वो लोग।
6: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा। लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
13: पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत जद नहीं है। पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए, एको झोंक पार्टी हमको भी नहीं समझाए, चार झोंक किया कोई हम समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए, हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब इससे नहीं।
6: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ। यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
14: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
6: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को जेडीयू की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
15: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, कोई पूंजी है।
16: आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे
17: बैठक में।
15: आज आप बयान कोई सुने हैं, किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी, पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है। सब नाराजगी खत्म है,
16: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी वो?
15: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी है, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एक से मिले हैं, एमपी हैं, और सब जगह तो हम ही लोग हैं। पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: उधर पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पंजाब का नया अध्यक्ष कौन होगा, जल्दी इसका ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच राजा वडिंग दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आला कमान से मुलाकात करेंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राजा वडिंग ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया, जहां अब वो खुद को पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।
12: ये अधिकार क्षेत्र राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कौन बन रहा है, कब बन रहा है, हाँ मैं प्रधान नहीं हूँ, ये मेरे को पता है।
6: सूत्रों का कहना है कि वडिंग को बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है, जिसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
17: सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आपको बुलाया गया है?
18: बुलाया सर पार्टी ऑफिस में।
19: अब कुछ चीजें बहुत सी इंटरनल होती हैं और वो आपको बता दूंगा मैं जल्दी।
6: पिछले काफी वक्त से पंजाब में राजा वडिंग के खिलाफ चन्नी गुट ने मोर्चा खोल रखा था। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मामला सुलझाने पंजाब भी आए थे, जिसके बाद दिल्ली से साफ किया गया था कि राजा वडिंग को पंजाब अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। हालात को देखते हुए सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद अब राजा वडिंग को हटाए जाने का जल्द ऐलान किया जा सकता है।
20: कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ किसको लगाना है, कब बदलना है वो जानते हैं। जो सचिन पायलट जी आए हैं वो हमारे साथ वाले क्षेत्र से हैं, साथ वाले स्टेट से हैं, उनके आने से एक नई उम्मीद हमारे जो कार्यकर्ता उनमें जागी है और हमें लग रहा है कि इस उम्मीद को आगे लेकर जाएंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बाद राजा वडिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें एआईसीसी से फोन आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि 4.5 साल तक प्रमुख रहने के बाद उन्हें बदला जा रहा है। अब राजा वडिंग को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
21: आखिरकार राजा वडिंग का इस्तीफा हो गया कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान, हाईकमांड के मुंह ते करारी चपेट। हाईकमांड ने कहा सीगा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि राजा वडिंग साढ़े पंजाब के प्रधान बने रहेंगे।
22: जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वो पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना, उनका पहला फैसला था उसने पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना।
6: पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीन ली थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान आला कमान की टेंशन बढ़ा रहा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अब सवाल ये है कि राजा वडिंग की जगह कांग्रेस अब किस चेहरे पर दाम लगाती है। कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी आज तक।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज से इंडिया गठबंधन बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इस बार सीजेपी मुंबई में धरना देगी।
6: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी का नया आंदोलन शुरू।
23: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे।
6: सीजेपी की हुंकार अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार।
24: चुनाव आयोग में क्लियरली एक रिफ्ट है।
6: मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरुआत, फिर देश भर में आंदोलन। अभिजीत दिपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी का ऐलाने आंदोलन, इंडिया गठबंधन भी तैयार। आज लेफ्ट पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार एक्सपोज के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने उतरे। इससे पहले कांग्रेस ने 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर में हल्ला बोला।
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
6: फिर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने का अक्टूबर प्लान बनाया और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कल से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, सीजेपी ने कहा है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन देश भर में चलेगा।
2: कल से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है जो मुंबई से स्टार्ट होगा।
6: सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े जेन जी आंदोलन के बाद अब ये दूसरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सीजेपी के आंदोलन ने धार पकड़ी और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 शर्तों के साथ आंदोलन को खत्म किया।
3: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
6: और अब कॉकरोच जनता पार्टी फिर से 3 डिमांड्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क से आंदोलन करने उतर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले ही अपनी 3 मांगे बता दी हैं।
2: हमारी 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगनी चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो एसआईआर की जो लिस्ट है, जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर ही इलेक्शन होना चाहिए। अगर एसआईआर पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे इसको बना देते हैं।
6: आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है लेकिन पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में दिपके ने और सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
23: कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
4: ज्ञानेश कुमार को बोलिए ना रिजाइन कर दे। ज्ञानेश कुमार को बोल दिए रिजाइन कर दीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं? तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे क्यों आते हैं? प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए। अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है। आप ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट और एसआईआर से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रखने वाले लोग नहीं है।
5: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे एंड जो जो उन्होंने एसआईआर जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो जो इलीगल काम किया है देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो।
6: सीजेपी का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया जाएगा, साथ ही गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन होगा।
25: सीजेपी क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ पेपर लीक वाले मुद्दे पे, तो सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए।
0: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला बोला। उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी है, यूएई के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर पूरे देश में कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है।
26: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मित मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मित के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मित मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाटी भटकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भटकों के हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी पायलट स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 100,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया।
1: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मच्छार ने 180 जिंदगियों को बचा लिया, क्योंकि उनके को पायलट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मिथ मच्छार ने कई जिंदगियों को बचाया। और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं।
2: बहादुर पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
0: इधर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी 174 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। स्मिथ बुरी तरह से घायल,
3: जो प्रार्थना है, विशेष पूजा है, वो स्मिथ मच्छार जी के लिए है कि जल्द कालकामाई उनको स्वस्थ करें, क्योंकि वो आज के डेट में पूरे विश्व के रियल हीरो है। आपने देखा कि विश्व के सभी बड़े देश हो या उनके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबने माना है कि ऐसा मानवता का जो संदेश स्मिथ मच्छार जी ने दिया है वो सबके लिए प्रेरणा।
4: हम जिस प्रकार स्मिथ मच्छार जी ने अपना बहादुरी का वो बहादुरी दिखाई, तो आज बड़ा हम गर्व से भी महसूस करते हैं कि उतने सारे यात्री को उन्होंने आज जान बचाने का कार्य किया। और जिस प्रकार उनको चाकू मारा गया, उसके बाद भी जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित उनको लैंड कराया, तो इस प्रकार हम माता के चरणों में हमने पूजा अर्चना करी, माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।
0: कैप्टन स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां तो क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। खजराना इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां कैप्टन मच्छार के लिए पूजा की गई।
5: कैप्टन स्मिथ मच्छार स्वस्थ रहे।
6: इस प्रकार से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में बैठे 170 यात्री और एक तरीके से एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिए जाने की एक साजिश का उन्होंने एक तरीके से वहीं पर उस साजिश को समाप्त कर दिया है। अनेक बार अपनी गर्दन पर सहने के बाद वे घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, वे अभी आश्वस्त हैं और उनकी लंबी आयु की कामना को लेकर वे जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों।
0: पायलट स्मिथ मुंबई के रहने वाले हैं, तिलक नगर में उनका निवास है। वहां भी आज आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए और पायलट स्मिथ की बहादुरी के लिए नारे भी लगाए।
7: स्मिथ के घर के नीचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो काम सराहनीय काम समिति ने किया है उसकी सराहना यहाँ पे की जा रही है। नित्या जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
8: देखिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, 174 लोगों की जान बचाई।
9: सीधी सीधी मांग है, हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
7: तो बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मिथ के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
0: आज तक
10: इस दुनिया में कैप्टन स्मिथ माचर को सुपर हीरो बताया जा रहा है। 13 साल का एविएशन अनुभव, मुंबई में स्पाइस जेट एयरलाइन से अपना करियर शुरू करने वाले पायलट स्मिथ ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ माचर का परिवार मूल रूप से गुजरात के अमरेली जिले का रहने वाला है।
11: वो वॉरियर है।
12: This young man just acts with incredible heroism.
11: वो जाबाज है।
13: I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to amazing to in a way he was a hero to open the door.
11: ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
14: שהיה דקור, היה פשוט הוא סמוך לדלת, אז היה קשה לנו. על המכשירים, בין שני הכיסאות, לא היה...
11: वो पराक्रमी है।
15: स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है।
11: वो हीरो है।
16: जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ही वुड नॉट ओपन द डोर।
11: हीरो है।
16: जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ही वुड नॉट ओपन द डोर।
11: स्मिथ द वॉरियर। दुबई के लिए टेक ऑफ होती है और टेक ऑफ के 2 घंटे बाद प्लेन में हलचल होने लगती है। अचानक से यात्रियों को जोर का झटका लगता है और 2 मिनट में प्लेन 17,400 फीट नीचे आ जाता है। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार बजने लगती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, कॉकपिट का दरवाजा बंद था। सुबह 8:31 पर विमान के कॉकपिट से इमरजेंसी कॉल होती है और कोड 7500 भेजा जाता है, यानी प्लेन हाईजैक हो गया है। कॉकपिट के अंदर क्या हुआ कोई यात्री नहीं जानता था, बस प्लेन थरथराता है। अचानक से कॉकपिट के दरवाजे पर हलचल होती है। एक यानिन नाम का यात्री फौरन कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वो कॉकपिट का दरवाजा खोलता है पूरा मंजर सामने आ जाता है।
10: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सांस से हाईजैक संकट टालने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय। ट्रंप नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का ईरान से हो सकता है कनेक्शन। पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च, राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच, जनता पार्टी ने भी कसी है कमर। मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी, परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी। जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने, और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसटीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र एक तरफ और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स वेहीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
3: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे। साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया, पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
3: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
2: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया। लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे। और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया। और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
5: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूँ, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
4: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाति हैं और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
2: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है पटना स्नातक निर्वाचन सीट से। जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
6: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
7: कार में जा रहे हैं, बैठक पार्टी की कोचिंग में।
6: एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
8: अब तो नहीं बचा है, जहां उसको कहे कि अभी कहा तभी निकाल।
6: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह। नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत। बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि जेडीयू के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने जन स्वराज पार्टी से हाथ मिला लिया। पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
9: अनुज सिंह जी के साथ
10: कह तो रहे हैं कि 200% 500% 1000%
9: कोई नहीं है
10: टक्कर में। कोई नहीं,
6: टक्कर में। जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खींच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
11: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संज्ञान में बात आई है और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
12: लग रहा है ये नहीं होना चाहिए।
11: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं, बोल लो।
6: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
13: पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए तो कुछ हो, पार्टी हमको भी नहीं समझाए, कुछ चार झोंक किया कुछ हम समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए, हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब इससे नहीं।
6: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ, यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
14: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
6: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को जेडीयू की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
15: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, कोई पूंजी है, आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे।
16: बैठक में
15: आज आप बयान कोई सुने हैं, किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी, पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है। सब नाराजगी खत्म है,
16: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी वो?
15: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी है, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एक से मिले हैं, एमपी हैं, और सब जगह तो हम ही लोग हैं। पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: उधर पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पंजाब का नया अध्यक्ष कौन होगा, जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच राजा वर्डिंग दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आलाकमान से मुलाकात करेंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राजा वर्डिंग ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया, जहां अब वो खुद को पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजा वर्डिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।
16: ये अधिकार क्षेत्र राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कौन बन रहा है, कब बन रहा है, हाँ मैं प्रधान नहीं हूँ, ये मेरे को पता है।
6: सूत्रों का कहना है कि वर्डिंग को बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है, जिसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
17: सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आपको बुलाया गया है?
18: बुलाया सर पार्टी ऑफिस में।
19: अब कुछ चीजें बहुत सी इंटरनल होती हैं और वो आपको बता दूंगा मैं जल्दी।
6: पिछले काफी वक्त से पंजाब में राजा वर्डिंग के खिलाफ चन्नी गुट ने मोर्चा खोल रखा था। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मामला सुलझाने पंजाब भी आए थे, जिसके बाद दिल्ली से साफ किया गया था कि राजा वर्डिंग को पंजाब अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। हालात को देखते हुए सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद अब राजा वर्डिंग को हटाए जाने का जल्द ऐलान किया जा सकता है।
20: कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ किसको लगाना है, कब बदलना है वो जानते हैं। जो सचिन पायलट जी आए हैं वो हमारे साथ वाले क्षेत्र से हैं, साथ वाले स्टेट से हैं, उनके आने से एक नई उम्मीद हमारे जो कार्यकर्ताओं में जागी है और हमें लग रहा है कि इस उम्मीद को आगे लेकर जाएंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बाद राजा वर्डिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें एआईसीसी से फोन आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि 4.5 साल तक प्रमुख रहने के बाद उन्हें बदला जा रहा है। अब राजा वर्डिंग को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
21: आखिरकार राजा वर्डिंग का इस्तीफा हो गया कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान। हाईकमांड के मुंह से करारी चपेट। हाईकमांड ने कहा सीगा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि राजा वर्डिंग साढ़े पंजाब के प्रधान बने रहेंगे।
22: जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वो पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना, उनका पहला फैसला था उसने पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना।
6: पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीन ली थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान आला कमान की टेंशन बढ़ा रहा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अब सवाल ये है कि राजा वर्डिंग की जगह कांग्रेस अब किस चेहरे पर दाम लगाती है। कमलजीत संधु के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी आज तक।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज से इंडिया गठबंधन बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इस बार सीजेपी मुंबई में धरना देगी।
6: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी का नया आंदोलन शुरू।
23: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे।
6: सीजेपी की हुंकार अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार।
24: चुनाव आयोग में क्लियरली एक रिप्ट है।
6: मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरुआत, फिर देश भर में आंदोलन। अभिजीत दिपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी का ऐलाने आंदोलन, इंडिया गठबंधन भी तैयार। आज लेफ्ट पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार एक्सपोज के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने उतरे। इससे पहले कांग्रेस ने 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर में हल्ला बोला।
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
6: फिर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने का अक्टूबर प्लान बनाया और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कल से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, सीजेपी ने कहा है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन देश भर में चलेगा।
2: कल से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है जो मुंबई से स्टार्ट होगा।
6: सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े जेन जी आंदोलन के बाद अब ये दूसरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सीजेपी के आंदोलन ने धार पकड़ी और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 शर्तों के साथ आंदोलन को खत्म किया।
3: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
6: और अब कॉकरोच जनता पार्टी फिर से 3 डिमांड्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क से आंदोलन करने उतर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले ही अपनी 3 मांगे बता दी हैं।
2: हमारी 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो एसआईआर की जो लिस्ट है, जो रोल है, वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर इलेक्शन होना चाहिए। अगर एसआईआर पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे इसको बना देते हैं।
6: आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है लेकिन पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में दिपके ने और सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
4: कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
5: ज्ञानेश कुमार को बोलिए ना रिजाइन कर दे। ज्ञानेश कुमार को बोल दिए रिजाइन कर दीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं? तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे क्यों? प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए। अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है। आप ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट और एसआईआर से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रखने वाले लोग नहीं है।
25: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे एंड जो जो उन्होंने एसआईआर जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो जो इलीगल काम किया है देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो।
6: सीजेपी का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया जाएगा, साथ ही गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन होगा।
26: सीजेपी क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ पेपर लीक वाले मुद्दे पे, तो सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए।
0: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला बोला। उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी है, यूएई के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर पूरे देश में कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है।
27: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाटी बटुकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बटुकों के हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी पायलट स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 100,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया।
1: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मच्छार ने 180 जिंदगियों को बचा लिया, क्योंकि उनके को पायलट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मिथ मच्छार ने कई जिंदगियों को बचाया। और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं।
2: बहादुर पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
0: इधर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी 174 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। स्मिथ बुरी तरह से घायल,
3: जो प्रार्थना है, विशेष पूजा है, वो स्मिथ मच्छार जी के लिए है।

0: प्रधानमंत्री और सब सबने माना है कि ऐसा मानवता का जो संदेश अश्विन मछार जी ने दिया है वो सबके लिए प्रेरणा।
1: हम जिस प्रकार अश्विन मछार जी ने अपना बहादुरी का वो बहादुरी दिखाई तो आज बड़ा हम गर्व से भी महसूस करते हैं कि उतने सारे यात्री को उन्होंने आज जान बचाने का कार्य किया और जिस प्रकार उनको चाकू मारा गया उसके बाद भी जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित उनको लैंड कराया। तो इस प्रकार हम माता के चरणों में हमने पूजा अर्चना करी है, माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।
2: कैप्टन स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां तो क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। खजराना इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां कैप्टन मच्छार के लिए पूजा की गई।
3: इस प्रकार से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में बैठे 170 यात्री और एक तरीके से एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिए जाने की एक साजिश का उन्होंने एक तरीके से वहीं पर उस साजिश को समाप्त कर दिया है। अनेक बार अपनी गर्दन पर सहने के बाद वे घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, वे अभी आश्वस्त हैं और उनकी लंबी आयु की कामना को लेकर वे जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों।
2: पायलट स्मिथ मुंबई के रहने वाले हैं, तिलक नगर में उनका निवास है। वहां भी आज आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए और पायलट स्मिथ की बहादुरी के लिए नारे भी लगाए।
4: समिति के घर के नीचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो काम सराहनीय काम समिति ने किया है उसकी सराहना यहाँ पे की जा रही है। नित्य जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
5: देखिए हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, 174 लोगों की जान बचाई।
6: सीधी सीधी मांग है, हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
4: तो बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मिथ के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
2: आज तक भी
7: स्मिथ मच्छार की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है और सेहत में धीरे धीरे सुधार जारी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर भारत की भी पैनी नजर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
8: ने प्रधानमंत्री ने दोनों ने ही कैप्टन स्मिथ की वीरता के बारे में बात की, किस तरह से उनके पूरे रोल को आप लोग देख रहे हैं?
9: ये बहुत ही सराहनीय है एंड हम भारत के ही नहीं बट पूरे विश्व में जितने लोग हैं सब उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके ब्रेवरी और उनके करेज, जो साहस उन्होंने दिखाया है ये कभी आपने इस तरह का देखा नहीं होगा। इस तरह के ये इंसिडेंट भी बहुत शॉकिंग है, पायलट ही दूसरे पायलट के ऊपर ऐसे अटैक करना, जो भी रिपोर्ट अभी तक आया है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो उसके हिसाब से आई थिंक ही हैज डन एन एग्जेम्पलरी वर्क। उनके खुद के लाइफ पे इतना इम्पैक्ट था फिर भी उन्होंने इतने सारे लोगों के जान बचाए तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण विषय है।
8: सर लेकिन इसकी वजह से क्या हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी वाइज एक तरह से अलर्ट मोड में आए हैं अपने खुद के एविएशन सेक्टर को लेकर?
9: देखियो ऐसे अगर एविएशन की सेफ्टी के बारे में आप पूछते हैं तो सब हर टाइम अलर्ट मोड पे रहते हैं बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैं हर बार इसके ऊपर मैं कह चुका हूं कि ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का विषय है एविएशन ऑपरेशंस के लिए। इसमें नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ हम करते हैं और जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स देश में या कहीं और होते हैं तो उससे जो लर्निंग होती है उससे भी हम सीख कर हमें कुछ और अगर दूसरे चीजें करनी हो, हमें और बेहतर करने के लिए कुछ विषय उठाने हो तो वो सब हम करते हैं। तो जरूर इसके बाद जो भी अभी क्योंकि वहां पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं तो जैसे ही उनके साथ एक फुल फ्लेज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके तहत हम उनके ऊपर हमारी यहाँ पे भी जो निर्णय लेने होंगे वो लेंगे जरूर।
7: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: साहस से हाईजैक, संकट टालने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय। ट्रंप ने नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का ईरान से हो सकता है कनेक्शन। पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च। राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कसी है कमर। मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी। परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी। जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान। 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज से इंडिया गठबंधन बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इस बार सीजेपी मुंबई में धरना देगी।
1: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी का नया आंदोलन शुरू।
2: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे।
1: सीजेपी की हुंकार अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार।
3: चुनाव आयोग में क्लियरली एक रिफ्ट है।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरुआत, फिर देश भर में आंदोलन। अभिजीत दिपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी का ऐलाने आंदोलन, इंडिया गठबंधन भी तैयार। आज लेफ्ट पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार एक्सपोज के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने उतरे। इससे पहले कांग्रेस ने 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर में हल्ला बोला।
4: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
1: फिर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने का अक्टूबर प्लान बनाया। और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कल से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, सीजेपी ने कहा है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन देश भर में चलेगा।
5: कल से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जो मुंबई से स्टार्ट होगा।
1: सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े जेन जी आंदोलन के बाद अब ये दूसरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सीजेपी के आंदोलन ने धार पकड़ी और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 शर्तों के साथ आंदोलन को खत्म किया।
6: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: और अब कॉकरोच जनता पार्टी फिर से 3 डिमांड्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क से आंदोलन करने उतर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले ही अपनी 3 मांगे बता दी हैं।
5: हमारी 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो एसआईआर की जो लिस्ट है, जो रोल है, वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर ही इलेक्शन होना चाहिए। अगर एसआईआर पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसको बना देते हैं।
1: आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में दिपके ने और सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
2: कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
7: ज्ञानेश कुमार को बोल के रिजाइन कर दीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे क्यों प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है, तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए, अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, और SIR से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रुकने वाले लोग नहीं है।
8: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे, एंड जो जो उन्होंने SIR जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो जो इलीगल काम किया है, देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो।
1: CJP का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया जाएगा, साथ ही गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन होगा।
9: CJP क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ पेपर लीक वाले मुद्दे पे, तो सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए।
0: यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने, और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
10: बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार SCF को नगद धनराशि और अंग वस्त्र भेंट कर, और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स वेहीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
11: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिस कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
12: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
11: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे, साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
12: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
11: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया, लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
13: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
11: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
14: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूँ, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
13: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि STF में जो लोग हैं वो स्वजाति हैं, और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
11: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खुला हुआ है। पटना स्नातक निर्वाचन सीट से जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
1: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
15: कार में जा रहे हैं, बैठक पार्टी की कोचिंग में।
1: एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
16: अब तो नहीं बचा है, जहां उसको कह रहे अभी कहा तभी निकाल।
1: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह। नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत। बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि जेडीयू के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने जन स्वराज पार्टी से हाथ मिला लिया। पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया, बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
17: कहते रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
18: कोई नहीं है टक्कर में।
1: जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खिंच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
19: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, उनके संज्ञान में बात आई है और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
20: लग रहा है ये नहीं होना चाहिए।
19: होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं, वो लोग।
1: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
21: हाँ, पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए, एको झोंक पार्टी हमको भी नहीं समझाए, चार झोंक किया एको झोंक समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए, हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब नहीं।
1: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ। यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
22: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
1: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को जेडीयू की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है, लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
3: अरे भाई, यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है? कोई पूंजी है?
4: आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे।
3: आज आप बयान कोई सुने हैं? किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई, माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी। पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है। सब नाराजगी खत्म है।
4: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी? वो
3: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी है, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे। जो एनडीए के विधायक है, विधान पार्षद है, एक से मिले हैं, एमपी है, और सब जगह तो हम ही लोग हैं। पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: उधर पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पंजाब का नया अध्यक्ष कौन होगा? जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच राजा वर्डिंग दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आला कमान से मुलाकात करेंगे।
1: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राजा वर्डिंग ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया, जहां अब वो खुद को पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजा वर्डिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है?
6: ये अधिकार क्षेत्र राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कौन बन रहा है, कब बन रहा है, हाँ मैं प्रधान नहीं हूँ, ये मेरे को पता है।
1: सूत्रों का कहना है कि वर्डिंग को बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है, जिसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
23: सर आप दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली आपको बुलाया गया है?
24: बुलाया सर पार्टी ऑफिस में।
25: अब कुछ चीजें बहुत सी इंटरनल होती हैं और वो आपको बता दूंगा मैं जल्दी।
1: पिछले काफी वक्त से पंजाब में राजा वर्डिंग के खिलाफ चन्नी गुट ने मोर्चा खोल रखा था। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मामला सुलझाने पंजाब भी आए थे, जिसके बाद दिल्ली से साफ किया गया था कि राजा वर्डिंग को पंजाब अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। हालात को देखते हुए सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद अब राजा वर्डिंग को हटाए जाने का जल्द ऐलान किया जा सकता है।
26: कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ किसको लगाना है, कब बदलना है वो जानते हैं। जो सचिन पायलट जी आए हैं वो हमारे साथ वाले क्षेत्र से हैं, साथ वाले स्टेट से हैं, उनके आने से एक नई उम्मीद हमारे जो कार्यकर्ताओं में जागी है और हमें लग रहा है कि इस उम्मीद को आगे लेकर जाएंगे।
1: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बाद राजा वर्डिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें एआईसीसी से फोन आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि 4.5 साल तक प्रमुख रहने के बाद उन्हें बदला जा रहा है। अब राजा वर्डिंग को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
27: आखिरकार राजा वर्डिंग का इस्तीफा हो गया कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान। हाईकमांड के मुंह से करारी चपेट। हाईकमांड ने कहा सीगा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि राजा वर्डिंग साढ़े पंजाब के प्रधान बने रहेंगे।
28: जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वो पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना, उनका पहला फैसला था उसने पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना।
1: पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीन ली थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान आला कमान की टेंशन बढ़ा रहा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अब सवाल ये है कि राजा वर्डिंग की जगह कांग्रेस अब किस चेहरे पर दाम लगाती है। कमलजीत संधु के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी आज तक।
0: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला बोला। उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी है, यूएई के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर पूरे देश में कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है।
29: हर देशवासी के लिए
2: स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मिथ मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मिथ मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाटी बटुकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बटुकों के हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी पायलट स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 100,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया।
1: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मच्छार ने 180 जिंदगियों को बचा लिया, क्योंकि उनके को पायलट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मिथ मच्छार ने कई जिंदगियों को बचाया। और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं।
2: बहादुर पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
0: इधर दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में भी 174 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की। स्मिथ बुरी तरह से घायल,
3: जो प्रार्थना है, विशेष पूजा है, वो स्मिथ मच्छार जी के लिए है कि जल्द कालकामाई उनको स्वस्थ करें, क्योंकि वो आज के डेट में पूरे विश्व के रियल हीरो है। आपने देखा कि विश्व के सभी बड़े देश हो या उनके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबने माना है कि ऐसा मानवता का जो संदेश स्मिथ मच्छार जी ने दिया है वो सबके लिए प्रेरणा।
4: हम जिस प्रकार स्मिथ मच्छार जी ने अपना बहादुरी का वो बहादुरी दिखाई, तो आज बड़ा हम गर्व से भी महसूस करते हैं कि उतने सारे यात्री को उन्होंने आज जान बचाने का कार्य किया। और जिस प्रकार उनको चाकू मारा गया, उसके बाद भी जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित उनको लैंड कराया, तो इस प्रकार हम माता के चरणों में हमने पूजा अर्चना करी है, माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।
0: कैप्टन स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां तो क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। खजराना इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां कैप्टन मच्छार के लिए पूजा की गई।
5: कैप्टन स्मिथ मच्छार स्वस्थ रहे।
6: इस प्रकार से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में बैठे 170 यात्री और एक तरीके से एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिए जाने की एक साजिश का उन्होंने एक तरीके से वहीं पर उस साजिश को समाप्त कर दिया है। अनेक बार अपनी गर्दन पर सहने के बाद वे घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, वे अभी आश्वस्त हैं और उनकी लंबी आयु की कामना को लेकर वे जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों।
0: पायलट स्मिथ मुंबई के रहने वाले हैं, तिलक नगर में उनका निवास है। वहां भी आज आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए और पायलट स्मिथ की बहादुरी के लिए नारे भी लगाए।
7: स्मिथ के घर के नीचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो काम सराहनीय काम समिति ने किया है उसकी सराहना यहाँ पे की जा रही है। नित्या जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
8: देखिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, 174 लोगों की जान बचाई।
9: सीधी सीधी मांग है, हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
7: तो बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मिथ के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
0: आज तक
10: स्मित मच्छार की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है और सेहत में धीरे धीरे सुधार जारी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर भारत की भी पैनी नजर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
11: ने प्रधानमंत्री ने दोनों ने ही कैप्टन स्मिथ की वीरता के बारे में बात की, किस तरह से उनके पूरे रोल को आप लोग देख रहे हैं?
12: ये बहुत ही सराहनीय है एंड हम भारत के ही नहीं बट पूरे विश्व में जितने लोग हैं सब उसके अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके ब्रेवरी और उनके करेज, जो साहस उन्होंने दिखाया है ये कभी आपने इस तरह का देखा नहीं होगा। इस तरह के ये इंसिडेंट भी बहुत शॉकिंग है, पायलट ही दूसरे पायलट के ऊपर ऐसा अटैक करना, जो भी रिपोर्ट अभी तक आया है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से आई थिंक ही हैज डन एन एग्जेम्पलरी वर्क। उनके खुद के लाइफ पे इतना इम्पैक्ट था फिर भी उन्होंने इतने सारे लोगों के जान बचाए, तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण विषय है
11: सर। लेकिन इसकी वजह से क्या हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सिक्योरिटी वाइज एक तरह से अलर्ट मोड में आए हैं अपने खुद के एविएशन सेक्टर को लेकर?
12: देखियो ऐसे अगर एविएशन के सेफ्टी के बारे में आप पूछते हैं तो सब हर टाइम अलर्ट मोड पे रहते हैं, बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैं हर बार इसके ऊपर मैं कह चुका हूं कि ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का विषय है एविएशन ऑपरेशंस के लिए। इसमें नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ हम करते हैं और जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स देश में या कहीं और होते हैं तो उससे जो लर्निंग होती है उससे भी हम सीख कर हमें कुछ और अगर दूसरे चीजें करनी हो, हमें और बेहतर करने के लिए कुछ विषय उठाने हो तो वो सब हम करते हैं। तो जरूर इसके बाद जो भी अभी क्योंकि वहां पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं, तो जैसे ही उनके साथ एक फुल फ्लेज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके तहत हम उनके ऊपर हमारे यहाँ पे भी जो निर्णय लेने होंगे वो लेंगे जरूर।
10: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: साहस से हाईजैक, संकट आने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय। ट्रंप नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का, ईरान से हो सकता है कनेक्शन, पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज विपक्ष का हल्ला बोल, दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च, राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कसी है कमर, मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी, जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला, टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने, और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई और तरतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र भेंट कर, और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिस कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
3: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों, कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे, साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
3: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत तो माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
2: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया, लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
5: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूं, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
4: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाती हैं, और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
2: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है पटना स्नातक निर्वाचन सीट से। जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
6: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
7: कार में जा रहे हैं बैठक पार्टी की कोचिंग में।
6: MLC चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
8: अब चल है जहां उसको कहे अबड़ी कहा तभी निकाल।
6: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह। नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत। बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि जेडीयू के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने जन स्वराज पार्टी से हाथ मिला लिया। पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
9: कहते रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
10: कोई नहीं है टक्कर में।
6: जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खींच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
11: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संज्ञान में बात आई है और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
12: लग रहा ये नहीं होना चाहिए?
11: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं, बोल लो।
6: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा। लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
13: पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए तो कोई झोंक, पार्टी हमको भी नहीं समझाए तो चार झोंक किया, कोई झोंक समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए, हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब इससे नहीं।
6: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ। यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
14: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
6: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को जेडीयू की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
15: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, कोई पूंजी है।
16: आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे।
15: आज आप बयान कोई सुने हैं? किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी। पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है। सब नाराजगी खत्म है,
16: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी वो?
15: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी हैं, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एक एमएलए हैं, एमपी हैं, और सब जगह तो हम ही लोग हैं।
16: तो सब एकजुट है,
15: पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: उधर पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पंजाब का नया अध्यक्ष कौन होगा, जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच राजा वडिंग दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आला कमान से मुलाकात करेंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राजा वडिंग ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया, जहां अब वो खुद को पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।
12: ये अधिकार क्षेत्र राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कौन बन रहा है, कब बन रहा है, हाँ मैं प्रधान नहीं हूँ, ये मेरे को पता है।
6: सूत्रों का कहना है कि वडिंग को बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है, जिसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
17: सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आपको बुलाया गया है?
18: बुलाया सर पार्टी ऑफिस में।
19: अब कुछ चीजें बहुत सी इंटरनल होती हैं और वो आपको बता दूंगा मैं जल्दी।
6: पिछले काफी वक्त से पंजाब में राजा वडिंग के खिलाफ चन्नी गुट ने मोर्चा खोल रखा था। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मामला सुलझाने पंजाब भी आए थे, जिसके बाद दिल्ली से साफ किया गया था कि राजा वडिंग को पंजाब अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। हालात को देखते हुए सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद अब राजा वडिंग को हटाए जाने का जल्द ऐलान किया जा सकता है।
20: कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ किसको लगाना है, कब बदलना है वो जानते हैं। जो सचिन पायलट जी आए हैं वो हमारे साथ वाले क्षेत्र से हैं, साथ वाले स्टेट से हैं, उनके आने से एक नई उम्मीद हमारे जो कार्यकर्ता उनमें जागी है और हमें लग रहा है कि इस उम्मीद को आगे लेकर जाएंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बाद राजा वडिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें एआईसीसी से फोन आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि 4.5 साल तक प्रमुख रहने के बाद उन्हें बदला जा रहा है। अब राजा वडिंग को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
21: आखिरकार राजा वडिंग का इस्तीफा हो गया कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान, हाईकमान के मुंह से करारी चपेट। हाईकमांड ने कहा सीगा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि राजा वडिंग साढ़े पंजाब के प्रधान बने रहेंगे।
22: जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वो पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना, उनका पहला फैसला था उसने पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना।
6: पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीन ली थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान आला कमान की टेंशन बढ़ा रहा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अब सवाल ये है कि राजा वडिंग की जगह कांग्रेस अब किस चेहरे पर दाम लगाती है। कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी आज तक।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज से इंडिया गठबंधन बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इस बार सीजेपी मुंबई में धरना देगी।
6: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी का नया आंदोलन शुरू।
23: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे।
6: सीजेपी की हुंकार अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार।
24: चुनाव आयोग में क्लियरली एक रिफ्ट है।
6: मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरुआत, फिर देश भर में आंदोलन। अभिजीत दिपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी का ऐलाने आंदोलन, इंडिया गठबंधन भी तैयार। आज लेफ्ट पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार एक्सपोज के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने उतरे। इससे पहले कांग्रेस ने 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर में हल्ला बोला।
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
6: फिर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने का अक्टूबर प्लान बनाया और अब कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कल से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, सीजेपी ने कहा है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन देश भर में चलेगा।
3: कल से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है जो मुंबई से स्टार्ट होगा।
6: सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े जेन जी आंदोलन के बाद अब ये दूसरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सीजेपी के आंदोलन ने धार पकड़ी और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 शर्तों के साथ आंदोलन को खत्म किया।
4: क्या कह रहे थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
6: और अब कांग्रेस जनता पार्टी फिर से 3 डिमांड्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क से आंदोलन करने उतर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले ही अपनी 3 मांगे बता दी हैं।
3: हमारी 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो एसआईएल की जो लिस्ट है, जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर ही इलेक्शन होना चाहिए। अगर एसआईआर पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे इसको बना देते हैं।
6: आपको बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है लेकिन पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में दिपके ने और सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
5: कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
18: ज्ञानेश कुमार को बोलिए ना रिजाइन कर दे।
5: ज्ञानेश कुमार को बोल दिए रिजाइन कर दीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं? तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे क्यों आते हैं? प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए। अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है। आप ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट और एसआईआर से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रखने वाले लोग नहीं है।
25: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे एंड जो जो उन्होंने एसआईआर जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो जो इलीगल काम किया है देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो।
6: सीजेपी का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया जाएगा, साथ ही गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन होगा।
26: सीजेपी क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ पेपर लीक वाले मुद्दे पे, तो सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए।
0: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला बोला। उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी है, यूएई के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर पूरे देश में कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है।
27: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मित मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मित के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मित मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाटी भटकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना। भटकों के हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी पायलट स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 100,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया।
1: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मच्छार ने 180 जिंदगियों को बचा लिया, क्योंकि उनके को पायलट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मिथ मच्छार ने कई जिंदगियों को बचाया। और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं।
2: बहादुर पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
0: इधर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी 174 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। स्मिथ बुरी तरह से घायल,
3: जो प्रार्थना है, विशेष पूजा है, वो स्मिथ मच्छार जी के लिए है कि जल्द कालकामाई उनको स्वस्थ करे, क्योंकि वो आज के डेट में पूरे विश्व के रियल हीरो है। आपने देखो कि विश्व के सभी बड़े देश हो या उनके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबने माना है कि ऐसा मानवता का जो संदेश स्मिथ मच्छार जी ने दिया है वो सबके लिए प्रेरणा।
4: हम जिस प्रकार स्मिथ मच्छार जी ने अपना बहादुरी का वो बहादुरी दिखाई, तो आज बड़ा हम गर्व से भी महसूस करते हैं कि उतने सारे यात्री को उन्होंने आज जान बचाने का कार्य किया। और जिस प्रकार उनको चाकू मारा गया, उसके बाद भी जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित उनको लैंड कराया, तो इस प्रकार हम माता के चरणों में हमने पूजा अर्चना करी है, माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।
0: कैप्टन स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां तो क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। खजराना इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां कैप्टन मच्छार के लिए पूजा की गई।
5: कैप्टन स्मिथ मच्छार स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे।
6: इस प्रकार से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में बैठे 170 यात्री और एक तरीके से

0: पर सहने के बाद वे घायल होने के बावजूद लड़ते रहे। वे अभी अस्वस्थ हैं और उनकी लंबी आयु की कामना को लेकर वे जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों।
1: पायलट स्मिथ मुंबई के रहने वाले हैं, तिलक नगर में उनका निवास है। वहां भी आज आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए और पायलट स्मिथ की बहादुरी के लिए नारे भी लगाए।
2: स्मिथ के घर के नीचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो काम सराहनीय काम समिति ने किया है उसकी सराहना यहाँ पे की जा रही है। नित्याजी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
3: देखिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। 174 लोगों की जान बचाई।
4: सीधी सीधी मांग है, हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
2: तो बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मिथ के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
1: आज तक
5: इस दुनिया में कैप्टन स्मिथ माचर को सुपर हीरो बताया जा रहा है। 13 साल का एविएशन अनुभव, मुंबई में स्पाइस जेट एयरलाइंस से अपना करियर शुरू करने वाले पायलट स्मिथ ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ माचर का परिवार मूल रूप से गुजरात के अमरेली जिले का रहने वाला है।
6: वो वॉरियर है।
7: This young man just acts with incredible heroism.
6: वो जाबाज है।
8: I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to amazing, to in a way he was a hero, to open the door.
6: ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
9: שהיה דקור, היה פשוט הוא סמוך לדלת, אז היה קשה לנו. על המכשירים, בין שני הכיסאות, לא היה...
6: वो पराक्रमी है।
10: स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है।
6: वो हीरो है।
11: Just imagine what would happen if he would not open the door.
6: स्मिथ द वॉरियर। फ्लाइट दुबई की फ्लाइट FZ1073 सुबह 6:05 पर इसराइल की राजधानी तेल अवीव के लिए टेक ऑफ होती है और टेक ऑफ के 2 घंटे बाद प्लेन में हलचल होने लगती है। अचानक से यात्रियों को जोर का झटका लगता है और 2 मिनट में प्लेन 17,400 फीट नीचे आ जाता है। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार बजने लगती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, कॉकपिट का दरवाजा बंद था। सुबह 8:31 पर विमान के कॉकपिट से इमरजेंसी कॉल होती है और कोड 7500 भेजा जाता है, यानी प्लेन हाईजैक हो गया है। कॉकपिट के अंदर क्या हुआ कोई यात्री नहीं जानता था, बस प्लेन धड़धड़ाता है। अचानक से कॉकपिट के दरवाजे पर हलचल होती है। एक यानिन नाम का यात्री फौरन कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वो कॉकपिट का दरवाजा खोलता है पूरा मंजर सामने आ जाता है।
5: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सांस से हाईजैक संकट टालने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय ट्रंप। नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का ईरान से हो सकता है कनेक्शन, पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज विपक्ष का हल्ला बोल, दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च, राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कसी है कमर, मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी, जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला, टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने, और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र एक तरफ और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
3: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों। कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे, साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
3: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
2: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया, लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
5: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूं, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
4: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाति हैं, और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
2: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है पटना स्नातक निर्वाचन सीट से। जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।
6: नीतीश की पार्टी में बगावत की अनंत कथा।
7: कार में जा रहे हैं, बैठक पार्टी की कोची में है।
6: एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने खोला मोर्चा।
8: अब तो नहीं बचा है, जहां उसको कहे कि अभी कहा तभी निकाल।
6: पीके के प्रत्याशी के समर्थन में अनंत सिंह। नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह की लड़ाई। नीतीश के बाहुबली विधायक की बगावत। बिहार में नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेताओं की लड़ाई बंद कमरे से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। सियासी अदावत का आलम यह है कि जेडीयू के विधान परिषद के उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने जन स्वराज पार्टी से हाथ मिला लिया। पार्टी की लाइन से अलग हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि खुद साथ में नामांकन करवाने पहुंचे। अनंत सिंह का दावा यही है कि जन स्वराज के उम्मीदवार की जीत होगी और जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की हार।
9: कह तो रहे हैं कि 200%, 500%, 1000%।
6: जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच खुल्लम खुल्ला तलवारें खींच गई हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, ललन सिंह चुप हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विवाद को निपटाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन अनंत सिंह नहीं माने। तो क्या आने वाले दिनों में नीतीश अपने करीबी अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एक्शन ले सकते हैं?
10: पार्टी के संज्ञान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके संज्ञान में बात आई है और संज्ञान में आने के बाद आगे क्या निर्णय लेते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
11: लग रहा है ये नहीं होना चाहिए।
10: होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, तो पार्टी के सभी हमारे बड़े नेता के संज्ञान में बातें हैं वो लोग।
6: पार्टी की टॉप लीडरशिप कल तक यही कह रही थी कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा, पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई नेता नहीं जाएगा, लेकिन जन स्वराज के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होकर अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने मत की करेंगे।
12: पार्टी एकजुट है, एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को हम कहीं दिक्कत नहीं है, हमारा दोनों में दिक्कत है और पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हम ओकरा नहीं समझाए तो कोई झोंक, पार्टी हमको भी नहीं समझाए तो चार झोंक किया, कोई हम समझाते तो हमको भी समझाते, तो उसको भी नहीं समझाए, हमको भी नहीं समझाए, हमारा व्यक्ति है दोनों का, पार्टी का कोई मतलब इससे नहीं।
6: भले ही अनंत सिंह इसे पार्टी की नहीं बल्कि दो नेताओं की आपसी लड़ाई करार दे रहे हैं, नीरज कुमार के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेडीयू नीरज कुमार के साथ खड़ी है और अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ, यानी नीतीश कुमार के फैसले को अनंत सिंह सीधी चुनौती दे रहे हैं।
13: चुनाव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन एक बात समझना होगा कि नीरज जी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनंत सिंह जी भी सदस्य बिहार विधानसभा हैं। पार्टी इस असहमति के वातावरण को ठीक करने के लिए जरूर इस दिशा में काम करेगी और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सीटों को जीतने का लक्ष्य है तो छोटे मतभेद खत्म होने चाहिए।
6: दरअसल नीरज कुमार को लेकर अनंत सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी दफ्तर में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों नेता पहुंचे थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 7 सितंबर को जेडीयू की तरफ से यही दावा किया गया कि पार्टी बड़ी है लिहाजा दोनों नेताओं के मतभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। खुद नीरज कुमार ने अनंत सिंह के समर्थन का दावा किया था।
14: अरे भाई यूनाइट नहीं रहने का कोई सवाल है, कोई पूंजी है, आपका विरोध भी तो अनंत सिंह कर रहे थे।
15: बैठक में
14: आज आप बयान कोई सुने हैं, किसी का कोई बयान सुने हैं? अरे भाई माननीय विधानमंडल के नेता श्रवण कुमार जी, उन्होंने आपको सारी बात कह दी, पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, तो यूनाइटेड रहना है, सब नाराजगी खत्म है।
15: समर्थन करेंगे ना आपको नीरज जी वो?
14: अरे बिल्कुल, सब पार्टी के माननीय विधायक हमारी पूंजी हैं, सारे विधायक हमको समर्थन करेंगे, जो एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, एक से मिले हैं, एमपी हैं, और सब जगह तो हम ही लोग हैं। पालीगंज से लेकर रजौली तक।
0: उधर पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पंजाब का नया अध्यक्ष कौन होगा, जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच राजा वर्डिंग दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आलाकमान से मुलाकात करेंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच राजा वर्डिंग ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया, जहां अब वो खुद को पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजा वर्डिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।
15: ये अधिकार क्षेत्र राहुल गांधी का है और राहुल गांधी जी का है और कांग्रेस पार्टी का है। कौन बन रहा है, कब बन रहा है, हाँ मैं प्रधान नहीं हूँ, ये मेरे को पता है।
6: सूत्रों का कहना है कि वर्डिंग को बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है, जिसके बाद वो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
16: सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आपको बुलाया गया है?
17: बुलाया सर, पार्टी ऑफिस में।
18: अब कुछ चीजें बहुत सी इंटरनल होती हैं और वो आपको बता दूंगा मैं जल्दी।
6: पिछले काफी वक्त से पंजाब में राजा वर्डिंग के खिलाफ चन्नी गुट ने मोर्चा खोल रखा था। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल मामला सुलझाने पंजाब भी आए थे, जिसके बाद दिल्ली से साफ किया गया था कि राजा वर्डिंग को पंजाब अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन पंजाब कांग्रेस में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। हालात को देखते हुए सचिन पायलट को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद अब राजा वर्डिंग को हटाए जाने का जल्द ऐलान किया जा सकता है।
19: कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, खड़गे साहब राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ किसको लगाना है, कब बदलना है वो जानते हैं। जो सचिन पायलट जी आए हैं वो हमारे साथ वाले क्षेत्र से हैं, साथ वाले स्टेट से हैं, उनके आने से एक नई उम्मीद हमारे जो कार्यकर्ता उनमें जागी है और हमें लग रहा है कि इस उम्मीद को आगे लेकर जाएंगे।
6: पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बाद राजा वर्डिंग ने पद छोड़ने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्हें एआईसीसी से फोन आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि 4.5 साल तक प्रमुख रहने के बाद उन्हें बदला जा रहा है। अब राजा वर्डिंग को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहा है।
20: आखिरकार राजा वर्डिंग का इस्तीफा हो गया कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान, हाईकमांड के मुंह से करारी चपेट। हाईकमांड ने कहा सीगा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि राजा वर्डिंग साढ़े पंजाब के प्रधान बने रहेंगे।
21: जो कांग्रेस हाईकमांड का फैसला है वो पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना, उनका पहला फैसला था उसने पंजाब की कांग्रेस ने नहीं माना।
6: पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान ने कांग्रेस से पंजाब की सत्ता छीन ली थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान आला कमान की टेंशन बढ़ा रहा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में अब सवाल ये है कि राजा वर्डिंग की जगह कांग्रेस अब किस चेहरे पर दाम लगाती है। कमलजीत संधु के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी आज तक।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज से इंडिया गठबंधन बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ज्ञानेश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इस बार सीजेपी मुंबई में धरना देगी।
6: 2 अक्टूबर से कॉकरोच जनता पार्टी का नया आंदोलन शुरू।
22: शिवाजी पार्क, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली शिवाजी पार्क में देखी है, तो हम भी एक बहुत पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे।
6: सीजेपी की हुंकार अब की बार ज्ञानेश कुमार पर आर पार।
23: चुनाव आयोग में क्लियरली एक रिप्ट है।
6: मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरुआत, फिर देश भर में आंदोलन। अभिजीत दिपके की चेतावनी, रोक सको तो रोक लो। सीजेपी का ऐलाने आंदोलन, इंडिया गठबंधन भी तैयार। आज लेफ्ट पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार एक्सपोज के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने उतरे। इससे पहले कांग्रेस ने 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर में हल्ला बोला।
1: जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये हमारा संघर्ष जो ही सड़कों पर जारी रहेगा।
6: फिर 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन के 19 दलों ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार को घेरने का अक्टूबर प्लान बनाया और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर यानी कल से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जी हां, सीजेपी ने कहा है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से ये आंदोलन शुरू होगा और जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन देश भर में चलेगा।
3: कल से कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन है, इलेक्शन कमिश्नर जिनको वो कहने के लायक तो नहीं, वो देश के गद्दार है। ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार है। उनके रेजिग्नेशन के लिए कल से हमारा देश भर का आंदोलन शुरू होने जा रहा है जो मुंबई से स्टार्ट होगा।
6: सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छिड़े जेन जी आंदोलन के बाद अब ये दूसरा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सीजेपी के आंदोलन ने धार पकड़ी और 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने 3 शर्तों के साथ आंदोलन को खत्म किया।
4: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
6: और अब कॉकरोच जनता पार्टी फिर से 3 डिमांड्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क से आंदोलन करने उतर रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले ही अपनी 3 मांगे बता दी हैं।
3: हमारी 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार पर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए, एक इंक्वायरी उनके ऊपर बैठनी चाहिए। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो एसआईएल की जो लिस्ट है, जो रोल है वो फ्रीज होना चाहिए। 2025 की जो वोटर लिस्ट है उस पर इलेक्शन होना चाहिए। अगर एसआईआर पर इलेक्शन होगा तो मोदी जी अमेरिका का भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो हमारी तीसरी डिमांड है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रलिटी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमित शाह और मोदी जी अपने घर पर बैठकर डिसाइड कर ले ये अच्छा लग रहा है मुझे इसको बना देते हैं।
6: आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क से आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है लेकिन पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में दिपके ने और सीजेपी ने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
5: कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं आप हाईकोर्ट अप्रोच हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट
24: ज्ञानेश कुमार को बोलिए ना रिजाइन कर दे, ज्ञानेश कुमार को बोल दिए रिजाइन कर दीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस ने जाके पॉलिटिकल रैली से पहले किसका परमिशन लिया था शिवाजी पार्क में जब वो करते हैं, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे क्यों आते हैं? प्रिवेंशन एक्शन भी हो सकती है तो वो तो होगी, वो तो करने दीजिए, अरेस्ट कर लेंगे, 3 दिन के लिए डाल देंगे, महीने भर के लिए डाल देंगे, साल भर के लिए डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे 13 करोड़ लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनका वोट तो वापस नहीं आ रहा है। आप ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा इलेक्शन कमीशन का पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग, एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट और एसआईआर से पहले की जो वोटिंग लिस्ट है जब तक फ्रीज नहीं होती है हम रखने वाले लोग नहीं है।
25: रेजिग्नेशन भी होगा, ज्ञानेश कुमार जेल भी जाएंगे एंड जो उन्होंने एसआईआर जैसा इलीगल काम किया है इतने अपने टेन्योर के दौरान, इनके पहले भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं उन्होंने भी जो इलीगल काम किया है देश का युवा इंश्योर करेगा कि वो सब अंडू हो।
6: सीजेपी का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो अक्टूबर के अंत से जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया जाएगा, साथ ही गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन होगा।
26: सीजेपी क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से, उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ पेपर लीक वाले मुद्दे पे, तो सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए।
0: कैप्टन स्मिथ पर ओमानी पायलट ने बहुत बड़ा हमला बोला, उनका हाथ और सिर बुरी तरह से जख्मी है, यूएई के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इधर पूरे देश में कैप्टन स्मिथ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो चुका है।
27: हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मित के दीर्घायु के लिए, स्मित के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मित का अभिनंदन करें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के मंदिरों में भारत के वीर बहादुर कैप्टन स्मित मच्छार के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गई। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कैप्टन स्मित के स्वास्थ्य के लिए पूजा चल रही है। ये सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो खुद सोमनाथ मंदिर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि राष्ट्र के गौरव वीर पायलट स्मित मच्छार के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ में विशेष महापूजा।

0: और ये वाराणसी की तस्वीरें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में वेद पाठी भटकों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके कैप्टन स्मिथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भटकों के हाथों में कैप्टन स्मिथ की तस्वीर भी थी। इसके अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी पायलट स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। 21 शास्त्रियों ने कुशा जल से रुद्राभिषेक और 11 शास्त्रियों ने 100,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया।
1: लगभग 30,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय मूल के पायलट स्मिथ मच्छार ने 180 जिंदगियों को बचा लिया, क्योंकि उनके को पायलट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे में पूरी फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश को पायलट की ओर से की जा रही थी, लेकिन अपनी जान की परवाह बगैर किए स्मिथ मच्छार ने कई जिंदगियों को बचाया। और भारतीय मूल के होने की वजह से न केवल पूरे भारत में उनके प्राणों की रक्षा के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बल्कि देश भर के नेता, राजनेता और तमाम हस्तियां उनके इस साहस को सलाम कर रही हैं।
2: बहादुर पायलट स्मृति ने जो कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, 134 लोगों की जान बचाई और जो इतने आकाश से उड़ते हुए पृथ्वी में साकुशल उतार दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे पायलट को बहुत बहुत आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
0: इधर दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी 174 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। स्मिथ बुरी तरह से घायल।
3: जो प्रार्थना है, विशेष पूजा है, वो स्मिथ मच्छार जी के लिए है कि जल्द कालकामई उनको स्वस्थ करें, क्योंकि वो आज के देखो पूरे विश्व के रियल हीरो है। आपने देखा कि विश्व के सभी बड़े देश हो या उनके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबने माना है कि ऐसा मानवता का जो संदेश स्मिथ मच्छार जी ने दिया है वो सबके लिए प्रेरणा।
4: हम जिस प्रकार स्मिथ मच्छार जी ने अपना बहादुरी का वो बहादुरी दिखाई, तो आज बड़ा हम गर्व से भी महसूस करते हैं कि उतने सारे यात्री को उन्होंने आज जान बचाने का कार्य किया। और जिस प्रकार उनको चाकू मारा गया, उसके बाद भी जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित उनको लैंड कराया, तो इस प्रकार हम माता के चरणों में हमने पूजा अर्चना करी है, माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।
0: कैप्टन स्मिथ मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इंदौर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। यहां तो क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। खजराना इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां कैप्टन मच्छार के लिए पूजा की गई।
5: कैप्टन स्मिथ मच्छार स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे।
1: इस प्रकार से इजराइल जाने वाली फ्लाइट में बैठे 170 यात्री और एक तरीके से एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिए जाने की एक साजिश का उन्होंने एक तरीके से वहीं पर उस साजिश को समाप्त कर दिया है। अनेक बार अपनी गर्दन पर सहने के बाद वे घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, वे अभी आश्वस्त हैं और उनकी लंबी आयु की कामना को लेकर वे जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों।
0: पायलट स्मिथ मुंबई के रहने वाले हैं, तिलक नगर में उनका निवास है। वहां भी आज आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए और पायलट स्मिथ की बहादुरी के लिए नारे भी लगाए।
6: स्मिथ के घर के नीचे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो काम सराहनीय काम समिति ने किया है उसकी सराहना यहाँ पे की जा रही है। नित्या जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
7: देखिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे लाल ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, 174 लोगों की जान बचाई।
8: सीधी सीधी मांग है, हमारे देश के युवाओं ने भारत की जिम्मेदारी पूरे विश्व में जाहिर की है और एक भरोसा पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत के साथ में धोखा कभी नहीं होगा।
6: तो बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम नागरिक हैं जो अब पायलट स्मिथ के बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और उनको शौर्य पुरस्कार दिए जाए, उनका उचित जो है सम्मान किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 174 लोगों की जान नहीं बचाई बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और इसीलिए अब उनकी सराहना जो है हर स्तर से हो रही है।
0: आज तक
9: इस दुनिया में कैप्टन स्मिथ माचर को सुपर हीरो बताया जा रहा है। 13 साल का एविएशन अनुभव, मुंबई में स्पाइस जेट एयरलाइन से अपना करियर शुरू करने वाले पायलट स्मिथ ने 174 यात्रियों की जान बचाई है। स्मिथ माचर का परिवार मूल रूप से गुजरात के अमरेली जिले का रहने वाला है।
10: वो वॉरियर है।
11: This young man just acts with incredible, incredible heroism.
10: वो जाबाज है।
12: I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to amazing, to in a way he was a hero, to open the door.
10: ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
13: שהיה דקור, היה פשוט הוא סמוך לדלת, אז היה קשה לנו. על המכשירים, בין שני הכיסאות, לא היה...
10: वो पराक्रमी है।
14: स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है।
10: वो हीरो है।
15: Just imagine what would happen if he would not open the door.
10: स्मिथ द वॉरियर। फ्लाइट दुबई की फ्लाइट FZ1073 सुबह 6:05 पर इसराइल की राजधानी तेल अवीव के लिए टेक ऑफ होती है और टेक ऑफ के 2 घंटे बाद प्लेन में हलचल होने लगती है। अचानक से यात्रियों को जोर का झटका लगता है और 2 मिनट में प्लेन 17,400 फीट नीचे आ जाता है। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार बजने लगती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, कॉकपिट का दरवाजा बंद था। सुबह 8:31 पर विमान के कॉकपिट से इमरजेंसी कॉल होती है और कोड 7500 भेजा जाता है, यानी प्लेन हाईजैक हो गया है। कॉकपिट के अंदर क्या हुआ कोई यात्री नहीं जानता था, बस प्लेन थरथराता है। अचानक से कॉकपिट के दरवाजे पर हलचल होती है। एक यानिन नाम का यात्री फौरन कॉकपिट की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वो कॉकपिट का दरवाजा खोलता है पूरा मंजर सामने आ जाता है।
9: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: साहस से हाईजैक, संकट आने वाले हिंदुस्तानी पायलट की दुनिया भर में जय जय। ट्रंप नेतन्याहू ने किया बहादुरी को सलाम, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश का गर्व, कैप्टन की सेहत में सुधार। हमलावर को पायलट को ट्रंप ने बताया संदिग्ध आतंकवादी का, ईरान से हो सकता है कनेक्शन, पूरे मामले की जा रही है जांच। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आज विपक्ष का हल्ला बोल, दिल्ली समेत पूरे देश में इंडिया अलायंस की सेव डेमोक्रेसी मार्च, राहुल और ममता ने फिर से साधा ज्ञानेश पर निशाना। सीसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कसी है कमर, मुंबई में प्रदर्शन की तैयारी में सीजेपी परमिशन को लेकर सीएम को दी गई चेतावनी, जंतर मंतर पर भी विरोध की तैयारियां। और अगले क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, 2 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा मुकाबला, टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा पाकिस्तान के साथ। यूपी में सीएम योगी प्रदेश के जाबाज पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने, और साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। उधर अखिलेश यादव भी योगी पर पलटवार कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि से अभिनंदन धर्मपत्नी स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार एसटीएफ को नगद धनराशि और अंग वस्त्र भेंट कर, और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी सहायता दी। यही है सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम की ताकत।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जाबाज पुलिस कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और इसी सम्मान के साथ विपक्षी हुकूमत की बदनाम कहानियां सुना रहे हैं।
3: कोसी कला से प्रारंभ होता है, कोसी कला से मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, 6 महीने तक दंगा चला था। कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जहां दंगे न हुए हों, कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
2: दरअसल योगी राज में कानून व्यवस्था की सख्ती और चौकसी का हवाला देते हुए सीएम योगी तब और अब का फर्क बता रहे थे, साथ ही 2017 से पहले के हालात का जिक्र करके माफिया पुलिस और नेताओं के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे।
3: पॉलिटिकल लीडरशिप अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य स्वयं न पैदा करे और स्वयं ही उसकी रीढ़ टेढ़ी हो तो कानून व्यवस्था की स्थिति को सीधी कैसे कर सकता है। यहां पर यही होता था, माफिया के सामने नाक रगड़ा जाता था, घुटने टेके जाते थे। यूपी के हर जनपद में दुर्दांत माफियाओं का बोलबाला था, समानांतर सरकारें चलती थी, पुलिस मजबूर थी उनके सामने।
2: सीएम योगी के हाथों पुरस्कार पाने वाले सभी 26 पुलिसकर्मियों में या तो अपराधियों से आमने सामने की मुठभेड़ में पकड़ा है या ढेर कर दिया, लेकिन योगी राज में सख्त कानून व्यवस्था की पहचान बन चुके एनकाउंटर फॉर्मूले पर अखिलेश सवाल उठाते रहे हैं।
4: फर्जी एनकाउंटर अगर देखोगे आप तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे, और सोचिए चप्पल पहन करके एनकाउंटर कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि चप्पल पहन के इनकाउंटर कर दिया, और एक इनकाउंटर गलत किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा इनकाउंटर कर दिया।
2: यूपी में पुलिस एनकाउंटर अब बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हाल यह है कि लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लोकतंत्र सेनानियों के लिए चुनावी वादे कर रहे अखिलेश यादव यूपी पुलिस पर जाति भेदभाव के तहत काम करने के आरोप भी लगाते हैं।
5: और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने इस लड़ाई को जातिगत दिशा दिखाने का कार्य किया है। मैं एक पिछड़ी समाज से आता हूं, कुर्मी जाति से, इसलिए मेरे ऊपर देखिए गुंडा एक्ट लगा है, फर्जी मुकदमा लग जाता है।
4: चिन्हित कर करके वो ग्राफ कई बार हम लोगों ने आपको दिखाए हैं कि एसटीएफ में जो लोग हैं वो स्वजाती हैं, और सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी की तो पीड़ित समाज के लोगों की हुई।
2: दरअसल अखिलेश यादव संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए रद्द कर दिया और यूपी सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति लॉ एंड ऑर्डर की धुरी पर घूम रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: बिहार में जेडीयू के अंदर बगावत की बड़ी खबर है। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है पटना स्नातक निर्वाचन सीट से। जेडीयू ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं।